0: इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
1: परिवार पे जो भी भैया परिवार समझ सकता है।
2: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए। जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके CM योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
3: SIT की टीम में प्रवीण कुमार जो ADG है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस SIT रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
4: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं FSL वगैरह का।
2: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
5: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
2: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
6: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वहां पर जो बिजली विभाग था, उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है, देखा नहीं ध्यान से। और जो LDA है, LDA की एरिया में आता है, तो LDA ने क्या चीज देखा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
2: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया, क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर LDA के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई। बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 KVA से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया, कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है, अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
7: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं, तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने FIR की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थीं।
2: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था, एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगा।
8: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करके रख दिया है। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या CM को ऑफिसर्स ने अंधेरे में रखा था या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत ही नहीं है?
9: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए 2 शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे, यही होता आया है यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है, इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
10: और ये ट्राई फिर हो जाएगी 4 दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
11: आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे?
10: 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
12: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
9: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
13: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
14: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे, ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
15: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
16: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। पर
9: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी, लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में समा गई। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते हैं। मजार है कि बिना इजाजत परिंदा भी परवार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
12: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता है। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
9: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे हैं। एक नहीं बल्कि चार चार विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी। ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जूं कभी नहीं रेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
17: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
9: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
8: महाराष्ट्र में भी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा और इसके ऐलान गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने विधानसभा में कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति गठित होगी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप लगाए हैं, तो मंत्री नीतीश राणे कह रहे हैं कि यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए।
18: मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा पर विधानसभा में जोरदार बहस के बीच महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की मांग तेज हो गई है।
19: यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक कानून, ये हमारे बाला साहब ठाकरे जी की पहले से भूमिका रही है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सकारात्मक है और शिवसेना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सकारात्मक भूमिका। हमारी है देश में समान नागरिक कानून होने की आवश्यकता है, सभी को समान न्याय और मिलना चाहिए, यह भूमिका शिवसेना की है।
18: महाराष्ट्र विधानसभा में आज मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में तीन तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक से ज्यादा शादी और बदसलूकी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके लिए यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया है।
20: बिल की आज मैंने सदन में मांग की और इस बिल की महाराष्ट्र में बहुत ही जरूरत है, क्योंकि पॉलीगेमी का परसेंटेज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर बहुत है। डेढ़ महीने में नासिक में 3 FIR खारिज हुए हैं, दर्ज किए गए हैं, और उसके अंदर उनके पति ने उनके ऊपर ट्रिपल तलाक के लिए बहुत फोर्स किया, नहीं दिया तो उनको मार पीटना, उनको मारने की धमकी देना, और एक ने तो बताया उसको दो बंदों को लेके बोले इसके साथ तेरा हलाला कर दूंगा। जैसे कि आसाम की सरकार ने, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा की सरकार ने यूसीसी को लागू किया है, वैसे ही महाराष्ट्र की सरकार तुरंत यूसीसी लागू करे, ये मैंने मांग सदन में रखी थी और मंत्री महोदय ने बहुत ही सकारात्मक उसके ऊपर बयान दिया है कि जल्द ही कमेटी बना के सरकार जो है यूसीसी को महाराष्ट्र में लागू करेगी।
18: इसके जवाब में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने ऐलान किया कि सरकार एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएगी। ये कमेटी महाराष्ट्र में यूसीसी को कैसे लागू किया जाए इस पर स्टडी करेगी और सरकार फाइनल रिपोर्ट के आधार पर अपना अगला कदम तय करेगी।
21: 100% सकारात्मक आहे या कायद्याची अंमलबजावणी किंवा ह्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी किंवा याचा एक अभिप्राय समोर आणण्यासाठी आपण एक रिटायर्ड हायकोर्ट जज यांच्या अंडर आपण एक कमिटी स्थापन करायचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री मोदींनी घेतलेला आहे आणि हा अहवाल, या कमिटीचा अहवाल प्राप्त झाल्याच्या नंतर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील यूसीसी कायदा हा लागू केला जाईल। या बाबतीमध्ये आपलं सरकार हे सकारात्मक आहे।
18: इसके बाद यूसीसी और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर सदन में बहस तनावपूर्ण हो गई। एनसीपी विधायक सना मलिक ने चर्चा का विरोध करते हुए कहा कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, लेकिन दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता है। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है।
22: इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है, क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है, पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं।
18: इस टकराव को और बढ़ाते हुए मंत्री नितेश राणे ने कह दिया, गजवाए हिंद करने वाले जो लोग कानून और संविधान को मानने से इनकार करते हैं उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है।
23: पता चलता है कि इस्लाम में महिलाओं का क्या स्थान है। जब हम महिलाओं के हित में बात कर रहे हैं, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, अगर उनकी हित की बात हो रही होगी तो हमें सभी को उसके साथ में आके उसके लिए करना चाहिए। मगर तो भी कुरान को सामने रख के उन महिलाओं के ऊपर किया हुए अत्याचार को जस्टिफाई किया जा रहा था, यही क्या कुरान में लिखा है क्या? इसी को इस्लाम कहते हैं क्या? इसका जवाब वो लोग ने देना चाहिए।
18: वही समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बीजेपी सरकार पर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया।
24: दल के अंदर जाकर आदिवासियों से पूछें उनका धर्म जो कहता है, वो इसी में आदिवासी को बोलते हैं हम इसको अलग रखेंगे, उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर देश एक है तो सबको शामिल कीजिए। मुसलमानों का खाली विरोध नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का विरोध है। अगर मुझे मेरा मजहब कहता है कि मैं निकाह करूं, तो आप अगर कानून बना देंगे कि मैं जो है सात फेरे लगाऊं तो कैसे? या आपको कहा जाए कि आप निकाह करो, सात फेरे नहीं करो, तो ये जो पर्सनल चीजें रिलीजन की थोड़ी चीजें ऐसी हैं, बाकी हर चीज में तो कॉमन ही है। मर्डर हुआ है, अटेम्प्ट मर्डर है, कोई जायदाद का प्रॉब्लम है, तो सब कोर्ट में साफ सेम चलता है। कुछ पर्सनल चीजें हैं जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए।
25: सरकार का इस पूरे मामले
24: सरकार जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस मुल्क में बर्बाद कर देना चाहती है और उन्हीं के कंधों पर चढ़ करके राजनीति कर रही है, सिर्फ मुस्लिम हिंदू कर रही है और कुछ नहीं।
18: जिस तरह सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है, उससे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद यूनिफॉर्म सिविल कोड ला कर रहेगी।
22: सेक्शन नहीं।
0: महाराष्ट्र विधानसभा में छिड़ी ये बहस एक बात तो साफ करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला सुरक्षा, ये दोनों मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेने वाले हैं। अब ये देखना जरूरी होगा कि इस कमेटी की रिपोर्ट राज्य की राजनीति किस तरह से बदलती है। हालांकि देखना ये भी होगा कि क्या इस फैसले से सही मायने में समाज को जोड़ा जाता है या फिर इससे सिर्फ राजनीतिक हवा बदलती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
8: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहीं से परियोजनाएं निकाली गई हैं।
2: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
1: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की।
2: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
8: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: कब कोई व्यक्ति लगातार विदेश की यात्राएं करता है, कब कोई व्यक्ति विदेश में जाके परमानेंटली बस जाता है, कब किसी व्यक्ति के विदेश जाने में अड़चने आती हैं, विदेश यात्रा के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लखनऊ अग्निकांड में एक्शन, जिस इमारत में लगी थी आग उसे ढहाने की तैयारी, तत्कालीन एलडीए अधिकारियों पर भी लटकी तलवार, सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा। राम मंदिर चंदा गबन मामले में एसआईटी ने सौंपे रिपोर्ट, सूत्रों के मुताबिक किसी को नहीं मिली क्लीन चिट, रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर विपक्ष के सवाल, पूछा किसे बचा रही है सरकार। उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीद के आरोपों में घिरे मोहन यादव, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, बीजेपी बोली सीएम के खिलाफ रची जा रही है साजिश। लोहागढ़ में केतन अग्रवाल की मौत पर बड़ा खुलासा, मंगेतर सिया गोयल ने प्रेमी के साथ मिलकर 400 फीट गहरी खाई में फेंका, कुछ ही महीनों में होने वाली थी शादी। दार्जिलिंग में सड़क पर धरका पहाड़, भूस्खलन की दिल दहलाने वाली तस्वीर, बाल बाल बचे लोग, सिक्किम जाने वाला रास्ता बंद।

आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे उस खड़ी बड़ी खबर से जिसको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ मौसम की मार, अब तक आप परेशान थे कि गर्मी, ऊपर से एलिनो का खतरा, लेकिन जहां मौसम बिगड़ रहा वहां कैसी स्थितियां हैं, वहां हो रहा है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। तो शुरुआत करते हैं खबर जो आ रही है दार्जिलिंग से। पूर्वी सिक्किम में रंगपुरा थांग मार्ग पर आज भारी भूस्खलन हुआ, उसके चलते सड़क पूरी तरह बंद हो गई। पहाड़ से अचानक मलबा मुख्य सड़क पर आ गिरा जिससे यातायात ठप हो गया और अब पूर्वी सिक्किम का संपर्क बाकी राज्यों से देश से प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। तो सिक्किम में भूस्खलन, आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में लगातार भारी बारिश हो रही है, मौसम लगातार खराब हुआ है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है पश्चिम बंगाल से लेकर के सिक्किम और पूर्वोत्तर के कई सारे इलाकों में, और इसी का असर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए दार्जिलिंग के पास ये लैंडस्लाइड और हजारों टन मलबा जो है वो कैसे अचानक नीचे आ गिरता है, और उसके बाद जो इलाके हैं वो रास्ता भी बंद हो जाता है। दार्जिलिंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे लैंडस्लाइड, और इसके पहले ही दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी इन इलाकों में भारी बारिश के लिए, खासकर पश्चिम बंगाल के उन इलाकों के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में भी, और उसका असर सिक्किम में भी देखने को मिल रहा है, और अगले 2 से 3 दिन लगातार इन इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। तो दार्जिलिंग में ये भारी भूस्खलन होता है जिसके चलते जो सिक्किम का रास्ता है, हालांकि स्थानीय अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं, सड़क को बहाल करने का, रिस्टोर करने का काम भी लगातार चल रहा है, लेकिन ये तस्वीरें डराती हैं कि अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है कुछ इलाकों में। ये रंगपुर थांग इलाका है, पूरी तरह सड़क अचानक बंद हो गई। पूर्वी सिक्किम का ये इलाका है दार्जिलिंग से आगे, बड़ी संख्या में पर्यटक इस समय मौसम में जाते हैं, चारों तरफ देखिए हरे भरे पहाड़, लेकिन मौसम जब बिगड़ता है कैसे अचानक वहां लैंडस्लाइड होती है। और वहां आपको एक बाइक वाला दिख रहा, देखिए बाइक वाला बाल बाल उसकी जान बची, वो स्लाइड के आगे निकलना चाहता था, समय रहते रुक गया, लेकिन पहाड़ का इतना बड़ा हिस्सा आया कि वो भी बिल्कुल चपेट में, और ये संभवतः कोई पुलिसकर्मी है। देखिए यहां से देख रहा है और अचानक पहाड़ का हिस्सा गिरता है और उसकी बाइक भी उसकी चपेट में आ जाती है। गनीमत ये रही कि मलबा ठीक उसके पैरों के पास आके ठहर जाता है, अगर थोड़ा सा भी और ये मलबा ज्यादा होता, इसका विस्तार ज्यादा होता, तो इस पुलिसकर्मी की जान जा सकती थी। तो जैसे जैसे मानसून आएगा, अगर आप भी पहाड़ों पर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बेहद सतर्क रहें, सावधानी बरतें, मौसम का पूर्वानुमान देख के ही आगे यात्रा करें। अब शुरुआत करते हैं उस खबर की पूरे देश को जिसने झकझोर दिया, अग्निकांड। एक इमारत जो लाक्षा गृह बन गई, लखनऊ अग्निकांड में सिर्फ एक शहर को नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है, जहां बुलडोजर से लेकर के एनकाउंटर तक के ऑर्डर निकलते हैं। लेकिन एक बिल्डिंग जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है उसे कमर्शियल तब्दील कर दिया जाता है। देश की राजधानी में सरकार, प्रशासन, सारी व्यवस्था के नीचे, लेकिन राजधानी में बैठे सत्ताधीश, बड़े बड़े अफसर आंखें मूंद लेते हैं। आज वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी है, जिम्मेदार वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने भी पहुंच रहे हैं, सवाल अफसरों से पूछ रहे हैं, सत्ताधीशों से क्या जो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।

0: मेरा बेटा भी अजिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
1: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
2: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
1: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
3: माँ के सामने बेटा अंदर,
4: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब, इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
5: परिवार पे जो भी इतनी बढ़िया परिवार समझ सकता है।
1: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए? जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जांच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके CM योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
6: SIT की टीम में प्रवीण कुमार जो ADG है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस SIT रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
7: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं FSL वगैरह का।
1: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
8: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
1: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई, न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
9: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाम से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वहां पर जो बिजली विभाग था उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी AC चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहां पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से।

0: ये एरिया में आता है तो एलडीए ने क्या चीज देखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
1: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया? क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर एलडीए के अफसरों ने सर्वे नहीं किया? या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई? बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 केवीए से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया? कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है? अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
2: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने FIR की। 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थीं।
1: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था। एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
3: दो बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद दो बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। एक, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। दूसरी बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भाग कर जान बचा सकते थे।
1: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
4: बीते इतने सालों में घटनाएं हुई हैं, लोग मारे गए हैं, कहीं बच्चे डूब कर मरे हैं बेसमेंट में, कहीं दिल्ली की इमारत में जलकर रहे हैं और अब लखनऊ में एक लाशगृह। आपको पता है इन जगहों पर क्या होता है? एक कमेटी बनती है, जांच होती है, नीचे दर्जे के कुछ कर्मचारियों पर कार्यवाही होती है और उसके बाद सब कुछ पहले की तरह। वह लखनऊ अग्निकांड में सरकारी महकमों की अंधेर गर्दी का साक्षात प्रमाण है। हादसे में सरकारी दावों, जमीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर किया। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का सवाल है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है, आखिर उस विभाग ने आम जनता को भगवान के भरोसे कैसे छोड़ा? क्या सीएम को अफसरों ने अंधेरे में रखा या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत नहीं है?
5: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए दो शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा, फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे। यही होता आया है, यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
6: और ये ट्राई ट्राई फिक्स हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
7: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
6: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
8: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
5: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
9: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
10: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
11: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
12: हादसा हो जाने के बाद किस चीज कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। फिर
5: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी। लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती रहे। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में समा है। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते हैं। मजाल है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
8: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता है। आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
5: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे, एक नहीं बल्कि चार चार विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी थी? ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जू कभी नहीं रहेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
13: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे। और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
5: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
4: हमेशा आपके मन में ख्याल आता होगा ना कि जब ऐसे हादसे होते हैं हमारे आपके बच्चे ही क्यों उसका शिकार होते हैं, हमारा आपका परिवार ही क्यों मारा जाता है। इन नेताओं को, सरकार में, व्यवस्था में, सिस्टम में, इनके लोगों को, इनके परिवारों को कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार ऐसा होता तो इस तरह के हादसे भी दोबारा नहीं होते। तो करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार विवादों के घेरे में है, आरोप जमीन स्कैम का है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं कि मोहन यादव और उनके परिवार ने उज्जैन में जहां जमीनें खरीदी वहां से ही परियोजनाएं निकाली, जिसका सीधा फायदा मोहन यादव को हुआ, विकास का फायदा उनके परिवार को हुआ। देखिए रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
14: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट, बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की?
1: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
15: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
16: It's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app or at TuneIn.com.
17: कब कोई व्यक्ति लगातार विदेश की यात्राएं करता है, कब कोई व्यक्ति विदेश में जाके परमानेंटली बस जाता है, कब किसी व्यक्ति के विदेश जाने में अड़चनें आती हैं, विदेश यात्रा के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
18: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
15: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
19: Are you wondering how he can fit a teaching degree into a busy lifestyle? WGU's Bachelor of Arts in Elementary Education degree program is designed for working adults. With our competency-based curriculum model, you can progress through courses as soon as you prove mastery of the material. No rigid seat or class times. No endless waiting for your teaching dream to begin. Just a degree that fits your schedule. Get classroom ready on your time. Learn more at wgu.edu.
20: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
21: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
15: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

लखनऊ अग्निकांड में एक्शन, जिस इमारत में लगी थी आग उसे ढहाने की तैयारी, तत्कालीन एलडीए अधिकारियों पर भी लटकी तलवार, सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा। राम मंदिर चंदा गबन मामले में एसआईटी ने सौंपे रिपोर्ट, सूत्रों के मुताबिक किसी को नहीं मिली क्लीन चिट, रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर विपक्ष के सवाल, पूछा किसे बचा रही है सरकार। उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीद के आरोपों में घिरे मोहन यादव, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, बीजेपी बोली सीएम के खिलाफ रची जा रही है साजिश। लोहागढ़ में केतन अग्रवाल की मौत पर बड़ा खुलासा, मंगेतर सिया गोयल ने प्रेमी के साथ मिलकर 400 फीट गहरी खाई में फेंका, कुछ ही महीनों में होने वाली थी शादी। दार्जिलिंग में सड़क पर धरका पहाड़, भूस्खलन की दिल दहलाने वाली तस्वीर, बाल बाल बचे लोग, सिक्किम जाने वाला रास्ता बंद।

सुबह स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां उद्योग भवन इलाके के पास स्थित झुग्गियों में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट से हुई है, जिसके बाद आग ने आसपास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर करीब 20 दमकल की गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। दमकल विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, राहत बचाव कार्य भी जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम अभियान चला करके झुग्गियों पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उद्योग भवन का इलाका जिसके पास कुछ झुग्गियां थी, जहां पर इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर दार्जिलिंग से, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिला है। पूर्वी सिक्किम में रंगपोरथांग मार्ग पर भारी भूस्खलन होने से सड़क बंद हो गई है। पहाड़ी से अचानक हजारों टन मलबा मुख्य सड़क पर आ गिरा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप हो गया और इसके बाद पूर्वी सिक्किम का संपर्क बाकी इलाके से प्रभावित हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। स्थानीय अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सड़क बहाल करने का काम भी जारी है। पूर्वी सिक्किम जाने वाला रोड फिलहाल बंद हो चुका है और उसे खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें बता रही हैं पूर्वोत्तर में, खासकर जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है पहाड़ी इलाकों में इस तरह के हादसे लगातार होते हैं। ऐसे में आप भी अगर पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो मौसम का पूर्वानुमान जरूर देखें, जानकारी लें और बेहद सतर्क होकर के जाएं। दार्जिलिंग के पास पूर्वी सिक्किम का इलाका भूस्खलन का बेहद डराने वाला ये मंजर है। कुदरत का कहर देखने को मिला और वहां पर कई सारे मौजूद थे जो यात्री थे। एक पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहा है, बाल बाल उनकी जान बची। अचानक से मलबा नीचे गिरता है और ऐसा लगता है पहले एक चट्टान लेकिन पूरी पहाड़ का एक हिस्सा ही दरक कर नीचे गिरता है। वहां एक पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहा है और अगर मलबा थोड़ा सा भी और पीछे की तरफ खिसकता तो इस पुलिसकर्मी की भी जान जा सकती थी। बहरहाल वहां पर अब अभियान चलाया जा रहा है, रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे मानसून है पहाड़ों में अब लैंडस्लाइड की घटनाओं में इजाफा देखने को मिलता है। हादसे की अगली खबर राजस्थान से। अजमेर में एक बड़ा हादसा टल गया जब अजमेर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी, धुआं उठने लगा। बस के चालक ने सूझबूझ दिखाई और बस तुरंत रोक दी और तुरंत 37 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई, जलकर खाक हो गई। सूचना मिली तो 4 दमकल की गाड़ियां पहुंची, उन्होंने मशक्कत करके आग पर काबू पाया। आग लगने के लिए प्राथमिक वजह इंजन में शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, लेकिन गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई, बस को रोका और सभी यात्रियों को नीचे उतार लिया गया। अगली खबर भी राजस्थान से। जयपुर में तेज रफ्तार का खौफनाक कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो करीब 20 फीट दूर उछलकर मकान की दीवार से जा टकराया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी से ड्राइवर की पहचान की जा रही है, वाहन चालक की आरोपी की पहचान की जा रही है। लेकिन देखिए इतनी तेज रफ्तार कि वो नियंत्रण खो बैठा और बगल में आप देखिए ये सड़क यहाँ पर मर्जर है, सामने से एक बाइक आ रही है, कार रफ्तार में है, जिसके चलते न बाइक सवार कार को देख पाया न कार सवार बाइक को देख पाया। और ये देखिए इसीलिए कहा जाता है रफ्तार पर नियंत्रण होता तो ये हादसा नहीं होता। अब यहाँ कई विभागों की भी लापरवाही, जहां पर सड़क का मर्जर है वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सामने से आ रही गाड़ी जो है वो मुख्य सड़क पर जो ट्रैफिक है उसको देख पाए और उसी के साथ जो कार सवार आ रहा है उसे भी अंदाजा नहीं कि आगे कोई सड़क है जो मर्ज हो रही है। लेकिन ये लापरवाही है, ये हमेशा संभावना होती है कि बगल से या कहीं से गली में से भी कोई निकल सकता है, साइकिल लेकर के निकल सकता है, बाइक लेकर के निकल सकता है। और इतनी तेज रफ्तार संभवतः है जो गाड़ी की रफ्तार है वो 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा दिखाई दे रही है और ऐसे में बाइक सवार उसकी चपेट में आ जाता है। बेकाबू कार और बाइक सवार को टक्कर मारी।
तो जयपुर का यह हादसा सबक देता है कि हमें क्यों रफ्तार पर नियंत्रण रखना जरूरी है। लेकिन एक हादसा लखनऊ में हुआ। अग्निकांड ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 15 लोग जलकर मर गए, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां से सरकार चलती है। बुलडोजर से लेकर एनकाउंटर तक के ऑर्डर इसी लखनऊ से निकलते हैं। लेकिन एक इमारत जो रिहायशी इमारत के तौर पर बनाई जाती है, उसे कमर्शियल में तब्दील कर दिया जाता है। ये सब राजधानी में बैठे सत्ताधीश अफसर उसे आंखें मूंद लेते हैं। उनकी आंख के नीचे ये सब हो रहा है। और आज वही बिल्डिंग 15 मौतों का मरघट बनकर स्याह खड़ी है। जिम्मेदार वही सत्ताधीश इमारत का मुआयना करने पहुंच रहे हैं। सवाल इन्हीं अफसरों से है, सत्ताधीशों से है, कि क्या वो 15 मौतों की जिम्मेदारी लेकर खुद को आईना दिखा पाएंगे।

0: que Dios le va a dar.
1: Mira, me está viendo todo. Mira, me está viendo todo el día.
2: 15 लोग जिंदा जल गए, क्या जिंदगी इतनी सस्ती है?
3: ये पापा बचाओ कैसे भी करके, आग लग गए।
2: पहले ऐसा मुआयना होता तो अग्निकांड क्यों होता? पंद्रह मौतों का सवाल है, जिम्मेदारों को जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे एक रिहायशी बिल्डिंग कमर्शियल में बदल गई? किस किस का भ्रष्टाचार 15 बेगुनाहों की मौत का कारण बना?
4: माँ के सामने बेटा अंदर,
5: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
6: परिवार पे जो भी भैया परिवार समझ सकता है।
2: अब लखनऊ का पूरा प्रशासनिक अमला, सारे दिग्गज अधिकारी इस जलकर खाक हो चुकी इमारत के चप्पे चप्पे को नाप रहे हैं। आग कैसे लगी, कहां से लगी, कैसे फैली और कैसे 15 लोग इस अग्निकांड में जिंदा जल गए? जांच के लिए लखनऊ के अलीगंज की इस 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए और जाँच करने के लिए SIT का गठन किया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और ADG लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को शामिल किया गया है। लखनऊ के ये दिग्गज अफसर 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके CM योगी को भेजेंगे। लेकिन जिस तरह से इस खाक हुई बिल्डिंग में अधिकारी अब खाक छान रहे हैं, अगर आग लगने से पहले इस कॉम्प्लेक्स की पड़ताल की गई होती और सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ा होता तो 15 बेगुनाह लोग इस अग्निकुंड में ना समाये होते, इस तरह से पीड़ित परिवारों के आंसू ना बह रहे होते।
7: SIT की टीम में प्रवीण कुमार जो ADG है जोन वो और साथ साथ अमृत अभिजात मौजूद है, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जांच की है इस पूरे मामले की कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये घटना घटी है। इस SIT रिपोर्ट बनाकर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और अब यहां पर माइक्रो लेवल पर हर उस चीज की जांच की जा रही है और परखा जा रहा है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या है। सर, क्या क्या आपने जांच किया है अंदर, किस तरीके से?
8: देखिए, सब सारे फ्लोर्स पे गए हैं और जो घटना स्थल है वो भी देखा है। तो अभी कुछ निर्णायक बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अभी सारी जांचें हो रही हैं FSL वगैरह का।
2: लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक करके खुल रही हैं तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सामूहिक हत्याकांड है, जिसको उन भ्रष्ट अधिकारियों, अफसरों, जिम्मेदारों ने खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ होकर अंजाम दिया है।
9: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
2: लखनऊ के उस अलीगंज में ये कॉम्प्लेक्स है जहां से हर छोटे बड़े अफसर से लेकर नेताओं की गाड़ियां गुजरती होंगी। इस 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को रिहायशी इमारत से कब कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया और कब इसमें एनिमेशन सेंटर चलना शुरू हो गया, इसकी न कभी जांच की गई, न कभी पड़ताल, लेकिन भ्रष्टाचारियों की मुट्ठियां गर्म करके इसे मौत का कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सवाल इस अग्निकांड या कहें हत्याकांड के जिम्मेदारों से है, फायर डिपार्टमेंट ने कैसे अनदेखी की, कैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने इसमें घोर लापरवाही बरती। 2016 में बनाए गए NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों की अनदेखी की गई।
10: जो मकान मालिक हैं, क्योंकि बिल्डिंग आवासीय में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, तो उनको फायर नाप से पूरा करना चाहिए था, आग बुझाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने की पूरी व्यवस्था में समुचित ढंग से किया नहीं था, इसलिए मकान मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है वहां पर। दूसरी बात है कि जो अगर वो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो वहाँ पर जो बिजली विभाग था उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी एसी चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहाँ पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो एलडीए की एरिया में आता है तो एलडीए ने क्या चीज देखा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
2: जब ये बिल्डिंग रिहायशी से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हुई तो फायर ऑडिट क्यों नहीं किया गया? क्यों रिहायशी बिल्डिंग के कमर्शियल में बदलने पर एलडीए के अफसरों ने सर्वे नहीं किया, या फिर इन अफसरों के पहुंचने से पहले ही उनकी जेब उनकी कुर्सी पर ही गर्म कर दी गई? बड़ी बात यह भी है कि जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34 केवीए से ज्यादा हो गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 केवीए दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बिजली विभाग ने मौके पर जाकर लोड चेक क्यों नहीं किया? कितना लोड कागजों में है और कितना बिजली का लोड खपत में आ रहा है? अगर इसकी चेकिंग की गई होती तो इतना बड़ा अग्निकांड नहीं हुआ होता।
0: जो कार्रवाई है उसकी बात कर लेते हैं तो सरकार सबसे पहले तो पुरनिया के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने एफआईआर की, 6 लोगों पर मुकदमा तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें इस मकान के ओनर, इस मकान के दो जो ओनर हैं जिन्होंने कमर्शियल कम्प्लेक्स बनाया है और जिनकी कंपनियां यहां कार्यरत थी।
2: 3 मंजिला इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट भी बनाया गया था। एंट्री एग्जिट के लिए सिर्फ एक छोटा सा रास्ता था और इस रास्ते के ऊपर 7 पैनल, 2 एग्जॉस्ट फैन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल लगाकर रास्ते को और छोटा कर दिया गया था। इमारत के मालिकों और सेंटर संचालकों ने इसे अनदेखा किया।
0: 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तरफ जो तमाम जो जांचें चल रही हैं वो अपनी जगह है, लेकिन शायद 2 बातें अगर इसमें हो गई होती तो इतने बच्चों की जान नहीं जाती। 1, जो बायोमेट्रिक जिसके जरिए एक्सेस था उस एनिमेशन का, जो इंस्टीट्यूट है उसके भीतर जाने और आने का, अगर वो बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ होता यानी कि, तो शायद बच्चे निकल सकते थे। 2 बात, ऊपर अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए ऊपर में एक पेंट हाउस जैसा है, यानी कि वो मकान मालिक जो है उसका अपना घर है, और कहा यह जा रहा है कि अगर ऊपर का घर का अगर सीढ़ी का रास्ता खुला होता तो भी ऊपर बच्चे भागकर जान बचा सकते थे।
2: अब सवाल यही है कि जिस लखनऊ से बुलडोजर और एनकाउंटर के सीधे ऑर्डर निकलते हैं वहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑर्डर क्यों नहीं निकलते? आखिर भ्रष्टाचार की आग कैसे बुझेगी? आज तक ब्यूरो।
11: लखनऊ अग्निकांड सरकारी महकमों के अंधेर गर्दी का साक्षात प्रमाण है, क्योंकि हादसे ने सरकारी दावों, जमीनी हकीकत के बीच खाई को उजागर कर दिया। सवाल जवाबदेही का है, पीड़ितों के परिजनों के इंसाफ का है। सवाल यह भी है कि जिस महकमे की कमान सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में है उस विभाग ने आम जनता को भगवान भरोसे कैसे छोड़ दिया? क्या सीएम को अफसरों ने अंधेरे में रखा, या फिर उत्तर प्रदेश में जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि हादसे होते रहे, किसी ने सबक नहीं ली, किसी पर कार्यवाही नहीं हुई, कार्यवाही के नाम पर एक कमेटी बनती है, जांच रिपोर्ट आती है, और उसके बाद क्या होता है? वही होता है जो लखनऊ में हुआ।
12: ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे, क्योंकि जिंदगी लेना और देना तो ऊपर वालों के हाथों में है। ऐसे में जिम्मेदारों की जवाबदेही का कोई सवाल नहीं उठता। हादसे में मौत हुई तो साहब ने मौके का मुआयना कर लिया, जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया, संवेदना जताते हुए 2 शब्द भी कह दिए। अब मृतकों की जान लौटाई तो जा नहीं सकती, तो इससे ज्यादा उनके परिजनों को क्या चाहिए? सरकार तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभा रही, फिर हादसा होगा फिर यही सरकारी रस्म अदा कर दी जाएगी। मतलब ना तो सिस्टम बदलेगा ना जिम्मेदार अपनी सोच बदलेंगे, यही होता आया है, यही होता रहेगा, क्योंकि योगी सरकार के उत्तम प्रदेश में जनता की जिंदगी सरकारी सिस्टम के आगे सस्ती है। इतनी सस्ती कि अब पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अतीत में हुए हादसों से लेकर लखनऊ अग्निकांड तक जिम्मेदारों के रवैये से पीड़ित इतना टूट चुके हैं कि ना उम्मीदी के अंधेरे में इंसाफ के उजाले की उम्मीद अब बेमानी है।
13: और ये टाई टाई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
14: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
13: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
15: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
12: मुख्यमंत्री की तरफ से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का ऐलान भी पीड़ितों के दिलों में सोते हुए सिस्टम के जागने का भरोसा नहीं जगा सकता।
16: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।
17: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा,
18: ऐसा चलता रहेगा। मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, कच्चा जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
5: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। पर
12: पहले की तरह लखनऊ अग्निकांड के बाद पीछे है परिजनों की पीड़ा, रोते बिलखते लोग, जांच और मुआवजे की खाना पूर्ति, लेकिन पीड़ितों के आंसुओं का हिसाब न कभी मिला, न मिलने की उम्मीद और न कोई दे पाया है। सोचिए, रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई ये कमर्शियल बिल्डिंग न सिर्फ अवैध थी, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक डेथ ट्रैप बन चुकी थी। लेकिन न देखने वाला कोई, न सुनने वाला कोई। आम जनता हादसे का शिकार बनती है तो बनती है। लखनऊ में हुए अग्निकांड में 15 जिंदगियां मौत के गाल में समा गई। अगर जिम्मेदारों ने आंखों पर रिश्वत की पट्टी नहीं बांधी होती तो ये बच जाते। यही है आम जनता की सुरक्षा की गारंटी, मतलब सिस्टम के भरोसे नहीं बल्कि भगवान के भरोसे जियो। जबकि माननीय और साहब तो पूरे ठसक के साथ सुरक्षा के वीवीआईपी प्रोटोकॉल में चलते हैं। मजाल है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर मार दे, क्योंकि माननीय और सरकारी लाट साहबों की जिंदगी का मोल है और आम जनता की जिंदगी का कोई नहीं।
15: अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता, आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे।
12: अगर आम जनता की जिंदगी की परवाह होती तो लखनऊ के अलीगंज में सरकारी तंत्र की नाक के नीचे मौत की इमारत कभी खड़ी नहीं होती। इमारत की नींव से लेकर छत पर लगी आखिरी ईंट तक में सरकारी भ्रष्टाचार का सीमेंट भरा पड़ा है। इतना मजबूत सीमेंट कि कोई हिसाब नहीं। ये सब कैसे हुआ ये भी समझिए। सरकार की हर साख पर 15 बेगुनाहों के खून के छींटे हैं, एक नहीं बल्कि चार चार विभागों की अंधेर गर्दी आम जनता की जिंदगी पर भारी पड़ी। मौत की बिल्डिंग अवैध थी लेकिन सिस्टम की आंखें बंद थी। आज कटघरे में खड़ा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और उसके कर्ता धर्ता। सवाल यही कि दोनों विभागों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, भ्रष्टाचार की इमारत क्यों खड़ी थी? ये तब है जब लखनऊ विकास प्राधिकरण जिस विभाग को रिपोर्ट करता है उसके मुखिया सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे काम करने वाले हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग की अंधेर गर्दी ने जिंदगी के 15 चिराग बुझा दिए, जिसके लिए सीधे जिम्मेदार हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग विभाग के मुख्य सचिव पी गुरुप्रसाद, एलडीए के चेयरमैन रोशन जैकब, एलडीए के वीसी प्रथमेश कुमार, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार, जो नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को रिपोर्ट करते हैं। इनका जिम्मा अवैध निर्माण को रोकना और अवैध निर्माण को ढहाना। आंखें बंद थी तो कोई वक्त रहते एक्शन कभी नहीं लिया गया। सरकारी व्यवस्था में अव्यवस्था का दीमक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। सरकारी मुलाजिमों को पता था अलीगंज में खड़ी मौत की इमारत कभी भी आम जनता का जीवन छीन सकती है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी बिजली विभाग ने आंखें मूंदे रखी। अवैध बिल्डिंग मांग से ज्यादा बिजली खपत के बावजूद बिजली विभाग के कान जू कभी नहीं रहेंगी। सब कुछ चलता है, चलता रहेगा के हिसाब से चलता रहा। बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा और जिम्मेदार हैं यूपीपीसीएल के चेयरमैन और लखनऊ की बिजली आपूर्ति का जिम्मा संभाल रहे अफसर आशीष कुमार गोयल। वक्त रहते बिजली विभाग ने कार्रवाई की होती 15 जिंदगी बच जाती।
19: ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए पूरी तरह सजगता के साथ हम और पूरी सरकार प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि ऐसी घटनाओं का जो भी कारण है वो भविष्य में ऐसी घटनाओं के कारण न बने।
12: ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि योगी के राज में सरकारी सिस्टम की लापरवाही जानलेवा साबित हुई। इससे पहले भी सिस्टम की लापरवाही के चलते कई बार लोग बेमौत मारे गए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यही है योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड। महाकुंभ भगदड़, 37 श्रद्धालुओं की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। हाथरस सत्संग भगदड़, 121 लोगों की मौत, कोई बड़ा अफसर नहीं नपा। झांसी मेडिकल कॉलेज आग, 18 नवजात बच्चों की मौत, किसी बड़े अफसर पर गाज नहीं गिरी। आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे हादसा, 19 यात्रियों की मौत, कोई अफसर नहीं नपा। जब सिस्टम की सोच पर सिर्फ आश्वासन का पर्दा पड़ा हो तो जिम्मेदार हर बार अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं और आम जनता की जान चली जाती है।
11: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
21: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: कब कोई व्यक्ति लगातार विदेश की यात्राएं करता है? कब कोई व्यक्ति विदेश में जाके परमानेंटली बस जाता है? कब किसी व्यक्ति के विदेश जाने में अड़चने आती हैं? विदेश यात्रा के बारे में ज्योतिष क्या कहता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

लखनऊ अग्निकांड में सख्त एक्शन, जिस इमारत में लगी थी आग आज उसे ढहाने की तैयारी। तत्कालीन एलडी अधिकारियों पर भी लटकी तलवार, सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटरों पर भी शिकंजा। राम मंदिर चंदा गबन मामले में एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट, सूत्रों के मुताबिक किसी को क्लीन चिट नहीं। रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर विपक्ष के सवाल, पूछा किसे बचा रही है सरकार। उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीद के आरोपों में घिरे मोहन यादव, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, बीजेपी बोली सीएम के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लोहागढ़ में केतन अग्रवाल की मौत पर बड़ा खुलासा, मंगेतर सिया गोयल ने प्रेमी के साथ मिलकर 400 फीट गहरी खाई में फेंका, कुछ ही महीने में होने वाली थी शादी। और देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून ने दी दस्तक, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने रेड वार्निंग भी जारी की।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोगों की विदेश जाने की इच्छा होती है, बहुत सारे लोग जाते भी हैं और कुछ लोग प्रयास करने पर भी नहीं जा पाते। विदेश जाने के योग के बारे में ज्योतिष क्या कहता है और विदेश की स्थितियां ग्रहों से कैसे बनती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जून 2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम के 6:12 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय है दोपहर के 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में। ज्योतिष के हिसाब से विदेश यात्रा का मतलब क्या है और कौन से ग्रह विदेश जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा को माना जाता है। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 लगे, 9 लगे, मोटे तौर पर पहले इसको विदेश यात्रा समझते थे। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश, पांचवा, नवा और 12वां भाव मूल रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होता है। 6वां भाव और 8वां भाव भी कभी कभी विदेश यात्रा में भूमिका निभा देता है। क्रूर ग्रहों की और पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। जब पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति विदेश जाता है। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी व्यक्ति को विदेश जाने में सहायता करते हैं। शनि की 7.5 में और ढैया में ज्यादातर स्थान परिवर्तन होता है और उसमें भी विदेश जाने की संभावना काफी होती है। विदेश यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले,
और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन खर्च बढ़ा रहेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे

लिए होगा पीला। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं विदेश आते जाते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ समय विदेश में रहते हैं फिर अपने देश वापस लौट आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेश जाते हैं और परमानेंटली वहां जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। तो कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बसता है? आम तौर पर शनि या राहु के मजबूत होने पर व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा कमजोर हो, खास तौर से चंद्रमा गड़बड़ हो, तो व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी रूप से बसता है। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्म तिथि 2, 11, 20 या 29 हो उनके भी विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा मातृभूमि का और माता का स्वामी होता है। अगर थोड़े सेंस में काम करेगा तो क्या होगा कि आप दिल्ली से निकल के बेंगलोर में बस जाएंगे, दिल्ली से निकल के मुंबई में बस जाएंगे, और अगर ये तीव्र काम करेगा तब आप अपने देश से निकलकर विदेश में बस जाएंगे। चंद्रमा का रोल और चतुर्थ भाव का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये समझने और देखने के लिए कि व्यक्ति विदेश में रहेगा या नहीं रहेगा। विदेश यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके

दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विमलेश गौतम जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 6 अगस्त सन 2000, 10:43 प्रातः दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे को नौकरी कब तक और किस क्षेत्र में मिलेगी, मेरे बेटे का भविष्य कैसा रहेगा। विमलेश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और तुला राशि की। उनकी नौकरी का समय चल रहा है मार्केटिंग में, सेल्स में, कंप्यूटर के क्षेत्र में या टूरिंग ट्रेवलिंग जैसी कोई नौकरी इनको मिलनी चाहिए और नौकरी इनको 25 सितंबर 2026 के पहले मिल जाएगी। अभी जो भी एवरेज नौकरी मिलती है वो इनको करना चाहिए। बहुत अच्छा करियर या बहुत अच्छी नौकरी जुलाई 27 के बाद दिखाई दे रही है। एक इनको पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाएं और इनसे कहिए कि रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, इनको लाभ होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नौकरी के मामले में, घूमने या व्यापार के मामले में विदेश जाना चाहते हैं लेकिन विदेश नहीं जा पाते, उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। विदेश यात्रा में कब बाधा आती है? अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत होने लगे, चंद्र या शुक्र बड़े प्रबल हों, तो आप विदेश नहीं जा सकेंगे या घर से दूर जाना आपका कठिन होगा। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो सामान्यतः विदेश जा पाना या विदेश यात्रा कर पाना कठिन होता है। अगर आपके पासपोर्ट में या वीजा में 1, 6 या 9 अंक ज्यादा बार आए तब भी आपके विदेश जाने में अड़चन आएगी। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 हो तो या तो व्यक्ति बहुत बार विदेश जाता है या कभी विदेश नहीं जा पाता। अगर कुंडली में व्यक्ति के ज्यादातर ग्रह जल के इलाके में बैठे हों, जल तत्व की राशियों में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में भी विदेश जाने में बड़ी दिक्कत आती है, विदेश जाने में बाधा पैदा होती है। विदेश यात्रा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के नुकसान से बचें, नुकसान हो सकता है। करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अगर आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं और उसमें रुकावटें आ रही हैं तो क्या उपाय करेंगे? शनि देव के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को कम से कम 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। कुंडली का जो नवम भाव है इसके स्वामी ग्रह को मजबूत करें। नवम भाव पिता का होता है, पिता के चरण स्पर्श करने से भी लाभ होगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का, लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का खूब प्रयोग करें या कम से कम अपने साथ हल्के नीले रंग का रुमाल रखें तो फायदा होगा। और नदी पार करके कोई एक बार यात्रा जरूर कर लें। अगर नदी पार करके यात्रा करेंगे तो यात्रा की शुरुआत होगी और विदेश जाना सरल होगा। अगर आप विदेश में परमानेंटली रहना चाहते हो, परमानेंटली बसना चाहते हो तो क्या करेंगे? स्नान करने के जल में जरा सी हल्दी मिला करके नहाइएगा। एक कांच की छोटी सी शीशी में हल्दी भरकर जहां आप सोते हैं वहां अपने सिरहाने रखिएगा। रोज सवेरे माता दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करिए और अगर वास्तविक फूल नहीं मिल रहा है तो मानसिक लाल फूल से माता दुर्गा की पूजा करिएगा। ऐसा करने से कुंडली के योग प्रबल होंगे और विदेश में स्थायी रूप से बस पाना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें
कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। हरे फल का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूजा उपासना में अगरबत्ती न जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। ऐसा क्यों? देखिए, पूजा उपासना में अगरबत्ती जलाने से कोई पाप हो जाएगा या अगरबत्ती जलाने से कोई दोष होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि अगरबत्ती में बांस की तीलियां होती हैं और जब आप अगरबत्ती जलाते हैं तो बांस भी जलता है। बांस के जलने से लेड निकलता है उसके धुएं में, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। अगर लकड़ी की तीलियों वाली मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, तो आप उसे जरूर जला सकते हैं। लकड़ी की तीलियों वाली अगरबत्ती जलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बांस की तीलियों वाली अगरबत्ती ना जलाएं, उसकी जगह धूप बत्ती जलाना ज्यादा बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ के विवादों से बचें। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 5, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। और नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की और मन की चिंताएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनिल मिश्रा जी ने हमें लिखा है और अनिल मिश्रा जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 25 जून 2004। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है,
क्या मेरे पुत्र को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? देखिए अनिल जी, अगर आपका पुत्र बैंक में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग सेक्टर में, इन क्षेत्रों में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, एसएससी में, टैक्सेशन के क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो उसमें सफलता की संभावनाएं जरूर बनती हैं। अभी सफलता पाने में 2 वर्ष का समय है, 2028-29 का समय इनके लिए काफी अच्छा है और उस समय इनको सफलता मिलनी चाहिए। एक तो इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करें तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरा धनिया खा के घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी इलायची खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने पास हरा रुमाल रख कर के जाइएगा, मीटिंग में काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए, तो गणेश जी की आरती करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो जरा सा सुगंध लगाकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए, धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं समाप्त होंगी। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को, चिंताएं हो सकती हैं, काम रुक सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। दशमी तिथि को द्रव्यदा कहा जाता है। आज धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना स्वीकार होगी। और आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करिएगा, शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

लखनऊ अग्निकांड पर सख्त एक्शन हो रहा है। जिस इमारत में आग लगी थी उसे ढहाने की तैयारी है। तत्कालीन एनडीए अधिकारियों पर भी लटकी तलवार। अग्निकांड पर सीएम योगी ने बैठक बुलाई। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। फायर सेफ्टी मानकों से समझौता नहीं करने के आदेश दिए। योगी ने हर जिले में विशेष टीमें गठित करने के आदेश दिए। फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया। अलीगंज अग्निकांड में एक्शन भी हुआ है। बिल्डिंग मालिक को जल्द नोटिस दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती बिल्डिंग मालिक के सीने में दर्द का बहाना नहीं आया काम। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को फिट बताया। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। लखनऊ अग्निकांड में नया मोड़ आया। निलंबित एफएसएसओ ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। निलंबित कमलेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यवाही अन्यायपूर्ण है। कमलेंद्र सिंह ने कहा, मेरे पास फायर एनओसी देने का अधिकार ही नहीं है। मेरा कार्यक्षेत्र सीमित है। सीएफओ को एनओसी की जिम्मेदारी है। अग्निकांड के घायलों से मिले अखिलेश यादव। अखिलेश ने सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया रहा, जबकि छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिराई गई है। अखिलेश ने योगी राज में पास नक्शों की भी जांच की मांग की है। ब्रजेश पाठक पर पलटवार करते हुए कहा कि मौत पर अखिलेश राजनीति न करें। लखनऊ हादसे के बाद प्रयागराज के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच हो रही है। कई कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। कई संस्थान बंद मिले हैं। प्रयागराज में मानक पूरा न करने पर सिविल लाइन्स में स्थित खान ग्लोबल कोचिंग को बंद कर दिया को सील कर दिया गया है। कानपुर में अवैध कोचिंग कार्रवाई के मामले में कोचिंग संचालक ने कहा कि केडीए अधिकारियों ने कहा है कि आज सील करवा लो, कल खुलवा देंगे। केडीए ने इस पर सफाई दी है। लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्नि सुरक्षा जांच भी तेज हो गई। जीडीए को अब तक 206 भवनों में खामियां मिली हैं। 56 सेंटरों को सील किया गया है। नोएडा में सुरक्षा मानकों में भारी खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने 2 कोचिंग सेंटर सील किए। प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण अभियान लगातार जारी रखा है। उन्नाव में भी 3 इंस्टीट्यूट प्रशासन ने सीज किए। माचिस की डिब्बी जैसे कमरों में बनाया जा रहा था बच्चों का भविष्य। कौशाम्बी में भी एक्शन देखने को मिला है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कई कोचिंग सेंटरों को सील किया गया। आगरा में कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक हुआ। बेकार फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो सामने आया। कई सवाल उठे। सहारनपुर में इमरान मसूद ने बयान दिया। 12 साल में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सरकार युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर यूपी कांग्रेस का आज राज्यव्यापी प्रदर्शन है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। न्याय की मांग के लिए आज महापंचायत बुलाई गई है। भरत के गांव बिलौटी में दोपहर 12 बजे सभा का आयोजन किया गया है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन हुआ है। जगदीशपुर के एसडीपीओ शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर किया गया है। बवाल के बाद बिहार पुलिस अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुनियोजित हत्या बताते हुए कहा कि वहां के डीएसपी ने साजिश रची है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार से भारत एनकाउंटर मामले की जांच रिटायर्ड जज के बजाय पटना हाईकोर्ट के जज से की। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रशांत किशोर ने बड़ा हमला बोला। कहा, सीएम सम्राट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधी आदमी है सम्राट। तृणमूल कांग्रेस ने 24 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन किया। ममता बनर्जी फिर से चेयरपर्सन बनी। अभिषेक बनर्जी महासचिव नियुक्त किए गए। टीएमसी विधायक कुणाल घोष का बड़ा बयान। कहा, असली टीएमसी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के संघर्ष से ही ये पार्टी बनी है। कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए उनके करीबी सहयोगियों पर मनमानी चलाने का आरोप लगाते हुए कहा, जो टीएमसी से दूर जा रहे हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। दक्षिण 24 परगना में प्रशासन ने कार्यवाही की। अवैध निर्माण बताए जा रहे टीएमसी पार्टी के कार्यालय ध्वस्त किए गए। पुलिस और नगर पालिका की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन किया गया। नंदीग्राम चुनाव नतीजों में हेरफेर का आरोप मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर हाईकोर्ट में सीसीटीवी और वीवीपैट सुरक्षित रखने की मांग की गई। महाराष्ट्र विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के आसार। आदित्य ठाकरे ने कहा कि यूसीसी के गुण दोष पर चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया, महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित। सरकार ने समर्थन जताया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे भी थे यूसीसी के समर्थन में। 6 सांसदों के शामिल होने की औपचारिकताएं भी अब पूरी हुई। बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने कहा कि महाराष्ट्र में 3 तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा, जिसके लिए यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया है। यूसीसी और ट्रिपल तलाक को लेकर के बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने बहुविवाह महिला उत्पीड़न के मामलों का हवाला देते हुए सख्त कानून की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री नितेश राणे ने विवादित बयान दिया। कहा, यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। विपक्ष पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की कोशिश। पुणे में बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में फेंका था। नवंबर में दोनों की शादी होनी थी। पुणे हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा।
गुजरात के गीर सोमनाथ के वेरावल में सरकारी जमीन पर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। जल निकासी मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन ने 3291 वर्ग मीटर भूमि को मुक्त कराया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीद के आरोप गंभीर आरोप लगाए। 335 एकड़ लैंड पर जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम मोहन के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट जज से जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि एमपी में डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में 4 दिन से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया। छत से निहंग से गुजर गए। बातचीत के बाद शांतिपूर्ण ढंग से वापस लौट गए। हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार का बड़ा एक्शन। 6 महीने के लिए इसमें लागू किया हड़ताल पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। ओडिशा सरकार आज शहरी जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इंदौर में रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया। कहा कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य अब कमजोर हो चुका है। एनडीए में आने के लिए अभी उनके दरवाजे खुले हैं। वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद पर राहत वाली नोटिस को रेलवे ने फर्जी बताया। फिर से ठोका मस्जिद पर रेलवे का दावा। झारखंड T20 लीग के फाइनल मैच के दौरान JSCA स्टेडियम में भगदड़ जैसे हालात मचे। तस्वीरें सामने आई। यूनिकॉइन बिटकॉइन हैक केस में श्री कृष्णा उर्फ श्रीकी और मोहम्मद हारिस नालापाड़ को आज कोर्ट में पेश होना होगा। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन से सड़कें बंद। मुख्य सड़क पर गिरा मलबा, मुसीबत बढ़ी। सिक्किम रंगपोरथांग मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। रास्ता पूरी तरह बंद होने से प्रशासन ने दूसरे रास्तों से यात्रा करने की सलाह दी। कोलकाता में भी मूसलाधार बारिश का कहर। हाईकोर्ट परिसर समेत कई जगहों पर पेड़ गिरे। कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। महाराष्ट्र के कल्याण में मॉनसून ने जोरदार एंट्री दी। झमाझम बारिश से गर्मी उमस से मिली राहत। सड़कों पर बारिश का आनंद लेते दिखे लोग। गुजरात के नवसारी समेत कई इलाकों में दूसरे दिन भी रुक रुक कर हो रही है बारिश। हिल स्टेशन सापुतरा में पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों के नजारे ने पर्यटकों को आकर्षित किया। अमरावती में पारिवारिक विवाद ने एक पिता हैवान बन गया। बेटा बहू को कार से कुचलने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में आरपीएफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा चल गया। शल्टर ट्रेन से गिरते यात्री की जान बचाई। हिमाचल के सोलन सब्जी मंडी के पास भयंकर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी। सभी यात्री सुरक्षित। मेरठ में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मी और थाना मोबाइल जीप को टक्कर मारी। हादसे में 7 पुलिसकर्मी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा बाल सुधार गृह में गंभीर लापरवाही का खुलासा हुआ। धड़ल्ले से उपयोग हो रहे मोबाइल, शराब और नॉनवेज पार्टी भी चल रही। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके के पास लगी भीषण आग। आग लगने की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद हुई। शॉर्ट सर्किट के बाद आग ने आसपास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर करीब 20 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। कोई जनहानि की सूचना नहीं। अजमेर में चलती बस में अचानक आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ से 37 यात्रियों की जान बची। शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। आगरा के आकाश इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में धुआं उठने पर हड़कंप मचा। सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विकास नगर के जंगल में लगातार आग लग रही है। मौके पर वनकर्मी और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे। हैदराबाद में एटीएम कैश वैन से 17 लाख रुपए चोरी हुए। बदमाश वैन की डिक्की से बैग लेकर फरार हो गए। बेतिया में बेटा नहीं होने की नाराजगी में एक पिता हैवान बन गया। पत्नी को नहर में धकेला। 3 मासूम बच्चों के भी डूबने से मौत हुई। इंदौर में अवंतिका गैस में भीषण आग लग गई। 4 लोग झुलसे। करीब 5,000 घरों की सप्लाई बंद हो गई। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वाला गैंग सीसीटीवी में कैद हुआ। इस्कॉन मंदिर के पास वारदात से दहशत। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। हरियाणा में से सीमेंट के बोरे में छिपाकर ट्रक से 48 लाख की विदेशी शराब जब्त की गई। मुर्शिदाबाद में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। कम से कम 15 लोग घायल हुए हैं। पुंछ में SDRF पुलिस सेना CRPF अन्य एजेंसियों ने संयुक्त मॉक ड्रिल की। जलवायु आपातकालीन स्थिति से निपटने की भी तैयारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की मार्केटिंग कर हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अमरावती में बड़ा साइबर घोटाला उजागर हुआ। गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर करोड़ों की ठगी की गई। गोवा में छापेमारी के बाद 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए। छत्रपति संभाजीनगर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना लाइसेंस पैकेज पीने के प्लांट पर छापेमारी, लाखों का स्टॉक जब्त। अयोध्या श्री राम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न किया गया। दिव्य समारोह का आयोजन हुआ। अयोध्या के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज का पूजन किया। फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे करीब 4,000 राम भक्त। श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर पूजा पाठ किया। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जंग बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को सौंपा करीब 300 वर्ष पुरानी भगवान श्रीराम से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ की पांडुलिपियां। 27 करोड़ रुपए के ऋषभ पंत, 15 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स लौटे। 13.5 करोड़ रुपए में कुलदीप यादव। लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए। दोनों टीमों के बीच ट्रेड हुआ। वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम इंडिया की 3 नंबर की जर्सी। कहा खुशी बयां करने के लिए शब्द नहीं। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर रवाना हुए।
रोहतास में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आकाशदीप की शादी की रस्में हुई हल्दी मेहंदी का वीडियो वायरल, आज वाराणसी में शादी समारोह। दिल्ली शहर में अचानक मौसम बदल गया है, तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी भी देखने को मिली। सड़क पर वाहन चालकों और राहगीरों को उसे काफी परेशानी हुई, थोड़ी देर के लिए आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। 56 हस्तियों को पद्मश्री, 7 को पद्म भूषण, 2 को पद्म विभूषण, क्रिकेटर रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साउथ सुपरस्टार ममूटी और बॉलीवुड सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया गया। टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण। जेएमएम के संस्थापक दिवंगत शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को पद्मश्री से सम्मानित की गई। पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को पद्म विभूषण दिया गया। मलयालम पत्रकार पी नारायण पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। मुंबई के सनातन मठ पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ, पंडित धीरेन्द्र कृष्णास्त्र के दर्शन के एक्टर ने बाबा बागेश्वर को अंगवस्त्र भेंट किया। हुमा कुरैशी के आगामी फिल्म बेबी टू डाई टू का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया, 3 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म रू में इमरान हाशमी की एंट्री हुई है, फिल्म का पहला लुक जारी किया गया, अगले साल 2027 में फिल्म रिलीज होगी। निधि दत्त की फिल्म बॉर्डर 3 का ऐलान कर दिया गया, सनी पाजी की होगी दमदार वापसी, जनरल हरबख्श सिंह की जिंदगी पर बनेगी बॉर्डर 3। फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया, 10 जुलाई को 3 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: a burst pipe, a dead water heater, the AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/audio for 50% less your first year. That's homeserve.com/audio. Savings compared to renewal price void in Florida.
1: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: In association with Hind, बड़े आराम से Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: Vimal, बोलो जुबां केसरी.
8: Cool, stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
9: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक.
10: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
11: अपनी पार्टी में टूट के बीच आज उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों की मीटिंग पार्टी दफ्तर शिवालय में बुलाई थी, जिसमें तीन विधायक नहीं पहुंचे, जिनमें संजय डेरकर, राहुल पाटिल, संजय पोतनिस हैं। वहीं MLC सुनील शिंदे भी पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में शिवसेना UBT के 20 विधायक और 6 MLC हैं। उद्धव ठाकरे की मीटिंग एक घंटे तक चली। पार्टी में एकजुटता दिखाने के लिए उद्धव ने आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ सभी विधायकों और MLC के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। हालांकि शिवसेना UBT नेता कह रहे हैं कि जो विधायक नहीं पहुंच सके उनमें बगावत वाला एंगल ना तलाशा जाए, सबकी कुछ न कुछ मजबूरी थी। उद्धव ठाकरे खुद बगावत करने वाले सांसदों के चुनाव क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों को भी बागी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में जाकर पोल खोलने की बात कही है। उद्धव ठाकरे 4 साल में 2 बार पार्टी टूटने से काफी आहत है। वो मतदाताओं से माफी मांग रहे हैं कि उनके चुने सांसद शिंदे से मिल गए। उद्धव ने अपने बचे हुए सांसदों और विधायकों से सरकार को घेरने और जनता के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार करने के निर्देश दिए हैं। उद्धव ये भी मान रहे हैं कि धोखेबाज सांसदों को टिकट देने में उनसे गलती हुई है। जिस तरह शिंदे कैंप के नेता दावा कर रहे हैं कि अभी ऑपरेशन टाइगर थमा नहीं है, यानी सांसदों के बाद अब विधायकों की बारी आने वाली है, तो सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को बगावत करने से रोक पाएंगे

उद्धव ठाकरे के 6 बागी सांसदों ने कई दिन की आंख मिचौली के बाद आखिरकार मुंबई में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया। अपना सियासी कुनबा बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे बोले, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। पहले शिवसेना के 7 लोकसभा सांसद थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे कैंप में आने के बाद अब लोकसभा में कुल शिंदे के 13 सांसद हो गए हैं, जिससे एनडीए में शिंदे का सियासी कद भी काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी पर फिल्मी अंदाज में कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। शिंदे बोले, सीएम फडणवीस के साथ उनकी जोड़ी हिट है, क्योंकि दोनों का मकसद महाराष्ट्र का चौतरफा विकास करना है। ऑपरेशन टाइगर की सफलता पर महायुति सरकार जश्न मना रही है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का जोश हाई दिखा। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी कहा कि ऑपरेशन टाइगर पूरा हुआ। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा, धोखेबाज सांसद उद्धव के चेहरे पर चुनकर आए थे, इसलिए हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। शिवसेना दावा कर रही है कि उद्धव के एक और सांसद शिंदे कैंप में आने को बेकरार थे, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद शिंदे ने उन्हें मना कर दिया।

0: सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमणि, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनेल, अम्मार, सुमल्या, सारे के सारे नौजवान। सारे के सारे ऊर्जावान, सब के सब अब सारे सपने झुलस गए, सारी उम्मीदें टूट गई, 15 परिवारों के चिराग बुझ गए। इनका क्या कसूर था? अपनी हिफाजत का भरोसा करना, अपनी हुकूमत पर भरोसा करना, अपने सपनों, तकदीर, परिवार, रोटी रोजगार के लिए जान की फिक्र छोड़कर सिस्टम पर भरोसा करना? क्या इनका कसूर था उस सिस्टम पर भरोसा करना जिसका भ्रष्ट होना आसान, जिम्मेदार होना मुश्किल, जो जानलेवा बनता रहा महफूज नहीं बन सका? फिर जब 15 चिताएं एक दिन सुलगती है तो वही उत्तर समेत दागा जाने वाला यक्ष प्रश्न, जिम्मेदार कौन? आग लगी ऐसे सिस्टम को जो इंसानों को निगल जाता है, किसी की कोख, किसी की मांग, किसी का आंगन, किसी की जिंदगी, फिर भी सिस्टम यही है, ये तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में लाक्षा ग्रह बनेंगे, ऐसे ही करप्ट सिस्टम में आगे लगेंगे, ऐसे ही बेकसूर बेमौत मरेंगे। हुकूमत जांच कराएगी, गिरफ्तारी कराएगी, मुकदमा चलेगा, जमानत होगी, लेकिन सजा वो भी जाए तो क्या? डरता कौन? क्योंकि यही तो सिस्टम है जहां जुर्म ही नहीं डर भी मैनेज हो जाता है। वरना क्या दिल्ली, क्या गाजियाबाद, क्या लखनऊ, क्या कानपुर, क्या प्रयागराज, क्या सहारनपुर, मजाल कहीं भी नरसंहार वाला ये सिस्टम आउट ऑफ सिस्टम हो? दिल्ली में सरेआम हजारों कोचिंग चल रहे हैं, बिजली और केबल तारों का मकड़ जाल, दड़बे नुबा इमारतें, दो हाथ सकरी गलियां, आग लगे तो कोई बच के दिखा दे। कानपुर में तो दर्जन भर से अधिक ब्रांडेड कोचिंग वालों के दरवाजे पर सीलिंग हो गई, क्योंकि सिस्टम एक्शन में आया है मौतों के बाद। बच्चे कुछ दिनों के लिए यहाँ बाल बाल बचे। गाजियाबाद में भी सिस्टम जाग गया, काम कर गया तो जान बचेगी, वरना हादसे का इंतजार कीजिए। वाराणसी में भी जांच पड़ताल शुरू है, अब तक जोखिम में चल रही जान आगे कुछ दिनों तक महफूज रहेगी। प्रयागराज में भी बच्चों की फिक्र सिस्टम को है, शायद हालात सुधर जाए। उत्तर भारत से दूर दक्षिण भारत तक, शहर शहर यही हालात, कहां तक गिनेंगे? ये सिस्टम सुधरता नहीं, और अगर नहीं सुधरा तो हादसे फिर होंगे, फिर SIT बैठ जाएगी। जांच तो होगी, जांच होगी तो पता चलेगा रिहायशी मकान में दफ्तर दुकान कैसे बन गए, मौत की सौदागरी करके मुनाफा वसूली में कौन कौन शामिल था, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, दमकल विभाग वाले क्या कर रहे थे, बिजली विभाग क्यों सन्नाटे में था, और तो और पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक, और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सारा सिस्टम एक साथ क्यों फेल हो गया, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर रिपोर्ट आ जाएगी, मुकदमा होगा, जमानत होगी, बात रफा दफा। वरना इसी सिस्टम में 2014 में तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल के अंदर 94 बच्चे जलकर मर गए, सजा क्या हुई? 5 साल की जेल। 2017 मुंबई के कमला मिल्स पब अग्निकांड में 14 लोग मरे, सजा आज तक नहीं मिली। 2018 में इसी लखनऊ में चारबाग होटल अग्निकांड में 5 लोग मर गए, आरोपी जमानत पर मौज कर रहे हैं। 2019 सूरत में तक्षशिला कोचिंग में 22 बच्चे बेमौत मरे, सारे आरोपी जमानत पर हैं। 2019 में ही दिल्ली के अनाज मंडी में फैक्ट्री की आग में 43 गरीब जलकर मर गए, सजा अब तक किसी को नहीं मिली। 2022 में फिर इसी लखनऊ के लेवाना स्वीट होटल में 4 लोग मरे, सजा अब तक नहीं मिली। और सजा मिल भी गई तो सबसे निचले पायदान के उसी वोटर को मिलती है जो हर हादसे का सबसे बुनियादी जिम्मेदार होता है, क्योंकि इस भयानक सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा देना जमहूरी निजाम के खिलाफ बगावत हो जाएगी। ये सिस्टम कभी खुद को जवाबदेह नहीं बना सकता, क्योंकि सिस्टम में सबका सिस्टम ठीक है, बस हिंदुस्तान की आम आवाम, बेगुनाह सामान्य वोटर, टैक्स पेयर इस सिस्टम से दूर है, और वही बेमौत मारा जाएगा, 5 लाख का मुआवजा पाएगा, गम के आंसू पोछेगा, और अगले हादसे के लिए छोड़ दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लखनऊ अग्निकांड सख्त एक्शन, जिस इमारत में लगी थी आग उसे ढहाने की तैयारी, तत्कालीन एलडीए अधिकारियों पर भी लटकी तलवार, सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा। राम मंदिर चंदा गबन मामले में एसआईटी ने सौंपी रिपोर्ट, सूत्रों के मुताबिक किसी को नहीं मिली क्लीन चिट रिपोर्ट, सार्वजनिक ना करने पर विपक्ष के सवाल, पूछा किसे बचा रही है सरकार। उज्जैन में 168 एकड़ जमीन खरीद के आरोपों में घिरे मोहन यादव, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, बीजेपी बोली सीएम के खिलाफ रची जा रही है साजिश। लोहागढ़ में केतन अग्रवाल की मौत पर बड़ा खुलासा, मंगेतर सिया गोयल ने प्रेमी के साथ मिलकर 400 फीट गहरी खाई में फेंका, कुछ ही महीने में होने वाली थी शादी। देश के पश्चिमी इलाकों में मॉनसून ने दी दस्तक, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में हुई भारी बारिश, मौसम विभाग ने रेड वार्निंग भी जारी की।

0: आपके साथ पूजा पराशर सुबह के 8 बजे हैं और ये वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, बात करेंगे मुंबई के मॉनसून की, दिखाएंगे कि कैसे गहराया है ये संकट, साथ ही आपको दिखाएंगे सिक्किम में पहाड़ पर डेंजर जोन की खबर, बात करेंगे चढ़ावा चोरी मामले की जिसमें SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, साथ ही बताएंगे आपको कि लखनऊ कांड के बाद कैसे सरकार ने सख्ती बढ़ाई है खबर, लोहागढ़ में हुए हत्याकांड की भी पूरी आपको विस्तार से बताएंगे, एक खबर दिल्ली की भी है जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ, तो वहीं बिहार में एनकाउंटर के आरोपी पुलिस वालों पर एक्शन का भी जिक्र करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि अमेरिका और ईरान में IAEA की जांच पर कैसे तकरार बढ़ी है, तो पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ जो कि मुंबई से आ रही है। दरअसल मुंबई में 23 जून को मॉनसून के दस्तक देते ही मुसीबत बढ़ने लगी है, बीती रात भारी बारिश हुई, सुबह सुबह इसका असर दिख रहा है, कई जगहों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, मुंबई के अंधेरी में अंडरपास में पानी भरने की वजह से उसे बंद करना पड़ा, बढ़े हुए खतरे के बीच अंडरपास से गाड़ियों की आवाजाही बंद करनी पड़ी, BMC के स्टाफ मौके पर पहुंचे ताकि पानी की निकासी की जा सके, और उधर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी जल जमाव से संकट गहरा गया है, मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है, दादर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर कई फीट तक पानी भर गया है, ये तस्वीरें सुबह सवेरे मुंबई से सामने आई जब गाड़ियां डूबती हुई इस पानी में नजर आ रही हैं, मूसलाधार बारिश हुई, मॉनसून की शुरुआत अभी हुई ही है मुंबई में कि जगह जगह पर पानी भरा हुआ मुंबई में नजर आ रहा है, भारी बारिश के बाद ये संकट की तस्वीरें जिससे लोग जूझ रहे हैं, 23 जून को मॉनसून ने दस्तक दी मुंबई में जिसके बाद लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, कई फीट गहरा पानी भर गया है, अंडरपास में पानी भरा हुआ है, कहीं भी जल जमाव नजर आ रहा है, ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार भी काफी ज्यादा धीमी हो गई है, अभी माना जा रहा है कि आगे भी मॉनसून की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी, अंधेरी सबवे किंग सर्कल ये अलग अलग तस्वीरें मुंबई के इलाकों की है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीर देखिए, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है क्योंकि भीषण बारिश यहां पर हुई और ऐसे में सड़कों पर पानी भर चुका है जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है, ट्रैफिक की रफ्तार भी रोकी गई है मूसलाधार बारिश के कारण, किंग सर्कल की आप तस्वीर देखिए, गाड़ियां कई फीट तक डूबी हुई नजर आ रही है और उसी से होती हुई गुजर रही है, अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया है, मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी मुंबई में जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, और हमारे सहयोगी दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, दीपेश अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुंबई में मुसीबत की जैसे मॉनसून लेकर आया है, अभी क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, पानी निकासी का क्या कुछ किया जा रहा है उसके लिए?
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही मुंबई में पहली बरसात ने दस्तक दी वैसे ही मुंबई के जो लो लाइंग एरियाज थे जो हर साल जहां पर पानी भरा होता है जल जमाव देखने को मिलता है वहाँ इस साल भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है, हम इस वक्त गांधी मार्केट में हैं जहाँ पर 2 से 3 फीट तक फिलहाल जो है पानी भरा हुआ है, BMC और प्रशासन दावा कर रहा था कि पानी निकासी हो गया है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी निकलने में जो है समय लग रहा है, गाड़ियों की आवाजाही एकदम यहाँ से ना के बराबर हो रही है, रोड आधी रोड जो है वो पानी से भर गई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इसी पानी के बीच से गाड़ियों को जाना पड़ रहा है, स्कूलों के लिए अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई है जिसकी वजह से जो अभिभावक हैं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं इसी बारिश में, फिलहाल यहाँ पर BNC पुलिस प्रशासन के लोग तैनात हैं लेकिन

0: देखने को मिला। और दीपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपेश देखिए, अब ये संकट आगे और बढ़ने वाला है और आपने जैसे कि बताया कि हर साल ऐसी स्थिति होती है, फिर भी उससे कोई सीख नहीं ली गई, हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे हैं मुंबई में?
1: जी बिल्कुल, देखिए ये पहली ही बरसात है मुंबई में। कल से रिमझिम बारिश थी, पर रात से लगातार बारिश हो रही थी, बारिश ने जोर पकड़ा और बीएमसी से जानकारी मिली थी कि जो लो लाइंग एरियाज है जहां पर पानी भरे थे वहां से पानी निकल चुका है, पानी अब वहां पर जमा नहीं है, जल जमाव नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। हम इस वक्त मुंबई के गांधी मार्केट में ही हैं, जिसमें बीएमसी का ही मैसेज है कि गांधी मार्केट में जो है वो अब पानी नहीं जमा हुआ है, जल जमाव नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वही गांधी मार्केट है जहां पर आप देख सकते हैं अभी भी जल जमाव देखने को मिल रहा है, लोगों को अभी भी यहीं से जाना पड़ रहा है। और ये इस साल की नहीं है, हर साल की यही कहानी है अमूमन। लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश इन दावों की पोल खोल करने का काम करती है और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बीएमसी का एक मैसेज है जिसमें कहा गया कि वाटर लॉगिंग जो है जो निचले इलाके हैं वहाँ पर अब नहीं देखने को मिल रहा है, जिसमें गांधी मार्केट का भी जिक्र किया गया है। बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि गांधी मार्केट में कोई वाटर लॉगिंग नहीं है, रेलवे बीएसटी और रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो अपने समय से चल रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जमीनी हकीकत है, ये गांधी मार्केट है जिसका दावा बीएमसी कर रही है कि यहाँ पर पानी जल जमाव नहीं है। अब दिक्कत यही है कि दावे होते हैं, वादे होते हैं, काम किए जाने के कई प्रॉमिसेस किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
0: कुछ और है और जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आपको दिखाते हैं पूर्वी सिक्किम से आई एक खौफनाक तस्वीर। यहाँ पर रंगूफ रोराथान रोड पर पहाड़ दरक गया और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह पहाड़ से मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक से भरभराकर रोड पर आ गिरी है। मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। पहाड़ी के ऊपर से रोड पर मलबा गिरा जिससे पूर्वी सिक्किम के लिए जाने वाला ये रोड पूरी तरह से बंद हो गया है। रोड पर ये स्थिति पैदा हुई, देखिए किस तरीके से भरभराकर पूरा मलबा सड़क पर गिर गया। पहाड़ से ये मलबा दरका है, सिक्किम भूस्खलन का डराने वाला वीडियो। ऐसे में अब ये रोड भी जाम हो गया है, मलबे को वहां से हटाने का प्रयास किया जाएगा। सिक्किम के लिए जाने वाला ये रोड माना जाता है जो कि पूरी तरह से अब बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देख रहे हैं सिक्किम से, खौफनाक तस्वीर, डरा देने वाली। और आप देख सकते हैं किस तरह पहाड़ से मलबा, बड़ी बड़ी चट्टाने अचानक से गिर गई। तो उधर राजकोट के गोंडल में भी तेज बारिश से संकट गहरा गया। रेलवे अंडरब्रिज में करीब 5 फीट तक पानी भर गया और एक बस उसी अंडरब्रिज में जा फंसी। दरअसल जूनागढ़ दाहोद रूट पर ऐसी बस अंडरब्रिज से गुजरने का प्रयास कर रही थी, तभी ये पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें कि उस वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे। हालात ऐसे हो गए कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मौके पर जेसीबी को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल बुलाया गया और जेसीबी की मदद से बस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शाम के समय करीब 2 घंटे में करीब 2 इंच मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। सीजन की पहली ही तेज बारिश ने प्रशासन की प्री मानसून तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। अंडरपास में यात्रियों से भरी बस फंस गई। और चलिए अब खबर दिल्ली की, जहां पर आज तड़के उद्योग भवन पास भीषण अग्निकांड हो गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक करीब 200 टीन शेड में आग लग गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। तड़के करीब 3 बजे ये घटना घटी। खबर मिलते ही दमकल की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे तक बचाव अभियान चलाया गया। सुबह 6 बजे आग पर काबू पाया जा सका है। 20 गाड़ियों का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। काफी भीषण ये आग लगी। अग्निकांड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस पर काबू पाना काफी मुश्किल था। लगभग 3 घंटे का समय लगा है इस आग को बुझाने में। इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। इसके पास मजदूरों के टीन शेड में आग लगी। अगली खबर लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला सहित 4 आरोपियों को

0: दिया है। वीरेंद्र शुक्ला उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का मालिक है जिसमें लगी आग ने 15 मासूमों की जान ले ली है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीरेंद्र शुक्ला ने दिल की बीमारी का हवाला दिया, लेकिन ये बहाना काम नहीं आया है। सीने में दर्द की शिकायत पर मेडिकल करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने वीरेंद्र शुक्ला को पूरी तरह से फिट बताया है और इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लखनऊ में हुए इस हादसे के बाद ही लेकिन अब सरकार और प्रशासन एक्शन में नजर आ रही है। दरअसल अलीगंज में जिस इमारत में 15 बच्चे जिंदा जल गए उस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।
1: लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई तो एलडीए अधिकारी हरकत में आ गए। मंगलवार को एलडीए की टीम ने उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया जिसमें 15 बच्चे जिंदा जल गए। योगी सरकार ने एलडीए से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एलडीए की नाक के नीचे रिहायशी नक्शे पर बनी इस इमारत में कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। अब इस इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है, 15 दिन में जवाब नहीं मिला तो इमारत को ढहा दिया जाएगा। अग्निकांड पीड़ितों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने हादसे के बाद सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
2: बड़े अधिकारियों की बनती है और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए।
1: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हादसे के लिए पूर्व की अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और हादसे पर राजनीति न करने की सलाह दी है।
3: अखिलेश लखनऊ की और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। बिल्डिंग ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ।
1: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में एलडीए के तत्कालीन अधिकारियों और अभियंताओं पर कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो लखनऊ हादसे के बाद यूपी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। एक्शन में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि बेसमेंट में किसी भी प्रकार की कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। इस सीएम ने कहा है सख्ती दिखाते हुए एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ, वो खुद जब जहां पर हादसा हुआ था ये पूरा वहां पर खुद पहुंचे थे जायजा लेने के लिए। उन्होंने साफ कहा बेसमेंट में किसी भी कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। वहीं बेसमेंट में अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का भी इजाजत नहीं दी गई है और साथ ही ये कहा है कि बेसमेंट में जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनकी अनुमति नहीं होगी। आदेश के मुताबिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। तो सख्ती बढ़ते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद कोचिंग सेंटर्स की सेफ्टी को लेकर सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं जिसके बाद कई शहरों में नियमों की अनदेखी करने वाले जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर सीलिंग की गाज गिर रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मानक पूरे ना होने पर सिविल लाइन स्थित खान ग्लोबल क्लासेस को सील कर दिया है। कार्रवाई से पहले कोचिंग में मौजूद छात्रों को बाहर निकाला गया, इसके बाद कार्यालय को भी बंद कराया गया। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा, कौशाम्बी, उन्नाव और इंदौर में भी कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के राम मंदिर के दान में गबन की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है और जल्द ही रिपोर्ट सीएम योगी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
4: राम जी के चढ़ावे में चोरी का मास्टरमाइंड कौन? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी का कहना है कि जांच रिपोर्ट को अभी पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है।
5: मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं। फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है और अभी भी जांच प्रचलित है और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकंड पार्ट में जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा उसमें सबमिट करेंगे।
4: एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं वे संकेत देती हैं कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जड़ें मंदिर प्रबंधन तक जा सकती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम को लेकर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे इस पूरे मामले में फंसे हैं या बच जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने SIT रिपोर्ट और सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं।
6: जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना हुए, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया।
4: माना जा रहा है कि SIT जांच के बाद अब राम मंदिर में दान की साप्ताहिक ऑडिटिंग अनिवार्य की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो वही पुणे में लोहागढ़ किले में हुई मौत के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस को अब शक है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक हत्या थी। जांच के दौरान केतन की मंगेतर पर जानकारी छिपाने का संदेह हुआ, जिसके बाद उसके मोबाइल कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की गई है।
4: 24 वर्षीय केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर का जन्मदिन मनाने के लिए उसके दोस्तों के साथ लोहागढ़ किला पहुंचे थे, जहां खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। शुरू में पुलिस को शक था कि घाटी के पास तस्वीरें लेते समय संतुलन बिगड़ने से केतन खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। अब मामला पलट गया है, जिसे हादसा माना जा रहा है। पुलिस अब उसे सुनियोजित हत्या बता रही है। पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल की हत्या एक पहले से सोची समझी साजिश के तहत की गई है, जिसमें उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी शामिल थे। हत्या की साजिश सबसे पहले मई में लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग के दौरान रची गई थी। दावा है कि केतन को मारने की एक पिछली कोशिश नाकाम रही थी, इसलिए उसे इस महीने एक और ट्रैक के बहाने किले पर बुलाया गया।
7: 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहागढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
4: पुलिस का कहना है कि केतन को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया गया और उसकी मौत को एक दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की गई। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों ही पुलिस रिमांड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सातवें दिन आरोपी पुलिस वालों पर FIR दर्ज कर ली गई है। इस मामले में जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। परिजनों की शिकायत पर यह FIR दर्ज हुई है। गौरतलब है कि इस मामले में यह अब तक की चौथी FIR है, लेकिन पहली बार एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मामले ने पहले ही प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा रखी है। FIR दर्ज होने के बाद भरत तिवारी की मां आशा देवी ने कहा है कि न्याय की लड़ाई में ये पहली बड़ी सफलता है और अब उन्हें उम्मीद है कि सच सामने आएगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। और अब खबर अमेरिका ईरान की। दरअसल ईरान में IAEA के अधिकारियों की जांच के दावे पर दोनों देशों में तनातनी है। अमेरिका दावा कर रहा है कि IAEA अधिकारी ईरान जाकर न्यूक्लियर साइट की जांच करेंगे, जबकि ईरान साफ साफ कह रहा है कि डील में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है और ना ही इस पर कोई बात हुई है। तो ट्रंप ने ईरान में IAEA की जांच को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सुपर 8 में। वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। जयपुर में ओवरस्पीड कार ने बाइक सवार को उड़ाया, 20 फीट उछल कर दीवार से टकराया युवक, देखकर खौफनाक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अमरावती में पारिवारिक विवाद में हैवान बना पिता बेटा बहू को कार से कुचलने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में आरपीएफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन से गिरते यात्री की बचाई जान। अजमेर में चलती बस में अचानक से लगी भयंकर आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 37 यात्रियों की बची जान, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। हैदराबाद में एटीएम कैश वैन से 17 लाख रुपए की चोरी हुई, बदमाश वैन की डिक्की से बैग लेकर फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वाला गैंग सीसीटीवी में कैद, इस्कॉन मंदिर के पास लगातार वारदात से दहशत। कोटा बाल सुधार गृह में गंभीर लापरवाही का खुलासा, धड़ल्ले से उपयोग हो रहे मोबाइल, शराब और नॉनवेज पार्टी भी चल रही। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद, मुख्य सड़क पर गिरा मलबा, रास्ता पूरी तरह बंद होने से प्रशासन की दूसरे रास्तों से यात्रा करने की सलाह। और चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: मैं करता हूँ ना,
7: मैं करूँगा।
8: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
6: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
8: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे डाइनिंग एंड मच मोर।
6: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
8: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार।
17: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
19: हाँ सर, हाँ सर, बहुत खुश हैं सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश हैं सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

0: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
1: टीएमसी के लिए लड़ाई तेज हो गई है। इस बार रीता प्रताप बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के गुट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को सीधे चुनौती दी है। बागी गुट ने एक नई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाई है और ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। बागी गुट ने ममता की जगह अरूप रॉय को टीएमसी का अध्यक्ष चुना है। अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि वे ही असली टीएमसी है। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट की वजह से ये बैठक बुलाई गई थी। रताप्रताप बनर्जी ने कहा है कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 साल में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था। कोलकाता के पूर्व मेयर फरहाद हकीम बागी गुट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद दीदी ने सख्त रुख अपनाते हुए हाकिम सहित 8 शीर्ष नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ममता गुट ने पलटवार करते हुए बागियों को गद्दार कहा है और कोई भी कार्रवाई करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाए हैं।
2: जो बहिष्कृत लीडर है, जो बहिष्कृत आदमी है, एक चोर दूसरे को चोर कैसे बता सकता है? वो तो अपने ही सस्पेंडेड है। एक सस्पेंडेड आदमी दूसरे को कैसे सस्पेंड कर सकता है? ममता बनर्जी चेयरपर्सन है, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी है।
1: उधर बागी सांसदों ने संकेत दिए हैं कि वे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बागी विधायकों ने भी पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब, रेड वार्निंग के साथ दिन भर झमाझम बरसात की चेतावनी, देश के पूर्वी इलाके भी जलमग्न। लखनऊ अग्निकांड के बाद धड़ाधड़ सील हो रहे हैं मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स, हर जिले में विशेष टीम करेगी फायर सेफ्टी ऑडिट, घटना वाली इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पहली एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी की सियासत में उबाल, विपक्ष का सवाल, क्यों सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, किसे बचा रही है सरकार, चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों पर बड़ा सस्पेंस। मध्य प्रदेश में कथित जमीन खरीद घोटाले पर गरमाई राजनीति, आरोपों में गिरे मोहन यादव से कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, तो बचाव में उतरी बीजेपी, कहा ना सीएम ना उनकी पत्नी ने खरीदी कोई जमीन। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा, शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में धकेला, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया मर्डर।

मानसून के एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश, महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन हैं। मानसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बारिश। मुंबई में भारी बारिश से वेस्टर्न हाईवे पर यातायात प्रभावित, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से अंधेरी अंडरपास में भरा पानी, उफान में फंसी कार। मुंबई के गांधी मार्केट में भी भरा पानी, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। मुंबई के गांधी मार्केट में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, कई वाहन पानी में फंसे। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जलभराव, दादर रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में हालात प्रभावित। नवी मुंबई में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति, भाजी मार्केट समेत कई इलाकों में हालात प्रभावित। मुंबई में भारी बारिश से जलभराव, किंग सर्कल के पास रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई की पहली बारिश में अंधेरी, सबवे जलमग्न, प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नहीं दिख रहा। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन, भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद, मुख्य सड़क पर गिरा मलबा, बड़ी मुसीबत। सिक्किम के रंगपुर रोरांगथांग मार्ग पर भारी भूस्खलन, रास्ता पूरी तरह से बंद होने के कारण प्रशासन की दूसरे रास्तों से यात्रा करने की सलाह। कोलकाता में मूसलाधार बारिश का कहर, हाईकोर्ट परिसर समेत कई जगहों पर गिरे पेड़, कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। गुजरात के नवसारी समेत कई इलाकों में दूसरे दिन भी रुक रुक कर हो रही है बारिश, हिल स्टेशन सापुतारा में पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों के नजारे में पर्यटकों को किया आकर्षित। लखनऊ अग्निकांड पर सख्त एक्शन, जिस इमारत में लगी आग उसे ढहाने की तैयारी, तत्कालीन एलडीए अधिकारियों पर भी लटकी तलवार। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की बैठक, अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। योगी ने कहा फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं। सीएम योगी ने हर जिले में विशेष टीम गठित करने के दिए निर्देश, फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का आदेश। बेसमेंट में कोई भी कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं होगा। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में एक्शन, बिल्डिंग मालिक को जल्द नोटिस संभव। अस्पताल में भर्ती बिल्डिंग मालिक का सीने में दर्द का बहाना नहीं आया काम। डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को बताया फिट, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। लखनऊ अग्निकांड में नया मोड़, निलंबित एफएसएसओ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह ने लिखा खत, कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। कमलेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे पास फायर एनओसी देने का अधिकार नहीं है, मेरा कार्यक्षेत्र सीमित, सीएफओ को एनओसी की जिम्मेदारी। अग्निकांड के घायलों से मिले अखिलेश यादव, अखिलेश ने सरकार से 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा बड़े अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अखिलेश ने योगी राज में पास नक्शों की जांच की मांग पर ब्रजेश पाठक पर पलटवार, कहा कि मौत पर अखिलेश ना करे राजनीति। लखनऊ हादसे के बाद प्रयागराज के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की हो रही है जांच, कई कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई, वहीं कई संस्थान बंद मिले। प्रयागराज में मानक पूरे ना करने पर सिविल लाइंस में स्थित खान ग्लोबल क्लासेस कोचिंग को सील किया गया। कानपुर में अवैध कोचिंग पर कार्रवाई का मामला, कोचिंग संचालक बोले केडीए अधिकारियों ने कहा है कि आज सील करवा लो, कल खुलवा देंगे, केडीए ने दी सफाई। लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्नि सुरक्षा जांच तेज, जीडीए को अब तक 206 भवन में खामियां मिली, 56 सेंटर्स को किया सील। नोएडा में सुरक्षा मानकों में भारी खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने 2 कोचिंग सेंटर सील किए, प्रशासन की संयुक्त टीम का निरीक्षण अभियान लगातार जारी। उन्नाव में भी 3 इंस्टीट्यूट प्रशासन ने किए सील, माचिस की डिब्बी के जैसे कमरों में बनाया जा रहा था बच्चों का भविष्य। कौशाम्बी में एक्शन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कोचिंग सेंटर सील। आगरा में कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक बेकार, फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो आया सामने, उठे सवाल। सहारनपुर में गर्जे इमरान मसूद, कहा 12 साल में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकार युवाओं का भविष्य कर रही है बर्बाद। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर यूपी कांग्रेस का आज राज्यव्यापी प्रदर्शन, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। आज न्याय की मांग के लिए महापंचायत बुलाई गई है, भरत के गांव बिलौटी में दोपहर 12 बजे सभा का आयोजन। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन, जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुनियोजित हत्या बताते हुए कहा कि डीएसपी ने साजिश रची। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार से भरत एनकाउंटर मामले की जांच की बात कही, रिटायर्ड जज के बजाय पटना हाईकोर्ट के जज से की, साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजे देने की मांग। बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, सीएम सम्राट पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अपराधी आदमी है मुख्यमंत्री सम्राट।
तो वहीं टीएमसी ने 24 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का पुनर्गठन किया। ममता बनर्जी फिर से बनी चेयरपर्सन, अभिषेक बनर्जी महासचिव नियुक्त। टीएमसी विधायक कुणाल घोष का बड़ा बयान, कहा असली टीएमसी ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी के संघर्ष से ही ये पार्टी बनी। कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए उनके करीबी सहयोगियों पर मनमानी चलाने का आरोप लगाया। बोले जो टीएमसी से दूर जा रहे हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। दक्षिण 24 परगना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण बताए जा रहे कई टीएमसी पार्टी कार्यालय किए गए ध्वस्त, पुलिस और नगर पालिका की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के आसार, आदित्य ठाकरे ने कहा कि यूसीसी के गुण दोष पर चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित, सरकार ने जताया समर्थन। एकनाथ शिंदे बोले बालासाहेब ठाकरे में भी थे समर्थन में, 6 सांसदों के शामिल होने की औपचारिकताएं पूरी हुई। बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने किया दावा, बोली महाराष्ट्र में 3 तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा जिसके लिए यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया। यूसीसी और ट्रिपल तलाक को लेकर बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने बहुविवाह और महिला उत्पीड़न के मामलों का हवाला देते हुए सख्त कानून की मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान, बोले यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच फैला रहे हैं नफरत। पुणे में बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट खाई में जाकर फेंका, नवंबर में होनी थी शादी। पुणे हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। गुजरात के गिर सोमनाथ में वेरावल में सरकारी जमीन पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, जल निकासी मार्ग से हटाया गया अवैध निर्माण। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदने के लगाए गंभीर आरोप, मांगा 335 एकड़ लैंड बैंक पर जवाब। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम मोहन के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट जज से जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर किया पोस्ट, बोले एमपी में डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में 4 दिन से चल रहा गतिरोध समाप्त, छत से उतरे निहंग सिख, बातचीत के बाद शांतिपूर्ण ढंग से लौटे। हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों के हड़ताल पर सरकार का बड़ा एक्शन, 6 महीने के लिए लागू किया ईएसएमए, हड़ताल पर रहेगी रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। ओडिशा सरकार आज शहरी जनसंपर्क कार्यक्रम की करेगी शुरुआत। इंदौर में रामदास अठावले का बड़ा दावा, बोले उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य कमजोर, एनडीए में आने के लिए दरवाजे खुले। वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद पर राहत वाली नोटिस को रेलवे ने बताया फर्जी, फिर से ठोका मस्जिद पर रेलवे का दावा। झारखंड टी20 लीग के फाइनल मैच के दौरान जेएससीए स्टेडियम में भगदड़ जैसे हालात, तस्वीरें आई सामने। यूनिकॉर्न बिटकॉइन हैक केस में श्री कृष्णा उर्फ श्रीकी और मोहम्मद हारिस नालापाड़ को आज कोर्ट में पेश होना होगा। अमरावती में पारिवारिक विवाद में हैवान बना पिता, बेटा बहू को कार से कुचलने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में आरपीएफ की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, चलती ट्रेन से गिरते यात्री की बचाई जान। हिमाचल के सोलन सब्जी मंडी के पास भयंकर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी, सभी सवार सुरक्षित। मेरठ में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों और थाना मोबाइल जीप को मारी भीषण टक्कर, हादसे में 7 पुलिसकर्मी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा बाल सुधार गृह में गंभीर लापरवाही का खुलासा, धड़ल्ले से उपयोग हो रहे मोबाइल, शराब और नॉनवेज पार्टी भी चल रही। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके के पास एक भीषण आग लगी, आग लगने की शुरुआत की वजह से एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट के बाद आग ने पास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया, मौके पर करीब 20 दमकल गाड़ियों ने बुझाई आग, कोई भी जनहानि की सूचना नहीं। अजमेर में चलती बस में अचानक से लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ के कारण 37 यात्रियों की बची जान। आगरा के आकाश इंस्टीट्यूट में बेसमेंट से धुआं उठने की वजह से हड़कंप मचा, सैकड़ों छात्र सुरक्षित निकाले गए बाहर। विकासनगर के जंगल में लगातार लग रही आग, मौके पर वनकर्मी और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। हैदराबाद में एटीएम कैश वैन से 17 लाख रुपए की हुई चोरी, बदमाश वैन की डिग्गी से बैग लेकर फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। बेतिया में बेटा नहीं होने की नाराजगी में हैवान बना पिता, पत्नी को नहर में धकेला, 3 मासूम बच्चों की डूबने की वजह से मौत। इंदौर में अवंतिका गैस में लगी आग की वजह से 4 लोग झुलसे, करीब 5000 घरों की गैस सप्लाई बंद। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वाला गैंग सीसीटीवी में कैद, इस्कॉन मंदिर के पास लगातार वारदात से दहशत। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से सीमेंट के बोरे में पाकर ट्रक से लाई गई 48 लाख की विदेशी शराब जब्त।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम के 6:12 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय है दोपहर के 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, धन खर्च बढ़ा रहेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिनका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार की चिंता दूर होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग हैं, संपत्ति का लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के नुकसान से बचें, नुकसान हो सकता है, करियर में कोई रिस्क कोई जोखिम ना लें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, सेहत की स्थिति अच्छी होती जाएगी, मन की चिंताएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

सी करियर में तनाव हो सकता है, पारिवारिक समस्या के योग हैं, चोट चपेट से सावधान रहें, हरे फल का दान कर दें तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: फिर शासन जगा है, प्रशासन जगा है, चीख गूंजी है, आंख सूजी है, संवेदना के बोल फूटे हैं,
5: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा।
4: कार्रवाई होने के ढोल बजे हैं, दिल चीरने वाला हादसा हुआ है, हाँ लखनऊ की फिजा में आज आंसुओं पर हलचल दिखी है, लेकिन चिंगारी की तरह सुलगता मुद्दा तो वही है कि काश कानून अपना काम करता होता, सिस्टम जागरूक हुआ होता, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर चाबुक चली होती तो कल ये लपटे नहीं होती, वो 15 जाने सलामत रही होती। लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक कर खुल रही हैं, तो साफ नजर आता है कि ये हादसा नहीं हत्या है।
6: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे जो लोग थे वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना बाहर जाना, और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
4: लखनऊ में 15 हत्याओं का सबब बने इस अग्निकांड की जाँच यूपी सरकार की SIT कर रही है। SIT को 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है। अग्निकांड में दर्ज FIR में 4 नामजद आरोपी हैं। बिल्डिंग के को-ओनर वीरेंद्र शुक्ला समेत तुषांक कृष्ण, जायसवाल रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा रिहायशी मानकों के मुताबिक पास हुआ, फिर कमर्शियल गतिविधियां शुरू हुई। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, लखनऊ के अलीगंज की ये इमारत 2016 में ध्वस्तीकरण की जद में आई थी। मई 2016 में गैरकानूनी निर्माण के चलते बिल्डिंग को गिराने का आदेश पास हुआ, लेकिन जुलाई 2016 में ये आदेश निरस्त हो गया। सोचिए किस किस स्तर पर नियमों को ताक पर रखा गया होगा। हादसे के बाद बगल की इमारत में छेद कर कुछ लोगों की बचाने की कोशिश हुई। जो मौतें हुई हैं उसकी वजह जलना नहीं बल्कि दम घुटना है। हर हादसा अपने पीछे चुभने वाली कहानियां छोड़ जाता है। इस आग में जल गए नीलेश और अनामिका एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब सजा बैठे थे। अब्दुल रहमान अपने परिवार के इकलौता सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से उनके कंधों पर थी। सीतापुर का आदित्य श्रीवास्तव अपने पीछे रोते बिलखते माँ बाप छोड़ गया है। सिर्फ 15 मौतें नहीं हुई हैं, 15 परिवारों पर दुखों का आसमान गिरा है।
7: हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, और परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था।
4: लखनऊ हादसे के बाद क्या यूपी, क्या देश के अन्य शहर इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं? कानपुर और इंदौर में कुछ कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या व्यवस्था बदलेगी? आज तक ब्यूरो

मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई के गले तक पानी, दादर में रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास भरे, रेड वार्निंग के साथ दिन भर झमाझम बरसात की चेतावनी, देश के पूर्वी इलाके भी जलमग्न। लखनऊ अग्निकांड के बाद धड़ाधड़ सील हो रहे हैं मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स, हर जिले में विशेष टीम करेगी फायर सेफ्टी ऑडिट, घटना वाली इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पहली एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी की सियासत में उबाल, विपक्ष का सवाल, क्यों सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, किसे बचा रही है सरकार, चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों पर बड़ा सस्पेंस। मध्यप्रदेश में कथित जमीन खरीद घोटाले पर गरमाई राजनीति, आरोपों में घिरे मोहन यादव से कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, तो बचाव में उतरी बीजेपी, कहा ना सीएम ना उनकी पत्नी ने खरीदी कोई जमीन।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। मॉनसून से पहले दिखने लगा है तबाही का मंजर, सिक्किम में टूटा पहाड़, बाल बाल बचे लोग दिखाएंगे कुदरत के कहर की तमाम तस्वीरें। गुवाहाटी में एक बर्थडे पार्टी पर सोशल मीडिया में क्यों मचा है तूफान, पार्टी बनाने वालों के पीछे क्यों पड़ी है पुलिस, थोड़ी देर बाद ये पूरी खबर। बिहार में थमने का नाम नहीं ले रही है भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग, भरत के घर नेता से अभिनेता तक पहुंचने का सिलसिला जारी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की खबर के साथ, क्योंकि मुंबई में मॉनसून की एंट्री जोरदार तरीके से हो गई है। इतनी जोरदार कि मुंबई के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई, रात भर हुई बारिश से अंधेरी सबवे में इतना पानी भरा कि सुबह उसे बंद करना पड़ा। किंग सर्कल, गांधी मार्केट, दादर, नवी मुंबई, तमाम इलाकों में जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं। हल्की राहत की बात यह है कि फिलहाल कहीं से त्राहिमाम जैसे हालात नहीं है, लेकिन ट्रेनों के परिचालन पर फिलहाल ठीक से कोई भी असर नहीं हुआ है। और मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में मॉनसून की एंट्री 13 दिन की देरी से हुई है। आमतौर पर मुंबई में 10 जून को मॉनसून की एंट्री हो जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा डीले है, लगभग 10 दिन का ये डीले बताया जा रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के उन तमाम लो लाइंग इलाकों की है जो हर साल मॉनसून की एंट्री में इसी तरह से लबालब बढ़ जाते हैं, सड़कें दिखना बंद हो जाती हैं, दरिया जैसा मंजर हो जाता है जिसमें आम लोग सबसे ज्यादा जूझते हुए दिखाई देते हैं। किंग सर्कल की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वाहनों के परिचालन पर फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो लोग टू व्हीलर से पैदल इन सड़कों को पार करते हैं उन्हें जबरदस्त तरीके से इस वक्त परेशानी और दिक्कत आ रही है। लेकिन मुंबई वासी इसके आदि हैं क्योंकि हर साल मॉनसून में यही हाल होता है, अंधेरी हो, दादर हो, गांधी मार्केट हो, तमाम वो इलाके जलमग्न हो जाते हैं। पहली बारिश वहां पर मॉनसून की, इससे पहले प्री मॉनसून शावर्स आए थे और अब ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ गई।
1: मुंबई में आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हम इस वक्त मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में खड़े हैं जो हर साल जल जमाव की वजह से चर्चा में रहता है। इस साल भी ऐसा ही कुछ दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 2 से 3 फीट तक पानी यहां पर भरा हुआ है और लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। मैम, हर साल की तरह इस साल भी दिक्कत हो रही है? बिल्कुल, तो लोगों का कहना है कि क्या कर सकते हैं, हर साल की तरह ही उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों के लिए कोई एडवाइजरी ने अभी तक नहीं जारी की है। आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अभी भी स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और इसी पानी से होके उनको गुजरना पड़ रहा है। आधा सड़क का जो हिस्सा है वो पानी से भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ से यातायात बहुत कम हो रही है, ना के बराबर हो रही है। और दूसरी तरफ सड़क का जो हिस्सा है वहाँ कुछ गाड़ियाँ बंद पड़ गई हैं, जो ब्रिज है वहाँ पर कुछ बाइकर्स की गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं जो वहाँ पर फंसे पड़े हैं। आप देख सकते हैं लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ से करते हुए गुजरना पड़ रहा है। मैम, क्या कहेंगे, हर साल की तरह इस साल भी दिक्कत हो रही है? सर, क्या कहेंगे, हर साल की तरह इस साल भी दिक्कत हो रही है?
2: नहीं, दिक्कत तो है ना भाई राम, इतना बहुत गटर भर गया है एकदम पूरा, इसके लिए तकलीफ ही तो है ना, बस वो सब बंद है, बहुत तकलीफ है भाई राम।
1: कहाँ से आ रहे हो, कितनी दूर पैदल?
2: अरे हमने आ रहा हूँ अंटाफिल चर्च से आ रहा हूँ, बहुत तकलीफें हैं भाई राम। हाँ, इसके लिए देखिए बस वस नहीं है, अभी हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्या करेंगे।
1: प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन कह रहा है बस शुरू है, रेल शुरू है, सब
2: किधर शुरू? 1.5 घंटा हो गया इधर बस से, हम लोग 1.5 घंटा हो गया नहीं आया सर जी। हाँ, इसके लिए हम लोग पैदल अभी रेलवे जाते हैं, देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, इसके लिए
1: बिल्कुल, तो प्रशासन ने दावे किए थे कि ये रेल शुरू है, यातायात शुरू है, लेकिन ये लोगों की मुँह ज़बानी है जो अपने काम पर जाने के लिए निकले हैं, ऑफिस में जाने के लिए निकले हैं। कई दावे किए जाते हैं, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पर

0: जैसे मुंबई करों को इसी पानी में से होते हुए रास्ता निकालना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं बीएमसी के अधिकारी अब यहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरीके से ये ड्रेनेज है जहाँ से पानी निकलना चाहिए था, लेकिन इसमें पानी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल जमाव जैसी स्थिति देखने को मिली है। हमने कुछ लोगों से भी बात की जिनकी गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी, जो सुबह से यहाँ फंसे पड़े थे, और ये सड़क का हिस्सा जो है ये पूरा आधा पानी से भर गया है, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को इसी में से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। ये जो पानी आप देख रही हैं ये एक तरीके से पूरा काला है और नाले का पानी है, इसी में से अगर कोई होके गुजरे तो कई बीमारियां उसे होने का डर रहता है। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कितनी दिक्कतों के बावजूद मुंबईकरों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि स्कूलों के लिए, ऑफिस के लिए, जो काम पर जाते हैं उनके लिए अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई है। पहले रेड अलर्ट दिया गया था आईएमडी की तरफ से, जिसे बाद में ऑरेंज अलर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। फिलहाल बारिश धीमी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा और अगर बरसात तेज होती है, हाई टाइड का भी समय होगा, तब मुंबई की सड़कों पर जल जमाव जैसे और भी दृश्य देखने को मिल सकते हैं। नेहा,
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मुंबई में बारिश से सड़कों पर आफत है। कोलकाता में कल आंधी के साथ आई बारिश ने कहर बरपाया है। कोलकाता के कई इलाकों में कल जल जमाव हुआ। तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे कई सड़कें बाधित हो गई और ट्रैफिक जाम लग गया। मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड इलाके में गिरे पेड़ों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया और घंटों तक वहां पर ट्रैफिक प्रभावित रहा। कई जगहों पर पेड़ उखड़ने से बिजली की तार टूट गई। शहर के मोलाली इलाके में बिजली का तार टूटने से एक के बाद एक कार पर पेड़ गिर गया, जिससे सड़क का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया। खराब मौसम उस समय हुआ जब स्कूल और कॉलेज की छुट्टी हो रही थी, जिससे कई छात्र और उनके अभिभावक बारिश से भीगी सड़कों पर फंस गए। उधर राजकोट के गोंडल में तेज बारिश के संकट से वहां पर मंजर और ज्यादा खराब हो गया। रेलवे अंडरब्रिज में करीब 5 फीट तक पानी भर गया और एक बस उसी अंडरब्रिज में जा फंसी। जूनागढ़ दाहोद रूट पर एसटी बस अंडरब्रिज से गुजरने का प्रयास कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। उस वक्त बस में 30 यात्री सवार थे। हालात ऐसे हो गए कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जेसीबी को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल बुलाया गया, जेसी की मदद ली गई, बस को सुरक्षित समय रहते बाहर निकाल लिया गया। शाम के समय करीब 2 घंटे में ही 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। सीजन की पहली तेज बारिश ने प्रशासन की प्री मॉनसून तैयारियों की पोल खोल दी है। और अब आपको दिखाते हैं पूर्वी सिक्किम से आई खौफनाक तस्वीर। यहां रंगफू रोराथन रोड पर पहाड़ दरक गया। तस्वीरों में देखिए कैसे पहाड़ से मलबा निकला, बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक दरकने लगी और भरभराकर रोड पर आ गिरी। मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। पहाड़ी के ऊपर से रोड पर मलबा गिरा, जिससे पूर्वी सिक्किम के लिए जाने वाली ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। तस्वीरें देखिए कि कैसे अचानक पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया और पेड़ों सहित ये मलबा सड़क पर आ गिरा। भयानक ये मंजर, किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन वक्त रहते लोगों ने एक दूसरे को सतर्क कर दिया। और मौसम की कहर से निकलकर अब अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि दिल्ली से आ रही है। यहां पर बेहद शर्मनाक और खौफनाक वारदात हुई है। फुटपाथ पर परिवार के साथ सो रही एक मासूम बच्ची को अगवा कर एक कैब चालक ने पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। वारदात के 4 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
2: पुलिस जिस शख्स को टांग कर ले जा रही है वो बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक अपराध का आरोपी है। इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने 11 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप करने और फिर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस अपराध की कहानी जितनी जघन्य है, इस केस में दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी उतनी ही काबिले तारीफ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 साल की बच्ची माता पिता, 2 बहनों और भाई के साथ मेहरौली के फुटपाथ पर सीडीआर चौक पर सो रही थी। तभी नशे में चूर ड्राइवर बबलू किसी राइड लेने के लिए वहां खड़ा हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर बच्ची पर पड़ी। उसने बच्ची को जबरन वहां से उठाया और गाड़ी में डालने लगा। इस बीच बच्ची की नींद खुल गई और वो चिल्लाने लगी।

0: चिल्लाने पर बच्ची का पिता गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन तब तक आरोपी बच्ची को लेकर भाग चुका था। पिता ने इसके बाद PCR कॉल की। तुरंत मेहरौली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया तो आरोपी बच्ची को उठाते हुए दिखाई दे रहा था। CCTV में गाड़ी की परछाई दिखी, लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं दिखा। पुलिस ने जब पूरा फुटेज चेक किया तो पता चला कि गाड़ी यहाँ करीब एक घंटे से खड़ी थी। गाड़ी सुबह करीब 4 बजे उस जगह पहुंची जहां बच्ची सो रही थी और करीब 5 बजे बच्ची को अगवा किया। पुलिस ने तफ्तीश तेज की। रैपिडो, ओला, उबर से उस इलाके की डिटेल्स मांगी गई। उस रूट के आगे और पीछे के CCTV फुटेज देखे गए और जल्द पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर की पहचान कर ली। गाड़ी पहचान होते ही विकास पूरे इलाके में उसकी GPS लोकेशन और आरोपी के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया और आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार शाम पुलिस जब आरोपी को क्राइम स्पॉट पर ले जा रही थी तो आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: और अब बात गुवाहाटी की करेंगे। यहां पर एक बर्थडे पार्टी की वीडियो पर सोशल मीडिया में जमकर बवाल हो गया है। बवाल ऐसा मचा है कि पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए बर्थडे पार्टी मनाने वाले 14 लोगों को हिरासत में लिया है। क्यों हुआ यह बवाल, देखिए।

0: गुवाहाटी की ये बर्थडे पार्टी असम ही नहीं सोशल मीडिया के जरिए देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसी बर्थडे पार्टी जिसे लेकर सोशल मीडिया में ऐसा गुस्सा भड़का कि अब इस पार्टी में शामिल लोगों के पीछे असम पुलिस पड़ गई है। दरअसल ये लाल कालीन, ये गुब्बारे और आतिशबाजी और लोगों का जो जमावड़ा आप देख रहे हैं वो सब कुछ गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु पर सजा है। ये सेतु गुवाहाटी का व्यस्ततम ट्रैफिक कॉरिडोर है। 21 जून को रात करीब 12:30 बजे की बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया तो लोगों ने सार्वजनिक सड़क पर इस तरह बर्थडे मनाने पर तीखी आपत्ति करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। सोशल मीडिया में बवाल मचा तो पुलिस एक्शन में आई। भरालूमुख थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी के रूप में गौतम बरुआ की पहचान की गई। गौतम बरुआ और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पार्टी में इस्तेमाल की गई 4 कारों को भी जब्त कर लिया गया है। घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात लखनऊ अग्निकांड के इस मामले में मुख्य आरोपी वीरेन शुक्ला सहित 4 आरोपियों को कोर्ट में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वीरेन शुक्ला उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स संभालेंगे जिसमें लगी आग ने 15 मासूम बच्चों की जान ले ली। इस बीच अलीगंज में जिस इमारत में 15 बच्चे जिंदा जल गए उस पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी हो रही है।

0: लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई तो एलडीए अधिकारी हरकत में आ गए। मंगलवार को एलडीए की टीम ने उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया जिसमें 15 बच्चे जिंदा जल गए। योगी सरकार ने एलडीए से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एलडीए की नाक के नीचे रिहायशी नक्शे पर बनी इस इमारत में कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। अब इस इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 दिन में जवाब नहीं मिला तो इमारत को ढहा दिया जाएगा। अग्निकांड पीड़ितों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने हादसे के बाद सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
1: बड़े अधिकारियों की बनती है और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं। वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए।
0: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने हादसे के लिए पूर्व की अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और हादसे पर राजनीति न करने की सलाह दी है।
2: अखिलेश यादव की दुर्घटना बहुत ही दुखद है, 15 लोगों की जाने के लिए, और आप राजनीति कर रहे हैं। ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। बिल्डिंग ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है।
0: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में एलडीए के तत्कालीन अधिकारियों और अभियंताओं पर कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: वही लखनऊ हादसे के बाद यूपी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा कि बेसमेंट में किसी भी प्रकार की कोचिंग का संचालन नहीं किया जाएगा। ये भी कहा कि बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। आदेश के मुताबिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई अग्निकांड हो, कोई हादसा हो, 3-4 दिन बाद बात आई की गई हो जाती है। क्या इस अग्निकांड से वाकई प्रशासन और वहां पर जो जितनी भी अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं उनसे उन पर लगाम लगेगी और सबक लिया जाएगा?
4: न्याय देखने वाला होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक इतनी बड़ी पॉश इलाके में इमारत क्या अधिकारियों की हामी के बिना खड़ी हो सकती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ये सवाल लगातार आज तक उठा रहा है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहां ये घटना हुई है और आज तक के सवालों के बाद अब एलडीए जो है वो हरकत में आया है और एलडीए ने एक नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे यहां से। ये वो इमारत है जहां पूरा घटनाक्रम होता है और सामने जो है एक नोटिस लगा दी गई है और ये नोटिस क्या कहती है? इस नोटिस में कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी या यूं कहें जो इस पूरे बिल्डिंग के ओनर हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा कि आखिर इस तरह के कॉम्प्लेक्स में कॉमर्शियल गतिविधियां किस तरीके से चल रही थी जबकि ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल एरिया में बना है। ये कुछ और कड़े सवाल इस नोटिस में पूछे गए हैं और 15 दिनों के भीतर इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनकी तरफ से जवाब देना है और अगर 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं दे पाए तो यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। यानी कि आसान भाषा में अगर दर्शकों को समझाएं तो वो इमारत जहां पर ये पूरी कार्रवाई हुई या पूरा एक तरीके से विध्वंस हुआ जहां 15 जाने चली गई मासूमों की, वहां पर अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी हो सकती है 15 दिनों के भीतर अगर मुख्य आरोपी के द्वारा जवाब नहीं दिया जा सका। आपको हम तस्वीरें दिखा देंगे। यहां पर अब देखें तो तमाम पुलिस के बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे, यहां पर डू नॉट क्रॉस यूपी पुलिस के तमाम टेप्स यहां पर नजर आएंगे। यानी कि ये पूरी इमारत जो है पूरी तरीके से सील भी कर दी गई है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। यहीं पर आप यकीन माने कुछ दिन पहले 15 मासूम या 15 युवा हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया सिस्टम की लापरवाही। असल मायने में ये कालिक इस इमारत पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर पूरी दिखाई पड़ती है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया समय तमाम जानकारी के लिए आपका। लखनऊ अग्निकांड के बाद से कोचिंग सेंटर्स की सेफ्टी को लेकर सरकार ने सख्त आदेश जारी किया जिसके बाद कई शहरों में नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटर्स पर गाज गिरी है, सीलिंग की जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मानक पूरे न होने पर सिविल लाइन स्थित खान ग्लोबल क्लासेस को सील कर दिया। कार्रवाई से पहले कोचिंग में मौजूद छात्रों को बाहर निकाला गया, इसके बाद कार्यालय को बंद कराया गया। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, आगरा, कौशाम्बी, उन्नाव और इंदौर में भी कई कोचिंग सेंटर्स सील कर दिए गए। और अब बात दिल्ली की करेंगे। आज तड़के उद्योग भवन के पास भीषण अग्निकांड हुआ। जानकारी के मुताबिक करीब 203 शेड में आग लग गई और इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। तड़के करीब 3 बजे की यह घटना है। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची। 20 ये गाड़ियां बताई जा रही है और 3 घंटे तक बचाव अभियान चला। सुबह 6 बजे आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भीषण ये आग, आग की लपटें दूर तक देखी गई। और अब बात अयोध्या के राम मंदिर की, जहां पर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। जल्दी रिपोर्ट सीएम योगी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5: राम जी के चढ़ावे में चोरी का मास्टरमाइंड कौन, इस सवाल का जवाब तो फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी का कहना है कि जांच रिपोर्ट को अभी पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है।
6: मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे, उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है। और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं। फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है और अभी भी जांच प्रचलित है। और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकंड पार्ट में, जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा, उसमें सबमिट करेंगे।
5: एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं वे संकेत देती हैं कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जड़ें मंदिर प्रबंधन तक जा सकती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम को लेकर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे इस पूरे मामले में फंसे हैं या बच जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने एसआईटी रिपोर्ट और सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं।
7: जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना हुए, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया।
5: माना जा रहा है कि एसआईटी जांच के बाद अब राम मंदिर में दान की साप्ताहिक ऑडिटिंग अनिवार्य की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, जब ये मामला इतना हाई प्रोफाइल है, लगातार विपक्ष आप पर निशाना साध रहा है, तो जो जांच कमेटी बनी, इतने दिन की रिपोर्ट सौंपी गई उनकी जांच के बाद, वो रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है उस पर कार्रवाई करिए, या फिर एक बार फिर हम यही देखेंगे कि नीचे के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी और ऊपर वाले बच जाएंगे सारे?
8: देखिए, जिस तरीके से जांच कमेटी बनाई गई है उसमें 15 दिनों का समय दिया गया है। तो पहले तो 7 डेज की थी एक इनिशियल रिपोर्ट है, वो जो पीएम को भी आगे जाएगी। लेकिन पहली रिपोर्ट ये है कि जितने भी जानकारी दी गई है 15 दिन में रिपोर्ट लापरवाही में शामिल कौन कौन है, क्योंकि लापरवाही का स्तर दे रहा है कि चाहे वो
3: ठीक है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बात करेंगे बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की। ताजा खबर इस मामले में यह है कि जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश वर्मा को हटा दिया गया है। अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय से अटैच किए गए कल ही भरत तिवारी की मां के आवेदन पर डीएसपी, एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये पूरा एनकाउंटर फेक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है और भरत आत्मसमर्पण के लिए तैयार था, इसके बावजूद उस पर गोलियां चलाई गई। अब एसडीपीओ पर कार्रवाई हुई है। पंकज मिश्रा को नया एसडीपीओ बना दिया गया है, राजेश वर्मा को हटा दिया गया है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सीनियर अधिकारियों पर गाज गिर रही है शशि भूषण, ये काफी होगा या फिर आगे अन्य कार्रवाई भी इस पूरे मामले में हम देखेंगे?
9: देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि आगे भी कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि जो एसडीपीओ हैं जगदीशपुर के थे राजेश शर्मा, उनको पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है और ये इस बात के संकेत कल ही मिल गए थे नेहा, जब उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बेहद गंभीर हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के। हालांकि उन्होंने अपराधियों पर नियंत्रण के लिए बिहार पुलिस को खुली छूट देने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और जो सवाल उठे हैं कि उसने सरेंडर कर दिया था, इसके बाद पुलिस ने निशाना बनाया, उसको लेकर के सरकार की भी क्रिकिनी हो रही थी, पार्टी के अंदर से भी सवाल उठ रहे थे, सरकार के अंदर से सवाल उठ रहे थे और साथ ही साथ विपक्ष भी इस मामले को लेकर के हमलावर था। तो एक बात अब ये तय मानिए कि जो भी गलत तरीके से फेक एनकाउंटर में अगर कोई शामिल है पुलिस का पदाधिकारी, तो आगे उसके ऊपर और कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, पहले जांच से बाहर किया गया था एसडीपीओ को और अब उनका वहां से कह सकते हैं कि उनको वहां से हटाते हुए पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। तो एक तरह से लाइन हाजिर की स्थिति समझिए, जो अमूमन पुलिस की भाषा में बातें कही जाती हैं, उनको अब वहां से योगदान हटा करके और पुलिस मुख्यालय से जोड़ा गया है। पंकज मिश्रा नए एसडीपीओ जगदीशपुर के बनाए गए।
3: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और भरत तिवारी की मां ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोप लगाया कि उनके बेटे को अभिमन्यु की तरह घेर कर मारा गया।
10: जैसे अभिमन्यु के घेर की गुलगुलाई में बीच में एक आदमी के मारल गई, अभिमन्यु के वही हमारा लड़का के मारल गई, हमारा आके सामने तीन गोली मारल बा, हेजा मारल बा, एक गोली दो गोली हेजा, और बाद गाड़ी में ले जाके हेजा मारल बा और दो गोली आ एक बाद हेजा मारल बा। हमारा इंसाफ चाहिए, उन लोग को फांसी फांसी का डर ना हो तो हम क्रिया ना करें।
3: बीच भरत तिवारी इनकाउंटर केस में इंसाफ की मांग जोर पकड़ रही है। कल भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव और जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पहुंचे और इंसाफ का उन्होंने भरोसा दिया।
11: नहीं नहीं देखिए, बहुत ऐसा चीज है जो सरकार को पता नहीं रहती है, जो गलती कर बैठते हैं लोग। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, हमारे अभिभावक नीतीश कुमार जी हैं और इसमें भरत तिवारी जी को न्याय मिलेगा। बहुत चिंता नहीं करना है, बहुत टेंशन नहीं लेना, एकदम न्याय मिलेगा, अब बहुत जल्दी न्याय मिलेगा।
12: अपराधी को अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना आप हाथ में कलम दीजिएगा ना, हमारा बच्चा भी अपराधी हो सकता है अगर हम उसको बेहतर शिक्षा नहीं देते। लेकिन अगर समाज के लिए लड़के अगर कोई आदमी हथियार उठा रहा है तो उस आपको सोचना चाहिए कि जो आपका काम है वो कर रहा था। भरत तिवारी जो किए हैं वो तो उनका सरकार का काम कर रहे थे ना बेचारे।
3: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई के गले तक पानी, दादर में रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब, रेड वार्निंग के साथ दिन भर जमाजम बरसात की चेतावनी, देश के पूर्वी इलाके जलमग्न। लखनऊ अग्निकांड के बाद धड़ाधड़ सील हो रहे हैं मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स, हर जिले में विशेष टीम करेगी फायर सेफ्टी ऑडिट, घटना वाली इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पहली एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी की सियासत में उबाल, विपक्ष का सवाल, क्यों सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, किसे बचा रही है सरकार, चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों पर बड़ा सस्पेंस।

निवासी हैं, ना उनकी पत्नी ने खरीदी कोई जमीन। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा। शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में ढकेला, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया मर्डर।

0: इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। अलीगंज अग्निकांड में एलडीए की रिपोर्ट में 18 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। एलडीए ने एक जांच रिपोर्ट बनाई है। लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सीधे तौर पर अलग अलग तरह की एनओसी इशू करती है, अब इस अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि उनकी जांच रिपोर्ट में 18 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। एलडीए ने अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की थी। अब इसी जांच रिपोर्ट में 18 अधिकारी दोषी पाए गए। इसमें 5 जोनल अधिकारी बताए जा रहे हैं। एलडीए उपाध्यक्ष ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दिया है। दोषियों में 5 जोनल अधिकारी समेत कुल 18 इंजीनियर और संबंधित अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। इससे पहले एलडीए के एक और अभियंता और सहायक अभियंता को निलंबित किया जा चुका है। जांच में सामने आया कि भवन का मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत भवन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। जांच में यह भी आया है कि 2016 में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण आदेश के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव ने ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त किया था। हादसे वाली इमारत में धुआं बाहर निकलने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। आग लगने के बाद पूरे भवन और कमरों में धुआं भर गया जिससे अधिकांश लोग दम घुटने से मर गए। एफआईआर के अनुसार भवन में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आकस्मिक स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक या इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। भवन में आने जाने के लिए केवल एक ही मुख्य प्रवेश और निकास मार्ग था। बिजली की वायरिंग और विद्युत उपकरण भी असुरक्षित तरीके से लगाए गए थे। अंदर एसी के आउटर यूनिट और अन्य उपकरण सुरक्षा मानकों के विपरीत स्थापित थे। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। 18 अधिकारी चिन्हित किए गए हैं। आशीष, क्या कार्रवाई इनके खिलाफ तुरंत होगी या फिर हो सकती है?
1: देखिए, ये बड़ी एसआईटी की एक तरीके से जो एलडीए ने कराई थी वो रिपोर्ट्स है जिसमें 18 अधिकारी हैं और ये सभी अधिकारी उस लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं जिसमें कि उन्होंने निर्माण देखा, जिनकी जिम्मेदारी वहां पर बनती थी, जो 2016 से उसको ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका था लेकिन इसके बावजूद भी उस पर ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। इसके अलावा उन्होंने जहां पर जो कनेक्शन दिया उन सभी अधिकारियों की पूरी लिस्ट और खाका तैयार करके लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस एसआईटी रिपोर्ट के जरिए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यानी कि शासन को दी है। कार्रवाई तो बड़ी तय है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा कॉम्प्लेक्स चल रहा था, ना ही उसमें एसी आउटडोर की सुविधा थी, ना ही उसमें एग्जिट निकलने की सुविधा थी, ना ही उसमें वेंटिलेशन की थी और ऐसे में एक चैम्बर बना हुआ था आग का, और जिसकी वजह से अब ये रिपोर्ट जरूर जाहिर करती है कि आखिर इतनी तादाद में तकरीबन 3 दर्जन के आसपास, डेढ़ दर्जन के आसपास माफ कीजिएगा, इतने लोग इसमें शामिल हैं। 18 लोगों की जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से बना दी गई है क्योंकि अभी एक और एसआईटी है जो सीएम की तरफ से तैनात की गई है जिसमें प्रवीण कुमार एडीजी हैं और साथ ही साथ एसीएस संस्कृत विभाग के हैं, तो वो भी अपनी जांच कर रहे हैं। तो अभी तो ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की है जहां पर ये साफ जाहिर कर दिया गया है कि 18 अधिकारी पूरी तरीके से, जिसमें दुर्गेश श्रीवास्तव का नाम आ रहा है जिन्होंने इस नक्शे को कहीं ना कहीं पास किया था और उसके बाद विवादित होते हुए भी उसको वहां पर एक बिल्डिंग का आगे बढ़ा दिया था, यानी कि कहीं ना कहीं अधिकारी को मिली भगत।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब रुक करेंगे 100 खबर का। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश। महाराष्ट्र अगले 5 दिन मानसून से जूझेगा। मानसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 दिन के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बारिश। भारी बारिश से वेस्टर्न हाईवे पर यातायात प्रभावित। कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से अंधेरी अंडरपास से भरा पानी। उफान में फंसी कार। मुंबई के गांधी मार्केट में भरा पानी। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। गांधी मार्केट में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे। कई वाहन पानी में फंसे। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जल भराव। दादर रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में हालात प्रभावित। नवी मुंबई में भारी बारिश से जल भराव। भाजी मार्केट समेत कई इलाकों में हालात प्रभावित। भारी बारिश से मुंबई में जल भराव। किंग सर्कल के पास रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई में की पहली बारिश में अंधेरी सबवे जलमग्न। प्रियंका चतुर्वेदी का तंज। ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नहीं दिख रहा है। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन। भूस्खलन से सड़कें बंद। मुख्य सड़क पर गिरा मलबा। बड़ी मुसीबत। सिक्किम के रंगपो रोरा थांग मार्ग पर भारी भूस्खलन। रास्ता पूरी तरह बंद होने से प्रशासन के दूसरे रास्तों से यात्रा करने की सलाह। कोलकाता में मूसलाधार बारिश का कहर, हाईकोर्ट परिसर समेत कई जगहों पर गिरे पेड़, कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। गुजरात के नवसारी समेत कई इलाकों में दूसरे दिन रुक रुक कर हुई बारिश। हिल स्टेशन सापुतारा में पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों के नजारे ने पर्यटकों को किया आकर्षित। राजकोट के गोंडल में तेज बारिश से रेलवे अंडरब्रिज में भरे पानी से पैसेंजर भरी एसटी बस फंसी, जेसीबी की मदद से बाहर निकली। लखनऊ अग्निकांड में अवैध निर्माण मामले में 18 अधिकारी दोषी, एलडीए ने कार्रवाई की सिफारिश, रिपोर्ट शासन को भेजी। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की बैठक, अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा। योगी ने कहा फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं। सीएम योगी ने हर जिले में विशेष टीम गठित करने के दिए निर्देश। फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का आदेश। बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं होगा। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद एलडीए का एक्शन, 15 दिन में जवाब नहीं तो चल सकता है बुलडोजर। अस्पताल में भर्ती बिल्डिंग मालिक का सीने में दर्द का बहाना नहीं आया काम, डॉक्टर ने परीक्षण के बाद वीरेन शुक्ला को बताया फिट, 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा। लखनऊ अग्निकांड में नया मोड़, निलंबित एफएसएसओ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, लंबित कमलेंद्र सिंह ने लिखा खत, कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। लखनऊ अग्निकांड में निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह का बयान से पलटे, वायरल वीडियो पर मांगी माफी। अग्निकांड घायल से मिले अखिलेश, अखिलेश सरकार से 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा बड़े अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। योगी राज में अखिलेश में पास नक्शों की जांच की मांग पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, का मौत पर अखिलेश ना करें सियासत। लखनऊ हादसे के बाद प्रयागराज के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच, कई कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा मानकों की अनदेखी आई सामने, कई संस्थान सील। प्रयागराज में मानक पूरे ना करने पर सिविल लाइन्स में सिटकान ग्लोबल क्लासेस कोचिंग को किया गया सील। कानपुर में वैध कोचिंग पर कार्रवाई का मामला, कोचिंग संचालक बोले केडी अधिकारियों ने कहा है कि आज सील करवा लो कल खुलवा देंगे। लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्नि सुरक्षा जांच तेज, जीडीए को अब तक 206 भवनों में खामियां मिली, 56 सेंटर्स को किया गया सील। नोएडा में सुरक्षा मानकों में भारी खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने 2 कोचिंग सेंटर सील किए, प्रशासन की सेफ टीम का निरीक्षण अभियान लगातार जारी। उन्नाव में भी 3 इंस्टीट्यूट को प्रशासन ने किया सील, छोटे से कमरे में चलाया जा रहा है संस्थान। कौशाम्बी में हुआ एक्शन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कोचिंग सेंटर सील, महोबा में 1 कोचिंग सेंटर सील। आगरा में कोचिंग संस्थानों पर रियलिटी चेक, बेकार फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो आया सामने, उठे सवाल। सहारनपुर में गर्जे इमरान मसूद का, 12 साल में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकार युवाओं का भविष्य कर रही है बर्बाद। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में यूपी कांग्रेस का राज्यव्यापी प्रदर्शन आज, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश वर्मा हटाए गए, जांच के बीच नए एसडीपीओ की तैनाती। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर में एक्शन, जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुनियोजित हत्या बताते हुए डीएसपी ने ये साजिश रची है ये कहा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार से भरत एनकाउंटर मामले की जांच की मांग की, रिटायर्ड जज के बजाय पटना हाईकोर्ट के जज से की, साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, सीएम सम्राट पर लगाए गंभीर आरोप, का अपराधी आदमी है मुख्यमंत्री। टीएमसी ने 24 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति का किया पुनर्गठन, ममता बैनर्जी फिर बनी चेयरपर्सन, अभिषेक बैनर्जी महासचिव नियुक्त। टीएमसी विधायक कुणाल घोष का बड़ा बयान, का असली टीएमसी ममता बैनर्जी है और ममता बैनर्जी के संघर्ष से ही पार्टी बनी है। कुणाल घोष ने अभिषेक बैनर्जी पर निशान साधते हुए करीबी सहयोगियों पर मनमानी चलाने का आरोप लगाया, बोले जो टीएमसी से दूर जा रहे हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। दक्षिण 24 परगना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण बताए जा रहे, कई टीएमसी पार्टी कार्यालय किए गए ध्वस्त। महाराष्ट्र विधानसभा में आज विपक्ष के हंगामे के आसार, आदित्य ठाकरे ने कहा यूसीसी के गुण दोष पर चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने बताया महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित। एकनाथ शिंदे बोले बालासाहेब ठाकरे भी थे समर्थन में, 6 सांसदों के शामिल होने की औपचारिकताएं हुई पूरी। बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने किया दावा, बोली महाराष्ट्र में 3 तलाक पर बैन ठीक से लागू नहीं हो रहा है जिसके लिए यूसीसी लागू करना जरूरी हो गया है। यूसीसी और ट्रिपल तलाक को लेकर बीजेपी विधायक देवयानी फरांडे ने बहुविवाह और महिला उत्पीड़न के मामलों का हवाला देते हुए सख्त कानून की मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा में मंत्री नितेश राणे का विवाद बयान, बोले यूसीसी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच फैला रहे नफरत। पुणे में बिजनेसमैन ने बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में अकेला, नवंबर में होनी थी शादी। पुणे हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। गुजरात में गिर सोमनाथ के वेरावल में सरकारी जमीन पर बड़ा बुलडोजर एक्शन, जल निकासी मार्ग से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने 3291 वर्ग मीटर भूमि को कराया मुक्त। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदने के लगाया गंभीर आरोप। मांगा 335 एकड़, लैंड बैंक पर जवाब। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव के इस्तीफे और सुप्रीम कोर्ट जज से जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर किया पोल, बोले एमपी में डबल इंजन की सरकार में लूट का इंजन तेज रफ्तार से चल रहा है। रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में 4 दिन से चल रहे गतिरोध समाप्त, छत से उतरे निहंग सिख। हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार का बड़ा एक्शन, 6 महीने के लिए लागू किया गया एस्मा, हड़ताल पर रहेगी रोक। उड़ीसा सरकार शहरी जनसंपर्क कार्यक्रम की करेगी शुरुआत। इंदौर में रामदास अठावले का बड़ा दावा, बोले उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य कमजोर, एनडीए में आने के लिए दरवाजे खुले हैं। वाराणसी की 1000 साल पुरानी मस्जिद पर राहत वाली नोटिस को रेलवे ने बताया फर्जी, फिर से ठोका मस्जिद पर रेलवे का दावा। झारखंड टी20 लीग में फाइनल मैच के दौरान जीएससीए स्टेडियम में भगदड़ मची, तस्वीरें आई सामने। यूनोकॉइन बिटकॉइन हैक केस में श्रीकृष्णा उर्फ श्रीकी और मोहम्मद हारिस नालापार को आज कोर्ट में पेश होना होगा। अमरावती पारिवारिक विवाद, मेहमान मना प्रताप, बेटा बहू को कार से कुचलने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में आरपीएफ की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से गिरते यात्री की बचाई जान। हिमाचल के सोलन सब्जी मंडी के पास भयंकर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी। मेरठ में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मियों और थाना मोबाइल जीप को मारी टक्कर, हादसे में 7 पुलिसकर्मी घायल। कोटा बाल सुधार गृह में गंभीर लापरवाही, खुलासा, धड़ल्ले से उपयोग हो रहे मोबाइल, शराब और नॉनवेज पार्टी भी चल रही है। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, होने के वाले दूल्हे समेत 3 युवकों की दर्दनाक मौत। 11 साल की बच्ची की मेहरौली में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी का पुलिस ने किया ऑफ एनकाउंटर, लड़की के पिता ने फांसी की मांग की। बघा में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में भीषण आग, 5 स्कूटी और कई लिथियम बैटरियां जलकर खाक। बोकारो में प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर युवती ने घंटों किया हंगामा, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके में भीषण आग, आग लगने की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद हुई। आग ने पास की झुग्गियों को अपनी चपेट में लिया, 20 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, कोई जनहानि की सूचना नहीं। अजमेर में चलती बस में अचानक आग, सूझबूझ से 37 यात्रियों की बची जान, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। आगरा के आकाश इंस्टीट्यूट में बेसमेंट से धुआं उठने पर मचा हड़कंप, सैकड़ों छात्र सुरक्षित बाहर निकाले गए। विकास नगर के जंगल में लगातार लग रही आग, मौके पर वनकर्मी और दमकल कर्मी ने आग बुझाने का काम शुरू किया। हैदराबाद में एटीएम कैश वैन से 17 लाख रुपए चोरी, बदमाश वैन की डिक्की से बैग लेकर फरार। बेतिया में बेटा नहीं होने की नाराजगी में हैवान बना पिता, पत्नी को नहर में धकेला, 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत। इंदौर में अवंतिका गैस में लगी आग से 4 लोग झुलसे, 5,000 घरों की गैस सप्लाई बंद। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वाला सीसीटीवी में कैद हुआ गैंग, इस्कॉन मंदिर के पास लगातार वारदात से दहशत। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा में सीमेंट के बोरे में छिपाकर ट्रक से लाए गए 48 लाख की विदेशी शराब जब्त। मुर्शिदाबाद बिजली गिरने से 4 की मौत, 15 घायल। पुंछ में एसडीआरएफ, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त मॉक ड्रिल की, जलवायु आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियां तेज। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की मार्केटिंग कर हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अमरावती में बड़ा साइबर घोटाला उजागर, गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर करोड़ों की ठगी, गोवा में छापेमारी के बाद 12 आरोपी गिरफ्तार। छत्रपति संभाजी नगर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस पैकेज पीने से पानी के प्लांट पर छापेमारी। धर्मनगरी अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न, दिव्य समारोह का हुआ आयोजन। अयोध्या के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज का किया पूजन, फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर फहराई धर्म ध्वजा। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे 4,000 राम भक्त, श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर किया पूजा पाठ। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जन बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंपा करीब 300 वर्ष पुरानी भगवान श्री राम से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ है पांडुलिपि। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी भव्य रथ यात्रा। पुरी में रंगों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रंगों को भव्य रूप देने में जुटे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 भव्य रथों की निर्माण जारी, 200 कारीगर बना रहे रथ। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया गया है जोर, सेवक रथों के जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरण का कर रहे हैं इस्तेमाल। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ की होगी पूर्णिमा स्नान, 15 दिन तक भगवान का रहेगा एकांतवास।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU सोच बदलो और बैंक भी।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव की तेज रफ्तार से आईटी सेक्टर में नौकरियों का पूरा गणित बदलने लगा है। आज कंपनियों की नज़र उन लोगों पर है जो सीधे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सके। इसी बदलाव की झलक मई 2026 के हायरिंग आंकड़ों में नजर आ रही है। दरअसल देश में कुल व्हाइट कॉलर हायरिंग सालाना आधार पर महज 1% बढ़ी है। वहीं आईटी सेक्टर की भर्ती में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दबाव एंट्री लेवल और कम स्किल वाली नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईटी सेक्टर की सुस्ती पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा खास है। जहां एक तरफ सामान्य टेक रोल्स में मौके कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बनी हुई है, जिनमें शामिल हैं AI, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं जो ऑटोमेशन और AI प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं फोकस बड़ी टीम बनाने की जगह हाई स्किल टैलेंट पर है, यानी नौकरी बाजार में चुनौती स्किल की है। कंपनियों की प्राथमिकता का असर सैलरी ट्रेंड पर भी साफ नजर आ रहा है। कम अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती घट रही है, जबकि अनुभवी लोगों पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 20 लाख रुपए सालाने से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मिड लेवल और एंट्री लेवल हायरिंग में कमजोरी बनी रही है। AI को लेकर शुरुआती उत्साह खत्म होने की बातें भी कई बार सामने आई, लेकिन हायरिंग डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। फरवरी के रिकॉर्ड स्तर के बाद थोड़ी नरमी जरूर आई है, फिर भी AI से जुड़ी नौकरियां बाकी बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मई 2026 में AI और मशीन लर्निंग से जुड़ी हायरिंग 22% बढ़ी है। इस बदलाव के साथ IT कंपनियों का पुराना ढांचा भी बदलता दिख रहा है। लंबे समय तक IT इंडस्ट्री एक ऐसे मॉडल पर चलती रही जिसमें जूनियर कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी और अनुभवी प्रोफेशनल्स कम, लेकिन AI के दौर में ये समीकरण बदल रहा है। अब पारंपरिक पिरामिड मॉडल की जगह डायमंड मॉडल उभर रहा है। इस मॉडल में एक्सपर्ट्स और अनुभवी कर्मचारियों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। वहीं कंपनियां टेक्नोलॉजी खर्च को रिजल्ट देने वाली भूमिकाओं की तरफ मोड़ रही हैं। इसी ट्रेंड का फायदा उन IT कंपनियों को मिल सकता है जिनकी पकड़ AI, डिजिटल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मजबूत है। आदित्य के राणा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमणि, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनेल, अम्मार, सुमल्या, सारे के सारे नौजवान। सारे के सारे ऊर्जावान, सबके सब अब सारे सपने झुलस गए, सारी उम्मीदें टूट गई, 15 परिवारों की चिराग बुझ गए। इनका क्या कसूर था? अपनी हिफाजत का भरोसा करना, अपनी हुकूमत पर भरोसा करना, अपने सपनों, तकदीर, परिवार, रोटी रोजगार के लिए जान की फिक्र छोड़कर सिस्टम पर भरोसा करना। क्या इनका कसूर था उस सिस्टम पर भरोसा करना जिसका भ्रष्ट होना आसान, जिम्मेदार होना मुश्किल, जो जानलेवा बनता रहा महफूज नहीं बन सका। फिर जब 15 चिताएं एक दिन सुलगती है तो वही उत्तर समेत दागा जाने वाला यक्ष प्रश्न, जिम्मेदार कौन? आग लगे ऐसे सिस्टम को जो इंसानों को निगल जाता है, किसी की कोख, किसी की मांग, किसी का आंगन, किसी की जिंदगी, फिर भी सिस्टम यही है, ये तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में लाक्षा ग्रह बनेंगे, ऐसे ही करप्ट सिस्टम में आगे लगेंगे, ऐसे ही बेकसूर बेमौत मरेंगे। हुकूमत जांच कराएगी, गिरफ्तारी कराएगी, मुकदमा चलेगा, जमानत होगी, लेकिन सजा वो हो भी जाए तो क्या, डरता कौन? क्योंकि यही तो सिस्टम है जहां जुर्म ही नहीं डर भी मैनेज हो जाता है। वरना क्या दिल्ली, क्या गाजियाबाद, क्या लखनऊ, क्या कानपुर, क्या प्रयागराज, क्या सहारनपुर, मजाल कहीं भी नरसंहार वाला ये सिस्टम आउट ऑफ सिस्टम हो। दिल्ली में सरेआम हजारों कोचिंग चल रहे हैं, बिजली और केबल तारों का मकड़ जाल, दड़बे नुबा इमारतें, दो हाथ सकरी गलियां, आग लगे तो कोई बच के दिखा दे। कानपुर में तो दर्जन भर से अधिक ब्रांडेड कोचिंग वालों के दरवाजे पर सीलिंग हो गई, क्योंकि सिस्टम एक्शन में आया है मौतों के बाद। बच्चे कुछ दिनों के लिए यहाँ बाल बाल बचे। गाजियाबाद में भी सिस्टम जाग गया, काम कर गया तो जान बचेगी, वरना हादसे का इंतजार कीजिए। वाराणसी में भी जांच पड़ताल शुरू है, अब तक जोखिम में चल रही जान आगे कुछ दिनों तक महफूज रहेगी। प्रयागराज में भी बच्चों की फिक्र सिस्टम को है, शायद हालात सुधर जाए। उत्तर भारत से दूर दक्षिण भारत तक शहर शहर यही हालात, कहां तक गिनेंगे, ये सिस्टम सुधरता नहीं, और अगर नहीं सुधरा तो हादसे फिर होंगे, फिर SIT बैठ जाएगी। जांच तो होगी, जांच होगी तो पता चलेगा रिहायशी मकान में दफ्तर दुकान कैसे बन गए, मौत की सौदागरी करके मुनाफा वसूली में कौन कौन शामिल था, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, दमकल विभाग वाले क्या कर रहे थे, बिजली विभाग क्यों सन्नाटे में था, और तो और पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक, और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सारा सिस्टम एक साथ क्यों फेल हो गया, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर रिपोर्ट आ जाएगी, मुकदमा होगा, जमानत होगी, बात रफा दफा। वरना इसी सिस्टम में 2014 में तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल के अंदर 94 बच्चे जलकर मर गए, सजा क्या हुई, 5 साल की जेल। 2017 मुंबई के कमला मिल्स पब अग्निकांड में 14 लोग मरे, सजा आज तक नहीं मिली। 2018 में इसी लखनऊ में चारबाग होटल अग्निकांड में 5 लोग मर गए, आरोपी जमानत पर मौज कर रहे हैं। 2019 सूरत में तक्षशिला कोचिंग में 22 बच्चे बेमौत मरे, सारे आरोपी जमानत पर है। 2019 में ही दिल्ली के अनाज मंडी में फैक्ट्री की आग में 43 गरीब जलकर मर गए, सजा अब तक किसी को नहीं मिली। 2022 में फिर इसी लखनऊ के लेवाना स्वीट होटल में 4 लोग मरे, सजा अब तक नहीं मिली। और सजा मिल भी गई तो सबसे निचले पायदान के उसी वोटर को मिलती है जो हर हादसे का सबसे बुनियादी जिम्मेदार होता है, क्योंकि इस भयानक सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा देना जमहूरी निजाम के खिलाफ बगावत हो जाएगी। ये सिस्टम कभी खुद को जवाबदेह नहीं बना सकता, क्योंकि सिस्टम में सबका सिस्टम ठीक है, बस हिंदुस्तान की आम आवाम बेगुनाह।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

कि पहली बारिश में ही मुंबई के गले तक पानी, दादर से रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब, रेड वार्निंग के साथ दिन भर झमाझम बारिश की चेतावनी, देश के पूर्वी इलाके भी जलमग्न। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को पाया दोषी, इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, धड़ाधड़ सील हो रहे हैं मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पहली एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी की सियासत में उबाल, विपक्ष का सवाल, क्यों सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, किसे बचा रही है सरकार, चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों पर बड़ा सस्पेंस। मध्य प्रदेश में कथित जमीन खरीद घोटाले पर गरमाई राजनीति, आरोपों में घिरे मोहन यादव से कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, तो बचाव में उतरी बीजेपी, कहा न सीएम न उनकी पत्नी ने खरीदी कोई जमीन।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आज सुबह से ही खबरों में हलचल है। सबसे बड़ी हलचल मुंबई से है, जहां मॉनसून देर से आया लेकिन धमाके के साथ आया। पहली ही बारिश में मुंबई पानी पानी हो गया है और सड़कें समंदर बन गई हैं। ट्रेन पटरी पर पानी उतर आया है, अंडरपास लबालब हो गए हैं। इस खास पेशकश में मुंबई का रुख करेंगे और ग्राउंड रियलिटी आपको वहां से दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि लखनऊ में मौत की आग की जांच की लपटें कहां तक पहुंची हैं, 15 मौत के कितने गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, किन किन पर गिरने वाली है गाज। और रुक करेंगे पटना का, जहां स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अस्पताल के दौरे पर गए तो इलाज करने वालों की ही कई बीमारियां सामने आ गई। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं मुंबई की पहली मॉनसून बारिश के बाद हुए हालात का।

पहली बारिश में मुंबई की वही कहानी सामने आ गई है। हर साल वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। सड़कों पर सैलाब उतर आया है, ट्रैक पर पानी जमा हो गया है, अंडरपास पानी पानी हो गए हैं। सुबह काम पर निकले दफ्तर के लिए लोगों को सामना करना पड़ रहा है पानी से भरी हुई सड़कों का। कई गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई हैं, ट्रैफिक की रफ्तार थम चुकी है, गाड़ियों की कतारें लगी हुई है। किंग सर्कल, गांधी मार्केट, दादर, नवी मुंबई, तमाम इलाकों से जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको उन इलाकों से दिखा रहे हैं जहां पर जलभराव की दिक्कतें आ रही हैं, और ये अमूमन वही इलाके रहते हैं जहां हर साल यही हालत देखने को मिलती है। नालों की सफाई नहीं की जाती वक्त रहते, और ऐसे में पानी का निस्तारण नहीं होता है, और देखने को मिलता है इस तरह का जलभराव। लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सुबह का वक्त, ऑफिस जाने का वक्त, लंबे लंबे इलाके रास्ते तय करते हुए लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, और ऐसे में ये हाल। फर्क पड़ जाता है जब पानी में इतना पानी, रास्ते में इतना पानी भरा हो तो बसें चलनी भी लगभग बंद सी हो जाती है। ऐसे में ट्रेन की आवाजाही पर भी असर पड़ता है, और ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बारिश, मॉनसून की पहली बारिश, देर से आया है ये मॉनसून लेकिन धमाकेदार तरीके से आया है, और इस पहली बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। खैर, नई बात क्या है, यहाँ के लोगों को तो आदत सी पड़ गई है, यहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, एजेंसी है, बीएमसी है, उनको भी आदत सी पड़ गई है। हर साल यही तस्वीरें हम दिखाते हैं, और हर साल यही तस्वीरें वो दिखा करके, देखकर, ट्वीट करके वैसे ही बैठ जाते हैं।

0: नहीं है लेकिन धीमी गति से वो चल रही है। लो लाइंग एरिया की जहां पर हम बात करें तो वहां पर पानी भरने की समस्या हुई थी। अब बीएमसी ने पंप और बाकी चीजें लगा रखी हैं। कुछ समय रहते ये जैसे बारिश का प्रेशर या स्पीड कम होती है तो पंपिंग
1: जी
0: स्टेशन के जरिए उन पानी को जो आप कह सकते हैं खाली करा दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देर से आई है मानसून, लेकिन आप कह सकते हैं कि क्योंकि आज वर्किंग डे है, सुबह से बारिश थी, तो कहीं ना कहीं चलकर या बसों में ट्रैफिक और इस तरह की चीजें करके लोगों को दफ्तर पहुंचना पड़ रहा है।
1: जी बिल्कुल। और रुक करते हैं दीपेश का। दीपेश, आपके इलाके में हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे, बताइए क्या हाल है?
2: अंजलि, बिल्कुल। देखिए, मैं मुंबई के माटुंगा इलाके में हूँ, जो साइंस से सटा हुआ इलाका है, और यह इलाका है जो बारिश में बहुत जल्दी भर जाता है। यहाँ पे बीएमसी की तरफ से कई पंपिंग स्टेशंस लगाए जाते हैं ये दिखाने के लिए कि पानी जल्दी से जल्दी निकल जाए, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी हर साल होती है, लेकिन फिर भी पहली बारिश में ही यहाँ पे हाल लोगों का बेहाल था। कई स्कूलों को, जो आसपास के स्कूल हैं, उनको छुट्टियाँ देनी पड़ी। यहीं पर बीएमसी का अस्पताल है, साइन अस्पताल, वहाँ पर भी मरीजों को पहुँचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी फिलहाल ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले यानी कुछ क्षणों तक यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी स्लो थी, लोग यहाँ से गुजर नहीं पा रहे थे, काफ़ी जल जमाव भरा हुआ था। अब बारिश की गति थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से पानी अब थोड़ा जल्दी गति से निकल रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफ़ी स्लो मूव हो रहा है। यह पीक आर है, यहाँ से साइन की तरफ जाने वाले रूट पर अमूमन रोजाना ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन बरसात के दिनों में ये दृश्य हमें अक्सर देखने को मिलता है। और कुछ लोगों से हमने बात की तो कुछ टैक्सी वाले थे जो सुबह 4:30 बजे से यहाँ पर फंसे हुए थे, उनकी गाड़ी बंद हो गई थी, लेकिन उनको कोई मदद नहीं आई थी। पुलिस वाले उनके पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने उस टैक्सी वाले से ही उल्टा सवाल किया कि पानी देखते हुए गाड़ी डालने की जरूरत क्या थी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बीएमसी हो या अन्य प्रशासन हो, उनकी क्या जवाबदेही है या किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की हैं, ये पहले ही बारिश ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अंजलि
1: जी बिल्कुल। और दीपेश, जिन शख्स से आपने बात की जो परेशान मुसाफिर थे, गांधीनगर मार्केट में बात की है, चलिए उन्हीं ने क्या कहा ये सुन लेते हैं।
2: आप देख सकते हैं जो फोर व्हीलर है वो भी यहाँ पर बंद पड़ी हैं, लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मैकेनिक को बुला रहे हैं, गाड़ियाँ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी है यहाँ पर। सर, कब से गाड़ी बंद पड़ी है आपकी? कब से गाड़ी बंद?
3: अभी अभी अभी।
2: तो आपने क्या किनको बुलाया ठीक करने के लिए?
3: किसको बुलाऊंगा मैं, मेरे पास कुछ नंबर ही नहीं है, चल रहा है, कुछ बारिश आ रही है, उसको धुआं निकल रहा था, इसके लिए बंद कर दिया।
2: ये बारिश की वजह से?
3: हाँ, पूरा भर गया था आधा पानी। तो कहाँ
2: से आ रहे हैं सर आप, कहाँ जा रहे थे?
3: कॉटन ग्रीन से आ रहा था, उधर जा रहा था मांडू।
2: तो देख सकते हैं पहली बारिश में ही लोगों का ये हाल हो रहा है कि बारिश की वजह से लोगों की जो है वो गाड़ियाँ बंद पड़ रही हैं यहाँ पर, जो है टैक्सी भी बंद पड़ी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कब से गाड़ी बंद पड़ी है आपकी, कब से फंसे हुए हैं यहाँ?
4: यहाँ मैं 4:30 बजे से फंसा हूँ।
2: सुबह?
4: हाँ।
2: क्या बात है?
4: सेकंड नंबर हमारा ही गाड़ी बंद होना। हाँ।
2: तो तब से कोई मदद नहीं है?
4: कोई मदद नहीं, बस दो आरटीओ वाले आए थे, गाड़ी क्यों खड़ी है, मैं पानी भर गया था, तो बोले क्यों पानी में डाला, अरे पागल है, मैं पागल में उसमें डालूंगा, जब दो गाड़ी निकली आगे, आगे वाला ब्रेक लिया, मेरी भी गाड़ी बंद पड़ गई।
1: तो लोगों की परेशानी लाजमी है, लेकिन ये प्रकृति है, और प्रकृति का जो प्रकोप है वो हर साल देखने को मिलता है मुंबई नगरी में खासतौर पे। तो किस तरीके से ये बारिश या ये मॉनसून मुंबई में आता रहा है ये हम आपको बताते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि आज बारिश जो हुई वो किस तरीके की हुई। तो राम मंदिर में 224 मिलीमीटर की, और ये बाकी के इलाके भी देख लीजिए, विद्या विहार, टाटा पावर चेंबूर, बायकुला, बांद्रा, जुहू एयरपोर्ट, हर जगह आप देख रहे हैं जो बारिश, ये हम आपको मिलीमीटर में बता रहे हैं कि 24 घंटे में कितनी हुई है। तो भारी बारिश हुई है मुंबई के कई इलाकों में, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है जगह जगह पे। लेकिन 20 जून के बाद यानी कि देरी से कब कब मानसून आया, क्योंकि जो सामान्य एंट्री है वो 10 जून की रहती है। तो एक नजर डालते हैं, तो देखिए 1957-58, उसके बाद आपको 59 से लेकर के 2023 तक लगभग हर साल 20 जून के बाद हमने देखा है कि बारिश देरी से आई, मॉनसून देरी से आया। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 23 जून को आया है, इस बार भी देरी हुई थी। तो इसका असर क्या पड़ा है, अभी ये देखा गया है कि बारिश पहले दिन बहुत जोरदार हुई, लोगों को दिक्कतें हुई हैं, पानी भरा हुआ है।

तो चलिए अब मुंबई से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजकोट की। राजकोट के गोंडल में भी तेज बारिश से संकट गहरा गया है। रेलवे अंडरब्रिज में करीब 5 फीट तक पानी भर गया और एक बस उसी अंडरब्रिज में जाकर फंस गई। जूनागढ़ दाहोद रूट पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस अंडरब्रिज से गुजरने का प्रयास कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। उस वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे। हालात ऐसे ही हो गए कि यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मौके पर जेसीबी को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम को तत्काल बुलाया गया और जेसीबी की मदद से बस को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शाम के समय करीब 2 घंटे में करीब 2 इंच मूसलाधार बारिश दर्ज की गई।

0: और अब बात मौत की आके, जिसकी जांच की लपटें अब उन इमारतों तक पहुंचने वाली है जो तमाम कायदे कानूनों को धता बताकर खड़ी हैं। हम बात लखनऊ की कर रहे हैं। खुद ही घेरे में आई लखनऊ विकास अथॉरिटी यानी कि एलडीए अब ऐसी इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। खबर आ रही है कि एलडीए ने ऐसी इमारतों के मालिकों को 15 दिन का नोटिस जारी किया है। सवालों के घेरे में आई एलडीए अपने लोगों पर भी एक्शन ले रही है। एलडीए रिपोर्ट में 18 अधिकारियों और इंजीनियर्स को दोषी ठहराया गया है। इससे पहले एलडीए एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर चुकी है। इस मामले में मुख्य आरोपी वीरेंद्र शुक्ला सहित चारों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वीरेंद्र शुक्ला उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का मालिक है जिसमें आग लगी और 15 मासूमों की जान चली गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीरेंद्र शुक्ला ने दिल की बीमारी का हवाला दिया, लेकिन ये बहाना काम नहीं आया। सीने में दर्द की शिकायत पर मेडिकल करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वीरेंद्र शुक्ला को पूरी तरह से फिट बताया। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लखनऊ हादसे के बाद यूपी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि बेसमेंट में किसी भी तरह का कोचिंग सेंटर नहीं बनना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधि भी नहीं की जानी चाहिए, इसकी अनुमति नहीं होगी। आदेश के मुताबिक सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का, जो इस वक्त मौजूद है बिल्डिंग के सामने ही। समर्थ, एक नोटिस भी चस्पा दिया है वहां पर, जरा उसके बारे में बताएं और किस तरह की कार्रवाई होनी है।
1: देखिए, यहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उस नोटिस में कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर आपको जवाब देना है और जवाब अगर नहीं दे पाए तो फिर यहाँ पर भस्मीकरण यानी कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। हम इस वक्त वही मौजूद है जहाँ पूरी घटना हुई है, लेकिन जो दाग हैं, जो घटना के दाग हैं, वो यहाँ पर अभी भी देखे जा सकते हैं। जो घटना क्रम पूरा हुआ है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ से। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस बैरिकेड के पास आगे आके दिखाएं, यहाँ पर जो पेट्स के सामान थे, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सभी अभी भी यहाँ पर आपको पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ जानवर क्या इंसान, वो सभी जो है यहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ तस्वीरें थोड़ा और करीब से आकर कि ये पूरा का पूरा नीचे का जो एरिया है, ये आग विध्वंस जब हुआ तो पूरा का पूरा टूट कर एक के बाद एक नीचे आता गया चला गया। ऊपर जहां पर ग्लासेस लगे हुए थे वहां पर जब पत्थर फेंके गए तब जो है कुल मिलाकर लोग कुछ वहां से फांद पाए, कुछ निकल पाए, तो कुछ जो सांस जो फूलने लगी उसके चक्कर में मौत हो गई। जो शुरुआती जानकारी डॉक्टर्स के जरिए मिल पाई है वो ये बताती है मौत का मुख्य कारण आग लगना यानी कि बर्न इंजरी नहीं है बल्कि सांस लेने में परेशानी है। जब भी आग लगती है तब एक और बड़ा इशू ये होता है कि उस जगह पर धुआं बहुत होता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस छोटे से स्पेस में, जिसकी वजह से वहां सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है।
0: जी समर्थ, तो बिल्कुल। और चिंता की बात यही है कि ये मौतें हुई और इसके जिम्मेवार लोगों को अब तय किया जा रहा है। उधर लखनऊ अग्निकांड को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान भी बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने प्रशासन और सरकार को घेरा तो बृजेश पाठक ने समाजवादी सरकार के कार्यकाल को ही याद दिला दिया।
2: ये जो घटनाएं, जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से ये घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए।
3: और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।
0: और अब खबर अयोध्या की, जहां राम मंदिर के दान में गबन की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की है। तो आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या कहा गया है। साफ कर दिया गया है कि किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। कुछ कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश की गई है। शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। दान राशि की गिनती प्रक्रिया में कई खामियां मिली हैं, जिन्हें उजागर किया गया है। और एसआईटी की रिपोर्ट को अब दे दिया गया है सरकार को, और अब इंतजार है कि कब इस मामले में एफआईआर होगी। उधर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में प्रदर्शन करने और विरोध करने की राजनीति तेज कर दी है। और अब बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस की ताजा खबर। जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश वर्मा को हटाया गया है, अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय से अटैच किए गए हैं। कल ही भरत तिवारी की मां के आवेदन पर डीएसपी, एसएचओ और अन्य पुलिस कर्मियों पर एफआईआर की गई थी, और अब ये एक्शन आ रहा है जहां एसडीपीओ को हटा दिया गया है और मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है।
4: जैसे अभिमन्यु के घेर की गुलगुलाई में बीच में एक आदमी के मारल गई, अभिमन्यु के वही हमारा लड़का के मारल गई
5: हमारा के सामने
4: तीन गोली मारल बा, हेजा मारल बा एक गोली, दो गोली हेजा, और बाद गाड़ी में ले जाके हेजा मारल बा आ दो गोली आ एक बाद हेजा मारल बा। हमारा इंसाफ चाहिए, उन लोग को फांसी का ऑर्डर ना हो तो हम क्रिया ना करें।
6: नहीं नहीं, देखिए बहुत ऐसा चीज है जो सरकार को पता नहीं रहती है, जो गलती कर बैठते हैं लोग। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, हमारे अभिभावक नीतीश कुमार जी हैं, और इसमें भरत तिवारी जी को न्याय मिलेगा। बहुत चिंता नहीं करना है, बहुत टेंशन नहीं लेना, एकदम न्याय मिलेगा। अब बहुत जल्दी न्याय मिलेगा।
7: अपराधी को अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना आप हाथ में कलम दीजिएगा ना, हमारा बच्चा भी अपराधी हो सकता है अगर हम उसको बेहतर शिक्षा नहीं देते। लेकिन अगर समाज के लिए लड़के अगर कोई आदमी हथियार उठा रहा है तो उस आपको सोचना चाहिए कि जो आपका काम है वो कर रहा था। भरत तिवारी जो कहे हैं वो तो उनका सरकार का काम कर रहे थे ना बेचारे।
0: वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluff Mobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on Spin Quest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
11: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
12: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर। मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
2: What about me, Jack? What about me?
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
2: Well played, Jack. Well played.
1: Jack FM, playing what we want.
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं.
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीओ को पता नहीं.
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
6: जहां खबर वहां खबरदार.
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: क्या उद्धव की पार्टी में एक और टूट होगी? क्या सांसदों के बाद विधायक भी टूटेंगे? उद्धव की बैठक में क्यों नहीं आए तीन विधायक? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। सांसदों की बगावत झेल चुके उद्धव ठाकरे की कोशिश है अपने विधायकों पर पकड़ बनाए रखने की। कल मुंबई में उद्धव ने विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से नए सवाल निकले। बैठक में तीन विधायक और एक एमएलसी नहीं पहुंचे। यवतमाल से विधायक संजय देरकर, परभरी से विधायक राहुल पाटिल, कलीना मुंबई से विधायक संजय पुतनिस और एमएलसी सुनील शिंदे इस बैठक से नदारद रहे। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं ने अपनी गैर हाजिरी को लेकर पहले से जानकारी दे दी थी, लेकिन संशय तब बढ़ गया जब संजय राउत विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिए बिना ही निकल गए। थोड़ी देर बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की ओर से बड़ा दावा किया गया। मुरजी पटेल ने कहा कि एकनाथ शिंदे उद्धव की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर 3 की तैयारी में है।
1: इसके बाद ऑपरेशन 3 की तैयारी माननीय एकनाथ साहब की शिंदे साहब के नेतृत्व में होने जा रही है। अभी जब उनके साथ पास थे तभी अच्छे थे, अभी गए तो बुराई कर रहे, कहीं ना कहीं गलत है। उनको संभालने नहीं आया, इसके लिए हमारे पास आए हैं और पूरा ध्यान पार्टी उनका रखे।
0: कल ही मुंबई में उद्धव के 6 सांसदों ने शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की। इसके बाद शिंदे का हौसला 7वें आसमान पर है।
2: 4 वर्ष पूर्वी 22 जून 2022 में लौटता शिवसेने आम्ही उठाव केला होता, तेव्हा 40 आमदार सोबत सुरुवातीला होते आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मारलेला आहे, म्हणजे काय म्हणतो त्याला सिक्सर।
0: शिवसेना युबीटी के पास फिलहाल विधानसभा में 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं, लेकिन इन पर शिंदे की गहरी नजर है। आज तक विरोध।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: पुणे में लोहागढ़ किले में हुई मौत के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। केतन अग्रवाल की हत्या में पुलिस की जांच तेज है। 18 जून को केतन की मंगेतर सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रची और केतन को खाई में धक्का दे दिया। अब उस मामले में पुणे पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सच सामने आते जा रहे हैं। सिया ने कैसे ये साजिश रची, उसका एक एक कच्चा चिट्ठा सामने आया है। उधर गिरफ्तारी के बाद कल पुलिस ने आरोपी सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को वडगांव कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
1: ये तस्वीर तो याद होगी आपको, ये ऊंची चढ़ाई और ये उससे भी गहरी खाई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, वही ऊंची चढ़ाई और उससे भी गहरी खाई। ये दोनों तस्वीरें देश के दो किनारों की है। पहली तस्वीर शिलांग की है, करीब साल भर पुरानी। दूसरी तस्वीर पुणे से 52 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की है। पुणे की इस खाई की कहानी जिसने भी लिखी, उसने 100% सोनम की कहानी सुन रखी थी। सोनम राजा रघुवंशी, याद आया आपको ये नाम? पिछले साल 23 मई की वो तारीख थी जब सोनम ने शादी के हफ्ते भर बाद ही हनीमून के नाम पर अपने पति राजा रघुवंशी को शिलांग में इसी ऊंचाई से धक्का देकर खाई में फेंक दिया था। अब 11 महीने बाद सोनम की कहानी पुणे की सिया गोयल ने दोहरा दी। कमाल का इत्तेफाक है दोनों कहानियों में, मतलब हर कदम हूबहू सब कुछ एक जैसा। कत्ल के लिए चुनी गई जगह एक जैसी, कत्ल करने का तरीका एक जैसा और कत्ल की वजह भी बिल्कुल एक जैसी। बस फर्क एक ही था, सोनम ने शादी के एक हफ्ते बाद अपने पति का कत्ल किया तो सिया ने सगाई के बाद होने वाली शादी से ऐन पहले अपने होने वाले पति को मार डाला। ये पुणे की सिया गोयल है और ये पुणे के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे केतन विशाल अग्रवाल। कुछ वक्त बाद ही सिया और केतन की शादी होनी थी। इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर में एक महल की बुकिंग हो चुकी थी। मेहमानों को पुणे से जयपुर ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन तक बुक हो चुके थे, लेकिन तभी बस एक साजिश की चिंगारी उठी और केतन और केतन के घर वालों के सपने खाई में समा गए।
2: केतन और सिया की जयपुर में शादी होने वाली थी, जिसके लिए लगभग 17 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। विला बुक करना हो, रिजॉर्ट बुक करना हो, इस सभी के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया गया था। अहम बात यह है, गोयल फैमिली और अग्रवाल दोनों काफी खुश थे क्योंकि लड़की उनके यहाँ बहू बनकर आने वाली थी और इसी सब में जोर शोर से शॉपिंग शुरू थी। लोग सोना और कपड़े खरीदने के लिए जा रहे थे और उससे पहले ही घर वालों ने लोहगढ़ के प्री वेडिंग शूट के लिए हाँ भर दी। सिया केतन को लेकर लोहगढ़ पहुंच गई और ये हादसे के बाद दोनों फैमिली अब सदमे में है।
1: सोनम चैप्टर 2 की इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून को। पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर यह ऐतिहासिक आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किला है। यहाँ सैलानी घूमने और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ 18 जून की सुबह 10:30 बजे इसी किले में आती है। दोनों किले की सबसे बुलंदी पर पहुंचते हैं। वहां अचानक केतन का पैर फिसलता है और वो सीधे 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। केतन को खाई में गिरते देख सिया जोर से चिल्लाती है और आसपास मौजूद गार्ड को रोते हुए बताती है। इसके बाद गार्ड पुलिस को फोन करते हैं और सिया अपने घर वालों को।
3: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है, जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
2: लोहगढ़ किले से केतन को जोर से धक्का देने के बाद सिया खुद चिल्लाने लगी, वहां के वॉचमैन को बुलाया, इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को भी इत्तला कर दिया। अब हादसा होने के बाद वे रोने लगी, फैमिली को इन्फॉर्म किया और सबको यही लगा कि प्री वेडिंग शूट के दरमियान उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। सभी को ये एक्सीडेंटल डेथ लग रही थी। पुलिस ने इसी की तरह की नोटिंग भी की।
1: किले के गार्ड और पुलिस सब खाई में केतन को तलाश करना शुरू करते हैं, पर खाई बहुत गहरी थी और एरिया बड़ा। पहले दिन की तलाश नाकाम रही। 19 जून को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और आखिरकार केतन की लाश खाई से बरामद हो गई। लाश बरामद होने के बाद पुलिस एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लेती है।
3: वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत।
1: जिस घर में कुछ महीने बाद ही शहनाई बजने वाली थी वहाँ मातम पसरा था। पोस्टमार्टम के बाद 20 जून को केतन का पुणे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सगाई के बाद और शादी से आन पहले केतन की मौत को लेकर हर कोई सिया के लिए गमजदा था। केतन की मौत के अगले दिन सिया का बर्थडे भी था। इस मौके पर सिया ने एक भावुक और मार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला।

0: धीरे धीरे अब पूरा परिवार ये यकीन कर चुका था कि केतन की मौत एक हादसा थी, पांव फिसलने की वजह से वो खाई में जा गिरा। लेकिन केतन के पिता और केतन की बहन इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वजह ये थी कि केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाया करता था। फिर तभी 22 जून को सिया अपने होने वाले ससुराल पहुंचती है शोक के लिए। इसी दौरान पहली बार केतन की बहन सिया से पूछती है कि केतन किस तरह खाई में गिरा। ये सुनते ही सिया घबरा जाती है। बहन को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसी वक्त केतन की बहन अपने पिता से सिया को लेकर शक जताती है। पिता को पहले से ही शक था, लिहाजा वो फौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं।
1: तो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है, क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए।
0: शायद सोनम की कहानी कभी पुणे में भी जिंदा थी, इसीलिए केतन के परिवार ने अब सिया के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तब तक पुलिस ने भी सिया के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट में ताक झांक शुरू कर दी थी। साथ ही साथ अब पुलिस लोहागढ़ किले के अंदर और बाहर की सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी खंगाल रही थी। इन्हीं तस्वीरों को खंगालते हुए पुलिस को एक अजीब तस्वीर नजर आई, एक शख्स जो हुडी पहनकर किले में आया था। ये तस्वीर इसलिए अजीब थी क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से चढ़ाई के दौरान ज्यादा गर्मी लगती है, फिर भी उसने हुडी पहन रखी थी और उस हुडी से अपने चेहरे को भी छुपा रखा था। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि यह शख्स लगातार सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अब पुलिस ने सिया के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। पुलिस की नजर एक नंबर पर जाकर ठहर गई। वजह यह थी कि उस नंबर पर सिया ने जनवरी से लेकर जून तक, यानी पिछले 6 महीने में 2004 कॉल किए थे, और इन 2004 कॉल्स के दौरान उसने कुल 338 घंटे बात की। पुलिस ने जब उस नंबर को खंगाला तो पता चला वो नंबर चेतन चौधरी नाम के एक लड़के का है। चेतन पुणे के उसी इलाके में रहता है जहां सिया के पिता प्रवीण गोयल का बिजनेस है। अब पुलिस ने चेतन के कॉल डिटेल निकाले, खासकर 18 जून के, लेकिन पुलिस हैरान रह गई। 18 जून की सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चेतन का नेट बंद था और फोन का लोकेशन चेतन का दफ्तर दिखा रहा था। अब पुलिस ने चेतन के दफ्तर के कर्मचारियों से पूछताछ की। इस पूछताछ में पता चला कि 18 जून को चेतन अपना फोन दफ्तर में ही छोड़कर अपने एक कर्मचारी का फोन अपने साथ ले गया था। उस कर्मचारी के फोन नंबर की लोकेशन जब ट्रेस की गई तो उसकी लोकेशन वही लोहागढ़ किला निकला। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि असल में हुडी में चेहरा छुपाए शख्स कोई और नहीं, चेतन चौधरी ही। पुलिस ने फौरन चेता और सिया दोनों को हिरासत में ले लिया।
2: ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी, तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई।
3: जब चेतन चौधरी इस पूरे मामले में सामने आया तो लोकेशंस निकाले गए, CDR चेक किए गए और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि इस पूरे मामले में एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि साजिश रची गई है और वो भी सिया और चेतन इन दोनों ने मिलकर साजिश रची और केतन की इसमें मौत हो गई।
0: दोनों ने पूछताछ में आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन दोनों की कहानी भी सोनम और राजा रघुवंशी जैसी ही कहानी निकली। असल में केतन के पिता पुणे के एक अमीर कारोबारी हैं, सिया के पिता भी शहर के इज्जतदार बिजनेसमैन। दोनों परिवार इकट्ठा हुए और इसी साल फरवरी में केतन और सिया की सगाई कर दी। शादी इसी साल 26 नवंबर को जयपुर के एक महल में होनी थी। शादी के लिए उस महल को 17 करोड़ में बुक किया गया था। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक किए जा चुके थे। लेकिन इधर सिया की जिंदगी में कुछ और ही कहानी चल रही थी। पिछले साल दिवाली के मौके पर सचिन चौधरी से उसकी मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी घर वालों ने सिया की शादी केतन के साथ तय कर दी। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन से शादी करना चाहती थी।
1: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा।
0: सिया किसी तरह शादी से पहले केतन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उसने चेतन के साथ मिलकर साजिश रचनी शुरू कर दी। इत्तेफाक से 31 मई को ट्रैकिंग का शौकीन केतन सिया को अपने साथ इसी लोहागढ़ किले में लाता है। यहाँ आने के बाद पहली बार सिया को यह ख्याल आया कि अगर वो ऊंचाई से केतन को धक्का दे दे तो वो खाई में गिर जाएगा और सबको यही लगेगा कि एक हादसा है। इसके बाद 14 जून को सिया जिद कर केतन को एक बार फिर इसी किले में लाती है। वो केतन को 14 जून को ही मारना चाहती थी लेकिन वो केतन को धक्का नहीं दे पाई।
1: 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: पहली कोशिश नाकाम होने के बाद 18 जून को वो फिर केतन को अपने साथ इसी जगह लाई। इस बार उसने केतन से कहा कि ये जगह अच्छी है और प्री वेडिंग शूट के लिए उसे फिर से ये जगह देखनी है। केतन तैयार हो गया। उधर सिया ने चेतन को अपना प्लान बताया। प्लान के तहत चेतन को सिया और केतन के पीछे पीछे आना था। इसके बाद जैसे ही केतन किले की ऊंचाई पर पहुंचा, मौका देखते ही सिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। सिया की इस साजिश से शायद केतन बच जाता। असल में कुछ दिन पहले ही केतन ने अपनी बहन सिया और एक दोस्त के साथ इंडोनेशिया के बाली जाने का प्लान बनाया था। सभी घर से एयरपोर्ट के लिए रास्ते में थे पर सिया बाली जाना नहीं चाहती थी, लिहाजा साजिश के तहत उसने रास्ते में एक रेस्तरां में रुककर केतन का पासपोर्ट फाड़ कर वॉशरूम में फ्लश कर दिया। पासपोर्ट न होने की वजह से सभी को वापस लौटना पड़ा।
2: जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो बाली के लिए यहां से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहां से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सोदा कि ये एकत्र बाली ना जा पाए।
0: आइए वापस 11 महीने पुरानी सोनम की कहानी में झांकते हैं। सोनम भी अपने बॉयफ्रेंड सचिन की वजह से राजा रघुवंशी से शादी करना नहीं चाहती थी। सोनम भी सिया की बाली की तरह राजा के साथ बेंगलुरु जाना नहीं चाहती थी। जिस तरह सिया जिद कर केतन को लोहागढ़ किला लाई, ठीक उसी तरह सोनम ने भी कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन की आड़ में राजा को अपने साथ गुवाहाटी होते हुए शिलांग ले गई। सोनम ने भी भाड़े के कातिलों के साथ मिलकर अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दिया, तो सिया ने भी अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया। अब आप ही बताइए ये कहानी सोनम चैप्टर 2 है कि नहीं। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now all summer long, I'm going to be celebrating by playing on FinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just $10.
8: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
9: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits...
10: Somebody save me.
9: ...to timeless favorites.
10: Life is like a song.
9: And new discoveries.
10: That's so much more than a history. Wake up!
9: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach.
6: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
5: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
11: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space. Now's the perfect time to make it happen with a home equity loan from CME Federal Credit Union. You'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway.
12: Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.
13: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
14: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
13: to live sports action.
15: To the near side corner, to wrap around, he scores!
13: And your favorite music.
16: You and I stargazing.
13: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
17: ये तस्वीरें याद है ना, चंद रोज पहले अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई थी। सारी कवायद इस बात की थी कि यूपी में ब्राह्मण वोट को एकजुट किया जाए। अब अखिलेश के बाद मायावती ने भी ब्राह्मण वोटर्स पर दांव चला है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने और सफल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को केंद्र में रखा है। पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में टिकट देने का निर्णय लिया है। मायावती ने स्पष्ट किया है कि पार्टी केवल वादे नहीं करती बल्कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर काम करती है। इधर बीएसपी ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में लगी है, उधर पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव की मुश्किलें मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बढ़ा दी है।
18: अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है, इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें।
17: लेकिन मौलाना की अपील को समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है।
19: हमने एक नेता मुलायम सिंह यादव को चुना था और हमने एक नेता अखिलेश यादव को चुना है, उसी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और जीतेगी भी।
17: यूपी में 27 का समर अब जाति और धर्म के समीकरण बना रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

भारतीय शेयर बाजार में बम्पर कमाई का सपना देखने वाले आम निवेशकों के लिए एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। अपनी गाढ़ी कमाई को म्यूचुअल फंड और शेयरों में लगाने वालों के होश उड़ाने वाली ये खबर सीधे तौर पर आपकी जेब को प्रभावित करने वाली है। देश के स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशक बहुत तेजी से अपना बोरिया बिस्तरा समेट रहे हैं। इस साल भारत से विदेशी फंड्स की रिकॉर्ड निकासी की वजह से घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में आए इस बड़े उलटफेर के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। 2026 में अब तक भारत पर फोकस करने वाले इक्विटी फंड से 8.5 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम बाहर जा चुकी है। 2023 के बाद देश में जितना विदेशी निवेश आया था उसका 55% हिस्सा बाजार से वापस निकाला गया है। इस बिकवाली की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी शेयर बाजार, टेक कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सेक्टर्स में मची भारी तेजी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत और चीन जैसे देशों से पैसा निकालकर अमेरिका, ताइवान और साउथ कोरिया के एआई मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं। विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली से आम आदमी को दोहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाजार से डॉलर बाहर जाने से भारतीय रुपया कमजोर होता है, जिससे देश में आयात होने वाली चीजें महंगी हो जाती हैं। इसके अलावा आम लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और एसआईपी के रिटर्न पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। बीते हफ्ते अमेरिकी शेयर बाजार में रिकॉर्ड 120 अरब डॉलर का नया निवेश पहुंचा है। निवेशकों के इस भरोसे की वजह से डॉलर इंडेक्स एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एआई टेक्नोलॉजी के इस दौर में ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट्स में फिर से विदेशी पैसा लौटना शुरू हुआ है। इस बदलाव के बीच भारत से पिछले हफ्ते भी 440 मिलियन डॉलर और चीन से 1.7 अरब डॉलर की बड़ी निकासी दर्ज की गई है। दरअसल दुनिया में ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे रहने की संभावना ने भी निवेशकों को अमेरिकी बाजार की तरफ खींचा है। अमेरिकी टेक कंपनियों में चल रहे एआई बूम ने बाकी दुनिया के बाजारों को तगड़ा झटका दिया है। इन्वेस्टर्स ने अमेरिकी छोटी और मझोली कंपनियों के फंड्स में 2007 के बाद का सबसे बड़ा निवेश किया है। वैश्विक बदलावों के बीच गोल्ड और सिल्वर फंड से भी निवेशकों ने इस हफ्ते 3 अरब डॉलर निकाले हैं। मार्च से लेकर अब तक प्रेशियस मेटल्स फंड से कुल 18 अरब डॉलर की निकासी की जा चुकी है। दुनिया भर के बाजारों में मची इस उथल पुथल से यह साफ है कि बड़े फंड मैनेजर उभरते हुए बाजारों के मुकाबले अमेरिकी टेक सेक्टर्स को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। इस ग्लोबल रोटेशन के थमने तक भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव का ये दौर जारी रहने की आशंका है। विदेशी पैसे की इस विदाई से आम निवेशकों को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्लोबल एआई की इस रेस में घरेलू बाजार का ये उतार चढ़ाव छोटे निवेशकों के सब्र की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। आदित्य के राणा आज तक।

उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पहली एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी की सियासत में उबाल, विपक्ष का सवाल, क्यों सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, किसे बचा रही है सरकार, चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों पर बढ़ा सस्पेंस।

हटाए गए डीएसपी और एसएचओ समेत पुलिस वालों पर एफआईआर। दोपहर में महापंचायत। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा। शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में ढकेला, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया मर्डर।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं रेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और शुरुआत करते हैं शतक आज तक से। लखनऊ अग्निकांड में अवैध निर्माण मामले में 18 अधिकारी दोषी, एलडीए ने कार्रवाई की सिफारिश की और रिपोर्ट शासन को भेजी। लखनऊ अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक, अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। योगी ने कहा फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं। सीएम योगी ने हर जिले में विशेष टीमें गठित करने के दिए निर्देश, फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का आदेश। बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं होगा। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद एलडीए का एक्शन, 15 दिन में जवाब नहीं तो चल सकता है बुलडोजर। अस्पताल में भर्ती बिल्डिंग मालिक का सीने में दर्द का बहाना नहीं आया काम, डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को बताया फिट, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। लखनऊ अग्निकांड में नया मोड़, निलंबित एफएसएसओ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह ने लिखा खत, कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। लखनऊ अग्निकांड में निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह बयान से पलटे, वायरल वीडियो पर मांगी माफी। अग्निकांड के घायलों से मिले अखिलेश यादव, अखिलेश ने सरकार से 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा बड़े अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अखिलेश ने योगी राज में 5 नक्शों की जांच की मांग पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा मौत पर अखिलेश न करे राजनीति।
0: लखनऊ हाजीबाग प्रयागराज के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की हो रही है जांच, कई कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा मानकों की अनदेखी, वहीं कई संस्थान बंद मिले। प्रयागराज मानक पूरे न करने पर सिविल लाइन्स में स्थित खान ग्लोबल क्लासेस कोचिंग को किया गया सील। कानपुर में वैध कोचिंग पर कार्रवाई, कोचिंग संचालक बोले केडीए अधिकारियों ने कहा कि आज सील करवा लो कल खुलवा देंगे, केडीए ने दी सफाई। लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्नि सुरक्षा जांच तेज, जीडीए को अब तक 206 भवनों में खामियां मिली, 56 सेंटर्स को किया गया सील। नोएडा में सुरक्षा मानकों में भारी खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने 2 कोचिंग सेंटर सील किए, प्रशासन की संयुक्त टीम का निरीक्षण अभियान लगातार जारी। इन उन्नाव में भी 3 इंस्टीट्यूट को प्रशासन ने किया सीज, छोटे से कमरे में चलाया जा रहा है संस्थान। कौशाम्बी में एक्शन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कोचिंग सेंटर सील, महोबा में 1 कोचिंग सेंटर सील। आगरा में कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक, बेकार फायर एक्सटिंग्विशर का वीडियो आया सामने। सहारनपुर में गर्जे इमरान मसूद का, 12 साल में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक, सरकार युवाओं के भविष्य को कर रही है बर्बाद। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर यूपी कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।
1: राम मंदिर चंदा विवाद के बीच वीएचपी की अयोध्या बैठक टली, 25 से 29 जून की केंद्रीय प्रबंधन समिति बैठक स्थगित। मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रूट और जमीन निवेश आरोपों पर तेज हुई है राजनीति, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, अखिलेश यादव इस मामले पर ज्यादा हल्ला कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की एक्सप्रेसवे योजनाओं और जमीन निवेश से जुड़े कुछ तथ्य छिपाना चाहते हैं। गूगल मैप की गलती से फिरोजाबाद के गांव का नाम बदला, सरकारी काम अटके, सुधार के लिए प्रशासन ने गूगल को लिखा पत्र। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश वर्मा हटाए गए, जांच के बीच नए एसडीपीओ की तैनाती। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन, जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुनियोजित हत्या बताते हुए डीएसपी ने ये साजिश रची है कहा। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार से भरत एनकाउंटर मामले की जांच रिटायर्ड जज के बजाय पटना हाईकोर्ट के जज से कराने की बात कही, साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजे देने की मांग की। बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, सीएम सम्राट पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अपराधी आदमी है मुख्यमंत्री सम्राट।
0: पुणे में करोड़पति कारोबारी की बेटी की मौत का बड़ा खुलासा, शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट खाई में ढकेला। केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर पुलिस का दावा, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सिया गोयल ने रची साजिश। पुलिस के मुताबिक शादी से बचने के लिए सिया ने बताया

0: गांधी मार्केट में भी भरा पानी, वाहनों की रफ्तार हुई धीमी।
1: मुंबई के गांधी मार्केट में भारी बारिश से कई इलाकों में जलमग्न जैसी स्थिति, कई वाहन पानी में फंसे। मुंबई मूसलाधार बारिश से जलभराव, दादर रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में बड़ी परेशानी। नवी मुंबई में भारी बारिश से जलभराव, भाजी मार्केट में सामने आई तस्वीरें। मुंबई में भारी बारिश से जलभराव, किंग सर्कल के पास रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई की पहली बारिश में अंधेरी सबवे जलमग्न, प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नहीं दिख रहा है। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन, भूस्खलन से सड़कें बंद, मुख्य सड़क मार्ग पर गिरा मलबा, बड़ी मुसीबत। सिक्किम के रंगपुर रोरा थांग मार्ग पर भारी भूस्खलन, रास्ता पूरी तरह बंद होने से प्रशासन ने दूसरे रास्तों से यात्रियों को जाने की सलाह दी। कोलकाता में मूसलाधार बारिश का कहर, हाईकोर्ट परिसर समेत कई जगहों पर गिरे पेड़, कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। नवसारी समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। हिल स्टेशन सापुतारा में पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों के नजारे ने पर्यटकों को किया आकर्षित। राजकोट के गोंडल में तेज बारिश से रेलवे अंडरब्रिज में भरे पानी में पैसेंजर से भरी एसटी बस फंसी, जेसीबी की मदद से बाहर निकाली गई।
0: धर्मनगरी अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न, दिव्य समारोह का हुआ आयोजन। अयोध्या के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वज का किया पूजन, फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे करीब 4,000 राम भक्त। श्रद्धालुओं ने भव्य भोर होकर की पूजा पाठ। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जंग बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय को सौंपी करीब 300 वर्ष पुरानी भगवान श्री राम से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ की पांडुलिपि। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, 200 कारीगर बना रहे थे रथ। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान, सेवक रथों के जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरणों का कर रहे हैं तैयारी। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ की होगी पूर्णिमा स्नान, 15 दिन तक भगवान का रहेगा एकांतवास।
1: अमरावती में पारिवारिक विवाद, मेहमान बना पिता, बेटा बहू को कार से कुचलने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कानपुर में आरपीएफ की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से गिरते यात्री की बचाई गई जान। हिमाचल के सोलन सब्जी मंडी के पास भयंकर हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी, सभी सवार सुरक्षित। मेरठ में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मी और थाना मोबाइल जीप की मारी भीषण टक्कर, हादसे में 7 पुलिसकर्मी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा बाल सुधार गृह में गंभीर लापरवाही का खुलासा, धड़ल्ले से उपयोग हो रहे मोबाइल, शराब और नॉनवेज पार्टी चल रही है। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसे में होने वाले दूल्हे समेत 3 युवकों की दर्दनाक तरीके से मौत। मेहरौली में 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर, लड़की के पिता ने की फांसी की मांग। बघा में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में भीषण आग, 5 स्कूटी और कई लिथियम बैटरी जलकर राख। बोकारो में प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर युवती ने घंटों किया हंगामा, तस्वीरें आई सामने।
0: दिल्ली के उद्योग भवन इलाके के पास लगी भीषण आग, आग लगने की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद हुई। शॉर्ट सर्किट के बाद आग ने पास की झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर करीब 20 दमकल गाड़ियां आग बुझाने के लिए जुटी। अजमेर में चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 37 यात्रियों की बची जान, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। आगरा के आकाश इंस्टीट्यूट में बेसमेंट से धुआं उठने पर मचा हड़कंप, सैकड़ों छात्र सुरक्षित निकाले गए बाहर। विकास नगर के जंगल में लगातार लग रही आग, मौके पर वन कर्मी और दमकल कर्मी आग को काबू पाने में जुटे। हैदराबाद में एटीएम कैश वैन से 17 लाख रुपए की हुई चोरी, बदमाश वैन की डिक्की से बैग लेकर फरार, घटना सीसीटीवी में कैद। बेतिया में बेटा नहीं होने की नाराजगी में हैवान बना पिता, पत्नी को नहर में धकेला, 3 मासूम बच्चों को की डूबने से मौत। इंदौर में अवंतिका गैस में लगी आग से 4 लोग झुलसे, करीब 5,000 घरों की गैस सप्लाई बंद। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वाला गैंग सीसीटीवी में कैद, इस्कॉन मंदिर के पास लगातार वारदात से दहशत। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से सीमेंट के बोरे में छिपाकर ट्रक से लाई गई 48 लाख की विदेशी शराब जब्त।
1: मुर्शिदाबाद में बिजली गिरने से 4 की मौत।

13 लोग हुए घायल। पुंछ में एसडीआरएफ, पुलिस सेना, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त मॉक ड्रिल किया। जलवायु आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियां तेज। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की मार्केटिंग कर हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अमरावती में बड़ा साइबर घोटाला, गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे करोड़ों की ठगी। गोवा में छापेमारी के बाद 12 आरोपी गिरफ्तार। बटाला में जमीनी विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, कत्ल करने के बाद नौजवान ने खुद भी आत्महत्या की। वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज, 26 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल पर लगे 18 कट, फिल्म को सीबीएफसी ने यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट दिया। श्रद्धा कपूर की ईथा टीजर लॉन्च, फिल्म 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में आएगी। बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे टाइगर श्रॉफ, लोगों की सेवा और गरीब बेटियों की बातचीत की। जून के आखिरी वीकेंड पर एंटरटेनमेंट की बारिश, थिएटर और ओटीटी पर एक साथ रिलीज होंगी 13 नई फिल्में और सीरीज।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11। और अब सीधे ले चलेंगे आपको मनजिंदर सिंह सिरसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
1: या सिख दुनिया भर के सिखों की मान, उनके भावना के अनुकूल, उनकी पीड़ा को देखते हुए आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं, जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए, ठेंगा दिखाते हुए अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं, और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस को का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की वीडियो आपको दिखाई, पंजाब पुलिस किस तरह से एसपी और कमिश्नर पहुंचते हैं, और उसके बाद में अभी आपको यह भी दिखाता हूं कि किस तरह से जिस लड़के से ये वीडियो बनवाई गई, जब उसको ये पता चला कि मसला ये बन गया है, वो पुलिस तक जाता है और अपनी जान की माफी मांग, सुरक्षा के लिए किस तरह से इस लड़के ने बनाई, मैं इसका भी आप जरा बयान जरूर सुने एक मिनट का।

0: आप देख रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला दरअसल एक वीडियो का है, आपत्तिजनक वीडियो जो कि भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है उनका सामने आया था। उन्होंने कहा कि ये फेक वीडियो है, ये एक डीप फेक वीडियो है।
1: बड़े साहब से मिलवाना, बड़े साहब को मिलवाने के लिए होटल ले गए, हम आपको वीडियो दे देंगे अभी। होटल ले गए, होटल के कमरे में ले गए, होटल के कमरे के अंदर स्वपनदीप जिनको उन्होंने कमिश्नर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि आपको ये काम करना है, उसके एवज में 10 लाख रुपया भी दिया। अब सवाल यह है कि 15 तारीख को आपने बताया, वो लड़का बता रहा है कि 15 जून को मेरे को फोन आता है और मैं रात को गुड़गांव पहुंचता हूं, 16 तारीख को सुबह 10 लाख रुपया दिया जाता है। सारा एक दिन के अंदर 2191 फ्रेम की वीडियो की यह दिखाया गया कि हमने इसकी सारी जांच करा ली है, और जिनसे जांच कराई वो कह रहे हैं कि ना तो हम फोरेंसिक का, हमारे पास वीडियो का था, हम तो डॉक्यूमेंट फोरेंसिक थे, उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए और हमसे एक काम करवाया, और एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट भी आपके सामने और वीडियो भी आपके सामने है। आप सोचिए आज पंजाब के अंदर जिस तरह मुगलों के राज के दौरान जिस मानसिकता के साथ पाप किया जाता था, मस्सा रंगड़ जैसा आदमी जिसने इन्हें बड़ा पाप किया, और इसी तरह गुरु साहिबानों के प्रति अपशब्द और शराब का इसी तरह से ये पाप किए गए, उसी रूप में आकर आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल उनके साथी दुनिया भर में बसे सिखों को चैलेंज करते हुए हम तो ये पाप भी करेंगे, पैसे के दम पर नकली रिपोर्टें बनाकर अकाल तख्त को चैलेंज करें, और फिर सब लोगों ने आम आदमी पार्टी के सारे ही लोगों से वीडियो डलवाई गई अकाल तख्त के खिलाफ, अकाल तख्त के मान मर्यादा को तार तार किया गया, अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खत्म करने का पाप किया गया। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही है, ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं। आज बहुत बड़ा, इससे पहले बेअदबियों की जब घटना घटी, इस पाप के सजा सबको मिली, हमें विश्वास है जिस तरीके से इतना बड़ा पाप किया गया है और इस पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है, चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया, सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया, ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं कि
2: रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
4: व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, इट्स ब्लफ हियर, एंड यू नो व्हाट्स मोर अमेरिकन देन अमेरिकास 250th बर्थडे? Supporting American-owned companies like SpinQuest, America's number one social casino with over 1,000 games like Live Dealer Blackjack and Craps. They're offering new users a $30 coin package for just $10. Go to spinquest.com and sign up today.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit spinquest.com for more details.
6: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: In association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: Vimal, bolo zubaan kesri.
8: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
9: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
10: Patrakarta ke gur yahan nahi sikhe, to kya sikhe? Naam hi kaafi hai. इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Hey there, it's Stormy Warren, and on my podcast called The Stormy Cast, I talk to artists like Luke Bryan, Tim McGraw, and Miranda Lambert about their journey from their hometowns to their first big break in Nashville. Thomas Rhett called his episode of The Stormy Cast the best therapy session he's ever had. And during my conversation with Little Big Town, he needed tissues, and a lot of them. Yeah, the conversations go that deep. You'll find The Stormy Cast wherever you listen to your favorite podcast, in the TuneIn app, or at TuneIn.com.
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: स्मार्टफोन पर उंगलियां घुमाते हुए शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है? घर बैठे मनपसंद सामान मिल जाए तो दिन बन जाता है। हमारी इसी चाहत का फायदा उठाकर ऑनलाइन कंपनियां चुपके से जेब पर डाका डाल रही हैं। इसके लिए कंपनियां डार्क पैटर्न नाम से एक मायाजाल का सहारा ले रही हैं। ये डिजिटल दुनिया की ऐसी चालाकी है जिसके जरिए ग्राहकों को झांसा देकर जबरन ज्यादा पैसे खर्च कराए जाते हैं। हाल ही में आई डार्क पैटर्न इन इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट कंपनियों की भ्रामक ट्रिक से भारतीय ग्राहकों को सालाना 25 से 28 हजार करोड़ रुपए की भारी चपत लग रही है। देश में करीब 30 लाख 40 हजार करोड़ ऑनलाइन खरीदारों में से 88% लोग इस चालाकी का शिकार बने हैं। इस जाल में फंसकर हर प्रभावित ग्राहक हर महीने औसतन 78 से 87 रुपए फालतू गंवा रहा है। ये पूरा खेल बेहद शातिर तरीके से खेला जाता है। जब आप सामान पसंद कर रहे होते हैं तो स्क्रीन पर नकली टाइमर चलने लगता है कि स्टॉक खत्म होने वाला है। हड़बड़ी में जैसे ही आप पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं, कंपनी अपना असली रूप दिखाती है। डेटा के मुताबिक 63% डिजिटल पेमेंट करने वाले खरीदारों को अंतिम फेज में अचानक छिपे हुए चार्ज का सामना करना पड़ता है। 2024 में ये आंकड़ा 52% था, जो साफ दिखाता है कि कंपनियों की ये लूट लगातार बढ़ रही है। वहीं करीब 73% ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को अनचाहे विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। इस खेल की सबसे हैरान करने वाली वजह कंपनियों का शातिर इंटरफेस डिजाइन है। लोग समझते हैं कि वो समझदार हैं, लेकिन डिजिटल चालबाजी के आगे उनकी एक नहीं चलती। आंकड़े बताते हैं कि 81% ग्राहक इन ट्रिक्स को पहचानते हैं, फिर भी असलियत में खरीदारी करते समय 85% लोग इस जाल में फंस ही जाते हैं। नुकसान होने पर 53% लोग प्लेटफॉर्म पर शिकायत भी करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 23% को ही सही समाधान मिल पाता है। अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियों का तरीका भी एकदम जुदा है। क्विक कॉमर्स यानी चंद मिनटों में सामान पहुंचाने वाली प्लेटफॉर्म पर जल्दी खरीदने का नकली दबाव सबसे ज्यादा बनाया जाता है। ऑनलाइन ट्रेवल सेक्टर में टिकट बुक करते वक्त टैक्स और दूसरे चार्ज बिल्कुल आखिरी स्टेप पर दिखाकर धोखा दिया जाता है। इस धोखे की वजह से 36 से 45% ग्राहकों ने इन प्लेटफॉर्म पर भरोसा कम करके शॉपिंग घटा दी है या ऐप डिलीट कर दिया है। कंपनियों की ये शॉर्टकट वाली कमाई डिजिटल इकोनॉमी के भरोसे को कमजोर कर रही है। ग्राहकों की जेब की सुरक्षा के लिए अब इन छुपे हुए शुल्कों पर पूरी पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी हो गया है। कंपनियां भले ही ट्रिक्स अपनाकर अपना फायदा देख रही हों, लेकिन ग्राहकों का टूटता भरोसा भविष्य में ई कॉमर्स बिजनेस के लिए बहुत बड़ा घाटा साबित हो सकता है। आदित्य किराणा, आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

बड़ा सस्पेंस। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई के गले तक पानी। दादर में रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब। रेड अलर्ट के साथ दिन भर झमाझम बरसात की चेतावनी। देश के पूर्वी इलाके भी जलमग्न।

0: मिलकर किया मर्डर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर

0: बात करेंगे उस मौत की आग की जिसकी जांच की लपटें अब तक उन इमारतों तक पहुंच चुकी हैं जो तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर उसे धत्ता बताती हैं। खुद ही घेरे में आई लखनऊ विकास प्राधिकरण अब ऐसे इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। एलडी ने ऐसी इमारतों के मालिकों को 15 दिन का नोटिस भी जारी किया।
1: सवालों के घेरे में आई एलडीए ने अपने लोगों पर भी एक्शन ले लिया है। एलडीए रिपोर्ट में 18 अधिकारियों और इंजीनियर्स को दोषी ठहराया गया है। इससे पहले एलडीए ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को भी निलंबित कर दिया था।
0: तो जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जवाब इसी नोटिस को लेकर दिया जाएगा। अगर वक्त रहते जवाब नहीं मिलता है तो इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। एलडी का ये सख्त एक्शन, जिसमें अब एलडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 18 अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। 18 अधिकारी दोषी पाए गए हैं, जिसमें 5 जोनल अधिकारी हैं। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी।
1: तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि एलडीए का एक्शन शुरू हो चुका है। नोटिस चस्पा दिया गया है उसी बिल्डिंग के बाहर जहां आग लगी थी और 15 जाने गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि जवाब नहीं मिला अगर मालिकों की तरफ से तो इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा और गिरेगा। वैसे भी बिल्डिंग की जो ढांचा है उस पर अब सवाल खड़े ही हो चुके हैं क्योंकि इस बिल्डिंग में लगी थी आग। और अब एलडीए अपनी तरफ से एक जांच रिपोर्ट भी तैयार कर चुकी है।
2: ऐसी कोचिंग थी जहां पर निकलने की बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन यहां पर
3: जमाव देखने को मिला।
2: क्या निकल रहा है यहां पर, सारी चीजें हैं। यही कोचिंग क्यों चुना गया? सीएफओ से कुछ कड़े सवाल करेंगे। आइए हमारे साथ, ये पाइप्स हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर आइए। ये पाइप्स हैं और इन पाइप्स को निकाला गया है इन कोचिंग सेंटर्स में। यानी कि ये पाइप जो आपको दिखाऊंगा मैं, ये ऑपरेशनल है कि नहीं है, इनमें पानी का फ्लो है कि नहीं है, ये इंश्योर किया जाएगा। और सीएफओ भी आप देखें यहां पर।
0: तो लखनऊ अग्निकांड में 15 मौत के बाद सरकार एजेंसियां एक्शन में दिखाई दे रही हैं। अब उन इमारतों की शिनाख्त हो रही है जहां नियम और कानून तोड़े गए। अवैध निर्माण और गतिविधियों वाली इमारतों पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है।
1: एलडी ने बाकायदा अभियान छेड़ दिया है, लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर क्या ऊंचे अफसरों तक भी इसकी घात गिरेगी कि नहीं।

0: दुनिया उजड़ गई।
1: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
2: उम्मीदों की ज्योति बुझ गई, अरमानों का सूरज अस्त हो गया। सागर के परिजनों के सामने अब गम का सागर है। नीलेश के पिता की अब कोई चाहत शेष नहीं रही।
3: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं, या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख रेख सुविधा असुविधा की बात है।
4: कोई एग्जिट नहीं था, होता तो बच्चे निकल सकते थे आदित्य।
3: मौके कोई था ही नहीं, बंद था सब। अब जिस हिसाब से दिखाया गया उस हिसाब से बंद है सब, बाहर के आदमी खड़े क्या करें।
2: एक नहीं 15 परिवारों का भविष्य जलकर खाक हो गया। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमणि, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनिल, अम्मार, सुमल्या, सारे के सारे नौजवान, सारे के सारे ऊर्जावान, सब के सब खत्म, सारे सपने झुलस गए, सारी उम्मीदें टूट गई, 15 परिवारों के चिराग बुझ गए। इनका क्या कसूर था? अपनी हिफाजत का भरोसा करना, अपनी हुकूमत पर भरोसा करना, अपने सपनों, तकदीर, परिवार, रोटी रोजगार के लिए जान की फिक्र छोड़कर सिस्टम पर भरोसा करना। लखनऊ में एक इमारत के लाक्षागृह बनने की खबर आती है तो हुक्मरान दौरे करने चले आते हैं, जांच समिति बिठा दी जाती है, आनन फानन में एक्शन की तैयारी कर ली जाती है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए का नोटिस है। 15 मौत के बाद एलडीए की नींद टूटी है, बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है।
5: जो घटना के दाग हैं वो यहाँ पर अभी भी देखे जा सकते हैं। जो घटना क्रम पूरा हुआ है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ से। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस बैरिकेड के पास आगे आके दिखाएं, यहाँ पर जो पेट्स के सामान थे, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सभी अभी भी यहाँ पर आपको पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ जानवर क्या इंसान, वो सभी जो है यहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ तस्वीरें थोड़ा और करीब से आकर कि ये पूरा का पूरा नीचे का जो एरिया है, ये आग विध्वंस जब हुआ तो पूरा का पूरा टूटकर एक के बाद एक नीचे आता गया चला गया। ऊपर जहां पर ग्लासेस लगे हुए थे वहां पर जब पत्थर फेंके गए तब जो है कुल मिलाकर लोग कुछ वहां से फांद पाए, कुछ निकल पाए, तो कुछ जो सांस जो फूलने लगी उसके चक्कर में मौत हो गई। जो शुरुआती जानकारी डॉक्टर्स के जरिए मिल पाई है वो ये बताती है मौत का मुख्य कारण आग लगना यानी कि बर्न इंजरी नहीं है बल्कि सांस लेने में परेशानी है।
2: 15 मौत के बाद सूबे की सरकार भी एक्शन में दिखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन मौके का मुआयना करने पहुंच जाते हैं। एसआईटी गठित कर जांच शुरू हो जाती है, यानी वही दशकों पुराना घिसा पिटा तरीका।
6: एसआईटी का गठन हुआ है जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए।
2: जांच तो होगी, जांच होगी तो पता चलेगा कि रिहायशी मकान में दफ्तर दुकान कैसे बन गए, मौत की सौदागरी कर मुनाफा वसूले में कौन कौन शामिल था, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, दमकल विभाग क्या कर रहा था, बिजली विभाग क्यों सन्नाटे में था, और तो और पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सारा सिस्टम एक साथ क्यों फेल हो गया, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर रिपोर्ट आ जाएगी, मुकदमा होगा, जमानत होगी, बात रफा दफा, फिर किसी इमारत से लपटे उठेंगे, फिर किसी का नीलेश, किसी की ज्योति, किसी का भविष्य लाक्षागृह में घिरकर दम तोड़ जाएगा। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
7: हाल के किसी भी हादसे को याद कीजिए, अगर कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा मंत्री, बड़ा सरकारी बाबू सजा पाया हो कुर्सी से हटाया गया हो, सस्पेंड तो दूर की बात है, ये बता दीजिए। यहां तक कि जेल भी कुछ दिन के लिए मोहरों के नाम पर छोटे कर्मचारी अगर गए तो चंद दिन में फिर जमानत पर बाहर आ जाते हैं।
0: इसीलिए सोमवार को जो 15 परिवारों ने अपने बेटे बेटियों को खोया है उनकी बात आज यूपी की सरकार सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि परिवारों को लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं होगा सिवाय कुछ दिन जांच और जांच खेलने के।
8: मैंने उठाया, मम्मी मम्मी कर रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर मामी तो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी, फिर बोला कि मम्मी थोड़ा चेहरा दिखाई दिया, उसने आगे आके करके दिखाया, मम्मी आग लगी, मेरा दम घुट गया, मेरे को बचा लो मम्मी, मैं बचा भी नहीं पाई अपने बच्चे को।
9: जवां बेटा गुजर जाए तो कंधा टूट जाता है, 15 परिवार टूट चुके हैं, लेकिन इन 15 परिवारों का आज सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल।
8: तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
9: मुख्यमंत्री से 15 परिवार पूछते हैं, क्या वाकई बेईमानी की माचिस से फिर कहीं आग नहीं लगने दी जाए, क्या एसआईटी केवल सवालों की सुलगती आग पर फिलहाल पानी डालने वाला जरिया नहीं बने, केवल निचले मोहरे नहीं बल्कि बड़े अधिकारी मंत्री और भ्रष्टाचार के मगरमच्छों तक जांच पहुंचेगी, या फिर 4 दिन सवाल उठते हैं उठने दो और फिर सब भूल जाएंगे वाली रवायत चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बार बताना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन पहले नौकरी ज्वाइन करने वाले भविष्य शर्मा के पिता कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, जांच में कुछ नहीं निकलने वाला।
10: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा।
9: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव के मामा ने सीधे मुख्यमंत्री के नाम अपना संदेश भेजा है, सुन लीजिए मुख्यमंत्री। खांजे को खोने वाले मामा को लगता सरकार कुछ नहीं करने वाली।
11: मंत्री जी से ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये ट्राई ट्राई फीस हो जाएगी 4 दिन के बाद, वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ, और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, अब उसके बाद
12: आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे?
11: 7-10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। आप
9: अपने माता पिता की तस्वीर रचने वाले नीलेश के पिता बेटे को खोने के बाद कहते हैं आश्वासन के सिवाय सरकार कुछ नहीं कर सकती।
3: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए सुलझाने के लिए केवल आश्वासन देंगे। फिर
9: जो बच्चे बस परिवार की उम्मीदों का भार संभालने के लिए पहला कदम ही उठाए, उनके घर वालों को लगता है कि हमारे देश में जनता की मौत के बाद जांच वो झुनझुना है जिसे बजाकर फुसलाया जाता है, बहलाया जाता है। यही वजह है कि अपनी बहन को खोने वाले भाई सत्यम को सरकार की जांच वाले ऐलान से रत्ती भर उम्मीद नहीं।
13: ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए, लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
9: वो 15 लोग एक बार नहीं दो दो बार जलाए गए, पहले लखनऊ के अलीगंज की इस बिल्डिंग में सरकारी लापरवाही के हाथ, सरकारी नीम बेहोशी के कारण, और फिर दूसरी बार हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चिता पर उन्हें अग्नि दी गई। जिनको न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की बात कर दी गई, बीच में दौरा छोड़कर पहुंचने की बातें बताई गई, अधिकारियों को फटकार से लेकर किसी को बख्शेंगे नहीं वाली बातें भीतर से बाहर तक आईं, लेकिन वो आम आदमी, वो मिडिल क्लास जिसका अपना जलकर मरा है, वो अब की किसी हालत में विश्वास नहीं करना चाहता।
14: किसी भी तरह नहीं कर सकते, शासन प्रशासन की गलती है।
9: नीलेश की भाभी पूछती है, बताइए सरकार कब तक उजड़ेंगे घर बार?
14: SIT बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना, किसी भी तरह नहीं दे सकते, शासन प्रशासन की गलती है। अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा, ये VIP यहाँ पर जब मंत्री निकलते तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता, आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते बिलते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे, और वहाँ देवर जल गया जनता को तरस नहीं है गवर्नमेंट प्रशासन को, वहाँ इतने बेचारे कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे उनके माँ, किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
15: 15 के 15 परिवार मानते हैं सरकार किसी की भी हो कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये लोग गुस्से में हैं, ये परिवार दुख में है इसलिए बोल दिया, लेकिन हकीकत ये है कि सच अब सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग यही तो देखते आए हैं। पहले कहीं आग लगती है, फिर वहाँ नेताओं का दौरा होता है, फिर मुआवजे का चेक देने के नाम पर सियासी फोटो सेशन होता है, SIT जांच का ऐलान करके चंद दिन धूम धड़ाके से जांच दिखाई जाती है, और फिर या तो निचले स्तर का कर्मचारी, कोई गार्ड, कोई मैनेजर पकड़कर पीठ थपथपा ली जाती है, या फिर जांच जारी है वाली पिपहरी बजाई जाती है, ना कोई उच्च अधिकारी सजा पाता है, ना किसी का मंत्री पद जाता है, ना किसी को जेल होती है, छोड़ दिया जाता है जनता को फिर से भ्रष्टाचार के मुंह में, कहीं जलने, कहीं डूबने, कहीं गिरने, कहीं मरने के लिए।
0: लखनऊ अग्निकांड में जब गर्दन फंसी है तो एक्शन की शुरुआत हुई है। सीएम योगी खुद निर्देश जारी कर रहे हैं, LDA अधिकारी और इंजीनियर्स पर कार्रवाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? यूपी की सियासत में अग्निकांड को लेकर दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश भी शुरू की गई।
16: सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? कुछ ऐसे ही होश में आई है यूपी की सरकार, जिसके सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अब कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलेंगे, बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अवैध कोचिंग संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये सबसे पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों इस इमारत के लक्षा गृह में तब्दील होने का इंतजार किया गया? क्यों 15 नौजवानों की मौत की नौबत आने दी गई? वक्त की जरूरत है अपने गिरेबान में झांकने की, सावधान होने की, सबक सीखने की, लेकिन इस पर सियासत की आंख मिचौली चल रही है।
17: ये जो घटनाएं जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है, और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए, अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से ये घटना हुई, वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए।
18: और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ, और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।
16: अलीगंज में जिस परिवार ने अपनों को खोया है, उन्हें लग रहा है कि मामला ठंडा पड़ते ही सब ठंडे पड़ जाएंगे, इस हादसे को यूं ही भुला दिया जाएगा।
8: मेरे तो दुनिया उजड़ गई, थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरे तो दुनिया उजड़ गई,
11: आग लग गई है बिल्डिंग में, उनके यहाँ कोचिंग वाले, और उसमें जो है तो वो उसी के अंदर फंसा हुआ। तब छोटे बेटे को हमने आवाज दी, कहा कि भैया निकलो जल्दी, भागे, बस उसके बाद निकल लिए। ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
16: इनकी आशंका सही है, क्योंकि एक बार फिर पूरी व्यवस्था ठर्रे पर चलती दिख रही है। LDA जांच का वही पुराना खेल खेलता दिख रहा है। LDA की जांच में 18 अधिकारी और अभियंता दोषी पाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि इमारत को आवासीय इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। जबकि बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। इमारत में धुआं बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। भवन में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। भवन में आने जाने का एक ही मार्ग था। ये जांच रिपोर्ट अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इतनी अनियमितताओं पर समय रहते क्यों कार्रवाई नहीं हुई? समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
7: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ।
20: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
21: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
20: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
22: Stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
19: Sanitary Solutions,

टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव की तेज रफ्तार से आईटी सेक्टर में नौकरियों का पूरा गणित बदलने लगा है। आज कंपनियों की नज़र उन लोगों पर है जो सीधे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सके। इसी बदलाव की झलक मई 2026 के हायरिंग आंकड़ों में नजर आ रही है। दरअसल देश में कुल व्हाइट कॉलर हायरिंग सालाना आधार पर महज 1% बढ़ी है। वहीं आईटी सेक्टर की भर्ती में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दबाव एंट्री लेवल और कम स्किल वाली नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईटी सेक्टर की सुस्ती पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा खास है। जहां एक तरफ सामान्य टेक रोल्स में मौके कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बनी हुई है, जिनमें शामिल हैं AI, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं जो ऑटोमेशन और AI प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं फोकस बड़ी टीम बनाने की जगह हाई स्किल टैलेंट पर है, यानी नौकरी बाजार में चुनौती स्किल की है। कंपनियों की प्राथमिकता का असर सैलरी ट्रेंड पर भी साफ नजर आ रहा है। कम अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती घट रही है, जबकि अनुभवी लोगों पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 20 लाख रुपए सालाने से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मिड लेवल और एंट्री लेवल हायरिंग में कमजोरी बनी रही है। AI को लेकर शुरुआती उत्साह खत्म होने की बातें भी कई बार सामने आई, लेकिन हायरिंग डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। फरवरी के रिकॉर्ड स्तर के बाद थोड़ी नरमी जरूर आई है, फिर भी AI से जुड़ी नौकरियां बाकी बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मई 2026 में AI और मशीन लर्निंग से जुड़ी हायरिंग 22% बढ़ी है। इस बदलाव के साथ IT कंपनियों का पुराना ढांचा भी बदलता दिख रहा है। लंबे समय तक IT इंडस्ट्री एक ऐसे मॉडल पर चलती रही जिसमें जूनियर कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी और अनुभवी प्रोफेशनल्स कम, लेकिन AI के दौर में ये समीकरण बदल रहा है। अब पारंपरिक पिरामिड मॉडल की जगह डायमंड मॉडल उभर रहा है। इस मॉडल में एक्सपर्ट्स और अनुभवी कर्मचारियों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। वहीं कंपनियां टेक्नोलॉजी खर्च को रिजल्ट देने वाली भूमिकाओं की तरफ मोड़ रही हैं। इसी ट्रेंड का फायदा उन IT कंपनियों को मिल सकता है जिनकी पकड़ AI, डिजिटल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मजबूत है। आदित्य के राणा आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

रिपोर्ट के आरोपों से घिरी पंजाब के सीएम भगवंत मान की सरकार बीजेपी का हल्ला बोल, कहा मान ने अकाल तख्त का अपमान किया, सिरसा ने पेश किया वीडियो सबूत। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को पाया दोषी, इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, धड़ाधड़ सील हो रहे हैं मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पहली एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी की सियासत में उबाल, विपक्ष का सवाल क्यों सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, किसे बचा रही है सरकार, चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों पर बड़ा सस्पेंड। मानसून की पहली बारिश में ही मुंबई के गले तक पानी, दादर में रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब, रेड अलर्ट के साथ दिन भर झमाझम बरसात की चेतावनी, देश के पूर्वी इलाके भी जलमग्न। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा, शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फुट गहरी खाई में धकेला, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया ये मर्डर।

0: इस्तवाल 12 बजे 12 रिपोर्टर में खबरों की शुरुआत लखनऊ अग्निकांड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के एक्शन से करते हैं। एलडीए ने अपनी रिपोर्ट में 18 अधिकारियों और इंजीनियर्स को दोषी ठहराया है। एलडीए ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। दोषियों में 5 जोनल अधिकारी समेत कुल 18 इंजीनियर और संबंधित अधिकारी शामिल बताए गए हैं। इससे पहले एलडीए एक अवर अभियंता और एक सहायक अभियंता को निलंबित कर चुका है। जांच में यह भी सामने आया है कि वर्ष 2016 में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण आदेश के बाद को बाद में निरस्त कर दिया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन विहित प्राधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव जो उस टाइम पर अफसर थे उन्होंने ध्वस्तीकरण आदेश को खत्म कर दिया था।
1: लखनऊ में अग्निकांड के बाद अब एसआईटी रिपोर्ट जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई थी उसमें 18 लोगों को दोषी पाया है। अब इस दोष के बाद जिसमें अधिशासी अभियंता से लेकर कई इंजीनियर और एलडीए के अधिकारी शामिल हैं, अब उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। चूंकि 18 की ये तादाद है जिसमें वह लोग भी हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को परमिशन दी थी 2016 से लेकर अब तक। तत्कालीन रहे कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मानकों के विपरीत ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खड़ी कर दी गई थी जिसमें अधिकारियों ने जांच नहीं की। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसके अंदर जिस तरीके से वेंटिलेशन की हो एग्जिट हो वो कुछ मौजूद नहीं था, ये भी इस रिपोर्ट में दिया गया है और अब इस पर कार्रवाई पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, अब शासन स्तर पर इसमें एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
0: तो लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत पर एलडीए एक्शन में है। 18 अधिकारियों पर जहां कार्रवाई की सिफारिश की गई है वहीं उस इमारत पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है जिसकी आग में जलकर 15 लोग मारे गए। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने इमारत में एक नोटिस चस्पा किया है। आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने पर एलडीए ने नोटिस चस्पा किया है। 15 दिन में बिल्डिंग मालिकों से जवाब मांगा गया है, जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।
2: तो क्या अफसरों की मंजूरी के बिना सज गया लखनऊ का लाक्षा गृह? इस बात को लेकर एक और जहां सवाल उठ रहे हैं, उस बीच में एलडीए ने इमारत पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। इस नोटिस में यह साफ किया गया है कि 15 दिनों के भीतर जो मुख्य आरोपी या जो ओनर है उनकी तरफ से बताया जाए कि आखिर ये इमारत यहां यानी कि रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल तरीके से कैसे इस्तेमाल हो रही थी, इसको लेकर इस नोटिस में सवाल किया गया है। बड़ी बात यह है 15 दिनों के भीतर एलडीए ने जवाब मांगा है और जवाब नहीं मिलने पर इस मामले पर और इस मौत की इमारत पर ध्वस्तीकरण यानी कि बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। इस बीच में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आखिर एलडीए ने जेई और एई को ही क्यों सस्पेंड किया है, बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती क्यों दिखाई नहीं पड़ी है, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
0: यूपी में एक्शन ही एक्शन है। एक तरफ लखनऊ अग्निकांड पर कार्रवाई का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस में कल एसआईटी रिपोर्ट आ गई। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर ताजा खबर क्या है बता रहे हैं कुमार अभिषेक।
3: अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में एक चीज बिल्कुल साफ है कि किसी को फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब ये रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। लेकिन चंपत राय का क्या होगा, क्या चंपत राय पर सवाल है? अगर देखें तो चंपत राय को लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन के बीच ऐसी आवाज़ें उठती रही हैं कि चाहे जो भी हो चंपत राय निष्कलंक हैं। ऐसी बातें नृपेंद्र मिश्र ने कही, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि किसी का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, इशारा चंपत राय की तरफ ही था। लेकिन 150 पन्ने की इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं चाहे वो चंपत राय हों अनिल मिश्रा हों, ऐसे लोगों की भूमिका क्या इन्वेस्टिगेट की गई है या नहीं। लेकिन पिछले दिनों जब से ये एसआईटी की जांच फिलहाल खत्म हुई है, हालांकि आगे की जाँच अभी चलेगी, चंपत राय और दूसरे ट्रस्ट के लोग सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब खबर पश्चिम बंगाल से। ऋतव्रत बैनर्जी गुट ने टीएमसी का नाम और निशान हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। ऋतव्रत खेमे ने चुनाव आयोग को अपनी पार्टी की नई बनी राष्ट्रीय समिति से जुड़ा दस्तावेज सौंप दिए हैं। ऋतव्रत ने कहा कि वही असली पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए अलग से मान्यता मांगने का कोई सवाल नहीं उठता।
4: तृणमूल पर कब्जे की लड़ाई दिन पर दिन तेज होती जा रही है। किसका कब्जा होगा ये लेकर हमने देखा पिछले दो दिनों में कई डेवलपमेंट हुए। ममता बनर्जी ने कल ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जो समिति बनाई है जिसमें वो अध्यक्ष हैं उसके तौर पर एक चिट्ठी सौंप दी और इसके तुरंत बाद ऋतव्रत बैनर्जी जो बागी गुट का संचालन कर रहे हैं वो भी चुनाव आयोग पहुंच गए और उन्होंने भी चुनाव आयोग से बात की। और अब ये सवाल हो रहा है कि असली तृणमूल कौन है और लोगो या फिर चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। हालांकि ऋतव्रत बैनर्जी का कहना है कि हम लोग चुनाव चिन्ह या लोगों पर लड़ाई नहीं कर रहे हैं, असली तृणमूल हम ही हैं। और दो तीन दिन पहले आपको याद होगा कि ऋतव्रत कैंप ने राष्ट्रीय समिति का गठन कर दिया 30 लोगों का और उसमें वहां पर अरूप राय को चेयरमैन घोषित कर दिया, ममता बनर्जी को हटा दिया। तो ऐसे में अब लड़ाई चुनाव आयोग के पास पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग क्या करता है।
0: तो 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली खबर हम आपके लिए ला रहे हैं पटना से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार कल एक्शन में नजर आए। लो प्रोफाइल रहने वाले पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कल पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने वहां कई विभागों का निरीक्षण किया। जिस समय निशांत पीएमसीएच में थे तो वहां के प्रिंसिपल नदारद मिले। इस पर निशांत सख्त अंदाज में बोले कि प्रिंसिपल पर एक्शन लेंगे।
5: पटना के पीएमसीएच में कल शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बिना पूर्व सूचना के ही औचक निरीक्षण करने के लिए अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कई विभागों का दौरा भी किया, मरीजों और परिजनों से बातचीत भी की और कई अस्पताल में गड़बड़ियां और खामियां भी पाई। निशांत जब पीएमसीएच में मौजूद थे तो उस दौरान पीएमसीएच के प्रिंसिपल वहां से नदारद पाए गए, जिसको लेकर निशांत ने कड़ी आपत्ति जताई और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात भी की। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जिस तरीके से गड़बड़ियां और खामियां पाई गई हैं उसने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
0: तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपनी इस विजिट के दौरान क्या कहा, आइए ये भी सुन लीजिए।
6: जी हाँ, मैंने देखा काफी चीजें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फोन से भी

0: बच्चों और अन्य पुलिसकर्मियों पर FIR भी दर्ज की गई थी।
1: भोजपुर पुलिस ने जिस तरह भरत तिवारी का एनकाउंटर किया, उसके बाद लगातार स्थानीय लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि इस फर्जी एनकाउंटर की जांच कराई जाए। सरकार ने आखिरकार भरत तिवारी की मां के आवेदन पर FIR दर्ज करवाने का फैसला किया। अब कार्रवाई जगदीशपुर के SDPO के ऊपर भी हुई है, लेकिन आज इस वक्त जहां मौजूद हैं बिलौटी गांव में भरत तिवारी के, वहां पर महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत के अंदर सरकार से इस फर्जी एनकाउंटर को लेकर के क्या कुछ मांगे की जाती हैं उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन फिलहाल इस पूरे प्रकरण में सम्राट सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है।
0: 12:12 रिपोर्टेड में खबरों का सिलसिला जारी है और अगली रिपोर्ट हम लेकर आ रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली में हुई है एक बेहद शर्मनाक और खौफनाक वारदात। फुटपाथ पर परिवार के साथ सो रही एक मासूम बच्ची को अगवा कर एक कैब चालक ने पहले रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। वारदात के 4 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरी खबर बता रहे हैं आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा।
2: बेघर बच्ची का पहले अपहरण किया, उसके बाद उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दिया और पुलिस ने जब पकड़ा तो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए भागने की कोशिश करने लगा। एनकाउंटर हुआ और घायल हो गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सोमवार की सुबह उस वक्त 11 साल की मासूम बच्ची का अपहरण किया जब वो फुटपाथ पर अपनी माँ के साथ सो रही थी। इसके बाद उसने उस मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की, उसकी हत्या की और बॉडी को गुड़गांव फरीदाबाद के बीच जंगल में फेंक दिया। पुलिस की टीम जब आरोपी को गिरफ्तार कर निशानदेही के लिए मौकाए वारदात पर जा रही थी तो आरोपी ने पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश की और इसी दौरान एनकाउंटर में वो घायल हो गया।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब बात पुणे के उस हत्याकांड की जिसने समाज को झकझोर दिया है। पुणे में लोहागढ़ किले में हुई मौत के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कि केतन अग्रवाल की मौत हादसे में नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि केतन की मंगेतर सिया पर लगा है। आरोप है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर खाई में धक्का देकर केतन की हत्या कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ओमकार वाबले का जो इस वक्त लोहागढ़ किले में ही मौजूद है। ओमकार, एक एक करके परतें खुल रही हैं, बताएं अब ताजा जानकारियां क्या आ रही हैं सामने?
3: एग्जैक्टली, अब इन्वेस्टिगेशन ये दिखा रहा है कि सिया गोयल ही इस पूरे मामले की मेन कॉन्स्पिरेटर है। उसी ने प्लान किया, उसी ने एग्जीक्यूट किया और चेतन चौधरी जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी उसमें हेल्प ली। अभी मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ यही वो जगह है जहाँ 350 फीट गहरी खाई है, जिस खाई में केतन अग्रवाल के शादी के सपने दफन हो गए। क्योंकि सिया जब उसके साथ यहाँ आई थी तब उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, वो उसे यहाँ से धक्का दे देगी। हम लोहगढ़ किले पे हैं, जिस लोहगढ़ किले की ये खाई आपको नजर आपको दिख रही होगी, इसी खाई में इसी स्पॉट पे इस वारदात को अंजाम दिया गया जहां 31 मई को पहली बार ये दोनों ट्रेक के लिए आए थे, तब सिया ने रेकी की, फिर 14 तारीख को वापस आ गए, फिर 14 तारीख को सिया ने कोशिश की लेकिन उससे हो नहीं पाया, फिर 18 तारीख को इस वारदात को अंजाम दिया गया यहीं से, जहां आप देख सकते हो नीचे गांव है अलग अलग। पुणे की ये मावल तहसील की दूसरी बाजू है, इसी तरफ उसे धक्का दे दिया गया और बाद में 19 को उसकी बॉडी यहां से बरामद की हुई।
0: जी ओंकार, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात मुंबई में बारिश की। मुंबई में कल मॉनसून की एंट्री हो गई, एंट्री भी इतनी जोरदार कि मुंबई के कई इलाकों में सड़कें लबालब भर गई। किंग सर्कल, गांधी मार्केट, दादर, नवी मुंबई, तमाम इलाकों से जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए आज तक संवाददाता दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।
4: हम इस वक्त मुंबई के गांधी मार्केट परिसर में खड़े हैं जहां पर लोगों को हर साल जल जमाव की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहां पे रहते हैं और हर साल इस नजारे को अपनी आंखों से देखते हैं और ये कई सालों से नजारा कायम है। सर, आपका नाम क्या और आप सब लोग यहीं रहते हैं?
5: सब यहीं रहते हैं जी।
4: सर, आपका नाम क्या और
5: मेरा नाम महेंद्र सिंह है। ऐसा BMC बोलती है, हमने काम किया पर काम तो कुछ ऐसा लगता नहीं, रात को तो पूरा पानी चढ़ा ही हुआ था, पूरा वीडियो भी है इसका मेरे पास, और इधर बाजू में ब्रिज के नीचे भी पूरा पानी चढ़ा हुआ था। अभी पता किया तो बोलते हैं जी पंप खराब था, पहले दिन ही पंप कैसे खराब था।
6: मेरे को लगता है होप

0: ठीक हो जाएगा। इतने साल से लगातार ये पानी भर रहे हैं इधर, हम लोग भी इतना पीछे ही रहते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं।
1: बिल्कुल, तो एक चीज़ है जिस पर दुनिया कायम है, वो है उम्मीद जो यहाँ के लोगों को है। हर साल तो परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन उम्मीद है कि इस साल कुछ परिस्थिति बदलेगी, कुछ सुधार होगा, लोगों को दिक्कतें कम होगी। अब देखना होगा जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या लोगों की उम्मीदें खरी उतर पूरी होती हैं या नहीं।
2: अगली खबर असम की राजधानी गुवाहाटी से। गुवाहाटी में एक बर्थडे पार्टी के वीडियो पर सोशल मीडिया में बवाल मच गया। बवाल ऐसा मचा कि पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए बर्थडे पार्टी मनाने वाले 14 लोगों को हिरासत में ले लिया। क्यों मचाया बवाल, देखिए रिपोर्ट।
3: गुवाहाटी के कुमार वर्मा फ्लाईओवर पर आधी रात को मनाई गई एक जन्मदिन समारोह अभी कानूनी विवाद के विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा गया कि फ्लाईओवर पर रेड कारपेट बिछाकर जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया, जहां कई लोग सड़क पर इकट्ठा होकर जन्मदिन मनाते नजर आए। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यवसायी सहित कुल 14 लोगों को हिरासत में ली। इसके साथ ही पार्टी में इस्तेमाल की गई 4 गाड़ियों को भी जब्त कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सड़क और बुनियादी ढांचे का उपयोग निजी समारोह के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा करने का केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि जन सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा करते हैं।
2: बेअदबी वीडियो मामले में फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट के आरोपों से घिरी है पंजाब सरकार और पंजाब के सीएम भगवंत मान। बीजेपी का हल्ला बोल है, कहा है कि मान ने अकाल तख्त का अपमान किया है। सिरसा जो कि दिल्ली के मंत्री है, उन्होंने एक वीडियो सबूत भी पेश किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके।
4: आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं, ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं।
2: और अगली खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं झारखंड से, जहां रांची जो राजधानी है उसके जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल झारखंड प्रीमियर लीग T20 का फाइनल खेला गया। इतनी भीड़ जुटी कि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।
5: जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल के तर्ज पर आयोजित झारखंड T20 लीग के फाइनल में भगदड़ मच गई। मुख्य कारण बताया जा रहा है कि फ्री एंट्री थी और क्रिकेट को लेकर यहां दीवानगी है, और यही वजह है कि अनएक्सपेक्टेड क्राउड जो है वो यहां पे पहुंच गया मैच को देखने के लिए। और 4 गेट है जेएससीए के, जिसमें एक ही गेट को खोला गया था। मैनेजमेंट जो है जेएससीए मैनेजमेंट वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा क्राउड जो है वो गैदर करेगा एक साथ यहां पे एंट्री के लिए। लगातार मीटिंग्स हुए थे उनके जिला प्रशासन के साथ, लेकिन ये असेस करने में दोनों साइड से जो है प्रशासन और जेएससीए जो कमेटी है वो भी फेल रही।
2: और अब खबर फीफा वर्ल्ड कप की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लियोनेल मेसी भी 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन 2010 के वर्ल्ड कप में वे कोई गोल नहीं कर पाए थे। साथ ही रोनाल्डो वर्ल्ड कप में एक से ज्यादा गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं।

0: फीफा वर्ल्ड कप में हर साल रिकॉर्ड बनते हैं और अगले ही दिन टूट जाते हैं। अभी कल ही लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड बनाया था जिसको अब रोनाल्डो ने तोड़ दिया है। रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि 2006 से लेकर 2026 तक हर एडिशन में गोल करने में कामयाब हुए हैं। नंबर दो पर अब दोष नाम आता है लियोनेल मेसी का, क्योंकि वो 2010 का एडिशन मिस कर गए थे, उनको वहां पर गोल नहीं मिला था। उम्र की अगर बात की जाए तो 41 साल की उम्र में इस वक्त रोनाल्डो खेल रहे हैं। अगर उनसे पहले अगर खिलाड़ी की बात की जाए तो कैमरून के रोजर मिला थे, जिन्होंने 94 का वर्ल्ड कप 42 साल की उम्र में खेला था। इसी रिएक्शन को कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया गया जब रोनाल्डो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे और वहां पर उन्हें बोला आई एम बैक, क्योंकि ये कोई बड़ी छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। लगातार हर साल हर एडिशन में गोल करना वो काबिले तारीफ है और आई थिंक वो रोनाल्डो ही कर सकते थे।
1: अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: Cybersecurity roles are growing fast, but opportunity doesn't wait. You've got to be ready for it. At WGU, you can earn your degree online, gain up to 16 certifications, and graduate with skills employers look for.
6: My boss is leaning on me for designing the security space. No one else at work knows what I know. They don't have the same certifications.
5: Plus, you may qualify for a $6,000 cybersecurity scholarship. Learn more at wgu.edu.
7: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: क्या कहती है आपकी राशि, कैसा बीतेगा आपका दिन, किस दिन क्या करें क्या ना करें, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर, देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: मामले में फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट के आरोपों से घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, बीजेपी का हल्ला बोल, कहा मान ने अकाल तख्त का अपमान किया। सिरसा ने पेश किए वीडियो सबूत। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को दोषी पाया। इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। धड़ाधड़ सील हो रहे हैं मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पहली एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी की सियासत में उबाल। विपक्ष का सवाल, क्यों सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, किसे बचा रही है सरकार। चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों पर बड़ा सस्पेंस। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई के गले तक पानी। दादर में रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब। रेड अलर्ट के साथ दिन भर झमाझम बरसात की चेतावनी। देश के पूर्वी इलाके भी जलमग्न। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा। शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में धकेला। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया ये मर्डर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस चोगन पर।
0: लखनऊ अग्निकांड में अवैध निर्माण मामले में 18 अधिकारी दोषी। एलडीए ने कार्रवाई की सिफारिश की और रिपोर्ट शासन को सौंपी। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी की बैठक। अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। योगी ने कहा फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं। सीएम योगी ने हर जिले में विशेष टीमें गठित करने के दिए निर्देश। फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने का आदेश। बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं होगा। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद एलडीए का एक्शन। 15 दिन में जवाब नहीं तो चल सकता है बुलडोजर। अस्पताल में भर्ती बिल्डिंग मालिक का सीने में दर्द का बहाना नहीं आया काम। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को बताया फिट। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। लखनऊ अग्निकांड में नया मोड़। निलंबित एफएसएसओ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह ने लिखा खत, कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। लखनऊ अग्निकांड में निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह बयान से पलटे। वायरल वीडियो पर मांगी माफी। अग्निकांड के घायलों से मिले अखिलेश यादव। अखिलेश ने सरकार से 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। अखिलेश ने योगी राज में पास नक्शों की जांच की मांग पर ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा मौत पर अखिलेश न करे राजनीति। लखनऊ अग्निकांड के बाद डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का फैसला। कहा 25 जून को जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। लखनऊ हादसे के बाद प्रयागराज के कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की हो रही है जांच। कई कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई, वहीं कई संस्थान बंद मिले। प्रयागराज में मानक पूरे न करने पर सिविल लाइन्स में स्थित खान ग्लोबल क्लासेस कोचिंग को किया गया सील। कानपुर में अवैध कोचिंग पर कार्रवाई का मामला। कोचिंग संचालक बोले केडीए अधिकारियों ने कहा है कि आज सील करवा लो, कल खुलवा देंगे। केडीए ने दी सफाई। लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्नि सुरक्षा जांच तेज। जीडीए की अब तक 206 भवनों में खामियां मिली और 56 सेंटरों को किया गया सील। नोएडा में सुरक्षा मानकों में भारी खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने 2 कोचिंग सेंटर सील किए। प्रशासन की संयुक्त टीम का निरीक्षण अभियान लगातार जारी। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर यूपी कांग्रेस का आज राज्यव्यापी प्रदर्शन। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। राम मंदिर चंदा विवाद के बीच वीएचपी की अयोध्या बैठक टली। 25 से 29 जून की केंद्रीय प्रबंधन समिति बैठक स्थगित। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश यादव का हमला। कहा एफआईआर के बिना एसआईटी, बिना तीर की कमान। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश यादव इस मामले पर ज्यादा हल्ला कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और जमीन निवेश से जुड़े कुछ तथ्य छिपाना चाहते हैं। गूगल मैप की गलती से फिरोजाबाद के गांव का नाम बदला, सरकारी काम अटके, सुधार के लिए प्रशासन ने गूगल को लिखा पत्र।

0: और अब यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सियासी मामले को लेकर यूपी में इंडिया गठबंधन के बीच एक बड़ा मतभेद पैदा होता हुआ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुलकर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बचाव किया है। एमपी से लेकर यूपी तक कांग्रेस पार्टी ने मोहन यादव पर जमीन खरीद के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने मोहन यादव को क्लीन चिट दे दी है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी की ही साजिश करार दे दिया है। मध्य प्रदेश से उठी भ्रष्टाचार के शोर वाली सियासत कैसे अब यूपी में राजनीतिक गठबंधन के संतुलन को असंतुलित कर रही है, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: मध्य प्रदेश से उठी एक सियासी चिंगारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। इसे समझने के लिए इन तीन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव हैं। इनके ऊपर मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और उत्तर प्रदेश में उसी कांग्रेस पार्टी के साथी अखिलेश हैं जो कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं।
2: कुर्सी आई साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा फिर परिवार की खरीदारी, धर्मनगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया।
3: ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे।
1: मध्य प्रदेश में कांग्रेस सवाल बीजेपी के मुख्यमंत्री से पूछ रही थी और उसकी सफाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोधी अखिलेश यादव दे रहे थे।
2: क्या सही है कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी की हिस्सेदारी वाली कंपनियों को भूमि हस्तांतरण परिवार के अन्य सदस्यों में भी हुआ है क्या?
3: आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे?
1: मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस हैरान, समाजवादी और कांग्रेस की इंडिया ब्रांड दोस्ती देखने वाले हैरान कि आखिर कांग्रेस के आरोपों पर अखिलेश बीजेपी के सीएम का बचाव क्यों कर रहे हैं।
4: प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझ ले तो फिर मंत्री तो अली बाबा 40 चोर की तरह काम करेंगे।
3: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है।
1: अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि मोहन यादव भ्रष्ट हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि एमपी में जिस बीजेपी सरकार के सीएम मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस दो दिनों से हुक्का पानी लेकर चढ़ी हुई है, पीसी पर पीसी कर रही है, बयान पर बयान दे रही है, भयानक जमीन घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार तक के सवाल उठा रही है, वहां कोई भ्रष्टाचार भी हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि ये यादव सीएम को बदनाम करके यूपी के सीएम को बदलने का बहाना है।
3: मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं।
1: अखिलेश के इस बयान के पीछे का मकसद और यूपी के अंदर उसके सियासत समझने में यूपी की एनडीए सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक मशाल जलाए चल रहे हैं।
5: अखिलेश की तरफ से ये आरोप भी लगते हैं कि बीजेपी 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री बदलना चाहती है, इसलिए निराधार आरोप मोहन यादव पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश पीडीए के प्रति यूपी की सियासत में एक संदेश भी देते दिख रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों और अति पिछड़ों के खिलाफ है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश रच रही है। अब देखना यह है अखिलेश का ये सियासी दांव उनके हक में जाता है या बीजेपी जो इसे समाजवादी पार्टी की बौखलाहट बताती है वो बाजी मारती है, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: आखिर अखिलेश यादव एमपी के सीएम मोहन यादव का बचाव क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें यादव जाति का मसला है या पीछे की कहानी कुछ और ही है? ओपी राजभर ने और क्या नया चिट्ठा खोलने का दावा किया है वो समझने से पहले एक बार बता देते हैं कि एमपी में कांग्रेस दरअसल कह क्या रही है। एमपी कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आरोप लगाया है कि एमपी के सीएम मोहन यादव ने करोड़ों रुपए की जमीन घोटाले का भ्रष्टाचार किया है। सीएम के परिजनों की ओर से उज्जैन और आसपास सरकारी परियोजनाओं के करीब सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी गई है। सीएम यादव के परिजनों के पास करीब 335 एकड़ जमीन हो गई है। 2021-2026 तक इन सालों के बीच तक 253 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसमें से 111 एकड़ जमीन विकास परियोजनाओं के आसपास ही ली गई है। साजिश के तहत मास्टर प्लान और लैंड यूज बदलने का आरोप है कि फायदा उठाया गया है।
6: मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। तो ये तो जानकारी थी, शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप अपनी जमीनें बढ़ाए जा रहे हो। अपना एक लैंड बैंक पांड्या खेड़ी में 18 एकड़, उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी।
0: कांग्रेस एमपी में जमीन घोटाले का आरोप जोर शोर से उठा रही है, लेकिन अखिलेश यादव एमपी के कथित घोटाले से बड़ा आरोप यूपी के सीएम पर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि एमपी के सीएम से ज्यादा यूपी के सीएम ने जमीन खरीद की है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सीएम ने 600 एकड़ जमीन खरीदी है।
3: और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है।
7: समाजवादियों का नारा है, खाली प्लाट हमारा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। किस तरह से सरकारी जमीनों पर अखिलेश यादव की सरकार में कब्जा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद हमने तकरीबन 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना करके खाली कराने का काम किया। इनके काबीना मंत्री आजम खान सरकारी जमीन को कब्जा किए जाने के मामले में, गरीब विधवाओं की जमीन कब्जा किए जाने के मामले में आज जेल में है। वो सजायाफ्ता हुए हैं इन मामलों में। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी न जाने किस मुंह से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करने का काम करती है।
0: तो यह है कथित जमीन घोटाले पर एमपी से यूपी तक की सियासत। लेकिन सवाल यह है कि एमपी के सीएम पर यह तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन अखिलेश यादव की माने तो यह कांग्रेस नहीं, सब बीजेपी की साजिश है। और साजिश इसलिए है क्योंकि मोहन यादव ओबीसी जाति से हैं और उनके बहाने बीजेपी 3 और सीएम बदलना चाहती है।
3: तो अब ये आरोप पता क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं, बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं।
0: तो अखिलेश का कहना है कि सीएम योगी को हटाने के लिए मोहन यादव को कांग्रेस नहीं बीजेपी ही बदनाम कर रही है, लेकिन यूपी में एनडीए के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अलग ही राग अलाप रहे हैं। राजभर ने आरोप लगाया है कि एमपी कैडर के आईएएस से अखिलेश अपना रिश्ता छिपा रहे हैं। राजभर का आरोप है कि वो आईएएस समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। राजभर ये भी आरोप लगाते हैं कि एमपी में विकास परियोजनाओं के आसपास समाजवादी पार्टी नेता और परिवार का भी बड़ा निवेश हुआ है।
8: अखिलेश जी के जो कोषाध्यक्ष हैं, उनका दामाद है वहाँ जो है परिवहन में, तो ये लोग भी वहाँ जाके जमीन वमीन कुछ खरीदे हैं, तो इन लोगों को है कि कहीं हमारी नेपोल खुल जाए, इसके लिए ये लोग चिंतित हैं।
9: ये जो दूसरे नेता है, ये जो नए नए दरबारी बने हैं, लफंडर नेता जो सुबह यहाँ शाम यहाँ दोपहर वहां है, इनसे कहना चाहेंगे कि आप चाहे जितना डिफेम कर लो, आप अब तुम्हारा काम ही यही है, ओम प्रकाश जी का काम ही यही, वो किसी समाज और वर्ग के नेता नहीं, वो दो लोगों का नेता है, एक अपने छोटे बेटे का एक बड़े बेटे का, उसमें भी एक बेटा थोड़ा ठीक है, वो हम लोगों की तरफ है, तो वो किसी वर्ग के नेता नहीं हो, आप दरबारी गिरी कर लो। इस पूरे देश में पेपर लीक करने वाले के सरगना किसके पार्टी में है? आप जवाब देते हो? आप बताते हो? बेदीराम को निकाल पाओगे?
0: और बात लखनऊ अग्निकांड की। लखनऊ में हुए हादसे के बाद एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एलडीए ने आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाले ऐसे तमाम मकान मालिकों को नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगना शुरू कर दिया है और जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी की जा रही है। दूसरी ओर पूरे सूबे में कोचिंग सेंटर्स में सुरक्षा मानकों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है, लेकिन ये सारी कार्रवाई तब हो रही है जब 15 नौजवानों की जान चली गई है। उन 15 परिवारों को इन कार्रवाइयों से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि उनका तो जाने वाला चला गया है। अब लकीर पीटने से क्या
10: भैया, वो तैयारी नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे, वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था, एक एक का नाम पता है मुझे सही हम का। हाँ मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था।
11: ये परिवार आज रो नहीं रहे होते अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर वाली कानून व्यवस्था, एनकाउंटर वाले लॉ एंड ऑर्डर का डर भ्रष्टाचारियों को भी होता। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, एक एक लाइन पर खुद गौर करें, मानो खुद को ही मुंह चिढ़ाने या आईना दिखाने का काम सरकार करती है, जिसमें लिखा है फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, इमरजेंसी में बाहर निकलने या भीतर जाने का इंतजाम नहीं था, आने जाने का एक ही रास्ता था, न कोई एग्जिट गेट अलग था, न कोई इमरजेंसी रूट अलग था, बिजली की व्यवस्था अत्यंत अनियमित तरीके से थी, ऐसा कोई इंतजाम नहीं था जिससे धुआं बाहर निकल सके, असुरक्षित तरीके से भीतर ही एसी के आउटर और बिजली उपकरण लगे थे, दुर्घटना की हालत में बचने का कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था। मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी की आवभगत में कुर्सियों की तौलिया तक का ध्यान रखने वाली सरकारी व्यवस्था आंख पर पट्टी बांधे बैठी रही और आवासीय इलाके में मानो तमाम विभागों के सर्वे सर्वा की आंख पर नोट की गड्डियों की पट्टी बांधकर जानलेवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलता रहा।
12: लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 लोगों की जान ले ली, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लापरवाही और नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री एग्जिट पॉइंट एक था, यानी कि एक ही रास्ते से एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था, और उस एंट्री एग्जिट पॉइंट पर भी एसी के पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, एग्जॉस्ट लगाए रखे थे, यानी कि एक रास्ता और वो भी सकरा कर दिया गया। और यही वजह थी कि जब आग लगी, धुआं फैला, तो जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, वो उस धुएं में फंस गए और दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई।
11: पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, एलडीए नाम सुना होगा, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इसके प्रमुखों का कितना विकास हो चुका है, कभी इसकी सरकार बस जांच करा ले, क्योंकि जिस एलडीए के लोग, आम आदमी का छज्जा कितना बाहर निकला है, रैंप कितना बाहर निकल आया, इसका हिसाब किताब जोड़कर, उसे तोड़कर या फिर कुछ ले देकर हिसाब बराबर कर लेते हैं, वही प्रथमेश कुमार की अगुवाई वाला एलडीए मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद कभी ये नहीं देख पाया कि कैसे रिहायशी इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलता रहा, कैसे घर का नक्शा पास करा के बेसमेंट से 2 फ्लोर ऊपर तक मौत की दुकान और इंस्टीट्यूट चलता रहा। क्या मुख्यमंत्री जिनके अधीन एलडीए आता है, उनके वीसी प्रथमेश कुमार और दूसरे जिम्मेदारों को चिन्हित करके एक लकीर मुख्यमंत्री खींचेंगे, या फिर चुन्नू मुन्नू टाइप के कर्मचारियों पर गाज गिरा के हो गया वाला बोल बोला जाएगा?
13: बिल्डिंग आवासी में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, वहाँ पर जो बिजली विभाग था उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी एसी चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहाँ पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो एलडीए है, एलडीए की एरिया में आता है, तो एलडीए ने क्या चीज देखा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है।
11: एलडीए वाले बिना पैसा खाए तो आंख बंद नहीं किए होंगे, बिजली विभाग वाले भी बिना पैसा दबाए चुप तो बैठे नहीं रहे होंगे, और इन भ्रष्टाचारियों को तो किसी बुलडोजर एनकाउंटर का भी डर नहीं, क्योंकि ये लोग तो बचते ही आए हैं। यही वजह है सीधे आज मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार की सुने, जिन्हें लगता है जिम्मेदार कोई है तो वो सरकार है।
14: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख देख सुविधा असुविधा की बात है। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है वहाँ के?
15: हर मामले में होता है लेकिन कागजी कार्रवाई में कुछ नहीं होता है, बाद में बस आश्वासन दे करके सरकार भूल जाती है।
16: शासन प्रशासन करता क्या है? खाली आश्वासन देता है, कुछ नहीं करता है गरीबों के लिए, कुछ नहीं करता हूँ।
17: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते। शासन प्रशासन की गलती है।

0: बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक बड़ी खबर आ रही है, मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। खबर है कि चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच के बीच अयोध्या में होने वाली विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक को टाल दिया गया है। अयोध्या में यह बैठक 25 से 29 जून तक होने वाली थी। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक में केंद्रीय प्रांत और क्षेत्र के सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं। इसमें वीएचपी के करीब 400 पदाधिकारी आगे के 6 महीनों की कार्य योजना पर चर्चा करते हैं। ये बैठक पहले से अयोध्या में होनी तय थी, लेकिन चंदा विवाद के बीच इसको टाल दिया गया है। ये बैठक अब कब और कहां होगी ये बाद में तय किया जाएगा। उधर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को तो सौंप दी है, लेकिन रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया गया है। अखिलेश यादव एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश भी की है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Puff.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover. Interested in what's going on around the world?
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
5: Money, money, money, money, every month.
6: Soch batlo aur bank bhi.

0: राम जी के चढ़ावे में चोरी का मास्टरमाइंड कौन? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी का कहना है कि जांच रिपोर्ट को अभी पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है।
1: मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे, उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है, और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं। फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है, और अभी भी जांच प्रचलित है, और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकेंड पार्ट में, जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा, उसमें सबमिट करेंगे।
0: एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वे संकेत देती हैं कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जड़ें मंदिर प्रबंधन तक जा सकती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम को लेकर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे इस पूरे मामले में फंसे हैं या बच जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने एसआईटी रिपोर्ट और सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं।
2: जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना हुए, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया।
0: माना जा रहा है कि एसआईटी जांच के बाद अब राम मंदिर में दान की साप्ताहिक ऑडिटिंग अनिवार्य की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

इस आग में खाक हो गई 15 जिंदगियां, 12 पुरुष और 3 महिलाएं, जिनमें शामिल थे कई छात्र और छात्राएं। आखिर ये इमारत देखते ही देखते कैसे लाक्षा गृह में तब्दील हो गई? ऐसा कैसे हुआ कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला? इस सवाल का जवाब है लापरवाही, लापरवाही और पूरी लापरवाही। सबसे पहली लापरवाही, बिल्डिंग में निकास का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, एकमात्र रास्ता था और उसी रास्ते में एसी का जाल है और दुर्भाग्य से आग भी वहीं पर लगी। एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे। रेसिडेंशियल इलाके में कोचिंग सेंटर आम है, आमतौर पर ऐसे कोचिंग सेंटरों में आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं होता, लेकिन यहाँ ये लापरवाही जानलेवा हो गई। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने आज तक से बातचीत में एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक जो 15 लोग मारे गए वो जलने से नहीं मरे, बल्कि दम घुटने से उनकी मौत हुई। बताया जाता है कि आग लगने से एनिमेशन सेंटर का दरवाजा लॉक हो गया, इसी वजह से धुएं के चलते दम घुट गया। आशीष श्रीवास्तव, समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

के सीएम भगवान मान, बीजेपी का हल्ला बोल, कहा मान ने अकाल तख्त का अपमान किया, सिरसा ने पेश किया वीडियो का सबूत। लखनऊ अग्निकांड पर एलटीए ने 18 अधिकारियों को पाया दोषी, इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, धड़ाधड़ सील हो रहे हैं मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की पहली एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी की सियासत में उबाल, विपक्ष का सवाल क्यों सार्वजनिक नहीं हुई रिपोर्ट, किसे बचा रही है सरकार, चंपत राय समेत ट्रस्ट अधिकारियों पर बड़ा सस्पेंस। मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई के गले तक पानी, दादर में रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा, शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में ढकेला, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया मर्डर।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत करें नॉन स्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: पुणे में करोड़पति कारोबार की बेटी की मौत पर बड़ा खुलासा। शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई में ढकेला। पुलिस के मुताबिक शादी से बचने के लिए सिया ने बनाया हत्या का प्लान। फोटोशूट के बहाने लोहागढ़ किला पहुंची थी सिया। पुणे केतन अग्रवाल मर्डर केस में दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, जांच जारी। लोहागढ़ फोर्ट मर्डर केस में गेट कीपर का बड़ा दावा, आरोपी चेतन चौधरी मास्क और स्पोर्ट्स ड्रेस में पहुंचा था किले पर। गेटकीपर यादव का दावा, टिकट मांगने पर चेतन ने कहा ऊपर एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूं, 25 रुपए टिकट देने से किया इनकार। लखनऊ अग्निकांड में अवैध निर्माण मामले में 18 अधिकारी दोषी, एलडीए ने कार्रवाई की सिफारिश, रिपोर्ट शासन को भेजी। सीएफओ लखनऊ अंकुश मित्तल राजधानी की प्राइवेट कोचिंग में एलडीए की टीम के लिए जांच के लिए पहुंचे, आज तक के कड़े सवालों पर फंसे। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन फायर सेफ्टी जांच के लिए एलडीए, बिजली निगम, अग्निशमन विभाग का विशेष अभियान शुरू। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद एलडीए का एक्शन, 15 दिन में जवाब नहीं तो चल सकता है बुलडोजर। अस्पताल में भर्ती बिल्डिंग मालिक का सीने में दर्द का बहाना नहीं आया काम, डॉक्टर के परीक्षण के बाद आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को बताया फिट। अग्निकांड में नया मोड़, निलंबित एफएसएसओ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, निलंबित एफएसएसओ कमलेन सिंह ने लिखा खत, कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। लखनऊ अग्निकांड में निलंबित एफएसएसओ कमलेन सिंह बयान से पलटे, वायरल वीडियो पर मांगी माफी। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में फायर चेकिंग में खुली लापरवाही, छात्रों का दावा नहीं दी गई सेफ्टी की जानकारी। अखिलेश योगी राज में पास नक्शों की जांच की मांग पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा मौत पर अखिलेश ना करें राजनीति। लखनऊ अग्निकांड के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फैसला, 25 जून को जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। राम मंदिर चंदा विवाद हुई, सीएचपी अयोध्या बैठक टली, 25 से 29 जून की केंद्रीय प्रबंधक समिति में बैठक स्थगित की। राम मंदिर चुनाव विवाद पर अखिलेश का यादव का हमला, एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। मध्यप्रदेश एक्सप्रेस वे रूट और जमीन निवेश आरोपों पर तेज हुई राजनीति, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, अखिलेश यादव इस मामले पर ज्यादा हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मध्यप्रदेश की एक्सप्रेस वे योजनाओं और जमीन निवेश से जुड़े कुछ तथ्य वो छिपाना चाहते हैं। गूगल मैप की गलती से फिरोजाबाद गांव का नाम बदला, सरकारी काम अटके, सुधार के लिए प्रशासन ने गूगल को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री योगी ने बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान गूगल के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। गूगल प्रतिनिधियों के साथ तकनीक आधारित विकास, रोजगार सृजन के अवसरों पर चर्चा की। अभिषेक बैनर्जी ने आंखों के इलाज के विदेश जाने की मांग की अनुमति, हाईकोर्ट से राहत नहीं, फिलहाल नहीं जा पाएंगे। कुछ बिहार में कट मनी विवाद के आरोपों के बाद टीएमसी नेताओं ने लुटाए करीब 90,000 आवास योजना में पैसे लेने का आरोप। भगवान मान के भाई मनजीत सिंह की अपील, कहा अकाल तख्त साहिब के सामने गलती स्वीकार कर माफी मांगे। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, जगदीशपुर एसडीपीओ राजेश वर्मा हटाए गए, जांच के लिए एसडीपीओ की तैनाती। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर में एक्शन, जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, बवाल के बाद से बैकफुट पर है बिहार पुलिस। भरत तिवारी इनकाउंटर पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने संयोजित हत्या बताते हुए कहा डीएसपी ने साजिश रची। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार से भरत एनकाउंटर मामले की जांच की मांग की, रिटायर्ड जज के बजाय पटना हाईकोर्ट के जज से की, साथ ही मृतक के परिवार के 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। बिहार में बढ़ते अपराध पर प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, सीएम सम्राट पर लगाया गंभीर आरोप, का अपराधी आदमी है मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र मानसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश, महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन बेहद अहम। एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का अलर्ट जारी, अगले 3 दिन के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बारिश। मुंबई में भारी बारिश से वेस्टर्न हाईवे पर यातायात ठप, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई कई इलाकों में भारी बारिश से अंधेरी अंडरपास में भरा पानी, उफान में फंसी कार। मुंबई गांधी मार्ग से भरा पानी, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। मुंबई गांधी मार्ग में भारी बारिश से कई इलाके पानी में जलमग्न, वाहन पानी में फंसे। मुंबई मूसलाधार बारिश से जलभराव, दादर रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में बड़ी परेशानी। नवी मुंबई में भारी बारिश से जलभराव, भाजी मार्केट के सामने आई तस्वीरें, भारी बारिश से जलभराव। मुंबई के कई इलाकों में किंग सर्कल के पास रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई की पहली बारिश में अंधेरी, सबवे जलमग्न, प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नहीं दिख रहा है। दार्जिलिंग में भारी भूस्खलन से सड़कें बंद, मुख्य सड़क पर मलबा गिरा, बड़ी मुसीबत। सिक्किम के रंगपो रोरा थांग मार्ग पर भारी भूस्खलन, रास्ता पूरी तरह से बंद होने के, प्रशासन के दूसरे रास्तों से जाने की सलाह। कोलकाता में मूसलाधार बारिश का कहर, हाईकोर्ट परिसर समेत कई जगहों पर गिरे पेड़, कई इलाकों में जलभराव से यातायात बाधित। गुजरात के नवसारी समेत कई इलाकों में दूसरे दिन रुक रुक कर बारिश, हिल स्टेशन सापुतारा में पहाड़ों पर छाई धुंध और बादलों ने नजारे को मनमोहक किया। राजकोट के गोंडल में तेज बारिश से रेलवे अंडरब्रिज में भरे पानी से पैसेंजर से भरी एसटी बस फंसी, जेसीबी की मदद से बाहर निकाली गई। धर्मनगरी अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण संपन्न, दिव्य समारोह का हुआ आयोजन। अयोध्या के 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के लिए ध्वज का किया पूजन, फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे करीब 4,000 राम भक्त, श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर की पूजा पाठ। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जंग बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंपा 300 वर्ष पुरानी भगवान श्री राम से संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ की है पांडुलिपि। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां तेज, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकलेगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रंगों के भव्य रूप देने में जुटे। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 भव्य रथों का निर्माण जारी, 200 कारीगर बना रहे रथ। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया जा रहा है विशेष जोर, सेवक रथों को जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरण का कर रहे हैं तैयारी। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ की होगी पूर्णिमा, 15 दिन तक भगवान का रहेगा एकांतवास। अमरावती में पारंपरिक विवाद, मेहमान बना पिता, बेटा बहू को मारकर कुचलने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार, सीसी में कैद हुई वारदात। कानपुर में आरपीएफ की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से गिरते यात्री की बचाई जान। हिमाचल के सोलन सब्जी मंडी के पास भयंकर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी, सभी बाल बाल बचे। मेरठ में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार कार ने पुलिसकर्मी और थाना मोबाइल जीप को मारी टक्कर, हादसे में 7 पुलिसकर्मी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। कोटा बाल सुधार गृह में गंभीर लापरवाही का खुलासा, धड़ल्ले से उपयोग हो रहे मोबाइल, शराब और नॉनवेज पार्टी चल रही है। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसे में होने वाले दूल्हा समेत 3 युवकों की दर्दनाक मौत। 11 साल की बच्ची के साथ मेरोली में दुष्कर्म और हत्या का मामला, आरोपी को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में किया ढेर, लड़की के पिता ने फांसी की मांग की। वघा में इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में आग, 5 स्कूटी और कई लिथियम बैटरियां जलकर राख। बोकारो में प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर युवती ने घंटों किया हंगामा। तस्वीरें आई सामने। सहरसा में देव व्यापार का भंडाफोड़, गेस्ट हाउस से महिला समेत 6 पुरुष हिरासत में, आपत्तिजनक सामान बरामद। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके में लगी भीषण आग, आग लगने की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद हुई। शॉर्ट सर्किट के बाद आग ने पास की झुग्गियों में अपना चपेट भी ले लिया, मौके पर करीब 20 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। अजमेर में चलती बस में आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 37 यात्रियों की बची जान। आगरा में आकाश इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में धुआं उठने से मचा कम, सैकड़ों छात्र सुरक्षित बाहर निकाले गए। विकासनगर के जंगल में लगातार लग रही आग, मौके पर वन कर्मी और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। हैदराबाद में एटीएम कैश वैन से 17 लाख रुपए चोरी, बदमाश वैन की डिक्की से बैग चुरा कर ले गए। बेतिया में बेटा नहीं होने की नाराजगी से हैवान बना पिता, पत्नी को नहर में ढकेला, 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत। इंदौर में अवंतिका गैस में लगी आग, 4 लोग झुलसे, 5,000 घरों की गैस सप्लाई बंद। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वाला सीसीटीवी कैद, इस्कॉन मंदिर के पास लगातार वारदात से दहशत। पटना में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा से सीमेंट के बोरे में छिपाकर ट्रक से लाई गई 48 लाख की विदेशी शराब। मुर्शिदाबाद बिजली गिरने से 4 की मौत, 15 घायल। पुंछ में एसडीआरएफ, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त मॉक ड्रिल किया, जलवायु आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की मार्केटिंग कर हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। अमरावती में बड़ा साइबर घोटाला, गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर करोड़ों की ठगी। बटाला में जमीनी विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, कत्ल के बाद नौजवान ने की आत्महत्या। वेलकम टू द जंगल का नया गाना रिलीज, 26 जून को सिनेमाघर में देगी दस्तक। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल पर लगे 18 कट, फिल्म को सीबीएफसी ने यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट के साथ दी मंजूरी। श्रद्धा कपूर की ईथा का टीजर रिलीज, 28 अगस्त को सिनेमाघर में होगी लॉन्च। बाबा बागेश्वर के दरबार पहुंचे टाइगर श्रॉफ।

0: अब आपको अरुणाचल प्रदेश से आई लैंडस्लाइड की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से NH-13 होज पोटिन रोड पर भूस्खलन हुआ है। सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। ईटानगर से जीरो जा रहे यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए हैं। ये लैंडस्लाइड की घटना देखिए कैसे ये मलबा पूरी सड़क पर फैल गया। धीरे धीरे करके ये पूरी सड़क बाधित हो गई। पानी का वेग किस तरह मिट्टी को बहाता किनारों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है। किनारे के कई मकानों के गिरने का खतरा भी पैदा हो गया।
1: देखो भयानक कोसा में ये घर खत्म।
0: तस्वीरों में ये भयावह मंजर आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड में कैसे अब आसपास के बने घरों को भी खतरा है। ये पूरी की पूरी जमीन दरक गई है। ऊपर से पहाड़ से मलबा गिर रहा है। लगातार बारिश भी हो रही है। अरुणाचल से ये हाहाकारी तस्वीर NH-13 की है। और अब पूर्वी सिक्किम से एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ रंगफू रोराथन रोड पर पहाड़ दरक गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पहाड़ से मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक सड़क पर गिरने लगी। मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। पहाड़ी के ऊपर से रोड पर यह मलबा गिरा है जिससे पूर्वी सिक्किम के लिए जाने वाली ये रोड पूरी तरह से बंद हो गई है। मार्ग बाधित है। वहां पर इस पुलिसकर्मी को भी देखा जा सकता है। ये टू व्हीलर डैमेज हो गया है इस पहाड़ दरकने की घटना से। दूर से मोबाइल में इसे कैद किया गया और साथ ही समय रहते कुछ लोगों की जान भी बच गई। और अब बात हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की, जहां पर NH-5 पर 190 फीट लंबा बेली ब्रिज टूटकर गिर गया है। समय हादसा हुआ उस वक्त 10 टायर वाला डंपर वही पुल से ही गुजर रहा था। हालांकि राहत की बात यह रही कि डंपर चालक की जान बाल बाल बच गई। पुल गिरने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया लेकिन माना यह जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा वजन हादसे की वजह हो सकता है। बेली ब्रिज का निर्धारित भार 28 टन था और दावा किया जा रहा है कि 5 जून को ही पुल की मरम्मत की गई थी। उसका निर्माण 2016 में सतलुज नदी पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में किया गया था। उस समय मूल राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा लगातार मलबा गिरने के कारण बाधित रहने लगा। वर्तमान में इस भूस्खलन प्रभावित हिस्से को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए सुरंग निर्माण का कार्य चल रहा था ताकि भविष्य में यातायात पर प्राकृतिक आपदाओं का असर कम किया जा सके। सतलुज नदी पर गिरा ये पुल, किन्नौर की ये घटना, जहां पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस पुल को इस्तेमाल किया जाना था लेकिन आप देख सकते हैं कि भारी भरकम वाहन की भी इसमें एंट्री हो रही है और इसी वजह से ये पुल दरअसल गिर गया, टूट गया और ये भीषण हादसा वहां पर हुआ। फीट लंबा ये बेली ब्रिज जो दो पहाड़ों को जोड़ता है, इस पर जब ये भारी भरकम ट्रक गुजरा तो इसका भार वहन नहीं कर सका और भरभराकर नीचे आ गिरा। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लोकल में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या करके दरवाजा बंद करने के विवाद में शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान मयंक लोहार के तौर पर हुई। वो चर्च गेट डाला सुपारा फास्ट लोकल के फर्स्ट क्लास डब्बे में सफर कर रहा था तभी अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच एक दूसरे यात्री के साथ उसकी बहस हुई और बहस के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर लोहार के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर रूप से ये शख्स घायल हो गया है। ट्रेन की पूरी तरह रुकने से पहले ही आरोपी वहां से भाग गया। दीपेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, वारदात की वजह क्या रही?
2: जी नहीं, हाँ बिल्कुल, देखिए कल मुंबई में बारिश शुरू थी, दिन भर शाम का समय था, घर पे जा रहे थे लोग, तभी रेलवे के लोकल में बारिश हो रही थी और दरवाजा बंद करने को लेकर यह सारा विवाद खड़ा हुआ। इस पर हमारे साथ हैं बात करने के लिए वेस्टर्न रेलवे के चीफ

0: पीआरओ विनीत अभिषेक जी। सर, विवाद दरवाजा बंद करने को लेकर हुआ और आगे की क्या जानकारी है, एक्यूज पकड़ा गया है?
1: देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो रिपोर्ट, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिली है, जिसपे फिलहाल कॉन्फिडेंट उतना नहीं रह सकते, बट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिली है उसमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ, बिल्कुल जो आपने सही कहा कि दरवाज़ा बंद करने को लेके ऑल्टरकेशन हुआ, विवाद हुआ और अनफॉर्चुनेटली जो रिपोर्ट के हिसाब से स्टैबिंग हुई और गाड़ी जो है, ट्रेन हमारी जो 11:04 पे बोरीवली स्टेशन पे आई और 11:07 में विदिन 2 to 3 minutes हमारे जो RPF GRP के स्टाफ, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस टीम, वो पहुंच गई थी उस कोच के पास और इमीडिएट हेल्प दिया हमारे जो अनफॉर्चुनेट जो इंजर्ड पैसेंजर थे उनको, और इमीडिएटली उनको इमरजेंसी मेडिकल रूम जो स्टेशन, हर बड़े स्टेशन पे रहता है, वहाँ उनको ले जाया गया जहाँ अगेन मेडिकल हेल्प देने की कोशिश की गई और फिर एम्बुलेंस के द्वारा उनको जो है पास के हॉस्पिटल, जो शताब्दी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया। और ये पूरा जो, जैसा मैंने बताया कि 11:04 पे ये गाड़ी आई थी और 12 बजने के पहले पहले ऑलमोस्ट 40 to 45 minutes में वो हॉस्पिटल लेके जाया जा चुका था। अनफॉर्चुनेटली पैसेंजर सर्वाइव नहीं कर पाए। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, एक्यूज्ड को पकड़ने की इन्वेस्टिगेशन जारी है इन क्लोज कोलैबोरेशन विद GRP, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे ही क्लियर होती है फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा।
0: सर, एक्यूज की कोई जानकारी मिल पाई है, कौन था, कहाँ रहता था और वो चाकू लेकर कैसे ट्रेन में सफर कर रहा था?
1: इस पे इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने बताया, जारी है और GRP इस पे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसको फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी शेयर किया जाएगा। अभी इट्स टू प्रीमेच्योर टू शेयर एनी सच इन्फॉर्मेशन।
0: बिल्कुल नेहा, तो फिलहाल जो है जांच जारी है, एक्यूज को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन GRP जो है अपनी जांच कर रही है, युद्ध स्तर पर इस मामले की जांच जो है वो शुरू है और बहुत ही जल्द विश्वास जताया जा रहा है रेलवे द्वारा, GRP द्वारा, कि एक्यूज जो है, अभियुक्त जो है, वो इनकी पकड़ में होगा। नेहा,
2: ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सीसीटीवी फुटेज आया उस आरोपी का जो आराम से चलकर इस पूरी वारदात को अंजाम देकर स्टेशन से बाहर निकल रहा है, उसका चेहरा भी इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। जल्द पुलिस उस तक पहुंच सकेगी इसी फुटेज के आधार पर, क्योंकि मामूली सी बात पर यह विवाद शुरू हुआ जो हत्या के इरादे तक पहुंच गया। 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास। दीपेश, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपेश, इस फुटेज में तो पूरा चेहरा दिख रहा है, कब तक पहुंचेंगे आरोपी तक पुलिस वाले?
0: जी बिल्कुल, जब से ये घटना घटी GRP ने अपनी टीम्स फॉर्म करके जो है इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और RPF भी उनका सहयोग कर रही है, दोनों एजेंसियां मिलके इसकी जांच कर रही हैं, आरोपी की तलाश कर रही हैं। जैसे कि हमें अभी विनीत अभिषेक जी ने बताया कि युद्ध स्तर पर इस मामले की जाँच हो रही है, उसको आइडेंटिफाई शायद से कर लिया गया है और बहुत ही जल्द वो गिरफ्त में होगा, लेकिन ऐसे मामलों को रोकने के लिए भी कुछ कदम रेलवे द्वारा उठाए जा रहे हैं। क्या है ये कदम, उनसे जाएंगे सर, क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं कि ऐसी घटना ना हो? बारिश में अमूमन ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं।
1: देखिए, घटना बहुत अनफॉर्चुनेट थी इस पे, और जितना कोशिश किया जा सकता था हमने इंश्योर किया कि इमीडिएट हेल्प मिले, इमीडिएट सपोर्ट मिले। पैसेंजर की सेफ्टी, पैसेंजर की सिक्योरिटी हमारे लिए प्राइम इम्पॉर्टेंस की बात है, टॉप प्रायोरिटी की रहती है। आप जैसा कि हम सब जानते हैं, मल्टीपल लोकेशंस जो हमारे जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं और रेलवे स्टेशन के जितने इम्पॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं, हर जगह हमारे CCTV कैमराज हैं। उन CCTV कैमराज का जो फीड है वो हमारे वॉर रूम में रिले होता है और वॉर रूम डिविजनल लेवल पे, हेडक्वार्टर लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। सीनियर ऑफिसर्स 24/7 टीम, ये पूरा हम मॉनिटर करते रहते हैं इन, और इसके साथ ही डेडिकेटेड स्टाफ हमारे रेलवे स्टेशन पे, चाहे वो RPF के स्टाफ हो, GRP के स्टाफ हो, स्टेशन स्टाफ हो, सभी मौजूद रहते हैं किसी भी तरीके का हेल्प, सपोर्ट, कॉपरेशन एक्सटेंड करने के लिए। और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कभी भी इस तरह की घटना ना हो, और अगर हो तो फिर इमीडिएट जो है कल्पिट को पकड़ा जाए और जो पॉसिबल हेल्प हो सकता है वो पैसेंजर को।
2: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका दीपेश। और अब बात करेंगे BRB वीडियो की, जिस मामले में फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट के आरोपों से घिर गए हैं पंजाब के CM भगवंत मान। BJP का हल्ला बोल जारी है, कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि मान ने अकाल तख्त का अपमान किया है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पेश किया वीडियो द्वारा ये सबूत।
3: आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है, क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं, ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं।
2: इस मुद्दे पर आज तक ने कांग्रेस विधायक परगट सिंह से बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की तक मांग की है।
4: सर, एक बड़ा एलिगेशन लग रहा है पंजाब सरकार के ऊपर, दो लोगों को हरियाणा पुलिस ने पकड़ा है और कहा जा रहा है कि 10 लाख रूपया देकर एक फेक फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई गई है चीफ मिनिस्टर को फेवर करने के लिए।
5: देखो, जदों तुसी धर्म दे नाते भी मैनू लगदा कि अगर ऐसी बात करते हो तो ये तो ना बख्शन योग है। सरकार अगर इतनी झूठ पे आ गई है और वो भी एक जो रिपोर्ट है उसके लिए 10 लाख रुपए आपने एक वो भी प्राइवेट फोरेंसिक लैब को दिए हैं और जो उन्होंने आके माना भी है, जो लड़का वो सोशल मीडिया के ऊपर, मेरा ख्याल है भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
4: सर फाइनली, सर हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि बीजेपी ने सब हैंडीक्राफ्ट किया, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, अगर उनके मन में मैल होता तो पंजाब से कहीं से क्लीन चिट ले लेते।
5: यार ये कहने की बातें हैं, जो जो पुलिस ऑफिसर हैं जिनके नाम आए हैं वो पहले भी ऐसे बहुत से कारनामे कर चुके हैं, तो सो सारी ऐसे इनके ऊपर किसी के ऊपर भरोसा नहीं है।
4: तो जो पुलिस अफसरों के नाम आ रहे हैं चाहे वो सीपी,
5: उनको डिसमिस करना चाहिए।
2: इसी के साथ रुकेंगे फिर से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसे, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
8: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
10: To right field, and it will leave.
9: From the first pitch of the season to the stretch run,
10: and that's the ball game.
9: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: Savari.
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी.
1: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक.
3: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
4: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
4: लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई तो एलडीए अधिकारी हरकत में आ गए। मंगलवार को एलडीए की टीम ने उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया जिसमें 15 बच्चे जिंदा जल गए। योगी सरकार ने एलडीए से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एलडीए की नाक के नीचे रिहायशी नक्शे पर बनी इस इमारत में कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही थी। अब इस इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है, 15 दिन में जवाब नहीं मिला तो इमारत को ढहा दिया जाएगा। अग्निकांड पीड़ितों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने हादसे के बाद सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
5: बड़े अधिकारियों की बनती है और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए।
4: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हादसे के लिए पूर्व की अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और हादसे पर राजनीति न करने की सलाह दी है।
6: अखिलेश यादव जी, लखनऊ की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है, 15 लोगों की जाने के लिए, और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है।
4: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में एलडीए के तत्कालीन अधिकारियों और अभियंताओं पर कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

इस समय उत्तर पूर्व के कई राज्यों में मॉनसून ने मचाई तबाही। पहली बारिश में मुंबई के गले तक पानी, रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब। मौसम विभाग का रेड अलर्ट। चर्च गेट से विरार की मुंबई लोकल में सेल्समैन के मर्डर से सनसनी। फर्स्ट क्लास कोच में दरवाजा बंद करने को लेकर हुई पैसेंजर से बहस। चलती ट्रेन में धारदार हथियार से हमला कर मार डाला। दिल्ली में फुटपाथ पर सो रही बच्ची को अगवा कर रेप और हत्या के बाद हड़कंप। कैब ड्राइवर ने किया दुष्कर्म। 4 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

0: हेडफोन पहना था, पूरा ऐसा हेडफोन था कान में उसका, उसकी आवाज़ नहीं सुना वो।
1: आवाज़ नहीं सुना
0: जी। वो हमको ये बोला है कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं सर ऊपर, हाँ एक्सरसाइज करके हम थोड़ा नीचे आएंगे सर।

था। पुणे में लोहागढ़ किले में मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। केतन अग्रवाल की हत्या में पुलिस की जांच तेज है। 18 जून को केतन की मंगेतर सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रची और अपने मंगेतर को धक्का दे दिया। अब इस मामले में पुणे पुलिस ने जांच तेज कर दी है। किले के गेट कीपर के हवाले से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और इस हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस ने सिया उसके बॉयफ्रेंड को रिमांड में लेकर सवाल जवाब शुरू कर दिए। आरोपी पक्ष सफाई दे रहा है और कह रहा है कि ये मौत हादसा नहीं है। एक दिन पहले कोर्ट में दलील भी दी गई। पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और इस सबके बीच आज तक की टीम लोहागढ़ के लिए पेक क्राइम सीन पर पहुंची, जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया।

18 जून 2026, ये वही तारीख है जब लोहागढ़ किले में रिश्ते का खून हुआ। पुणे में कत्ल की ये खौफनाक साजिश रची गई थी। चंद महीने पहले ही सिया के साथ केतन की सगाई हुई थी। नवंबर में शादी की तारीख भी तय थी।

0: केतन ने सिया के साथ जीने मरने का फैसला किया था, लेकिन वो अपनी मंगेतर की साजिशों से अनजान था। उसने मौत से ठीक पहले उसे बर्थडे विश भी किया था।
1: उनका पैर फिसला और वो खाई में गिर गए और उनका डेथ हो गया। ये मेन केस है। उसके बाद पुलिस ने और उनके घर वाले ने प्रेशर उनको के ऊपर ऐसा डाला कि आप इसमें, ये मर्डर का मामला है, इसमें आप FIR दर्ज करें मर्डर का।
2: आर्गुमेंट क्या हुआ?
1: फिर हमारा डिफेंस इसमें यही था कि ये दिस इज अ एक्सीडेंटल डेथ।
0: ऐसे खुशनुमा पलों के बीच ही खूनी साजिश चल रही थी। लोहागढ़ की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हम सफर बनने से पहले सिया ने अपने मंगेतर को मौत के मुंह में धकेल दिया। सिया की लाइफ में एक तरफ केतन अग्रवाल था जिससे उसकी सगाई हुई थी, तो दूसरी तरफ चेतन चौधरी था जिसे वो प्यार करती थी। मर्डर के इल्जाम में अब सिया और चेतन चौधरी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे चेतन की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि ये हत्या नहीं हादसा है।
3: आप देख सकते हो पुणे के मावल का ये दूसरा एरिया है जहाँ ये आगे आपको बांध दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा। इसके पहले ये नीचे जो गांव है यहाँ से सीधी 350 फुट की खाई है, जिस खाई में उसने 18 तारीख को जब बाद में फिर से दोनों आए थे उसके साथ उसने अपना जो बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी उसे भी वो साथ में लेके आई थी। दोनों अलग अलग रूट से ऊपर आए और फिर चेतन और सिया ने मिलकर यहीं से इस वारदात को अंजाम दिया और इसी जगह से उसे नीचे ढकल दिया।
0: केतन की हत्या को लेकर सवाल कई हैं, लिहाजा पुलिस अब सिया को मुख्य साजिशकर्ता मानकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और चेतन चौधरी के साथ अपना रिश्ता जारी रखना चाहती थी, इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस सूत्रों की माने तो सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी और फिर 18 जून को दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आज तक संवाददाता ओमकार वाबले लोहागढ़ किले में उस जगह पहुंचे जहां आरोपी चेतन CCTV कैमरे में कैद हुआ और इस साजिश से पर्दा हट सका।
4: जी सर, अभी वो कान में हेडफोन डाला था, उसको पीछे से आवाज दिया था सर टिकट लेके जाओ टिकट लेके जाओ करके, वो का इतना गया नहीं। फिर हम आगे थे वहाँ पे तो उसको हम रुकवाए, उसको तो बोला था सर हम एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, हम रिटर्न में टिकट ले लेंगे। इस वजह से हम उसको बोला नहीं क्योंकि एक्सरसाइज करके जा रहे हैं और आदमी फिटनेस की वजह से हम उसको रुकवाया नहीं। ज्यादा समय टिकट लेके करके बोला था, वो अकेला था, इसकी वजह से उसको हम रुकवा मैंने ज्यादा समय से चला गया नीचे।
0: वारदात वाले दिन जब चेतन चौधरी किले में पहुंचा था तो उसने टिकट भी नहीं लिया था। गार्ड ने टिकट के लिए टोका था लेकिन उसने कह दिया था कि वो एक्सरसाइज के लिए जा रहा है। आज तक से खास बातचीत में लोहागढ़ किले के गार्ड धीरज जाधव ने बताया है कि वारदात वाले दिन क्या हुआ।
4: वो हेडफोन पहना था, पूरा ऐसा हेडफोन था कान में उसका, इसके लिए आवाज नहीं सुना, वो
5: आवाज नहीं सुना
4: जी।
5: फिर
4: आपको क्या स्पीड से गया था?
5: आपको क्या कहा फिर उसने?
4: वो हमको ये बोला है कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं सर ऊपर, एक्सरसाइज करके हम तुरंत नीचे आएंगे सर।
0: अब गम में डूबे पीड़ित परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है। कृष्णा पंचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
6: तो आज तक संवाददाता ओमकार वाबले ने लोहागढ़ किले में जाकर क्राइम सीन को देखा और बताया कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
3: इन्वेस्टिगेशन ये दिखा रहा है कि सिया गोयल ही इस पूरे मामले की मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसी ने प्लान किया, उसी ने एग्जीक्यूट किया और चेतन चौधरी जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी उसमें हेल्प ली। अभी मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ यही वो जगह है जहाँ 350 फीट गहरी खाई है, जिस खाई में केतन अग्रवाल के शादी के सपने दफन हो गए, क्योंकि सिया जब उसके साथ यहाँ आई थी तब उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा, वो उसे यहाँ से धक्का दे देगी। हम लोहगढ़ किले पे हैं, जिस लोहगढ़ किले की ये खाई आपको नजर आपको दिख रही होगी, इसी खाई में इसी स्पॉट पे इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां 31 मई को पहली बार ये दोनों ट्रेक के लिए आए थे तब सिया ने रेकी की, फिर 14 तारीख को वापस आ गए, फिर 14 तारीख को सिया ने कोशिश की लेकिन उससे हो नहीं पाया, फिर 18 तारीख को इस वारदात को अंजाम दिया गया यहीं से, जहां आप देख सकते हो नीचे गांव है अलग अलग, पुणे की ये मावल तहसील की दूसरी बाजू है, इसी तरफ उसे धक्का दे दिया गया और बाद में 19 को उसकी बॉडी यहां से बरामद की हुई।
6: और अब आपको बताते हैं कि इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति की हत्या की साजिश मेघालय में रची थी। ठीक उसी अंदाज में पुणे की सिया ने अपने मंगेतर को ठिकाने लगा दिया। इस क्राइम और सस्पेंस पर देखिए ये खास रिपोर्ट।
2: ये तस्वीर तो याद होगी आपको, ये ऊंची चढ़ाई और ये उससे भी गहरी खाई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, वही ऊंची चढ़ाई और उससे भी गहरी खाई। ये दोनों तस्वीरें देश के दो किनारों की है। पहली तस्वीर शिलांग की है, करीब साल भर पुरानी। दूसरी तस्वीर पुणे से 52 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की है। पुणे की इस खाई की कहानी जिसने भी लिखी उसने 100% सोनम की कहानी सुन रखी थी। सोनम राजा रघुवंशी, याद आया आपको ये नाम? पिछले साल 23 मई की वो तारीख थी जब सोनम ने शादी के हफ्ते भर बाद ही हनीमून के नाम पर अपने पति राजा रघुवंशी को शिलांग में इसी ऊंचाई से धक्का देकर खाई में फेंक दिया था। अब 11 महीने बाद सोनम की कहानी पुणे की सिया गोयल ने दोहरा दी। कमाल का इत्तेफाक है दोनों कहानियों में, मतलब हर कदम हूबहू सब कुछ एक जैसा। कत्ल के लिए चुनी गई जगह एक जैसी, कत्ल करने का तरीका एक जैसा और कत्ल की वजह भी बिल्कुल एक जैसी। बस फर्क एक ही था, सोनम ने शादी के एक हफ्ते बाद अपने पति का कत्ल किया तो सिया ने सगाई के बाद होने वाली शादी से ऐन पहले अपने होने वाले पति को मार डाला। ये पुणे की सिया गोयल है और ये पुणे के एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे केतन विशाल अग्रवाल। कुछ वक्त बाद ही सिया और केतन की शादी होनी थी। इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जयपुर में एक महल की बुकिंग हो चुकी थी। मेहमानों को पुणे से जयपुर ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन तक बुक हो चुके थे, लेकिन तभी बस एक साजिश की चिंगारी उठी और केतन और केतन के घरवालों के सपने खाई में समा गए। सोनम चैप्टर 2 की इस कहानी की शुरुआत होती है 18 जून को। पुणे से करीब 52 किलोमीटर दूर यह ऐतिहासिक आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किला है। यहाँ सैलानी घूमने और ट्रैकिंग के लिए आते हैं। सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ 18 जून की सुबह 10:30 इसी किले में आती है। दोनों किले की सबसे बुलंदी पर पहुँचते हैं। वहाँ अचानक केतन का पैर फिसलता है और वो सीधे 340 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। केतन को खाई में गिरते देख सिया जोर से चिल्लाती है और आसपास मौजूद गार्ड को रोते हुए बताती है। इसके बाद गार्ड पुलिस को फोन करते हैं और सिया अपने घर वालों को। किले के गार्ड और पुलिस सब खाई में केतन को तलाश करना शुरू करते हैं, पर खाई बहुत गहरी थी और एरिया बड़ा। पहले दिन की तलाश नाकाम रही। 19 जून को फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और आखिरकार केतन की लाश खाई से बरामद हो गई। लाश बरामद होने के बाद पुलिस एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर लेती है। जिस घर में कुछ महीने बाद ही शहनाई बजने वाली थी वहां अब मातम पसरा था। पोस्टमार्टम के बाद 20 जून को केतन का पुणे में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। सगाई के बाद और शादी से ऐन पहले केतन की मौत को लेकर हर कोई सिया के लिए गमजदा था। केतन की मौत के अगले दिन सिया का बर्थडे भी था। इस मौके पर सिया ने एक भावुक और मार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाला।

0: धीरे धीरे अब पूरा परिवार ये यकीन कर चुका था कि केतन की मौत एक हादसा थी, पांव फिसलने की वजह से वो खाई में जा गिरा। लेकिन केतन के पिता और केतन की बहन इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वजह ये थी कि केतन अक्सर ट्रैकिंग पर जाया करता था। फिर तभी 22 जून को सिया अपने होने वाले ससुराल पहुंचती है शोक के लिए। इसी दौरान पहली बार केतन की बहन सिया से पूछती है कि केतन किस तरह खाई में गिरा। ये सुनते ही सिया घबरा जाती है। बहन को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है। उसी वक्त केतन की बहन अपने पिता से सिया को लेकर शक जताती है। पिता को पहले से ही शक था, लिहाजा वो फौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं। शायद सोनम की कहानी कभी पुणे में भी जिंदा थी, इसीलिए केतन के परिवार ने अब सिया के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तब तक पुलिस ने भी सिया के मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट में ताक झांक शुरू कर दी थी। साथ ही साथ अब पुलिस लोहागढ़ किले के अंदर और बाहर की सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी खंगाल रही थी। इन्हीं तस्वीरों को खंगालते हुए पुलिस को एक अजीब तस्वीर नजर आई, एक शख्स जो हुडी पहनकर किले में आया था। ये तस्वीर इसलिए अजीब थी क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से चढ़ाई के दौरान ज्यादा गर्मी लगती है, फिर भी उसने हुडी पहन रखी थी और उस हुडी से अपने चेहरे को भी छुपा रखा था। सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि ये शख्स लगातार सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अब पुलिस ने सिया के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। पुलिस की नजर एक नंबर पर जाकर ठहर गई। वजह यह थी कि उस नंबर पर सिया ने जनवरी से लेकर जून तक यानी पिछले 6 महीने में 2004 कॉल किए थे और इन 2004 कॉल्स के दौरान उसने कुल 338 घंटे बात की। पुलिस ने जब उस नंबर को खंगाला तो पता चला वो नंबर चेतन चौधरी नाम के एक लड़के का है। चेतन पुणे के उसी इलाके में रहता है जहां सिया के पिता प्रवीण गोयल का बिजनेस है। अब पुलिस ने चेतन के कॉल डिटेल निकाले, खासकर 18 जून के, लेकिन पुलिस हैरान रह गई। 18 जून की सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चेतन का नेट बंद था और फोन का लोकेशन चेतन का दफ्तर दिखा रहा था। अब पुलिस ने चेतन के दफ्तर के कर्मचारियों से पूछताछ की। इस पूछताछ में पता चला कि 18 जून को चेतन अपना फोन दफ्तर में ही छोड़कर अपने एक कर्मचारी का फोन अपने साथ ले गया था। उस कर्मचारी के फोन नंबर की लोकेशन जब ट्रेस की गई तो उसकी लोकेशन वही लोहागढ़ किला निकला। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि असल में हुडी में चेहरा छुपाए शख्स कोई और नहीं, चेतन चौधरी ही। पुलिस ने फौरन चेता और सिया दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों ने पूछताछ में आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन दोनों की कहानी भी सोनम और राजा रघुवंशी जैसी ही कहानी निकली। असल में चेतन के पिता पुणे के एक अमीर कारोबारी है, सिया के पिता भी शहर के इज्जतदार बिजनेसमैन। दोनों परिवार इकट्ठा हुए और इसी साल फरवरी में केतन और सिया की सगाई कर दी। शादी इसी साल 26 नवंबर को जयपुर के एक महल में होनी थी। शादी के लिए उस महल को 17 करोड़ में बुक किया गया था। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक किए जा चुके थे। लेकिन इधर सिया की जिंदगी में कुछ और ही कहानी चल रही थी। पिछले साल दिवाली के मौके पर सचिन चौधरी से उसकी मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी घर वालों ने सिया की शादी केतन के साथ तय कर दी। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि वो चेतन से शादी करना चाहती थी। सिया किसी तरह शादी से पहले केतन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उसने चेतन के साथ मिलकर साजिश रचनी शुरू कर दी। इत्तेफाक से 31 मई को ट्रैकिंग का शौकीन केतन सिया को अपने साथ इसी लोहागढ़ किले में लाता है। यहाँ आने के बाद पहली बार सिया को यह ख्याल आया कि अगर वो ऊंचाई से केतन को धक्का दे दे तो वो खाई में गिर जाएगा और सबको यही लगेगा कि एक हादसा है। इसके बाद 14 जून को सिया जिद कर केतन को एक बार फिर इसी किले में लाती है। वो केतन को 14 जून को ही मारना चाहती थी लेकिन वो केतन को धक्का नहीं दे पाई।
1: 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: पहली कोशिश नाकाम होने के बाद 18 जून को वो फिर केतन को अपने साथ इसी जगह लाई। इस बार उसने केतन से कहा कि ये जगह अच्छी है और प्री वेडिंग शूट के लिए उसे फिर से ये जगह देखनी है। केतन तैयार हो गया। उधर सिया ने चेतन को अपना प्लान बताया। प्लान के तहत चेतन को सिया और केतन के पीछे पीछे आना था। इसके बाद जैसे ही केतन किले की ऊंचाई पर पहुंचा, मौका देखते ही सिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। सिया की इस साजिश से शायद केतन बच जाता। असल में कुछ दिन पहले ही केतन ने अपनी बहन सिया और एक दोस्त के साथ इंडोनेशिया के बाली जाने का प्लान बनाया था। सभी घर से एयरपोर्ट के लिए रास्ते में थे, पर सिया बाली जाना नहीं चाहती थी, लिहाजा साजिश के तहत उसने रास्ते में एक रेस्तरां में रुककर केतन का पासपोर्ट फाड़कर वॉशरूम में फ्लश कर दिया। पासपोर्ट न होने की वजह से सभी को वापस लौटना पड़ा।
2: जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था, सोदा कि ये 71 बाली ना जा पाए।
0: आइए वापस 11 महीने पुरानी सोनम की कहानी में झांकते हैं। सोनम भी अपने बॉयफ्रेंड सचिन की वजह से राजा रघुवंशी से शादी करना नहीं चाहती थी। सोनम भी सिया की बाली की तरह राजा के साथ बेंगलुरु जाना नहीं चाहती थी। जिस तरह सिया जिद कर केतन को लोहागढ़ किला लाई, ठीक उसी तरह सोनम ने भी कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन की आड़ में राजा को अपने साथ गुवाहाटी होते हुए शिलांग ले गई। सोनम ने भी भाड़े के कातिलों के साथ मिलकर अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दिया, तो सिया ने भी अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया। अब आप ही बताइए, ये कहानी सोनम चैप्टर 2 है कि नहीं? श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।
3: इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
7: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
10: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: वर्षीय केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर का जन्मदिन मनाने के लिए उसके दोस्तों के साथ लोहागढ़ किला पहुंचे थे, जहां खाई में गिरने से उसकी मौत हो गई। शुरू में पुलिस को शक था कि घाटी के पास तस्वीरें लेते समय संतुलन बिगड़ने से केतन खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। अब मामला पलट गया है, जिसे हादसा माना जा रहा है। पुलिस अब उसे सुनियोजित हत्या बता रही है। पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल की हत्या एक पहले से सोची समझी साजिश के तहत की गई है, जिसमें उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी शामिल थे। हत्या की साजिश सबसे पहले मई में लोहागढ़ किले की ट्रैकिंग के दौरान रची गई थी। दावा है कि केतन को मारने की एक पिछली कोशिश नाकाम रही थी, इसलिए उसे इस महीने एक और ट्रैक के बहाने किले पर बुलाया गया।
2: 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहागढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
1: पुलिस का कहना है कि केतन को 400 फीट गहरी खाई में धकेल दिया गया और उसकी मौत को एक दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की गई। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों ही पुलिस रिमांड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट।
2: कैच अप ऑन व्हाट्स हॉट विद टिकटॉक रेडियो क्यूरेटेड बाय स्टिंगरे म्यूजिक, योर डेस्टिनेशन फॉर ट्रेंडिंग हिट्स एंड मस्ट सी वीडियोस। स्टे इन द लूप वन वायरल मोमेंट एट अ टाइम। टिकटॉक रेडियो नाउ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन प्लूटो टीवी। स्ट्रीम नाउ, पे नेवर।
1: ओरल हेल्थ का सच।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

मान बीजेपी का हल्ला बोल कहा, मान ने अकाल तख्त का अपमान किया, सिरसा ने पेश किया वीडियो सबूत। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को पाया दोषी, घटना वाली इमारत पर नोटिस चस्पा, 15 दिन में बुलडोजर एक्शन की है तैयारी, धड़ाधड़ सील हो रहे हैं मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर। चर्च गेट से विरार की मुंबई लोकल में सेल्समैन के मर्डर से सनसनी, फर्स्ट क्लास कोच से दरवाजे बंद करने को लेकर हुई पैसेंजर में बहस, चलती ट्रेन से धारदार हथियार से हमला करे करकर्मा डाला। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा, शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई से धकेला, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया मर्डर।

0: दोपहर तक की तमाम बड़ी खबरों का जिक्र करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। आज कौन कौन सी खबरें खास हैं ये आपको सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ में हुए उस अग्निकांड को लेकर। अब प्रशासन जाग रहा है, लगातार बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है और आनन फानन में एक्शन भी ले जा रहा है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसी पर हमारा 2:30 बजे एक खास कार्यक्रम जिसमें निःशब्द, जिसमें हम आपको बताएंगे उन परिवारों के दर्द के बारे में कहानियां जिन्होंने अपनों को इसमें खो दिया। फिर आपको बताएंगे कि भोजपुर में हुए यानी इंकाउंटर के बाद लगातार अब सरकार 7 दिन के बाद जागी है। सीएम ने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और अब कार्रवाई शुरू होने भी लग गई है। अब आखिरी खबर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे मध्य प्रदेश के सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और इसकी चिंगारी अब बढ़ते बढ़ते इसकी तपिश जो है वो उत्तर प्रदेश तक भी देखी जा रही है, इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं एक बड़ी खबर जो लगातार अरुणाचल प्रदेश और कई पहाड़ी इलाकों या फिर आप कह सकते हैं कि पूर्वी इलाकों से आ रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अरुणाचल प्रदेश से एक बड़ा अपडेट आ रहा है जहां पर भारी बारिश के चलते जो हाईवे है उसमें काफी ज्यादा भूस्खलन के बाद आवाजाही रोक दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खासतौर पर ये अरुणाचल प्रदेश के नेशनल हाईवे 13 पर लैंडस्लाइड के बाद रास्ते को बंद कर दिया गया है और अब भी लगातार एनडीआरएफ की टीमें जो हैं और प्रशासन की जो टीमें हैं वहां पर इस इलाके पर सुचारू रूप से ट्रैफिक को चलाया जा सके इसके लिए काम कर रही है। देखिए हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश पर सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई और एक सड़क का पूरा हिस्सा पानी में बह गया और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से हालात बहुत ज्यादा खराब है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पानी का बहाव इतना तेज था कि नेशनल हाईवे 13 पर लैंडस्लाइड के रास्ते पर इस पूरे रास्ते को बहाकर ले गया। और कुछ ऐसी तस्वीरें सिक्किम से भी आ रही हैं। सिक्किम में भी इसी तरीके की तेज बारिश के बाद लगातार एक आप कह सकते हैं सड़क का हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। हम आपको बता दें कि यहां पर भी रांगफू रोरानत रोड पर पहाड़ का दरक गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ का मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक भरभरा कर रोड पर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद लोग बाल बाल इस पूरे हादसे में बचे हैं और पहाड़ के ऊपर से रोड का मलबा सीधे रोड पर आ गिरा। आपको बता दें कि पूर्वी सिक्किम का इलाका है जहां से इस पूरे इलाके में मॉनसून की पहली दस्तक के अंदर ही भारी तबाही हुई है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर किन्नौर के इलाके पर इसी तेज बारिश के चलते पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि कट गया। यहां पर भी नेशनल हाईवे 50 पर 190 फीट लंबा जो बेली ब्रिज था वो टूट कर गिर गया। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त वहां पर 10 टायर वाला एक डंपर पुल को पार कर रहा था और आप तस्वीरें देख सकते हैं सीसीटीवी की तस्वीरें बताई जा रही हैं। उस समय कहा जा रहा है कि इसको कैप्चर किया गया तस्वीरों को और उसी वक्त जब ये पार कर रहा था रोड जब आप पुल तब भी ये भर भरा कर पुल नीचे जा गिरा। हालांकि देखिए आपको ये भी बता दें कि बेली ब्रिज की निर्धारित क्षमता करीबन 28 टन की है। दावा किया जा रहा है कि 5 जून को ही पुल की मरम्मत की गई थी। जो बेली पुल गिरा है उसमें निर्माण 2016 में किया गया था। और चलिए बात मुंबई की भी करते हैं। मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश ने दस्तक दी लेकिन पहली बारिश के अंदर ही क्या आलम हो गया ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार वहां के ताजा हालात किस तरीके के हैं। ये आप देखिए किन सर्कल है, गांधी मार्केट है, दादर रेलवे स्टेशन, दादर हिंदू कॉलोनी और नवी मुंबई मार्केट है, कल्याण का इलाका और नवसारी और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के पानी भरने से लोगों की आवाजाही और उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करीबन 8 तस्वीरें हैं अलग अलग इलाकों की। मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश के बाद से ही लगातार वहां पर कैसा आलम है बारिश का ये आप देख सकते हैं। चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और आपको बिहार के उस एनकाउंटर को लेकर बात करते हैं जिसको लेकर खुद जो वहां के सूबे के मुख्यमंत्री है वो अपनों के बीच घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल 7 दिन के बाद ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए लेकिन 7 दिन के बाद आपको बता दें कि ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के साथ साथ जो सहयोगी थे या फिर जो आपके बीजेपी के कई बड़े नेता थे वो लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे और उसके बाद 7 दिन के बाद सरकार ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश भी दे दिए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू भी कर दी गई है।
1: आवाज
2: मत करो, मेरा सुरक्षा करना रे। कौन भेजा रहे हैं? सीएम भेजा तुम सबको? पहन के देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में, गोलियां कम है मेरे पास और भागो भागो सबको भागो। हाँ चलिए, कुछ नहीं सुना जाएगा।
3: एक एनकाउंटर सम्राट सरकार के गले की हड्डी की तरह यूं फंसा कि नाना करते पुलिस कर्मियों पर एक्शन की हामी भरनी पड़ी। एक एनकाउंटर पर अपनों के बीच ऐसे घिर गई सम्राट सरकार कि मुठभेड़ को अंजाम देने वाले पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करनी पड़ी। 7 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 7 दिन बाद खुद बिहार पुलिस के 5 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज है और जांच आगे बढ़ रही है। ये क्यों और कैसे हुआ ये बताने से पहले आप भोजपुर के पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी इस बयान को गौर से देखिए। ये बयान जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष यानी SHO राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने की तस्दीक करता है और ये मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिवार के लिए पहली जीत है जो पुलिस कर्मियों पर एक्शन की लगातार मांग कर रहे थे।
4: जैसे अभिमन्यु के घेर की गोल गुलाई में बीच में एक आदमी के मारल गई, अभिमन्यु के वही हमारा लड़का के मारल
5: हमारा सामने
4: 3 गोली मारल बा, हेजा मारल बा, एक गोली 2 गोली हेजा, और बाद गाड़ी में ले जाके हेजा मारल बा और 2 गोली आ एक बाद हेजा मारल बा। हमारा इंसाफ चाहिए, ये बा उन लोग का फांसी।
0: और हमारे साथ

0: किया भरत तिवारी से, और उसके बाद पुलिस उनके आवास पर पहुंची, फिर नोकझोंक वाला 16 जून का वीडियो आया, फिर 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। तो दोषी जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर तो FIR दर्ज हो गई है, लेकिन जो SDM है जगदीशपुर के वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके स्तर पर ही शिकायतें की जा रही थी और उन्होंने ही भरत तिवारी से पहला दुर्व्यवहार किया, जैसा यहाँ वहां पंचायत में लोग कह रहे हैं। तो SDM के ऊपर भी नाराजगी यहाँ पर है। सुमित,
1: बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि। देखिए लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ रही है, लेकिन जो लोग हैं उनमें आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। आगे एक और खबर का रुख करते हैं, लखनऊ से वो खबर है जहां जिस दर्दनाक अग्निकांड के अंदर 15 आप कह सकते हैं बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद लगातार उसको लेकर अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसको लेकर आपको सबसे पहले हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
2: लेकिन कई जगह पर पाए नहीं गए, खासकर नवल किशोर रोड पर उनके इलाके।
3: इसके अलावा हम अभी वहां भी जा रहे हैं, आज पूरे दिन यही अभियान चलेगा।
2: पॉइंट ये कि जब घटना हो गई है, इतने लोगों की मौत हो गई, क्या अगर डिपार्टमेंट पहले से ही कार्रवाई करता?
3: पहले भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं आपसे वही बार बार कह रहा हूँ कि हर बिल्डिंग में पहुंच पाना संभव नहीं होता है। हम लोग कार्रवाई कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है पूरे साल।
2: अलीगंज का थाना है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है फायर डिपार्टमेंट को बताने की कि यहाँ कोई बिल्डिंग अगर इलीगल चल रही है तो वहाँ एंट्री एग्जिट नहीं है।
3: लोग हमारे पास कोई कंप्लेन आती है तब जाते हैं, और एक्टिव हमारी नहीं आती वो बिल्डिंग।
2: 15 बच्चों की जान चली गई है बॉस, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो बनती है।
3: बिल्कुल, हम लोग कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ मैं आपको, हम लोग चेक कर रहे हैं और हमें आप चेक करने दें तो हम
2: अलीगंज में एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, आज तक लगातार अलीगंज ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है, अलीगंज में सारे बिजलीगंज में जो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पर कमर्शियल सेंटर,
4: फायर विभाग की गलती नहीं थी आप बोल रहे हैं, बिजली विभाग की गलती थी कि नहीं थी?
3: लोड के संबंध में, लोड का मुझे आइडिया नहीं है कि उस पे कितना लोड था और एक्चुअल में कितना लोड चल रहा है।
2: एंट्री एग्जिट तो देखना आप लोगों का काम है, एंट्री एग्जिट देखना तो आप लोगों का काम है ना,
3: प्रथम दृष्टया।
2: हाँ, तो आप ही लोगों का।
3: हाँ, प्रथम दृष्टया शॉर्टकट रहा होगा
2: सिस्टम की लापरवाही। सिस्टम एक सवाल और भी उठ रहा
3: है, फायर NOC नहीं दी गई थी? फायर NOC
2: क्या मांगी थी उन्होंने?
3: नहीं,
2: क्या उनकी तरफ से मांगी गई?
3: वो ना उन्होंने NOC मांगी गई, ना हमने NOC दी, ना ही उस बिल्डिंग में आने वाले।
2: तो मतलब आपके नाक के नीचे फायर NOC के बिना वहाँ बिल्डिंग चल रही थी?
4: चल रहा था
2: फायर NOC के बिना, कैसे
4: आग लगी कैसे?
2: अब कहाँ पर सवाल ये है कि जब हम कड़े सवाल कर रहे हैं उनसे कड़े सवाल पूछ रहे हैं,
4: बड़ी बिल्डिंग लगातार उसमें इतने बच्चों की मौत।
2: ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाइए, आइए इधर आइए, बाहर आइए, कुछ कड़े सवाल CFO से पूछे, उनके पास कोई जवाब फायर डिपार्टमेंट के पास फिलहाल नजर नहीं आता है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये तो कह देते हैं NOC ना ली ना दी, लेकिन सवाल ये है अगर कुछ नहीं दिया और कुछ नहीं लिया तो उस इमारत में कैसे लाइट आई, या कुल मिलाकर वो कैसे ऑपरेशनल थी? क्या फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी सो रहे थे? क्या उनकी नींद से जागने का समय तब आता है जब किसी बच्चे की किसी मासूम की मौत हो जाती है? क्या ये कार्रवाइयां या जो अभी रेड करने पहुंचे हैं, जिस कोचिंग सेंटर में पहुंचे, यहां ये लोग कल भी आए थे तो उसी कोचिंग सेंटर में क्यों आए थे? क्या उन्हें ये बताने आया गया था कि यहां सारी तैयारियां पुख्ता पहले से रख लीजिए, चाहे मिट्टी हो चाहे वो पानी निकलना हो, सारी चीजें हो, और उन जगहों पर क्यों नहीं गए? यहाँ पर आइए आपको दिखाते हैं, ये पाइप्स यहाँ पर बकायदा फैले हुए हैं और क्या दुरुस्त पाइप निकले हैं कि जैसे ही पाइप यहाँ से निकलता है आप देखिए यहाँ पूरा पानी पानी हो जाता है। बड़ा सवाल तो यही है कि सब पानी पानी यहाँ हो जाता है, सवाल यह है कि क्या पहले से ही सब कुछ बातचीत हो जाती है और उन जगहों पर टीमें जाती हैं? मुख्यमंत्री ऊपर से आदेश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का निर्देश है कि बड़ी कार्रवाई हो, लेकिन क्या अधिकारी जमीनी स्तर पर केवल खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।
1: लखनऊ में भी वही हो रहा है जो हर हादसे के बाद किया जाता है, यानी आनन फानन में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जब गर्दन खुद की फंस गई तो अब अधिकारी जो है बड़े बड़े एक्शन लेने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि अब भी लगातार वहां पर कई अनियमितता है जिसमें सीधे तौर पर संलिप्तता जो है वो अधिकारियों की नजर आ रही है, और यही वजह है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री इन सारी चीजों पर नजर बनाए हुए हैं।
5: सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, कुछ ऐसे ही होश में आई है यूपी की सरकार जिसके सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अब कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलेंगे, बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अवैध कोचिंग संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये सबसे पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों इस इमारत के लक्षा गृह में तब्दील होने का इंतजार

0: किया गया, क्यों 15 नौजवानों की मौत की नौबत आने दी गई? वक्त की जरूरत है अपने गिरेबान में झांकने की, सावधान होने की, सबक सीखने की, लेकिन इस पर सियासत की आंख मिचौली चल रही है।
1: ये जो घटनाएं जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है, और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से ये घटना हुई, वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए।
2: और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपकी सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ही बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है।
3: और चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर एक गोदाम में कहा जा रहा है कि निर्माणधीन गोदाम की दीवार गिरने से और उसका ढांचा गिरने से वहां पर लोग फंस गए हैं। उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहां पर खुद जो बड़े अधिकारियों के साथ साथ वहां पर कई बड़े नेता भी वहां पर मौजूद है। आपको दिखा रहे तस्वीरें, सबसे पहले आप देखिए कोलकाता की ये तस्वीर है। कहा जा रहा है कि कोलकाता के कई लोगों के अंदर फंसे होने की खबर मिल रही है और ये तस्वीरें हम आपको गोदाम की दिखा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा जो है कहा जा रहा है कि गिर गया। कई लोगों के फंसने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और वहां पर आप देखें कि फायर और ये तारा ताला इलाके के अंदर ये गोदाम गिरने के बाद ये हादसा हुआ है।
4: तीनते फुले फुले चेपे गए थे।
3: और हमारे साथ हमारे सहयोगी वहां से जोड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अभी वहां के मौजूदा हालात क्या हैं अगर आप देखें, क्योंकि देखिए तस्वीरों में तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक हिस्सा है गोदाम का जो गिरा है, और कितने लोग थे जो इस समय इसके निर्माण में काम कर रहे थे?
5: जी देखिए, एक हिस्सा नहीं है, मैं दिखा दूं ये कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट है। मैं कैमरा पर्सन लिसन से पहले बोलूंगा कि पूरी इलाका जो है वो दिखाने के लिए करीब जो है यहाँ पे 100 से 100 मीटर की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है। और वहाँ पे जो है कि तीन तल्ला बिल्डिंग था, जो तीन तल्ला बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई। और यहाँ पे करीब जो लोगों का दावा है, यहाँ पे लोकल लोगों की जो दावा है, उनका कहना है कि करीब 40 से 50 जन यहाँ पे फंसे हुए हैं। और यही जो है कि यहाँ पे लोकल लोग भी रेस्क्यू में हाथ लगा रहे हैं। 7 जन को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है अंदर से, लेकिन जो ग्लास कटर हो या उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी व्यवहार की जा रही है। मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे अग्निमित्रा पॉल मंत्री पश्चिम बंगाल की, उसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर यहाँ पे आके पहुंच गई है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हादसा हुई है, यहाँ पे कोलकाता पुलिस की तत्परता के साथ यहाँ पे दिख रही है।
3: बिल्कुल अरिमान, एक बात बताइए, गोदाम किस चीज का था? क्योंकि देखिए जिस तरीके की फैसिलिटी दिख रही है, जितना बड़ा ये गोदाम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा वेयरहाउस था किसी चीज का जिसका निर्माण किया जा रहा था।
5: जी हाँ, देखिए एक गोदाम जैसा बनाया जा रहा था यहाँ पे, पूरी तीन स्तरीय जो है कि बिल्डिंग था। पहले स्तर जो है कि यहाँ पे ढलाई की काम चल रही थी और दूसरी और तीसरी स्तर बन गई थी। यहाँ पे बीजेपी के लोकल नेता भी मिल रहे हैं, मिनिस्टर्स भी मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे
3: अरिमान एक और बात, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें तो दिखाते रहिए, लेकिन ये भी बताइए कि आखिरकार कितने लोग उस समय उस निर्माण कार्य में लगे हुए थे, कितने लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है?
5: देखिए यही जो है कि आशंका करीब जताई जा रही है, 40 से 50 जन जो है कि अंदर हो सकते हैं। अभी तक जो है 7 जन को निकाला गया है, एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई थी बाहर, उसके साथ साथ यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगी हुई थी। करीब 7 जन को यहाँ से निकाला गया है और उसमें से संकटजनक परिस्थिति में 2-3 जन हैं। करीब जो है कि अब आशंका किया जा रहा है कि और भी 40 जन से 50 जन अंदर हो सकते हैं, जो काम में लगे हुए थे और यहाँ पे काम कर रहे थे।
3: अभी आपकी अधिकारियों से वहां मुलाकात हुई होगी, बातचीत हुई होगी, आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे? क्या कोई निर्माणाधीन जब इमारत बन रही थी कोई हिस्सा गिर गया, क्या पूरा का पूरा हिस्सा गिर चुका है, ये थोड़ा सा जानकारी अगर हमारे दर्शकों को आप दे सके तो।
5: देखिए यहाँ पे जो हुआ कि 40 जो है कि ये जो बिल्डिंग है ये त्रिस्तरीय बिल्डिंग था, और यही त्रिस्तरीय बिल्डिंग में जो है कि दूसरा और तीसरा जो फ्लोर है उसका ढलाई का काम जो है वो हो गया था, और तीसरी जो है कि सीलिंग की काम चल रही थी। और उसी वक्त जो है कि अचानक ये बीम समेत जो है कि जितने भी लोहा के बीम दिख रहा है, वो बीम समेत ये बिल्डिंग पूरा का पूरा अचानक गिर चुका, ध्वस्त हो गया, और उसके बाद लोग वहाँ पे अंदर में धस गए। और यहाँ पे देखिए लोग दिख रहे हैं, आप लोग लोकल है?
6: हाँ लोकल है।
5: क्या दिखा है यहाँ पे?
4: यहाँ पे दिखा है एक बैग एक चोल का है, देखिए कि जब ये 4 मई के पहले कंटेक्ट दिया हुआ था यहाँ का जो पार्सल अनवर।
5: आज क्या हुआ, हादसा कैसे हुआ?
4: एक बैग नीचे धंस गया, वो नीचे से जो जो आदमी कंटेक्ट दिया हुआ है वो अनारे अनवर।
5: कितने लोग हो सकते हैं अंदर?
4: 15-16 आदमी अंदर है।
5: 15-16
7: हम लोग 15 आदमी को अभी तक 10 या 12 आदमी को निकाले हैं, और इसके अंदर में 50 आदमी अभी अंदर में छपा हुआ है।
5: 50 आदमी छपा हुआ?
7: हाँ।
5: देखिए आशंका जो जताई जा रही है करीब 50 आदमी जो है कि अंदर हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। और इसी कारण से हम देख लिए हैं कि करीब 3 मंत्री आ चुके हैं पश्चिम बंगाल की, साथ में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो कमिश्नर है, उसके बाद कोलकाता पुलिस और पुलिस के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट सारे टीम यहाँ पे लगे हुए है ये इसको रेस्क्यू करने के लिए।
3: बिल्कुल, अगर आप वहां पर किसी अधिकारी से बात करने की जानकारी, क्योंकि आप चश्मदीदों से बात कर रहे हैं अनिवार्य, वहां पर अगर कोई और भी अधिकारी हो जिनसे आप बात कर सके जान सके कि आखिरकार वहां पर इस समय परिस्थिति क्या है, कितनी ज्यादा फायर ब्रिगेड के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें वहां पर तैनात की गई हैं।
5: देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो कंट्रोल रूम 99 यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ 99 में कंट्रोल रूम खोली गई है। कंट्रोल रूम के साथ साथ यहाँ पे फायर ब्रिगेड की पूरी बड़ी ब्रिगेड जो है यहाँ पे तैनाती की गई है, उसके साथ साथ कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट की बहुत सारी टीम यहाँ पे की गई है। हम देख सकते हैं कि ये जितने भी ऑफिसर्स हैं मिनिस्टर्स हैं एक साथ जो है कि इसकी रेस्क्यू की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं। और यही जो छवि है इस वक्त दिख रहा है कि अधिकारी जो है वो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, और अभी जो है कि वो किसी से बात करने नहीं मांग रहे हैं। करीब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, अगर 40 से 50 जन अंदर फंसा हुआ हो।
3: बिल्कुल, देखिए उम्मीद ये की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी अनिवार्य निकाल लिया जाए। आप इस खबर पर बने रहिएगा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोलकाता के पास एक गोदाम गिर जाने के बाद लगातार वहां पर कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बने रहेगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
9: भारत। We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
10: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
9: Enjoy non-stop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
11: Williams keeps it. First down. Touchdown.
9: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
12: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हत्या, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
9: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा।
2: लखनऊ अग्निकांड में अवैध निर्माण मामले में 18 अधिकारी दोषी, एलडीए ने कार्रवाई की सिफारिश, रिपोर्ट शासन को भेजी। सीएफओ अंकुश मित्तल राजधानी की प्राइवेट कोचिंग में एलडीए की टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे, आज तक के कड़े सवालों में फंसे। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन, फायर सेफ्टी जांच के लिए एलडीए बिजली नियम निगम और अग्निशमन विभाग का विशेष अभियान शुरू। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद एलडीए का एक्शन, 15 दिन में जवाब नहीं तो चल सकता है बुलडोजर। अस्पताल में भर्ती बिल्डिंग मालिक का सीने का दर्द का बहाना, नहीं आया काम, डॉक्टर ने परीक्षण के बाद आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को बताया फिट, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। लखनऊ अग्निकांड में नया मोड़, निलंबित एफएसएसओ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, निलंबित एफएसओ कमलेंद्र सिंह ने लिखा खत, कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। लखनऊ अग्निकांड में निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह बयान में पलटे, वायरल वीडियो पर मांगी माफी। लखनऊ कोचिंग सेंटर में अग्निकांड में फायर चेकिंग में खुली लापरवाही, छात्रों का दावा, नहीं दी गई सेफ्टी की जानकारी। अखिलेश ने योगी राज में पास नक्शे की जांच की मांग पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा कि मौत पर अखिलेश ना करें राजनीति। लखनऊ अग्निकांड के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फैसला, कहा कि 25 जून को जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। कानपुर में अवैध कोचिंग पर कार्रवाई का मामला, कोचिंग संचालक बोले केडीए अधिकारियों ने कहा है कि आज सील करवा लो, कल खुलवा देंगे, केडीए ने दी सफाई। लखनऊ अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में अग्नि सुरक्षा जांच तेज, जीडीए ने अब तक 206 भवनों को खामियां मिली है, 56 सेंटरों को सील किया गया है। नोएडा में सुरक्षा मानकों में भारी खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने दी 2 कोचिंग सेंटरों को किया सील, प्रशासन की संयुक्त टीम का निरीक्षण अभियान लगातार जारी। मुख्यमंत्री योगी ने बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में के दौरान गूगल के अधिकारियों के साथ की महत्वपूर्ण बैठक। गूगल के प्रतिनिधियों के साथ तकनीकी आधारित विकास और रोजगार सृजन के अवसरों पर की गई चर्चा। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर यूपी कांग्रेस का आज राज्यव्यापी प्रदर्शन, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। राम मंदिर चंदा विवाद के बीच वीएचपी की अयोध्या बैठक टली, 25 से 29 जून की केंद्रीय प्रबंध समिति बैठक स्थगित की गई।

0: आया था, मैंने उठाया, मम्मी मम्मी कर रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मम्मी आग लग गई, मेरा दम घुट गया, मेरे को बचा लो मम्मी। इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में।
1: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा।
2: दिल्ली में कांड हुआ और ये टाइट टाइट हो जाएगी चार दिन के बाद।
3: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे, क्या वापस कर सकता है वो?
4: बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस

एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारी खास पेशकश निशब्द में। लखनऊ की इस आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 15 जिंदगी मौत की आग सूली पर चढ़ गई, उसके साथ ही वो परिवार भी लगातार बर्बाद हो गए, जिनके अपने जिन्होंने खो दिए। ये लापरवाही की वो आग थी जिसने कई जिंदगियों को तो बर्बाद किया ही, साथ ही उन परिवारों को भी बर्बाद कर दिया जो लगातार अपने अपने लोगों को खोकर अपने अपनों को खोने के बाद लगातार बेहताशा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 22 जून की तस्वीरों के बाद। अब लगातार जो खबरें मिल रही हैं वो यही कि कई परिवार जो हैं वो अपनों को खोने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान है।

0: इस दर्द की कोई दवा नहीं है, इस मातम का कोई अंत नहीं है। लखनऊ की उस आग ने सिर्फ 15 लोगों की जान नहीं ली, उसने 15 घरों के सपने जला दिए। किसी माँ का सहारा छीन लिया, किसी पिता की उम्मीद बुझा दी, किसी बहन की राखी सूनी कर दी और किसी दुल्हन के हाथों की मेहंदी आने से पहले ही उसके सारे अरमान राख कर दिए। अब पीछे बची हैं कुछ तस्वीरें, कुछ यादें, कुछ अधूरे सपने और ऐसे जख्म जो शायद कभी नहीं भरेंगे। कहां तो घर में शादी की बातें हो रही थी, बारात की तारीख तय करने की चर्चा चल रही थी, मेहमानों की सूची बन रही थी, नए रिश्तों के सपने बुने जा रहे थे, लेकिन अब उसी घर में मातम पसरा है। रोते बिलखते परिजन हैं और सामने रखी है 27 साल के नीलेश कुमार की तस्वीर। लखनऊ अग्निकांड के उन बदनसीब चेहरों में शामिल जो सुबह घर से निकले तो थे अपने सपनों को पूरा करने, लेकिन शाम होते होते उनकी मौत की खबर पहुंच गई।
1: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती। तो आज मेरा देवन, मेरा
2: 25 मिनट देर पहुंची है जो लोगों ने बताया,
1: 45 मिनट 25 मिनट जो भी पहुंची है, अगर आज वहीं पर पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं था, अलीगंज थाना कितनी दूर है वहां से, पुरनिया कितनी दूर है, आ सकती थी गवर्नमेंट बचाने, लेकिन नहीं, शासन प्रशासन की गलती है।
0: कुछ ही समय बाद नीलेश की शादी होने वाली थी अनामिका सामंत के साथ। एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने सजाए जा रहे थे, दो परिवार तैयारियों में जुटे थे, एक तरफ बारात निकलनी थी, दूसरी तरफ बारात के स्वागत की तैयारी थी, लेकिन नियति ने एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया। अब न शहनाई बजेगी, न साथ फेरे होंगे, न दुल्हन की विदाई होगी और न ही नए रिश्तों की शुरुआत। अब बस तस्वीरों के सामने बहते आंसू हैं और उन सपनों की राख जो अभी पूरे भी नहीं हुए थे।
3: बैठ के कभी गेम खेला करता था हम लोग, बातचीत किया करते, रात के दो दो तीन तीन बजे तक साथ में समय बिताते थे। यहाँ गर्मी लगती तो दोनों भाइयों ने मिलकर एसी लगाया, तो इसी तरह हम लोग यहाँ सारा समय हम लोग यहीं बिताते थे, छुट्टी का दिन भी पूरा यहीं बीतता था हमारा उसके साथ।
0: 27 साल के नीलेश और 30 साल के अनामिका की मुलाकात उसी सेंटर में काम करने के दौरान हुई थी। साथ काम करते करते दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने पूरी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया। परिवारों ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, भविष्य की योजनाएं बन रही थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि किस्मत इतनी बेरहम साबित होगी। पिछले ही हफ्ते अनामिका के माता पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे नीलेश के परिवार से मिलने। घर में एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम भी हुआ। पहली मुलाकात में ही अनामिका ने सबका दिल जीत लिया। उसकी मुस्कान, उसका अपनापन, उसका जिंदा दिल स्वभाव परिवार के हर सदस्य को भा गया। दोनों परिवार अब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, एक परिवार बनने की तैयारी कर रहे थे। अगले हफ्ते नीलेश के परिजन पश्चिम बंगाल जाकर अनामिका के परिवार से मिलने वाले थे। ट्रेन की टिकटें तक बुक हो चुकी थी, शादी की तारीख पर चर्चा शुरू हो चुकी थी, भविष्य के सपनों को आकार दिया जा रहा था, लेकिन लखनऊ की आग ने इन सारी तैयारियों को एक पल में राख कर दिया। तीन भाई बहनों में दूसरे नंबर पर रहे नीलेश परिवार की उम्मीद थी। रिश्तेदार उन्हें मेहनती, जिम्मेदार और अपने काम के प्रति समर्पित युवक के रूप में जानते थे। उनकी दुनिया नौकरी और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। परिवार को उम्मीद थी कि इस साल उनका प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी और फिर वो अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करेंगे, अपना घर खरीदने का सपना। नीलेश चाहते थे कि जिस घर को वो अपनी मेहनत से बनाएंगे उसी घर में अनामिका दुल्हन बनकर आए, लेकिन अब वो सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। इस त्रासदी ने अनामिका के परिवार को भी दोहरा जख्म दिया है, क्योंकि आग में जान गंवाने वालों में अनामिका की चचेरी बहन सौमिल्या भी शामिल थी। यानी एक ही हादसे ने परिवार से बेटी भी छीन ली और होने वाला दामाद भी।
4: 27 वर्षीय नीलेश को शायद ही मालूम था कि महज दो दिन पहले लगाई गई ये नई नवेली पेंटिंग देखने के लिए अपने ही कमरे में, जहां वो सोता उठता बैठता काम करता, वही मौजूद नहीं रहेगा।
5: लखनऊ की इस आग ने 15 जिंदगियों के दिए बुझा दिए। इसमें ज्यादातर या तो स्टूडेंट थे या फिर ट्रेनिंग। इन सबको उम्मीद थी कि अपने कामयाबी को हासिल करने के लिए अपने सपनों के पंख लगाकर ये उड़ेंगे और अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, लेकिन शायद इनके सपनों और कामयाबी के बीच में व्यवस्था और भ्रष्टाचार की एक ऐसी काली खाई थी जिसमें ये जिंदगी कांक हो गई, पता ही नहीं रहता।

0: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक माँ ने अपनी आंखों के सामने जिगर के टुकड़े को हमेशा के लिए खो दिया। दिल में कसक यही है कि सरकारी सिस्टम की नींद वक्त रहते टूटी होती तो शायद बेटा आज जिंदा होता।
1: देखा है, मैंने सब देखा। मैं बराबर यही कह रही थी कि एकदम से देखा था मैंने सब। जिस तरह से इस समय भी मैंने देखा कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था, उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते।
2: मेहनत कर लिया थी,
1: हाँ बच्चे बचाए जा सकते थे। जॉब करता था, एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था।
0: पहले सरकारी अनदेखी ने आदित्य को मौत के मुंह में पहुंचाया और फिर सरकारी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ गई। आदित्य सीतापुर से लखनऊ आया था, सोचा था एनिमेशन एंड गेमिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिली नौकरी के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि सरकारी सिस्टम आदित्य की जिंदगी के पैर ही उखाड़ देगा।
3: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
4: तब माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ मतलब बाहर मौजूद हैं, और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है।
3: वो आग लग चुकी थी जब पहुंची, आग लग चुकी थी, फिर उसके बाद जो है बुझाने का और निकलने का काम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था। जो है कि बनने बड़ा हुनरमंद, बड़ा मतलब एक चीज है, बड़ा हौसले वाला। कभी ये वो उसके दिमाग था ही नहीं कि चार आदमी है तो हम निपट नहीं लेंगे, हिम्मत ही बहुत था।
0: घर वालों के मुताबिक आदित्य बचपन से पढ़ने में होशियार था, हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। आदित्य की हसरत मेहनत के दम पर इतना ऊंचा मुकाम हासिल करने की थी जिससे पूरे घर को नाज हो, लेकिन किसे पता था कि आदित्य की मौत के साथ एक सपना भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज आदित्य की मौत पर घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और जुबान पर सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है।
3: जैसे ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाई टाई फीस हो जाएगी चार दिन के बाद। वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ। और उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। अब उसके बाद
4: आपका कहना है कि चार दिन में सब भूल जाएंगे?
3: सात दस दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम दे आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। अब
0: आदित्य उस दुनिया में चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता, लेकिन परिवार यही चाहता है कि दोषियों का हिसाब होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी और परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ ना टूटे। 24 साल का अब्दुल रहमान घर का इकलौता सहारा था। चंद महीने पहले नौकरी मिली थी, सोचा था घर वालों की तंगहाली को खुशहाली में बदल देगा, लेकिन एक झटके में परिवार की सारी खुशियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं।
5: ये 3 बजे जब आग लगी है तब तो हमने खुद ही सोशल साइट पे डाला था, तब तक हमें नहीं पता था। अभी 8 बजे पता चला कि हमारा भतीजा रहमान भी इस आग का शिकार हो गया।
0: अब्दुल के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, दिव्यांग पिता और बहन का सहारा था। एनिमेशन का कोर्स करने के बाद अब्दुल को नौकरी मिली, लेकिन वही दफ्तर अब्दुल की मौत की वजह बन गया।
5: घर में पिताजी विकलांग हैं, माँ टीचरिंग करती थी, बच्चा अभी दो ही तीन महीने हुए जॉब पे था, काम भी करता था, वहीं पढ़ाई भी करता था।
6: अब परिवार की कैसे जिम्मेदारी क्या चाहते हैं आप लोग इस पूरी घटना पर?
5: हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी मां की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था, यही पालन पोषण करता था, घर की देखभाल करता था।
7: लखनऊ के अलीगंज से जो चित्कार निकली उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है।
2: खासतौर पर जो 15 जिंदगियां गई उसके बाद ना सिर्फ उस इमारत को खंडर में तब्दील कर गई बल्कि वो परिवार भी एक खंडर नुमा हो गए हैं जिनके अपने खोए हैं। खास बात यह भी कि लगातार परिवार के लोग अब भी इस उम्मीद में हैं कि शायद प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन शायद इन 15 जिंदगियों को देखकर ऐसा लगता है कि इन सब की कहानियां जो हैं रोंगटे खड़े कर देती है।
0: लखनऊ के अलीगंज में इस एनिमेशन सेंटर से उठती आग की लपटें भले ही बुझ गई हों, लेकिन स्याह पड़ी इस इमारत की कालिख ने कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। लखनऊ के अलीगंज से दर्द की ऐसी चीत्कार उठी है जो पूरे देश में गूंज रही है। 15 लोगों की मौत हो गई, किसी का बेटा गया, किसी की बेटी चली गई। ये है ज्योति, जो स्कूटी से अपने दफ्तर जाया करती थी, लेकिन अब ज्योति कभी नहीं लौटेगी। जी हाँ, ज्योति भ्रष्टाचार के अग्निकांड की भेंट चढ़ गई, घर वालों पर वज्र सा गिर पड़ा है। अब ज्योति की सिर्फ यादें हैं और परिवार की दरकती उम्मीदें हैं। जिस सिस्टम ने ज्योति को उसके भाई से छीन लिया, आगे भी कुछ बदलने वाला नहीं है।
7: ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए। लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
0: हरियाणा के सोनीपत का भविष्य भी लखनऊ अग्निकांड में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। भविष्य की नई नई नौकरी लगी थी, परिवार का इकलौता था। 6 जून को भविष्य एनिमेशन सेंटर में नौकरी ज्वाइन करने के लिए गया था और अब बेटे का शव पहुंचा है। भविष्य ने तो माँ को भी वीडियो कॉल किया था। सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने अपने बच्चे को आग के धुएं और लपटों से घिरा देखा होगा। वीडियो कॉल पर भविष्य ने माँ से अपना चेहरा दिखाने को कहा और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई।
8: मैंने उठाया, मम्मी मम्मी कर रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर माँ मेरा तस्वीर नहीं दिखाई दे रही थी, फिर बोला कि मम्मी थोड़ा चेहरा दिखाई दिया, उसने आगे आके करके दिखाया, मम्मी आग लगी, मेरा दम घुट गया, मेरे को बचा लो मम्मी, मैं बचा भी नहीं पाई अपने बच्चे को।
0: लखनऊ अग्निकांड ने बाराबंकी के शहजान और अम्मार की भी जान ले ली। शहजान बहुत टैलेंटेड था। क्रिएटिव था, लखनऊ में नौकरी करता था। आग लगने पर शहजान ने पिता को आखिरी बार फोन किया था और कहा था कि पापा कैसे भी करके मुझे बचा लो। बेटे के आखिरी शब्दों को याद करके शहजान के पिता भावुक हो जाते हैं। शहजान उनका इकलौता बेटा था, अब जिंदगी भर उन्हें इन्हीं कड़वी यादों के सहारे जीना है।
2: और अगली खबर दिल्ली से है। ये खबर ना सिर्फ शर्मसार करने वाली है बल्कि खौफनाक भी है। दरअसल दिल्ली में फुटपाथ पर सो रही एक बच्ची का पहले एक कैब ड्राइवर ने रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 घंटे में इस आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया।
9: पुलिस जिस शख्स को टांग कर ले जा रही है वो बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक अपराध का आरोपी है। इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने 11 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप करने और फिर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस अपराध की कहानी जितनी जघन्य है, इस केस में दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी उतनी ही काबिले तारीफ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 साल की बच्ची माता पिता, 2 बहनों और भाई के साथ मेहरौली के फुटपाथ पर CDR चौक पर सो रही थी। तभी नशे में चूर ड्राइवर बबलू किसी राइड लेने के लिए वहां खड़ा हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर बच्ची पर पड़ी, उसने बच्ची को जबरन वहां से उठाया और गाड़ी में डालने लगा। इस बीच बच्ची की नींद खुल गई और वो चिल्लाने लगी। चिल्लाने पर बच्ची का पिता गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन तब तक आरोपी बच्ची को लेकर भाग चुका था। पिता ने इसके बाद PCR कॉल की, तुरंत मेहरौली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया तो आरोपी बच्ची को उठाते हुए दिखाई दे रहा था। CCTV में गाड़ी की परछाई दिखी लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं दिखा। पुलिस ने जब पूरा फुटेज चेक किया तो पता चला कि गाड़ी यहाँ करीब एक घंटे से खड़ी थी। गाड़ी सुबह करीब 4 बजे उस जगह पहुंची जहां बच्ची सो रही थी और करीब 5 बजे बच्ची को अगवा किया। पुलिस ने तफ्तीश तेज की, रैपिडो, ओला, उबर से उस इलाके की डिटेल्स मांगी गई, उस रूट के आगे और पीछे के सीसीटीवी फुटेज देखे गए और जल्द पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर की पहचान कर ली। गाड़ी पहचान होते ही विकासपुरी इलाके में उसकी जीपीएस लोकेशन और आरोपी के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया और आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार शाम पुलिस जब आरोपी को क्राइम स्पॉट पर ले जा रही थी तो आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: चलिए न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: व्हाटएवर यू आर इन द मूड फॉर, ट्यून इन हैज द म्यूजिक टू मैच, फ्रॉम टुडेज हिट्स टू टाइमलेस फेवरेट्स new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.

गुवाहाटी की ये बर्थडे पार्टी असम ही नहीं सोशल मीडिया के जरिए देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसी बर्थडे पार्टी जिसे लेकर सोशल मीडिया में ऐसा गुस्सा भड़का कि अब इस पार्टी में शामिल लोगों के पीछे असम पुलिस पड़ गई है। दरअसल ये लाल कालीन, ये गुब्बारे और आतिशबाजी और लोगों का जो जमावड़ा आप देख रहे हैं वो सब कुछ गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु पर सजा है। ये सेतु गुवाहाटी का व्यस्ततम ट्रैफिक कॉरिडोर है। 21 जून को रात करीब 12:30 बजे की बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया तो लोगों ने सार्वजनिक सड़क पर इस तरह बर्थडे मनाने पर तीखी आपत्ति करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। सोशल मीडिया में बवाल मचा तो पुलिस एक्शन में आई। भरालूमुख थाने में केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी के रूप में गौतम बरुआ की पहचान की गई। गौतम बरुआ और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा पार्टी में इस्तेमाल की गई 4 कारों को भी जब्त कर लिया गया है। घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: और मुंबई में मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और लगातार हो रही भारी बारिश ने महानगर की रफ्तार पर असर डालना शुरू कर दिया। तेज बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में गंभीर जल भराव की स्थिति भी बन गई है और पानी भर गया है। सुबह सुबह काम पर निकले, दफ्तर के लिए निकले लोगों को इसका सामना भी करना पड़ा और दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई नजर आई और ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। गाड़ियों की कतारें लंबी लग गई थी और किंग सिग्नल, गांधी मार्केट, दादर, नवी मुंबई तमाम इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला। That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
2: ये तस्वीरें याद है ना? चंद रोज पहले अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाई थी। सारी कवायद इस बात की थी कि यूपी में ब्राह्मण वोट को एकजुट किया जाए। अब अखिलेश के बाद मायावती ने भी ब्राह्मण वोटर्स पर दांव चला है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने और सफल सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को केंद्र में रखा है। पार्टी ने ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में टिकट देने का निर्णय लिया है। मायावती ने स्पष्ट किया है कि पार्टी केवल वादे नहीं करती बल्कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत पर काम करती है। इधर बीएसपी ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने में लगी है, उधर पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव की मुश्किलें मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बढ़ा दी है।
3: अखिलेश यादव के परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा एहसान है, इस वजह से मैंने पत्र के माध्यम से उनसे मांग की है कि 2027 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किसी मुसलमान की घोषणा करें।
2: लेकिन मौलाना की अपील को समाजवादी पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है।
4: हमने एक नेता मुलायम सिंह यादव को चुना था और हमने एक नेता अखिलेश यादव को चुना है, उसी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और जीतेगी भी।
2: यूपी में 27 का समर अब जाति और धर्म के समीकरण बना रहा है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अरुणाचल प्रदेश समेत उत्तर पूर्व के कई राज्यों में मॉनसून ने मचाई है तबाही। पहली बारिश में हुई मुंबई के गले तक भरा है पानी। रेलवे ट्रैक समेत कई अंडरपास लबालब। मौसम विभाग की रेड वार्निंग। कोलकाता के तारा तालाब इलाके में बन रहा गोदाम अचानक गिरा, कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। हादसे के वक्त काम कर रहे थे 40 से 50 लोग। बेअदबी वीडियो मामले में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आरोपों में घिरे पंजाब के सीएम भगवंत मान। बीजेपी का हल्ला बोल, कहा कि मान ने अकाल तख्त का अपमान किया। सिरसा ने पेश किया वीडियो का सबूत। लखनऊ अग्निकांड पर एलडीए ने 18 अधिकारियों को पाया दोषी। बिजली लोडिंग में घपला करने वाले अफसरों भी सस्पेंड किए गए। घटना वाली इमारत पर 15 दिनों में बुलडोजर एक्शन की तैयारी। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत पर बड़ा खुलासा। शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई से नीचे धकेला, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया मर्डर।

कोलकाता के तारातला में बड़ा हादसा, तारातला में निर्माणधीन गोदाम ढहा। कई लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर, हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त करीब 40 से 50 मजदूर कर रहे थे काम, अभी अचानक गोदाम का एक हिस्सा भरभराकर गिर गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए सेना की मदद भी ली जा रही है। बचाव दल में गैस कटर की सहायता से लोहे की चेन और बीम को काटकर मलबे में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी है। पुणे में करोड़पति कारोबारी के बेटे की मौत का बड़ा खुलासा, शादी से पहले मंगेतर ने केतन को 400 फीट गहरी खाई से नीचे धकेला। पुलिस के मुताबिक शादी से बचने के लिए सिया ने बनाया था हत्या का प्लान, फोटोशूट के बहाने लोहागढ़ के किले पहुंची थी सिया। पुणे केतन अग्रवाल मर्डर केस में दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, जांच जारी। लोहागढ़ फोर्ट मर्डर केस में गेटकीपर का बड़ा दावा, आरोपी चेतन चौधरी मास्क और स्पोर्ट ड्रेस में पहुंचा था किले पर। गेटकीपर जाधव का बड़ा दावा, टिकट मांगने पर चेतन ने कहा था कि ऊपर एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूं, 25 रुपए की टिकट देने से इनकार कर दिया था। लखनऊ अग्निकांड में अवैध निर्माण के मामले में 18 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, एलडीए ने कार्रवाई की सिफारिश रिपोर्ट शासन को भेजी है। सीएफओ लखनऊ के अंकुश मित्तल ने राजधानी की प्राइवेट कोचिंग में एलडीए की टीम से के साथ साथ जांच के लिए पहुंचे, आज तक के कड़े सवालों पर फंस गए। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में फायर सेफ्टी जांच के लिए एलडीए बिजली निगम और अग्निशमन विभाग की विशेष अभियान जारी है। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद एलडीए का एक्शन, 15 दिनों में जवाब नहीं दिया तो चल सकता है बुलडोजर। अस्पताल में भर्ती बिल्डिंग मालिक के सीने का दर्द का बहाना नहीं आया उसके काम, डॉक्टर ने परीक्षण के बाद आरोपी वीरेंद्र शुक्ला को बताया फिट, 14 दिन की जुडिशियली कस्टडी में भेजा गया। लखनऊ अग्निकांड में नया मोड़, निलंबित एफएसएसओ ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, निलंबित एफएसओ ने कमलेंद्र सिंह ने लिखा खत्र, कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। लखनऊ अग्निकांड में निलंबित एफएसएसओ कमलेंद्र सिंह ने बयान से पलटा, वायरल वीडियो पर मांगी है माफी। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में फायर चेकिंग के खुली लापरवाही, छात्रों का दावा कि नहीं दी गई सेफ्टी की जानकारी। अखिलेश ने योगी राज में पास नक्शे की जांच की मांग पर ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा कि मौत पर अखिलेश ना करे राजनीति। लखनऊ अग्निकांड के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का फैसला, कहा कि 25 जून को जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। राम मंदिर चंदा विवाद के बीच वीएचपी ने अयोध्या बैठक टली है, 25 से 29 जून की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अखिलेश यादव का हमला, कहा कि एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रूट पर जमीन निवेश और आरोपों में तेज हुई राजनीति, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर उठाए हैं सवाल। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, अखिलेश यादव इस मामले पर ज्यादा हल्ला कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की एक्सप्रेस परियोजना और जमीन निवेश में जुड़े कई कुछ तथ्य छिपाना चाहते हैं। गूगल मैप की गलती से फिरोजाबाद के गांव का नाम बदला गया है, सरकारी काम अटके हैं, सुधारों के लिए प्रशासन ने गूगल को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री योगी ने बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव का दौरा किया, गूगल के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की, रोजगार सृजन के अवसरों पर चर्चा की गई। अभिषेक बैनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मांग की अनुमति मांगी, हाईकोर्ट ने राहत नहीं दिया, फिलहाल नहीं जा सकेंगे विदेश। कुछ बिहार के कटमनी विवाद में आरोपों के बाद टीएमसी नेताओं ने लौटाए करीब 90,000 और आवास योजना के पैसे लेने का आरोप भी लगाया। बेदबी वीडियो मामले पर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आरोपों में घिरे पंजाब के सीएम भगवंत मान, बीजेपी का हल्ला बोल, कहा कि मान ने अकाल तख्त का अपमान किया, सिरसा ने पेश किया है वीडियो का सबूत। भगवंत मान से भाई मनजीत सिंह की अपील, कहा कि अकाल तख्त साहिब के सामने गलती स्वीकार कर माफी मांगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा एक्शन, जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश वर्मा हटाए गए, जांच के बीच नए एसडीपीओ को तैनात किया गया। भोजपुर में भारत इंकाउंटर में एक्शन, जगदीशपुर में एसडीपीओ और शाहपुर के थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हो गई है, बवाल के बाद बैकफुट पर बिहार पुलिस है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए, एसटीएफ के भूमिका और एडीजी कुंदन कृष्णन पर उठाए सवाल।
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर अशोक चौधरी का बड़ा बयान, बोले कि हर घटना पर मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं, मां पंचायत पर भी साधा है निशाना। भरत तिवारी के घर पहुंचे प्रशांत किशोर, परिजनों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री के बाद मुंबई में जोरदार बारिश, महाराष्ट्र के लिए अगले 5 दिन अहम होंगे। मानसून की एंट्री के बाद ठाणे और मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया, अगले 3 दिनों के लिए ठाणे और मुंबई में होगी जोरदार बारिश। मुंबई में भारी बारिश से वेस्टर्न हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया, कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से अंधेरी अंडरपास में भरा है पानी, उफान में फंसी है कार। मुंबई के गांधी मार्केट में भरा पानी, वाहनों की धीमी रफ्तार हो गई है। मुंबई के गांधी मार्केट में भरा पानी, कई इलाकों में पानी में डूब गए हैं, कई वाहन पानी में फंस गए हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जलभराव, दादर रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवी मुंबई में भारी बारिश के जलभराव, भारी भाजी मार्केट के सामने आई तस्वीरें। मुंबई में भारी बारिश से जलभराव हो गया, किंग सर्कल के पास रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुंबई की पहली बारिश में अंधेरी रनवे जलमग्न हो गया, प्रियंका चतुर्वेदी का तंज, ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ नहीं दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन हो गया, NH 13 बंद कर दिया गया, ईटानगर और जीरो मार्ग पर यात्री फंस गए हैं, कई मकान पर खतरा मंडराने लगा है। सिक्किम के रांगपो रोराथांग में भी भारी भूस्खलन हुआ, रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया, प्रशासन ने दूसरे रास्तों से यात्रियों को जाने की सलाह दे रहा है। कोलकाता में मूसलाधार बारिश का कहर, हाईकोर्ट परिसर समेत कई जगहों पर गिरे हैं पेड़, कई इलाकों में जलभराव के से यातायात बाधित हो गया है। गुजरात के नवसारी समेत कई इलाकों में दूसरे दिनों भी रुक रुक कर हो रही है बारिश, हिल स्टेशन सापुतारा में पहाड़ों पर छाई है धुंध, बादलों के नजारे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। राजकोट के कौडल में तेज बारिश से रेलवे अंडरब्रिज में भरे पानी से पैसेंजरों को भारी ST बस फंस गई है, JCB की मदद से उसको निकाला गया है। धर्मनगरी अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर के शीश पर ध्वजारोहण संपन्न कर दिया गया, दिव्य समारोह का आयोजन किया गया। अयोध्या में 11 संतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ध्वज का किया है पूजन, फिर मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर फहराए गए हैं ध्वज। भव्य समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे करीब 4,000 राम भक्त, श्रद्धालुओं ने भाव विभूण होकर पूजा पाठ की। कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के निवासी जंग बहादुर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंपी करीब 300 वर्ष पुरानी भगवान श्री राम संबंधित आध्यात्मिक ग्रंथ। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी तेज हो गई, 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की निकाली जाएगी रथ यात्रा। पुरी में रथों के निर्माण कार्य में तेजी आया, पारंपरिक सेवक अपनी पूरी निष्ठा के साथ रथों को भव्य रूप देने में जुटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 भव्य रथों को निर्माण जारी है, 200 कारीगर इसको बना रहे हैं। रथों के निर्माण में तकनीकी और कलात्मक दोनों पहलुओं पर दिया जा रहा विशेष ध्यान, सेवक रथों के जोड़ स्थानों के लिए लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 29 जून को प्रभु जगन्नाथ की होगी पूर्णिमा स्नान, 15 दिनों तक भगवान

0: गई है, 5 स्कूटी और कई लिथियम बैटरी जलकर खराब हो गई है। बोकारो में प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर युवती ने घंटों किया हंगामा, तस्वीर आई सामने। सहरसा में देव व्यापार का भांडाफोड़, गेस्ट हाउस में महिला समेत 6 पुरुष हिरासत में लिए गए, आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। दिल्ली के उद्योग भवन इलाके में पास लगी भीषण आग, आग लगने की शुरुआत एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल में शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के बाद के आसपास की झुग्गियों में भी आग की चपेट में आ गई, मौके पर करीब 20 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, कोई जनहानि नहीं हुई है। अजमेर में चलती बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 37 यात्रियों की बचाई गई जान, शॉर्ट सर्किट के हादसे की आशंका है। आगरा के आकाश इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में धुआं उठने से मचा हड़कंप, सैकड़ों छात्र सुरक्षित निकाल लिए गए बाहर। विकास नगर के जंगल में लगातार हो रही है आग, आग को मौके पर वन कर्मी और दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। हैदराबाद में एटीएम कैश वैन में 17 लाख रुपए का चोरी हुई है, बदमाश वैन की डिक्की में बैग लेकर फरार हो गए, घटना सीसीटीवी में कैद हो गया। बेटिया में बेटा नहीं होने की नाराजगी से पिता ने पत्नी को नहर में धकेला, 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। इंदौर में अवंतिका में गैस लीक से आग में लगी है 4 लोग झुलसे, करीब 5,000 घरों की गैस सप्लाई बंद हो गई। जामनगर में मास्क पहनकर वाहन चोरी करने वालों गैंग का सीसीटीवी में कैद हो गए, इस्कॉन मंदिर में पास लगातार वारदात से दहशत है। पटना में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, हरियाणा में सीमेंट के बोरे में छिपाकर ट्रक में लगाई गई 48 लाख की विदेशी शराब को जब्त कर लिया गया है। मुर्शिदाबाद में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, कम से कम 15 लोग घायल हो गए। पुंछ में एसडीआरएफ, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त मॉकड्रिल की है, जलवायु आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए तैयारी की गई है। मुजफ्फरनगर पुलिस सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों की मार्केटिंग कर रहे हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अमरावती में बड़ा साइबर घोटाला उजागर किया गया है, गरीबों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर करोड़ों की ठगी, गोवा में छापेमारी के बाद 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बटाला में जमीन के विवाद में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, कत्ल के करने के बाद नौजवान ने खुद की भी आत्महत्या कर ली। वेलकम टू जंगल का नया गाना रिलीज हो गया, फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अक्षय कुमार की वेलकम टू जंगल में लगे हैं 18 कट, फिल्म को CBFC ने UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दी। श्रद्धा कपूर की ईथा टीजर रिलीज हो गया, फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बाबा बागेश्वर के दरबार पहुंचे टाइगर श्रॉफ, लोगों की सेवा और गरीब बेटियों पर बातचीत की। जून में आखिरी वीकेंड पर एंटरटेनमेंट की बारिश, थिएटर और OTT पर एक साथ रिलीज होगी 13 नई फिल्में और सीरीज। और बुलेटिन को आगे बढ़ाता हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता के तारा ताला इलाके के अंदर बड़ा हादसा हुआ है, तारा ताला इलाके में निर्माणधीन गोदाम ढह गया है, कई लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर मिल रही है। हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त करीब 40 से 50 मजदूर इस जगह पर काम कर रहे थे, तभी अचानक गोदाम का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिर पड़ा। घटना की सूचना के मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया, इसके बाद पुलिस, दमकल विभाग की टीम और आपदा राहत की टीम मौके पर पहुंच गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हालात को देखते हुए सेना की मदद भी ली जा रही है। बचाव दल ने गैस कटर की सहायता से लोहे के चेन और बीम को काटकर मलबे में फंसे मजदूरों को पहुंचने की कोशिश की और कई लोगों को इसमें रेस्क्यू भी किया गया है।
1: एक हिस्सा नहीं है, मैं दिखा दू ये कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट है। मैं कैमरा पर्सन लिसन से पहले बोलूंगा कि पूरी इलाका जो है वो दिखाने के लिए करीब जो है यहाँ पे 100 से 100 मीटर की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, और वहां पे जो है कि 3 तल्ला बिल्डिंग था, जो 3 तल्ला बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई, और यहाँ पे करीब जो लोगों का दावा है, यहाँ पे लोकल लोगों की जो दावा है, उनका कहना है कि करीब 40 से 50 जन यहाँ पे फंसे हुए हैं, और यही जो है कि यहाँ पे लोकल लोग भी रेस्क्यू में हाथ लगा रहे हैं। 7 जन को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया।

0: गया है अंदर से, लेकिन जो ग्लास कटर हो या उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी व्यवहार की जा रही है। मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे अग्निमित्रा पॉल मंत्री पश्चिम बंगाल की, उसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर यहाँ पे आके पहुंच गई है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हादसा हुई है यहाँ पे कोलकाता पुलिस की तत्परता के साथ यहाँ पे दिख रही है।
1: और हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी तपस सेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। तपस, हम लगातार अरनिवान की वो रिपोर्ट दिखा रहे थे जो मौके तक हम तक पहुंचा रहे थे, अभी वहां के ताजा हालात क्या हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 40 से 50 लोग मजदूर अब भी उस पूरी इमारत में फंसे हुए हैं।
2: जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 35 लोग अभी तक फंसे होने की खबर है, और यहाँ पर जो हमें ताजा सूचना मिल रही है कि तकरीबन 13 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया। मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर पर, अभी एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, कुछ देर पहले एनडीआरएफ जुड़ चुकी है यह रेस्क्यू ऑपरेशन में। बड़े क्रेन को लाया गया है ताकि जो ढांचा है ऊपर का, वो ढांचे को उठाया जाए, क्योंकि काफी लोग अंदर से अभी भी गुहार लगा रहे हैं, उनकी आवाज सुनाई दे रही है, तो उन्हें बाहर निकालना भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है यहाँ पर प्रशासन के लिए। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, सेना की एक टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है, सेना भी जो टीम है वो भी यहाँ पर निकालने की कोशिश में है। जो सूत्रों से खबर अभी तक तकरीबन 8 से 9 लोगों को शुरुआती तौर पर निकाल के सिस्केम अस्पताल लिया गया था, ले जाया गया था, जहां 4 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी भी जो डेथ टोल का फिगर है सरकारी तौर पे अभी तक नहीं बताया गया है। कई लोग जिन्हें अस्पताल ले जाया गया वो अभी भी गंभीर हालत में है, कई लोग अंदर फंसे हैं, कम से कम ये आंकड़ा 25 से 35 के आसपास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मजदूर जो काम कर रहे थे उनका कोई संख्या जो था वो कुल संख्या अभी तक टोटल नहीं कर पाए हैं प्रशासन के लोग, अधिकारी फिगर आउट कर रहे हैं, लेकिन
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तपस, लगातार आप इस बड़ी खबर पर हम तक हमसे जुड़े रहेगा। हमारे सहयोगी देखिए ग्राउंड से आपको बता रहे हैं कि आखिरकार अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब अगली खबर है मानसून को लेकर। दरअसल जब भी मानसून आता है लोगों को राहत मिलती है, लेकिन उसके साथ आफत भी आती है। खबर, बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड की हाहाकारी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और आपको बता रहे हैं कि आखिरकार भारी बारिश की वजह से NH-13 और होस पोटिन रोड पर भूस्खलन हुआ है, सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई है, और ईटानगर से जीरो जा रहे यात्रियों को बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का एक वेग, यानी एक बड़ी तेजी से पानी लगातार किस तरीके से मिट्टी को बहाता हुआ, किनारे को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है, इससे किनारे के कई मकानों के गिरने का खतरा भी पैदा हो गया। वहीं नेपको डैम में क्वार्टर में भी नुकसान हुआ है, यहाँ पर मौजूद जो उनके क्वार्टर्स थे वहां पर भी नुकसान हुआ है, और जानकारी के मुताबिक 15 से ज्यादा क्वार्टर्स क्षतिग्रस्त हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए SDRF की तैनाती कर दी गई है, राहत और बचाव कार्य अब भी वहां पर तेजी से चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस समय पानी का बहाव कितना तेज होगा, और अपने साथ आसपास के जो मकान थे या फिर जो इलाका था उसके इलाकों के कई जगहों को ये काटता हुआ आगे पानी का बहाव बढ़ गया। और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब बात करते हैं सिक्किम की भी। आपको दिखाते हैं कि पूर्वी सिक्किम में आई एक खौफनाक तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर रांगफू रोराथान में आपके साथ पहाड़ दरकने से तस्वीरें सामने आई है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ का एक बड़ा मलबा जो था ऊपर से आकर इस रोड पर, इस हाईवे पर गिर पड़ा, और इसके बाद वहां पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। पहाड़ के ऊपर से रोड पर मलबा गिरा, जिसकी पूर्वी सिक्किम के लिए जाने वाला ये रोड बंद कर दिया गया है। और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गनीमत यह रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, पूरी पहाड़ का ये इलाका जो था, या फिर आप कह सकते हैं। और अगली खबर हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से, किन्नौर में जहां पर NH-5 पर 190 फीट लंबी बेली ब्रिज टूटकर गिर पड़ा। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त 10 टायर वाला डंपर इस पुल से गुजर रहा था। हालांकि राहत की बात यह रही कि डंपर चालक की जान बाल बाल बच गई। पुल गिरने के बाद के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा वजन होने की वजह से ये बेली ब्रिज निर्धारित जो इसका भार था, उसकी जो क्षमता थी वो 28 टन की थी, उस समय इस पर भार ज्यादा था, इसी वजह से गिरा है। 5 जून को ही पुल की मरम्मत का काम पूरा हुआ था। जो बेली पुल गिरा है उसका निर्माण 2016 में किया गया था। चले वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: Sokudo.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Hind, bade aaram se.
1: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
0: Vimal, bolo zuba kesri.
1: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: in association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you? Vimal, bolo zubaan kesri. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek.
1: आवाज
2: मत करो, मेरा सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ, हम भेज रहे हैं, भेजा तुम सबको। हाँ, पहन के देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरे प्रशासन साथ में, हाँ, गोलियां कम है मेरे पास, और भागो, भागो सबको, भागो, हाँ चलिए।
3: एक एनकाउंटर सम्राट सरकार के गले की हड्डी की तरह यूं फंसा कि नाना करते पुलिस कर्मियों पर एक्शन की हामी भरनी पड़ी। एक एनकाउंटर पर अपनों के बीच ऐसे घिर गई सम्राट सरकार कि मुठभेड़ को अंजाम देने वाले पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। 7 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती और अब 7 दिन बाद खुद बिहार पुलिस के 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज है और जांच आगे बढ़ रही है। ये क्यों और कैसे हुआ ये बताने से पहले आप भोजपुर के पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी इस बयान को गौर से देखिए। ये बयान जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष यानी SHO राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने की तस्दीक करता है और ये मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिवार के लिए पहली जीत है जो पुलिस कर्मियों पर एक्शन की लगातार मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि भरत तिवारी की मां आशा देवी ने लिखित अर्जी दी थी। आरोप लगाया था कि 17 जून को पुलिस टीम भरत तिवारी को अपने साथ जवेनिया गांव ले गई थी, वहां भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे घेर लिया और गोली मार दी, लेकिन भरत तिवारी के परिवार के आरोप, एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश, इन तमाम बातों का शायद उतना असर नहीं होता जितना कि बीजेपी के भीतर उठी आवाज का हुआ है। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं थे, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त थी जो खुलकर नाराजगी जता रहे थे और शायद यही वजह थी कि 5 पुलिसकर्मियों को मुकदमे की जद में आना पड़ा। आरा से शशिभूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर में मॉनसून ने मचाई तबाही, पहली बारिश में ही थम गई मुंबई की रफ्तार, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। कोलकाता के तारातला में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 40 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका, राहत बचाव कार्य में जुटी टीमें। पंजाब में सियासी भूचाल, बेअदबी मामले में फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट के आरोपों से घिरे सीएम भगवंत मान, बीजेपी ने खुला मोर्चा, पेश किया सबूत। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, एलडीए जांच में 18 अधिकारी दोषी, बिजली विभाग के कर्मचारी सस्पेंड, 15 दिन में चलेगा बुलडोजर। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पीएम मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामेनेई के अंतिम यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा आमंत्रण।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है खबरें असरदार का। लखनऊ में अवैध इमारत में लगी आग से 15 युवाओं की मौत को 49 घंटे बीत चुके हैं। एलडीए की जांच में 18 अधिकारी और अभियंता दोषी पाए गए हैं। एसआईटी को जांच करते 2 दिन हो गए हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है अपनों को खोने वाले परिवारों का सरकारी जांच पर अविश्वास, जिन्हें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर बार एक ही पैटर्न दिखता है। हादसा किसी भी राज्य में हो, हर बार पहले कहीं हादसा होता है, फिर हादसे वाली जगह पर नेताओं का दौरा होता है, फिर दुख दिखाते हुए नेता मुआवजे का ऐलान करते हैं और फिर एसआईटी के हाथ में जांच सौंप दी जाती है। लेकिन न किसी मंत्री पर कार्रवाई होती है, न किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होती है। हाल के किसी भी हादसे को याद करिए, अगर कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा मंत्री, बड़ा सरकारी बाबू सजा पाया हो या कुर्सी से हटाया गया हो, यहां तक कि जेल भी कुछ दिन के लिए मोहरों के नाम पर छोटे कर्मचारी अगर गए तो चंद दिन में फिर जमानत पर बाहर आ जाते हैं। इसीलिए सोमवार को जो 15 परिवारों ने अपने बेटे बेटियों को खोया है, उनकी बात आज यूपी की सरकार सुने, क्योंकि परिवारों को लगता है कि इस बार भी कुछ नहीं होगा सिवाय कुछ दिन जांच जांच खेलने के।
2: था। मैंने उठाया, मम्मी मम्मी कर रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर मामे तो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही तेरी, फिर बोला कि मम्मी थोड़ा चेहरा दिखाई दिया, उसने आगे आके करके दिखाया, मम्मी आग लगी, मेरा दम घुट गया, मेरे को बचा लो मम्मी, मैं बचा भी नहीं पाई अपने बच्चे को।
3: जवां बेटा गुजर जाए तो कंधा टूट जाता है, 15 परिवार टूट चुके हैं, लेकिन इन 15 परिवारों का आज सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल।
2: तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में, मेरी तो दुनिया उजड़ गई।
3: मुख्यमंत्री से 15 परिवार पूछते हैं, क्या वाकई बेईमानी की माचिस से फिर कहीं आग नहीं लगने दी जाए? क्या एसआईटी केवल सवालों की सुलगती आग पर फिलहाल पानी डालने वाला जरिया नहीं बनेगा? केवल निचले मोहरे नहीं बल्कि बड़े अधिकारी, मंत्री और भ्रष्टाचार के मगरमच्छों तक जांच पहुंचेगी? या फिर 4 दिन सवाल उठते हैं उठने दो और फिर सब भूल जाएंगे वाली रवायत चलेगी? उत्तर प्रदेश सरकार को इस बार बताना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन पहले नौकरी ज्वाइन करने वाले भविष्य शर्मा के पिता कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, जांच में कुछ नहीं निकलने वाला।
4: जांच कुछ नहीं होगी, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी और कुछ नहीं होगा, वहाँ पे ना आज तक हुआ ना आगे ऐसा होगा।
3: 24 साल के आदित्य श्रीवास्तव के मामा ने सीधे मुख्यमंत्री के नाम अपना संदेश भेजा है, सुन लीजिए मुख्यमंत्री। भांजे को खोने वाले मामा को लगता सरकार कुछ नहीं करने वाली।
5: मंत्री जी से ये तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये तरीके से भी दिल्ली में कांड हुआ और ये टाइफिस हो जाएगी 4 दिन के बाद, वो अधिकारी वो कैसे नहीं, कैसे नक्शा पास कर दिए, कैसे क्या कर दिए, हाँ, अब उसमें होता है कि अभी सब पनिश किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, अब उसके बाद
6: आपका कहना है कि 4 दिन में सब भूल जाएंगे?
5: सब 10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। हम आज जो है कि 65 साल का मैं हूँ, तो 65 साल से जो है कि सब देखते तो चले आ रहे हैं। आप
3: अपने माता पिता की तस्वीर रचने वाले नीलेश के पिता बेटे को खोने के बाद कहते हैं आश्वासन के सिवाय सरकार कुछ नहीं कर सकती।
7: हादसा हो जाने के बाद किसी कोई बात करे क्या वापस कर सकता है? वो वापस तो नहीं कर सकता, केवल समस्या को समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए बस केवल आश्वासन देंगे। पर
3: जो बच्चे बस परिवार की उम्मीदों का भार संभालने के लिए पहला कदम ही उठाए, उनके घर वालों को लगता है कि हमारे देश में जनता की मौत के बाद जांच वो झुनझुना है जिसे बजाकर फुसलाया जाता है, बहलाया जाता है। यही वजह है कि अपनी बहन को खोने वाले भाई सत्यम को सरकार की जांच वाले ऐलान से रत्ती भर उम्मीद नहीं।
8: ऐसा चलता रहेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे जो गवर्नमेंट आ जाए। लोग ही ऐसे हैं, पैसे दे के सब पास हो जाता है, अब वो ऐसे होता रहेगा, तो इसमें मुझे उम्मीद नहीं है।
3: वो 15 लोग एक बार नहीं, दो दो बार जलाए गए। पहले लखनऊ के अलीगंज की इस बिल्डिंग में सरकारी लापरवाही के हाथ, सरकारी नीम बेहोशी के कारण, और फिर दूसरी बार हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक चिता पर उन्हें अग्नि दी गई। जिनको न्याय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की बात कर दी गई, बीच में दौरा छोड़कर पहुंचने की बातें बताई गई, अधिकारियों को फटकार से लेकर किसी को बख्शेंगे नहीं वाली बातें भीतर से बाहर तक आई। लेकिन वो आम आदमी, वो मिडिल क्लास जिसका अपना जल कर मरा है, वो अब की किसी हालत में विश्वास नहीं करना चाहता।
9: किसी भी तरह नहीं दे सकते, शासन प्रशासन की गलती है।
3: नीलेश की भाभी पूछती है, बताइए सरकार कब तक उजड़ेंगे घर बार?
9: एसआईटी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन मेरे देवर को तो वापस नहीं दे सकते ना। वो किसी भी तरह नहीं दे सकते, शासन प्रशासन की गलती है। अभी अपने को कुछ होता तो प्रशासन तुरंत दौड़ जाएगा। ये वीआईपी यहाँ पर जब मंत्री निकलते हैं तो तुरंत रास्ता बंद कर दिया जाता, आम आदमी खड़ा रहता है, बच्चे धूप में स्कूल चलाते भी लगते, तब गवर्नमेंट को तरस नहीं आता जनता पे, और माँ देवर जल के जनता को तरस नहीं आया गवर्नमेंट प्रशासन को? वहाँ इतने बेचारे, कितनों के घर उजड़ गए, कितने देवर, कितने भाई बहन, किसके किसके बच्चे होंगे सर, वो बेचारे नहीं रहे अब इस दुनिया में, क्या करेंगे? उनके माँ किसी का वो एक सहारा, किसी के इकलौते बच्चे होंगे।
3: 15 के 15 परिवार मानते हैं सरकार किसी की भी हो कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये लोग गुस्से में हैं, ये परिवार दुख में है इसलिए बोल दिया, लेकिन हकीकत ये है कि सच अब सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग यही तो देखते आए। पहले कहीं आग लगती है, फिर वहाँ नेताओं का दौरा होता है, फिर मुआवजे का चेक देने के नाम पर सियासी फोटो सेशन होता है, एसआईटी जांच का ऐलान करके चंद दिन धूम धड़ाके से जांच दिखाई जाती है, और फिर या तो निचले स्तर का कर्मचारी, कोई गार्ड, कोई मैनेजर पकड़कर पीठ थपथपा ली जाती, या फिर जांच जारी है वाली पिपहरी बजाई जाती है। ना कोई उच्च अधिकारी सजा पाता है, ना किसी का मंत्री पद जाता है, ना किसी को जेल होती है, छोड़ दिया जाता है जनता को फिर से भ्रष्टाचार के मुंह में, कहीं जलने, कहीं डूबने, कहीं गिरने, कहीं मरने के लिए।
0: लखनऊ अग्निकांड में अब एक्शन तेज हो गया है। जिस अलीगंज में हादसा हुआ वहां तमाम एलडीए, फायर विभाग, बिजली विभाग के अधिकारी एक साथ मुआयना कर रहे हैं, बेसमेंट में चल रही दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। पर आज तक के जरिए परिवार यही पूछते हैं कि जब 3 जून को दिल्ली में लगी आग के बाद सीएम ने जांच के निर्देश दिए थे ऐसी जगहों पर, तब इन विभागों की नींद क्यों नहीं टूटी?
10: भैया वो तैयार ही नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे, वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था, एक एक का नाम पता है मुझे, सही हम का। हाँ मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था।
3: ये परिवार आज रो नहीं रहे होते अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बुलडोजर वाली कानून व्यवस्था, एनकाउंटर वाले लॉ एंड ऑर्डर का डर भ्रष्टाचारियों को भी होता। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, एक एक लाइन पर खुद गौर करें, मानो खुद को ही मुंह चिढ़ाने या आईना दिखाने का काम सरकार करती है, जिसमें लिखा है फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इमरजेंसी में बाहर निकलने या भीतर जाने का इंतजाम नहीं था, आने जाने का एक ही रास्ता था, न कोई एग्जिट गेट अलग था, न कोई इमरजेंसी रूट अलग था, बिजली की व्यवस्था अत्यंत अनियमित तरीके से थी, ऐसा कोई इंतजाम नहीं था जिससे धुआं बाहर निकल सके। असुरक्षित तरीके से भीतर ही एसी के आउटर और बिजली उपकरण लगे थे। दुर्घटना की हालत में बचने का कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं था।
11: लखनऊ के जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने 15 लोगों की जान ले ली, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लापरवाही और नियम कायदे की धज्जियां उड़ाकर बनाया गया था। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंट्री एग्जिट प्वाइंट एक था, यानी कि एक ही रास्ते से एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था, और उस एंट्री एग्जिट प्वाइंट पर भी एसी के पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल, एग्जॉस्ट लगाए रखे थे, यानी कि एक रास्ता और वो भी सकरा कर दिया गया। और यही वजह थी कि जब आग लगी, धुआं फैला, तो जो लोग दूसरी और तीसरी मंजिल पर पढ़ाई करने, नौकरी करने के लिए पहुंचे थे, वो उस धुएं में फंस गए और दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई।
3: पहला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, एलडीए नाम सुना होगा, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इसके प्रमुखों का कितना विकास हो चुका है? कभी इसकी सरकार बस जांच करा ले, क्योंकि जिस एलडीए के लोग, आम आदमी का छज्जा कितना बाहर निकला है, रैंप कितना बाहर निकला है, इसका हिसाब किताब जोड़कर, उसे तोड़कर या फिर कुछ ले देकर हिसाब बराबर कर लेते हैं। वही प्रथमेश कुमार की अगुवाई वाला एलडीए मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद कभी ये नहीं देख पाया कि कैसे रिहायशी इलाके में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलता रहा, कैसे घर का नक्शा पास करा के बेसमेंट से 2 फ्लोर ऊपर तक मौत की दुकान और इंस्टीट्यूट चलता रहा। क्या मुख्यमंत्री जिनके अधीन एलडीए आता है, उनके वीसी प्रथमेश कुमार और दूसरे जिम्मेदारों को चिन्हित करके एक लकीर मुख्यमंत्री खींचेंगे, या फिर चुन्नू मुन्नू टाइप के कर्मचारियों पर गाज गिरा के हो गया वाला बोल बोला जाएगा?
12: बिल्डिंग आवासी में पहले पास थी, बाद में उन्होंने कमर्शियल रूप में उसका इस्तेमाल करना जब शुरू कर दिया है, वहाँ पर जो बिजली विभाग था उन्होंने उनका लोड सैंक्शन किया होगा कि कितनी एसी चल रही है, कितना बिजली का खर्चा इनका आ रहा है, उस हिसाब से उनको वहाँ पर देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है देखा नहीं ध्यान से। और जो एलडीए है, एलडीए की एरिया में आता है, तो एलडीए ने क्या चीज देखा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है।
3: एलडीए वाले बिना पैसा खाए तो आंख बंद नहीं किए होंगे, बिजली विभाग वाले भी बिना पैसा दबाए चुप तो बैठे नहीं रहे होंगे, और इन भ्रष्टाचारियों को तो किसी बुलडोजर एनकाउंटर का भी डर नहीं, क्योंकि ये लोग तो बचते ही आए हैं। यही वजह है सीधे आज मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार की सुने, जिन्हें लगता है जिम्मेदार कोई है तो वो सरकार है।
7: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं, या शॉर्ट सर्किट ना हो, देख देख सुविधा असुविधा की बात है। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या अधिकारी जिम्मेदार है वहाँ के?
13: हर मामले में होता है, लेकिन कागजी कार्रवाई में कुछ नहीं होता है, बाद में बस आश्वासन दे करके सरकार भूल जाती है।
14: शासन प्रशासन करता क्या है, खाली आश्वासन देता है, कुछ नहीं करता है गरीबों के लिए, कुछ नहीं करता हूँ।
9: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते, शासन प्रशासन की गलती है।
0: लखनऊ अग्निकांड में जब गर्दन फंसी तो एक्शन की शुरुआत हुई, सीएम योगी खुद निर्देश जारी कर रहे हैं, एलडीए अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई करने में लगा है, लेकिन ये सब पहले नहीं हुआ। यूपी की सियासत में इस अग्निकांड को लेकर दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश भी शुरू हो गई है।
15: सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, कुछ ऐसे ही होश में आई है यूपी की सरकार, जिसके सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने अब कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलेंगे, बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अवैध कोचिंग संस्थानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये, सबसे पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों इस इमारत के लक्षा गृह में तब्दील होने का इंतजार किया गया, क्यों 15 नौजवानों की मौत की नौबत आने दी गई? वक्त की जरूरत है अपने गिरेबान में झांकने की, सावधान होने की, सबक सीखने की, लेकिन इस पर सियासत की आंख मिचौली चल रही है।
16: ये जो घटना है, जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की बनती है, और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए, अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए, जिन अधिकारियों की वजह से ये घटना हुई वो मुख्यमंत्री को सामने आगे कर दिए।
17: ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है।
15: अलीगंज में जिस परिवार ने अपनों को खोया है उन्हें लग रहा है कि मामला ठंडा पड़ते ही सब ठंडे पड़ जाएंगे, इस हादसे को यूं ही भुला दिया जाएगा।
2: मेरे तो दुनिया उजड़ गई।
10: थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते, मेरा बेटा भी आज जिंदा होता।
5: ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर।
15: इनकी आशंका सही है क्योंकि एक बार फिर पूरी व्यवस्था ठर्रे पर चलती दिख रही है। एलटीए जांच का वही पुराना खेल खेलता दिख रहा है। एलटीए की जांच में 18 अधिकारी और अभियंता दोषी पाए गए हैं। जांच में सामने आया है कि इमारत को आवासीय इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी जबकि बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
0: लखनऊ हो या दिल्ली, हादसों से सरकारी सिस्टम सबक नहीं सीखता। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में फिर बन सकते हैं, जहां जगह जगह लाक्षागृह चल रहे हैं। आज तक में खुफिया कैमरे से जो जानकारी जुटाई है, खुलासा हुआ है कि बेसमेंट में अवैध तरीके से लाइब्रेरी और कोचिंग चलाई जा रही है। 6 कमरों की इजाजत की जगह 15-20 कमरों के होटल चलाए जा रहे हैं।
3: लखनऊ के अलीगंज की इस इमारत में 15 परिवारों की चिराग बुझ गए। सरकारी व्यवस्था की इस घोर लापरवाही से पूरा देश विचलित। देश भर में ऐसी बेबसी 27 जुलाई 2024 को भी लोगों ने महसूस की। तब देश की राजधानी में सरकारी अंधेर गर्दी से ऐसा ही हादसा हुआ जब ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबकर 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया।
18: बेसमेंट के अंदर इट इज नॉट अलाउड एज पर द फायर एनओसी एंड एज पर द एमसीडी नॉर्म्स। बेसमेंट के अंदर यू कैनॉट हेल्ड एनी क्लासेस।
19: सो हम लोग नीचे उस टाइम पे थे तभी एक मेरे गार्डमैन थे जो मेरे गार्डमैन है वहाँ पर बाहर ऊपर ही थे उस टाइम पे, वो भाग के नीचे आए एंड ही शाउटेड दैट हरी अप, जल्दी करो और बैग लगाओ और पानी आ रहा बहुत तेज।
3: जिस बेसमेंट को पार्किंग और स्टोरेज के लिए मंजूरी मिली थी वहां लाइब्रेरी चलाकर सैकड़ों छात्र छात्राओं की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा था। जगह के अवैध इस्तेमाल, बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम और सुरक्षा खामियों की घातक तिकड़ी ने 3 नौजवानों को तब बेमौत मार डाला। उस हादसे के बाद भी वायदे हुए, जांच बैठी, कार्रवाई की लाठी पीटी गई और कहा गया कि अब ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे। लेकिन जिन सरकारी विभागों की लापरवाही से यह हादसा हुआ क्या उन्होंने कोई सबक सीखा? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल जो सामने आया वो पूरे देश को खबरदार करता है। आज तक ने अपनी पड़ताल में पाया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार के एजुकेशन हब में आज भी बेसमेंट का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया जा रहा है। ये फ्यूचर वर्ल्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसके बेसमेंट में महज 10x10 फुट के कमरे को लाइब्रेरी में बदल दिया गया, जहां करीब 25 स्टडी क्यूबिकल बनाए गए। हैरानी की बात यह कि इस लाइब्रेरी में प्रवेश बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए मिलता है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी विफलता राजेंद्र नगर हादसे के दौरान भी सवालों के घेरे में आई। हमारी मुलाकात वहां के मैनेजर राकेश से होती।
0: बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमीन घोटाले को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि कर्नाटक में खड़गे के ट्रस्ट के नाम इंडस्ट्री और कृषि की जमीन दी गई है। ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाया गया है।
20: दार्थ विहारा ट्रस्ट को KIADकर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने वर्ष 2024 में कर्नाटका की सरकार, कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष थे और अभी भी हैं और प्रियांक खड़गे मंत्री थे, इस ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि केआईएडी ने दी थी, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने 2024 में दी थी, और जिस पर्पस के लिए दी गई थी वो कहा गया था कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे एरोस्पेस और डिफेंस में। दोस्तों अब इस 5 एकड़ भूमि का मार्केट रेट 100 करोड़ का है। अब ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट ने इसके पहले कोई भी काम ना एरोस्पेस में किया है, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरोस्पेस या डिफेंस में किया है। तो सवाल ये उठता है कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मेंबर है, उसको 5 एकड़ भूमि जो इंडस्ट्रियल लैंड है, जिसको कोई ना कोई इंडस्ट्रियल या एरोस्पेस के ट्रस्ट को देना चाहिए था, उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट को दिया। जो
0: वक्त हो चला एक ब्रेक का, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
22: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
23: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
24: Sokudo.

टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलाव की तेज रफ्तार से आईटी सेक्टर में नौकरियों का पूरा गणित बदलने लगा है। आज कंपनियों की नजर उन लोगों पर है जो सीधे बिजनेस की ग्रोथ बढ़ा सके। इसी बदलाव की झलक मई 2026 के हायरिंग आंकड़ों में नजर आ रही है। दरअसल देश में कुल व्हाइट कॉलर हायरिंग सालाना आधार पर महज 1% बढ़ी है। वहीं आईटी सेक्टर की भर्ती में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा दबाव एंट्री लेवल और कम स्किल वाली नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईटी सेक्टर की सुस्ती पूरी कहानी नहीं बताती, क्योंकि तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा खास है। जहां एक तरफ सामान्य टेक रोल्स में मौके कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बनी हुई है, जिनमें शामिल हैं AI, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश कर रही हैं जो ऑटोमेशन और AI प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं फोकस बड़ी टीम बनाने की जगह हाई स्किल टैलेंट पर है, यानी नौकरी बाजार में चुनौती स्किल की है। कंपनियों की प्राथमिकता का असर सैलरी ट्रेंड पर भी साफ नजर आ रहा है। कम अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती घट रही है, जबकि अनुभवी लोगों पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 20 लाख रुपए सालाने से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में 11% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मिड लेवल और एंट्री लेवल हायरिंग में कमजोरी बनी रही है। AI को लेकर शुरुआती उत्साह खत्म होने की बातें भी कई बार सामने आई, लेकिन हायरिंग डेटा कुछ और ही कहानी बता रहा है। फरवरी के रिकॉर्ड स्तर के बाद थोड़ी नरमी जरूर आई है, फिर भी AI से जुड़ी नौकरियां बाकी बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। मई 2026 में AI और मशीन लर्निंग से जुड़ी हायरिंग 22% बढ़ी है। इस बदलाव के साथ IT कंपनियों का पुराना ढांचा भी बदलता दिख रहा है। लंबे समय तक IT इंडस्ट्री एक ऐसे मॉडल पर चलती रही जिसमें जूनियर कर्मचारियों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी और अनुभवी प्रोफेशनल्स कम, लेकिन AI के दौर में ये समीकरण बदल रहा है। अब पारंपरिक पिरामिड मॉडल की जगह डायमंड मॉडल उभर रहा है। इस मॉडल में एक्सपर्ट्स और अनुभवी कर्मचारियों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। वहीं कंपनियां टेक्नोलॉजी खर्च को रिजल्ट देने वाली भूमिकाओं की तरफ मोड़ रही हैं। इसी ट्रेंड का फायदा उन IT कंपनियों को मिल सकता है जिनकी पकड़ AI, डिजिटल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मजबूत है। आदित्य के राणा आज तक।

0: घर में रखे सोने की चमक हर भारतीय का दिल खुश कर देती है। शादी ब्याह से लेकर मुसीबत के वक्त यही पीला सोना हमारा सबसे सच्चा साथी बनता है। देश के करोड़ों लोग जरूरत पड़ने पर इसी सोने को गिरवी रखकर बैंक से लोन भी लेते हैं। आम आदमी की इस बड़ी जरूरत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार सोने के बाजार में कुछ बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। इसी वजह से बैंक से गोल्ड लोन का पूरा लेखा जोखा मांगा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने बैंक से 2023 से लेकर अब तक के गोल्ड लोन का पूरा डेटा मांगा है। इसमें बैंक को दिए गए लोन की कुल रकम, ग्राहकों और उधारकर्ताओं की संख्या के साथ गिरवी रखे सोने की मात्रा बतानी होगी। इसके साथ ही विदेशी सप्लायर्स से जुड़े गोल्ड मेटल लोन का पूरा पोर्टफोलियो भी सरकार को सौंपना होगा। इस बड़े कदम के पीछे सरकार की सोच गोल्ड लोन और गोल्ड फाइनेंसिंग सिस्टम की गहराई से समीक्षा करना है। दरअसल देश में सोने की लगातार बढ़ती डिमांड और भारी इंपोर्ट को नियंत्रित करने के लिए नए नियम बनाने की हलचल तेज हो गई है। आंकड़ों को देखा जाए तो 2025-26 में गोल्ड इंपोर्ट करीब 24% बढ़कर 71.9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान विदेशों से कुल 721 टन सोना आयात किया गया, जिसकी ऊंची कीमतों ने सरकार का इंपोर्ट बिल बढ़ा दिया। इसलिए आने वाले दिनों में गोल्ड लोन, गोल्ड ETF और आयात निर्यात से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की संभावना है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में उछाल की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। इसी दबाव को कम करने के लिए सरकार नए रास्ते तलाश रही है। इस पूरे मामले में गोल्ड इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने सरकार और रिजर्व बैंक को कोई सुझाव दिए हैं। इनका कहना है कि विदेशों से पूरी तरह तैयार सोना मांगने की जगह घरेलू रिफाइनरियों में साफ होने वाले कच्चे सोने के बार का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। गोल्ड मेटल लोन के तहत बैंक विदेशी सप्लायर्स से सोना लेकर ज्वेलर्स को गहने बनाने के लिए देते हैं। इंडस्ट्री का सुझाव है कि बैंक और गोल्ड ETF स्कीम को देश में ही रिफाइंड डोरे गोल्ड बार खरीदने की इजाजत मिले। इससे घरेलू सोने का इस्तेमाल बढ़ने से विदेशों पर निर्भरता घटेगी और देश का चालू खाते का घाटा काबू में आ जाएगा। गोल्ड कारोबारियों ने सरकार से निर्यात नीति को भी थोड़ा आसान बनाने की मांग की है। मांग कमजोर होने पर बिना बिके अतिरिक्त सोने को चीन और टर्की जैसे विदेशी बाजारों में बेचने की अनुमति मांगी जा रही है। सरफा बाजार में सुस्ती के सीजन में सरकार पूरी व्यवस्था को सुधारने का खाका तैयार कर रही है, जिससे आम ग्राहकों की जेब और इकोनॉमी को सुरक्षित रखा जा सके। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

चाप पेश किया सबूत। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, एलडीए जांच में 18 अधिकारी दोषी, बिजली विभाग के कर्मचारी सस्पेंड, 15 दिन में चलेगा बुलडोजर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के मुताबिक खमनई की अंतिम यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा आमंत्रण।

0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ईरान युद्ध को लेकर कैसे अपने ही घर में अमेरिका में ही घिरते जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके ही सहयोगी उनके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारे से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बेहद खास समारोह के लिए आधिकारिक आमंत्रण भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोला अली खमेनेई के स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया गया है। हम आपको बता दें कि 86 वर्ष के आयतोला अली खमेनेई इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। अब अगले महीने यानी 4 जुलाई से लेकर 9 जुलाई 2026 तक ईरान में उनका 6 दिनों का अंतिम संस्कार कार्यक्रम होने जा रहा है। यह आमंत्रण भारत और ईरान के ऐतिहासिक संबंध और मजबूत रणनीतिक संबंधों को भी दिखाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले ही इस कार्यक्रम में अपना डेलीगेशन भेजने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नई दिल्ली यानी भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई जवाब ईरान तक पहुंचा है। मुहर्रम के महीने में होने वाले इस जनाजे पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। तो 4 जुलाई को 86 वर्षीय आयतोला अली खमेनेई उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और लगभग एक हफ्ते तक यह चलेगा। इसी वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल दोनों की एक जॉइंट एयर स्ट्राइक हुई थी तेहरान में, और उसमें आयतोला अली खमेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो मारे गए थे। अब अगले महीने यानी 4 जुलाई को यह कार्यक्रम शुरू होगा। 9 जुलाई 2026 तक ईरान में उनका 6 दिनों का अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होने जा रहा है और किसी एक शहर में नहीं, 4 से 5 जुलाई को यह तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में उनके जनता दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। फिर 6 जुलाई को तेहरान में एक विशाल अंतिम संस्कार यात्रा उनकी निकाली जाएगी जिसमें पूरा देश एक तरह से पूरा तेहरान आएगा। और फिर 7 जुलाई को शिया मुसलमान जो होते हैं उनके लिए बेहद पवित्र शहर माना जाता है कुम का शहर, कुम के शहर में एक विशेष समारोह किया जाएगा। और 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा श्राइन में उनको सुपर्दे खाक किया जाएगा। तो ये जानकारी इस समय सामने आ रही है कि 4 जुलाई को यह यात्रा शुरू होगी और 9 जुलाई तक ये चलेगी और 9 जुलाई को अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो लोग ईरान में हैं अलग अलग शहरों में वो आकर आयतोला अली खमेनेई को अपना सम्मान दे सकते हैं, लास्ट राइट्स जब उनके किए जाएंगे। मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इस चर्चा के लिए, और सुमित ईरान के कई शहरों में मौजूद भी थे। सुमित, बिल्कुल, आप कुम शहर भी गए थे, मशहद भी गए थे, वो युद्ध का काल था, लेकिन इस समय किस तरह की मान्यता, किस तरह का महत्व और ईरान पूरे देश को जोड़ने का प्रयास कर रहा है?
1: बिल्कुल, और देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान अपने आप को जोड़ने का कोशिश कर रहा है, और खास बात यह भी कि एक शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि रिजिम चेंज की बातें होती थी, लगातार ये बात की जा रही थी कि लोगों में उनको लेकर नाराजगी थी, लेकिन ईरान का प्रशासन इस समय पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया से वर्ल्ड लीडर्स इस फ्यूनरल में आए, लगातार इसको लेकर कवरेज मिले। और अभी अगर आपने जैसा आपने भी बताया कि 4 और 5 तारीख को लगातार उनके फ्यूनरल की वहां पर उनकी बॉडी को रखा जाएगा, लोग देख सकेंगे, और ये मान के चलिए कि करीबन 110-115 दिन के बाद ये चीजें होंगी। और निश्चित तौर पर गौरव, एक और महत्वपूर्ण बात, जब मसद उनको लेकर जाया जाएगा तो कहा जा रहा है क्योंकि उनका बर्थ प्लेस है वो, तो वहां पर भी हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और इसकी पूरी कवरेज की जाएगी ईरान के अलग अलग ब्रॉडकास्ट की तरफ से।
0: अमेरिका की कोशिश थी, अमेरिका की कोशिश ये थी कि ईरान बिखर जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: जैसे ही एक अटैक होगा तो रिजीम चेंज हो जाएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, आयतोला अली खमेनेई के विरुद्ध लोग उतरेंगे,
2: हुआ बिल्कुल उसके उलट।
1: बिल्कुल, और हमने ऐसा देखा कि पहली बार मिडिल ईस्ट में अमेरिका को चैलेंज मिला, इतना स्ट्रांग चैलेंज मिला। अमेरिका को लग रहा था कि शायद वेनेजुएला होगा या दूसरे देशों की तरह बड़ी आसानी से कर लिया जाएगा, ना तो लोग वहां पर मुखालफत करते हुए सड़कों पर उतरे और ना ही किसी ने रिजिम चेंज का झंडा बुलंद किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ईरान के जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो ट्रांजिट था, जो एक सुप्रीम लीडर से दूसरे सुप्रीम लीडर, एक कमांडर से दूसरे कमांडर को, वो जाना इतना स्मूथ था कि अमेरिका ने भी नहीं किया होगा कि इनकी स्ट्रेटजीज इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी और इनके पास लीडरशिप की अलग अलग खेप या फिर अलग अलग फेज तरीकों से तैयार बैठी होगी जो इनको आप कह सकते हैं दोबारा से टेक ओवर कर लेगी।
2: तो वो ट्रांजिशन की पूरी तैयारी इनकी थी और एक दर्जे या दो दर्जे की नहीं, पूरे 7 दर्जे की,
1: बिल्कुल 7 लेयर उसको कहा जाता है,
2: 7 लेयर्स की उनकी तैयारी थी। सुमित, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगली खबर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान में तख्ता पलट करने निकले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए और कैसे अब अमेरिका में ही फूट पड़ गई है, रिपब्लिकन पार्टी में ही लोग अब उनका विरोध कर रहे हैं।

ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को कर दिया दो फाड़। ईरान में सत्ता परिवर्तन करने चले थे, अब खुद की सत्ता में संग्राम। मिसाइल मुद्दे पर ट्रंप और रूबियो में खुली जंग।

दोनों जलगमरू मध्य पर रूबियो ने पलटा ट्रंप का वादा। अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ ऐतिहासिक बगावत। ट्रंप की अपनी ही पार्टी के सांसदों ने दिया धोखा। परमाणु निगरानी पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका।

50 वोटों से मंजूर हो गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप से यह कह दिया गया है कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध तुरंत बंद कर दे। बड़ी खबर यह भी है कि ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी में बगावत हो गई है। उनके 4 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर यस में वोट दे दिया। रिपब्लिकन सांसद कॉलिंस कैसिडी, बुरवॉस्की और इसमें रैंड पॉल भी हैं। दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें से केवल एक सांसद जो फेटरमैन है, उन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ यानी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नो वोट डाला। वोटिंग के दौरान दिग्गज सेनेटर मिच मैकोनेल और मैकॉमिक वो दोनों ही गैर हाजिर रहे, तो उन्होंने वोट नहीं डाला। 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति को युद्ध रोकने का आदेश दिया है। सेनेट में मिली करारी शिकस्त के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर है और यह फूट पड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बेहद आक्रामक पोस्ट साझा कर अपनी ही पार्टी के बागियों और विपक्ष पर तीखा हमला बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि जब ईरान को मैंने घुटनों पर ला दिया तब सेनेट ने बेमतलब ही वॉर पावर्स एक्ट पर वोट कर दिया। उन्होंने अपने खिलाफ वोट देने वाले अपनी ही पार्टी के उन 4 सांसदों को सरेआम लूजर यानी हारने वाले करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी लिखा कि अमेरिकी सेनेट में दुनिया भर के नंबर 1 आतंकी स्पॉन्सर ईरान को यह संदेश दे दिया है कि अमेरिका के भीतर बड़ी फूट पड़ गई है। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपना पूरा काम करेंगे और उसके बाद ही वो दम लेंगे। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के वो 4 बागी सांसद कौन है। सबसे पहले हम बात करेंगे थॉमस मेसी की। ये केंटकी से आने वाले हैं। मेसी दूसरे देशों में अमेरिका की दखलंदाजी के धुर विरोधी रहे हैं। ये लगातार थॉमस मेसी जो है ये विरोध करते रहे हैं कि अमेरिका को दखल नहीं देनी चाहिए। अमेरिका ने हाल में उन्हें हराने की पूरी कोशिश भी की थी ट्रंप ने, लेकिन मेसी अपनी सीट बचाने में न केवल कामयाब रहे, आज ट्रंप के वो सबसे मुखर आलोचक के रूप में आ गए हैं। फिर ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक जवाबदेही पर पार्टी से हटकर उन्होंने भी फैसला किया है। ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक ये पेंसिल्वेनिया के सांसद हैं, ये FBI में रह चुके हैं, पूर्व FBI स्पेशल एजेंट रह चुके हैं, ये मध्यम मार्गी विचारधारा है और ब्रायन अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, जवाबदेही के मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग जाकर काम भी करते हैं। अब हम बात करते हैं टॉम बैरेट की। टॉम बैरेट जवाबदेही पे अगेन पार्टी इस बड़े मुद्दे पर नए सांसद हैं, सीधा संवैधानिक स्टैंड उन्होंने लिया है। बैरेट का साफ कहना है कि राष्ट्रपति अकेले युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते, 60 दिन बाद उन्हें संसद की मंजूरी लेना अनिवार्य है, यह अमेरिका का नियम है और आप नियम के खिलाफ नहीं जा सकते। अब बात करते हैं हम वॉरेन डेविडसन की। वॉरेन डेविडसन ने भी ओहायो के हैं ये, और इन्होंने वॉरेन डेविडसन ने क्या कहा, फ्रीडम कॉकस जो है उसके एक मजबूत स्तंभ है, सरकारी खर्च नियंत्रित होना चाहिए, अनियंत्रित फौजी ताकत राष्ट्रपति के पास नहीं होनी चाहिए और यह संसद की शक्ति की आवाज हमेशा बुलंद करते हैं। इसीलिए यह जो बगावत आप देख रहे हैं या यह जो 4 सांसद हैं जिन्होंने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया, ऐतिहासिक एक कदम है क्योंकि इसमें रिपब्लिकन पार्टी के दक्षिणपंथी भी है, लिबर्टेरियन भी है, मध्यम मार्गी भी है और सभी गुटों ने संसद में एक साथ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया और इसी से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह बौखला गए और इन्हें बैड रिपब्लिकन्स, इन चारों को कह रहे हैं कि ये बैड रिपब्लिकन्स है। लेकिन ये जो विद्रोह है ना, ये साफ बता रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने आप तय नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। 60 दिन बाद उन्हें संसद में जाना होगा, देश को बताना होगा और फिर अगला निर्णय करना होगा और इसी बात से अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय बेहद नाराज हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कबूल कर लिया है कि अमेरिका में अब फूट पड़ गई है। इसकी वजह ईरान है जिसने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि कूटनीतिक जंग में भी अमेरिका को एक
करारा झटका दिया है, एक तरह से हरा दिया है। और इसी बीच इस मतभेद को

0: लेकर एक बड़ी खबर ईरान की मिसाइल क्षमता और प्रॉक्सी संगठनों को लेकर आ रही है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दो टू कह दिया है कि जब तक इराक में बैठे ईरानी प्रॉक्सी मिसाइल दागते रहेंगे और हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन हमला करते रहेंगे तब तक इस क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। मार्को रूबियो का निशाना ईरान की मिसाइल शक्ति और प्रॉक्सी संगठनों पर है। दूसरी तरफ सच्चाई यह भी है कि दोनों ही मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप की राय मार्को रूबियो से बिल्कुल अलग है। ट्रंप ना तो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाना चाहते हैं, ना लगा सके हैं, और ना ही प्रॉक्सी संगठनों पर लगाम लगाने पर ईरान को लेकर वो मजबूर कर पाए है। सुनिए यूएई पहुंचे मार्को रूबियो ने इस मुद्दे पर क्या कहा।
1: I think a careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region, well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU, and it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations.
0: तो मार्को रूबियो ने साफ कह दिया कि जब तक ईरान और उसके प्रॉक्सीज के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं इस पूरे क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। ये डोनाल्ड ट्रंप के विदेश मंत्री हैं, उस समझौते को सही करार देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये जो 14 पॉइंट वाला मसौदा है एमओयू है इसमें ईरान की मिसाइलों की बात है ही नहीं और ना ही उसके प्रॉक्सी संगठनों पर अंकुश लगाने की है। और वो डील डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इसीलिए कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अगर ईरान के पास मिसाइलें हैं तो इसमें गलत क्या है क्योंकि आस पड़ोस के देशों के पास भी तो मिसाइलें हैं। सुनिए।
2: No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean.
0: तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री दोनों अलग सुर में बात कर रहे हैं। कल कूटनीतिक गतिविधियां खासा जोरों पर रही। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेशकियान दलाली कर रहे पाकिस्तान के दौरे पर रहे। दूसरी तरफ मार्को रूबियो मध्य पूर्व में सहयोगी देशों के दौरे पर निकले। अपने अपने पड़ाव पर जब पहुंचे तो पहले पड़ाव पर खासतौर पर रूबियो यूएई पहुंचे, यहां से वो कुवैत गए, फिर अब बहरीन जाएंगे। वहीं वॉशिंगटन डीसी में कल ही लेबनान तथा इसराइल के बीच अगले दौर की सीधी बातचीत भी शुरू हो गई, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर इस्लामाबाद से आई। बातचीत में कूटनीतिक जीत हासिल करने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेशकियान पाकिस्तान पहुंचे। इस दौरे का मकसद पाकिस्तान के उन अधिकारियों से बात करना था जो अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल थे। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेशकियान ने कहा, अगर हमारे बचाव के लिए मिसाइलें नहीं होती तो इसराइल और अमेरिका ने ईरान को भी गाजा की तरह तबाह कर दिया होता। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक कभी भी किसी भी हालत में किसी के साथ भी अपनी रक्षा क्षमताओं को लेकर बातचीत नहीं करेगा। वहीं ईरान की हां में हां मिलाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि अमेरिका और ईरान के बीच शुरुआती समझौते में बैलिस्टिक मिसाइल का कोई जिक्र नहीं है। बड़ी खबर इस समय अपने ही देश से आ रही है। हम आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां केई पिन्योर जिले में बादल फटने से भारी तबाही की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश के बाद नीपको प्रोजेक्ट के पास 15 से ज्यादा रिहायशी मकान, खबर आ रही है ये मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निर्माणाधीन रिटेनिंग वॉल गिरने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर इस समय यह आ रही है कि एक महिला लापता है। कई लोगों के हताहत होने की आशंका इस समय जताई जा रही है। हादसे के बाद प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं और NDRF को भी अलर्ट कर दिया गया है कि उन्हें तैनात किया जा सकेगा। लेकिन पानी के इस बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज पहाड़ी इलाके में पानी का बहाव है। बचाव अभियान के तहत नीपको ने पावर हाउस को अस्थायी रूप से इस समय बंद कर दिया है। डैम से नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। लैंडस्लाइड के कारण कई जगह हाईवे ब्लॉक हो गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आपदा पर गहरी चिंता जताई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह इस समय दी जा रही है। हाईवे इस समय बंद है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस Chogan Perfumes, the French edition.
4: Jack FM, now playing what we want, commercial free, on TuneIn Premium.
5: What about me, Jack? What about me?
4: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
6: Well played, Jack. Well played.
4: Jack FM, playing what we want.
7: For him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
4: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
5: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
3: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
6: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
4: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
3: जहां खबर वहां खबरदार।
7: इन एसोसिएशन विद
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: द एक्शन नेवर स्टॉप्स एंड नीदर डू वी। From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
9: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: क्या उद्धव की पार्टी में एक और टूट होगी? क्या सांसदों के बाद विधायक भी टूटेंगे? उद्धव की बैठक में क्यों नहीं आए तीन विधायक? कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। सांसदों की बगावत झेल चुके उद्धव ठाकरे की कोशिश है अपने विधायकों पर पकड़ बनाए रखने की। कल मुंबई में उद्धव ने विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से नए सवाल निकले। बैठक में तीन विधायक और एक MLC नहीं पहुंचे। यवतमाल से विधायक संजय देरकर, परभरी से विधायक राहुल पाटिल, कलीना मुंबई से विधायक संजय पुतनिस और MLC सुनील शिंदे इस बैठक से नदारद रहे। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी नेताओं ने अपनी गैर हाजिरी को लेकर पहले से जानकारी दे दी थी, लेकिन संशय तब बढ़ गया जब संजय राउत विधायकों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिए बिना ही निकल गए। थोड़ी देर बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की ओर से बड़ा दावा किया गया। मुरजी पटेल ने कहा कि एकनाथ शिंदे उद्धव की पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन टाइगर 3 की तैयारी में है।
1: इसके बाद ऑपरेशन 3 की तैयारी माननीय एकनाथ साहब की शिंदे साहब के नेतृत्व में होने जा रही है। अभी जब उनके साथ पास थे तभी अच्छे थे, अभी गए तो बुराई कर रहे, कहीं ना कहीं गलत है, उनको संभालने नहीं आया, इसके लिए हमारे पास आए हैं और पूरा ध्यान पार्टी उनका रखे।
0: कल ही मुंबई में उद्धव के 6 सांसदों ने शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की घोषणा की। इसके बाद शिंदे का हौसला 7वें आसमान पर है।
2: 4 वर्ष पूर्वी 22 जून 2022 में लौटता तो, शिवसेने आम्ही उठाव केला होता, तेव्हा 40 आमदार सोबत सुरुवातीला होते आणि पुन्हा चौकार नाही षटकार आता मारलेला आहे, म्हणजे काय म्हणतो त्याला, सिक्सर।
0: शिवसेना UBT के पास फिलहाल विधानसभा में 20 विधायक और 6 MLC हैं, लेकिन इन पर शिंदे की गहरी नजर है। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर में मॉनसून ने मचाई तबाही। सीएम पेमा खांडू ने आपदा पर जताई चिंता। पहली बार थम गई मुंबई, मौसम विभाग का रेड अलर्ट।

कराया गया भर्ती, 14 को निकाला गया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। पंजाब में सियासी भूचाल बेअदबी मामले में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आरोपों से घिरे सीएम भगवंत मान, बीजेपी ने खोला मोर्चा, पेश किया सबूत। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, एलडीए जांच में 18 अधिकारी दोषी, बिजली विभाग ने कर्मचारी के सस्पेंड, 15 दिन में चलेगा बुलडोजर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के मुताबिक खमेनी की अंतिम यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने का भेजा गया आमंत्रण।

0: रणभूमि में समय बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में एक निर्माणाधीन इमारत, उसकी छत गिर गई, भारी तबाही मची है। खबर आ रही है कि जो निर्माणाधीन इमारत थी, एक गोदाम है तारा तला में, बेस ब्रिज इलाके में ये निर्माणाधीन गोदाम जिसकी छत गिर गई, 11 लोग इसमें घायल हुए हैं, चार की हालत इस समय गंभीर बताई जा रही है। कुल मिला के 14 लोगों को यहाँ रेस्क्यू किया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर स्थित एक निजी गोदाम की छत ढहने से मजदूरों के दबे होने की आशंका है। खबर यह है कि इस समय भी कुछ लोग इस मलबे में दबे हो सकते हैं। अब तक मलबे में से 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इन 14 में से 11 घायल बताए जा रहे हैं। इन 11 लोगों को SSKM अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी ने कमान संभाल ली है। मलबे को हटाने के लिए क्रेन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, गैस कटर मंगा लिया गया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। NDRF और SDRF दोनों को सूचित कर दिया गया है। खबर यह है कि NDRF की टीम भी यहां पहुंच रही है। तस्वीरों में जैसा आप देख सकते हैं कि निर्माणाधीन गोदाम की छत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो बार बार ये आवाज दे रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कौन कहां फंसा हो सकता है। आकलन ये भी किया जा रहा है कि कितने लोग मलबे में अभी भी दबे हैं। 14 को तो निकाल लिया गया है लेकिन कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। मेरे सहयोगी तापस सेनगुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तापस, इस समय बचाव कार्य कैसे चल रहा है और कितने लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी है?
1: जी देखिए गौरव, इस समय फुल स्विंग में ये जो बचाव कार्य है ये पूरी तरीके से चल रहा है। NDRF और इंडियन आर्मी जो है वो अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बड़े क्रेन्स जो है ये मेट्रो सर्विसेज के लिए मैं इस्तेमाल किया जा रहा था, उन क्रेन्स को लेके आया गया है। पोर्ट से कुछ बड़े क्रेन्स लाया गया है ताकि जो मलबा है, ऊपर का ढांचा है, उस ढांचे को हटाया जा सके। जो सूत्रों के हवाले से खबर, 16 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है लेकिन अभी भी कई लोग अंदर फंसे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। और इस समय प्रायोरिटी जो है जो अंदर फंसे हैं, जो जिंदा है, जो आवाज का जवाब दे रहे हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कुछ जरूरी दवाइयां अगर हो तो वो पहुंचाने के काम में अभी आर्मी मेडिकल कोर कुछ देर पहले पहुंची है। वो तमाम जो दवाइयां हैं और साथ में सलाइन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर अंदर गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अंदर कई लोग आवाज का जवाब दे रहे हैं, तो उन्हें बाहर निकालना इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ पर अगुवाई कर रहे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री वो भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, इलाके का मुआयना करने वाले। तो इस समय जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फुल स्विंग में जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो फंसे उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इसके कोशिश में प्रशासन काम कर रही है।
0: अच्छा तापस, किस चीज का गोदाम है ये और कैसे ये इमारत या इसकी छत ढह गई, अंदर क्या सामान था, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? उसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं, अड़चनें भी आ रही हैं?
1: जी देखिए, फिलहाल जो अभी तक पुष्टि हो पाई है कि ये जो कंपाउंड है ये पोर्ट ट्रस्ट का, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट का ये कंपाउंड है और 30 साल के लीज पर 2024 के अगस्त महीने से 30 साल के लीज तक शंभुनाथ बेहरा एक शख्स को, उसके कंपनी को लीज दिया गया था और शंभुनाथ बेहरा की यहां पर उनके चाय का व्यापार है, तो यहां पर वेयरहाउस बनाया जा रहा था और वेयरहाउस का जो ऊपरी मंजिल माला है यानी थर्ड फ्लोर बताया जा रहा है कि ये थर्ड फ्लोर में जब आज काम चल रहा था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, अचानक ये ढह गया और 12:07 से 12:08 के बीच ये घटना हुई है और उसके बाद अंदर कई लोग फंसे हुए हैं। हालांकि जो कंपनी है उनके लोग भी यहां पर मौजूद हैं लेकिन इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल जो है कितने लोग जो लेबर के तौर पे यहां पे काम कर रहे थे उन्हें आइडेंटिफाई करना, तो एक आंकड़ा समझ में आता है कि कितने लोग।
0: आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर आपके पास लौटेंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी यहां आ रहे हैं और मंत्री अग्निमित्र पॉल यहां पहुंच चुकी हैं। अब हम आपको सरहद पार लिए चलते हैं। पाकिस्तान की सेना और खासतौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक महिला से किस तरह डर गए हैं, एक महिला के आगे, बलूचिस्तान की शेरनी इस महिला को कहा जाता है, उसके आगे कैसे थर्रा गए हैं, ये खबर अब हम आपको दिखाएंगे।
2: बलोच शेरनी महरंग की एक दहाड़, रावलपिंडी में बैठे तानाशाहों का छूटा पसीना
3: के हाथ से बलोचिस्तान निकला जा रहा है। बलोच की आवाम जो है ना वो मारंग बलोच के साथ है।
2: जनरल आसिफ मुनीर के हाथ से फिसला बलोचिस्तान।
3: बलोचिस्तान को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इनके हाथ से बलोचिस्तान निकला जा रहा है।
2: डरे हुए आर्मी चीफ ने खेला उम्र कैद का कायराना खेल। महरंग की आवाज पर लगाम लगाने की कोशिश, बलूचिस्तान के कोने कोने में भड़की विद्रोह की आग। 1971 के सरेंडर से नहीं सीखा सबक, अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू। दुनिया के मंच पर गूंज उठा आजाद बलूचिस्तान का नारा।
4: फ्री महरंग एंड फ्री बलूचिस्तान।
0: फ्री महरंग, फ्री बलूचिस्तान की आवाज अब दुनिया के कोने कोने से उठना शुरू हो गई है। इतिहास गवाह है, जब जब किसी कायर तानाशाह ने बंदूक की नोक पर आवाम की आवाज को दबाना चाहा है, तब तब वो हुकूमतें मिट्टी में मिल गई हैं। और इसकी मिसाल आपने भारत के आसपास बहुत देखी है। देशों के भूगोल बदल गए हैं। आज पाकिस्तान भी विनाश की उसी कगार पर खड़ा है जहां पर विनाश का काउंटडाउन एक बार फिर शुरू हो चुका है। GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय, वहां के बंकर में बैठा आसिम मुनीर, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, आज एक 32 साल की महिला से डर गया है। एक बलूच शेरनी के खौफ से इस कदर कांप रहा है कि उसने अपनी जेब में रहने वाली एंटी टेरर कोट से डॉक्टर महरंग बलोच को आनन फानन में बिना वकील, बिना ट्रायल उम्र कैद की सजा सुना दी। एक ऐसा सीक्रेट ट्रायल जहां ना सबूत पेश किए गए, ना कोई गवाह था और ना ही डॉक्टर महरंग बलोच का की दलील पेश करने के लिए उनकी तरफ से कोई वकील, बस था तो जनरल आसिम मुनीर का वो डर, वो डर जो महरंग बलोच की एक हुंकार पर पूरी पाकिस्तानी सेना को थर थर कपा देने पर मजबूर कर देता है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, या यूं कहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये भूल गए कि डॉक्टर महरंग बलोच सिर्फ एक 32 साल की महिला का नाम नहीं है, एक सुलगता हुआ अरमान है, सुलगते हुए बलूचिस्तान का वो अंगारा है जिसकी सलाखों के पीछे उसे दफन नहीं किया जा सकता। इस शर्मनाक फैसले के खिलाफ आज पूरी दुनिया बोल रही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने इस फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए आसिम मुनीर के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। वहीं वैश्विक मंच पर ग्रेटा थनबर्ग जैसे जो राइट्स एक्टिविस्ट है वो वीडियो जारी करके न केवल महरंग बलोच की रिहाई की मांग कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान को आजाद कर देना चाहिए। आजाद बलूचिस्तान का नारा बुलंद हो रहा है। डॉक्टर महरंग बलोच की आवाज को दबाने की जो कायराना कोशिश, साजिश आसिम मुनीर ने की है, उसकी कीमत अब पाकिस्तान को संभवतः अपना वजूद देकर चुकानी होगी। लाशों के ढेर पर तानाशाही ज्यादा दिन चल नहीं पाती और जुल्म के दबाए गए पाकिस्तानी सूबे आज नहीं तो कल आजादी की आवाज को लेकर एक बार फिर खासतौर पर बलूचिस्तान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1948 में पाकिस्तान की फौज ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा किया था। आज वो बलूचिस्तान एक बार फिर आजादी की मांग कर रहा है।
2: वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बलूचिस्तान के मजलूमों, बेगुनाहों और हजारों लापता बलोचों की वो गूंजती हुई आवाज है जिसकी एक हुंकार से पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सैकड़ों सैनिकों के पीछे छिपने वाला और रात को सोते हुए बुलेटप्रूफ पहनने वाला आसिम मुनीर कांप उठता है। ऐसी ताकत है डॉक्टर महरंग बलोच, जिन्हें आज पूरी दुनिया बलोच शेरनी के नाम से जानती है। एक ऐसी निडर नेता जिसकी सिर्फ एक आवाज पर पूरा बलूचिस्तान अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है, जिसकी रैलियों में उमड़ता जन सैलाब देख कर जनरल आसिम मुनीर और उनकी वर्दीधारी फौज थर थर कांपने लगती है।
5: बलोच नस्ल की खबरें
2: बलूचिस्तान के कोने कोने से नौजवानों को अगवा करना, बेगुनाहों का कत्लेआम करना और क्वेटा की सड़कों को बलूचों के खून से लाल करना जनरल आसिफ मुनीर का असली चेहरा है। लेकिन जब मुनीर और उसकी फौज की बंदूक महरंग बलोच के हौसलों का रास्ता नहीं रोक सकी, तब जनरल का एक जोर और जुल्म इस बलोच शेरनी के सामने पूरी तरह घुटने टेक गया तो रावलपिंडी के जनरलों ने एक बेहद कायरतापूर्ण खेल खेला। अपनी हार और बौखलाहट से डर कर कायर आसिम मुनीर ने आनन फानन में पाकिस्तान की उस तथा कथित अदालत का सहारा लिया जो किसी इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जेब में रहने के लिए बदनाम है। एक ऐसी एंटी टेररिज्म कोर्ट जहां न कोई पुख्ता गवाह काम करता है न कोई कानूनी सबूत, जहां जेल के बंद कमरों में सीक्रेट ट्रायल का नाटक रचा जाता है। तभी तो सरेआम अदालती पाखंड को बेनकाब करते हुए खुद डॉक्टर महरंग बलोच ने सीना ठोक कर कहा था कि ऐसी अदालतों में कानून नहीं डॉलर काम करते हैं।
5: वजीफा किया अस्करी अदालतों में वजीफे काम नहीं करते, डॉलर काम करते।
2: इस मनगढ़ंत और बिकाऊ फैसले से डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथी सिबगतुल्लाह शाह को उम्र कैद की सजा सुनाकर मुनीर ने सोच लिया था कि वो बलोच आवाज को दबा देगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस शर्मनाक फैसले के बाद पूरी दुनिया में न सिर्फ डॉक्टर बलोच की रिहाई की मांग उठ रही है बल्कि बलूचिस्तान की आजादी का नारा और भी बुलंद हो गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन से लेकर ग्रेटा थनबर्ग जैसी वैश्विक हस्तियों ने मुनीर के इस बर्बर दामन को सरेआम बेनकाब कर दिया है। मांग ये हो रही है कि महरंग के साथ बलूचिस्तान को भी आजाद किया जाए।
4: Dr. Mahram Baloch has spent years peacefully advocating for the families of the disappeared, speaking up against extrajudicial killings and demanding justice for the people of Balochistan, occupied territory by Pakistan. You cannot silence an entire movement by locking away its voices. The world cannot continue to look away from this. Stand with Dr. Mahram Baloch and all those imprisoned for peacefully demanding justice. Demand accountability, demand due process, and demand their freedom. Free Mahram and free Balochistan.
2: ईरान और अमेरिका के बीच बिचौलिए और ब्रोकर की भूमिका निभाने की कोशिश करने वाला जनरल आसिम मुनीर आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। महरंग बलोच को सलाखों के पीछे भेजने की कायरता ने साबित कर दिया कि बलोच शेरनी से पाकिस्तान की हुकूमत बुरी तरह खौफजदा है
6: और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं।
2: जनरल आसिम मुनीर का जुल्म सिर्फ डॉक्टर महरंग बलोच को सजा दिलाने तक सीमित नहीं है। उसने सिर्फ इस वजह से महरंग की वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता इमरान मजारी को 17 साल की सजा दिला दी क्योंकि उन्होंने महरंग को रिहा करने की मांग की थी।
7: इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मौलाना हिदायत रहमान साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा की जॉइंट प्रेस।
0: हम आपको एक बार फिर सीधे कोलकाता लिए चलते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक निर्माणाधीन गोदाम वो ढह गया है, कई लोग फंसे हैं और अब बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। मंत्री अग्निमित्रा पॉल पहले ही पहुंची हुई थी। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो बचाव और राहत का कार्य चल रहा है इसमें सेना को बुला लिया गया है। सेना के इंजीनियर्स आर्मी इंजीनियर्स यहां मौजूद हैं। सेना के इंजीनियर्स के साथ साथ आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर उन्हें भी यहां पर बुला लिया गया है ताकि बचाव और राहत में वो जो संभव मदद हो वो कर सके। वैसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस संख्या बड़ी संख्या में पुलिस भी यहां मौजूद है और पोर्ट ट्रस्ट से और मेट्रो से क्रेन्स मंगा ली गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बंगाल में भारतीय सेना का पूर्वी कमान है और पूर्वी कमान इंजीनियर्स को यहां बुला लिया गया है। हादसे वाली जगह पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे हैं। 14 लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित। खबर यह है कि बड़ी संख्या में लोग इस निर्माणाधीन गोदाम में काम कर रहे थे जब इसका तीसरा माला बनाया जा रहा था और तीसरे माले को बनाते बनाते एकाएक कुछ हादसा हुआ जिसके बाद ये निर्माणाधीन गोदाम उसकी छत गिर गई, 14 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, 4 अस्पताल ले जाए गए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
9: At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family-owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then, simply stop by to pick up your keys.
10: Drive home a new 2026 Audi Q3 for $529 for 36 months with $4849 due at signing.
9: The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
10: See dealer for details. Offer ends 6/30/2026.
11: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.

18 जून 2026, ये वही तारीख है जब लोहागढ़ किले में रिश्ते का खून हुआ। पुणे में कत्ल की ये खौफनाक साजिश रची गई थी। चंद महीने पहले ही सिया के साथ केतन की सगाई हुई थी। नवंबर में शादी की तारीख भी तय थी। केतन ने सिया के साथ जीने मरने का फैसला किया था, लेकिन वो अपनी मंगेतर की साजिशों से अनजान था। उसने मौत से ठीक पहले उसे बर्थडे विश भी किया था,

ऐसे खुशनुमा पलों के बीच ही खूनी साजिश चल रही थी। लोहागढ़ की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हम सफर बनने से पहले सिया ने अपने मंगेतर को मौत के मुंह में धकेल दिया। सिया की लाइफ में एक तरफ केतन अग्रवाल था जिससे उसकी सगाई हुई थी, तो दूसरी तरफ चेतन चौधरी था जिसे वो प्यार करती थी। मर्डर के इल्जाम में अब सिया और चेतन चौधरी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे चेतन की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि ये हत्या नहीं हादसा है। केतन की हत्या को लेकर सवाल कई हैं, लिहाजा पुलिस अब सिया को मुख्य साजिशकर्ता मानकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और चेतन चौधरी के साथ अपना रिश्ता जारी रखना चाहती थी, इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस सूत्रों की माने तो सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी और फिर 18 जून को दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आज तक संवाददाता ओमकार वाबले लोहागढ़ किले में उस जगह पहुंचे जहां आरोपी चेतन सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और इस साजिश से पर्दा हट सका। वारदात वाले दिन जब चेतन चौधरी किले में पहुंचा था तो उसने टिकट भी नहीं लिया था। गार्ड ने टिकट के लिए टोका था लेकिन उसने कह दिया था कि वो एक्सरसाइज के लिए जा रहा है। आज तक से खास बातचीत में लोहागढ़ किले के गार्ड धीरज जाधव ने बताया है कि वारदात वाले दिन क्या हुआ। अब गम में डूबे पीड़ित परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है। कृष्णा पंचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे, आज तक।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Hey Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: लखनऊ के अलीगंज की इस इमारत में 15 परिवारों की चिराग बुझ गए। सरकारी व्यवस्था की इस घोर लापरवाही से पूरा देश विचलित। देश भर में ऐसी बेबसी 27 जुलाई 2024 को भी लोगों ने महसूस की थी। तब देश की राजधानी में सरकारी अंधेर गर्दी से ऐसा ही हादसा हुआ, जब ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबकर 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। जिस बेसमेंट को पार्किंग और स्टोरेज के लिए मंजूरी मिली थी, वहां लाइब्रेरी चलाकर सैकड़ों छात्र छात्राओं की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा था। जगह के अवैध इस्तेमाल, बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम और सुरक्षा खामियों की घातक तिकड़ी ने 3 नौजवानों को तब बेमौत मार डाला। उस हादसे के बाद भी वायदे हुए, जांच बैठी, कार्रवाई की लाठी पीटी गई और कहा गया कि अब ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे। लेकिन जिन सरकारी विभागों की लापरवाही से यह हादसा हुआ, क्या उन्होंने कोई सबक सीखा? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल जो सामने आया, वो पूरे देश को खबरदार करता है। आज तक ने अपनी पड़ताल में पाया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार के एजुकेशन हब में आज भी बेसमेंट का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया जा रहा है। ये फ्यूचर वर्ल्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जिसके बेसमेंट में महज 10x10 फुट के कमरे को लाइब्रेरी में बदल दिया गया, जहां करीब 25 स्टडी क्यूबिकल बनाए गए। हैरानी की बात यह कि इस लाइब्रेरी में प्रवेश बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए मिलता है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी विफलता राजेंद्र नगर हादसे के दौरान भी सवालों के घेरे में आई। हमारी मुलाकात वहां के मैनेजर राकेश से होती है। इसी बेसमेंट में एसएससी का कोचिंग सेंटर भी चलता है और इस बेसमेंट के 3 हिस्से कर मोटा किराया वसूला जा रहा है।
5: आप तो
6: मैं
5: पूरा मैनेजमेंट
6: देखा
5: है, मैं कोचिंग
6: कोचिंग
5: तो कोचिंग ही है,

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर में मॉनसून ने मचाई तबाही। सीएम प्रेमा खंडू ने आपदा पर जताई चिंता। पहली बार में थम गई मुंबई, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। कोलकाता के तारातला में निर्माणाधीन गोदाम गिरा, मौके पर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी। 18 घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, सेना की 4 टुकड़ियां भेजी गई। लखनऊ अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, एलडीए जांच में 18 अधिकारी दोषी, बिजली विभाग के कर्मचारी सस्पेंड, 15 दिन में चलेगा बुलडोजर। मुंबई लोकल में हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर हुई बहस में चाकू गोद कर किया था मर्डर। अंधेरी से बोरिवली के बीच वारदात।

0: ईरान के राष्ट्रपति पेजेश कियान ने पीएम मोदी को भेजा न्योता। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई के अंतिम यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा आमंत्रण।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। हमारे देश में एक पुरानी लोकोक्ति है, राम जी के चिराई राम जी के खेत, खा लो चिराई भर भर के पेट। वैसे तो इस लोकोक्ति के बड़े गंभीर भावार्थ है, लेकिन हमारे देश में इन दिनों भगवान राम को मिले दान की चोरी को लेकर बड़ी अफसोसजनक चर्चा चल रही है। आरोप है कि राम जी के दान को राम जी की सेवा में लगे चोर ही चुरा ले गए। जांच चल रही है, चोरों का कुछ पता तो चला है, लेकिन सिर्फ सरकार को, जनता को तो यह भी पता नहीं है कि उनके दान के सामान भगवान की सेवा में काम आए भी है या नहीं। क्योंकि जब से दान चोरी की बात सामने आई है, देश में लोग अपने अपने दान को लेकर आशंकित हैं कि भगवान राम के चरणों में अर्पित उनका दान भगवान के पास ही पहुंचा है या चोर खा गए हैं। अब यह आशंका सिर्फ भक्तों को ही नहीं है, बड़ी खबर यह आ रही है कि अब विश्व हिंदू परिषद ने भी, अब तक विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे था, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर चोरी मामले में FIR दर्ज कराने की मांग की है। VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आज तक से बातचीत में कहा है कि चढ़ावे में हुई घपलेबाजी के आरोपों में श्रद्धालुओं के मन में गंभीर संदेह पैदा हो गया है और इसीलिए बेहद जरूरी है कि आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। पहली बार VHP के तरफ से FIR दर्ज करने की मांग की गई है। अब तक इस मामले में कोई भी FIR नहीं हुई है। यह बड़ी मांग पहली बार विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई है और खुद की गई है, क्योंकि SIT की अंतरिम रिपोर्ट आने के 2 दिन बाद भी इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है। VHP ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, भले ही वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो, और आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को कठोर दंड भी किया जाए। अब तक सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि इस पूरे मामले को उजागर ना करने के लिए SIT की रिपोर्ट भी सरकार के पास ही पड़ी है। अब तक यह रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त जुड़े हैं, जिन्होंने बात की है VHP के कार्यकारी अध्यक्ष है। संजय, क्या जानकारी आपको उन्होंने दी है जब आपकी बातचीत उनसे हुई, क्योंकि पहली बार VHP की प्रतिक्रिया आ रही है इस पूरे मामले को लेकर?
1: जी हाँ, बिल्कुल। जब हमने उनसे ये कहा कि आप इस पे प्रतिक्रिया क्या है, विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया और वो कैमरे पर क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कैमरे पर अभी नहीं कह पा रहा क्योंकि मुझे मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर हूं मैं और मैं परसों तक आऊंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है और हमारा बयान बिल्कुल साफ है कि जो भी इसमें, चाहे जितने भी रसूखदार लोग हों, जो भी लोग हों, उनके खिलाफ सबसे पहले FIR दर्ज की जाए, स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए और शीघ्र जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो। और इसके साथ ही ये भी विश्व हिंदी परिषद ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों का जो भरोसा, जो भरोसा टूटा है, उस भरोसे को कायम रखा जाए।
0: जो भरोसा टूटा है, अगर वो जीतना है तो अंतरिम रिपोर्ट पब्लिक करने की, सार्वजनिक करने की मांग उनके तरफ से की जा रही है FIR के लिए भी। क्या सरकार पर दबाव बनाएगी VHP, जो मांग आलोक कुमार की तरफ से की गई?
1: उनका यह कहना है कि एक तो जांच की जाए, FIR दर्ज की जाए, इसके अलावा जो भी हो उसके, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, यानी कड़ा दंड दिया जाए, क्योंकि वो देश की संस्कृति और सनातन की परंपरा, इन सब के अपराधी हैं, इन सब के दोषी हैं और इन लोगों ने धर्म द्रोह किया है, विश्वासघात किया है श्रद्धालुओं की श्रद्धा,
0: धर्म द्रोह किया हुआ
1: है। इनको
0: तो VHP की तरफ से यह बड़ी मांग। और इसी बीच एक बड़ी खबर, संजय शर्मा हमें खबर दे रहे थे कि किस तरीके से VHP की तरफ से पहली बार FIR की मांग की गई है। और खबर यह भी है कि चढ़ावा चोरी की SIT जांच के बीच अयोध्या में होने वाली विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक को भी टाल दिया गया है। अयोध्या में यह बैठक 25 से 29 जून तक होने वाली थी। विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे अग्रणी रहा है। BJP इस आंदोलन में शामिल होने से पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने दरअसल यह मामला उठाया था और विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक में केंद्रीय प्रांत और क्षेत्र के सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं और इसमें VHP के करीब 400 पदाधिकारी आगे के 6 महीने की कार्य योजना पर भी चर्चा करते हैं। यह बैठक पहले अयोध्या में होनी थी, लेकिन चंदा विवाद के बीच अब इस बैठक को भी टाल दिया गया है। यह बैठक अब कब, कहां, कैसे होगी, यह बाद में तय किया जाएगा। तो VHP के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के बयान से लेकर बैठक टाले जाने जैसी इन तमाम खबरों से यही जाहिर होता है कि राम मंदिर के दान चोरी को लेकर VHP के अंदर भी अब असंतोष बढ़ रहा है। और जो मांग अब तक सिर्फ विपक्ष उठा रहा था कि पहले मुकदमा दर्ज किया जाए और फिर इंडिपेंडेंट जांच की जाए, जांच आगे बढ़ाई जाए, वही मांग अब VHP के तरफ से भी हो रही है, VHP के अंदर से भी हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है, चढ़ावा चोरी के बाद भक्तों को का घटता भरोसा दरअसल बीएचपी को समझ में आ रहा है और ये सियासी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा ये छोटी रिपोर्ट देख लेते हैं।

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे। तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं।
1: जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं। फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है और अभी भी जांच प्रचलित है और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकंड पार्ट में, जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा। चूंकि ये गोपनीय जांच आख्या है, इस विषय पर मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं।
2: एसआईटी का मतलब क्या है? शेयर इन थेफ्ट है क्या?
0: चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
3: ये गैर पंजीकृत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को पंजीकृत क्यों नहीं कराता, इसका जवाब वो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसका जवाब रोज जो अयोध्या की चोरी डकैती की खबरें आपके सामने आ रही हैं, वो एक कोई चंपत हो रहे हैं चोरी चकारी करके, ये सारी आपके जो सामने आ रहा है ये कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहता। All authority, no responsibility, no accountability. इस वजह से RSS अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है। उसका जवाब मोहन यादव है, उसका जवाब अरुणाचल के CM है, उसका जवाब अयोध्या में जो हो रहा है वो है। मैं अपने साथी जीतू पटवारी जी से आग्रह करूंगा।
2: आप सोचिए क्या हुआ है देश और दुनिया के सामने। गरीब एक झोपड़ी में रहने वाला भी जान गया होगा कि क्या कर दिया इन्होंने।
4: राम मंदिर में चंदे की जो चोरी हुई है, न जाने कितने चंदा जो लोग अपने भाव से आए मंदिर में, जो चढ़ावा दिया अपनी श्रद्धा के अनुसार।
5: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं ये भी तो महमूद गजनवी के ही बंधन लग रहे हैं।
6: कहाँ हो चौकीदारो, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, जरा निकलो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है।
7: हमारी तरफ से करीब 15 देशों से 200 लोग, पौने 200 लोगों ने, जिन्होंने किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने पांच, किसी ने 10 दी, तो उस बारे में अब हम सब जानना चाहते हैं कि वो हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। हमने तो चंपत राय जी को ही दिया है, हम तो उनसे दिल्ली में मिले, फिर उनसे अयोध्या में मिले, फिर उसी अयोध्या के परिसर में ही ये 200 किलो चांदी दी गई है। तो हम तो सिर्फ चंपत राय जी को जानते हैं, उनकी टीम कौन है क्या है वो हमें पता नहीं है। वो चंपत राय जी की ड्यूटी है कि वो हमें कम से कम उनसे पता करके हमें रसीद दिलवा दे।
2: कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर CBI ED इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। क्या आप बताइए, जो डायमंड की बात कर रहे हैं आप, या आप चांदी की शिला की बात कर रहे हो, या आप और सोने की बात कर रहे हो जो चढ़ाया है आपने, उसके लिए ईडी CBI इनकम टैक्स और पहुंच जाएगी। तो जांच तो दूर, दान देने वालों की भी जांच हो जाएगी।
0: उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है।
8: धर्म के नाम पर इतनी बड़ी लूट, अयोध्या हो या महाकाल, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नया लूट मॉडल है।
0: सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।
9: तो मामला अब राजनीतिक नहीं है, श्रद्धा का भी है, और इसीलिए लोगों से हमने सीधे सवाल पूछे हुए हैं कि उनकी श्रद्धा को चोट पहुंची है कि नहीं पहुंची है, किसी जिम्मेदार मानते हैं। उन सवालों पर भी आएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, अमिताभ पारिक बीएचपी के प्रवक्ता है वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुनील सिंह सज्जन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें अपनी भूमिका रखेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रोफेसर सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। संजय सिंह से भी हम बात करेंगे जो राज्यसभा के सांसद है थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन मेहमानों से हम दंगल में आगे चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको आपके सामने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर देश की जनता क्या कहती है इसको लेकर सी वोटर ने एक सर्वे किया हुआ है। 23 जून को यानी कल ही देश भर के हर क्षेत्र लिंग उम्र वर्ग और राजनीतिक रुझानों वाले करीब 1600 लोगों से कुछ सवाल पूछे गए हैं। ये स्नैप पोल है राम मंदिर में चोरी मसले पर उन लोगों के जवाब आप जरा देख लीजिएगा आपकी आंखें खोल देंगे जिसे आपको पता चलेगा कि इतने अहम मुद्दे पर देश की जनता एक सैंपल उनका जो है वो क्या कहता है राम

0: पहले 2021 में यहां पर चंदा चोरी का जो मामला था उसको उजागर किया था, और उस समय मैंने ये बताया था कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में चंपत राय जी ने सुल्तान अंसारी से खरीदी थी। 5 मिनट पहले वही जमीन कुसुम पाठक और रवि पाठक से सुल्तान अंसारी ने खरीदी थी, और 5 मिनट के बाद ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में वही जमीन खरीदी थी। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस समय एक रस्म अदायगी के लिए SIT भी बनी थी, जिसमें ये तथ्य सामने आए थे कि तमाम प्रभावशाली लोगों ने, IAS ने, कुछ BJP के नेताओं ने यहाँ पे जमीनें ली थी और उसका कमर्शियल यूज करने के लिए बाद में वो सारी जमीनें खरीदी गई थी। तो उस जांच का भी क्या हुआ पता नहीं। फिर एक कागजात मैंने अभी उजागर किया जिसमें 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई है। एक कागजात और उजागर किया जिसमें 9 करोड़ की जमीन 55.47 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। और ये सारे कागजात मैं SIT को देना चाहता था, अभी तक तो समय नहीं मिला था, लेकिन आपके कार्यक्रम में आने से पहले मुझे तुरंत अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था SIT के जो अध्यक्ष हैं उनका, उन्होंने कल मुझे 11 बजे समय दिया है और सारे कागजात लेने की बात उन्होंने कही है। तो मैं कल सारे सबूत SIT के सामने रखूंगा और किस तरीके से ये घोटाला हुआ है आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि चढ़ावे में चोरी का मामला आया है सामने, दानपात्र में चोरी का मामला सामने आया है, 60 किलो चांदी चोरी का मामला सामने आया है, 200 किलो चांदी चोरी का मामला सामने आया है, प्रभु श्री राम की।
1: ये बात ठीक है कि आप SIT के सामने अब सारी चीजें रखेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि जो आरोप लगाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो SIT के सामने जाकर वो सारी बातें रखें। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लापरवाही बरती गई है या जानबूझकर गैंग को खुला छोड़ा गया था?
0: देखिए, अगर महिपाल सिंह जैसा व्यक्ति जो RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा है, जो लेखा प्रभारी था और 2021-20 में ही उसने शिकायत की थी कि भाई 2021 में शिकायत की थी चंपत राय जी से कि भाई यहां चढ़ावे में चोरी हो रही है, बाद में उसको निकाल के बाहर कर दिया गया, अब वो सारे लोग निकल के सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं। एक दीनानाथ वर्मा इंजीनियर था कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेता था, बता रहे हैं कि उसके पास एक मामूली सा मकान था, अब उसके घर में लिफ्ट लगी हुई है, बता रहे हैं कि यहाँ पे करोड़ों करोड़ की जमीनें उन लोगों ने खरीदी है जिनकी तनख्वाह 18,000-20,000 रुपए थी। तो क्या आपको लगता है कि ये एक दिन में सब कुछ हुआ? ज्ञानेश कुमार भी इसके मेंबर थे, 2020 से लेकर 24 तक मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय है जो मोदी जी के बहुत करीबी है, वो तो 20 से लेकर 24 तक यहाँ मेंबर थे और उनका काम था कि जमीनों के मामले में, विकास के मामले में ट्रस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना। तो क्या कोऑर्डिनेट कर रहे थे?
1: पूरे मामले
0: ये सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे।
1: राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, संजय सिंह जी, नृपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष है उनसे भी हमने बात की थी और उनका यह कहना है कि दान प्रबंधन के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? क्योंकि जो सर्वे है उसमें लोग कहते हैं कि ट्रस्ट की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है।
0: सर, जब गोबर में से पैसा बरामद हो गया, लाखों रुपए चढ़ावे चोरी का पैसा बरामद हो गया, लवकुश मिश्रा के घर से, अवनीश शुक्ला के घर से लाखों रुपए बरामद हो गया और लोगों के यहां से पैसे बरामद हो गए, तो क्या इसमें FIR नहीं होनी चाहिए? अब तक किसी को जेल हुई? चंपत राय से लेके सारे लोग अभी भी यहां मौजूद है, मंच पे कल भाषण दे रहे थे वो लोग। आपको लगता है ये सब कुछ इतना आसान है? ये
1: आपको नहीं लगता कार्रवाई होगी?
0: समय से
1: आपको नहीं लगता
0: लंबे समय
1: आपको,
0: से
1: आपको आपको लगता है कार्रवाई होगी?
0: ऊपर से लेके नीचे तक बैठे हुए लोगों के संरक्षण में चोरी चल रही थी और इस चोरी पे पर्दा डाला गया। मैंने जब 2021 में खोला था, क्यों कार्रवाई नहीं हुई उस वक्त? जब महिपाल सिंह ने बताया था, क्यों नहीं कार्रवाई हुई उस वक्त? तो इसका मतलब पर्दा डाला जा रहा है, इसका मतलब ये चंदा चोरी का माल ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है, ED पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी।
1: ठीक है, संजय सिंह इस वक्त अयोध्या में ही है और वो कह रहे हैं कि अब SIT के सामने, SIT ने उनको बुलाया हुआ है, SIT के सामने जाके वो सारी उनकी जानकारी रखेंगे। लेकिन अमितोष पारिक, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि करीब करीब 2/3 लोग कहते हैं, 2/3 लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास उठता जा रहा है इस पूरे मामले से और ये बहुत गंभीर बात है। पहली बार VHP के तरफ से कहा गया है कि इस पे FIR होना चाहिए, इतने दिन आपको क्यों नहीं लगा?
2: साहिल भाई, शायद इतने दिन आप लोगों ने सुना नहीं, लगातार तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से एक स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। हमारा अपीयरेंस ये ना माना जाए कि चोरों को डिफेंड करने के लिए, हमारा अपीयरेंस ये माना जाए कि SIT जांच पे भरोसा करा जाए, जो कल्प्रिट पाया जाए, जिसपे प्रैमा फेसिया एविडेंस पाया जाए, जो इन्वॉल्व अगर पाया जाए उस पर FIR करके उसके साथ कानूनी कार्रवाई करी जाए। और यही तो मांग आज

0: करिए। और ये मौखिक मांग नहीं है, ये तो लिखित मांग भी अब आप लोग के पास है कि पहली बात तो एफआईआर हो, और एफआईआर जो कल्प्रिट पाया जाए उस पर एफआईआर हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना जाए, एक्सपीडिएट इन्वेस्टिगेशन हो। ये मांगे तो विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से कर रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हम सारे ही एक जगह पे थे कि वहां से सुना है, उससे देखा है, उससे पता चला है, उसने कहा है। आज अभी संजय सिंह बैठे थे आपके समक्ष
1: तो
0: में,
1: चलिए हमने
0: इन्हें
1: शायद सुना
0: लैंडस्केप
1: नहीं
0: के अंदर
1: होगा
0: भी
1: अमितोष
0: बहुत बड़ी
1: जी,
0: बड़ी बातें करी थी।
1: 22 तारीख को
0: कार्रवाई करने
1: एसआईटी
0: के लिए
1: की
0: कोर्ट
1: रिपोर्ट
0: क्यों
1: आ
0: नहीं
1: चुकी
0: गए?
1: है, अब तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है,
0: हाँ,
1: लेकिन 2 दिन के बाद आकर आपके कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि एफआईआर किया जाए। ये मांग तो पहले से चल रही है, किसी भी चीज की अगर जांच करनी है तो बिना एफआईआर के आप जांच कैसे कर सकते हैं? ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि ऑडिट रिपोर्ट्स में ये
0: नहीं,
1: कहा
0: ये
1: गया
0: गलत
1: था
0: है साहिल
1: कि
0: भाई, ये
1: आपके
0: बहुत
1: दान
0: गलत पॉइंट
1: प्रबंधन
0: है।
1: में कुछ
0: नहीं,
1: गड़बड़ियां हैं, उसको एसओपी बनाइएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं बनाया गया था। ये भी तो सारी चीजें सामने आई थी अमितोष जी।
0: हाँ साहिल भाई, अब मैं उस पर बता देता हूं। जो एफआईआर और एसआईटी का पॉइंट है वो बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, जहां पर लिखा गया है साफ तौर से कि एफआईआर का मैंडेटरी प्रोसीजर नहीं है अगर एसआईटी फॉर्म करनी है तो। मैं आपको दो केस भी दे देता हूं, आप उसको पीसीआर से चेक भी करवाएगा अपनी टीम से। पहला केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज बजलाल 1992 में, साफ तौर से उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
1: अमितोष
0: एफआईआर
1: जी,
0: मैंडेटरी ग्राउंड है, देयर इज नो
1: अमितोष
0: डिस्प्यूट
1: जी,
0: विद इट। लेकिन अगर
1: मैं
0: एसआईटी
1: आपके
0: गठित करना है तो
1: लीगल
0: स्टेट कर
1: लीगल
0: सकता है।
1: माइंड को चैलेंज नहीं कर रहा हूं अमितोष जी, मैं आपके लीगल माइंड को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मामला ये लीगल है ही नहीं, ये तो श्रद्धा का मामला है। जब भी इस तरीके की, अगर गंगा में कोई
0: पर पॉइंट तो
1: अगर
0: लीगल उठ रहा है ना साहिल
1: कोई
0: भाई।
1: पार्टी करता है, कोई कोई अगर नॉनवेज खा लेता है, उस पर भी एफआईआर तुरंत हो जाता है। सर अमितोष जी, ये तो मामला बहुत गंभीर है, इसकी तो
0: अब मैं
1: जांच भी
0: आपको एक
1: करने
0: और
1: के लिए
0: बताया
1: कोई
0: था,
1: तैयार नहीं था। जब बहुत ही आरोप हो गए,
0: ओरछा का राम
1: जब
0: मंदिर का केस
1: नृपेंद्र
0: है साहिल
1: मिश्रा
0: भाई,
1: सामने आकर कहने लगे
0: मैं
1: कि हाँ
0: बताता हूं
1: गड़बड़ियां
0: जांच
1: हैं,
0: क्यों
1: तब
0: जरूरी
1: जाकर
0: है।
1: ये बात हुई है एसआईटी की। हाँ
0: किसने कहा? नृपेंद्र मिश्रा बहुत गलत फैक्ट्स कोट कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। नृपेंद्र मिश्रा से बहुत पहले ट्रस्ट ने बोल दिया था एसआईटी को गठन करना चाहिए, और रिक्वेस्ट करिए ट्रस्ट ने, अगर आपके पास प्रूफ है नृपेंद्र मिश्रा के इंटरव्यू के बाद है तो प्रूफ आप दिखाइएगा, सबके दुरुस्तों की जानकारी। दूसरा, नृपेंद्र मिश्रा जैसे आपने संजय सिंह जी को कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है, ही वॉज ए प्रेसिडेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कमेटी, जो ट्रस्ट की है लेकिन कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष है। तीसरी बात यह है कि जो मांग उठ रही है वो लीगल मांग ही तो उठाई जा रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, एसआईटी क्यों गठन हो गया, तो जवाब लीगल का लीगल दिया जाएगा। चौथी बात, जांच क्यों जरूरी है साहिल भाई? क्योंकि आज ही ओरछा मंदिर के राम मंदिर केस में कांग्रेस में आक्षेप उठाए थे, मोहनलाल तिवारी था, उसको आज एफआईआर क्वाश हो गई है, उसकी 9 साल के बाद एफआईआर क्वाश हो गई है। और यही कांग्रेस सरकार थी जो 2024 में केदारनाथ बद्रीनाथ में भी आक्षेप लगाई थी, एसआईटी गठित हुई, कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगता है आक्षेपों के अलावा, एलिगेशन के अलावा जांच होनी चाहिए। संजय सिंह को बुला लिया ना एसआईटी में, मतलब कोऑपरेशन सब जगह
1: के
0: है,
1: नाम पर,
0: लेकिन उसके बावजूद भी आक्षेप उठाना वो
1: आस्था के नाम
0: में
1: पर। अमितोष जी, आस्था के नाम पर कई सारी जगह पर हमने
0: जी
1: देखा
0: जी
1: हुआ है, खास करके उत्तर प्रदेश में, सिर्फ आस्था को चोट पहुंचाने के नाम पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। लेकिन यहां पर 2 दिन हो चुके हैं एसआईटी के रिपोर्ट आने के बाद, अभी तक राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया हुआ है, और ना ही एफआईआर की बात भी इस पे की जा रही है। आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आलोक शर्मा, क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द सबसे पहले एफआईआर होना चाहिए? और ये एसआईटी की रिपोर्ट या अंतरिम रिपोर्ट है, लेकिन क्या ये सार्वजनिक होनी चाहिए? आलोक शर्मा,
2: देखिए, पहले शुरू में लगा था दाल में काला है, फिर लगा पूरी दाल ही काली है, अब लग रहा है कि पूरे कुएं में ही भांग पूरी तरह से घुली हुई है, और अब तो और भी लग रहा है कि एक तरफ डकैती है और डकैती के बाद सीना चोरी भी है। ये चोरी नहीं है, पहले लगा था ये चंदा चोर हैं, वीएचपी वाले और आरएसएस वाले लोग निर्मोही अखाड़े के माल को खा गए। ये बहुत दिन तक जवाब नहीं दे पाए आज तक। फिर लगा नहीं, ये तो जमीन के लुटेरे हैं। फिर अब और भी आगे बात बढ़ गई कि ये तो चढ़ावे के डकैत हैं। दुर्भाग्य ये है कि ट्रस्ट कहता है कि साहब हमारी जांच कर लो, जांच कौन करता है? उन्हीं के लोग, बड़े सीनियर लोग। फिर आज ये वीएचपी वाले लोग फेस सेविंग के लिए आ गए, जब सबूत पबूत सब निपटा दिए, गोपाल राव कर्नाटक भाग गए, वो होसबोले से मिल लिए, सब हो गया, अब कह रहे साहब एफआईआर कर लो। अरे भाई, आप लोग इस देश को बेवकूफ समझते हो? एसआईटी बना दी, एसआईटी बना दी, एसआईटी एसआईटी का खेल हो रहा था। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 7 से 8 तहरीर आई, किसी पे एफआईआर नहीं हुई।
0: नहीं तो आप,
2: कारण क्या है
0: कि
2: एफआईआर तब होगी ना जब जांच करना चाहेगा कोई। अरे भाई कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, डकैतों के साथ यही भाषा बहुत अच्छी भाषा है। मैं आपकी भाषा आपके लिए कुछ नहीं कहा, मैंने डकैतों के लिए कहा,
0: सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
2: अगर आप डकैत हैं तो जरूर आपके लिए कहा।
0: बात करिए, मेरे संगठन का नाम,
2: मैं वापस आता हूँ। अरे भाई, आप
0: आपकी साहिल, आपकी जितनी नीचे,
2: साहिल मैं चुप हो जाता हूँ।
1: ठीक है ठीक है,
2: इनको बुलवा लीजिए।
1: ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आपकी बात
0: का नाम लेके इस तरह की भाषा का प्रयोग,
1: नहीं नहीं
0: तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं, अमितोष जी ठीक है, आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करें, चलिए
0: जी जी।
2: देखिए दुर्भाग्य यह है कि डकैती कर रहे हैं, प्रभु राम के घर में डकैती कर रहे हैं, इनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और ऊपर से कुछ लोग बैठ जाते हैं टीवी पर डिफेंड करने के लिए, साहब हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने डकैती डाली है वहां पर, ये प्रभु राम का घर था। सोचिए जो राम को डकैती, राम के घर में डकैती डाल सकते हैं, देश में क्या किया होगा इन लोगों ने। 12 साल से हम टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, डकैती का माल भी है।
1: आलोक जी
2: SIT 6 दिन तक वहां रही भी है।
1: क्या आपको लग
2: 150 लोगों से पूछताछ भी हुई है,
1: सीसीटीवी
2: कैमरा भी गायब है, सोना भी गायब है।
1: एक मिनट यार
2: मैं बोल दूं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए FIR। क्यों होना चाहिए FIR, ये सवाल पूछने का यार साहिल भाई। मैं कह रहा हूं कि सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, डकैती का माल भी है, डकैती का माल गोबर में मिल रहा है। ये कौन है चंपत राय, ये कहां से चला था बिजनौर से, ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था कि नहीं था, ये हरिद्वार में क्या कर रहा था, ये देहरादून में क्या कर रहा था। लेकिन आज VHP ने मांग कर दी है कि FIR होनी चाहिए, गजब है भाई, चोरी मांग कर रहे हैं कि FIR होनी चाहिए।
0: काउंटर करूंगा आलोक शर्मा को,
2: ये सारे फोटो खींच कर वो टिन्नू मिन्नू डिंडू जो थे वो किसके लोग थे भाई, सारे परिवारवादी लोग RSS के थे, और RSS ही मांग कर रही है कि FIR होनी चाहिए। अरे भाई ये बड़े बड़े
1: क्या है ना, कि जो भी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उन पर व्यक्तिगत सवाल उठना शुरू हो गया, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी यहां पर उठा रही है।
0: साहिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आलोक शर्मा जी की जिस तरह की भाषा का प्रयोग है उतना निचला तो मैं इस स्तर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इनसे कुछ सवाल आपके माध्यम से पूछूंगा। इनकी सारा सनातन राम जन्म भूमि के ऊपर मैं टारगेट करके बिना एविडेंस के और बिना SIT को अप्रोच करे हुए
2: सिर्फ आक्षेप
0: लगाते हुए ही हो रहा है। कार्तिकेय दीपम में क्या हो गया, चुप रहिए, कार्तिकेय दीपम में क्या हो गया, गुरुवार मंदिर में क्या हो गया,
2: सबरीमाला
0: में क्या हो गया, फ्लैग पोल पे उसमें क्या हो गया, 5-7 करोड़ रुपए आप निकाल लेते हैं मंदिरों में, तब सनातन आहत नहीं होता आपका, तब सनातन आहत, कार्तिकेय दीपम में सनातन आहत नहीं हुआ आपका, गुरुवार मंदिर में सनातन आहत नहीं हुआ आपका, अयप्पा मंदिर में सनातन आहत नहीं हुआ आपका, फ्लैग पोल विषय में सनातन आहत नहीं हुआ आपका, केदारनाथ बद्रीनाथ पे आक्षेप लगा रहे थे
1: सनातन आहत
0: नहीं हुआ आपका। मैं कुल मिला एक ही बात,
1: अमितोष जी
0: मैं साहिल भाई
2: बदतमीजी को बैठा लेते हैं आप लोग, भाजपा तो भाग गई है बदतमीजी,
1: अमितोष जी अमितोष जी पर
0: भाजपा तो आलोक शर्मा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं रहे।
1: अमितोष जी सबसे बड़ा सवाल इसमें उसमें प्रोफेसर संगीत रागी को मुझे दरअसल लाना है, क्योंकि देखिए फिक्र की बात नहीं, एक मिनट आलोक शर्मा जी एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल जो हमने पूछा था इसमें संगीत रागी जी, आप पहले भी इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं, दान चोरी के आरोपों पर सबसे बड़ी फिक्र क्या है, जरा वो सवाल दिखा दीजिएगा, लोग क्या कहते हैं कि जरा सुन लीजिएगा, दान के दुरुपयोग की आशंका 30% लोग कहते हैं कि दान का दुरुपयोग हो रहा है, हो सकता है, यह आशंका है उनके मन में। दान प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी 18% लोग, और सबसे बड़ी बात राम मंदिर की छवि को नुकसान 20.3% लोग इसके बारे में कहते हैं। संगीत रागी जी जिस आधार पर राम मंदिर बनाया गया था उसकी छवि को नुकसान ये लोग मान रहे हैं, और अभी भी आपको लगता है कि FIR आराम से होना चाहिए, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए वो रिपोर्ट।
3: साहिल मैं सबसे पहले आलोक जी की चंपत राय जी के लिए जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है मैं उसका प्रतिकार करता हूं, विरोध करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के लिए जिस प्रकार की तू तलाक की भाषा है,
2: मतलब मैं
3: ये उनके अपने मैं आपके अपने संस्कार हैं भाई, आप गिलास तोड़ते हैं, थप्पड़ मारते हैं, ये आपका संस्कार है, मैं गाली गलौज नहीं करूंगा। नहीं
2: राम मंदिर
3: सुन लीजिए
1: ठीक है मुद्दे पर,
3: अरे भाई जब कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस
1: एक मिनट एक मिनट आज की
3: देखिए साहिल आप
1: संगीत रागी जी
3: साहिल मुझे आप बोलने देंगे तभी मैं बोलूंगा। नहीं नहीं साहिल
1: नहीं मैं आपको ही बोलने दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक
3: प्रकार
1: एक लाइन में आपको ऐड कर
3: भाषा असंस्कारित अश्लील भाषा का प्रयोग
1: संगीत रागी
3: आपने उनको क्यों नहीं टोका,
1: ये डिबेट कौन किसके बारे में क्या कह रहा है उसमें
3: मैं कहूं कि
1: नहीं। संगीत रागी जी एक सेकंड मेरी बात एक बार आलोक शर्मा जी एक मिनट नहीं संगीत रागी जी ये डिबेट डिरेल नहीं होगा वरना दोनों की बातचीत नहीं सुनी जाएगी।
3: नहीं तो मैं
1: ये डिबेट डिरेल नहीं आलोक शर्मा जी एक सेकंड आलोक शर्मा जी एक मिनट, और संगीत रागी जी आप भी सुन लीजिएगा, ये एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, ये डिबेट किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, इसलिए मैंने स्पेसिफिक सवाल आपके सामने रखा है और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। लोगों को लगता है, जब सवाल पूछने के बाद लोगों को लगता है कि राम मंदिर की छवि को नुकसान हो रहा है इन आरोपों की वजह से, क्या इसके बावजूद ये जो एसआईटी के रिपोर्ट है ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, विपक्ष को तो मौका मिल गया है, वो कहेंगे, आप इसके बारे में बताइए, आपको नहीं लगता कि राम मंदिर की छवि को नुकसान होगा इससे, और इसीलिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है।
3: देखिए साहिल आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। गांधी परिवार के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करने के बाद सारे कांग्रेस के प्रवक्ता उछलना शुरू करते हैं, जो मैं भी मानता हूं कि तू तड़ाक की भाषा नहीं होनी चाहिए, मैं स्वयं कह रहा हूं। दूसरी प्रकार अरे भाई देखिए फिर
1: ठीक है
3: भाई, गांधी परिवार ने कितना इस देश का शोषण किया और लूटा, गांधी परिवार ने इस देश का व्यक्तिगत तौर पर कितना शोषण किया और लूटा, इसके बारे में यदि देश को बताया जाए तब क्या होगा? मैं जानते हूं पूरा गांधी परिवार ने इस देश का कितना शोषण किया और लूटा,
1: मुद्दे पर
3: उसके बारे में परेशानी हो जाती है,
1: मुद्दे पर ठीक है, हो गया मुद्दे
3: को बोलने देंगे तब मैं, यदि बीच उनकी कमेंट्री
1: आप बोलिए ना, अभी आइए मुद्दे पर,
3: उनकी कमेंट्री बंद कर,
1: आप बोलिए, आपकी बात सुनी जा रही है, बोलिए।
3: देखिए मैं मानता हूं कि पूरे ये अग्नि परीक्षा का समय है, विश्व हिंदू परिषद को ट्रस्ट को इस आग से निकलना पड़ेगा, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा है। अभी आप संजय सिंह जी की बात कर रहे थे, संजय सिंह ने 2021 में आरोप लगाया था, संजय सिंह उस समय से क्यों नहीं जाकर के पेपर दे रहे थे, आज उनको याद आया है पेपर देने के लिए क्या? कोई अभी तक,
1: अरे उन्होंने कहा,
3: गोबर से पैसा निकला है, अमुक घर से पैसा निकला है, सुनिए आज बुलाया ना, इतने दिनों से वो क्या कर रहे थे? और ये कांग्रेस पार्टी रामालय ट्रस्ट के बारे में बात करेगी क्या, जिसको नरसिंहा राव ने बनाया था और चंदा इकट्ठा किया था इस देश के लोगों से? मैं उन मुद्दों पर नहीं जा रहा, मैं फिर भी कह रहा हूं, देखिए साहिल जी आप मुझे बोलने दीजिए, पूरी बातों को बोलने दीजिए,
1: बोलिए आपकी बात सुनी जा रही है, संगीत रागी जी
3: अब फिर मैं आलोक जी यदि मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो आप बॉटल तोड़ना शुरू कर देंगे, फिर आप परेशान हो जाते हैं।
4: अरे भाई संगीत भर दिए,
3: आप दूसरों को बोलने दीजिए ना, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था ना,
1: चलिए
3: आपने सारे अश्लील शब्दों का पाठ किया ना, जब कांग्रेस पार्टी
1: आगे बढ़ने से पहले
3: बात करती है तो ऐसा लगता है कि कोई
1: आगे बढ़ने से पहले, प्रोफेसर रागी आगे बढ़ने से पहले स्पेसिफिक सवाल क्योंकि मुझे प्रोफेसर मिश्रा के पास, प्रोफेसर सतीश प्रकाश के पास भी जाना है, आगे बढ़ने से पहले संगीत रागी जी एक स्पेसिफिक सवाल, जो एसआईटी की रिपोर्ट फिलहाल सरकार के पास पड़ी हुई है, क्या इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए रिपोर्ट या नहीं होनी चाहिए?
3: मैं बिल्कुल मानता हूं कि राम मंदिर के मुद्दे पर पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जानी चाहिए, जिसमें एसआईटी का मुद्दा जो है उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी चाहिए। यदि एसआईटी को लगता है कि अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, अंतरिम रिपोर्ट है, बाद आने वाले दिनों में और भी इसके इन्वेस्टिगेशन का दायरा होना चाहिए, जिसमें मैं मानता हूं कि रामालय ट्रस्ट को भी, जो कांग्रेसियों ने बनाया था, कांग्रेस के साधु संतों ने बनाया
1: जितनी
3: था,
1: जितनी जांच होनी है कर लीजिएगा, आज की स्थिति में जो वहां पर बैठकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उनकी सबसे पहले जांच होना बहुत जरूरी है। और ये देखिए आलोक कुमार के तरफ से अयोध्या राम मंदिर के मुद्दे पर एक पोस्टर जारी किया गया है, चार मांगे उसमें रखी गई है, FIR शुड नाउ बी फाइल्ड, इन्वेस्टिगेशन शुड बी एक्सपेडाइटेड, ट्रस्ट को गिल्टी जो है उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आज ये पोस्टर जारी किया गया है। अभी तो जी यही सवाल मैं पूछने की कोशिश कर रहा था, आज ये पोस्टर इतने दिन नहीं किया गया था, यही तो सवाल यहां पर आकर रुकता है सुनील सिंह सज्जन, इसके बावजूद भी हमारे सर्वे में लोग कहते हैं ये VHP का पोस्टर, और फिर भी हमारे सर्वे में लोग कहते हैं कि सच सामने आएगा उसकी उम्मीद कम ही है, 45% लोग ये कहते हैं कि सच सामने आएगा उसकी उम्मीद कम ही है उनको, सुनील सिंह सज्जन।
5: जानते हैं, क्योंकि जो लूट रहे हैं वही जांच कर रहे हैं। और हम तो बा ईमानदारी आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, राम भक्त सनातन को मानने वाले, अपने को हिंदू कहने वाले, हमारे जैसे बहुत करोड़ों लोग होंगे। हम लोगों को यह तय कर पाना बहुत कठिन हो रहा है कि वो जो अक्रांता विदेशी आए थे, जो हमारे मंदिरों को लूट करके गए हैं, वो ज्यादा खतरनाक थे या जो हमारे देश में और मंदिर में बैठे अक्रांता है, जिन्होंने भगवान राम का मुकुट, भगवान राम की चरण पादुका, सोने चांदी की ईंट, जो भक्त दान करके गया है, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1,000, 5,000, 5 लाख, आप हड़प गए और उसके बावजूद भी बेशर्मी से उनका बचाव कर रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठ करके। कैसे ये देश का सनातनी लोग कैसे इनको बर्दाश्त कर पा रहे हैं और कैसे सच आएगा? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, आपकी कैसी एसआईटी है? रिपोर्ट आ गई, एफआईआर नहीं है। एसआईटी का मतलब सब लोग समझते होंगे, एसआईटी जब जाती है उसको लगता है कि अगर कोई दोषी है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है, उसको थाने में बिठा सकती है। और जितने भी लोग हैं, वो चंपत राय हो, राव हो या मिश्रा जी हो, हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि ये चोर हैं, लेकिन अगर चोरी हुई, लूट हुई तो कौन है फिर? आप कह रहे हैं नाम लिया जा रहा है।
1: सुनील सिंह जी, ये वीएचपी को ये पोस्टर क्यों जारी करना पड़ रहा है, ये पोस्टर क्यों जारी करना पड़ रहा है?
5: हम तो ये कह रहे हैं, अगर इनमें पारदर्शिता और थोड़ी सी भी भगवान के प्रति लिहाज या श्रद्धा होती, तो जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया था सबसे पहले, उस दिन आपको जारी कर देना चाहिए था। पहले आप संगठन, आरएसएस, बीजेपी सरकार मिल करके नौटंकी करते हैं, सारे लोगों को बचाने का रास्ता खोज लेते हैं।
1: अमितोष जी,
5: उसके बाद
1: ये बात तो आपको माननी पड़ेगी, अमितोष जी ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जब पहली बार आरोप हुआ था तब केंद्र के मंत्री आकर ये कह रहे थे कि भाई विपक्ष को तो कुछ भी आरोप लगाने की आदत पड़ गई है, इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज आप वीएचपी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया जा रहा है, कहीं आपको भी अंदर ही अंदर लग रहा है कि सच सामने नहीं आएगा शायद, और इसीलिए आपको भी ये पोस्टर निकालना पड़ रहा है।
0: साहिल भाई, पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो स्टेटमेंट कहाँ है कि विपक्ष को तो आदत हो गई है कहने की, इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देखिए, आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना साहिल भाई, मैं इसलिए उसका काउंटर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप बहुत सम्मानित है, इसलिए काउंटर कर रहा हूं कि शब्दों की वजह से लूजिंग लिप्स ऑलवेज मेक द सिंक शिप्स, यही विषय है। जो मिसगाइडेंस, मिस इंटरप्रिटेशंस, एलिगेशंस, अफवाह, रूमर, हम क्या कह रहे हैं, पवन पांडे ने कह दिया था उस दिन, सड़कों पे फैल रही है खबर, मेरे पास कोई सोर्स नहीं ऑफ इंडिया के इंटरव्यू पे, यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे उसको डिफेंड कर लेंगे क्या? यही समाजवादी की पार्टी आगे चल जाते, आप पार्टी के ऊपर में संजय सिंह के ऊपर में एलिगेशन लगा दिया था रतन मिश्रा उन्हीं के नेता ने, कांग्रेस पार्टी ने एलिगेशन लगा दिया था फेक वीडियो बना के, तो जब
1: जारी करना पड़ रहा है
0: साहिल भाई, जब भी अफवाह होती है उसको कहीं तो कैलकुलेट करेंगे। पोस्टर जारी करना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, बहुत क्लियरिटी आनी चाहिए लोगों के अंदर में, क्योंकि जब जब बैठ रहे तब तक हम एक ही बात कर रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, अगर कोई थेफ्ट हुआ है, कोई इलीगेशन हुआ है, कोई इलीगल,
1: यूपी सरकार कह रही है कि 29 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी,
0: कड़ी से कड़ी होनी,
1: यूपी सरकार कह रही है 29 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी रिपोर्ट या अंतरिम रिपोर्ट 22 तारीख को आई, 29 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएगी, फिर भी आप कह रहे हैं कि एक्सपेडाइट करिए जांच को, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी संदेह है। आलोक शर्मा जी और बाकी सुनील सिंह सज्जन को भूल जाइएगा, आपके भी मन में संदेह है आज के दिन में। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है,
0: संदेह नहीं है,
1: मैं तो स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए कि संदेह है आपके मन में,
0: जो एसआईटी की मांग की बात हम करते हैं तो संदेह किस बात का होगा, किस बात का? अच्छा, एक बात बताइए साहिल भाई, क्या एक्सपीडाइट जांच के लिए भी कह दिया तो संदेह हो गया? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना हो गया तो संदेह हो गया? ये तो बल्कि अच्छी बात है, आपको इसका स्वागत करना चाहिए।
1: योगी आके कह रहे हैं, योगी जी आके कह रहे हैं कि 29 तारीख तक खत्म करेंगे जांच। ठीक है, जल्दी से हमारे साथ एक सवाल हमने जो पूछा था उस पर भी बात होनी जरूरी है। सतीश प्रकाश जी, कहीं ना कहीं लोग ये मानते हैं कि इसका असर यूपी सरकार की छवि पर भी पड़ेगा, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले का असर यूपी सरकार की छवि पर पड़ सकता है? क्योंकि लोग ये भी मानते हैं कि ट्रस्ट पे गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी यूपी सरकार की छवि पर असर पड़ सकता है।
6: नहीं, 100% सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, ट्रस्ट का काम कुछ और है, सरकार की व्यवस्था, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था, अगर वहां कोई प्रशासनिक मामलों में चेंज होता है तो सरकार ही जिम्मेदार है। देखिए, पहले दिन से कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये अभी पारिख जी जो कह रहे थे, एफआईआर दर्ज होगी पहले, उसके बाद कोई जांच होती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के या हाईकोर्ट में जाकर के आप एसआईटी की मांग कर सकते हैं, वो एसआईटी करने के लिए कह सकते हैं। एक बात देखिए, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपके 40% से ऊपर अगर लोग ये मान रहे हैं कि इस सरकार के व्यवहार को देखते हुए लोगों के मन के अंदर आशंका है, रोज का रोज ट्रस्ट के लोगों के बयान कहीं ना कहीं गलत तरीके से आ रहे। अगर उनसे सोने का हिसाब पूछते हैं तो वो कहते हैं उनको गला दिया, अगर चांदी का हिसाब पूछते हैं चांदी को गला दिया, अगर हीरो का स्वभाव पूछते हैं तो ये कहते हैं कि छोटे छोटे हीरे गला करके बड़ा हीरा बना देते, ये कौन सी साइंस है भाई। दूसरी बात देखिए, गड़बड़ कहां हो रही है। संजय प्रसाद को जो प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव है, उनको अगर एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपती है तो ये एक सवालों के दायरे में, क्योंकि वो खुद ट्रस्ट के मेंबर है। और कोई भी अगर अपराध होता है तो हमेशा पुलिस हो या जांच एजेंसी हो, उस विवाद से जुड़े हुए लोगों को वहां से दूर किया जाता है। अभी भी परिसर के अंदर जो ट्रस्ट के लोग हैं वो उसी तरीके से कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। एसआईटी को पहला काम यह करना चाहिए था कि ट्रस्ट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, क्योंकि वो भी आरोप के दायरे में, उनको दूर करना चाहिए था। और संजय सिंह को कैसे रिपोर्ट सौंप सकते हैं, जिन लोगों से पूछताछ की जानी थी। अगर वो ट्रस्ट के मेंबर हैं तो सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे ना। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो एसआईटी गठित करी है वो जाकर के ट्रस्ट के
1: एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये माना जा रहा था कि कई सवालों के जवाब शायद मिल जाएंगे, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद तो सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज की तारीख में यह होती जा रही है कि भक्तों का घटता भरोसा नुकसानदेह साबित हो सकता है, और वो सिर्फ ट्रस्ट के लिए नहीं तो राम मंदिर की मूवमेंट के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसीलिए सवाल अभी भी कायम है। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबा केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
4: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

इस दर्द की कोई दवा नहीं है, इस मातम का कोई अंत नहीं है। लखनऊ की उस आग ने सिर्फ 15 लोगों की जान नहीं ली, उसने 15 घरों के सपने जला दिए। किसी माँ का सहारा छीन लिया, किसी पिता की उम्मीद बुझा दी, किसी बहन की राखी सूनी कर दी और किसी दुल्हन के हाथों की मेहंदी आने से पहले ही उसके सारे अरमान राख कर दिए। अब पीछे बची हैं कुछ तस्वीरें, कुछ यादें, कुछ अधूरे सपने और ऐसे जख्म जो शायद कभी नहीं भरेंगे। कहां तो घर में शादी की बातें हो रही थी, बारात की तारीख तय करने की चर्चा चल रही थी, मेहमानों की सूची बन रही थी, नए रिश्तों के सपने बुने जा रहे थे, लेकिन अब उसी घर में मातम पसरा है, रोते बिलखते परिजन हैं और सामने रखी है 27 साल के नीलेश कुमार की तस्वीर। लखनऊ अग्निकांड के उन बदनसीब चेहरों में शामिल जो सुबह घर से निकले तो थे अपने सपनों को पूरा करने, लेकिन शाम होते होते उनकी मौत की खबर पहुंच गई। कुछ ही समय बाद नीलेश की शादी होने वाली थी अनामिका सामंत के साथ। एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने सजाए जा रहे थे, दो परिवार तैयारियों में जुटे थे। एक तरफ बारात निकलनी थी, दूसरी तरफ बारात के स्वागत की तैयारी थी, लेकिन नियति ने एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया। अब न शहनाई बजेगी, न साथ फेरे होंगे, न दुल्हन की विदाई होगी और न ही नए रिश्तों की शुरुआत। अब बस तस्वीरों के सामने बहते आंसू हैं और उन सपनों की राख जो अभी पूरे भी नहीं हुए थे। 27 साल के नीलेश और 30 साल के अनामिका की मुलाकात उसी सेंटर में काम करने के दौरान हुई थी। साथ काम करते करते दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर दोनों ने पूरी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया। परिवारों ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, भविष्य की योजनाएं बन रही थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि किस्मत इतनी बेरहम साबित होगी। पिछले ही हफ्ते अनामिका के माता पिता पश्चिम बंगाल से लखनऊ आए थे नीलेश के परिवार से मिलने। घर में एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम भी हुआ। पहली मुलाकात में ही अनामिका ने सबका दिल जीत लिया। उसकी मुस्कान, उसका अपनापन, उसका जिंदा दिल स्वभाव परिवार के हर सदस्य को भा गया। दोनों परिवार अब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, एक परिवार बनने की तैयारी कर रहे थे। अगले हफ्ते नीलेश के परिजन पश्चिम बंगाल जाकर अनामिका के परिवार से मिलने वाले थे। ट्रेन की टिकटें तक बुक हो चुकी थी, शादी की तारीख पर चर्चा शुरू हो चुकी थी, भविष्य के सपनों को आकार दिया जा रहा था, लेकिन लखनऊ की आग ने इन सारी तैयारियों को एक पल में राख कर दिया। तीन भाई बहनों में दूसरे नंबर पर रहे नीलेश परिवार की उम्मीद थी। रिश्तेदार उन्हें मेहनती, जिम्मेदार और अपने काम के प्रति समर्पित युवक के रूप में जानते थे। उनकी दुनिया नौकरी और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। परिवार को उम्मीद थी कि इस साल उनका प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी और फिर वो अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करेंगे, अपना घर खरीदने का सपना। नीलेश चाहते थे कि जिस घर को वो अपनी मेहनत से बनाएंगे उसी घर में अनामिका दुल्हन बनकर आए, लेकिन अब वो सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया। इस त्रासदी ने अनामिका के परिवार को भी दोहरा जख्म दिया है, क्योंकि आग में जान गंवाने वालों में अनामिका की चचेरी बहन सौमिल्या भी शामिल थी। यानी एक ही हादसे ने परिवार से बेटी भी छीन ली और होने वाला दामाद भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राम जी के चढ़ावे में चोरी का मास्टरमाइंड कौन? इस सवाल का जवाब तो फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी का कहना है कि जांच रिपोर्ट को अभी पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है।
1: मेरे जो साथी एसआईटी में रहे थे, उन्होंने आज अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को अपनी जो प्रारंभिक जांच आख्या है उसको सबमिट कर दिया है, और जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं। फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है, और अभी भी जांच प्रचलित है, और जो बाकी चीज है उसको हम अपनी सेकेंड पार्ट में, जो हमारा अंतिम प्रतिवेदन रहेगा, उसमें सबमिट करेंगे।
0: एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है, लेकिन जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वे संकेत देती हैं कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जड़ें मंदिर प्रबंधन तक जा सकती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम को लेकर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे इस पूरे मामले में फंसे हैं या बच जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने एसआईटी रिपोर्ट और सरकार के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं।
2: जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना हुए, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया।
0: माना जा रहा है कि एसआईटी जांच के बाद अब राम मंदिर में दान की साप्ताहिक ऑडिटिंग अनिवार्य की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।

0: मध्य प्रदेश से उठी एक सियासी चिंगारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। इसे समझने के लिए इन तीन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव हैं। इनके ऊपर मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और उत्तर प्रदेश में उसी कांग्रेस पार्टी के साथी अखिलेश हैं जो कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सवाल बीजेपी के मुख्यमंत्री से पूछ रही थी और उसकी सफाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोधी अखिलेश यादव दे रहे थे। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस हैरान, समाजवादी और कांग्रेस की इंडिया ब्रांड दोस्ती देखने वाले हैरान कि आखिर कांग्रेस के आरोपों पर अखिलेश बीजेपी के सीएम का बचाव क्यों कर रहे हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि मोहन यादव भ्रष्ट हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि एमपी में जिस बीजेपी सरकार के सीएम मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस दो दिनों से हुक्का पानी लेकर चढ़ी हुई है, पीसी पर पीसी कर रही है, बयान पर बयान दे रही है, भयानक जमीन घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार तक के सवाल उठा रही है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार भी हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि ये यादव सीएम को बदनाम करके यूपी के सीएम को बदलने का बहाना है। अखिलेश के इस बयान के पीछे का मकसद और यूपी के अंदर उसके सियासत समझने में यूपी की एनडीए सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक मशाल जलाए चल रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
2: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो।
1: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: फल आयोजन पर पीएम मोदी ने की मंत्रियों की तारीफ, कहा दिखा संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण, हर परीक्षा में अपनाएं ऐसा ही मॉडल। कोलकाता गोदाम हादसे में 3 की मौत, 21 का रेस्क्यू, मलबे में अभी भी कई जिंदगियां दबी, सीएम ने घटनास्थल का दौरा किया, मोर्चे पर सेना। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आग से नहीं जहरीले धुएं से हुई 15 की मौत, एलडीए जांच में 18 अधिकारी दोषी। अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर में मॉनसून ने मचाई तबाही, सीएम पेमा खांडू ने आपदा पर जताई चिंता, पहली बार में थम गई मुंबई, रेड अलर्ट जारी। मुंबई लोकल में हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर हुई बहस में चाकू गोद कर किया था मर्डर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
2: मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 एकड़ भूमि, जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा।
3: डॉटर इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स सन एंड रिलेटिव्स स्नैप्ड अप नियरली 168 एकर्स।
4: 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ खान।
5: जितनी रजिस्ट्रियां हैं उसमें टैक्स चोरी भी हुई। एक फेस है, अलग अलग फेस में और भी जानकारियां आई।
6: उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ।
7: मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300 और 600 एकड़ जमीन ली है।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। जमीन के मामलों पर एक बार फिर सियासत का तूफान खड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर उज्जैन में जमीन लूट का आरोप लगा रही है। आज बीजेपी ने कर्नाटक में सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को जमीन आवंटन से भ्रष्टाचार का आरोप दोहरा दिया। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के लोग हैं। बीजेपी का आरोप है कि बेंगलुरु के पास 100 एकड़ की जमीन समेत कर्नाटक की कई प्राइम लैंड्स खड़गे के इस प्राइवेट ट्रस्ट को दे दी गई। सवाल है कि दोनों जगहों पर जमीन मामलों का सच क्या है? क्या उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार को जमीन खरीद में फायदा पहुंचाने के लिए नीतियां बनी? क्या कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक प्रभाव का जमीन आवंटन में इस्तेमाल हुआ? और क्या आरोप के बदले आरोप में दब जाएगा सच? मोहन की जमीन वर्सेस खड़गे की जमीन, यही है आज का हल्ला बोल। सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट।
1: उज्जैन में विकास के बने गए खाके में जमीनों की खरीद के नाम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आरोपों के घेरे में आ गए हैं। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीनों की लूट का आरोप लगाया।
2: प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे।
1: रिपोर्ट के मुताबिक मोहन यादव और उनके परिवार ने 253 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 से 2023 के बीच 30 करोड़ रुपए में कुल 85 एकड़ के 57 प्लॉट खरीदे गए, जबकि 2024-25 में 45 करोड़ में कुल 168 एकड़ के 137 प्लॉट खरीदे गए। मोहन यादव दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ में से 111 एकड़ जमीन उस क्षेत्र में खरीदी गई जहां 2028 में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है।
3: मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना, वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलेडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे।
1: मोहन यादव के जमीन मामले पर बीजेपी पहले ही उनका पक्ष रख चुकी है। पार्टी कह रही है कि मोहन यादव के पास आज भी उतनी ही 17 एकड़ की जमीन है जितनी सीएम बनने के पहले थी। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के पास भी 12.29 एकड़ जमीन है जो पहले से थी। मोहन यादव से संबंधित बताए गए सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पास 2023 के 68 एकड़ के मुकाबले 65 एकड़ जमीन ही रह गई है। मोहन यादव के बेटे वैभव की 16 एकड़ जमीन 2023 के पहले से है। बहू ने जो 10 एकड़ कृषि जमीन खरीदी है उसका भी उज्जैन के मास्टर प्लान से संबंध नहीं है। उधर जब कांग्रेस मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन के मसले को उठा रही है, तब बीजेपी ने कर्नाटक के जमीन आवंटन मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में उस ट्रस्ट के माध्यम से जमीन की लूट की गई जिसके सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे हैं। बीजेपी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले की तरह यहां भी जमीन की लूट हुई।
4: याद करिए, राहुल गांधी और पूरा गांधी वाड्रा परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी है, इन पर भी तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके के लैंड लूट के आरोप है और केसेस चल रहे हैं। जो मॉडस ऑपरांडी गांधी वाड्रा परिवार ने लैंड लूट करने के लिए किया, ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से 5 एकड़ भूमि, जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा।
1: बीजेपी जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीन के लूट आरोपों पर कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं मोहन यादव का जमीन मामला ओबीसी पॉलिटिक्स में भी तड़का लगा रहा है।
5: एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया।
1: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का एंगल ढूंढ लाए हैं।
6: बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं।
1: वैसे जमीन की कथित लूट पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नई नहीं है। लेकिन अब मोहन यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर नए सिरे से बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खींच गई हैं। आज तक
0: तो आरोप दो लग गए हैं, आमने सामने लग गए हैं, लेकिन हम सबसे पहले मोहन यादव का जो मुद्दा है उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे ही हम शुरुआत करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और प्रदीप भंडारी ने ही अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आरोपों की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, ये समझाइए ये कैसा संयोग है कि मुख्यमंत्री, उनका परिवार, परिवार की कंपनियां जो 168 एकड़ जमीन खरीदी उसका 111 एकड़ हिस्सा ठीक उसी रूट पर है जहां पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, नए रोड प्रोजेक्ट्स, उज्जैन मास्टर प्लान जो 2035 के तहत जहां पर लैंड यूज चेंज होने वाला है, ये सारी चीजें यहां पर होने वाली है, कैसा संयोग है ये?
7: देखिए श्वेता जी, पॉइंट नंबर वन की जो उज्जैन का मास्टर प्लान आया वो मई 2023 में आया, मुख्यमंत्री बने दिसंबर 2023 में। अब अगर मैं नवंबर 2023 में अगर मोहन यादव जी की भूमि की बात करूं तो वो 17 एकड़ है, और ये सबकी सब भूमि कोई छिपी नहीं है, हर चीज उनके इलेक्शन एफिडेविट में हुई है। तो जितने भी आप ये तथ्य सामने रख रही हैं, ये जो तथ्य सामने आए ये सब स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में डाले। तो क्विड प्रो को या प्राइमेसी एक्ट ऑफ करप्शन तब होता है कि वेन देर इज कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, या उनके ऑफिस को इस्तेमाल करके कोई नई भूमि ली। अगर इनके ऑफिस को इस्तेमाल करके अगर नई भूमि उनके उनके परिवार ने ली होती तो एसेट में इंक्रीमेंट होना पड़ता, पर यहां एसेट में कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अगर आप देखें कि मोहन यादव जी के नवंबर 2023 के अंदर 17 एकड़ भूमि थी, जो जून 2026 के अंदर भी 17 एकड़ है, नेट इंक्रीमेंट जीरो। उनकी जो धर्मपत्नी है उनकी भूमि 12 एकड़ थी नवंबर 2023 में, जून 2026 के अंदर भी 12 एकड़ है। जो उनके बात दूसरी करी गई है सिद्धि विनायक की, उसमें भी 68 एकड़ की भूमि नवंबर 2023 में थी, जो 65 एकड़ की, मतलब 3 एकड़ कम हो गई, लगभग कोई लार्जली कोई बड़ा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। साथ में किसी भी भूमि के अंदर कोई भी लैंड यूज को चेंज नहीं किया गया। तो अगर मान लीजिए ये सबकी सब जो भूमि है ये सब कृषि भूमि है, और वो ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका परिवार रियल एस्टेट में, उसके पहले है जिस सबके बारे में पब्लिक डिस्क्लोजर हुआ हुआ है। तो अगर पब्लिक डिस्क्लोजर कांग्रेस पार्टी ने मई 2023 में अगर ये सब सामने था तो कांग्रेस कोर्ट चली जाती, पर कांग्रेस कोर्ट इसीलिए नहीं गई क्योंकि कांग्रेस को भी पता है दीज आर ऑल लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज। एक भी प्रतिशत भूमि ना मुख्यमंत्री, ना उनकी धर्मपत्नी, ना उनके बेटे, ना उनकी बहू द्वारा कोई भी आसपास के एरियाज के अंदर, उज्जैन के अंदर या कहीं भी आसपास के एरिया के अंदर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद इंक्रीज हुई है। तो ये तो सिर्फ प्योर बिजनेस एक्टिविटी है, कांग्रेस पता
0: मतलब
7: नहीं
0: आप कह रहे हैं कि उनके बेटे बहू भाइयों की कंपनी ने 168 एकड़ जमीन नहीं खरीदी है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद।
7: देखिए उनका कोई भी डायरेक्ट रिलेटिव ने कोई भी, पहली बात तो उज्जैन का मास्टर प्लान उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले आया, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन के मास्टर प्लान में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, ना कोई उज्जैन के मास्टर प्लान में कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हुए। तो पॉइंट नंबर वन ये है कि उज्जैन के मास्टर प्लान से इसका ना कोई डायरेक्ट रिलेशन है ना इनडायरेक्ट रिलेशन है। तीसरा, अगर इनके मुख्यमंत्री के परिवार ने कोई भी एसेट लिया होता तो भाई एसेट में इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, एसेट में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ये सेम एसेट है जो उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में दिए थे। तो भाई किसी की अगर भूमि जो नवंबर 2023 के, अभय दुबे, मान लीजिए अभय दुबे जी के परिवार में 6 लोग आते हैं, अब वो 6 लोगों की नवंबर 2023 के अंदर वो रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर है जिसमें उनकी मान लीजिए एक्स एकड़ है, 60 एकड़ भूमि है। अब अभय दुबे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के एक साल बाद भी उनके सब रिलेटिव्स के अंदर वही उतनी की उतनी भूमि है, तो इसका मतलब थोड़ी अभय दुबे ने करप्शन किया। मान लीजिए अभय दुबे के किसी रिलेटिव ने जो उज्जैन मास्टर प्लान है या कहीं पे भी एरिया है उससे 100 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर कोई लेजिटिमेट बिजनेस की एक्टिविटी ले ली, लेजिटिमेट बिजनेस की भूमि ले ली, वो एक्ट ऑफ करप्शन कैसे? कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो व्यापार करना बंद थोड़ी करेगा, मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी व्यापार किया, उनकी बीवी ने थोड़ी व्यापार किया, उनके बेटे ने थोड़ी व्यापार किया। तो ये मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन क्यों हो गई, शायद से मल्लिकार्जुन खड़गे के भ्रष्टाचार के केसेस इनको सामने दिख नहीं रहे इस कारण ही ऐसी बात।
0: चलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के मुद्दे पे आएंगे, लेकिन जो मोहन यादव और अभय दुबे के बीच एक बुनियादी फर्क है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि दोनों मध्य प्रदेश का की
7: इंदौर का हूं, ये भी मध्य प्रदेश से ही है,
0: लेकिन उसके बावजूद एक फर्क वो ये है कि उज्जैन में जो पैठ है मोहन यादव की वो मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं हुई है, उससे पहले से बहुत लंबे समय से वहां पर वो।
7: चलिए मैं आपका आर्ग्यूमेंट लेता हूं, मोहन यादव
0: जवाब दे, मैं अभय दुबे
7: 5 सेकंड अभय जी आ जाएंगे। मोहन यादव इज नॉट अ फर्स्ट टाइम एमएलए, मोहन यादव पहले से ही उज्जैन के अंदर सक्रिय है। तो अगर मान लीजिए ये केसेस इनके पास पूरे होते तो अगर आप ये कह रही कि एमएलए उनकी पहले पैट है तो कांग्रेस के लोग कोर्ट में जाके इसको एक्ट ऑफ करप्शन प्रूव कर सकते थे. देयर इज नथिंग न्यू बिकॉज कांग्रेस नोज दिस इज एक्ट ऑफ प्योर बिजनेस एक्टिविटी.
0: बताइए अभय दुबे जी, क्या क्रोनोलॉजी के अलावा कोई और सीधा सबूत इस पूरे मामले में है? क्या एक परिवार, एक व्यक्ति अगर कोई एक कारोबार से जुड़ा रहा हो तो क्या उसके पद पर आने के बाद उनका परिवार वो काम धंधा छोड़ दे?
8: श्वेता जी, मैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और महादेव जी के सम्मुख जाकर त्राहिमाम कर रहा हूं. प्रभु, कैसी लूट है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चंदे की चोरी, और इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भगवान शंकर जी के घर में डाका डाला गया. श्वेता जी, बहुत अच्छी बात कही मेरे साथी मित्र ने कि मास्टर प्लान इनके मुख्यमंत्री बनने के पहले आया. और एक बुनियादी अंतर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, देश के प्रतिष्ठित अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से डिटेल इनके भीषणतम भ्रष्टाचार और पाप की संभावनाओं की रिपोर्ट छापी. अगर चुनौती देना है तो उस अखबार पर मुकदमा कीजिए. यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है. क्या कह रही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट? सिंहस्थ के लिए रिजर्व जमीन में से मंत्री यादव, उस समय ये शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, 872 एकड़ जमीन सिंहस्थ के धर्मस्थ धर्मालुओं के लिए रखी गई थी ताकि हमारा सिंहस्थ का काम कार्यकाज श्रद्धापूर्वक हम कर सकें. उसमें से 185 एकड़ जमीन को लैंड यूज बदलकर अलग कर दिया गया मास्टर प्लान 2035 में, वो मंत्री रहते हुए. यह आरोप हमारा नहीं है, यह आरोप दैनिक भास्कर ने प्रमाणिक रिपोर्ट लगाई है. उसमें नाम दिए कि उनके, मोहनलाल यादव, हमारी भाभी सीमा, बहन नगर सभापति कलावती यादव, लीलाबाई यादव के नाम. और मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है. प्रामाणिक रिपोर्ट छापी कि कैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी 168 एकड़ जमीन, मोहन यादव स्वयं 17 एकड़ जो पहले से ये कह रहे हैं दर्ज है, जिसमें 2013 में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 15 करोड़ की बताई, सीमा यादव पत्नी 11 एकड़, वैभव यादव पुत्र 17 एकड़, शालिनी यादव 10 एकड़, नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, कल्पति यादव 17 एकड़, रेखा यादव सिस्टर इन लॉ 6 एकड़, अभय यादव भतीजा.

0: पे इतने वीक है, वो ये नहीं कह पाए कि कांग्रेस जो है इस इन्वेस्टिगेशन में विश्वास रखती है वो किसी थर्ड पार्टी को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं और हियरसे पे विश्वास रख रहे हैं। चलिए, इनने कही सीएस की बात, तो इनका पूरा एसेंस क्या है? ये पूरा कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि भाई जमीन हड़पी। अब ऐसी चीज है तो मुझे बताइए कि अगर जमीन हड़पी गई तो जमीन कॉन्स्टेंट कैसे है? श्रीमत मोहन यादव जी की जमीन, मुख्यमंत्री जी की जमीन जो 2023 में 17 एकड़ की, वही आज 17 एकड़ की है। सीमा यादव की भूमि जो 12 एकड़ की, वही 12 एकड़ की है। वैभव यादव की भूमि 16 एकड़ की, वही 16 एकड़ की है। शालिनी यादव की भूमि जो 10 एकड़ की, वही 10 एकड़ की है। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 13(1) भी क्या कहता है कि अगर आपने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अपने ऑफिस में अपने आपको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा दिलाया, या तो कोई ना डायरेक्ट फायदा है ना इनडायरेक्ट फायदा है। अब हियर से कॉन्वर्सेशन के हिसाब से आप खुद ही विश्वास नहीं कर रहे और आपको इन पे विश्वास है तो आप कोर्ट चले जाइए, उसको प्रूव करिए। आप कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि आपने मध्य प्रदेश चुनाव में भी एक ओबीसी के ऊपर इस तरीके के झूठे आरोप लगाए थे और वो तथ्यहीन आपके नेताओं ने साबित नहीं किए थे। मैं आपको बताता हूं सच्चे आरोप क्या होते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 एकड़ की भूमि जो 100 करोड़ की है।
1: प्रदीप जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर जो आपके आरोप हैं उस पर हम विस्तार से आएंगे। नहीं,
0: मुझे बताइए ना कैसे गलत है। मैं तो कह रहा हूँ लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी है, गलत है, तो ऑन रिकॉर्ड ही दिखना चाहिए ना श्वेता जी, कैसे नहीं दिख रहा है।
1: मध्य प्रदेश के मुद्दे पर अभी रहते हुए इस मुद्दे को खत्म करते हुए फिर हम कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं। आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी के पास हम चल रहे हैं।
2: मैं बेनामी संपत्ति का कानून क्या प्रधानमंत्री जी पकोड़े तलवाने के लिए लेकर आए क्या? अगर परिजनों के नाम से कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो सत्ता का सुख भोग रहा है अगर जमीनें लेता
0: है,
2: है। इतना ही नहीं, उस रिपोर्ट ने क्या लिखा है?
0: अबे भाई, कहा मुझे बताइए, दिस इज 13
2: भाई, ये तो ये प्रामाणिक बात उन्होंने कही।
0: भूमि
2: उज्जैन बदनावर रोड, मैंने बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला।
1: एक मिनट,
2: अरे भाई,
1: बेनामी संपत्ति कह रहे हैं,
2: बदनावर रोड
0: क्या कह रही, बताइए इनकार।
2: एक सेकंड सुनिए ना, मैं मेरी बात मेरी एक मिनट सुनिए श्वेता जी, उस रिपोर्ट ने क्या खुलासा किया है पता है आपको? उन्होंने कहा ये जो सारी जमीनें परचेस की गई इन प्रोजेक्ट्स के या तो संभावित थे आने वाले या वहां आने वाले थे। कौन सा? उज्जैन बदनावर रोड चौड़ीकरण, नई कनेक्टिविटी, उज्जैन इंदौर रोड विस्तार, उज्जैन झालावाड़ 4 लेन, उज्जैन नागदा रोड, उज्जैन देवास रोड, उज्जैन मक्सी रोड, उज्जैन आगर रोड, गरोड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर।
0: चलिए,
2: तो ये आपको सब पता था कि यहाँ प्रोजेक्ट्स आने वाले, वहां जमीन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने तत्कालीन प्रामाणिक खबरें की है और ये भी सोर्सेस कह रहे हैं कि ये पहला पार्ट। अरे क्या कह रहे हैं भाई, कैसे कैसे डाल सकते हो आप? हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की इंक्वायरी हो, उसमें फिर चाहे सीबीआई, ईडी, ईडी कहाँ है आपकी? तोते का पिंजरा सोया हुआ है, थोड़े थोड़े
1: 10 सेकंड
2: आपके, तो आज कहाँ गए इतने गंभीर आरोप? बहुत विस्तार से गंभीर आरोप लगाए गए, मुख्यमंत्री क्यों नहीं सामने आते? आखिर
0: आज आप बिल्कुल अपने, कह रहा हूँ श्वेता जी, मैं वापस से मूल पे आऊंगा। अबे भाई, ये कह रहे हैं कि उज्जैन का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर चीजें जो है उसके हिसाब से ली गई। भाई उज्जैन का मास्टर प्लान तो उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले आया।
2: अरे मास्टर प्लान,
0: मुख्यमंत्री बने उज्जैन के मास्टर प्लान 6 महीने बाद।
2: आपको समझ नहीं है मेरे दोस्त,
0: बिजनेस एक्टिविटी चल रही थी जिसको कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं उठाया। क्या बात कर रहे हो भाई जी, आज आप उन्हें पकड़े गए। अगर आप कोई राजनीति में आ गए तो आपका जो परिवार है वो क्या अपना लेजिटिमेट शर्म करेगा?
2: आप
0: कैसी बातें कर रहे हैं?
2: आप नौसिक,
0: आप एक ओबीसी पे ऐसा अपमानजनक बात मत करिए।
2: मैं रोड बता रहा हूँ, ये
0: आज कैसी, अरे कोई मास्टर प्लान से 100 किलोमीटर दूर कोई भूमि ले सकता है तो लेगा भाई? ये तो लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी है। उन्हें अपने पोजीशन का इस्तेमाल किया होता तो फिर उनके उनके परिवार के एसेट्स में वृद्धि होती जो नहीं हुई, उनके या उनके परिवार के किसी भी ऐसे में वृद्धि नहीं हुई है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, ना लैंड यूज चेंज हुआ है।
1: आप दोनों तरफ से आप लोग इंतजार करेंगे कि सामने वाला केस करे तब जाके होगा। लेकिन आशुतोष, ये बताइए कि इस पूरे विवाद में दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो महाकाल की जमीन की लूट कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पुराना बिजनेस है, पुराना कारोबार है और किसी तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ। एक पत्रकार के रूप में टाइमलाइन आप कैसे देख रहे हैं इसकी?
3: देखिये, इस पूरे मसले पे जमीन खरीदना कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट के धंधे में तो आप जमीन खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ है तो उसकी वजह से वहां डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हाईवेज हो रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं और उसकी वजह से वहां प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कोई भी आदमी उज्जैन का होगा इस बारे में आपको जानकारी दे देगा। इसको लेके एक मास्टर प्लान आता है और जो आरोप है वो बहुत सिंपल सा है कि किसी को इस मास्टर प्लान की पहले से

0: जानकारी थी। ऐसे में जिन जगहों से वो हाईवेज निकलने वाले हैं या रोड के डेवलपमेंट होने वाले हैं उसके आसपास की जमीन आपने खरीद ली, अगर आपको पहले से मालूम है कि ये जमीन आने वाले समय में यहाँ हाईवे बनने वाला है या यहाँ कुछ बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने वाला है, तो बाकी लोगों को ये जानकारी, जिसके पास ये जानकारी है वो उस जमीन को औने पौने दाम में खरीद लेगा, और उसके बाद जब वहां पे प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा तो वही जमीन जो मिट्टी के भाव है सोने के भाव बिकने लगेगी। ये है दरअसल पूरा का पूरा घोटाला जो आरोप लगा हुआ है। तो जमीन खरीदना कोई अपराध की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये जो गंभीर आरोप है कि मास्टर प्लान की जानकारी थी पहले से, जिस देश के अंदर नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, सीबीएसई में दिक्कत पैदा होती है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो रहा है, और पेपर लीक ना हो इसके लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां मास्टर प्लान लीक होना कौन सी बड़ी बात है। तो बस सीधा सा आरोप यह है कि मास्टर प्लान की जानकारी पहले से थी, जहां पर डेवलपमेंट होने वाला था उसके पड़ोस की जमीन आपने पहले से औने पौने दामों में खरीदी, यह जानते हुए कि जब यहां प्रोजेक्ट आएंगे ये जमीन करोड़ों में अरबों में बिकेगी। ये है असली मसला। और ये जो ये रिपोर्ट है ये बहुत मेहनत करके बनाई गई रिपोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस ने न केवल फ्रंट पेज पे आधा पेज छापा है बल्कि उसके बाद फुल पेज दिया है। इसका मतलब ये कि जो जानकार, और उसके बाद उन्होंने परिवार के एक एक लोगों की लिस्ट जान रखी है, इन इन लोगों ने लिए प्रॉपर्टी के दाम। तो जाहिर सी बात है इसमें मुख्यमंत्री जी को जवाब तो देना पड़ेगा, क्या उनको मास्टर प्लान या उनके परिवार वालों को मास्टर प्लान की जानकारी थी या जानकारी नहीं थी, ये स्पष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि आपने 153 करोड़ 133 करोड़ 133 एकड़ जमीन जो खरीदी गई है इन्हीं इलाकों में खरीदी गई, साथ ही साथ वहां भी खरीदी गई है जहां लैंड यूज चेंज हुआ है, और लैंड यूज जब आप चेंज करते हैं तो अगर पहले से अगर आपको जानकारी हो लैंड यूज अगर आप चेंज कर दें तो आपको उसका भी फायदा मिलता जमीन बेचने में।
1: ठीक है, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से भी उनकी राय ले लेते हैं इस पूरे मसले पर। हर्षवर्धन जी आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको।
2: ठीक है श्वेता जी, सबसे पहले तो ये कि किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगे तो उसकी स्पष्टता सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आनी चाहिए। राज्य का शासक जिसके हाथ में सारी नीतियां बनाना है उसमें यह कहने से काम नहीं चलेगा कि ये मुख्यमंत्री बनने के पहले मास्टर प्लान बन गया था। और ये ठीक बात कह रहे हैं प्रदीप भंडारी कि वो पहले से वहां उज्जैन नगर निगम में थे, वो तो पार्षद से उनका सफर शुरू हुआ है, मंत्री थे, सब कुछ थे, लेकिन ये भी सच है कि उज्जैन में रियल इस्टेट को लेकर बार बार मोहन यादव जी पर सवाल खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि जमीनों की खरीद बिक्री या सिंहस्थ कुंभ के बहाने या किसी भी बहाने से अगर ऐसा है तो उस पर मोहन यादव जी को स्पष्टता से आना चाहिए। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि क्या अब इस कारोबार से पूरी तरह से वो निकल गए हैं, और उसकी स्पष्टता देनी चाहिए। नंबर तीन सबसे जरूरी है, अभी हमने मध्य प्रदेश से कुछ समय पहले एक खबर पढ़ी थी कि ढेर सारे अधिकारियों ने मिलकर एक कॉकस बनाया, एक सड़क का लैंड यूज चेंज किया और 11 गुना जमीन के दाम बढ़ गए। अब अधिकारी लोगों ने सस्ते में जमीन ले ली क्योंकि वहां से हाईवे बना दिया, लैंड यूज चेंज हुआ। क्या ऐसा कोई काम हुआ है क्या जिसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं? अगर ये हुआ है तो ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर उनके परिवार के लोगों ने जो अपनी जमीन खरीदते रहे यूं ही खरीद ली है जमीन बिजनेस के तौर पर, तो हम उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और ये मुश्किल बड़ी हो गई क्योंकि देश में डीके शिवकुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं, देश में रेवंत रेड्डी जैसे मुख्यमंत्री हैं, देश में मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री हैं, जो सीधे सीधे बड़े कारोबारी हैं, बड़े कारोबार में शामिल हैं, और सचमुच कई बार राजनीति और कारोबार का ये जो घालमेल है ये कई तरह की चिंताएं पैदा कर रहा है। और एक शब्द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो शीर्ष पर बैठा है उसको तो साफ होकर पारदर्शिता से निकलना ही होगा।
1: ठीक है प्रदीप भंडारी जी, अब दो चीजें हैं इसमें, लैंड यूज चेंज नहीं हुआ है लेकिन मास्टर प्लान के तहत लैंड यूज चेंज होने की बात है उन्हीं क्षेत्रों की। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ही कहती है ना जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। अब अगर इस तरह का मामला आया है और जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी बोल रहे हैं कि अगर एक मुख्यमंत्री इन्वॉल्व है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो वहां पर क्या इस तरह की जांच की बात सुननी नहीं चाहिए आपको कि एक रिटायर्ड जज के साथ जांच हो जाए? पता तो चले, दूध का दूध पानी का पानी, सब सामने रख दो फैक्ट्स।
3: अगर कांग्रेस पार्टी को इन आरोपों में दम लगता है तो कांग्रेस जाए कोर्ट में। हम तो क्या कह रहे हैं भाई, वो एक किसान व्यक्ति है, वो यादव परिवार के हैं, ओबीसी परिवार के व्यक्ति है, हमेशा से कृषि भूमि की बात करें, ये बात कारोबार की है ही नहीं। ये बात ये है कि क्या मोहन यादव जी के परिवार, जो एक किसानों का परिवार है, जो ओबीसी परिवार है, इनकी पूरी की पूरी जो भूमि है वो पूरी एग्रीकल्चर लैंड है। मुख्यमंत्री वो बने, क्या उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल किया? नहीं किया। अब सुनिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए अभय दुबे नोएडा में रहते हैं, अब अभय दुबे को एक अखबार में अभय दुबे पढ़ते हैं कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा होता है, अब अभय दुबे के दोस्त लोग जो है वो प्रॉपर लेजिटिमेट बिजनेस नोएडा के अंदर करते हैं, तो ये क्या अगर अभय दुबे नोएडा के अंदर लोग अगर जमीन ले लेंगे नोएडा एयरपोर्ट के 100 किलोमीटर दूर तो क्या अभय दुबे करप्ट हो जाएंगे क्या? भाई ये तो सबको पता है कि अखबार के अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट आ रहा है तो आते ही है।
1: आज
3: तो
1: लॉजिकल जमीन दिलवा ही दीजिए आप।
3: नहीं मैं दिलवा ही ना, मैं इनको बता रहा हूं, अभी तक अभय दुबे खुद ही नहीं बता पा रहे कि क्या करप्शन हुआ है। मई 2023 में आया उज्जैन का मास्टर प्लान, दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने, उस मास्टर प्लान में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक इंच भी चेंज नहीं किया, एक इंच भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उस मास्टर प्लान में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद चेंज नहीं हुआ। अब अगर वो व्यक्ति का परिवार अगर वहीं पे रह रहा है, इतने सालों साल वहीं पे है, वहीं पे उनकी कृषि भूमि, तो ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी कृषि भूमि को बेच देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? अब असली भ्रष्टाचार तो मल्लिकार्जुन खड़गे का है। मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धार्थ प्यारा ट्रस्ट बनाते हैं, जिस सिद्धार्थ प्यारा ट्रस्ट के अंदर कर्नाटक की सरकार को 100 करोड़ की भूमि देती है, जिस 100 करोड़ की भूमि को उनके पूरे के पूरे प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कर्नाटक के अंदर कृषि भूमि और इंडस्ट्रियल लैंड को कब्जा कर लिया और प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट कर दिया। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने ऐसा किया, तो आज तो अभय दुबे को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक के अंदर लूट में, जमीन की लूट में, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उनका बेटा दोनों इन्वॉल्व है, कृषि भूमि को कन्वर्ट कर देते हैं एग्रीकल्चर लैंड के बाद में इंडस्ट्रियल लैंड को कन्वर्ट कर देते हैं, फेक बेनिफिशियरीज को कन्वर्ट कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर लूट। तो अभय दुबे से मैं पूछना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे के भ्रष्टाचार पे कब एक्शन लोगे अभय दुबे?
1: दो चीजें अभय दुबे जी, पहले मैं मध्य प्रदेश का ही मुद्दा समाप्त करके उसके बाद मैं उस पर सवाल पूछूंगी। आपके अपने दोस्त ने अखिलेश यादव की तरफ से भी कह दिया गया कि ओबीसी होने के नाते टारगेट किया जा रहा है अभी, क्योंकि प्रदीप भंडारी ने उस बात का जिक्र फिर किया है, इसीलिए मैं इस पर आपकी बात सुनना चाहती हूं कि वो कहते हैं मोहन यादव हैं इसीलिए उनके ऊपर उनको हटाने के बहाने उसके बाद जाके आगे बीजेपी बाकी कार्रवाई करेगी।
4: श्वेता जी, ये जमीन का मुद्दा है, जात का नहीं है। मैंने तो आज तक नहीं देखा ओबीसी समाज का कोई आदमी बड़े भीषणतम भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो। अखिलेश यादव जी ने निशाना साधा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, वो राजनीतिक वक्तव्य है, इससे ये वो हर्षवर्धन जी की बात से 100% सहमत हूं। एक तथ्य उनका गलत है कि बड़े कारोबारी नहीं रहे। मोहन यादव जी ने खुद आपके इंटरव्यू में आज तक पे कहा कि मैं होटल चलाता था संजार, बड़ी मेहनत करके गरीबी तो से हम ऊपर उठे हैं, आपके आपके शो पर मैंने उनका वक्तव्य सुना। तो चाहिए चाहिए चाहिए कि आए मुख्यमंत्री जी, आकर कहे कि साहब ये सच्चाई है इसकी, ये मास्टर प्लान में जो दैनिक भास्कर ने खबर
3: छापी
4: आपने 872 एकड़ में से 185 एकड़ अलग कराए, अरे हर बार कोर्ट चले जाओ, क्या बात करते हो आप? जनता की अदालत है कि नहीं है?
3: अबे भाई, जनता की अदालत में चले जाना, जनता जानती है आपके आरोपों में दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ केरला वर्सेस अदर्स 2025 के जजमेंट में भी कहा है,
4: हो गए आपको बोले साहब वाड्रा जी का,
3: अबे भाई साल हो गए स्पष्ट कराया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 32 तभी लागू होता है जब ऑफिस का इस्तेमाल करके कुछ कोई भूमि का इंक्रीमेंट होता है, या मुख्यमंत्री की कृषि भूमि में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ है भैया, क्यों एक ओबीसी समाज के पीछे पड़े हो?
1: एक बार वो कंप्लीट कर ले फिर हम मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी। जी
3: बोलिए बोलिए बोलिए, आज बड़े वीक है अभिजीत।
4: श्वेता जी, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, चप्पे चप्पे पर अभी 6 दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, बड़े बड़े मंत्रियों के जो कर्मचारी पिए हैं वो रिश्वत ऑफर करते हुए पकड़ा है, 6-6 मंत्रियों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले।
3: अब इधर
4: मैं आपको बता दूं, अभी एक और पकड़ाया, सुनो, ये डरते हो ना, ये डरते हो तो बीच में बोलने लगते हो भंडारी जी, शांत तो रहो, सुनो ना मेरा प्रामाणिक आरोप। अभी दो महीने पहले बुरहानपुर में एक आदमी पकड़ाया शराब के जख्मी चले गए,
3: बताइए
4: उसको लोगों ने पकड़ा नहीं जी, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भाई का आदमी हूं मैं, अब बताइए
3: आप बता नहीं पा रहे फैक्चुअली लॉजिकली कि एक्ट ऑफ करप्शन कैसे,
4: बताओ आप मुझे बताओ।
3: देखिए मैं तो हर सवाल का जवाब दे रहा हूं, अबे तुझे बता नहीं पा रहे कि एक्ट ऑफ करप्शन कैसे,
4: साधारण
3: माफी मांगनी चाहिए मुख्यमंत्री से, अरे तो मोहन यादव को ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए,
4: प्रदीप भंडारी
3: माफी मांगो, मैं बैठा हूं बताओ कैसे, ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और अभय दुबे जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आज अभय दुबे जी को माफी मांगनी चाहिए ओबीसी समाज से।
4: बताओ ना, अरे खूब मुख्यमंत्री कह रहे हैं माफी तुम मांगो प्रदेश की जनता से।
3: अरे वो क्यों माने, हमने तो सिर्फ और सिर्फ कृषि भूमि में कृषि किया है, किसानी करना गलत है।
4: तुम्हारे तुम्हारे नेताओं ने बनाई,
3: मैं कह रहा हूँ श्वेता जी, मैं अभी इनको आमंत्रित करता हूँ आपके शो पे, मैं खुद खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। और इनको आरोपों में दम है तो कोर्ट चले, ये देखिए अभी भी कोर्ट नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भाई इस रिपोर्ट को प्राइमा फेसी बना के कोर्ट जाओ ना, अगर लग रहा है दम है तो। सिर्फ माहौल बनाने से क्या होता है, एक ओबीसी समाज को अपमानित करने से क्या होता है भाई?
4: भंडारी जी, प्रदीप
3: अबे जी, आप इतने सीनियर लीडर हो, आप सब मध्य प्रदेश में इतनी इज्जत कांग्रेस में करते हैं, आप इतने वीक हो गए थे मुझे उम्मीद थी।
1: प्रदीप जी एक तो अगर वो कह रहे हैं कि जांच हो, सरकार आप हैं, जांच क्या नहीं हो सकती है?
3: अब अगर हम जांच करेंगे तो आप लोग बोलोगे कि हमने जांच के अंदर
1: जो रिटायर्ड जज से कह रहे हैं,
3: फिर वो बोलेंगे कि जिस रिटायर्ड जज से क्या वो आपसे मिला हुआ, इनको किसी में विश्वास ही नहीं होता भाई।
1: हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, बोलिए हर्षवर्धन जी।
3: इनको सब किसी में विश्वास नहीं, राहुल गांधी बोलेंगे कि जिस जज को अपॉइंट किया वो भी मिले हुए।
1: ठीक है हर्षवर्धन जी,
2: देखिए श्वेता जी, इस डिबेट में समझ में आ गया कि किसी भी ऐसे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको देखना पड़ेगा अगर है तो, लेकिन एक लाइन बोल गए भाई, अपना ही पक्ष कमजोर कर गए। वो कहे देखा ये लोग बहुत करते थे वाड्रा का, ये जमीन घोटाला वो जमीन घोटाला, कुछ नहीं निकला। सवाल ये है कि क्या किसी के ऊपर आरोप जब आप लगा रहे हैं तो उसके तथ्य प्रमाण के साथ और अदालत जाने में तो कोई बुराई नहीं है अगर आपको सरकार पर। ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप कहते हैं कि बार बार अदालत जाने को क्यों कहते हैं। अदालत इस देश में जब आप कहते हैं कहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो आप अदालत की तरफ जाते हैं। सरकार के ऊपर जो दबाव बनाना है विपक्ष के तौर पर आप बनाइए, लेकिन जैसे आपने कहा कि वाड्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सवाल यही है कि क्या मोहन यादव के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा भर रह जाएगा
4: अदालत में?
2: क्या ये क्या कह रहे हैं, क्या कहा आपने अभय जी?
4: अदालत में न्याय मिला मीनाक्षी नटराजन के,
2: ये बड़ा ये है। अगर आप ये
4: नहीं
2: सुनिए, आप न्यायालय पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको ये पूछना चाहिए ना कितने कांग्रेस ने कहा,
3: जाके
2: कांग्रेस ने सूचना किसने दी थी मीनाक्षी नटराजन
3: के लोगों ने समर्थन कर दिया तब उनको अन्याय नहीं दिखा।
2: मीनाक्षी नटराजन वाली सूचना किसने दी थी कि उनके खिलाफ मामला है? वो तो ऐसा कोई गंभीर मामला था नहीं, वो क्यों नहीं उसमें लिखा क्यों नहीं
4: है उस अरे मामला ही नहीं है ही नहीं मामला तो क्या लिखते। दूसरी बात ये मामले है ना 168 एकड़ जमीन के,
3: अरे मैं क्या कह रहा हूँ भैया, उसमें एक भी
4: सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज, मैं स्वागत कर रहा हूं आपकी बात का कि मुख्यमंत्री आए सामने और चिट्ठी
3: क्या कह रहे हैं। अभी दो मिनट पहले कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से मीनाक्षी नटराजन में न्याय नहीं मिला, अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड व्यक्ति को अपॉइंट कर दो। हाथ जोड़ रहा हूं अभय भाई, प्लीज एक ओबीसी समाज को मत अपमानित करो अपनी राजनीति के लिए। जीतू पटवारी और सबको बोलो मत अपमानित करो ओबीसी समाज को, हाथ जोड़ रहा हूं, मत इतनी नफरत करो।
4: भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए उच्च पद,
3: मत नफरत करो ओबीसी समाज को, पूरे के पूरे समाज को भ्रष्ट मत बताओ जस्ट बिकॉज कांग्रेस को वोट नहीं किया। मत करो अबे भाई
4: स्टिंग ऑपरेशन,
3: अबे भाई
4: अपमानित मत करो,
3: मत करो ऐसा। आपके भी अगर परिवार के या किसी भी दूसरे कांग्रेस के नेता के परिवार के लोग अगर कोई भी कारोबार या कृषि में है तो मैं उनको भ्रष्टाचारी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को और राहुल गांधी के परिवार को भ्रष्टाचारी कहूंगा। आप तो ईमानदार आदमी है, आप ईमानदार आदमी अबे दुबे जी।
4: एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ कि ना नाकों पर सैकड़ों करोड़ रुपए खाए जा रहे हैं, मन
3: कैसे बताइए।
1: अच्छा अभय जी, अभय जी आप
3: बता ही नहीं पा रहे कि मोहन यादव जी के परिवार ने कैसे भ्रष्टाचार किया। मैं बैठा हूं हर सवाल का जवाब।
1: अभय जी मुझे लगता है कि अब इसमें दो ही रास्ते हैं, एक या तो जांच जो कि आप लोग कह रहे हैं कि एक रिटायर्ड जज के साथ हो और उसको लेकर दोनों पार्टियों में भी आम राय बननी होगी, या फिर दूसरी चीज न्यायालय। खैर उस सब के बीच ये बताइए, क्योंकि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी आज प्रदीप भंडारी ने आकर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब कांग्रेस कह रही है आरोप पुराने हैं, लेकिन आरोप हैं वैसे ही। आप चाहेंगे क्या प्रदीप भंडारी उन आरोपों को एक बार रिपीट करें ताकि आप उन पर जवाब दे सकें? अभय जी,
4: श्वेता जी, मैं चाहता हूं कि जो इंडियन एक्सप्रेस में आरोप लगे हैं कि सिद्धि विनायक देवकॉन्स किसकी कंपनी है, मंगल मूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर किसकी कंपनी है, श्री सिद्धि विनायक देवकॉन्स किसकी कंपनी है, श्री अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेस किसकी कंपनी है, श्रेयान डेवलपर्स किसकी कंपनी है, जिस पर आरोप लगे इंडियन एक्सप्रेस ने गंभीर, इसका जवाब दे।
3: 168 एकड़ भूमि जो है एग्रीकल्चर लैंड से कमर्शियल लैंड नहीं कन्वर्ट करी।
4: तुमने तो ऐसे ही राम मंदिर के एसआईटी बना दी।
3: आप जवाब दीजिए ना,
4: राम मंदिर के ऐसे एसआईटी बना दी श्वेता जी। बीच में मत बोलिए,
3: पूछा मैंने तो मेरा भी हक है पूछने के लिए।
4: इनको रोकिए, नहीं पूरे शो में बीच में इंक्रोच किया।
3: अरे कुछ नहीं इंक्रोच किया
4: भाई, पर्दा नहीं डलेगा। राम मंदिर का चंदा खाया कि नहीं खाया इन्होंने?
3: अरे आप क्या बात करोगे, प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने
1: उसपे एसआईटी बैठाई, आपको एसआईटी पे क्या भरोसा है?
3: देखिए श्वेता जी, मैंने आपके हर सवाल का जवाब।
1: प्रदीप जी एक मिनट उनसे।
4: श्वेता जी सुनिए सुनिए ठीक है श्वेता जी, एक दस सेकंड। मैं बहुत गंभीर, आज देश को पता नहीं है वो बात बताने वाला हूँ। 1990 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ की हेरा फेरी का विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ नोटिस दिया। इन्होंने क्या किया, उस अधिकारी को रातों रात ट्रांसफर करा दिया। झूठ नहीं, ये अखबार में प्रामाणिक रूप से खबर छपी कि उसको विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी को तमिलनाडु ट्रांसफर कर दिया और पार्लियामेंट में जवाब दिया 825% दाम बढ़ाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर निर्माण की जमीन खरीदी। का घुसुंडी की मूर्ति हमारी बेच दी,
3: जो भरत जी ने मंदिर के दर्शन करने चले जाओ
4: रामराज, वो खड़ाऊ बेच खाए, वो स्वर्ण जरित जड़ित शिलाएं बेच खाई इन लोगों ने।
1: सिद्धार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम जवाब नहीं दे रहे हैं, वहां पर आप अयोध्या तक अभी मामला ले जा रहे हैं।
3: एक मिनट दीजिए मौका, ये एक सेकंड, मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया। मैं अब इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें श्वेता जी,
4: ये बोल सकता हूँ डूबे हुए हैं भगवान शंकर भी दंडित।
3: अरे भाई आप सुनो मेरी बात,
4: पुरुषोत्तम राम
3: श्वेता जी
4: करेंगे।
3: प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का 13 सेक्शन
4: की राजनीति में अवस्था क्या कहता है,
3: तो आओ वहां भी क्या कहता है आप चेक कर लीजिए।
4: कोई
3: भी व्यक्ति, अबे जी मैंने आपको सुना, कहा है इतना परेशान हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में रहते हुए कोई भी लेजिटिमेट वेट इंक्रीज नहीं कर सकता। अब मुझे बताइए, सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट में आप चेक, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, प्रियांक खड़गे कर्नाटका मिनिस्टर, दोनों इस ट्रस्ट के अंदर मेंबर है। ये ट्रस्ट को कर्नाटका के अंदर 100 करोड़ का लैंड दिया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट ऑटोमोबाइल और डिफेंस में करने के लिए। इस ट्रस्ट ने कभी जिंदगी में रिसर्च और डेवलपमेंट ऑटोमोबाइल में नहीं किया। कैसे दे दिया आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को, मतलब जो पब्लिक लैंड था इंडस्ट्रियल लैंड उसको आपने मल्लिकार्जुन खड़गे कन्वर्ट कर दिया। फिर गुलबर्गा के अंदर इनको 5-7 acres लैंड 19 acres लैंड दिया जाता है पाली लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, और ये पूरा का पूरा लैंड पब्लिक लैंड।
1: जवाब देने को तैयार नहीं हो रहा है ना अपने आरोपों पर।
3: पब्लिक लैंड को कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट लैंड में खड़गे जी के,
1: ज्ञान तो हर तरफ से बांटा जा रहा है। अभी
3: जवाब देना, मैंने तो हर सवाल का जवाब दिया। जवाब दे कि कृषि भूमि को चोरी किया मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने, इंडस्ट्रियल लैंड को चोरी किया मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने।
1: आशुतोष जी अभी ये अब इस मामले में
3: कार्रवाई हो,
1: इस मामले में देखिए आरोप निकलेंगे तो दूर तलक जाएंगे, उसका ही एक नमूना हम यहाँ पर देखें।
4: छोटी सी बात
1: जी, ठीक है,
4: एक छोटी सी
1: हाँ करिए,
4: एक छोटी सी बात बस श्वेता जी, एक छोटी सी। अभी भंडारी जी ने कहा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 10 दिन पहले जो
3: एजेंसी बोल रहे, मैंने तो मोहन यादव
4: उसके अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन हो गया, उसका स्टिंग ऑपरेश वो कैमरे पे पकड़ा गया रिश्वत मांगते हुए, तो कौन कार्रवाई करेगा बताओ? मंत्रियों के पीए रिश्वत मांग रहे हैं, लोकायुक्त के अधिकारी
3: कहीं किसी कोर्ट के जज द्वारा बताइए चलिए
4: क्या कार्रवाई की।
1: पर अभय जी, अभय जी तो इसका उपाय तो सीधा यही होगा ना कि न्यायालय जाया जाए।
4: होगा क्या इस प्रदेश,
1: आप कह रहे हैं कि न्यायालय क्यों जाए?
3: ये सुनिए मेरे बात, देखिए मैं इनके जैसे आरोप नहीं लगाता हूँ। न्यायालय के अंदर ये मामला है खड़गे जी के भ्रष्टाचार का, 2025 के MPMLA स्पेशल एक्ट कोर्ट के अंदर मामला है खड़गे जी के भ्रष्टाचार का। तो अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि मॉरल ग्राउंड पे खड़गे जी क्यों नहीं जवाब दे रहे? ये तो मामला न्यायालय में पेंडिंग है और न्यायालय सुनने वाला है इसको।
4: थे ना आपकी सरकार,
3: अब बताइए क्यों नहीं कर्नाटक में बोल पा रहे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कृषि भूमि को अपना प्राइवेट लैंड में कैसे कन्वर्ट किया? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये गरीब दलित किसानों के साथ अपमान नहीं है? क्या अन्याय नहीं है? कुछ नहीं बोल पा रहे ये। मध्य प्रदेश में मैंने हर सवाल का जवाब दिया क्योंकि हमारा जमीर क्लियर है, हम ऑनेस्ट लोग हैं। पर ये नहीं बोल पा रहे कि खड़गे जी और उनका बेटा प्रियांक खड़गे दोनों ने अपने ऑफिस का इस्तेमाल करके कृषि भूमि को अपने प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट किया, भ्रष्टाचार किया। इंडस्ट्रियल लैंड को अपने प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट किया, भ्रष्टाचार किया।
1: प्रदीप जी एक मिनट, अब
4: हमारा
1: हम आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले आशुतोष जी से हम एक टिप्पणी ले रहे हैं।
4: इसको टेलीविजन पर घूस लेते हुए पकड़ा है तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, टेलीविजन पर
3: पकड़ा, कहीं और चले गए।
4: बंगाल के चीफ मिनिस्टर को खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे कि
3: ये मुद्दे पे बात ही नहीं कर पा रहे
4: लेता है। इस मोहन यादव जी वाले मामले को
1: सहूलियत के हिसाब से इतिहास
3: का भ्रष्टाचार,
1: और सहूलियत ना हो तो पीछे क्यों जा रहे हो वाली टिप्पणियां अभी छोड़ते हैं। आशुतोष जी, जी अपनी बात रखिए।
0: जी देखिए, ये जो पूरा मामला है, सीधी सी बात है, एक चीज का जवाब इसमें नहीं मिल रहा कहीं भी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिसमें से 111 एकड़ जो जमीन है ये उस सड़क के ठीक बगल में खरीदी गई जिसको डेवलप किया जाना है। तो क्या ये
3: महाजनी मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भूमि नहीं खरीदी गई?
0: मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज। मैंने बीच में थोड़ा प्लीज मुझे बोलने
3: क्या भाई, उनके डायरेक्ट
0: बीच में आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए,
3: आप थोड़ा खड़गे जी पे भी बोल देना
0: प्लीज, आप चुप रहिए अभी
3: बोलिए बोलिए।
0: तो ये जो 111 एकड़ जमीन जो सड़क के ठीक बगल में खरीदी गई जिसको डेवलप करना, उसका जवाब नहीं है। दूसरा गंगेडी का इलाका है जहां 37 एकड़ जमीन खरीदी गई, उसको भी डेवलप करना है, क्या ये महज इत्तफाक है? इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है, 30 एकड़ जमीन जो है वो पहले एग्रीकल्चरल लैंड थी, उसका लैंड यूज चेंज होना था और वो जमीन पहले आपने खरीद ली, यानी जो आपने पहले एग्रीकल्चरल लैंड के तौर पर खरीदा उसके बाद उसका लैंड यूज चेंज हुआ
3: और
0: करोड़ों के दाम हो गए। तो सवाल इस बात को लेकर यह है कि निश्चित तौर पर जो इसमें आरोप है वो गंभीर है कि मास्टर प्लान लीक किया गया
3: या मास्टर के आरोपों पे जांच मांग रहे हैं
0: और इसके पीछे एक बड़ा लैंड माफिया हो सकता है।
3: खड़गे जी आशुतोष जी के प्रमाइस को मैं आगे ले जाऊं तो फिर खड़गे जी पे भी लागू होना चाहिए।
1: देखिए दो चीजें हैं यहां पर, अव्वल के एक आरोप वर्सेस दूसरा आरोप, दूसरी चीज क्या अगर गलत लगता है तो न्यायालय जा सकते हैं, साथ ही अगर क्या बीजेपी को गलत लगता है कि आरोप गलत लगाए गए हैं तो वो न्यायालय जा सकते हैं। अभी ये मामला सामने आया है, खत्म नहीं हुआ है, इसकी बारीकियां अभी और सामने आती रहेंगी। अभी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTA को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहां खबर वहां खबरदार।
14: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
16: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
17: दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हो रही है। गली के दो छोर हैं, इधर वाले उधर वाले का सिर फोड़ देने के लिए पत्थर चला रहे हैं। उधर वाले छोर पर खड़े लोग इधर वालों का माथा फोड़ देने का इरादा रखते हैं। दोनों ओर से लाठी डंडे लिए बच्चे महिलाएं एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हैं। तस्वीरें बिहार के बेगूसराय के पखौल का है। बताया जा रहा है कि दो परिवारों के बीच पानी की छींटे पड़ने को लेकर मामूली विवाद हुआ था, मगर दो परिवारों का झगड़ा दो समुदायों का विवाद हो गया और उसके बाद ये खून खराबी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस पूरे विवाद में 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।
18: नॉर्मल से विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था। विवाद पहले पानी, बच्चे के पानी गिरने को लेकर के हुआ था, जो कि दो परिवार से भिड़ के पूरे मोहल्ले के बीच में आ गया, जिसमें कि दोनों तरफ से पत्थर ईंट चली थी और 5 लोग इंजर्ड हुए जिनकी हालत सेफ है।
17: तस्वीरें शनिवार की बताई जा रही है। तस्वीरें सामने आई तो कार्रवाई शुरू हुई। 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब कुछ अस्पताल में है, कुछ जेल में, वो भी मामूली से विवाद के चलते। सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक।
19: आजकल चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हर जगह पेमेंट करने के लिए हर किसी का सबसे बड़ा सहारा UPI होता है। इसी ट्रेंड ने डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई में UPI ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना 24% का बड़ा उछाल आया है। इस एक महीने के दौरान लोगों ने रिकॉर्ड 2320 करोड़ बार UPI से पेमेंट किया और बीते महीने कुल लेन देन की वैल्यू करीब 30 लाख करोड़ रुपए रही। लोग हर दिन कितना ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, इसके चौंकाने वाले आंकड़ों के मुताबिक मई में हर दिन औसतन करीब 74.8 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और रोजाना के आधार पर लगभग 96,465 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया, जो सालाना आधार पर वैल्यू में 19% की बढ़ोतरी है। डिजिटल लेन देन की ये रफ्तार केवल एक महीने की कहानी नहीं है। इससे पिछले महीने यानी अप्रैल में भी भारतीय जनता ने जमकर ऑनलाइन पेमेंट किया था। डेटा के मुताबिक अप्रैल में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस पिछले साल के मुकाबले 25% बढ़कर 22.35 अरब पर पहुंच गए थे। अप्रैल में कुल 29.03 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन रिकॉर्ड किया गया था। दूसरे डिजिटल मोड्स की बात करें तो मई में IMPS से 358 मिलियन और AEPS के जरिए 88 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, यानी कैश की जगह डिजिटल पेमेंट पर निर्भरता बढ़ रही है और दुनिया को भी इस तकनीक की राह दिखाई जा रही है। ये देसी टेक्नोलॉजी आज 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है। भारत की ये पेमेंट सर्विस दुनिया के नक्शे पर अपना लोहा मनवा रही है। भारत का UPI प्लेटफॉर्म UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और कतर समेत 8 से ज्यादा देशों में लाइव हो चुका है। इन देशों में जाने वाले भारतीय या वहाँ के लोग सीधे इस सिस्टम का फायदा उठा पा रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर लीडर बनने की वजह है कि बीते 10 साल में इस प्लेटफॉर्म ने कामयाबी की ऐसी छलांग लगाई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले एक दशक के दौरान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 12,000 गुना की जादुई बढ़त दर्ज हुई है। इस जोरदार ग्रोथ की वजह से मोबाइल आधारित ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बैंकों के बीच तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का सबसे भरोसेमंद जरिया बन चुका है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत का ये स्वदेशी डिजिटल सिस्टम देश की सीमाओं को लांघकर ग्लोबल रिजर्व और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना चुका है। आदित्य के राणा आज तक।
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
20: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: फिर शासन जगा है, प्रशासन जगा है, चीख गूंजी है, आंख सूजी है, संवेदना के बोल फूटे हैं।
3: मेरा बेटा भी जिंदा होता, मेरा बेटा।
2: कार्रवाई होने के ढोल बजे हैं। दिल चीरने वाला हादसा हुआ है। हाँ, लखनऊ की फिजा में आज आंसुओं पर हलचल दिखी है, लेकिन चिंगारी की तरह सुलगता मुद्दा तो वही है कि काश कानून अपना काम करता होता, सिस्टम जागरूक हुआ होता, भ्रष्टाचार और लापरवाही पर चाबुक चली होती, तो कल ये लपटे नहीं होती, वो 15 जाने सलामत रही होती। लखनऊ अग्निकांड की परतें जब एक एक कर खुल रही हैं, तो साफ नजर आता है कि ये हादसा नहीं, हत्या है।
4: एक बॉक्स नुमा ये बिल्डिंग है, इस बॉक्स नुमा बिल्डिंग के अंदर ही लोग सिर्फ इसी से, जो बच्चे थे, जो लोग थे, वो इसी छोटे से रास्ते से, और कोई रास्ता था ही नहीं, ये इस रास्ते से अंदर जाना, बाहर जाना। और जब आग लग गई तो उसकी वजह से धुएं ने और आग ने अफरा तफरी मच गई और लोग फंस गए। मतलब 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग, उसके बाद ये बेसमेंट, टोटली अगर कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा मानकों को दरकिनार करके ये बनाया गया।
2: लखनऊ में 15 हत्याओं का सबब बने इस अग्निकांड की जांच यूपी सरकार की SIT कर रही है। SIT को 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है। अग्निकांड में दर्ज FIR में 4 नामजद आरोपी हैं। बिल्डिंग के को-ओनर वीरेंद्र शुक्ला समेत तुषांक कृष्ण जायसवाल, रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। जिस इमारत में आग लगी उसका नक्शा रिहायशी मानकों के मुताबिक पास हुआ, फिर कमर्शियल गतिविधियां शुरू हुई। जिस इमारत में हादसा हुआ वहां 20 किलोवाट का कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन स्वीकृत था। जांच में सामने आया है कि वास्तविक बिजली लोड बढ़कर 34.10 किलोवाट तक पहुंच गया था। अप्रैल महीने में इमारत का लोड 24.30 KVA दर्ज किया गया था, जो जून में और बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक लोड होने से तारों और ट्रांसफार्मर पर भारी दबाव था। भीषण गर्मी और ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की आशंका कई गुना बढ़ गई। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। लखनऊ के अलीगंज की यह इमारत 2016 में ध्वस्तीकरण की जद में आई थी। मई 2016 में गैरकानूनी निर्माण के चलते बिल्डिंग को गिराने का आदेश पास हुआ, लेकिन जुलाई 2016 में यह आदेश निरस्त हो गया। सोचिए किस किस स्तर पर नियमों को ताक पर रखा गया होगा। हादसे के बाद बगल की इमारत में छेद कर कुछ लोगों की बचाने की कोशिश हुई। जो मौतें हुई हैं उसकी वजह जलना नहीं बल्कि दम घुटना है। हर हादसा अपने पीछे चुभने वाली कहानियां छोड़ जाता है। इस आग में जल गए नीलेश और अनामिका एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब सजा बैठे थे। अब्दुल रहमान अपने परिवार के इकलौता सहारा थे। दिव्यांग पिता और बहन की जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से उनके कंधों पर थी। सीतापुर का आदित्य श्रीवास्तव अपने पीछे रोते बिलखते माँ बाप छोड़ गया है। सिर्फ 15 मौतें नहीं हुई हैं, 15 परिवारों पर दुखों का आसमान गिरा है।
5: कि हम लोग चाहते हैं इस पर जांच हो और ज्यादा से ज्यादा परिवार को मुआवजा दिया जाए, ताकि उसकी माँ की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो। परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इकलौता बच्चा था।
2: लखनऊ हादसे के बाद क्या यूपी, क्या देश के अन्य शहर इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं? कानपुर और इंदौर में कुछ कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की गई है, लेकिन सवाल वही है कि क्या व्यवस्था बदलेगी? आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
1: हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए आज तक पर खबरें नेहा बाथम के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रीनीट के सफल आयोजन पर पीएम मोदी ने की मंत्रियों की तारीफ, कहा दिखा संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण, हर परीक्षा में अपनाएं ऐसा ही मॉडल। कोलकाता गोदाम हादसे में 3 की मौत, 21 का रेस्क्यू, मलबे में अब भी कई जिंदगियां दबी, सीएम ने घटनास्थल का लिया जायजा, मोर्चे पर सेना। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आग से नहीं बल्कि जहरीले धुएं से हुए 15 की मौत, एनडीए जांच में 18 अधिकारी दोषी। मुंबई लोकल में हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार, ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर हुई बहस में चाकू गोदकर किया था मर्डर। एयर इंडिया का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसा, दिल्ली से अमृतसर के लिए भरी थी उड़ान, 22 जून को तकनीकी खराबी से भटका रास्ता पाकिस्तान लौटा। नमस्कार, शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दक्षिण कोलकाता के तारातला ट्रांसपोर्ट डिपो के पास आज दोपहर में निर्माणाधीन गोदाम पर शेड अचानक गिर गया, घटना में अब तक 4 की मौत बताई जा रही है, 50 से 55 लोगों के दबे होने की आशंका है, मलबे में दबे 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, सभी घायलों के इलाज के लिए SSKM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त गोदाम में कॉन्क्रीट की ढलाई का काम चल रहा था, पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू में कोलकाता पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और सेना भी जुटी हुई है। मलबे और लोहे की रॉड को हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई है, गैस कटर से लोहे की छड़ों को काटा जा रहा है, मलबे में दबे मजदूरों और कर्मचारियों की चीखें भी सुनाई दे रही है। अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, जिस तरह का लोहे की छत और तमाम अन्य मलबा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है कि वक्त बहुत कीमती है और अगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोगों की बचने की संभावना कम होती जाएगी, दम घुट जाएगा।
1: जी देखिए, मैं फिलहाल उसी जगह पर हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या सिचुएशन है। इस वक्त ये जो गेट आप देख रही हैं, इसको गेट को बंद कर दिया गया है, इसके भीतर ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर इंडियन आर्मी, NDRF, डिजास्टर मैनेजमेंट, लोकल पुलिस, सिविल डिफेंस के सभी अधिकारी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और जो शुभेंदु अधिकारी, जो मुख्यमंत्री जो थोड़ी देर पहले भीतर गए थे, उन्होंने आके जो बताया कि अभी भी 12-13 लोग भीतर फंसे हुए हैं और इनमें से सभी जीवित हैं, उनका कहना है। और एक चैनल बनाया गया है, इस चैनल के जरिए पानी और भोजन उनको दिया जा रहा है, उनसे बातचीत भी हो रही है। और अब दूसरी कोशिश हो रही है, जो लोहे की बड़ी बड़ी बीमें गिरी हैं, जो ढलाई की छत गिरी है, उसको काटकर किसी तरह उन तक पहुंचा जाए और उनको वहां से निकाला जाए। तो ये वक्त काफी कीमती है, हालांकि एक चैनल जरूर बनाया गया है जिससे उनको खाना और पानी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना और वक्त लग सकता है, क्योंकि ये जो छत है बहुत भारी छत थी, बड़ी छत थी, टीन के ऊपर ढलाई किया हुआ था, वो पूरी नीचे गिरी है, तो और लोहे की बड़ी बड़ी बीमें हैं, तो उनको काटकर अब देखिए हाइड्रोलिक क्रेन से लेकर बड़े बड़े गैस कटर्स तक लाए गए हैं, जिसके जरिए जो फंसे हुए मजदूर हैं उन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है।
0: कुल अब तक 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जानी चाहिए। इस बीच वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, क्या कुछ कहा है शुभेंदु अधिकारी ने, सुनिए।
2: ऑल मिनिस्टर्स आर लुकिंग, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन आर लुकिंग, NDRF डूइंग वेरी सैटिस्फैक्टरी मैनर, এখনো 12-18 জন ভিতরে আছে,
0: और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां से उठी सियासी चिंगारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश में उसी कांग्रेस पार्टी के साथ ही अखिलेश हैं, जो कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। वहीं बीजेपी अब कांग्रेस नेताओं की जमीन का हिसाब मांग रही है।
3: कांग्रेस ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोला तो अखिलेश यादव बीजेपी के मुख्यमंत्री के समर्थन में आ गए।
4: कुर्सी आई साथ में जमीनें लाई, पहले सड़क का नक्शा, फिर परिवार की खरीदारी, धर्मनगरी को मुख्यमंत्री ने जमीन के धंधे का, गोरख धंधे का हिस्सा बना दिया।
5: ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है, अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे।
3: अब कांग्रेस को भी समझ नहीं आ रहा कि अखिलेश मोहन यादव पर इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं।
5: मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है।
6: जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझ ले तो फिर मंत्री तो अली बाबा 40 चोर की तरह काम करेंगे।
3: उधर असदुद्दीन ओवैसी ने इस समर्थन को जाति से जोड़ दिया। मोहन जी के सम्मान में अखिलेश भैया मैदान में, एक भाई बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उन पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भेजा जाता है। अखिलेश उनके लिए कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन बीजेपी के एक मुख्यमंत्री के लिए देखिए कितनी हमदर्दी है। सपा का समाजवाद असल में यादव समाजवाद है। इस मुद्दे पर अखिलेश की अपनी ही एक थ्योरी है।
5: मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं।
3: उधर कांग्रेस मोहन यादव पर हमलावर है तो बीजेपी खड़गे को लेकर रॉबर्ट वाड्रा की लिस्ट लेकर पहुंची है।
7: याद करिए राहुल गांधी और पूरा गांधी वाड्रा परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी है, इन पर भी तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके के लैंड लूट के आरोप है और केसेस चल रहे हैं। सो जो मॉडस ऑपरांडी गांधी वाड्रा परिवार ने लैंड लूट करने के लिए किया, ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से 5 एकड़ भूमि, जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा।
3: जमीन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब चेहरों को लेकर आर पार की जंग है, लेकिन अखिलेश यादव की भूमिका ने इस सियासत को नया मोड़ दे दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि अपने कथित विवादित वीडियो पर भगवंत मान ने एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि विवादित वीडियो भगवंत मान का नहीं है बल्कि डीप फेक है। अब इस रिपोर्ट को ही फर्जी बताया जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है।
8: जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट को अकाल तख्त के सामने पेश करके भगवंत मान ने विवादित वीडियो को फर्जी बताया था, अब उसी रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
9: कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
8: भगवंत मान के खिलाफ अब बीजेपी और कांग्रेस के सुर एक हैं।
10: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
11: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इस्तीफे की मांग कर दे।
12: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
8: इस सियासत के बीच एक बार फिर भगवंत मान की सफाई सामने आई है।
13: अकाली बीजेपी कांग्रेस तीन इकट्ठे हो गए पंजाब च, कहते यार हम इदा करते हैं, ये वीडियो वाला मामला तो अपन उल्टा पैंदा जांदा है, ये तो आप ही नकली वीडियो जारी कर बैठे, लोग तो अपन लंबे देने लग गए, लोग तो अपने ते कमेंट कर लग गए।
8: अकाल तख्त पहले ही मामले को लेकर सख्त है, वहीं पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भगवंत मान को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा। चंडीगढ़ से असीम बस्ती के साथ आज तक ब्यूरो।
0: उधर अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन रिपोर्ट का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। अखिलेश यादव एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं।
3: हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल सीएम योगी की टेबल पर भिजवा दी, लेकिन इस जांच में था क्या किसी को पता नहीं।
14: जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हम सबमिट कर चुके हैं, फाइंडिंग्स के बारे में हमारा कहना उचित नहीं है।
15: एसआईटी का मतलब क्या है? शेयर इन थेफ्ट है क्या?
3: चढ़ावे के चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
16: इस एसआईटी के पास कोई पावर नहीं है, ये ना किसी को समन कर सकती, ना किसी को गिरफ्तार कर सकती, ना किसी पे रेड मार सकती, ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती। केवल लीपापोती करने के लिए मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए SIT बनाई गई है।
15: आप सोचिए क्या हुआ है देश और दुनिया के सामने। गरीब एक झोपड़ी में रहने वाला भी जान गया होगा कि क्या कर दिया इन्होंने।
17: आओ चौकीदार हो, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, जरा देख लो।
3: कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा कर रहा है, तो किसी को दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा हो रही है।
18: हमारी तरफ से करीब 15 देशों से 200 लोग, पौने 200 लोगों ने, जिन्होंने किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने पांच, किसी ने 10 दी, तो उस बारे में अब हम सब जानना चाहते हैं कि वो हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। हमने तो चंपत राय जी को ही दिया है, हम तो उनसे दिल्ली में मिले, फिर उनसे अयोध्या में मिले, फिर उसी अयोध्या के परिसर में ही ये 200 किलो चांदी दी गई है। तो हम तो सिर्फ चंपत राय जी को जानते हैं, उनकी टीम कौन है क्या है वो हमें पता नहीं है। वो चंपत राय जी की ड्यूटी है कि वो हमें कम से कम उनसे पता करके हमें रसीद दिलवा दें।
3: सवाल राम भक्तों की आस्था का है, जहां कौन कौन चेहरे बेनकाब होंगे और गुनहगारों पर क्या और कब एक्शन लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प है। आज तक ब्यूरो।
0: बात बिहार की, जहां के भोजपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस और सम्राट सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब 7 दिन बाद पुलिस पर एक्शन हुआ, 5 पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज हुई, बावजूद इसके आक्रोश नहीं थम रहा है।
3: भरत तिवारी का ये एनकाउंटर बिहार सरकार के गले की हड्डी बन गया है। चारों ओर बिहार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। अलग अलग शहरों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की आवाज उठ रही है। सरकार पर लगातार इतना दबाव बना कि एनकाउंटर के 7 दिन बाद आखिरकार एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हो गया। भरत तिवारी की मां की अर्जी पर जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकर समेत 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं है।
19: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
3: भरत तिवारी के पक्ष में इंसाफ की मांग करने के लिए आसपास के गांवों के लोगों ने भरत के गांव में एक महापंचायत की। इस महापंचायत में जनस्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे। यहां मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
20: न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने पटना में बैठकर उस बच्चे को मारने का आदेश दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
21: सीधे उसको पकड़ लेना है ADG को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
3: भरत तिवारी के एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच सम्राट सरकार के मंत्री का अजीबो गरीब बयान सामने आया।
22: सम्राट एक जगह घटना होगी वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहाँ जहाँ घटना होगा वहाँ भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
3: भरत तिवारी का एनकाउंटर अब बिहार की सियासत का सबसे संगीन विषय है, जिसने सम्राट सरकार को मुश्किल में डाल रखा है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बात दिल्ली में हुए दहला देने वाले गुनाह की। 11 साल की मासूम बच्ची जिसका अपहरण करके पहले उसके साथ रेप किया गया, फिर उसे जान से मार दिया गया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है।
23: मर गया। काश कि ये दरिंदा मर ही गया होता, क्योंकि इस हैवान ने वो कुकर्म किया जिसकी सजा मौत ही है। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त में चिल्ला रहे शैतान का नाम है बबलू। ये पेशे से ड्राइवर है। सोमवार की रात महरौली इलाके के फुटपाथ पर एक 11 साल की बच्ची अपने माता पिता, दो बहनों और एक भाई के साथ सो रही थी। वहीं पर यह आदमी राइड लेने के लिए खड़ा था। बच्ची को देखकर इसके भीतर का हैवान जागा। इसने बच्ची को जबरन उठाकर गाड़ी में डाला। जब तक पिता रोकने की कोशिश करते, तब तक ये लड़की को लेकर भाग गया। महरौली से करीब 20 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के जंगल में ले जाकर इसने बच्ची का रेप किया और फिर उसे जान से मार दिया। बच्ची के पिता ने पुलिस में शिकायत कराई और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसे 4 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस जब इसे लेकर क्राइम सीन पर जा रही थी, तो इसने भागने की कोशिश की और पुलिस ने इसकी टांग पर गोली मार दी। अब ये अस्पताल में है, मगर बच्ची के पिता इसकी फांसी चाहते हैं।
24: मानता हूँ कि एनकाउंटर हुई है, हमने
1: साहब के मैं फांसी मांगा था, उन्होंने एनकाउंटर करी है।
23: आरोपी आदतन अपराधी है। बिहार में इसके खिलाफ पहले से 5 केस दर्ज हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं बचा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और बात मुंबई की, जहां पर एक सिरफिरे ने लोकल ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी में मामूली विवाद के चलते एक नौजवान की हत्या कर दी। आरोपी ने चाकूओं से हमला किया। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
2: मुंबई लोकल की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। काली शर्ट पहना हुआ एक आदमी जिसके हाथ में चाकू है, इसी चाकू से इसने मयंक लोहार नाम के इस युवक को जान से मार दिया है। मयंक लोहार पर चाकू चलाने

0: अली खामनेई के स्टेट फ्यूनरल यानी राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया गया है। 86 वर्षीय आयतुल्ला अली खामनेई इसी साल 28 फरवरी को एक अमेरिका इजराइल संयुक्त एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। अब अगले महीने यानी 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 तक ईरान में उनका 6 दिन का भव्य अंतिम संस्कार कार्यक्रम होने जा रहा है। यह आमंत्रण भारत और ईरान के मजबूत रणनीतिक संबंधों को दिखाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहले इस कार्यक्रम में अपना डेलीगेशन भेजने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि नई दिल्ली यानी भारत सरकार की तरफ से पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या जवाब नहीं आया है। मुहर्रम के महीने में होने वाले इस ऐतिहासिक जनाजे पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अब आज शेयर बाजार की आज बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 791 अंक उछलकर 86,991 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 198 अंकों की तेजी रही और ये 24,021 के स्तर पर बंद हो गया। शेयर बाजार में मजबूती के बीच रुपए में भी आज तेजी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 94.65 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि सराफा बाजार में आज भी गिरावट का रुख जारी रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,105 रुपए टूटकर 1,43,890 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी प्रति किलो 794 रुपए की गिरावट के साथ 2,26,689 रुपए पर पहुंच गई। और अब बात मौसम की करेंगे। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में जबरदस्त भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई में पहले ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है।
1: कुदरत का क्रोध जब बरपता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। इस जलधारा में सब कुछ बहा ले जाने की बेताबी दिखती है। पानी इतने वेग में है कि जो भी सामने आया वो इसी धारा में समा गया। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के केपी पैन्योर जिले के यजाली सर्कल की हैं। यहाँ पर नीपको प्रोजेक्ट के पास पूसा इलाके में भयानक बरसात हुई। इतनी बरसात कि 15 से ज्यादा रिहायशी क्वार्टर बह गए। देखिए इस तबाही के मंजर को। अब दूसरी खौफनाक तस्वीरें देखिए। पूर्वी सिक्किम के रंगफू रोराथन रोड पर चट्टाने कुछ यूं चटकी कि पहाड़ चकनाचूर होकर यूं गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पहाड़ से मलबा और बड़ी बड़ी चट्टाने अचानक भरभरा कर रोड पर आ गिरी। मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बचे। अब जल जमाव वाली मुंबई की तस्वीरें देख लीजिए। मानसून की पहली ही बारिश में पुरानी कहानी सामने आ रही है। सड़कों पर सैलाब उतर आया है, ट्रैक पर पानी जमा हो गया है, अंडरपास पानी पानी हो गया। पवई में जलभराव के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। जलभराव का निरीक्षण करने मुंबई की मेयर रितु तावड़े निकली थी, मगर उनके सामने ही बीएमसी का एक कर्मचारी नाले में गिर गया।
2: आप देख सकते हैं किस तरीके से इसी पानी के बीच से गाड़ियों को जाना पड़ रहा है। स्कूलों के लिए अभी तक कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई है, जिसकी वजह से जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं इसी बारिश में। फिलहाल यहाँ पर बीएनसी पुलिस प्रशासन के लोग तैनात हैं, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर जाने से बच रहे हैं, क्योंकि हर साल का तकरीबन यही नज़ारा होता है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और बरसात तेज़ होगी, वैसे वैसे मुंबई करों की दिक्कतें जो है निश्चित तौर पर बढ़ती जाएंगी। कैमरामैन आशीष धामापुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: वक्त ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
15: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
16: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
15: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू? विमल, बोलो जुबां केसरी।
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: जो निवेश का खेल है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। जो जितना भी निवेश है उसका 90% या 100% भारत में नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भारत 3% है। गोल्ड बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है, आप डॉलर टर्म्स में देखें।
4: स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लक बहुत इंपॉर्टेंट है?
3: आप गलत टाइम पे बाजार से बाहर जाते हो और गलत टाइम पे अंदर आते हो। अब आपको खेलना कैसे है, नॉट टू लूज, कि अपने कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लेना, उसको तरफ जाइए ही मत, ये पूरा स्कैम है। और मैं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती हूँ।
5: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
6: लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ते दिखाए तो एलडीए अधिकारी हरकत में आ गए। मंगलवार को एलडीए की टीम ने उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया जिसमें 15 बच्चे जिंदा जल गए। योगी सरकार ने एलडीए से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एलडीए की नाक के नीचे रिहायशी नक्शे पर बनी इस इमारत में कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही थी। अब इस इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है, 15 दिन में जवाब नहीं मिला तो इमारत को ढहा दिया जाएगा। अग्निकांड पीड़ितों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने हादसे के बाद सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
7: बड़े अधिकारियों की बनती है और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं, वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए।
6: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हादसे के लिए पूर्व की अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और हादसे पर राजनीति न करने की सलाह दी है।
8: अखिलेश यादव जी, लखनऊ की जो घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है, 15 लोगों की जाने के लिए, और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है।
6: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में एलडीए के तत्कालीन अधिकारियों और अभियंताओं पर कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: तो दुनिया उजड़ गई।
1: साहब 10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं।
2: उम्मीदों की ज्योति बुझ गई, अरमानों का सूरज अस्त हो गया। सागर के परिजनों के सामने अब गम का सागर है। नीलेश के पिता की अब कोई चाहत शेष नहीं रही। एक नहीं, 15 परिवारों का भविष्य जलकर खाक हो गया। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुषा, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, अब्दुल, सूरज, जैनिल, अम्मार, सुमल्या, सारे के सारे नौजवान, सारे के सारे ऊर्जावान, सब के सब खत्म। सारे सपने झुलस गए, सारी उम्मीदें टूट गई, 15 परिवारों के चिराग बुझ गए। इनका क्या कसूर था? अपनी हिफाजत का भरोसा करना, अपनी हुकूमत पर भरोसा करना, अपने सपनों, तकदीर, परिवार, रोटी रोजगार के लिए जान की फिक्र छोड़कर सिस्टम पर भरोसा करना। लखनऊ में एक इमारत के लाक्षागृह बनने की खबर आती है तो हुक्मरान दौरे करने चले आते हैं, जांच समिति बिठा दी जाती है, आनन फानन में एक्शन की तैयारी कर ली जाती है। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA का नोटिस है। 15 मौत के बाद LDA की नींद टूटी है, बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है।
3: जो घटना के दाग हैं, वो यहाँ पर अभी भी देखे जा सकते हैं। जो घटना क्रम पूरा हुआ है वो आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ से। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस बैरिकेड के पास आगे आके दिखाएं, यहाँ पर जो पेट्स के सामान थे, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पेट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सभी अभी भी यहाँ पर आपको पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। यहाँ जानवर क्या इंसान, वो सभी जो है यहाँ से भागते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ तस्वीरें थोड़ा और करीब से आकर कि ये पूरा का पूरा नीचे का जो एरिया है, ये आंख विध्वंस जब हुआ तो पूरा का पूरा टूट कर एक के बाद एक नीचे आता गया चला गया। ऊपर जहां पर ग्लासेस लगे हुए थे वहां पर जब पत्थर फेंके गए तब जो है कुल मिलाकर लोग कुछ वहां से फांद पाए, कुछ निकल पाए, तो कुछ जो सांस जो फूलने लगी उसके चक्कर में मौत हो गई। जो शुरुआती जानकारी डॉक्टर्स के जरिए मिल पाई है वो ये बताती है मौत का मुख्य कारण आग लगना यानी कि बर्न इंजरी नहीं है बल्कि सांस लेने में परेशानी है।
2: 15 मौत के बाद सूबे की सरकार भी एक्शन में दिखती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन मौके का मुआयना करने पहुंच जाते हैं। SIT गठित कर जांच शुरू हो जाती है, यानी वही दशकों पुराना घिसा पिटा तरीका। जांच तो होगी, जांच होगी तो पता चलेगा कि रिहायशी मकान में दफ्तर दुकान कैसे बन गए, मौत की सौदागरी कर मुनाफा वसूले में कौन कौन शामिल था, लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, दमकल विभाग क्या कर रहा था, बिजली विभाग क्यों सन्नाटे में था, और तो और पार्षद से लेकर मेयर तक, विधायक से लेकर सांसद तक और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सारा सिस्टम एक साथ क्यों फेल हो गया, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। फिर रिपोर्ट आ जाएगी, मुकदमा होगा, जमानत होगी, बात रफा दफा, फिर किसी इमारत से लपटे उठेंगे, फिर किसी का नीलेश, किसी की ज्योति, किसी का भविष्य लाक्षागृह में घिरकर दम तोड़ जाएगा। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: नगर निगम में अपने लगे अधिकारी एलडीए ने 19 इंजीनियर्स और 6 पीसीएस अफसर के खिलाफ एक्शन की सिफारिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दम घोटू धुएं से गई ज्यादातर जान। भारत तिवारी एनकाउंटर मामले बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के दिए आदेश। रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 4 की मौत, 21 का रेस्क्यू। मलबे में अभी भी कई जिंदगियां दबी, सीएम ने घटनास्थल का लिया जायजा। मोर्चे पर सेना। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या करने का आरोप, साथी गिरफ्तार। आरोपी के पिता ने कहा, मेरे बेटे को फंसाया गया। फोरेंसिक टीम ने लोहागढ़ फोर्ट का किया दौरा। एयर इंडिया का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसा, दिल्ली से अमृतसर के लिए भरी थी उड़ान। 22 जून को तकनीकी खराबी से भटका रास्ता, पाकिस्तान ने लौटाया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ में नेहा बातल। विशेष में आज बात एक ऐसे कत्ल की जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई ये मानने को ही तैयार नहीं है कि एक 20 साल की लड़की ने अपने 26 साल के मंगेतर को मार दिया और मौत की ऐसी कि रूह कांप जाए। घटना पुणे की है, जहां केतन अग्रवाल हत्याकांड में उसकी मंगेतर सिया और सिया का प्रेमी पकड़ा गया है। सिया और केतन दोनों पुणे की बड़ी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। जीवन में कोई कमी नहीं थी, रुपए पैसे बहुत थे, पूरा संपन्न परिवार था। लेकिन सिया ने केतन की हत्या क्यों की, वो भी शादी से कुछ महीने पहले, हमारी पहली रिपोर्ट में देखिए।
3: एक परफेक्ट लव स्टोरी, एक वुड बी कपल। फरवरी में सगाई हुई, नवंबर में शादी थी, पूरी तैयारियां चल रही थी। 20 साल की सिया, 26 साल का केतन, दोनों की नई जिंदगी शुरू हो रही थी। 19 जून को सिया का बर्थडे था, तो केतन एक महीने तक हर रोज नया सेलिब्रेशन करता रहा। कभी गाड़ी में फूल देता, कभी रेस्टोरेंट में केक काटता। लेकिन सिया के बर्थडे से एक दिन पहले केतन की मौत हो गई। कहा गया कि केतन पुणे के इसी लोहगढ़ किले से नीचे खाई में गिरा और इस हादसे में मारा गया। जांच हुई तो पता चला कि 20 साल की सिया ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या की।
4: उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरे चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना।
3: पुणे में एक ऐसी वारदात हुई है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक 20 साल की लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा मर्डर कैसे कर सकती है। एक 20 साल की लड़की इतनी प्लानिंग के साथ अपने मंगेतर की हत्या कैसे कर सकती है? लेकिन पुलिस की माने तो यही हकीकत है। कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 से, जहां पुणे के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे केतन अग्रवाल और ड्राई फ्रूट और मसालों के होलसेल कारोबारी की बेटी सिया गोयल की सगाई होती। ये पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी, दोनों संपन्न परिवार थे, पुणे की बड़ी बिजनेस फैमिलीज थी। तय हुआ कि नवंबर 2026 में दोनों की शादी करेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान में डेस्टिनेशन बुक हो चुका था, करोड़ों रुपए की एडवांस पेमेंट हो चुकी थी, दो दो चार्टर्ड विमान बुक थे, नवंबर में शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन सिया की जिंदगी में कोई और था। सिया 22 साल के चेतन चौधरी नाम के लड़के से प्रेम करती थी। परिवार ने सिया की शादी तय कर दी, लेकिन सिया ने अपने मंगेतर या उसके परिवार को अपने प्रेमी के बारे में कुछ नहीं बताया। सिया अपने मंगेतर के साथ प्रेम की पूरी एक्टिंग करने लगी और इस बीच सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी लगातार केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। सिया केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो प्यार का पूरा नाटक कर रही थी। यहां तक कि 6 जून को दोनों प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे, दोनों पुणे से मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा क्योंकि केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। जिस बैग में पासपोर्ट रखा था उसमें रखे पैसे, क्रेडिट कार्ड सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन पासपोर्ट नहीं था तो बाली नहीं जा पाए। अब पता चला है कि सिया ने ही केतन का पासपोर्ट गायब किया था ताकि उनका प्री वेडिंग शूट न हो।
4: फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा।
3: परिवार को यह अंदाजा ही नहीं था कि सिया बहुत पहले से ही ये प्लानिंग कर रही है। वो बाहर बाहर से केतन से प्यार और शादी का नाटक कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी केतन से शादी हो, इसीलिए वो अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग कर रही थी।
5: जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था, तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सोदा कि ये कतर बाली ना जा पाए।
3: सिया और चेतन पूरा प्लान बना चुके थे केतन को रास्ते से हटाने का, लेकिन सवाल था कि हत्या कहां करें। दोनों ने पुणे के लोहगढ़ फोर्ट को चुना जहां लोग घूमने के लिए, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। वहां ऊपर खाई भी है, रास्ता भी सुनसान था, सोचा कि यहां से गिराकर केतन को मार देंगे। 14 जून को सिया और केतन पुणे के लोहगढ़ फोर्ट घूमने गए थे। सिया ने उसी दिन केतन को मारने की प्लानिंग रची थी। खाई के पास सिया ने केतन को धक्का दिया लेकिन वो झाड़ियां पकड़कर बच गया। जैसे ही सिया ने देखा कि केतन ने झाड़ियां पकड़ ली हैं, वो तुरंत चिल्लाने लगी। सिया ने बहाना बनाया कि उसने सांप देखा जो केतन को काट लेता, इसीलिए उसने धक्का दे दिया। केतन को तब भी समझ में नहीं आया कि सिया ने उसे जानबूझकर धक्का दिया था। शायद केतन सिया के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे ये नहीं दिखा कि सिया क्या प्लानिंग कर रही है। 14 जून की सिया की प्लानिंग फेल हो चुकी थी। फिर आई 18 जून की तारीख। 19 जून को सिया का बर्थडे था। 19 जून को सिया और केतन का परिवार सिया का बर्थडे मनाने के लिए महाबलेश्वर जाने वाले थे, लेकिन सिया ने केतन से 18 जून को एक बार फिर लोहगढ़ फोर्ट जाने की जिद की। केतन के परिवार ने मना भी किया कि जब अभी 14 जून को गए थे तो फिर क्यों जाना, लेकिन सिया ने बहाना बनाया कि उसके कुछ दोस्तों ने उसके बर्थडे की प्लानिंग की है जो लोहगढ़ फोर्ट में मनाना है, इसीलिए परिवार ने दोनों को जाने दिया।
4: लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी, उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
3: लेकिन वहां लोहगढ़ फोर्ट में इस बार सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को भी बुलाया हुआ था। चेतन चौधरी इन दोनों के आसपास मंडराता रहा, कभी इनसे 20 मीटर आगे, कभी थोड़ा पीछे। फिर एक जगह करीब 350 फीट की खाई के पास, जहां कोई भी नहीं था, दोनों ने मौका देखा और केतन को धक्का मारकर गिरा दिया। केतन जैसे ही नीचे गिरा, सिया ने शोर मचा दिया कि उसका बॉयफ्रेंड फोटो लेते हुए पैर फिसलकर खाई से नीचे गिर गया।
6: पोखर पे अभी हम खड़े हैं, इसी स्पॉट पे, इसी जगह पे दोनों खड़े थे। 31 मई को सबसे पहले यहाँ आए थे, तभी सिया गोयल ने यहाँ रेकी कर ली थी। उसके बाद उसने प्लान उसके जहन में आया और फिर 14 जून की तारीख आई। 14 जून को भी यही दोनों मिले, पूरा ट्रेक करके लोहगढ़ के ऊपर आ गए और फिर सिया ने कोशिश की। उसने पहले दिखाया कि यहाँ सांप है, वो जोर से चिल्लाई, लेकिन फिर भी वो केतन अग्रवाल को खाई में ढकेल नहीं सकी। उसके बाद एंट्री होती है चेतन चौधरी की, जिस चेतन के साथ सिया के पिछले दिवाली के बाद ही संबंध जुड़ चुके थे, दोनों साथ में थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। और फिर उसने चेतन चौधरी की मदद करने की कोशिश की और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों साथ में यहाँ पहुंचे, अलग अलग जगहों से आए और यही इसी जगह से उसने केतन को धक्का दिया। जोर से धक्का देने के बाद केतन नीचे झाड़ी आपको नजर आ रही है, उस झाड़ी में जा गिरा और उसके बाद सिया गोयल यहाँ से ऊपर चढ़ के और एक हनुमान जी का मंदिर है वहां चली गई और वहां से जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा बगेतर नीचे गिर गया है।
3: लेकिन सिया को यह नहीं पता था कि जब इस केस की जांच होगी तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाएगी, सिया की एक एक साजिश का पता चल जाएगा। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार बाबले, पुणे आज तक।
0: सिया और उसके प्रेमी ने बहुत बारीकी से केतन के मर्डर की प्लानिंग की। केतन के खिलाफ दोनों ने मिलकर बहुत सी साजिशें रची, यहां तक कि उसके मर्डर की कोशिश पहले भी कर चुके थे, लेकिन केतन को संकेत नहीं मिले। वो सिया के प्यार में शायद साजिश नहीं देख पाया। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि केतन के हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ और पुलिस को सिया और उसके प्रेमी पर शक कैसे हुआ।

0: केतन के मर्डर के बाद भी सिया ने यह भनक तक नहीं लगने दी कि कहीं से कोई शक उसके ऊपर हो। हालांकि केतन के कुछ रिश्तेदारों ने यह बात नोट की थी कि केतन की मौत के बाद सिया के चेहरे पर कुछ दुख नहीं दिख रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर सिया पूरी तरह से खुद को दुखी बता रही थी। बल्कि सिया ने तो इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट भी किया कि तुम मुझे बर्थडे पर छोड़कर चले गए, तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी के बहुत नजदीक आ गए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे तब क्यों छोड़ा जब मैंने तुम्हें इतना प्यार किया। लेकिन शायद सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी ये भूल गए थे कि कातिल खुद को कितना भी शातिर समझे, एक न एक दिन वो पकड़ा जाता है। यहां भी यही हुआ, क्योंकि सबसे पहले पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो ये हुडी वाला शख्स उन्हें केतन और सिया के आसपास दिखा। पुलिस को शक हुआ कि 33 डिग्री के गर्मी भरे तापमान में ये शख्स कौन है जो हुडी पहने हुए है, मास्क लगाए हुए है, खुद को दिखाना नहीं चाहता है। फिर फोर्ट के गार्ड से पूछताछ हुई तो गार्ड को भी उस पर शक हुआ, क्योंकि उसने ऊपर जाने के लिए टिकट ही नहीं लिया था।
1: केतन के आगे जाने के बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ। यहां के टिकट काउंटर में जो थे उनके साथ उनकी उस दिन बात भी हुई थी, टिकट देने से उन्हें मना किया था, बोल रहे थे कि आने वाले वक्त टिकट देंगे। एग्जैक्टली क्या उस दिन आपकी बात हुई थी उनके साथ?
2: जी सर, अभी वो कान में हेडफोन डाला था, उसको पीछे से आवाज दिया था सर टिकट लेके जाओ, टिकट लेके जाओ करके, वो का इतना गया नहीं।
3: वक्त ही छोड़े से ब्रेक का हौसला है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
8: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
7: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: लखनऊ के अलीगंज की इस इमारत में 15 परिवारों की चिराग बुझ गए। सरकारी व्यवस्था की इस घोर लापरवाही से पूरा देश विचलित। देश भर में ऐसी बेबसी 27 जुलाई 2024 को भी लोगों ने महसूस की। तब देश की राजधानी में सरकारी अंधेर गर्दी से ऐसा ही हादसा हुआ, जब ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबकर 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। जिस बेसमेंट को पार्किंग और स्टोरेज के लिए मंजूरी मिली थी, वहां लाइब्रेरी चलाकर सैकड़ों छात्र छात्राओं की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा था। जगह के अवैध इस्तेमाल, बायोमेट्रिक एक्सेस सिस्टम और सुरक्षा खामियों की घातक तिकड़ी ने 3 नौजवानों को तब बेमौत मार डाला। उस हादसे के बाद भी वायदे हुए, जांच बैठी, कार्रवाई की लाठी पीटी गई और कहा गया कि अब ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे। लेकिन जिन सरकारी विभागों की लापरवाही से यह हादसा हुआ, क्या उन्होंने कोई सबक सीखा? आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल जो सामने आया, वो पूरे देश को खबरदार करता है। आज तक ने अपनी पड़ताल में पाया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार की एजुकेशन हब में आज भी बेसमेंट का इस्तेमाल नियमों के विपरीत किया जा रहा है। ये फ्यूचर वर्ल्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जिसके बेसमेंट में महज 10x10 फुट के कमरे को लाइब्रेरी में बदल दिया गया, जहां करीब 25 स्टडी क्यूबिकल बनाए गए। हैरानी की बात यह कि इस लाइब्रेरी में प्रवेश बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए मिलता है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी विफलता राजेंद्र नगर हादसे के दौरान भी सवालों के घेरे में आई। हमारी मुलाकात वहां के मैनेजर राकेश से होती। इसी बेसमेंट में एसएससी का कोचिंग सेंटर भी चलता है और इस बेसमेंट के 3 हिस्से कर मोटा किराया वसूला जा रहा है।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे। तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं। चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
1: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो बाबू से जमी के ही बन सकते हैं।
2: कहाँ हो चौकीदारों, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, जरा निकलो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है। उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।
3: राम मंदिर को दिए गए दान में गबन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मामला कुछ 100 या 1000 रुपए का नहीं, बल्कि इससे काफी बड़ा है। कहीं 7 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का दावा है, तो कहीं 200 करोड़ तक के घोटाले की बात कही जा रही है। सबसे गंभीर आरोप 1250 से ज्यादा सोने चांदी और अष्ट धातु की शिलाओं के गायब होने का है, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। मुंबई के सिंधी समाज ने अपने दिए चांदी को लेकर सवाल उठाया है। सिंधी समाज का दावा है कि उन्होंने 200 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर निर्माण के लिए दान दी थी, लेकिन अब तक ना तो उन्हें रसीद मिली और ना ही ये बताया गया कि उन शिलाओं का उपयोग कहां हुआ।
4: दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है, अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहां लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है।
3: 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर के लिए सामूहिक दान किया गया था, जिसमें कुल 200 किलोग्राम चांदी शामिल थी। हर ईंट का वजन लगभग 1 किलोग्राम था। चांदी की ईंटों पर सिंधी समुदाय के देवता झूलेलाल की आकृति उकेरी गई थी। इस दान के लिए 12 देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं से चंदा इकट्ठा किया गया था। सवाल ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से दान की गई 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर भी उठ रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके पास शिलाएं ट्रस्ट को सौंपने की रसीद मौजूद है। दावा है कि देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार 60 किलो चांदी की शिलाएं नींव पूजन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान दान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: लखनऊ अग्निकांड में नपने लगे अधिकारी, एलडीए ने 19 इंजीनियर्स और 6 पीसीएस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन की सिफारिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दम घोटू धुएं से गई जान। बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश दिए। रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 4 की मौत, 17 अस्पताल में भर्ती, मलबे में अभी भी कई दबे। सीएम ने घटनास्थल का जायजा लिया। मोर्चे पर सेना। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या करने का आरोप, साथी भी गिरफ्तार। आरोपी के पिता ने कहा, मेरे बेटे को फंसाया गया। फोरेंसिक टीम ने लोहागढ़ फोर्ट का दौरा किया। एयर इंडिया का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसा, दिल्ली से अमृतसर के लिए भरी थी उड़ान। 22 जून को तकनीकी खराबी से भटका रास्ता पाकिस्तान ने लौटाया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। कटघरा हमेशा कानूनी नहीं होता है, कटघर जवाबदेही और सवालों का भी होता है। देश के चार राज्यों की चार सरकार आज कटघरे में। सवाल मंदिर में चढ़ावे की चोरी, अवैध इमारत में निर्दोषों की मौत, सवाल मुख्यमंत्री के सब परिवार जमीन के सौदे वाले आरोपों पर, सवाल बेअदबी वाले आरोपों का और सवाल फर्जी एनकाउंटर का। एक एक करके कटघरे में खड़ी सरकार की खबर से खबरदार करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी दो SIT की रिपोर्ट पर सबकी नजरें हैं। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से जुड़ी है। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रुगुटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है, क्या वाकई न्याय मिलेगा? जहां अयोध्या के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही कहा जा रहा है कि FIR अब तुरंत दर्ज की जानी चाहिए, जांच को तेज करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज सुनवाई इस मामले की हो और जो दोषी हैं उनको किए की सजा मिले। पर सवाल है कि शुरुआती जांच रिपोर्ट अब तक जमा होने के बावजूद सामने नहीं आई है।
1: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित SIT जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक SIT को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को SIT अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को SIT की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं। पर सवाल है, शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता? और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। CCTV के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल UP सरकार की बनाई SIT पर सवाल उठाते हैं।
4: ये SIT कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए SIT बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला CBI को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ED को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं, 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब TV के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर CBI, ED और इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी SIT ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है। लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं, जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
6: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्योता देने वाले मंच तक इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अफसरों की नींद टूटी है, लेकिन अधिकारी एक्शन कम, खाना पूर्ति करते ज्यादा दिखते हैं। वो अफसरशाही जिनकी वजह से सरकार के दावे ही कमजोर साबित हो रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
7: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
8: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंबई को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
9: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
9: उसके जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
10: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
11: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे, और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं, जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है। जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
11: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन का समय दिया गया है, अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
12: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: 9 साल से सत्ता में रहकर भी जब 9 साल पुरानी सरकार पर ठीकरा फोड़ा जाए तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी होती है। कैसे, इसका जवाब समझिए। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किया, कहा कि बेसमेंट में किसी तरह की कोचिंग का संचालन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल ही हर अफसर को कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा तो उन अफसरों को अपनी एसी कमरों से आज पहली बार मानो निकलना पड़ा, जो शायद पहले निकले होते तो अलीगंज में 15 बच्चों की जान न जाती। आज उसी जगह से केवल 400 मीटर दूर एलडीए, फायर विभाग, बिजली विभाग सबके अफसर कर्मचारी जांच करने निकले। इनसे आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने 2 सवाल पूछे कि आज क्या जांच कर रहे हैं और दूसरा सवाल यही, जांच पहले क्यों नहीं की। हर सवाल पर 3 विभाग के अफसर कर्मचारी जवाब देने की जगह टोपी ट्रांसफर करने लगे। यही मानसिकता सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती।

0: जी हम लोग
1: आप लोग एलडीएस हैं,
0: आप ये कंबाइंड टीम है और प्लीज हम लोग अपना काम करें। वाइट लेने के लिए आप जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उनके पास जाइए।
1: एलडीएस है
2: नहीं, नहीं कुछ नहीं ऐसे आप हमने कहा काम कर लें तो
1: कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ समझ में आ रहा है अभी अलीगंज क्षेत्र में?
3: अभी कुछ नहीं, अभी तो कल पोस्टिंग हुई।
1: आप सर हैं? आप सर हैं? कौन सर है? आप सर हैं? सर आप लोग सर एलडीएस हैं? सर आप लोग एलडीएस हैं? सर
0: भैया पत्रकार साहब थोड़ा सा काम करने दीजिए हम लोग।
1: आप लोग एलडीएस हैं?
0: आप ये कंबाइंड टीम है और प्लीज हम लोग अपना काम करें। वाइट लेने के लिए आप जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर है उनके पास जाए।
1: इतना सर बता दीजिए खाली की जब घटना होती है उसके बाद आप लोग क्यों पहुंचते हैं, पहले क्यों नहीं पहुंचते?
0: पत्रकार साहब मैं वाइट देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, प्लीज जो लोग अभी
1: सवाल केवल इतना है कि खाली घटना का इंतजार क्यों होता है, चाहे एलडीए हो चाहे फायर डिपार्टमेंट। सवाल जब होंगे तो बहुत आसान है कि शोरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चले आना। घटना क्यों हुई, कैसे हुई?

0: अच्छा हो सकता है। ओवरलोडिंग का रूल ऐसा है कि कनेक्शन के अगर ओवरलोड यूज करते हैं तो उनको नोटिस 4 महीने 3 महीने बाद दी जाती है।
1: और अगर उन 3-4 महीनों में कोई घटना हो गई, किसी मासूम 15 बच्चों की मौत हो गई, तो फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है?
0: उसके लिए विद्युत सुरक्षा एजेंसी लेना उनको अनिवार्य रहता है कनेक्शन लेने के समय पे। जब कनेक्शन वो लेते हैं तो उस समय पे विद्युत सुरक्षा एजेंसी लेते हैं वो।
1: मिला था
0: ये आपको ऑफिस से बात कर लेंगे।
1: नहीं, आप इतने वरिष्ठ कर्मी हैं, मतलब आपने कई, आपको पर्सनल आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट के बेसिस पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो क्या एनओसी किसी को भी मिल जाती है ऐसे?
0: नहीं, एनओसी विद्युत सुरक्षा निदेशालय वो देते हैं, वो लोग अपना सर्वे करके करके एनओसी देते हैं।
1: लेकिन आप लोग खुद सोचिए ना सर, सर्वे वगैरह आप लोग कर रहे हैं, 15 बच्चों की जान चली गई है, उसके बाद सर्वेज हो रहे हैं, उसके बाद SIT बन रही है, उसके बाद सारी चीजें होती हैं।
0: नहीं, ये जो सर्वे अभी हो रही है ये तो बाकी चीज की चेकिंग अभी हो रही है,
1: एक एक चीज हो रही है
0: अभी, ऐसा टीम बनी है, टीम चेकिंग कर रही है अभी बाकी।
1: इसी घटना के बाद ही बनी, मुझे मालूम है, वो बेसमेंट फोकस है आप लोग का, मुख्यमंत्री का निर्देश यही है। तो एक अधिकारी कहते हैं सामने वालों से बात कर लीजिए, दूसरे अधिकारी कहते हैं इनसे फलाना से बात कर लीजिए, कोई कहता है सर से बात कर लीजिए। अब कौन सर है, कौन मैम है, कौन अधिकारी है, किसी को नहीं पता। जवाब तो वो माता पिता चाहते हैं जिनको घरों के चिराग बुझ गए हैं, यहाँ पर हाथ में डायरी है, फोन है, क्या नोट हो रहा है, क्या कार्रवाई होगी, किसी को नहीं मालूम। ये देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, केवल फ्रेम देखिएगा। सर, ये आप लोग जैसे नोट वगैरह करते हैं, कुछ कार्रवाई भी होगी इसमें इस बार?
2: अधिकारी भी रहते हैं, हम तो नोट करके जा रहे हैं, अधिकारी बताएंगे।
1: आप लोग नोट तो सालों से कर रहे हैं, वैसे अलीगंज में भी
2: अभी कर रहा पहली बार,
1: अलीगंज वाले में नोट नहीं किया था
2: सब, एक्चुअली में प्रांतगण प्लॉट है, वो तो साहब बताएंगे, मैं नहीं बता सकता,
1: वो बताएंगे। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे हंसी आ रही है, मैं इस दुर्दशा पर मुस्कुरा रहा हूँ कि हम जब सवाल कर रहे हैं, आपने एक मेरे रिपोर्ट में देख लिया, एक साहब से दूसरे साहब, एक सर से दूसरे सर, हम ऑथोराइज नहीं है, हम बात नहीं कर सकते हैं। चंद मीटर, 15 मौतें, उसके बाद भी अधिकारी, दफ्तर निशब्द, चुप, कोई जवाब नहीं।
3: कटघरे में आज दूसरी सरकार मध्य प्रदेश की है। मोहन यादव जिनके नाम की पर्ची 3 साल पहले निकली तो सब चौंक गए थे। मोहन यादव जो खुद को जमीन से जुड़ा नेता बताते हैं, अब उन पर और उनके परिवार पर जमीन से जुड़े सौदों को लेकर आरोप लगे हैं। आरोप एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है। कांग्रेस इसे अयोध्या से महाकाल तक की लूट बताना शुरू कर चुकी है। बीजेपी कह रही है कुछ भी गलत नहीं हुआ है।
4: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोपों के साथ ऐसे विवाद की गूंज उठी जहां कटघरे में मोहन सरकार आई।
5: बाजार की गाइडलाइन जो है, उस गाइडलाइन का एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन नहीं, 4 गुना में हम जमीन का पैसा किसान को देने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ, ये किसानों के प्रति भावना।
4: किसानों की जमीन की चिंता करते मुख्यमंत्री पर एक मीडिया रिपोर्ट की पड़ताल में यह दावा किया गया कि 2021 में मोहन यादव के मध्य प्रदेश का मंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार ने 253 एकड़ जमीनें खरीदी। 2021 से 2023 के बीच 30 करोड़ रुपए में कुल 85 एकड़ के 57 प्लॉट खरीदे गए, जबकि 2024-25 में 45 करोड़ में कुल 168 एकड़ के 137 प्लॉट खरीदे गए। मोहन यादव दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ में से 111 एकड़ जमीन उस क्षेत्र में खरीदी गई जहां 2028 में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है।
6: मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी।
7: एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया।
8: एलिगेशन के बाद एक मुख्यमंत्री को पद में रहना क्यों चाहिए? विथ एविडेंस, अगर एविडेंस गलत है, आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पेरेंसी की है, तो जिस मीडिया हाउस ने इतना बड़ा काम किया उस पर FIR करो, मानहानि करो। आपने 30 घंटे में कांग्रेस पार्टी के सवाल थे, एक का भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर आया, बात थी जमीन की, जवाब आया जाति पे।
4: बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने कोई जमीन नहीं खरीदी, लेकिन ये भी माना

0: कि मोहन यादव के रिश्तेदारों ने अपने स्वतंत्र कारोबार के लिए जमीनों की खरीद की जिसे मुख्यमंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि जिन जगहों पर यादव परिवार की जमीन है वहां पर देवास बदनावर नेशनल हाईवे, उज्जैन गरोट नेशनल हाईवे निकले। हालांकि इन दोनों हाईवे की मंजूरी दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच मिली, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मोहन यादव के परिवार ने उनके सीएम बनने के बाद 5 प्लॉट लिए, लेकिन यादव परिवार से जुड़े दूसरे लोगों ने 116 प्लॉट खरीदे। इनमें से ज्यादातर प्लॉट पहले से बनी हुई सड़कों के पास है। खतौनी रिकॉर्ड के मुताबिक सीएम मोहन यादव के रिश्तेदारों ने साल 2024 में 76 एकड़ जमीन खरीदी। अगले साल यानी साल 2025 में खरीदी गई जमीन का आंकड़ा बढ़ गया। 2025 में यादव परिवार ने 96 एकड़ जमीन खरीदी है। इस हिसाब से परिवार का लैंड बैंक बढ़कर 335 एकड़ हो गया। हालांकि इनमें मोहन यादव, सीमा यादव, वैभव यादव और शालिनी यादव यानी मोहन परिवार का कुल लैंड बैंक 56.45 एकड़ ही है। ऐसी एक जगह उज्जैन मक्सी रोड पर जयवंतपुर गांव में है। यहां मोहन यादव के चचेरे भाई गोविंद यादव और उनके बेटों सिद्धार्थ और अनंत ने 4 एकड़ जमीन ली है, जहां कॉलोनी काटी जा रही है।
1: मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि उनके परिवार ने बड़े पैमाने पर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन और उसके आसपास के इलाकों में जमीन ली है, तो उसकी पड़ताल करने के लिए आज तक की टीम जब उज्जैन पहुंची तो उज्जैन के पास मक्सी रोड पर जयवंतपुर एक इलाका है जहां पर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने जमीन ली है। हालांकि ये उनके अपने परिवार से नहीं है, ये जमीन जो हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल ये जयवंतपुर में करीब 4 एकड़ का एक बड़ा हिस्सा है जमीन का।
0: अब इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बड़ा सवाल आता है, क्या विकास परियोजनाओं से पहले जमीनों की खरीद महज संयोग है? क्या रिश्तेदारों के नाम पर हुई खरीद को सत्ता से जोड़कर देखा जाना चाहिए या फिर ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया मामला है? जवाब जांच और तथ्यों से सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जमीन का ये मामला मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल लेकर जरूर आया। आरोप गंभीर हैं, जवाब भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस दस्तावेज के आधार पर जांच की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक दुष्प्रचार बता रही है। सच क्या है, फैसला आरोपों से नहीं तथ्यों और जांच से ही हो सकता है।
2: कांग्रेस मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन को लेकर घेर रही है, तो आज बीजेपी कांग्रेस को जमीन के कटघरे में खड़ा करने लगी। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार पर अपने ट्रस्ट के जरिए कर्नाटक में सरकारी जमीन हासिल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि खड़गे ने अपनी शक्ति और प्रभाव का इस्तेमाल करके जमीन हड़पी है। बीजेपी जब खड़गे परिवार पर गरीबों की जमीन हड़पने का आरोप लगाती है तो प्रियांक खड़गे ने पोस्ट किया कि बीजेपी असल में आरएसएस को खुश करने की कोशिश कर रही है। प्रियांक खड़गे पूछते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री थे, उनमें से किसी ने भी कार्रवाई क्यों नहीं की?
3: दार्थ विहारा ट्रस्ट को KIADकर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने वर्ष 2024 में कर्नाटका की सरकार, कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष थे और अभी भी हैं और प्रियांक खड़गे मंत्री थे। इस ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि KIADने दी थी, कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने 2024 में दी थी और जिस पर्पस के लिए दी गई थी वो कहा गया था कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे एरोस्पेस और डिफेंस में। दोस्तों अब इस 5 एकड़ भूमि का मार्केट रेट 100 करोड़ का है। अब ये सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट ने इसके पहले कोई भी काम ना एरोस्पेस में किया है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एरोस्पेस या डिफेंस में किया है। तो सवाल यह उठता है कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मेंबर है उसको 5 एकड़ भूमि जो इंडस्ट्रियल लैंड है जिसको कोई ना कोई इंडस्ट्रियल या एरोस्पेस के ट्रस्ट को देना चाहिए था, उन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट को दिया जो
2: आज कटघरे में अगली जो सरकार है वो पंजाब की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जिस फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया, वही रिपोर्ट फर्जी बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
4: जगमन है कोई, वह बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते नहीं।
0: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, क्या उसे पंजाब के डीआईजी और एसपी स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया? क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी एआई रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील? जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठंती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
5: देखो, 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
0: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था, वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।
6: 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अननोन नंबर से, मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है, तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, जिसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद की आपको बात करें। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता, तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये, ठीक है, और अच्छी मात्रा में पैसे मिले।
0: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया, उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
6: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ हूं, किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
0: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
7: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ना मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वो वीडियो नू वायरल करके मैं दोषी करार देता है।
0: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
8: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
9: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इन्दे ऐसी इस्तीफे की मांग करते हैं।
10: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
0: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंदो झा, दिल्ली आज तक।
2: अब बात उस हत्याकांड की जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सबके मन में एक सवाल है, अगर कोई किसी से शादी नहीं करना चाहता तो क्या उसे मार देगा? पुणे के केतन अग्रवाल और सिया गोयल की इस साल फरवरी में सगाई हुई, नवंबर में दोनों की शादी थी, लेकिन सिया के जन्मदिन से एक दिन पहले केतन की सुनियोजित तरीके से हत्या करने की बात पुलिस बताती है। इस हत्याकांड के केंद्र में सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन है, जिन्होंने अपने रिश्ते को रोशन करने के लिए एक परिवार के चिराग को बुझा दिया।
0: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की ये पुराने वीडियो देखकर सारा देश हैरान है। हर एक वीडियो में सिया गोयल अपने मंगेतर केतन के साथ खुश नजर आती है। कैमरे पर दोनों की केमिस्ट्री किसी फिल्मी कहानी जैसी दिखती है। कहीं कार के अंदर प्री बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, कहीं दोनों रोमांटिक डांस करते दिखाई देते हैं, कहीं केतन घुटनों पर बैठकर सिया को प्रपोज करते नजर आते हैं। वीडियो में दोनों की मुस्कान और एक दूसरे के लिए अपनापन देखकर शायद ही किसी को अंदाजा हुआ हो कि सिया केतन की हत्या करवा सकती है।
11: प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दे लो, इतना ही बोलूं, जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए, कट से कट सजा सिया को, सिया की फैमिली को दिया जाए, मुझे इतना ही, मेरे बेटे को शांति चाहिए। मेरे घर में जहाँ खुशी का माहौल था, जहाँ दुख हुआ है, वैसे ही उसके घर पे भी हो जाए, प्लीज मुझे पूरा इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए।
0: पुणे के हत्याकांड सारे देश को झकझोर दिया है। कोई भी ये बात समझ नहीं पा रहा है कि अगर सिया को केतन से शादी नहीं करनी थी तो उसने अपने परिवार को क्यों नहीं बताया, क्यों उसने एक परिवार के इकलौते बेटे को मार डाला।
12: उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए।
0: एक लड़की अपने पति में जो खूबियां सोचती वो सब कुछ केतन में था। केतन पढ़ा लिखा था, उससे प्यार करता, उसका ख्याल रखता, संभ्रांत परिवार से आता, शराब नहीं पीता, अपने काम को लेकर गंभीर, इस रिश्ते के लिए ईमानदार, फिर क्यों 20 साल की सिया के हाथ केतन को पहाड़ी से धक्का देते हुए नहीं कांपी?
12: मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरे चिता को, आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना।
11: मेरे को एक ही बेटा है, वो 26 साल का, वो मुझे पता था वो ना ड्रिंक करने का ना कोई पार्टी में जाने का, और ये हमसे छुपाई गई थी बात कि सिया पार्टी ड्रिंक के सब लेती है।
0: केतन का परिवार सोच रहा है काश उस दिन भी बेटा परिवार के साथ जाता तो शायद जिंदा बच जाता, लेकिन अफसोस कि उन्होंने सिया पर भरोसा किया जिसे परिवार अपनी बहू मान चुका।
11: एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी लड़की है, मैं इसको ये सब मान चुकी थी, वो भी बहुत अच्छे से, पर मेरी बड़ी जॉइंट फैमिली सबसे अच्छे से बात करने की, ऐसे कभी लगा नहीं। अगर सिया ने मुझे थोड़ा भी हिंट पहले दे देती थी भले मैं कैसे ना कैसे उसको कर देती, लेकिन आज उसे मेरा बेटा लिया है ना तो उसको ना, क्योंकि मेरा बेटा मतलब मेरे को एक ही बेटा है।
0: पुणे के केतन और सिया की फरवरी में सगाई, नवंबर में शादी होनी थी, 19 जून को सिया का बर्थडे था, लेकिन उससे एक दिन पहले केतन की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि केतन पुणे के इसी लोहगढ़ किले से नीचे खाई में गिरा और इस हादसे में मारा गया। जांच हुई तो पता चला कि 20 साल की सिया ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतर की हत्या कर दी। अब केतन के दादा उस पल को लेकर सोचते हैं जब उन्होंने जान पहचान के परिवार की बेटी को बिना जांचे समझे अपनी बहू बनाने का फैसला किया। सोचिए इस बुजुर्ग ने अपने पोते की शादी को लेकर क्या कुछ सपने देखे होंगे। जिस परिवार में शादी की खुशियां बिखरी पड़ी थी वहाँ सिस्कियां और सन्नाटा है जो सारे देश को झकझोर रहा है।
12: केतन पढ़ाई में बहुत होनार था, उसने यूएस बॉस्टन से बैब्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज PCMC में काफी अच्छा काम कर रहा था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला।
13: समाज में ऐसे लोगों का होना कितना घातक है?
12: समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे।
0: तो सवाल सीधा है, अगर शादी नहीं करनी थी तो इतना खौफनाक कदम उठाने की क्या जरूरत है? ये कैसी मानसिकता है जो एक परिवार के 26 साल के बेटे की जान ले ले।
2: सिया गोयल का परिवार पुणे में मसाले का काम करता है, जबकि चेतन चौधरी ड्राई फ्रूट्स का थोक कारोबार करता था। बिजनेस के सिलसिले में शुरू हुई बातचीत पहले दोस्ती फिर मोहब्बत में बदली। दोनों साथ रहना चाहते थे लेकिन सिया भागकर शादी के खिलाफ थी। उसे परिवार को बदनाम भी नहीं करना था और प्रेमी चेतन को भी नहीं छोड़ना था। इसी मानसिकता ने केतन अग्रवाल की मौत का रास्ता तैयार किया।
0: ये तो सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो खुशियां चेहरों में दिखाई देती है वो अक्सर सच्ची नहीं होती, लेकिन कोई झूठी हंसी में अपनी खतरनाक सोच भी छिपा सकता है, ये पुणे का केतन हत्याकांड बताता है। केतन अपनी मंगेतर सिया के लिए खास सरप्राइज दिया करता था। इस वीडियो में केतन सिया को फूल देकर कार का सनरूफ खोलता है जिसे फूलों से सजाया गया। सरप्राइज देखकर सिया खुश नजर आती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। लोग सवाल उठाते हैं, क्या कैमरे के सामने दिख रही मोहब्बत सिर्फ दिखावा थी? केतन का परिवार उस पल को कोसता है जब उन्होंने सिया से अपने बेटे की शादी पक्की की, जिसे बहू माना उसकी जानलेवा साजिश को समझने में चूक गए।
11: सिया मेरे के बाद दो तीन बार आई। एक बार होली का प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, होली खेलने आई थी बच्चों के साथ। एक बार मेरे घर पे पूजा थी तो पूजा के लिए मैंने बुलाया था उसको, तो आई थी। पूरा दिन रही वो मेरे साथ, सब बच्चों के साथ रही। और दो तीन बार बीच में से आई थी वो, अच्छा लगा था हमको। तो
14: उसका बर्ताव कैसा था, आपको लगता था कुछ?
11: नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बर्ताव उसका, बहुत अच्छा था। उसके पीछे हमको ये नहीं पता था कि ये सब नाटक कर रही है। ऐसे हमको बिल्कुल भी उसने इशारा भी नहीं दिया, यहाँ तक केतन को भी एक बार भी नहीं लगा। हम तो केतन को पूछने के पेरेंट्स होके उसके पापा ने बहुत बार पूछा, मैंने हमको एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी है।
0: पुलिस के मुताबिक सिया केतन के परिवार के साथ अच्छी बहू होने का नाटक करती रही ताकि अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को मारने की साजिश अंजाम दी जा सके।
15: इसी स्पॉट पे, इसी जगह पे दोनों खड़े थे। 31 मई को सबसे पहले यहाँ आए थे, तभी सिया गोयल ने यहाँ रेकी कर ली थी। उसके बाद उसने प्लान उसके जहन में आया और फिर 14 जून की तारीख आई। 14 जून को भी यही दोनों मिले, पूरा ट्रेक करके लोहगढ़ के ऊपर आ गए और फिर सिया ने कोशिश की। उसने पहले दिखाया कि यहाँ सांप है, वो जोर से चिल्लाई लेकिन फिर भी वो केतन अग्रवाल को खाई में ढकेल नहीं सकी। उसके बाद एंट्री होती है चेतन चौधरी की, जिस चेतन के साथ सिया के पिछले दिवाली के बाद ही संबंध जुड़ चुके थे। दोनों साथ में थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और फिर उसने चेतन चौधरी की मदद करने की कोशिश की और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों साथ में यहाँ पहुंचे, अलग अलग जगहों से आए और यही इसी जगह से उसने केतन को धक्का दिया। जोर से धक्का देने के बाद केतन नीचे झाड़ी, आपको नजर आ रही है, उस झाड़ी में जा गिरा।
0: पुलिस कहती है सिया का ड्रामा केतन की मौत के बाद भी जारी रहा। उस पर किसी को शक ना हो इसके लिए उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख जताया। लिखा, तुम मुझे मेरे बर्थडे पर छोड़कर चले गए। तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी के बहुत नजदीक आ गए थे। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुमने मुझे तब क्यों छोड़ा जब मैंने तुम्हें इतना प्यार किया। पुलिस का कहना है कि सिया की तरफ से ये सब कुछ अपनी करतूत को छिपाने की कोशिश थी, जबकि उसने केतन को रास्ते से हटाने की 3 बार कोशिशें पहले की थी। सिया ने पहली कोशिश 31 मई को की जब उसने लोहागढ़ किले से केतन को कथित तौर पर धकेला। हालांकि केतन ने झाड़ी पकड़कर खुद को बचा लिया। तब अपना जुर्म छिपाने के लिए सिया ने सांप का बहाना किया था।
12: 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया सांप आ गया सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है।
0: पुलिस का कहना है कि केतन को मारने की एक और कोशिश हुई, 4 जून को एक और कोशिश नाकाम हुई जब केतन की मां ने उसे दोबारा किले पर जाने से मना कर दिया। केतन और सिया को 6 जून को अपनी शादी से पहले के फोटोशूट के लिए बाली जाना था, लेकिन केतन का पासपोर्ट खो जाने से ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा।
12: फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए, रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी क्रेडिट कार्ड्स बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है।
0: पर 18 जून को सिया अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर दावा है केतन को मार डाला।
15: ये दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 6 महीने में लगभग 2000 से ज्यादा कॉल कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब लोकेशन निकालना था तब चेतन का लोकेशन उसने खुद ये अपना मोबाइल अपने दुकान में रखा था और दुकान में जो और एक कारीगर है उसका मोबाइल वो साथ में लेके आया था ताकि पुलिस को पता ना चले कि मेरा लोकेशन ये है।
0: सिया और चेतन लोहगढ़ के केले अलग अलग पहुंचे, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज में गर्मी के बावजूद हुडी पहने चेतन दोनों का पीछा करते हुए देखा गया, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया और केतन हत्याकांड को लेकर सच सामने आ गया।
16: वो क्यों गया तो देखो अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा सुबह में उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
2: अब खबर बिहार की, जहां कटघरे में बिहार की सम्राट सरकार है, जिनकी पुलिस पर भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर मामले में चौतरफा सवाल उठ रहे हैं, जहां सरकार को अब न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ा।
17: हमारा एक जगह घटना होगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहां जहां घटना होगा वहां भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
0: बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर घटना वाली जगह जाए, लेकिन जब आपकी सरकार के राज की पुलिस के हाथों एक युवा तब मार दिया जाए जब वो हथियार डाल चुका हो, जब समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में बिहार पुलिस की बंदूक से चली गोली पर सवाल उठ रहे हो।
18: प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है, प्रशासन उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो।
0: जब सम्राट राज में कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में हो तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री कम से कम उस घटना स्थल पर जाकर भरोसा जनता को दे, और ना भी जाए तो कम से कम आप जैसे मंत्री बयानबाजी ना करें, क्योंकि भरत तिवारी का ये एनकाउंटर सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। जहां सरकार से सवाल है, शहरों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग, सरकार पर दबाव इतना बन कि एनकाउंटर के 7 दिन बाद आखिरकार एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। भरत तिवारी की मां की अर्जी पर जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं।
19: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
0: भरत तिवारी के पक्ष में इंसाफ की मांग करते हुए आसपास के गांव के लोगों ने एक महापंचायत, यहां प्रशांत किशोर भी पहुंचे, मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
20: सीधे उसको पकड़ लेना है ADG को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा, हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
0: भरत तिवारी का एनकाउंटर अब बिहार की सियासत का एक बड़ा संगीन विषय है, जिसने सम्राट सरकार को मुश्किलों के कटघरे में डाल रखा है।
2: वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
2: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
1: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा,
2: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
3: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
4: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
1: इन एसोसिएशन विद
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: मध्य प्रदेश से उठी एक सियासी चिंगारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। इसे समझने के लिए इन तीन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव हैं। इनके ऊपर मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और उत्तर प्रदेश में उसी कांग्रेस पार्टी के साथी अखिलेश हैं जो कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सवाल बीजेपी के मुख्यमंत्री से पूछ रही थी और उसकी सफाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोधी अखिलेश यादव दे रहे थे। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस हैरान, समाजवादी और कांग्रेस की इंडिया ब्रांड दोस्ती देखने वाले हैरान कि आखिर कांग्रेस के आरोपों पर अखिलेश बीजेपी के सीएम का बचाव क्यों कर रहे हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि मोहन यादव भ्रष्ट हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि एमपी में जिस बीजेपी सरकार के सीएम मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस दो दिनों से हुक्का पानी लेकर चढ़ी हुई है, पीसी पर पीसी कर रही है, बयान पर बयान दे रही है, भयानक जमीन घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार तक के सवाल उठा रही है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार भी हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि ये यादव सीएम को बदनाम करके यूपी के सीएम को बदलने का बहाना है। अखिलेश के इस बयान के पीछे का मकसद और यूपी के अंदर उसके सियासत समझने में यूपी की एनडीए सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक मशाल जलाए चल रहे हैं।
1: इस आग में खाक हो गई 15 जिंदगियां, 12 पुरुष और 3 महिलाएं जिनमें शामिल थे कई छात्र और छात्राएं। आखिर ये इमारत देखते ही देखते कैसे लाक्षागृह में तब्दील हो गई? ऐसा कैसे हुआ कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला? इस सवाल का जवाब है लापरवाही, लापरवाही और पूरी लापरवाही। सबसे पहली लापरवाही, बिल्डिंग में निकास का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, एकमात्र रास्ता था और उसी रास्ते में एसी का जाल है और दुर्भाग्य से आग भी वहीं पर लगी। एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जहां गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जो लोग मारे गए उनमें ज्यादातर एनिमेशन ट्रेनिंग सेंटर में उस वक्त मौजूद थे। रेसिडेंशियल इलाके में कोचिंग सेंटर आम है, आमतौर पर ऐसे कोचिंग सेंटरों में आग से बचाव के नियमों का पालन नहीं होता, लेकिन यहाँ ये लापरवाही जानलेवा हो गई। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद ने आज तक से बातचीत में एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उनके मुताबिक जो 15 लोग मारे गए वो जलने से नहीं मरे बल्कि दम घुटने से उनकी मौत हुई। बताया जाता है कि आग लगने से एनिमेशन सेंटर का दरवाजा लॉक हो गया, इसी वजह से धुएं के चलते दम घुट गया। आशीष श्रीवास्तव, समर श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या जेन जी युग में बेटा बचाओ अभियान का वक्त आ गया है। पुणे के केतन अग्रवाल, मेरठ के सौरभ राजपूत, इंदौर के राजा रघुवंशी, ये वो नाम है जो आज जिंदा होते अगर इनकी पत्नी या मंगेतर ने समय रहते सच बोल दिया होता। करोड़ों की शादी, आलिशान महल, सब कुछ तय था, लेकिन 20 साल की सिया गोयल ने अपने माता पिता के सामने विरोध करने के बजाय केतन को 400 फीट ऊंची खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर आज की पीढ़ी के रिश्ते इतने लहूलुहान क्यों हो रहे हैं? सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस दौर में रिश्तों से बाहर निकलने का रास्ता ब्रेकअप नहीं बल्कि मर्डर क्यों बनता जा रहा है? इसके बाद आपको द केरल स्टोरी से भी खतरनाक द कोटा स्टोरी दिखाएंगे। आरोप है कि पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों ने जिहाद अल अकबर के तहत हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर उनके जरिए हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक वीडियो बनवाए और उन्हें डार्क वेब और टेलीग्राम पर बेचा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस साजिश का मुख्य आरोपी एक हिंदू लड़का निकला जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस शर्मनाक खेल को अंजाम दिया। इसके बाद आपको पाकिस्तान के एक और सफेद झूठ के बारे में बताएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह बेनकाब हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रफाल विमानों को मार गिराने का दावा करने वाले पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना ने सबूतों से करारा जवाब दिया है। एयरफोर्स ने फ्रांस की कंपनी से अपने पूरे रफाल बेड़े के लिए एक नया सपोर्ट टेंडर मांगा है जिसमें साफ तौर पर सभी 36 रफाल विमानों के लिए रख रखाव का जिक्र है। आखिर में आपको बताएंगे कि क्या इथेनॉल और डेटा सेंटर आपका सारा पानी पी जाएंगे? एक तरफ पेट्रोल में मिलाया जाने वाला इथेनॉल को बनाने और दूसरी तरफ डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर पानी जरूरी है, तो क्या इथेनॉल और डेटा सेंटर की यह जरूरत हिंदुस्तान को डे जीरो यानी भयंकर जल संकट की तरफ धकेल सकती है? लेकिन आज का पहला विश्लेषण उस साजिश को लेकर है जिस पर हमारे लिए भी यकीन करना आसान नहीं था। जब भी लव जिहाद जैसा कोई मामला बाहर आता है तो सबसे पहले उसे खारिज करने की कोशिश होती है। खारिज यह भी कहकर किया जाता है कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा होगा या इसके पीछे कोई राजनीति होगी। हम इससे इनकार नहीं करते कि ऐसे मामलों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होती, बिल्कुल होती, लेकिन यह भी सच है कि हर बार ही ऐसा नहीं होता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सोच से परे होते हैं और जो ऐसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। आज हम आपको एक ऐसी साजिश के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर सरकारों और खुफिया एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर आपके घर में भी महिलाएं मोबाइल फोन चलाती हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं या उन्हें अज्ञात नंबर से कोई मैसेज आ रहा है तो आपको भी यह खबर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस विश्लेषण को हमने द कोटा स्टोरी का नाम दिया है और इसकी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। FIR के अनुसार पाकिस्तान में बैठे कुछ कट्टरपंथियों ने एक साजिश शुरू की और इसका नाम रखा जिहाद अल अकबर। जिहाद अल अकबर का मतलब था सबसे बड़ा संघर्ष या सबसे बड़ा जिहाद। पुलिस को की गई शिकायत में लिखा है कि इसका मकसद था भारत में हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाना, उन्हें हिंदू धर्म से नफरत कराना और उन्हें यह कहना कि वो अपने देवी देवताओं का अपमान करें, उनकी मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाए। यह ऐसी चीज थी जो इससे पहले आज तक कभी हुई नहीं थी। अब तक लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आए उनमें यही आरोप लगा कि आरोपियों ने हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपनी पहचान छिपाकर धोखा दिया। लेकिन यह मामला इससे बहुत आगे का है। शिकायत करने वाले लोगों का आरोप है कि इस मामले में शादीशुदा हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की पहले पहचान होती थी, इसके बाद उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे, फिर उनसे यह कहा जाता था कि उनके हिंदू देवी देवता नकली हैं, उन्हें इनकी मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाने चाहिए। जब वे वीडियो बन जाते थे तब इन्हें दूसरे ग्रुप्स में शेयर किया जाता था और इन्हें दूसरी हिंदू लड़कियों को भी दिखाया जाता था। ऐसा इसीलिए किया जाता था ताकि इन लड़कियों के अंदर भी ये जहर डाला जाए कि हिंदू देवी देवताओं का कोई वजूद नहीं। इसके बाद पाकिस्तान से जुड़े कट्टरपंथी टेलीग्राम ऐप पर इन वीडियोस को भारत से मंगाते थे और इन्हें पाकिस्तान और दूसरे देशों में बेचा जाता था। आरोप है कि ये बताकर बेचा जाता था कि भारत में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद अल अकबर चल रहा है, जिसमें हिंदू महिलाएं खुद अपने देवी देवताओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना रही हैं। ये वीडियो इतने खतरनाक हैं कि इन्हें हम ब्लर करके भी आपको नहीं दिखा सकते। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस शिकायत में इस साजिश का शक एक हिंदू युवक पर ही जताया गया है। इसका नाम है मनीष शर्मा, जो कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में आया। इसके बाद इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, अपना नाम मोइन खान रख लिया। यह भी आरोप है कि मोइन खान बनने के बाद इसने कई हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया, उनके शरीर पर आपत्तिजनक बातें, गजवाए हिंद, ओम और स्वास्तिक चिन्ह तक लिखवाया गया ताकि हिंदू धर्म का अपमान हो सके। आरोप है कि यह सब कुछ इसीलिए किया जा रहा था ताकि ये लड़कियां अपने धर्म से नफरत करने लगें और फिर इन वीडियोस को डार्क वेब और दूसरे माध्यम से इंटरनेट पर बेचा जाए। इसके लिए टेलीग्राम पर एक नया अकाउंट भी बनाया गया, जिसका नाम था सनातनियों की नीलामी। इस टेलीग्राम अकाउंट में हिंदू महिलाओं के खिलाफ जो अश्लील बातें होती थी उनके बारे में तो हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन इस चैट का एक हिस्सा हम आपको जरूर पढ़कर सुनाना चाहते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें लिखा है कि एक लड़की से तीन चार लड़कियां फंसाओ, किताबों का हवाला देकर इन्हें यह बताओ कि इनकी हिंदू देवियां कैसी हैं, इन्हें ऐसे संदर्भ बताओ कि इन्हें अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए अपराध बोध महसूस न हो। फिर इसी में आगे ये लिखा है कि अगर ये लड़कियां वीडियो बनाने के लिए तैयार न हो तो इन्हें ब्लैकमेल करो, इन्हें डराओ कि इनके अश्लील वीडियो सब जगह वायरल कर दिए जाएंगे। फिर स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड ऐप पर भी ये लोग इसी तरह की बातें लिखते थे। इनमें पठान साहब नाम के अकाउंट में एक यूजर अनिका नाम की लड़की को लिखता है कि जिहाद दो तरह के होते हैं, लेकिन इनमें जिहाद अल अकबर सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हर मुसलमान को करना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि जिहाद अल अकबर का मतलब होता है हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाना, निकाह से पहले उन्हें बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना, और अगर एक बार उस हिंदू लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया तो वो अपने आप मुसलमान बन जाती है, और यही है जिहाद अल अकबर। ये लोग आगे ये भी लिखते हैं कि अब उनका मकसद हिंदू महिलाओं को सिर्फ इस्लाम धर्म कबूल करवाना नहीं है, उनका मकसद है उन्हें अंदर से मुसलमान बनाना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि उनके हिंदू देवी देवताओं का कोई वजूद नहीं। हमें कुछ ऑडियो क्लिप भी मिले हैं जिन्हें सुनने पर यह पता चलता है कि इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं और ये खुलकर कह रहे हैं कि इनका मकसद हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठाना है कि उनका भगवान कुछ नहीं। सुनिए।
1: अरे नस्ल इसी काबल है, इनको जितनी गालियां दो, जितना इनको इनके भगवान के ऊपर इनसे, ठीक है, इनको अपने पाँव में बिठाओ, ये इसी काबल है, इनको जेनों में ये चीज बिठा दो कि मुस्लिम सुप्रीम है बस। नहीं मेरी जान, हम बड़े अरसे से ये कर रहे हैं, हमारा आज का काम नहीं है। ये 92 में पाकिस्तान में जब इंटरनेट नया नया आया था, कंप्यूटर का हम उस दौर के पड़े हुए हैं, और हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही है। लड़कियाँ मकसद दोस्तों, तो लड़कियाँ इतनी मिलती हैं ज़िंदगी में कि आपकी भूल है, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त हमें लड़कियाँ भी अगर चाहिए तो अपने तरीके से चाहिए और ख़ास मकसद के लिए चाहिए। अपना मिशन यही है, ठीक है ना, के जहन में ये चीज़ बिठा दो कि इनका भगवान कुछ नहीं, और हिंदू लड़कियाँ जितनी भी मिलें, ठीक है, ख़ासकर मैरिड लेडीज स्पेशली, उनका मंगलसूत्र और उनका मतलब है माथे का सिंदूर सामने नज़र आना चाहिए, और उनसे धार्मिक करवाओ वीडियो कॉल पे, वो अपने मुंह से बोल के मुसलमान को भगवान बोले, वो डाटा चाहिए, वो अगर आपको मतलब है इंटरफेथ का डाटा मिले ना हिंदू मुस्लिम का, तो वो चाहिए।
0: कोटा एक ऐसा शहर है जहां हर साल अधिकतम 2.5 लाख बच्चे नीट जेई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, और अगर इस कोटा शहर को लेकर यह आरोप लग रहा है कि वहां पाकिस्तान के जरिए धर्मांतरण और हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें बेचने का खेल चल रहा था, तो यह बहुत खतरनाक बात है। हालांकि पुलिस कह रही है कि वो इन आरोपों की जांच कर रही है और अभी धर्म परिवर्तन और पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए।
2: मनीष शर्मा जो विज्ञान ग्राम रहता है, ये टेलीग्राम और उन चैनलों से जुड़ा हुआ था, उन चैनलों में एंट्री के लिए इसने अपना फेक नाम रख रखा था, उस फेक नाम से चैनलों से जुड़ा हुआ था,
3: मोइन खान था।
2: हाँ, फेक नाम उसने मोइन खान रखा हुआ था और उसी के अनुसार वो उसमें वीडियो फुटेज वगैरह देख रहा था। उसमें से कुछ वीडियो फुटेज इसने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी थी, उसी के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया, जो अभी जेल में।
3: तो फिर नाम तो मोइन खान रख लिया था सर, मुस्लिम नाम रखा।
2: अब वो उसने चैनल्स पर काम करने लिए रखा, तो बाकी और रिकॉर्ड में सारा उसका नाम आज भी वही है जो हिंदू धर्म का नाम।
0: अब जब भी हमारे देश में लव जिहाद जैसा कोई मामला उठता है तो एक वर्ग जांच से पहले ही उसे खारिज कर देता है। उदाहरण के लिए केरलम में ऐसे मामलों पर खूब राजनीति हुई है और जब वहां लेफ्ट की सरकार थी तब भी वाम मोर्चे से जुड़े नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बताते थे। लेकिन इस दोहरे मापदंड पर अक्टूबर 2025 में तब गंभीर सवाल उठे जब कासरगोड में एक 35 साल की महिला ने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पिता ने घर में बंधक बनाकर रखा है और इसका कारण यह है कि वो राशिद नाम के एक लड़के से शादी करना चाहती है। जिस पिता पर यह आरोप लगे वो कोई और नहीं बल्कि सीपीएम के नेता पीवी भास्करन थे। बाद में उनकी तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया और यह मामला अदालत भी पहुंचा। लेकिन लोगों ने यह सवाल उठाए कि जब आम लोगों की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें प्रोपेगेंडा कहा जाता है, लेकिन जब नेताओं के घर में कोई ऐसा मामला होता है तो वो दोहरे मापदंड अपनाते हैं। खैर, ये मामला उस वक्त अलग अलग दावों के कारण काफी उलझा, लेकिन ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि कोटा में जिस तरह की साजिश के आरोप लग रहे हैं वैसे ही मामलों से इंग्लैंड भी जूझ रहा है। हाल ही में ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लो की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पिछले कई दशकों में करीब 2.5 लाख लड़कियां ऐसे अपराधों का शिकार हुई जिनमें उन्हें प्यार में फंसाकर उनका यौन शोषण हुआ और उन्हें उनके धर्म के प्रति कई बार बरगलाया गया। इंग्लैंड में ऐसे अपराधों के पीछे ग्रूमिंग गैंग को माना जाता है जिससे जुड़े लोग पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उन्हें प्यार, सुरक्षा और अपनापन महसूस कराते हैं, फिर शराब, सिगरेट या नशीले पदार्थों की आदत डालते हैं और बाद में उन्हें घरों, होटलों, फ्लैट्स या अन्य जगहों पर ले जाकर उनका यौन शोषण करते हैं और कई मामलों में वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है, जैसा कि कोटा के इस मामले में आरोप लग रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड में भी इन ग्रूमिंग गैंग्स के पीछे पाकिस्तानी मूल के लोग माने जाते हैं। यहां यह भी देखना होगा कि हमारे देश में ऐसे मामलों को लेकर राजनीति ज्यादा होती है और कानूनी गंभीरता कम दिखती है, जबकि ब्रिटेन में आज ही इस तरह के ग्रूमिंग गैंग के मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया गया है जो ये पता लगाएगा कि अब तक कितनी नाबालिग श्वेत लड़कियां इसका शिकार हुई हैं और कितनी लड़कियों को उनके धर्म से नफरत कराने की कोशिश की गई। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ नाम बताना चाहते हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत, इंदौर के राजा रघुवंशी, औरैया के दिलीप यादव, श्रीगंगानगर के आशीष कुमार, धार के देवकरण पुरोहित और अब पुणे के केतन अग्रवाल, ये वो कुछ नाम हैं जो आज हमारे बीच जिंदा हो सकते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि इनकी मंगेतर या इनकी पत्नियां किसी और से शादी करना चाहती थीं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ऐसी कहानियां हैं, आप इंटरनेट पर जाकर ढूंढेंगे तो आपको हर शहर में ऐसे कई मामले मिल जाएंगे जहां लड़कियों ने अपने माता पिता को ना कहने से बेहतर उन लड़कों की को जान से मारना आसान समझा जिनका कोई कसूर नहीं था। इन्हें तो यह तक नहीं पता था कि जिन लड़कियों से इनकी शादी हो रही है या शादी हो चुकी है वो किसी और को पसंद करती है। हमारे देश में इन खबरों का अलग अलग पहलुओं से विश्लेषण हो रहा है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन घटनाओं के कारण आने वाले वक्त में पुरुष शादी करने से डरने लगेंगे और ये शायद सच भी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है आज उसे भी समझने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि जेन जी युवाओं के रिश्ते इतने लहूलुहान क्यों हैं। उदाहरण के लिए पुणे की इस घटना में 26 साल का केतन अग्रवाल, 20 साल की सिया गोयल और 22 साल का चेतन चौधरी, तीनों जेन जी पीढ़ी के युवा थे। सिया चाहती तो वो अपने माता पिता को कह सकती थी कि उसे केतन अग्रवाल से नहीं बल्कि चेतन चौधरी से शादी करनी है, लेकिन उसने अपने माता पिता से इस शादी को ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये भी तब हुआ जब इस रिश्ते की पहल सिया के परिवार ने खुद की थी। सिया का परिवार और केतन का परिवार दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते थे। क्योंकि दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए सिया के परिवार ने खुद यह प्रस्ताव भेजा कि वो अपनी बेटी की शादी केतन से कराना चाहते हैं। केतन ने अमेरिका के बोस्टन से एमबीए की पढ़ाई की थी और एमबीए की पढ़ाई के बाद वो अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ गया था, जहां उसे डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ का पद मिला था। केतन के परिवार ने यही सोचा कि सिया का परिवार इन्हीं सारी बातों से प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराना चाहता है। और यह भी तब हो रहा था जब सिया 20 साल की थी, केतन 26 साल का, और दोनों की उम्र में 6 साल का अंतर था। केतन ने एक बार कहा भी था कि सिया का परिवार उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों करा रहा है, लेकिन उस वक्त यह बात आई गई होगी और इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको यही लगा कि केतन जैसा लड़का मिलना मुश्किल है, इसीलिए सिया की इतनी जल्दी शादी की जा रही है। लेकिन हकीकत यह थी कि सिया किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी और वो लड़का 22 साल का चेतन चौधरी था। दोनों की मुलाकात पिछले साल दीपावली के मौके पर हुई थी और चेतन उसी इलाके में रहता था जहां सिया का परिवार।

एक पेड़ का सहारा लेकर बच गया। जब उसने सिया से यह पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा कि वो उसे सांप से बचा रही थी। यह सरासर झूठ था, लेकिन केतन ने सिया की बात पर विश्वास कर लिया और दोनों उस दिन वापस अपने घर लौट आए। अब 19 जून को सिया का जन्मदिन था और इससे कुछ दिन पहले उन्हें प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाना था, लेकिन आरोप है कि सिया ने केतन का पासपोर्ट छुपा दिया और केतन से कहा कि वो उसके साथ दोबारा से लोहागढ़ के लिए जाना चाहती है। केतन इस बार वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सिया ने उसकी माँ से, बहन से, सबसे फोन पर बात की और ये कहा कि वो केतन के साथ इस किले में जाकर ये देखना चाहती है कि क्या उनका प्री वेडिंग शूट इस किले में नहीं हो सकता। इसके बाद परिवार ने केतन से कहा कि वो सिया के साथ 18 जून को इस किले में दोबारा चले जाए, और क्योंकि केतन को ट्रेकिंग का शौक था इसीलिए वो फिर वहां वापस चला गया। इस बार सिया ने पूरी साजिश के तहत अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को किले पर आने के लिए कहा। ट्रेकिंग के दौरान किले में 400 फीट की ऊंचाई से केतन को धक्का दे दिया। अफसोस की बात यह है कि जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया वो जगह केतन ने ही सिया को दिखाई थी। शुरुआत में सबको यही लगा कि यह एक हादसा है। सिया ने भी चीख चीख वहां यही बताया कि केतन का पैर फिसलने से वो खाई में गिरा। यही नहीं, पुलिस भी इस मामले को एक हादसा मानकर चल रही थी। लेकिन घटना के बाद जब सिया केतन के घर आई, केतन की बहन ने उससे पूछा कि उसका भाई गिरा कैसे था, उस वक्त हुआ क्या था, तो सिया एक भी सही जवाब नहीं दे पाई। वो घबरा कर सवालों से बचने लगी। इससे केतन की बहन को उस पर शक हुआ। यह बात उसने अपने पिता को बताई। बाद में पूरा परिवार पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस को यह बताया कि उन्हें यह मामला हादसे का नहीं लग रहा है, हत्या का लग रहा है। जब पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में सिया और केतन के पीछे एक लड़का जाता हुआ दिखा। गर्मी का मौसम था लेकिन उसने हुडी पहनी हुई थी, मुंह छुपाया हुआ था। पुलिस का शक गहराया, इतनी गर्मी में यह लड़का हुडी पहनकर सिया और केतन के पीछे क्यों जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सिया के फोन की जांच की, जिसमें यह पता चला कि सिया ने पिछले 6 महीने में एक ही फोन नंबर पर 2004 बार बात की थी। और जब इस नंबर को खंगाला गया तो यह नंबर था चेतन चौधरी का। पुलिस को यह भी पता चला कि चेतन घटना वाले दिन अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर कहीं गया था, किसी और का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर गया था। और जब उस मोबाइल फोन की लोकेशन देखी गई तो वो निकली लोहागढ़ फोर्ट की। इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर सिया को केतन से शादी ही नहीं करनी थी तो उसने अपने परिवार को इस शादी के लिए ना क्यों नहीं कहा। ना कहना आसान था, इससे उसके माता पिता, केतन सब नाराज जरूर होते, लेकिन केतन की जान तो नहीं जाती। लेकिन सिया को केतन को मारना ज्यादा आसान लगा और यह पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 2025, जब 28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत को अपने बॉयफ्रेंड की मदद से मारा, उसे मारकर नीले ड्रम में चुनवा दिया, तब मुस्कान भी अपने परिवार को इस शादी के लिए ना कह सकती थी। शायद शादी तोड़ने की बात कह सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। इसके बाद इंदौर के मामले में 25 साल की सोनम रघुवंशी ने जब हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी को मारा, तब वो भी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उसने भी अपने माता पिता को ना कहने के बजाय शादी करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पिता को मारना, पति को मारना आसान समझा। और इस तरह के मामले यही खत्म नहीं होते। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है, जहां लड़कियां अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर लेती हैं, फिर अपने पति को जान से मार देती हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सारे मामलों में आरोपी लड़कियां या उनके बॉयफ्रेंड जेंजी पीढ़ी के युवा थे। मेरठ के नीले ड्रम वाले मामले में मुस्कान रस्तोगी 28 साल की थी, उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला 27 साल का था। इंदौर के मामले में सोनम रघुवंशी 25 साल की थी, बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा 20 साल का था, पति राजा रघुवंशी 29 साल का। औरैया के मामले में भी शादी के बाद अपने पति की हत्या करने वाली प्रगति यादव 22 साल की थी और एक जेंजी युवा थी। इसी साल श्रीगंगानगर में शादी के 3 महीने बाद जब एक महिला ने अपने पति की हत्या की, तो उस मामले में भी लड़की
केवल 23 साल की थी और

0: के मामले में अपने पति को मारने वाली प्रियंका नाम की लड़की 25 साल की थी और अब पुणे के इस मामले में सिया गोयल 20 साल की है और वो भी जेन जी। यहां हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है और जो जेन जी लड़कियां हैं उन्हें अपने मंगेतर और पार्टनर की हत्या करने से डर नहीं लगता और ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जेन जी पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने बचपन से ही स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिश्तों के बीच जीवन बिताया है। इसका असर ये हुआ कि जेन जी युवाओं की भावनाएं बहुत तेजी से बनती हैं, बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। उनके रिश्ते ज्यादा अस्थिर होते हैं ऐसा कहा जाता है और जेन जी युवाओं के रिश्तों में ऑनलाइन मान्यता की जरूरत हद से ज्यादा दिखती है। यानी ये स्मार्टफोन वाली वो पीढ़ी है जो ये सोचने लगी है कि रिश्तों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जबकि पहले भी ऐसे मामले होते थे जिनके लेकिन तब उस पीढ़ी की लड़कियां हत्या जैसे कदम नहीं उठाती थी। लेकिन अब यह हो रहा है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले 5 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 87 पतियों को उनकी पत्नी ने शादी के बाद जान से मार दिया। इनमें 2020 में 12, 2021 में 15, 2022 में 18, 2023 में 20 और 2024 में 22 पतियों की उनकी पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड साथ मिलकर हत्या कर देते हैं। और इनमें भी ज्यादातर मामलों में हत्या करने वाली लड़कियां जेन जी की बताई गई, हत्या में उनका साथ देने वाले उनके बॉयफ्रेंड भी उसी एज ग्रुप के थे। आप पुणे के इस मामले में केतन के पिता को सुनिए जो ये कह रहे हैं कि अगर सिया उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी तो वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग क्यों नहीं गई, उसने हत्या का रास्ता ही क्यों चुना। सुनिए,
1: इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है, इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए।
0: भारत एक ऐसा देश है जहां रिश्तों को इंसान की सबसे बड़ी जमा पूंजी माना गया है और ये कहा जाता है कि अगर रिश्ते निभाने के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एनसीआरबी के साल 2024 के आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश में 13% हत्याएं रिश्तों के कारण ही हो रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1411 हत्याएं अवैध संबंधों के कारण हुई, 1391 हत्याएं प्रेम संबंधों के कारण हुई, जबकि 36 हत्याओं के पीछे हॉरर किलिंग को कारण माना गया। यानी जहां पहले प्रेम संबंध होने पर परिवार अपनी बेटियों को मार देते थे, वहीं अब कुछ मामलों में लड़कियां अपने माता पिता द्वारा शादी कराने का विरोध नहीं करती बल्कि खुद जिस लड़के से शादी हो रही होती है उसे ही मार देती। जेन जी पीढ़ी की युवा लड़कियां इसीलिए भी अपने माता पिता को शादी के लिए शायद ना नहीं कहती क्योंकि उन्हें अपने परिवार की इज्जत का डर होता है। ये समझ नहीं आता कि वो समाज के डर से कैसे बाहर निकले। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो लोग उनके माता पिता पर सवाल उठाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा खराब होगी। ये पहले भी होता था लेकिन अब मौजूदा पीढ़ी के लिए समाज के डर को झेलना शायद मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरा ये कि जेन जी लड़कियों को ये भी लग सकता है कि अगर उन्होंने ना कहा या भागकर शादी की तो उन्हें उनका परिवार हमेशा के लिए छोड़ देगा, जबकि ये युवा ऐसा नहीं चाहते। ये डर पहले भी होता था लेकिन उस जमाने में माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता अलग होता था, जबकि आज के दौर में जेन जी युवा माता पिता के साथ स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं। और तीसरा, मौजूदा पीढ़ी की लड़कियों को ये भी डर होता है कि अगर उन्होंने माता पिता के फैसले का विरोध किया तो उनका करियर खराब हो जाएगा, उन्हें घर में रहने के लिए कहा जाएगा। IHDS का सर्वे बताता है कि हमारे देश में 35% लड़कियों की शादी में उनकी सहमति शामिल नहीं थी, जबकि 37% मामलों में लड़कियों की सहमति शामिल थी। लेकिन वो सहमति भी तब ली गई जब माता पिता शादी के लिए लड़का चुन चुके थे। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 70% से ज्यादा शादियों में बड़ा फैसला माता पिता का ही माना जाता है, जिससे लड़कियों के सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो विद्रोह करें या इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढें। 2018 में भी इस पर 160,000 परिवारों का सर्वे हुआ था। इसमें यह पता चला था कि भारत में 93% शादियां अरेंज्ड मैरिज होती हैं, जिसमें माता पिता का फैसला बड़ा होता है, और केवल 3% लोगों ने माना कि उनकी लव मैरिज हुई, जबकि 2% लोगों ने अपनी शादी को लव कम अरेंज मैरिज बताया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लड़कियां बता भी दें कि वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो परिवार इसके लिए तैयार नहीं होते। इसका एक कारण हमारे देश की जाति व्यवस्था भी है, जिसमें लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादियां दूसरी जातियों और धर्मों के लोगों में न हो। भारत के लिहाज से यह मुद्दा इसलिए भी संजीदा है क्योंकि हमारे देश में शादी को जरूरी माना गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हमारे देश में ज्यादातर लोगों की शादी 45 साल से पहले हो जाती है। भारत में केवल 1% महिलाएं और 3% पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी 45 से 49 साल के बीच हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जब एक बार शादी हो जाती है तो समाज मानता है कि वो शादी आजीवन चलनी चाहिए, और इसी वजह से हमारे देश में 15 से 49 साल के पुरुषों के बीच तलाक दर केवल 0.3% और महिलाओं में भी ये तलाक दर ऐसी है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि आजकल के युवा जब ऐसा सोचने लगते हैं कि वो उनके विरुद्ध हुई शादी के रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो गलत फैसले लेते हैं और इसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। और यहां यह भी देखना होगा कि ऐसे मामलों में जो पुरुष अपनी जान से जाते हैं वो पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। मेरठ के मामले में सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में था, लेकिन मुस्कान रस्तोगी ने एक बेरोजगार लड़के के लिए उसे जान से मार दिया। इंदौर के मामले में राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, लेकिन सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसकी जान ली। श्रीगंगानगर में आशीष कुमार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था और उसने जियोलॉजी में MSc की पढ़ाई की थी, लेकिन यहां भी अंजलि नाम की लड़की ने एक बेरोजगार लड़के के लिए उसे जान से मार दिया। और पुणे के इस मामले में भी केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट कंपनी का डायरेक्टर था, लेकिन सिया गोयल ने पुणे में ड्राई फ्रूट की दुकान चलाने वाले चेतन चौधरी के लिए केतन की हत्या कर दी। यानी इन सभी मामलों में लड़कियों की पहली प्राथमिकता थी इस रिश्ते से बाहर निकलना, जिसके लिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुना, और आज इसे ही हमारे समाज को और हमारी सरकारों को समझने की जरूरत है। जेंजी युवाओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वो रिश्ते से बाहर निकलने के लिए हत्या जैसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब वो इसी दौरान सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल की तरह दिखना चाहते हैं, और ये पहले के मामलों में भी दिखा। और पुणे के इस मामले में भी सिया और केतन की सोशल मीडिया रील्स को देखकर कहीं से नहीं लगता कि सिया इस शादी से नाखुश थी और वो केतन को मारने वाली थी।

0: आज जब कई लड़कियां अपने मंगेतर और पतियों की अपने बॉयफ्रेंड के लिए हत्या कर रही हैं, तब ये समझना भी जरूरी है कि भारत ऐसे मामले में दूसरे देशों से क्या सीख सकता है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को सरकार के पास जाकर ये बताना होता है कि इस शादी में उनकी सहमति शामिल है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि जबरन शादी, धोखाधड़ी, फर्जी विवाह को रोका जा सके। जैसे ब्रिटेन में शादी या सिविल पार्टनरशिप से पहले दोनों पक्षों को स्थानीय रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक कानूनी घोषणा यानी गिविंग नोटिस देना होता है कि वो शादी करना चाहते हैं। यह सूचना शादी से कम 29 दिन पहले देनी होती है। इसी तरह आयरलैंड में शादी करने वाले जोड़े को कम से कम 3 महीने पहले सरकारी रजिस्ट्रार को सूचना देनी होती है, जबकि सिंगापुर में शादी के लिए आवेदन की तारीख से 6 महीने पहले तक किया जा सकता है, लेकिन इसे शादी से कम 21 दिन पहले पूरा करना अनिवार्य है। नेदरलैंड्स में शादी से पहले दोनों पक्षों को अपनी शादी की मंशा यानी सरकार के पास दर्ज करानी होती है। ये प्रक्रिया शादी से कम 14 दिन पहले पूरी करनी होती है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो कि शादी जबरदस्ती नहीं कराई जा रही है, शादी में दोनों पक्षों की सहमति शामिल है, अपनी इच्छा से शादी कर रहे हैं, किसी पर दबाव नहीं है। शादी जो है वो कानूनी रूप से वैध है। हमारे देश में जिस तरह पुरुष शादियों के बाद जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए देश के हिसाब से इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाए जा सकते? आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि रफाल पर पाकिस्तान का सारा प्रोपेगेंडा आखिरकार फेल हो गया है। उसकी पीआर टीम अब आतंकवादियों की तरह अंडरग्राउंड हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सबसे बड़ा दावा यही किया था कि उसने भारत के कई रफाल लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। पाकिस्तानी सेना, वहां के टीवी चैनल, रक्षा विशेषज्ञ, सोशल मीडिया अकाउंट्स लगातार ये दावा कर रहे थे कि भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ है। किसी ने कहा 3 रफाल गिरा दिए, किसी ने इससे भी ज्यादा संख्या बताई। यहां तक कि पाकिस्तान ने ये तक दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना की एक महिला पायलट को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन समय के साथ पाकिस्तान के ये सभी दावे एक एक करके गलत साबित होते गए। अब भारतीय वायुसेना के एक नए आधिकारिक दस्तावेज ने पाकिस्तान के इसी दावे को एक बार फिर पूरी तरह खारिज कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 15 जून 2026 को एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें फ्रांस की कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट इंजन से रफाल बेड़े के लिए तकनीकी सहायता और रखरखाव सहयोग मांगा गया है। पहली नजर में यह एक सामान्य तकनीकी दस्तावेज लग सकता है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारतीय वायुसेना के सभी 36 रफाल विमानों का उल्लेख किया गया, यानी भारतीय वायुसेना खुद अपने आधिकारिक दस्तावेज में यह कह रही है कि उसके पास अभी भी 36 के 36 रफाल विमान मौजूद हैं और उन सभी के संचालन के लिए रखरखाव सहायता की आवश्यकता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई रफाल नष्ट हुआ होता जैसा पाकिस्तान दावा कर रहा था, तो सबसे पहले उसका असर ऐसे आधिकारिक दस्तावेजों में दिखाई देता, क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान के रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, इंजन सपोर्ट और तकनीकी सहायता की गणना वास्तविक विमानों की संख्या के आधार पर की जाती है। लेकिन इस दस्तावेज में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि रफाल विमानों की संख्या कम हुई है। इसके उलट पूरा गणित 36 विमानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दस्तावेज के अनुसार भारतीय वायुसेना अगले 5 महीनों के लिए सभी 36 रफाल विमानों के संचालन और रखरखाव की योजना बना रही है। इसमें यह भी बताया गया है कि हर रफाल विमान औसतन साल में 150 घंटे उड़ान भरेगा और उसी हिसाब से पूरे बेड़े की उड़ान और रखरखाव आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। यानी भारतीय वायुसेना के रिकॉर्ड में आज भी रफाल विमानों की संख्या वही है जो फ्रांस के साथ 2016 में हुए समझौते के तहत भारत को मिली थी, यानी 36 रफाल विमान। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह समझनी चाहिए कि किसी भी देश की वायुसेना अरबों रुपए के लड़ाकू विमानों के लिए रखरखाव और तकनीकी सहायता का अनुबंध अनुमान के आधार पर नहीं करती। ऐसे अनुबंध वास्तविक उपलब्ध विमानों की संख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। इसीलिए जब भारतीय वायुसेना आधिकारिक रूप से 36 रफाल विमानों के लिए सहायता मांग रही है, तो यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि उसके बेड़े में कोई कमी नहीं आई है। और पाकिस्तान का वो दावा जिसमें रफाल विमानों को मार गिराने की बात वो करता था, अब एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान ने केवल रफाल विमानों को मार गिराने का दावा नहीं किया, बल्कि भारतीय महिला पायलट को पकड़ने जैसी बातें भी कही थी, जिनका बाद में कोई सबूत सामने नहीं आया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी पाकिस्तान के ऐसे दावों को मनोहर कहानियां कहा था। और आज इस नए दस्तावेज के सामने आने के बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि अगर पाकिस्तान ने वास्तव में भारतीय रफाल विमानों को क्षति पहुंचाई, मान गिराया, तो भारतीय वायुसेना आज भी अपने सभी 36 रफाल विमानों के लिए रख रखाव और तकनीकी सहायता क्यों ले रही है? और अगर भारतीय वायुसेना के पास आज भी 36 के 36 रफाल मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान के दावों का आधार क्या था? अब बड़ा सवाल तो हमारे अपने नेताओं को लेकर भी है, क्योंकि उस वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल विमानों को मार गिराया है, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि क्या मोदी सरकार बताएगी कि 5 जहाजों के नष्ट होने का सच क्या है। आज हम अपने देश के इन विपक्षी नेताओं से पूछते हैं कि क्या वो पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव में फंसे, और अगर फंसे तो क्या अब वो इस पर दिए गए अपने बयानों को वापस लेंगे। आजकल पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट कार मालिकों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। उनके मोबाइल फोन पर सैकड़ों रील्स आ रही हैं, जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंजन को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। आपने भी ऐसी कई रील्स देखी होंगी जिनमें दावा किया गया कि गाड़ी में इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाने पर पेट्रोल टैंक में चींटियां लग गईं। कई ने तो व्यंग के तौर पर अपनी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में गन्ने का रस डलवाने की एक्टिंग की। इस तरह के व्यंगात्मक वीडियोज का सार यही है कि लोग इथेनॉल को लेकर संशय में हैं। उन्हें लगता है कि जब भारी भरकम टैक्स चुकाकर वो गाड़ी और पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो उसमें किसी ऐसी चीज की मिलावट क्यों हो रही है जिससे गाड़ी के खराब होने की आशंका हो। केंद्र सरकार ने लोगों के इस संशय को दूर किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर किए जा रहे दावों को भ्रामक बताया है। मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे इंजन खराब होने जैसी शिकायतें नहीं आई। इसके अलावा गन्ने का रस पेट्रोल टैंक में डालने या टैंक में चींटियां लगने जैसे दावों को भी गलत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फ्लेक्सी फ्यूल को लेकर गलत दावों पर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। उनका कहना है कि फ्यूल स्तर का इथेनॉल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के बाद ही पेट्रोल में मिलाया जाता है। इथेनॉल की मिलावट इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है, और इसके लिए उसे भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए की बचत की है। इसी वजह से अब सरकार पेट्रोल में 85% तक इथेनॉल मिलाकर बेचने की तैयारी में है, और अब तो E100 यानी 100% इथेनॉल वाला फ्यूल बेचने की तैयारी हो रही है। इथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन पर कितना फर्क पड़ता है यह जांच का विषय है, लेकिन इथेनॉल की मात्रा को 85% या 100% करने का असर आपके पीने के पानी की जरूरत पर पड़ेगा, यह तय है। अब हम आपको बताते हैं असर क्यों पड़ेगा। इथेनॉल दो तरह के होते हैं, बायो इथेनॉल और सिंथेटिक इथेनॉल। बायो इथेनॉल कृषि उत्पादों से बनता है, सिंथेटिक इथेनॉल पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोल में मिलाने के लिए सरकार बायो इथेनॉल का इस्तेमाल करती है क्योंकि इससे सरकार का वो उद्देश्य पूरा होता है जिसमें वो कच्चे तेल के आयात में कमी लाना चाहते हैं। फ्यूल लेवल का बायो इथेनॉल बनाने में बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है जो खेती के चरण से ही शुरू हो जाता है। आपके पेट्रोल में जो इथेनॉल है वो मुख्य रूप से गन्ने के रस, चावल और मक्का से बनाया जाता है। अगर मान लें कि चावल से इथेनॉल बनाया गया है, तो 1 लीटर इथेनॉल के लिए करीब 3 किलो चावल का इस्तेमाल होगा, और 3 किलो चावल के लिए करीब 10,790 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। चावल से इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री में 1 लीटर इथेनॉल के लिए अलग से 5 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, और यह आमतौर पर पीने का पानी होता है। गन्ने और मक्के की फसल को भी भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। 1 लीटर इथेनॉल के लिए गन्ने को 3,630 लीटर पानी और मक्के को 4,670 लीटर पानी की जरूरत होगी, और इसके अलावा प्रति लीटर इथेनॉल के लिए फैक्ट्रियों में अलग से 5 से 6 लीटर पानी खर्च होता है। यानी इथेनॉल चाहिए तो लाखों लीटर पीने के पानी की बलि देनी होगी। भारत कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ की 62% खेती भूजल से होती है। इसके अलावा मानसून और नहरों के जल पर भी हमारी निर्भरता है, यानी खेती और पीने के पानी के लिए नदियों, नहरों या भूजल पर ही हम निर्भर हैं। जिस तरह से इथेनॉल को बढ़ावा मिल रहा है, उससे कहीं उन्हीं कृषि उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा जिससे इथेनॉल बनता है। देश के ज्यादा से ज्यादा किसान चावल, गन्ना, मक्के की फसल पर ध्यान देंगे जिससे पीने के पानी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। ऐसा चलता रहा तो इथेनॉल की जरूरत देश के कई शहरों को डे जीरो की ओर ले जाएंगी। डे जीरो यानी एक ऐसी स्थिति जब शहरों में पीने का पानी न के बराबर होगा और इस समस्या को खत्म करने के उपाय भी नाकाफी हो जाएंगे। हमारे देश में पीने के पानी की किल्लत पहले से ही है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है और भारतीयों के पास दुनिया का केवल 4% पेयजल स्रोत है। भारत के करीब 60 करोड़ लोग पीने के पानी की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। 2021 में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 14,86,000 लीटर थी, जो 2050 तक घटकर 11,40,000 लीटर हो सकती है, जबकि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 17,00,000 लीटर से कम होने को जल संकट की स्थिति माना जाता है। देश के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई में पानी की किल्लत आज का सच है। सोचिए, पहले से ही खेती और पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे भारतीयों को अब अपने पानी का हिस्सा इथेनॉल के लिए भी देना होगा और इससे पानी का संकट पहले से कहीं ज्यादा तेजी से गहराने लग सकता है। आपको यह बताना जरूरी है कि खेती और इथेनॉल बनाने के लिए समुद्री जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फैक्ट्रियों में भी इथेनॉल के लिए समुद्री जल का इस्तेमाल डीसैलिनेशन के बाद किया जा सकता है, लेकिन यह महंगा पड़ता है। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है? अगर हां तो यह खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल ने पिछले 12 महीनों में 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह कंपनी घाटे में नहीं थी। जबरदस्त मुनाफा होने के बाद भी इतनी बड़ी छंटनी हुई। ओरेकल ने अपनी एनुअल फाइनेंशियल रेगुलेटरी फाइलिंग में यह स्वीकार किया कि अपने ऑप्शंस में एआई को शामिल करने से इंसानों की जरूरत कम हुई। ओरेकल इस खेल में अकेला नहीं है। टेक इंडस्ट्री का हर बड़ा नाम एआई की आड़ में या फिर एआई में निवेश करने के लिए अपनी वर्कफोर्स को छोटा कर रहा है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपनी एआई योजनाओं को फंड करने के लिए 8,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने लाखों करोड़ रुपए का निवेश एआई में किया है और इस लागत को बैलेंस करने के लिए हजारों कर्मचारियों की छटनी की है। इसकी वजह यह है कि कंपनी के भीतर जो काम पहले सैकड़ों लोग मिलकर करते थे, अब वो एआई टूल्स चुटकियों में कर रहे हैं। दूसरा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स बनाने के लिए कंपनी को भारी कैश की जरूरत है। इस छंटनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एआई सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि नौकरियों को निगलने वाला सच बन चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और यहां तक कि कॉन्टेंट राइटिंग और एचआर जैसे सेक्टर्स में भारी तबाही आ सकती है। मर्सर्स की ताजा ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 99% टेक सीईओज अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि एआई के आने से उनके खर्चों में कमी आएगी और वो मैन पावर कम करेंगे। इस रिपोर्ट का एक डरावना पहलू ये है कि सबसे ज्यादा खतरा फ्रेशर या जूनियर एम्प्लॉयज पर है। सर्वे में शामिल 41% मैनेजर्स ने साफ साफ कहा है कि अगर उन्हें छंटनी करनी पड़ी तो वो सबसे पहले एंट्री लेवल के कर्मचारियों को नौकरी से निकालेंगे। इसकी वजह बहुत साफ है। जूनियर लेवल के तमाम काम जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, रिपोर्ट बनाना या शुरुआती रिसर्च, उन्हें आज का एडवांस्ड एआई इंसानों से कई गुना तेजी से और बिना किसी सैलरी के कर रहा है। साफ है कि आने वाला वक्त सिर्फ डिग्री और अनुभव का नहीं, बल्कि इस बात का है कि आप एआई के साथ कितनी तेजी से खुद को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई भी बड़ी कंपनी आपको रिप्लेस करने में एक मिनट का भी वक्त नहीं लगाएगी। हालांकि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इन कंपनियों पर दूसरी वजहों को छुपाने के लिए एआई वॉशिंग यानी एआई का बहाना बनाकर छंटनी का आरोप लगा रहे हैं। यह भी जानना जरूरी है कि सिर्फ 33% कंपनियों को यह पता है कि इंसान और एआई से मिलकर काम कैसे कराना है। तमाम कंपनियां बिना पूरी तैयारी के अंधाधुंध एआई अपना रही हैं। रिसर्च बताती है कि जिन कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाल कर केवल एआई पर भरोसा किया, उन सब का मुनाफा या प्रोडक्टिविटी बढ़ी हो यह जरूरी नहीं है। फायदा तब ज्यादा होता है जब एआई का इस्तेमाल इंसानों को हटाने के बजाय उनकी मदद के लिए किया जाए। फिलहाल एआई से मुकाबला करने के बजाय एआई का सही इस्तेमाल सीखना नौकरी बचाने का सही तरीका है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। आगे देखिए दस्तक सईद अंसारी के साथ। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
3: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
4: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
3: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
6: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
7: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
10: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
11: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
12: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
13: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
12: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
14: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
15: कूल फैंस, जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
14: कूल फैंस, स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
16: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से।
17: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
1: विमल बोलो जुबां केसरी।
17: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
18: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
1: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: असंख्य आराध्यों की आस्था का एक नाम अवधपुरी के राम। इस राम नाम के धन से धनी भक्त उनके धाम में आज भी उमड़ पड़ते हैं। आज भी वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही आस, वही विश्वास। लेकिन सियासत को विश्वास नहीं है, सियासत का विश्वास हिल गया है जब से राम मंदिर के दान पेटी में चोर लगे। तब से उत्तर प्रदेश में विपक्ष चोर के नाम का शोर मचाए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चोर पकड़ने के लिए जांच बैठाई। हफ्ते भर में ताबड़तोड़ जांच पड़ताल, पूछताछ, तथ्य सबूत, दस्तावेज जुटाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच की फाइल मुख्यमंत्री योगी की टेबल तक भिजवा दी। लेकिन इस जांच में निकला क्या, किसी को पता नहीं। चोरी की रिपोर्ट है तो गोपनीय तो होगी, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि चोरों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा।
1: ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं, ये भी तो महमूद गजनवी के ही पद चल जाते हैं।
2: कहाँ हो चौकीदारों, तुम्हारे भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, बुरा दिख लो।
0: सियासी सवाल तो सियासी, अब राम भक्तों को भी शंका होने लगी कि बरसों की आस्था को साकार होते देख उन्होंने जो बेशकीमती दान किया वो भगवान राम के पूजन में इस्तेमाल हुए भी या फिर नहीं। कोई चांदी की काक भुशुंडी की मूर्ति दान देने का दावा करता है तो किसी को दान की गई 200 किलो की चांदी की ईंटों में भी धांधली की आशंका पैदा होती है। उधर कांग्रेस अलग आरोप लगा रही है कि अयोध्या से उज्जैन तक और भगवान राम से महाकाल तक बीजेपी के राज में जमीन घोटाले से लेकर चढ़ावा घोटाला तक हो रहा है। सियासी आरोप एक तरफ, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अंदर चोरी की खबर ने पूरी दुनिया में राम भक्तों के मन में मौजूद व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा दिया, जिसका निराकरण SIT की रिपोर्ट से नहीं, एक्शन टेकन रिपोर्ट से ही हो पाएगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, 20 भर्ती, अभी भी कई जिंदगियां मलबे में, सीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, मोर्चे पर सेना। पुणे की लड़की पर करोड़पति मंगेतर की हत्या करने का आरोप, साथी गिरफ्तार, आरोपी के पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ कोर्ट का किया दौरा। और ईरान के राष्ट्रपति पजिश्कियान ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा न्योता, खामनेई की अंतिम यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण, सूत्रों की खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खतरनाक स्टोरी जिसमें एक करोड़पति परिवार की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने करोड़पति मंगेतर का मर्डर कर दिया। यहां पर बड़ी बात यह है कि मंगेतर लड़की पर प्यार लुटाता रहा और लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतर के मर्डर की प्लानिंग करती रही, और मंगेतर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग की, मर्डर किया, विश्वास कीजिए पूरी कहानी सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आश्चर्य करेंगे कि लड़की ने ऐसा क्यों किया। तो आइए दिखाते हैं आपको, सिया तूने ये क्या किया।

0: 26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन डूबता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है और सिया जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया। अमेरिका के बेब्सन एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में एमएस यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरकर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन का मर्डर था। और केतन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने किया। सिया एक तरफ केतन से मिलती, दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड से। फिर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को मार डाला। लोहगढ़ के किले में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने केतन का मर्डर कर दिया।
1: मुझे डर भी नहीं लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन उस चीज में बहुत सपने में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा सपने में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे।
0: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
3: लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यही से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
0: फिर सिया की माँ केतन की माँ को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
2: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए, पहले मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही थी सिया, ऐसे क्यों कर रही है।
0: सिया और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेमी के मंगेतर के लिए अपने मंगेतर के हत्यारण बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 वर्ष की सिया के दिमाग में पनपी साजिश किसी पेशेवर हत्यारे को भी मात देती है। आखिर करोड़पति व्यापारी के परिवार से आने वाली सिया गोयल को हत्या का आइडिया कहां से मिला? कैसे अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर सिया ने इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया और केतन गोयल को मार डाला?

0: चले तेरे घोड़े में बिठाने को बिठाना पड़ा आरती पे, इससे ज्यादा क्या हुआ।
1: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
2: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
1: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक थी। अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची। पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
3: सर जिस दिन वो गिरा, सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते हुए कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहाँ जाने पर पता चला कि वो अकेली आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर पिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
1: हत्या को हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
4: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
1: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
3: बड़ी खुशी दिखाते थे साथ में, हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे। कुछ ऐसा दिखाया नहीं, वो सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
1: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी, दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी जिससे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
5: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमिजिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
6: सब कुछ सिया गोयल और सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के प्लान के हिसाब से हुआ। पहली नजर में पूरा केस हादसे में हुई मौत का लगा। केतन के घर वालों की तरफ से भी सिया गोयल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई थी। सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को पाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए केतन अग्रवाल को अपने से दूर कर दिया था। लेकिन शातिर से शातिर अपराधी भी साजिश का कोई ना कोई साक्ष्य सबूत अपने पीछे जरूर छोड़ जाता है। पुलिस फाइल में हादसे का मामला उस समय हत्या में बदल गया जब एक सीसीटीवी ने इस पूरी साजिश की गवाही दे दी।
1: सिया और उसके प्रेमी चेतन ने हत्या की पटकथा लिखी। दोनों की लव स्टोरी बीते एक साल से चल रही थी। सिया को पता था कि घर वाले लव मैरिज को मंजूरी नहीं देंगे, लिहाजा भागकर शादी करने से घर वालों की बदनामी होगी। ऐसे में जब घर वालों ने केतन के साथ शादी की बात कही तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। मंगेतर केतन के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर ली, लेकिन उसके दिमाग में केतन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग चल रही थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि सिया को एक फिल्म से केतन को रास्ते से हटाने का आइडिया मिल गया। सिया ने पूरा प्लान प्रेमी चेतन के साथ साझा किया। प्लान के तहत लोहगढ़ किले को चुना गया ताकि केतन को खाई में धक्का देकर मारा जा सके। तय हुआ कि कत्ल को सिया अकेले अंजाम देगी क्योंकि लोहगढ़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर प्रेमी चेतन भी मौजूद रहा तो साजिश से पर्दा उठ सकता है। लिहाजा प्लान के तहत 31 मई को सिया ने रेकी की और 14 जून को केतन को रास्ते से हटाने के लिए लोहगढ़ किले ले गई।
5: उसने खुद ने उसको धक्का मारा जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है।
1: 14 जून को केतन बच गया और सिया पर किसी को शक भी नहीं हुआ, साजिश नाकाम हो गई। यही वजह है कि सिया बेचैन हो गई। उसे लगने लगा कि भेद खुल सकता है, लिहाजा जल्द से जल्द केतन को रास्ते से हटाना होगा। यहीं से प्लान में सिया के प्रेमी चेतन की एंट्री हुई। तय हुआ कि 18 जून को सिया अपने मंगेतर के साथ एक बार फिर लोहगढ़ किले पर जाएगी ताकि दोनों मिलकर हत्या को अंजाम दे सकें। प्लान के तहत सिया अपने मंगेतर के साथ लोहगढ़ किले पर पहुंची और पीछे पीछे चेतन भी आया।
7: वो हमको ये बोला है कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं सर, ऊपर एक्सरसाइज करके हम तुरंत नीचे आएंगे सर।
8: तो आपने टिकट बिना उसे फिर छोड़ दिया वो?
7: हाँ, जो हम रिटर्न में टिकट लेंगे करके बोला था हमको।
8: वापस आते
7: हुए? हाँ, वापस से हम आपका टिकट लेंगे, हम अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं।
8: तो क्या वापस आते हुए रुका नहीं? रुका
7: जी नहीं, रुका नहीं, सीधा चले गए सर।
1: पहचान छिपाने के लिए चेतन ने टिकट नहीं खरीदा, और तो और चेहरे को मास्क और हुडी से ढक रखा था। सोचा था कि चेहरा छिपाकर वो हत्या की साजिश पर पर्दा डाल देगा, लेकिन चेतन की चालाकी ही उसके गुनाहों का सबसे बड़ा सुराग बन गई। दरअसल केतन की मौत के बाद सिया के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, लिहाजा केतन के घर वालों के दिमाग में कई सवाल उठे। जब पुलिस ने सवालों के जवाब तलाशने की शुरुआत की तो खौफनाक कत्ल की साजिश की परतें खुलती चली गई।
2: तो एक केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो

0: ये नंबर केतन का नहीं बल्कि चेतन का था। जैसे ही जांच टीम चेतन तक पहुंची, मंगेतर लवर और मर्डर की कहानी से पर्दा उठ गया।
1: सिया और केतन के आगे जाने के बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ।
0: पूछताछ के दौरान चेतन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मतलब यही है कि 33 डिग्री वाली गर्मी में चेतन की हुडी ने हत्या की साजिश से पर्दा उठा दिया। अगर हत्यारे ने ये गलती न की होती तो शायद ही कभी सिया की खौफनाक साजिश बेपर्दा होती।
2: केतन अग्रवाल की मौत से केतन का पूरा परिवार टूट गया है, सदमे में है। सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर जिस तरह से केतन अग्रवाल का मर्डर किया वो केतन अग्रवाल के परिवार को पूरी तरह से झकझोर देता है, क्योंकि केतन के परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिया गोयल उनके बेटे के साथ ऐसा करेगी।
0: लोहगढ़ किले में 31 मई को पहले रेकी, फिर 14 जून को केतन के मर्डर का रिहर्सल और फिर 18 जून को केतन का खाई में धक्का देकर मर्डर। सिया एक तरफ तो केतन और उसके परिवार के साथ घुलती मिलती रही और दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड के साथ मर्डर प्लान करती रही।
3: मुझे बिल्कुल भी नहीं खबर था, उसका बहुत अच्छा था, उसके पीछे हमको ये नहीं पता था कि ये सब नाटक कर रही है। ऐसे हमको बिल्कुल भी उसने इशारा भी नहीं दिया, यहाँ तक केतन को भी एक बार भी नहीं लगा। हम तो केतन को पूछने के पेरेंट्स होके उसके पापा ने बहुत बार पूछा, मैंने हमको एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसी है।
0: एक तरफ सिया केतन के साथ झूठे प्यार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही और दूसरी तरफ केतन को अपने रास्ते से हटाने के लिए तरकीबें सोचती रही।
4: सपनों में दूर दूर तक भी पता नहीं था कि मेरे साथ मेरे पोते के साथ ऐसा होगा। जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं।
0: पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन करीब 3 साल से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सिया के परिवार ने उसकी शादी केतन से तय कर दी थी। सिया अपने परिवार को भी ये नहीं बताना चाहती थी कि उसका पहले से चेतन चौधरी के साथ अफेयर चल रहा है और फिर सिया ने केतन का मर्डर ही कर डाला।
3: मुझे पुलिस की पूरा सपोर्ट चाहिए, पुलिस ने मेरे को साथ देना चाहिए, प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ, इतना ही बोलूँ। और जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए, कट से कट सजा सिया को, सिया की फैमिली को दिया जाए।
0: इस हत्याकांड ने पुणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र और समूचे देश को हैरान कर दिया है। सिया केतन की हत्या को एक एक्सीडेंट साबित करके चेतन के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। सिया और चेतन ने भी केतन की हत्या का सुराग छोड़ दिया और अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। पुणे से ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
2: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ईरान से हारे ट्रंप कैसे अब अपने ही घर में घिर गए। देखते रहिए दस्तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: बहुत टायर्ड हो गई।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
10: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
11: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।
16: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: पुलिस जिस शख्स को टांग कर ले जा रही है वो बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक अपराध का आरोपी है। इस शख्स को दिल्ली पुलिस ने 11 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप करने और फिर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। देश की राजधानी दिल्ली में हुए इस अपराध की कहानी जितनी जघन्य है, इस केस में दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी उतनी ही काबिले तारीफ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 11 साल की बच्ची माता पिता, दो बहनों और भाई के साथ मेहरौली के फुटपाथ पर सीडीआर चौक पर सो रही थी। तभी नशे में चूर ड्राइवर बबलू किसी राइड लेने के लिए वहां खड़ा हुआ था। इसी दौरान उसकी नजर बच्ची पर पड़ी। उसने बच्ची को जबरन वहां से उठाया और गाड़ी में डालने लगा। इस बीच बच्ची की नींद खुल गई और वो चिल्लाने लगी। चिल्लाने पर बच्ची का पिता गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन तब तक आरोपी बच्ची को लेकर भाग चुका था। पिता ने इसके बाद पीसीआर कॉल की। तुरंत मेहरौली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो आरोपी बच्ची को उठाते हुए दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी में गाड़ी की परछाई दिखी, लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं दिखा। पुलिस ने जब पूरा फुटेज चेक किया तो पता चला कि गाड़ी यहाँ करीब एक घंटे से खड़ी थी। गाड़ी सुबह करीब 4 बजे उस जगह पहुँची जहाँ बच्ची सो रही थी और करीब 5 बजे बच्ची को अगवा किया। पुलिस ने तफ्तीश तेज की। रैपिडो, ओला, उबर से उस इलाके की डिटेल्स मांगी गई। उस रूट के आगे और पीछे के सीसीटीवी फुटेज देखे गए और जल्द पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर की पहचान कर ली। गाड़ी पहचान होते ही विकास पूरे इलाके में उसकी जीपीएस लोकेशन और आरोपी के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया और आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार शाम पुलिस जब आरोपी को क्राइम स्पॉट पर ले जा रही थी तो आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
1: मत करो, मेरा सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ। सीएम जा, तुम सबको। हाँ, पहन के देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरे प्रशासन साथ में। हाँ, गोलियां कम है मेरे पास। और भागो, भागो, सबको भागो। हाँ, चलिए।
2: एक एनकाउंटर सम्राट सरकार के गले की हड्डी की तरह यूं फंसा कि नाना करते पुलिस कर्मियों पर एक्शन की हामी भरनी पड़ी। एक एनकाउंटर पर अपनों के बीच ऐसे घिर गई सम्राट सरकार कि मुठभेड़ को अंजाम देने वाले पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। 7 दिन पहले यानी 17 जून को भरत तिवारी पर बिहार पुलिस गोलियां बरसाती है और अब 7 दिन बाद खुद बिहार पुलिस के 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज है और जांच आगे बढ़ रही है। ये क्यों और कैसे हुआ ये बताने से पहले आप भोजपुर के पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी इस बयान को गौर से देखिए। ये बयान जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष यानी SHO राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होने की तस्दीक करता है और ये मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के परिवार के लिए पहली जीत है जो पुलिस कर्मियों पर एक्शन की लगातार मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि भरत तिवारी की मां आशा देवी ने लिखित अर्जी दी थी। आरोप लगाया था कि 17 जून को पुलिस टीम भरत तिवारी को अपने साथ जवेनिया गांव ले गई थी। वहां भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे घेर लिया और गोली मार दी। लेकिन भरत तिवारी के परिवार के आरोप, एनकाउंटर के खिलाफ लोगों का आक्रोश, इन तमाम बातों का शायद उतना असर नहीं होता जितना कि बीजेपी के भीतर उठी आवाज का हुआ है। इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, आक्रोश जाहिर करने वाले सिर्फ ये 2 मंत्री ही नहीं थे, बीजेपी नेताओं की लंबी फहरिस्त थी जो खुलकर नाराजगी जता रहे थे और शायद यही वजह थी कि 5 पुलिसकर्मियों को मुकदमे की जद में आना पड़ा। आरा से शशिभूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।
3: टीएमसी के लिए लड़ाई तेज हो गई है। इस बार रिताभ्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के गुट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को सीधे चुनौती दी है। बागी गुट ने एक नई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति बनाई है और ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। बागी गुट ने ममता की जगह अरूप रॉय को टीएमसी का अध्यक्ष चुना है। अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि वे ही असली टीएमसी है। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट की वजह से यह बैठक बुलाई गई थी। रिताभ्रता बनर्जी ने कहा है कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 साल में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था। कोलकाता के पूर्व मेयर फरहाद हकीम बागी गुट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद दीदी ने सख्त रुख अपनाते हुए हाकिम सहित 8 शीर्ष नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ममता गुट ने पलटवार करते हुए बागियों को गद्दार कहा है और कोई भी कार्रवाई करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाए हैं।
4: जो बहिष्कृत लीडर है, जो बहिष्कृत आदमी है, एक चोर दूसरे को चोर कैसे बता सकते हैं? वो तो अपने ही सस्पेंडेड है। एक सस्पेंडेड आदमी दूसरे को कैसे सस्पेंड कर सकते हैं? ममता बनर्जी चेयरपर्सन है, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी है।
3: उधर बागी सांसदों ने संकेत दिए हैं कि वे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बागी विधायकों ने भी पार्टी के नाम और सिंबल पर अपना दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
1: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। अब खबर, अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम के बाद घर में क्यों घिर गए ट्रंप की। अमेरिकी सीनेट में ईरान रोको युद्ध प्रस्ताव पर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी के पास मौजूद बहुमत के बाद ईरान के पक्ष में अधिक वोटिंग हुई। अमेरिकी संसद ने भी ईरान पर अपने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मतदान किया। अमेरिकी सांसद ये मानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध सबसे बड़ी ट्रंप की गलती है। अब सवाल यही है कि ईरान युद्ध पर ट्रंप का साथ अपने ही क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों ईरान को लेकर ट्रंप और उनकी कैबिनेट की राय बटी हुई है, क्या है ईरान के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप की कहानी, आइए दिखाएं आप।

0: पहले ईरान के आगे झुके और घर में ट्रंप घिरे। अमेरिकी सेनेट की ईरान युद्ध रोकने पर मुहर। ईरान युद्ध पर ट्रंप की पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा। पीस डील पर ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी। मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत नहीं। ट्रंप की हेकड़ी गुल, अब दिमाग में है टेंशन फुल। पहले ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ईरान की शर्तों के आगे झुककर शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत करने पड़े। अब ट्रंप की युद्ध नीति पर अमेरिकी सेनेट ने पानी फेर दिया है। एक के बाद एक ट्रंप को जोर का झटका जोर से लगा है। सोचिए, जिस सदन में ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, उसी अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास हो गया। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के पक्ष में 50 मत पड़े, जबकि विरोध में 48। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाला। इससे पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी यही प्रस्ताव पास हो चुका है। बड़ी बात यह है कि 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई खत्म करने का निर्देश दिया है। घर पर मोर्चे पर ट्रंप को मिली करारी शिकस्त से पहले ईरान के साथ हुई डील पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति घिरे हुए हैं। फिर चाहे ईरान के परमाणु प्रोग्राम का मुद्दा हो या फिर इसराइल को लेकर ट्रंप और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद हो, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप के दावों को ईरान खारिज कर चुका है, तो लेबनान को लेकर ट्रंप के मंत्रिमंडल में बड़ा कंफ्यूजन है। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अपनी गलतियों और नाकामियों से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में ईरान युद्ध रोको प्रस्ताव पास होने के बाद ट्रंप ने अपनी नाकामी को जीत बताते हुए दावा किया, मैंने ईरान को कमजोर स्थिति में डाल दिया है, वो गिरने को तैयार है, कुछ भी देने को तैयार है, और दशकों में पहली बार अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का जमकर सम्मान कर रहा है। और अमेरिकी सीनेट ने एक गलत समय पर और अर्थहीन युद्ध शक्ति अधिनियम पर मतदान करने का फैसला किया, दुनिया में आतंकवाद के नंबर एक प्रायोजक को ये बताते हुए कि अमेरिका को वो पसंद नहीं है जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, मुझे रुकना होगा, और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद और समर्थन किया है। 4 हारे हुए रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा इसका क्या मतलब है, इन सेनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा क्योंकि मैं हमेशा काम पूरा करता हूं।
1: From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground
2: at the appropriate time? At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
0: ट्रंप यही दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध जिस मकसद के साथ छेड़ा गया था उसे खत्म करके मारेंगे, लेकिन ना तो ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करवा सके, ना तो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर सके। बावजूद इसके ट्रंप ने नया शगुफा छोड़ा है, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से निरीक्षण करवाने को तैयार है। ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान की लाइन एकदम स्पष्ट है। पीस डील के एमओयू के तहत 60 दिन चलने वाली वार्ता के आखिरी में इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी। निरीक्षण का मुद्दा इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका सभी प्रतिबंधों को हटाता है या नहीं। स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान किसी भी ईरानी अधिकारी ने IAEA डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से मुलाकात नहीं की, जबकि ग्रोसी ने बैठक की इच्छा जताई थी। दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ ने भी एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को आईना दिखाया है। अजरबैजान में एक कार्यक्रम के दौरान गालिबाफ ने पीस डील को अपनी जीत और अमेरिकी राष्ट्रपति की हार करार दिया। अमेरिका के साथ हुआ एमओयू आखिरकार अमेरिका की हार का ऐलान बन गया। इस समझौते ने साबित किया है कि बातचीत तभी सफल हो सकती है जब दूसरा पक्ष अपनी शर्तें थोपने की कोशिश बंद करे और ईरान के अधिकारों को स्वीकार करे। ये MOU किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं था बल्कि ईरान के प्रतिरोध और ताकत का परिणाम था। शांति समझौते किसकी मजबूरी है ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। MOU पर दस्तखत के बाद जब ईरान और अमेरिका के बीच पहले राउंड की वार्ता शुरू हुई तो ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से सीधी मुलाकात नहीं की थी। इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि समझौता ट्रंप की नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरानी डेलीगेशन बिना ग्रुप फोटो और हैंडशेक के वापस लौट गया था इस धमकी के साथ कि लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुके तो ईरान शांति समझौते के MOU को नहीं मानेगा। ईरान की धमकी का डर है कि ट्रंप ने इजरायल के साथ रिश्तों को ताक पर रख दिया है।
3: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that but he was hit he hit back forth and now they both agreed through me to stop and we're in the final throes of what will be a very very good deal that will not allow in any way shape or form nuclear weapons etc and the strait will open up right away it'll open up immediately upon signing which could be in 2 or 3 days
0: ट्रंप कई बार इजरायली प्रधानमंत्री की नीति पर सवाल उठा चुके हैं लेकिन इजरायल पर ट्रंप के स्टैंड से अमेरिकी विदेश मंत्री की राय मेल नहीं खा रही।
3: No, I want to, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean.
4: I think a careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region, well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU, and it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations.
0: ईरान की मिसाइल क्षमता और प्रॉक्सी नेटवर्क को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा यही है कि शांति तब तक नहीं होगी जब तक इराक में बैठे ईरानी प्रॉक्सी के साथ साथ हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन मिसाइलें दागते रहेंगे। मतलब यही है, ना तो ईरान ट्रंप की सुन रहा है और ना ही उनका मंत्रिमंडल।
5: और अब खबर पाकिस्तान की। जी हाँ, पानी के लिए तड़पता तरसता पाकिस्तान कैसे अब हमारे देश को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। सिंधु नदी के जल को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि पाकिस्तान तिलमिला उठा। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सिंधु के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर भारत के विरुद्ध जंग की धमकी दी और अब आसिम मुनीर युद्ध की साजिश रचने में जुट गया। जी हां, LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स तैनात कर दी। पाकिस्तान ने AI फेंसिंग भी कर दी जिसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज कर दिया गया। हम दिखाएं आपको कि कैसे पानी के लिए बिलबिला रहा है पाकिस्तान।
6: पानी पर पाकिस्तान की घुड़की, जंग की गीदड़ भभकी। भारत ने मास्टर प्लान बनाया, पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया। आसिम मुनीर ने LOC पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी।
7: भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे।
6: भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, पाकिस्तान पर फूटेगा वाटर बम। मुनीर, शहबाज, बिलावल, ख्वाजा आसिम सब चीखते रह जाएंगे।
8: पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
9: इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है जो आपकी छीत गया है वो वापस हासिल भी कर सकते।
10: अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
11: हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है।
6: पानी का मारा पाकिस्तान जंग जंग चिल्लाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़पने लगा है और जंग की गीदड़ भभकियां देने लगा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी देते हैं और अब आसिफ मुनीर जंग की साजिश रचने में जुट गए हैं। जी हाँ, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने आई फेंसिंग भी की है। इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर एलओसी के रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी करता रहा है।
12: बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद कंस्ट्रक्शन।
13: लेट मी एक्सप्लेन, मैं पिछले 1-2-3 साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशनगंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे उस सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए हैं, बल्कि जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट किए।
12: अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछूं,
13: और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले 1 साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकी शमकी लगाई हैं या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है लिबास पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है 1 साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है, इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है रिजर्वॉयर का पानी कितना,
12: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
13: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली।
12: ठीक है,
13: किसी को शक नहीं होना चाहिए।
6: पाकिस्तान अब सिंधु नदी के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है। यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है।
14: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
6: Army Chief ne Pakistan ko seedha sandesh de diya hai ki Bharat Operation Sindoor Part 2 ke liye taiyar hai. गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा और जवाबी कार्रवाई की तारीख, वक्त और जगह भारत तय करेगा। अब की बार आरपार की लड़ाई के लिए भारत ने सैन्य रणनीति का पूरा ताना बाना बुन रखा है, क्योंकि भारत की मिसाइलें तैयार हैं, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है, भारत के लड़ाकू विमान तैयार है, भारत का एटम बम तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात किए हैं। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने एक भी एटम बम तैनात नहीं रखे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीते कुछ महीनों में 12 परमाणु बम की तैनाती की गई है। यही नहीं, बीते 2 सालों में भारत ने अपने परमाणु हथियार 180 से बढ़ाकर 190 कर लिए हैं। मतलब यही है कि भारत के परमाणु हथियारों का जखीरा भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। ये दावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक ना पहुंचे इसके लिए 2 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। एक तो भारत सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का काम कर रहा है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उस बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। अनुमान के मुताबिक काम को पूरा होने में करीब 3-4 साल लगेगा और साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी व्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। दूसरा, भारत शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी रावी नदी का ज्यादा पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान में जाता है। ये बांध इस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 5 दशक पहले 1979 में सोचा गया था। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए योजना बनाई गई थी।
15: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed.
6: भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से चार दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब पाकिस्तान का पानी रोकने का भी इंतजाम कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ कीदड़ भभकियां ही देता रह जाएगा, पानी तो उसे नहीं मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
5: दशक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
17: You hear it once and remember everything. Too sexy for your party. Too sexy for your party. One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stayed forever. They owned the moment, ruled the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search One Hit Wonders to start listening now.
18: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
19: EU
20: सोच बदलो और बैंक भी।

0: मध्य प्रदेश से उठी एक सियासी चिनकारी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। इसे समझने के लिए इन तीन तस्वीरों को देखिए, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव हैं। इनके ऊपर मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है और उत्तर प्रदेश में उसी कांग्रेस पार्टी के साथी अखिलेश हैं जो कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सवाल बीजेपी के मुख्यमंत्री से पूछ रही थी और उसकी सफाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विरोधी अखिलेश यादव दे रहे थे। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस हैरान, समाजवादी और कांग्रेस की इंडिया ब्रांड दोस्ती देखने वाले हैरान कि आखिर कांग्रेस के आरोपों पर अखिलेश बीजेपी के सीएम का बचाव क्यों कर रहे हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि मोहन यादव भ्रष्ट हैं। अखिलेश मानने को तैयार नहीं कि एमपी में जिस बीजेपी सरकार के सीएम मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस दो दिनों से हुक्का पानी लेकर चढ़ी हुई है, पीसी पर पीसी कर रही है, बयान पर बयान दे रही है, भयानक जमीन घोटाले से लेकर भ्रष्टाचार तक के सवाल उठा रही है, वहाँ कोई भ्रष्टाचार भी हुआ है। अखिलेश कहते हैं कि ये यादव सीएम को बदनाम करके यूपी के सीएम को बदलने का बहाना है। अखिलेश के इस बयान के पीछे का मकसद और यूपी के अंदर उसके सियासत समझने में यूपी की एनडीए सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक मशाल जलाए चल रहे हैं।
1: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम मोहन यादव पर उज्जैन में जमीन खरीदी को लेकर सनसनीखेज आरोप लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनके परिवार की ओर से जमीन खरीद में तेजी आई और जिन क्षेत्रों में बाद में विकास परियोजनाएं घोषित हुई वहां पहले से जमीन खरीदी गई। जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में जमीन खरीद का मामला भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
2: मुख्यमंत्री परिवार की सभी कंपनियों के हिस्सेदार फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भूमि खरीदी के कुछ समय बाद ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर एग्रीमेंट शुरू हो गए उन कंपनी उन जमीनों पर। क्या पहले नियोजित व्यवसाय की रणनीति का हिस्सा था कि जमीन खरीदेंगे, मास्टर प्लान में चेंज आएंगे, परियोजना लाएंगे, उस बीच में रियल एस्टेट कंपनी से हम अपना एग्रीमेंट करेंगे और जो 10 रुपए की जमीन है वो 1000 रुपए की करेंगे, ये पहले से प्लान आउट था क्या? क्या ये सही है कि कुछ परियोजनाओं में भूमि मालिकों के विकसित संपत्ति 60% से 70% का हिस्सा है जिनकी भूमि है मुख्यमंत्री की हो उसके परिवार की हो।
1: जीतू पटवारी के मुताबिक मोहन यादव 2021 में मंत्री बने थे, 13 दिसंबर 2023 में वो मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में उनके परिवार के निकट सदस्यों के पास लगभग 194 प्लॉट बने। उनके परिवार के पास अलग अलग जगहों पर 253 एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीनें खरीदी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम दफ्तर ने इस पर सफाई दी है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव ने भी उनके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई जमीन नहीं खरीदी है। मोहन यादव का दफ्तर इस पर बाद में एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगा। आज तक ब्यूरो।

0: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
1: उज्जैन में विकास के बने गए खाके में जमीनों की खरीद के नाम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आरोपों के घेरे में आ गए हैं। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मोहन यादव और उनके परिवार पर जमीनों की लूट का आरोप लगाया।
2: प्रदेश इकाई और मोहन यादव जिसे प्रश्न पूछे थे,
1: रिपोर्ट के मुताबिक मोहन यादव और उनके परिवार ने 253 एकड़ जमीन खरीदी। 2021 से 2023 के बीच 30 करोड़ रुपए में कुल 85 एकड़ के 57 प्लॉट खरीदे गए, जबकि 2024-25 में 45 करोड़ में कुल 168 एकड़ के 137 प्लॉट खरीदे गए। मोहन यादव दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ में से 111 एकड़ जमीन उस क्षेत्र में खरीदी गई जहां 2028 में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है।
3: मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना, वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलेडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे।
1: मोहन यादव के जमीन मामले पर बीजेपी पहले ही उनका पक्ष रख चुकी है। पार्टी कह रही है कि मोहन यादव के पास आज भी उतनी ही 17 एकड़ की जमीन है जितनी सीएम बनने के पहले थी। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के पास भी 12.29 एकड़ जमीन है जो पहले से थी। मोहन यादव से संबंधित बताए गए सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पास 2023 के 68 एकड़ के मुकाबले 65 एकड़ जमीन ही रह गई है। मोहन यादव के बेटे वैभव की 16 एकड़ जमीन 2023 के पहले से है। बहू ने जो 10 एकड़ कृषि जमीन खरीदी है उसका भी उज्जैन के मास्टर प्लान से संबंध नहीं है। उधर जब कांग्रेस मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन के मसले को उठा रही है, तब बीजेपी ने कर्नाटक के जमीन आवंटन मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा है। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में उस ट्रस्ट के माध्यम से जमीन की लूट की गई जिसके सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे हैं। बीजेपी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले की तरह यहां भी जमीन की लूट हुई।
4: याद करिए, राहुल गांधी और पूरा गांधी वाड्रा परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जीजाजी है, इन पर भी तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके के लैंड लूट के आरोप है और केसेस चल रहे हैं। सो जो मॉडस ऑपरांडी गांधी वाड्रा परिवार ने लैंड लूट करने के लिए किया, ठीक वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धार्थ विहारा ट्रस्ट के माध्यम से 5 एकड़ भूमि, जो एक प्राइम इंडस्ट्रियल लैंड है जिसका 100 करोड़ का नेटवर्क का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसको अपने प्राइवेट ट्रस्ट के हाथों में करा।
1: बीजेपी जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को जमीन के लूट आरोपों पर कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं मोहन यादव का जमीन मामला ओबीसी पॉलिटिक्स में भी तड़का लगा रहा है।
5: एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया।
1: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का एंगल ढूंढ लाए हैं।
6: बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन दो को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं।
1: वैसे जमीन की कथित लूट पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नई नहीं, लेकिन अब मोहन यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर नए सिरे से बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खींच गई हैं। आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, 20 भर्ती, मलबे में अभी कई जिंदगियां दबी, सीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, मोर्चे पर सेना। पुणे की लड़की पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का किया दौरा। और ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये कहानी है सिया की उस साजिश की जो उसने 31 मई को पहली बार रची थी। ये कहानी है उस 14 जून की जब सिया ने पहली बार केतन को खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। ये कहानी है उस 18 जून की जब सिया ने सचमुच केतन को खाई में धक्का देकर मार डाला। और ये कहानी है सिया और केतन के उन आखिरी 2.5 घंटों की जब सिया की साजिश सचमुच अपने अंजाम को पहुंची।

0: पौने से 52 किलोमीटर दूर यह है आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किला। आम लोगों के लिए यह किला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। चूंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, लिहाजा यहाँ आने वालों को अपनी गाड़ियाँ किले के इस दरवाजे से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले किले की पार्किंग में खड़ी करनी होती है। फिर वहाँ से किले के इस एंट्री पॉइंट तक पैदल आना होता है। पार्किंग से यहाँ तक आने में लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है। 18 जून की सुबह करीब 8 बजे सिया ने अपनी कार में केतन को उसके घर से पिक किया। हालांकि इससे एक दिन पहले केतन के घर वालों ने सिया को मना कर दिया था कि वो लोहागढ़ किला ना जाए, लेकिन सिया जिद पर अड़ी थी। जब केतन के घर वालों ने केतन को भेजने से इनकार कर दिया, तब सिया ने 17 जून की रात केतन की माँ को वीडियो कॉल कर उन्हें वहाँ जाने के लिए राजी कर लिया। सिया ने बहाना बनाया था कि चूंकि 19 जून को उसका बर्थडे है, इसीलिए उसके कुछ दोस्त वहाँ साथ में पार्टी के इरादे से जा रहे हैं।
1: फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके मम्मी में उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।
0: केतन की माँ की रजामंदी के बाद अब 18 जून की सुबह केतन और सिया किले में पहुंच चुके थे। इस किले के एंट्री पॉइंट पर टिकट काउंटर है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट से फीस के तौर पर 25 रुपए लिए जाते हैं। अमूमन ज्यादातर लोग या तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर स्कैनर के जरिए। किले के इसी एंट्री पॉइंट पर ठीक इसी जगह सिया ने ही स्कैनर के जरिए 50 रुपए फीस दी।
2: जो लड़की जो यहाँ से आ रही थी वापस, क्या उससे कुछ बात हुई?
3: जी उसे बात नहीं सर, उसको ऑनलाइन किया उसमें तो उन्होंने नहीं हो रहा था, तो बोले थे सर हमारा हम रिटर्न में पे करें। उसको बोला हम स्कैनर का फोटो निकाल लो, आप रिटर्न में पे करो। यहाँ पे वो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये ऑनलाइन टिकट है। क्या तो ये नहीं हो पाया था उसके, तो हम बोले ऑनलाइन आप रिटर्न में टिकट कर दीजिए।
2: तो ऑनलाइन टिकट कर दिया फिर?
3: हाँ ना, मतलब वो अब रिटर्न में कर दो तो ऑनलाइन तो ऊपर तो हो गया, तो उसमें कर नहीं पाएगा ना। तो जो सर थे वहाँ पे जो लेडीज के साथ, सर अपने ऑनलाइन टिकट निकाला, तो बोले हम सर स्कैनर का फोटो ले लीजिए, अब ऊपर जाते समय टिकट निकाल दीजिए, नेटवर्क आएगा क्योंकि आप नेटवर्क करें, रिटर्न में आप टिकट निकाल दीजिए।
0: एंट्री फीस देने के बाद अब सिया और केतन इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अमूमन इस एंट्री पॉइंट से ऊपर तक जाने में एक आम इंसान को 40 मिनट का वक्त लगता है। इस किले के इसी एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसके ऊपर कोई और कैमरा नहीं है। सिया और केतन के ऊपर जाते ही उनके पीछे पीछे अब चेतन चौधरी यहाँ पहुंच चुका था। सुबह केतन को पिक करने के बाद ही सिया ने चेतन को मैसेज कर दिया था। इसी के बाद चेतन जुपिटर स्कूटी से इस किले की पार्किंग तक पहुंचता है। वो लगातार सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था।
1: ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहाँ पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया, फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया।
0: हालांकि जब चेतन किले के एंट्री पॉइंट पर पहुंचा, तब शायद उसके पास कैश नहीं था। अपना मोबाइल वो पहले ही अपनी दुकान में छोड़कर आया था। जिस कर्मचारी का मोबाइल लेकर आया था, शायद उसमें ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं थी, लिहाजा सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर चेतन कहता है कि यहाँ वो एक्सरसाइज के लिए आया और वापसी में 25 रुपए दे देगा।
2: सिया और केतन के आगे जाने के बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई, और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है, और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए, और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ। यहाँ के टिकट काउंटर में जो थे उनके साथ उनकी उस दिन बात भी हुई थी, टिकट देने से उन्हें मना किया था, बोल रहे थे कि आने वाले वक्त टिकट देंगे। एग्जैक्टली क्या उस दिन आपकी बात हुई थी उनके साथ?
3: जी सर, अभी वो कान में हेडफोन डाला था, उसको पीछे से आवाज दिया था सर टिकट लेके जाओ टिकट लेके जाओ करके, वो का इतना गया नहीं। फिर हम आगे थे वहाँ पे, तो उसको हम रुकवाए उसको, तो बोला था सर हम एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, हम रिटर्न में टिकट ले लेंगे। इस वजह से हम उसको बोला नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज करके जा रहा है और आदमी फिटनेस की वजह से हम उसको रुकवाया नहीं। ज्यादा समय टिकट लेके करके बोला था, वो आज खेला था, इसकी वजह से उसको हम रुका मैंने, ज्यादा समय सीधा चला गया नीचे। तो हेडफोन पहना था पूरा, ऐसा हेडफोन था कान में उसका, इसके लिए आवाज नहीं सुना, वो
2: आवाज नहीं सुना
3: जी।
2: फिर आपको क्या
3: स्पीड से गया था?
2: आपको क्या कहा फिर उसने?
3: वो हमको ये बोला कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं सर ऊपर,
2: एक्सरसाइज
3: करके हम तुरंत नीचे आएंगे सर।
2: तो आपने टिकट बिना उसे फिर छोड़ दिया वो?
3: हाँ, तो हम रिटर्न में टिकट लेंगे करके बोला था हमको,
2: वापस आते
3: हुए। हाँ, वापस से हम आपका टिकट लेंगे, हम अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं।
2: क्या वापस आते हुए रुका नहीं? रुका
3: जी नहीं, रुका नहीं, सीधा चले गए सर। सीधा चले।
0: अब केतन और सिया एक साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे थे और उनके ठीक पीछे पीछे हुडी में अपना चेहरा ढके केतन चल रहा था। सिया की वजह से केतन आराम से ऊपर जा रहा था ताकि सिया थक न जाए। करीब 40 मिनट बाद अब सिया और केतन ठीक इसी जगह पहुंच चुके थे। हालांकि लोहागढ़ किला आने वाले ज्यादातर लोगों की आखिरी मंजिल ये सेल्फी प्वाइंट होती है। यहाँ इस ऊंचाई से पूरे पुणे का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन सिया को इस पॉइंट तक जाना ही नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ लोग होंगे और जिस काम के लिए वो यहाँ तक आई है उसके लिए सन्नाटे की जरूरत थी। वैसे भी जिस जगह सिया ने केतन को रोका उस जगह की वो पहले ही रेकी कर चुकी थी। उसे ये भी पता था कि उस जगह पर कोई रेलिंग नहीं है, अगर कोई हादसा हो तो इंसान सीधे खाई में गिरेगा। किस्मत का खेल देखिए, जिस जगह से केतन को धक्का दिया जाना था वो जगह खुद केतन ने ही पहली बार सिया को दिखाई थी।
1: वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए।
0: वो 31 मई की ही तारीख थी जब सिया को पहली बार ये ख्याल आया था कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं, कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। असल में 31 मई के 5 दिन बाद ही सिया केतन को मारना चाहती थी, पर चूंकि 6 जून को प्री वेडिंग शूट के लिए केतन और सिया को इंडोनेशिया के बाली शहर जाना था, इसलिए घर वालों ने 5 जून को लोहागढ़ जाने की इजाजत नहीं दी। पर सिया ने केतन का पासपोर्ट गायब कर बाली की ट्रिप कैंसिल कर दी। अब रास्ता साफ था, कुछ दिन बाद ही उसने फिर से केतन को लोहागढ़ किला चलने के लिए जिद करना शुरू कर दिया।
1: फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला, तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है, क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है।
0: 14 जून ही वो तारीख थी जिस दिन सिया केतन को खत्म करना चाहती थी। उसने ऊंचाई पर ले जाकर केतन को धक्का भी दिया, लेकिन खुशनसीबी ये कि जहां केतन खड़ा था उसके पीछे पेड़ था। सिया के धक्का देने पर पेड़ की वजह से वो खाई में गिरने से बच गया। जब सिया ने देखा कि केतन गिरा नहीं, तब अचानक उसने ये बहाना बनाया कि उसने उसे इसलिए धक्का दिया था क्योंकि उसके करीब सांप था। केतन 14 जून को बच गया, लेकिन उसके हिस्से अब सिर्फ 4 दिन की जिंदगी बची थी। 19 जून को सिया का बर्थडे था। इसी साल फरवरी में केतन के साथ सगाई के बाद ये उसका पहला बर्थडे था। केतन के घर वालों ने घर की होने वाली बहू की खुशी के लिए महाबालेश्वर में एक खूबसूरत रिजॉर्ट बुक किया था, लेकिन 18 जून को बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर सिया धोखे से केतन को एक बार फिर इसी लोहागढ़ किले में ले आई। सुबह के करीब 10:30 बजे थे। सिया और केतन चढ़ाई चढ़ते हुए 340 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। सिया इस बार कोई गलती करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को भी बुला लिया था। ठीक इसी जगह पहुंचने के बाद सिया ने देखा कि यहाँ किनारे कोई रेलिंग नहीं लगी है, ना ही कोई पेड़ है, ऊपर से दूर दूर तक कोई टूरिस्ट भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। बस तभी उसने पीछे पीछे चल रहे चेतन को इशारा किया। चेतन कुछ ही पल में सिया के पास पहुंचा, फिर इससे पहले कि केतन कुछ समझ पाता, उसकी मंगेतर और होने वाली बीवी और उसके आशिक ने अचानक केतन को जोर का धक्का दिया। इस बार नसीब ने साथ नहीं दिया और केतन ठीक इसी जगह से 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा।
2: 18 जून को पुणे में स्थित लोहगढ़ किले के इसी जगह से सिया गोयल ने अपने होने वाले फियांसे यानी कि केतन अग्रवाल को यहीं से धक्का दिया था। दोनों घूमने के लिए आए थे, इससे पहले 31 को दोनों यहां ट्रेक के लिए आए थे और ट्रेक आने के बाद सिया ने यहां रेकी की। रेकी करने के बाद उसने स्पॉट फाइनलाइज किया और फिर 14 तारीख को पहला प्लान फाइनल हुआ, जिस प्लान के अनुसार केतन और सिया गोयल ये दोनों साथ में यहाँ आएंगे, घूमने के लिए आएंगे और फोटो निकालने के बहाने ये दोनों इस कोने में खड़े रहेंगे और उसी के बाद सिया उसे धक्का मारेगी। लेकिन पहला वाला प्लान सफल ना हो पाया, सिया उसे सफल नहीं कर पाई। उसके बाद फिर दूसरा प्लान हुआ, दूसरे प्लान पर भी वो इसी स्पॉट पर आए और नीचे आप देख सकते हो पुणे के मावड़ का ये दूसरा एरिया है जहां ये आगे आपको बांध दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा। इसके पहले ये नीचे जो गांव है यहाँ से सीधी 350 फुट की खाई है, जिस खाई में उसने 18 तारीख को जब बाद में फिर से दोनों आए थे उसके साथ उसने अपना जो बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी उसे भी वो साथ में लेके आई थी। दोनों अलग अलग रूट से ऊपर आए और फिर चेतन और सिया ने मिलकर यहीं से इस वारदात को अंजाम दिया और इसी जगह से उसे नीचे ढकल दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू था तो शुरू में तो ये एक्सीडेंटल डेथ थी।
0: इधर केतन खाई में गिरता है, उधर उसी पल चेतन तेजी से वापस नीचे उतरना शुरू कर देता है। अब सिया अकेली थी, उसे जैसे ही यकीन हो जाता है कि केतन अब मर चुका है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी चीख सुनकर वहां से कुछ दूर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आते हैं, तब वो उन्हें केतन के फिसल कर खाई में गिरने की बात बताती है। इसके बाद वो अपनी माँ को फोन करती है, फोन पर केतन के खाई में गिरने की बात बताती है। इसी के बाद सिया की माँ सुबह 10:45 पर केतन के पिता विशाल अग्रवाल को फोन कर पहली बार ये जानकारी देती है।

0: द इंटरनेट ऑफ रखा था और यहीं पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है, यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था। तो इस कांटे को यहीं से धक्का मारकर उन्होंने खत्म कर दिया और अपने बीच, अपने ये जो रिश्ते के बीच की दरार थी उसे भी निकाल दिया। अभी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू है तब तहकीकात में ये सामने आया है कि सिया गोयल यही इसकी मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसी ने सब कुछ फाइनलाइज किया।
1: कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे, आज तक।
2: केतन 26 साल का था जबकि सिया अभी 19 जून को ही 20 साल की हुई। केतन के घर वालों ने कहा भी था कि सिया अभी छोटी है, लेकिन सिया के घर वाले शादी को लेकर जल्दी में थे। केतन के घर वालों का कहना है कि शायद सिया के घर वालों को पता चल चुका था कि सिया का अफेयर है और इसीलिए वो जल्द से जल्द शादी कराना चाहते थे।
1: 26 साल के केतन ने अमेरिका के बॉस्टन से MBA की पढ़ाई की थी। MBA की पढ़ाई के बाद वो अपने पापा के बिजनेस के साथ जुड़ गया। अपने पापा के लिए वो किसी कोहिनूर से कम नहीं था।
3: केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से बैबसन कॉलेज से उसने MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज PCMC में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला।
1: दरअसल सिया का परिवार और केतन का परिवार दोनों ही एक दूसरे को बरसों से जानते थे। दोनों के बीच पारिवारिक दोस्ती थी। अब चूंकि दोनों ही परिवार एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए इस साल की शुरुआत में सिया की बुआ पहली बार केतन के लिए सिया का रिश्ता लेकर आई, जिसे केतन के घर वालों ने बिना कुछ सोचे मंजूर कर लिया।
4: सपनों में दूर दूर तक भी पता नहीं था कि मेरे साथ, मेरे पोते के साथ ऐसा होगा। जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको हम 45-50 साल से जानते हैं, कुछ रिश्तेदारी भी है उसमें, ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती, रिश्तेदारी है, 50 साल से जानते हैं। फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। उन्हें आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया, लड़की सुंदर थी, रिश्ता पक्का हो गया।
1: केतन 26 का था जबकि सिया इसी महीने 19 जून को 20 साल की होने वाली थी। इसीलिए केतन के घर वालों ने ये कहा भी था कि वो अभी छोटी है, लेकिन सिया के घर वाले शादी जल्दी करना चाहते थे। केतन की मौत के बाद अब केतन के चाचा का कहना है कि दरअसल सिया के घर वालों को सिया के अफेयर के बारे में जानकारी थी। पूरा घर चेतन और सिया के रिश्ते के बारे में जानता था, लेकिन उन लोगों ने ये बात छुपा ली।
5: फैमिली के हर सदस्य को मालूम था घर में, उनके मम्मी को, पापा को, चाचा को, ताऊ को, उनके बाकी के हर परिवार को मालूम था कि लड़की का किसी के साथ है, तो उन्होंने रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था ना। उनके थोड़े इसके लिए आज मेरा बच्चा चला गया, और 5.5-6 साल का बच्चा, इतना होनहार बच्चा जाना परिवार के लिए कितना बड़ा दुख है। और उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना बस हो गया, हमको क्या मालूम था। ऐसे कैसे भी घर में मालूम हो सकता है कि बच्चे का अफेयर चल रहा है, पूरे परिवार में इतनी बड़ी गोयल फैमिली है, आज 3-3, 4-4 घर है, उनको हर घर के आदमी को मालूम है, और मैं हर आदमी को जिम्मेदार मानता हूँ मेरे बेटे की मौत का।
1: केतन की माँ का कहना है कि उनका बेटा सिया की वजह से चला गया, उन्होंने सिया पर झूठ बोलने के भी इल्जाम लगाए।
6: आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ।

0: बोला है उसने मेरे साथ।
1: पुणे के इस घर में अग्रवाल परिवार के 20 सदस्य एक साथ रहते हैं। केतन इस घर का सबसे लाडला था। 18 जून से पहले तक इस घर में न जाने किन किन यादों में लिपटी उसकी तस्वीरें टंगी होती थी, लेकिन उसकी तस्वीर पर ऐसी और इतनी जल्दी ये माला चढ़ी होगी घर वालों को अब भी यकीन नहीं।
2: आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना, इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया।
1: वैसे जो लोग बेमन से या जबरदस्ती शादी या सगाई की वजह से घर का जवान चराग यूं बुझाते थे, उनके लिए केतन के पिता ने दिल छू लेने वाली एक बात कही है।
2: इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था, हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है, इनके तरफ से हम पे प्रेशर था।
1: सच कहा, या तो सीधे शादी से इनकार कर दे या फिर भाग कर शादी कर ले, कम से कम केतन जैसे नौजवान की जान लेकर किसी के घर के पूरे सपने को तो खाई में न फेंके। कैमरामैन गोपाल हार ने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।
3: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।
4: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
5: मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's Global Hits to start listening now.
1: लखनऊ अग्निकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई तो एलडीए अधिकारी हरकत में आ गए। मंगलवार को एलडीए की टीम ने उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया जिसमें 15 बच्चे जिंदा जल गए। योगी सरकार ने एलडीए से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एलडीए की नाक के नीचे रिहायशी नक्शे पर बनी इस इमारत में कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही थी। अब इस इमारत पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। 15 दिन में जवाब नहीं मिला तो इमारत को ढहा दिया जाएगा। अग्निकांड पीड़ितों से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव ने हादसे के बाद सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं।
2: बड़े अधिकारियों की बनती है और बड़े अधिकारियों क्यों बचा रहे हैं? देखिए, बड़े अधिकारी बड़े होशियार होते हैं। वो सीधे घटना में मुख्यमंत्री जी को ले आए। अब मुख्यमंत्री जी फेस बन गए। जिन अधिकारियों की वजह से घटना हुई वो मुख्यमंत्री जी को सामने आगे कर दिए।
1: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हादसे के लिए पूर्व की अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और हादसे पर राजनीति न करने की सलाह दी है।
3: अखिलेश यादव की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपकी सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ।
1: कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल के मामले में एलडीए के तत्कालीन अधिकारियों और अभियंताओं पर कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, 20 भर्ती, मलबे में अभी कई जिंदगियां दबी, सीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, मोर्चे पर सेना। पुणे की लड़की पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का किया दौरा। और ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण।

पर करोड़पति मंगेतर की हत्या करने का आरोप, साथी प्रेमी भी गिरफ्तार। शादी से बचने के लिए सिया गोयल ने बनाया हत्या का प्लान, फोटोशूट के बहाने लोहगढ़ किला पहुंची सिया। पुणे हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का किया दौरा, शुरुआत में इसे ट्रैकिंग दुर्घटना माना गया था। लोहगढ़ फोर्ट मर्डर केस में गेटकीपर का बड़ा दावा, आरोपी चेतन चौधरी मास्क और स्पोर्ट्स ड्रेस में पहुंचा था किले। पुणे में करोड़पति व्यापारी के पिता ने सिया गोयल के परिवार पर उठाए सवाल, कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, शुरू से सब कुछ परिवार को पता था। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मानसून होगा और मजबूत, अगले दो दिनों के लिए ठाणे मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट। अंधेरी में बारिश से अंडरपास में पानी भरा, यातायात बंद हुआ। दादरी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भरा, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। गांधी मार्केट में मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, वाहन फंसे। नवी मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी, लोग पानी में चलने को मजबूर। मुंबई में मेयर के निरीक्षण के दौरान बड़ा हादसा, बीएमसी कर्मचारी खुले नाले में गिरा, समय रहते सुरक्षित निकाला गया। मुंबई लोकल ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर बहस में युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के वाशिम में ओवरलोड सवारियों से भरी वैन पलटी, एक की मौत 11 घायल, टायर फटने से हादसा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रेलवे इंजन में मिला अजगर का बच्चा, किया गया रेस्क्यू। फिल्म वेलकम टू द जंगल की सफलता की कामना के लिए अक्षय और अक्षरा सिंह सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की। आईसीसी की ओर से ताजा वनडे रैंकिंग का ऐलान, 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल ने नंबर दो पर जगह बनाई। गिल के अलावा रोको भी टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में, विराट तीसरे, रोहित शर्मा चौथे नंबर पर। गेंदबाजी रैंकिंग में बुमराह अभी भी नंबर वन पर, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी के साथ संयुक्त रूप से नंबर वन। बल्लेबाजों में शुभमन गिल सातवें नंबर पर, यशस्वी जायसवाल आठवें और बारहवें पर ऋषभ पंत। ऋषभ की लखनऊ सुपर जायंट से विदाई, आईपीएल के दो सीजन की कप्तानी के बाद वापस दिल्ली कैपिटल्स पहुंचे। फिल्म दुल्हनिया ले आएंगी का फर्स्ट लुक जारी, 24 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म मैं तेरा यार हूं का नया गाना रिलीज, 24 जुलाई को फिल्म आएगी रिलीज सिनेमाघरों में। फरहान अख्तर की पीरियड फिल्म में नजर आएंगे सलमान, 2027 में शुरू होगी शूटिंग। कमल हासन की फिल्म धर्मन में रजनीकांत का फर्स्ट लुक जारी, डेडली डॉक्टर बने। कॉकटेल 2 का नया गाना रिलीज, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कर रही है शानदार कमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। हर बारिश की यही कहानी, मुंबई में हर जगह पानी ही पानी। मुंबई में इस बार मॉनसून करीब दो सप्ताह की देरी से आया, लेकिन आज जैसे ही मॉनसून की एंट्री मुंबई में हुई, कुछ ही घंटों की बारिश ने मुंबई के अधिकतर इलाकों में पानी भर दिया। सवाल यह है कि बीएमसी महीनों पहले से ऐसी तैयारी क्यों नहीं करती कि मुंबई वालों को बारिश सुहावनी लगे, डरावनी नहीं।

0: करीब दो हफ्ते की देरी से ही सही, लेकिन मुंबई में मॉनसून की एंट्री हो गई। मॉनसून का आगाज इतना जोरदार हुआ कि मुंबई के कई इलाकों में सड़कें लबालब भर गई। मुंबई के पवई मिलिंद नगर इलाके में मॉनसून की पहली बारिश से हुए जलजमाव के बाद लोगों ने बीएमसी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। निचले इलाकों में पानी भरने से नाराज लोगों ने गंदे पानी में बैठकर महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रात भर हुई बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में इतना पानी भर गया कि सुबह उसे बंद करना पड़ा। किंग्स सर्किल, गांधी मार्केट, दादर, नई मुंबई जैसे तमाम इलाकों से जल भराव की जो तस्वीरें आई उनसे एक बार फिर बीएमसी के दावों की पोल खुल गई।
1: मुंबई में आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है। हम इस वक्त मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में खड़े हैं, जो हर साल जल जमाव की वजह से चर्चा में रहता है। इस साल भी ऐसा ही कुछ दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 2 से 3 फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्कूलों के लिए कोई एडवाइजरी ने अभी तक नहीं जारी की है। आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अभी भी स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और इसी पानी से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। आधा सड़क का जो हिस्सा है वो पानी से भर गया है, जिसकी वजह से यहाँ से यातायात बहुत कम हो रही है, ना के बराबर हो रही है।
0: तेज बारिश और उसके बाद पानी भरने से कई लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, जिससे बारिश लोगों के लिए आफत बन गई।
1: सकते हैं जो फोर व्हीलर है वो भी यहाँ पर बंद पड़ी हैं। लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मैकेनिक को बुला रहे हैं, गाड़ियाँ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की रोजी रोटी है यहाँ पर। सर, कब से गाड़ी बंद पड़ी है आपकी?
2: हाँ,
1: कब से गाड़ी बंद?
2: अभी।
1: तो आपने क्या किनको बुलाया ठीक करने के लिए?
2: किसको बुलाऊंगा मैं, मेरे पास कुछ नंबर ही नहीं है, चल रहा है, कुछ बात आ रही है, इसको धुआं निकल रहा था, इसके लिए बंद कर दिया।
1: ये बारिश की वजह से?
2: हाँ, भर गया था आधा मतलब पानी।
1: कहाँ से आ रहे हैं सर आप, कहाँ जा रहे हैं?
2: कॉटन ग्रीन से आ रहा था, उधर जा रहा था पांडू।
1: तो देख सकते हैं पहली बारिश में ही लोगों का ये हाल हो रहा है कि बारिश की वजह से लोगों की जो है वो गाड़ियां बंद पड़ रही हैं यहाँ पर।
0: मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में मॉनसून की एंट्री हर साल आमतौर पर 10 जून को ही हो जाती है, लेकिन पहली ही बारिश में नालों के उफनाने से सड़क पर कई फीट पानी भरा तो लोगों ने पूछा कि बीएमसी इतने महीनों से क्या कर रही थी।
3: ऐसा है, बीएमसी बोलती है हमने काम किया, पर काम तो कुछ ऐसा लगता नहीं। रात को तो पूरा पानी चढ़ा ही हुआ था, पूरा वीडियो भी है ऐसा मेरे पास, और इधर बाजू में ब्रिज के नीचे भी पूरा पानी चढ़ा हुआ था। अभी पता किया तो बोलते हैं जी पंप खराब था। पहले दिन ही पंप कैसे खराब था, पंप तो पहले चेक करके लगाना चाहिए ना। बस मेरे को इतना ही बोलना है, अभी ठीक है, लेकिन रात भर तो पानी चढ़ा ही हुआ था।
1: मतलब ज्यादा बारिश होगी तो और दिक्कतें होंगी?
3: सवाल ही नहीं ना, ज्यादा बारिश होगी तो और दिक्कतें होंगी ना।
1: मेयर आई हैं, वो तो कह रही हैं काम पूरा हो चुका है, लोगों को परेशानी नहीं।
3: काम पूरा हो चुका है लेकिन पानी तो चढ़ा हुआ था।
0: हालांकि बीएमसी की मेयर रितु तावड़े बारिश के बीच ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के हालचाल लेती नजर आई। जब रितु तावड़े माटुंगा इलाके में जायजा लेने पहुंची थी तो उसी दौरान बीएमसी का एक कर्मचारी खुले नाले में गिर पड़ा। ये कर्मचारी नाले के आसपास निरीक्षण कर रहा था, इसी दौरान उसका पैर फिसला और वो गिर गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने उसे तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं विक्रोली में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सनसिटी कॉम्प्लेक्स की आधी सड़क धस गई और जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर सत्य पवई के एसआर कंस्ट्रक्शन साइट की ओर करीब 50 मीटर लंबी कंपाउंड की दीवार गिर गई। हादसे के बाद बीएमसी अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और कहा कि हम बिल्डर को साइट और आसपास की बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के लिए नोटिस देंगे।
4: लो लाइंग एरियाज की जहां पर हम बात करें तो वहां पर पानी भरने की समस्या हुई थी। अब बीएमसी ने पंप्स और बाकी चीजें लगा रखी हैं। कुछ समय रहते ये जैसे बारिश का प्रेशर या स्पीड कम होती है तो पंपिंग स्टेशन के जरिए उन पानी को जो आप कह सकते हैं खाली करा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देर से आई है मॉनसून, लेकिन आप कह सकते हैं कि क्योंकि आज वर्किंग डे है, सुबह से बारिश थी, तो कहीं ना कहीं चलकर या बसों में ट्रैफिक और इस तरह की चीजें करके लोगों को दफ्तर पहुंचना पड़ रहा है।
0: बीएमसी के लिए आगे की चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि इस बार बीएमसी में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है। मेयर रितु तावड़े भी दावा कर रही हैं कि नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को समय रहते दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन पहली बारिश ने बीएमसी के दावों पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
5: बारिश के बीच मुंबई की मेयर रितु तावड़े पानी भरने के दौरान कई इलाकों में पहुंची। उन्होंने विपक्ष के प्रश्न उठाने पर जोरदार पलटवार भी किया।
1: मुंबई में आज पहली बारिश आ चुकी है। हमारे साथ हैं मुंबई की महापौर रितु तावड़े जी। गांधी मार्केट में फिलहाल वो जायजा ले रही हैं स्थिति का। मैम, पहली बारिश हुई लेकिन कई जगह जल जमाव देखने को मिला, क्या लगता है बीएमसी के काम पूरे हुए हैं?
6: जल जलाओ, आप जो दिखा रहे हो विजुअल्स वो अंधेरी सबवे दिखा रहे हो। मालाड है, उसके बाद में गांधी मार्केट है, मिलन सबवे, वहाँ पे मैंने पूरा ब्यौरा लिया है। पानी पूरा वहाँ पे पूरा निकाला गया है, वहाँ पे जो स्टैग्नेंट वाटर था अभी नहीं है, पूरा रोड क्लियर है, वहाँ की वाहतूक व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। अंधेरी सबवे अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो वहाँ पे वाटर स्टैग्नेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हमने एडिशनल पंप और पूरे हमारी प्रशासन की यंत्रणा काम करने के लिए लगाई है।
7: हाँ मैम, यहाँ पे कुछ अलग व्यवस्था दिख रही है गांधी मार्केट में, क्या है थोड़ा इसके बारे में बताइए।
6: ये पूरा जो आप देख रहे हैं पंपिंग स्टेशन यहाँ पे है, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 पंप लगे हुए हैं। ये जो गांधी मार्केट है ये लो लाइन एरिया है पूरा, यहाँ पे वाटर स्टैग्नेंट रहता है तो पूरा पानी है ये जाने के लिए। ये एडिशनल पंप यहाँ पे हम लोग ने रिस्टेट किए हैं और वाटर भी पूरा पूरा इसमें जा रहा है, और उसी के साथ में रोड का जो भी कचरा है वो पूरा निकालने का काम जो है ये जाली के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए हमने यहाँ पे जो बैरिकेड्स लगाए हैं, लेकिन जब ये काम हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे प्रशासन के अधिकारी खड़े रहते हैं, थोड़ा साइड करके वहाँ पे क्लीन किया जाता है, वापस उसके ऊपर जाली बिठाई जाती है।
7: हाँ मैम, विरोधक कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि ये बारिश ने बीएमसी की पोल खोल नहीं की, जो सत्ता पक्ष है उनकी पोल खोल की।
6: विरोधक घर पे बैठे हैं ना आज भी, ऐसा मैंने सुना है, तो उनको बोलो फील्ड पे उतरे काम करे। अच्छी सूचना है तो जरूर दे, हम मुंबई के लिए काम करने के लिए यहाँ पे उतरे हैं, आप भी उतरो, अगर नहीं उतर सकते तो हमको सूचना दो।
5: खबर उस मर्डर की जिसकी चर्चा हमारे पूरे देश में हो रही है। पुणे में सिया गोयल ने अपने प्रेमी के साथ साजिश रचकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर कर डाला। आज फॉरेंसिक टीम लोहगढ़ किले में पहुंची और जांच के लिए सबूत जुटाए। इस बीच आरोपी चेतन चौधरी के पिता ने दावा किया कि केतन अग्रवाल की हत्या उनके बेटे ने नहीं की बल्कि सिया गोयल ने की। इस हत्याकांड से पूरा देश सन्न है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिया गोयल ने अपने मंगेतर का ही नहीं बल्कि विश्वास का भी कत्ल किया है।

0: केतन के मर्डर के बाद भी सिया ने यह भनक तक नहीं लगने दी कि कहीं से कोई शक उसके ऊपर हो। हालांकि केतन के कुछ रिश्तेदारों ने यह बात नोट की थी कि केतन की मौत के बाद सिया के चेहरे पर कुछ दुख नहीं दिख रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर सिया पूरी तरह से खुद को दुखी बता रही थी। बल्कि सिया ने तो इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट भी किया कि तुम मुझे बर्थडे पर छोड़कर चले गए, तुमने मुझे तब छोड़ा जब हम शादी के बहुत नजदीक आ गए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे तब क्यों छोड़ा जब मैंने तुम्हें इतना प्यार किया।
1: जिस लोहगढ़ पे अभी हम खड़े हैं, इसी स्पॉट पे, इसी जगह पे दोनों खड़े थे। 31 मई को सबसे पहले यहाँ आए थे, तभी सिया गोयल ने यहाँ रेकी कर ली थी, उसके बाद उसने प्लान उसके जहन में आया और फिर 14 जून की तारीख आई। 14 जून को भी यही दोनों मिले, पूरा ट्रेक करके लोहगढ़ के ऊपर आ गए और फिर सिया ने कोशिश की, उसने पहले दिखाया कि यहाँ सांप है, वो जोर से चिल्लाई, लेकिन फिर भी वो केतन अग्रवाल को खाई में ढकेल नहीं सकी। उसके बाद एंट्री होती है चेतन चौधरी की, जिस चेतन के साथ सिया के पिछले दिवाली के बाद ही संबंध जुड़ चुके थे, दोनों साथ में थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, और फिर उसने चेतन चौधरी की मदद करने की कोशिश की, और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों साथ में यहाँ पहुंचे, अलग अलग जगहों से आए, और यही इसी जगह से उसने केतन को धक्का दिया। जोर से धक्का देने के बाद केतन नीचे झाड़ी आपको नजर आ रही है, उस झाड़ी में जा गिरा, और उसके बाद सिया गोयल यहाँ से ऊपर चढ़ के और एक हनुमान जी का मंदिर है वहां चली गई और वहां से जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा बगेतर नीचे गिर गया है।
0: लेकिन शायद सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी ये भूल गए थे कि कातिल खुद को कितना भी शातिर समझे, एक न एक दिन वो पकड़ा जाता है। यहाँ भी यही हुआ, क्योंकि सबसे पहले पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगाले तो ये हुडी वाला शख्स उन्हें केतन और सिया के आसपास दिखा। पुलिस को शक हुआ कि 33 डिग्री के गर्मी भरे तापमान में ये शख्स कौन है जो हुडी पहने हुए है, मास्क लगाए हुए है, खुद को दिखाना नहीं चाहता है। फिर फोर्ट के गार्ड से पूछताछ हुई तो गार्ड को भी उस पर शक हुआ, क्योंकि उसने ऊपर जाने के लिए टिकट ही नहीं लिया था।
1: केतन के आगे जाने के बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है, और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ। यहां के टिकट काउंटर में जो थे उनके साथ उनकी उस दिन बात भी हुई थी, टिकट देने से उन्हें मना किया था, बोल रहे थे कि आने वाले वक्त टिकट देंगे। एग्जैक्टली क्या उस दिन आपकी बात हुई थी उनके साथ?
2: जी सर, अभी वो कान में हेडफोन डाला था, उसको पीछे से आवाज दिया था सर टिकट लेके जाओ, टिकट लेके जाओ करके। वो का इतना गया नहीं, फिर हम आगे थे वहाँ पे तो उसको हम रुकवाए, उसको तो बोला था सर हम एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, हम रिटर्न में टिकट ले लेंगे।
0: केतन का परिवार गम में था, लेकिन पुणे पुलिस की जांच लगातार चल रही थी। हालांकि परिवार की तरफ से भी ये शक जताया गया कि उनका बेटा केतन फिसल कर कैसे गिर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करता था, उसे ऐसी जगहों पर चलने का अच्छा खासा अनुभव था।
1: सर एग्जैक्टली फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है, आप भी आ चुके हैं, किस तरीके की तहकीकात अभी शुरू है?
3: देखिए अभी जो घटना स्थल है, किसी भी जब क्राइम घटता है तो उसमें घटना स्थल की पहानी, उसका पंचनामा, ये प्रथम रहता है किसी भी तहकीकात में, और वो प्रोसेस आयो ने की है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसके दो, एक ये जो टॉप ऑफ द फोर्ट है और एक नीचे जो जंगल में यहाँ पे डिसीज्ड की बॉडी मिली थी वो ठिकाना है। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है, कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं, वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है।
0: फिर पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड मंगाया तो और ही कहानी पता चली। सिया के एक फोन नंबर पर इसी साल जनवरी से जून तक 2000 से ज्यादा बार बात हुई थी और ये नंबर केतन का नहीं था, तो पुलिस का शक गहराया। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता किया तो वो चेतन चौधरी का निकला।
4: हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं, और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा, नहीं बात, पहली बार वो पुलिस चौकी में देखा उसको, लड़की को।
5: अच्छा,
4: हाँ
5: आपने?
4: हाँ।
5: अच्छा मुझे एक बात बताइए,
4: और उसका नाम ये मुसब कलीज मालूम पड़ा है। अब उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसको उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं।
5: अच्छा,
4: चेतन ने उस हम जब चौकी में गए उसको अरेस्ट करने के बाद में, तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विका कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था।
0: पुलिस ने सीधे चेतन को पकड़ा तो उसने पुलिस को सारी कहानी खुद ही बयां कर दी, और फिर इस खतरनाक हत्याकांड का खुलासा हुआ। पता चला कि पूरी प्लानिंग सिया और चेतन ने मिलकर की थी।
6: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि चेतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे, वहां गए बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा।
7: केतन अग्रवाल सिया गोयल के रोके का वीडियो भी आज तक के पास है। इस वीडियो में केतन और सिया बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 20 और 21 फरवरी का है, जबकि 19 फरवरी को दोनों का रोका था। इस वीडियो को देखकर कहीं से ये नहीं लग रहा, आप नहीं कह सकते कि सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी। दूसरा वीडियो लोहगढ़ का है। जब आज FSL की टीम सबूत जुटाने के लिए लोहगढ़ पहुंची थी, पुलिस हर एंगल से मर्डर की जांच कर रही है। दूसरा वीडियो जो आज जांच का है, पुलिस वहां पर सबूत जुटाने पहुंची। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद मुंबई मेट्रो में और खबर, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
10: To right field, and it will leave.
9: From the first pitch of the season to the stretch run,
10: and that's the ball game.
9: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मुंबई में एक सिरफिरे ने लोकल ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी में मामूली से विवाद में एक लड़के की हत्या कर दी। आरोपी ने भीड़ के सामने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके बच्चे की हत्या कर दी। ट्रेन रुकने से पहले ही कूद कर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुरला से इसे गिरफ्तार कर लिया।
2: मुंबई लोकल की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। काली शर्ट पहने हुए इस आदमी के हाथ में चाकू है। इसी चाकू से इसने मयंक लोहार नाम के लड़के को जान से मार दिया। मयंक लोहार पर चाकू चलाने के बाद ये लोगों में दहशत भर रहा है। पीछे से आवाज आ रही है कि उसे मार दिया।
3: मुंबई की लोकल ट्रेन में आए दिन झगड़े ये आम होते रहे, परंतु एक झगड़ा जो है एक मयंक नाम के 22 साल के युवक पे जो है जान ले चुकी है। ये मयंक जो है, जो वीडियो आपने देखा रहेगा कि जो ट्रेन में, मुंबई लोकल ट्रेन में जो है शरीर चलती ट्रेन में चाकू से सारे मयंक लोहार पर ये जो हमला किया और इस हमले में मयंक की जगह पे मौत होगी। मयंक इसी विरार में जीवदानी रोड पे रहता था, उस बिल्डिंग में मैं हूँ। अमरनाथ नाम की ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के तीसरे मंजिले पर ये मयंक लोहार फैमिली के साथ रहता था। मयंक के फैमिली में उसके दो भाई, मम्मी डैडी और एक छोटी सी बहन है। मयंक जो है मुंबई के अंधेरी इलाके में काम करता था। कल देर रात 7:30-10 बजे चर्चगेट नाला सोपारा लोकल उसने पकड़ी थी और आए दिन वो फर्स्ट क्लास में ही अपनी यात्रा करता था। पर कल जो आरोपी है, आरोपी के साथ ट्रेन का डब्बा जो है उसका दरवाजा बंद करने के ऊपर से कुछ थोड़ी सी मचमच हो गई और इसी झगड़े से वो जो आरोपी है उसने चाकू निकालकर मयंक की हत्या की है।
2: अब मयंक के घर में मातम है, माँ बदहवास है, परिवार न्याय मांग रहा है।
4: मुझे न्याय चाहिए मेरे भाई।
5: जिसने किया उसको कुछ ना कुछ तो
4: मौत की सजा होगी। मैंने भी जान खोया है तो मौत की सजा होगी।
2: अब इन तस्वीरों को देखिए, सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है इसी ने मयंक लोहार को जान से मारा है। मयंक लोहार विरार में रहता था और अंधेरी में नौकरी करता था। विरार से अंधेरी तक उसका रोज का आना जाना था। 23 जून को अंधेरी से विरार लौटते वक्त रात में करीब 10:15 बजे जोरदार बारिश हो रही थी। पश्चिमी रेलवे चर्चगेट नाला सोपारा फास्ट लोकल में मयंक लोहार ट्रेन का गेट बंद करना चाह रहा था, लेकिन आरोपी ने उसे मना कर दिया और उसके बाद दोनों में गेट बंद करने को लेकर विवाद हुआ और फिर रोशन नाम के आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया।
6: कल 23 तारीख को रात 11 बजे मंडल फसला डिब्बे में जोड़ेगांव से लेके गांधीनगर तक के बीच में दो सह प्रवासियों के बीच में लोकल ट्रेन का दरवाजा बंद करने के कारण झगड़ा हुआ था।
2: आरोपी वारदात के बाद ट्रेन रुकने से पहले ही कूदकर फरार हो गया था, लेकिन मुंबई पुलिस और जीआरपी की कई टीमों ने सैकड़ों सीसीटीवी खंगालकर रोशन नाम के आरोपी को कुरला से गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों में वारदात को लेकर काफी नाराजगी देखी जा रही है।
7: ये माहौल को देखने के बाद पता चलता है क्या कितना, मतलब किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है। मतलब वो पब्लिक, मतलब वो एक लड़का ट्रेन में किसी को बोल रहा है तो उसके ऊपर ऑन द स्पॉट एक चाकू का धारदार हथियार से उसके ऊपर वार हो रहा है। ये गलत ही है, पूरे पूरे गलत है करके ऐसे आरोपी सब जगह घूम रहे हैं। उसके हाथ में ये सब हथियार लेके वो घूम रहा है, मतलब किसी से बात करना भी गुनाह है क्या? अब ढानू से लेकर चर्चगेट तक आप देखो कि ट्रेन में कितना प्रॉब्लम है। रेलवे पुलिस कभी दिखती नहीं है। आप देखने जाओगे तो अनलीगली गुटखा, बहुत सारी चीज ऐसे अनलीगली पास हो रहे, मगर उसके लिए किसी ने आवाज उठाया तो उसको दबाते।
2: अब सवाल उठ रहे हैं कि लोकल के फर्स्ट क्लास में भी क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे और आरोपी धारदार हथियार लेकर ट्रेन के अंदर कैसे पहुंच गया? प्रवीण नलावड़े के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pierce shared why she loves award show season.
9: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
8: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
10: राम मंदिर को दिए गए दान में गबन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। मामला कुछ सौ या हजार रुपए का नहीं बल्कि इससे काफी बड़ा है। कहीं 7 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का दावा है तो कहीं 200 करोड़ तक के घोटाले की बात कही जा रही है। सबसे गंभीर आरोप 1250 से ज्यादा सोने चांदी और अष्ट धातु की शिलाओं के गायब होने का है, जिसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। मुंबई के सिंधी समाज ने अपने दिए चांदी को लेकर सवाल उठाया है। सिंधी समाज का दावा है कि उन्होंने 200 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर निर्माण के लिए दान दी थी, लेकिन अब तक ना तो उन्हें रसीद मिली और ना ही ये बताया गया कि उन शिलाओं का उपयोग कहां हुआ।
11: दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है।
10: 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर के लिए सामूहिक दान किया गया था, जिसमें कुल 200 किलोग्राम चांदी शामिल थी। हर ईंट का वजन लगभग 1 किलोग्राम था। चांदी की ईंटों पर सिंधी समुदाय के देवता झूलेलाल की आकृति उकेरी गई थी। इस दान के लिए 12 देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं से चंदा इकट्ठा किया गया था। सवाल ज्वेलर एसोसिएशन की ओर से दान की गई 60 किलो चांदी की शिलाओं को लेकर भी उठ रहे हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके पास शिलाएं ट्रस्ट को सौंपने की रसीद मौजूद है। दावा है कि देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार 60 किलो चांदी की शिलाएं नींव पूजन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान दान की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण।

कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 5 की मौत, 20 घायल। कोलकाता में गोदाम में मलबे में अभी भी कई लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को बचाने का काम तेजी से। हादसे के दौरान 40 से 50 मजदूर कर रहे थे काम, तभी एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सेना ने संभाला मोर्चा, बचाव दल ने गैस कटर की सहायता से लोहे की चेन बीम को काटकर फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश की। सीएम शुभेंदु ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों को रेस्क्यू कार्य तेज करने के निर्देश दिए। सीएम शुभेंदु बोले, पहले गलत परियोजना को दी गई थी स्वीकृति, जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी। कोलकाता हादसे पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, रेस्क्यू पहली प्राथमिकता, अवैध निर्माण अनुमति की होगी उच्च स्तरीय जांच। बंगाल हादसे पर भड़के बंगाल के उद्योग मंत्री तापस रॉय बोले, अब बहुत हो चुका, 15 साल से चल रहे अवैध निर्माणों की होगी जांच, मिलेगी कड़ी सजा। अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मांगी अनुमति, हाईकोर्ट से राहत नहीं, फिलहाल नहीं जा पाएंगे विदेश। कूचबिहार में कटबनी विवाद में आरोप के बाद टीएमसी नेताओं ने लौटाए करीब 90,000 रुपए, आवास योजना में पैसे लेने का आरोप। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सम्राट चौधरी को का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के लिए रिटायर्ड जज विजय सिन्हा की विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। भरत तिवारी एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की चुप्पी, बोले जांच पूरी होने तक टिप्पणी करना उचित नहीं। भोजपुर जिले में बिलोटी गांव में महापंचायत में जुटे लोग, श्राद्ध क्रम तक एक्शन नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन, एनकाउंटर के दौरान मौजूद रहे पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग। भरत तिवारी एनकाउंटर पर जनसुराज के प्रशांत किशोर बोले, बिहार संविधान से चलेगा, सम्राट से नहीं। प्रशांत किशोर का पुलिस प्रशासन पर हमला, बोले जिन पुलिस अधिकारियों ने मारने का आदेश दिया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर अशोक चौधरी बोले, हर घटना पर मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं, महापंचायत पर भी साधा निशाना। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर बोले, वो सनातन के लिए लड़ता था, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, अगर वो अपराधी था तो अदालत से उसे सजा मिलनी चाहिए। मुकेश सहनी बोले, किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, SDPO थाना अध्यक्ष समेत पुलिस अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की मांग। लखनऊ अग्निकांड में योगी सरकार का सख्त एक्शन, LDA ने 19 इंजीनियरों 6 PCS अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की सिफारिश की। लखनऊ अग्निकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दम घोटू धुएं से गई 15 छात्रों की मौत। लखनऊ में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर एलन कोचिंग सेंटर सील किया गया, LDA बोला बिना स्वीकृति के चल रहा था एलन। बेंगलुरु में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी, गूगल के अधिकारियों के साथ बैठक, रोजगार के अवसरों पर चर्चा। गूगल क्लाउड के CTO तरुण पंत ने सीएम योगी के विजन की तारीफ की, बोले AI के द्वारा किसानों, युवाओं, स्टार्टअप्स के लक्ष्यों को हासिल करेगा यूपी। योगी बोले, 9 साल में बीमारू टैग से बाहर निकला यूपी, अब 3S मॉडल का प्रतीक बना, जहां सुरक्षा, स्थिरता, स्पीड तीनों। योगी ने उद्योगपतियों को निवेश का न्योता दिया, यूपी में निवेश का बेहतरीन माहौल है। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने यूपी सरकार की SIT को फर्जी कहा, FIR दर्ज कर जांच CBI ED को क्यों नहीं सौंपी गई। केजरीवाल के 26 जून को होने वाले अयोध्या दौरे पर विरोध तेज, धार्मिक संगठनों ने आपत्ति व्यक्त की, बोले रामनगरी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, प्रशासन से दौरा रोकने की मांग। केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर संत समाज ने केजरीवाल को चेतावनी दी, आस्था का ध्यान रखा जाए, पहुंचने पर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। बिहार में EOU की बड़ी कार्रवाई, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर्स पर करोड़ों की अवैध संपत्ति बनाने का एक्शन, पटना, भागलपुर, नोएडा, दिल्ली में छापे की तैयारी। कर्नाटक में मनरेगा की जगह VBG रामजी योजना 1 जुलाई से लागू, जिसका पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। महाराष्ट्र के पुणे में लड़की पर करोड़पति मंगेतकर की हत्या का आरोप, प्रेमी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार शादी से बचने के लिए सिया गोयल ने बनाया हत्या का प्लान, फोटोशूट के बहाने लोहगढ़ के लिए लेकर गई। पुणे हत्याकांड में फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया, इसे एक ट्रैकिंग दुर्घटना माना गया था शुरुआती जांच। लोहगढ़ फोर्ट मर्डर केस में गेटकीपर का बड़ा दावा, चेतन चौधरी मास्क और स्पोर्ट्स ड्रेस में कले में आया था। पुणे में करोड़पति व्यापारी के पिता ने सिया गोयल के परिवार पर उठाए सवाल, कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, उन्हें शुरू से सब पता था।
बाल विवाह रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की पहल, जल्दी शादी के कार्ड पर जन्मतिथि लिखना अनिवार्य बनाने की योजना। शिरडी के साईं दरबार में 2.5 करोड़ श्रद्धालु टेकते हैं मत्था। ट्रस्ट के पास 550 किलो सोना, हर साल 65 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। मुंबई में फिल्म वेलकम टू द जंगल की सफलता की कामना के लिए अक्षय कुमार और अक्षरा सिंह सिद्धिविनायक के दरबार में पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में सीएम विजय के जन्मदिन पर अरुलमुगु सुब्रमण्यम मंदिर में विशेष पूजा, भगवान की निकाली गई भव्य रथ यात्रा, लोगों को बांटा गया अन्न। उज्जैन में महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रदर्शन, बोले गर्भगृह में सभी का प्रवेश बंद हो। दिल्ली में बाढ़ को लेकर सरकार अलर्ट, रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी, मानसून 2026 के लिए बाढ़ नियंत्रण आदेश जारी। बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित, 15 जून से 15 अक्टूबर तक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम सक्रिय। यमुना नजफगढ़ ड्रेन के लिए 3 स्तरीय चेतावनी प्रणाली, 20 से अधिक संवेदनशील तटबंधों, पंपिंग स्टेशन की विशेष निगरानी। बाढ़ को लेकर 13 जिलों में राहत व्यवस्था, हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू, वाटर लॉगिंग हेल्पलाइन नंबर जारी। नेपाल में भारी बारिश से बागमती का बढ़ा जलस्तर, मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसी स्थिति। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में मॉनसून होगा मजबूत, अगले 2 दिनों के लिए ठाणे मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट। मुंबई के अंधेरी में अंडरपास में भरा पानी, यातायात फिर बंद। मुंबई के दादरी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भरा, ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित। मुंबई के गांधी मार्केट में मूसलाधार बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, कई वाहन पानी में फंसे। नवी मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, लोग मुसीबत में। ठाणे में मूसलाधार बारिश से पानी भरा, बारिश का आनंद लेते नजर आए बच्चे। वाशिम में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, कई इलाके पानी में डूबे। गुजरात के नर्मदा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, कई नदियों में उफान, सड़क मार्ग बंद। अरुणाचल प्रदेश के केई पन्योर जिले में बादल फटने से मची तबाही, भारी बारिश के बीच निर्माणाधीन रिटेनिंग दीवार गिरने से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। अरुणाचल प्रदेश के केपी पन्योर में अचानक आई बाढ़ से 15 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त, एक महिला लापता, कई के लापता होने की आशंका, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का राहत बचाव काम। वडोदरा में कंपनी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बुझाई। गाजियाबाद में कबाड़ गोदाम में भयंकर आग, 5 लोग झुलसे, दमकल ने आग बुझाई। गाजियाबाद में पुरानी रंजिश में युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में सनसनी। सोनभद्र में टला बड़ा हादसा, डैम से पानी छोड़े जाने पर टापू में फंस गए 11 लोग, पुलिस ने किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार में 8 संदिग्ध मौत का खुलासा, आपसी रंजिश में जहरीली शराब पिलाकर मार डाला। जम्मू कश्मीर के गढ़वा में भीषण हादसा, बिलावर जा रही बस खाई में गिरी, 23 श्रद्धालु घायल। बिहार के मोतिहारी में भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की टक्कर में 4 की मौत, 4 की स्थिति गंभीर। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल से 3.5 क्विंटल गांजा बरामद, करोड़ों की खेप के साथ चालक गिरफ्तार। रायबरेली में मंदिर में मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पुजारी ने लात मारी, महिलाओं से छेड़खानी का आरोप। फतेहपुर में पारिवारिक विवाद में पिता ने बेटे बहू को गोली मार दी, दोनों की मौत हुई, बहू की स्थिति गंभीर। हापुड़ में 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर भारी हंगामा, लाठी डंडे चले। बिजनौर में शुगर फैक्ट्री में रखी गर्म राख से झुलसे 4 बच्चे, 1.5 महीने पहले घटना के दौरान मासूम की मौत। पंजाब में बिहार भेजी जा रही थी 2.3 करोड़ कीमत की शराब, चंदौली पुलिस ने जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ड्यूटी के दौरान बीएसएफ जवान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत। बिहार के मुंगेर पर गंगाहाट पर बड़ा हादसा, नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 2 के शव बरामद, 4 लापता। धौलपुर में शादी के दौरान विवाद के बाद पत्नी की निर्मम हत्या, पति फरार, करीब 1.5 साल बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में मेयर के निरीक्षण के दौरान हादसा, बीएमसी कर्मचारी खुले नाले में गिरा, समय रहते बचाया गया। मुंबई लोकल का दरवाजा बंद करने को लेकर बहस, झगड़े के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या। महाराष्ट्र के वासिम में ओवरलोड सवारियों से भरी वैन पलटी, 1 की मौत, 11 घायल, टायर फट गया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रेलवे इंजन में मिला अजगर का बच्चा, देर रात रेस्क्यू किया गया। आईसीसी की ओर से ताजा वनडे रैंकिंग का ऐलान, 791 रेटिंग पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल ने नंबर 2 पर जगह बनाई। गिल के अलावा रोको भी टॉप 10 बल्लेबाजों की लिस्ट में, विराट कोहली तीसरे, रोहित शर्मा 4 नंबर पर। ताजा गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह अब भी नंबर 1, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी
के साथ संयुक्त रूप से नंबर वन पर बुमराह। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शुभमन सातवें नंबर पर, उनके पीछे यशस्वी आठवें नंबर पर, बारहवें नंबर पर हैं ऋषभ पंत। ऋषभ की लखनऊ सुपर जायंट्स से विदाई। आईपीएल के दो सीजन टीम के कप्तानी करने के बाद वापस पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स पहुंचे पंत। फिल्म दुल्हनिया ले आएगी का फर्स्ट लुक जारी, 24 जुलाई को आएगी फिल्म। फिल्म तेरा यार हूं मैं का नया गाना 24 जुलाई को होगा रिलीज। फरहान अख्तर की पीरियड फिल्म में नजर आएंगे सलमान, 2027 में शुरू होगी शूटिंग। कमल हासन की फिल्म धर्मन में रजनीकांत का फर्स्ट लुक जारी, डेडली डॉक्टर बने रजनी। फिल्म कॉकटेल 2 का नया गाना रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर शानदार कर रही है कमाई। 48% ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी करते समय सामान की एक्सपायरी डेट नहीं दिखाई देती, सर्वे में फ्लिपकार्ट कमाना है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम समेत सभी यूपीआई एप्स पर सारे ऑटो पेमेंट, ईएमआई और सब्सक्रिप्शन एक जगह आएंगे नजर। एनपीसीआई की नई व्यवस्था के तहत मंथली पेमेंट आसानी से मैनेज कर पाएंगे अब आप। यूपीआई आधार बैंकिंग के चलते ग्रामीण छोटे शहरों के एमएसएमई दुकानों में लेन देन में 61% की बढ़ोतरी। एमएसएमई में डिजिटल उपकरणों का प्रचलन तेजी से बढ़ा। लंदन की अदालत में नीरव मोदी बैंक फ्रॉड मामले में बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बैंक फ्रॉड मामले में 100 करोड़ से अधिक रकम लौटाने का आदेश। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद ने विकसित भारत के लिए 7-8% की विकास दर को जरूरी बताया। 2047 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी निवेश, निर्यात बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनना जरूरी। ट्रंप ने ईरान को पैसा देने पर बड़ी जानकारी दी, का ईरान के जब्त पैसे के अलावा नहीं दिया हमने कोई भी पैसा, साथ ही कहा ईरान की सरकार हुई है सहमत। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में परमाणु संस्था आईएईए जल्द ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण करेगी, राफेल ग्रॉसी ने दी जानकारी। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा मध्य पूर्व की सुरक्षा को तय करने का अधिकार इस क्षेत्र के देशों को, बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। अमेरिका ईरान समझौते पर पाकिस्तानी पीएम का ईरान के पक्ष में बयान, कहा एमओयू में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का नहीं कोई उल्लेख। इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अगर अमेरिका भी करेगा मांग तब भी लेबनान से अपने सैनिकों को हम नहीं हटाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महत्वपूर्ण अवसर के लिए भेजा आधिकारिक निमंत्रण। रूसी विदेश मंत्री ने कहा यूक्रेन के मुद्दे पर कोई भी अल्टीमेटम नहीं होगा स्वीकार, ट्रंप के साथ अलास्का में बातचीत बनी हमारी लिए सबसे महत्वपूर्ण। यूक्रेन की सेना का दावा, रूस के ओरेनबुर्ग में मौजूद ऐतिहासिक और प्राकृतिक गैस प्लांट हीलियम प्लांट पर हमने किया हमला। तेजी से नौसैनिक शक्ति बढ़ाने में जुटा है उत्तर कोरिया, किम जोंग ने नए विध्वंसक युद्धपोत को सेना में शामिल किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने उत्तर कोरिया से लगती सीमा के पास उत्तर कोरियाई सैनिक को गिरफ्तार किया, जांच जारी।

अपमानजनक वीडियो बनवाए और उन्हें डार्क वेब और टेलीग्राम पर बेचा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस साजिश का मुख्य आरोपी एक हिंदू लड़का निकला, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस शर्मनाक खेल को अंजाम दिया। इसके बाद आपको पाकिस्तान के एक और सफेद झूठ के बारे में बताएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह बेनकाब हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रफाल विमानों को मार गिराने का दावा करने वाले पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना ने सबूतों से करारा जवाब दिया। एयरफोर्स ने फ्रांस की कंपनी से अपने पूरे रफाल बेड़े के लिए एक नया सपोर्ट टेंडर मांगा है, जिसमें साफ तौर पर सभी 36 रफाल विमानों के लिए रखरखाव का जिक्र है। आखिर में आपको बताएंगे कि क्या इथेनॉल और डेटा सेंटर आपका सारा पानी पी जाएंगे? एक तरफ पेट्रोल में मिलाया जाने वाला इथेनॉल को बनाने और दूसरी तरफ डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर पानी जरूरी है, तो क्या इथेनॉल और डेटा सेंटर की यह जरूरत हिंदुस्तान को डे जीरो यानी भयंकर जल संकट की तरफ धकेल सकती है? लेकिन आज का पहला विश्लेषण उस साजिश को लेकर है जिस पर हमारे लिए भी यकीन करना आसान नहीं था। जब भी लव जिहाद जैसा कोई मामला बाहर आता है तो सबसे पहले उसे खारिज करने की कोशिश होती है। खारिज यह भी कहकर किया जाता है कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा होगा या इसके पीछे कोई राजनीति होगी। हम इससे इनकार नहीं करते कि ऐसे मामलों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं होती, बिल्कुल होती। लेकिन यह भी सच है कि हर बार ही ऐसा नहीं होता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सोच से परे होते हैं और जो ऐसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना की। आज हम आपको एक ऐसी साजिश के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर सरकारों और खुफिया एजेंसियों को सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर आपके घर में भी महिलाएं मोबाइल फोन चलाती हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं या उन्हें अज्ञात नंबर से कोई मैसेज आ रहा है, तो आपको भी यह खबर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस विश्लेषण को हमने द कोटा स्टोरी का नाम दिया है और इसकी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। FIR के अनुसार पाकिस्तान में बैठे कुछ कट्टरपंथियों ने एक साजिश शुरू की और इसका नाम रखा जिहाद अल अकबर। जिहाद अल अकबर का मतलब था सबसे बड़ा संघर्ष या सबसे बड़ा जिहाद। पुलिस को की गई शिकायत में लिखा है कि इसका मकसद था भारत में हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाना, उन्हें हिंदू धर्म से नफरत कराना और उन्हें यह कहना कि वो अपने देवी देवताओं का अपमान करें, उनकी मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाएं। यह ऐसी चीज थी जो इससे पहले आज तक कभी हुई नहीं थी। अब तक लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आए उनमें यही आरोप लगा कि आरोपियों ने हिंदू लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपनी पहचान छिपाकर धोखा दिया। लेकिन यह मामला इससे बहुत आगे का है। शिकायत करने वाले लोगों का आरोप है कि इस मामले में शादीशुदा हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की पहले पहचान होती थी, इसके बाद उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे, फिर उनसे यह कहा जाता था कि उनके हिंदू देवी देवता नकली हैं, उन्हें इनकी मूर्तियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाने चाहिए। जब वे वीडियो बन जाते थे तब इन्हें दूसरे ग्रुप्स में शेयर किया जाता था और इन्हें दूसरी हिंदू लड़कियों को भी दिखाया जाता था। ऐसा इसीलिए किया जाता था ताकि इन लड़कियों के अंदर भी यह जहर डाला जाए कि हिंदू देवी देवताओं का कोई वजूद नहीं। इसके बाद पाकिस्तान से जुड़े कट्टरपंथी टेलीग्राम ऐप पर इन वीडियोस को भारत से मंगाते थे और इन्हें पाकिस्तान और दूसरे देशों में बेचा जाता था। आरोप है कि यह बताकर बेचा जाता था कि भारत में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद अल अकबर चल रहा है, जिसमें हिंदू महिलाएं खुद अपने देवी देवताओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो बना रही हैं। ये वीडियो इतने खतरनाक हैं कि इन्हें हम ब्लर करके भी आपको नहीं दिखा सकते। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस शिकायत में इस साजिश का शक एक हिंदू युवक पर ही जताया गया है। इसका नाम है मनीष शर्मा, जो कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में आया। इसके बाद इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, अपना नाम मोइन खान रख लिया। यह भी आरोप है कि मोइन खान बनने के बाद इसने कई हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया, उनके शरीर पर आपत्तिजनक बातें, गजवाए हिंद, ओम और स्वास्तिक चिन्ह तक लिखवाया गया ताकि हिंदू धर्म का अपमान हो सके। आरोप है कि यह सब कुछ इसीलिए किया जा रहा था ताकि

0: ये लड़कियां अपने धर्म से नफरत करने लगें और फिर इन वीडियोस को डार्क वेब और दूसरे माध्यम से इंटरनेट पर बेचा जाए। इसके लिए टेलीग्राम पर एक नया अकाउंट भी बनाया गया जिसका नाम था सनातनियों की नीलामी। इस टेलीग्राम अकाउंट में हिंदू महिलाओं के खिलाफ जो अश्लील बातें होती थी उनके बारे में तो हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन इस चैट का एक हिस्सा हम आपको जरूर पढ़कर सुनाना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें लिखा है कि एक लड़की से तीन चार लड़कियां फंसाओ, किताबों का हवाला देकर इन्हें यह बताओ कि इनकी हिंदू देवियां कैसी हैं, इन्हें ऐसे संदर्भ बताओ कि इन्हें अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए अपराध बोध महसूस न हो। फिर इसी में आगे ये लिखा है कि अगर ये लड़कियां वीडियो बनाने के लिए तैयार न हो तो इन्हें ब्लैकमेल करो, इन्हें डराओ कि इनके अश्लील वीडियो सब जगह वायरल कर दिए जाएंगे। फिर स्नैपचैट और डिस्कॉर्ड ऐप पर भी ये लोग इसी तरह की बातें लिखते थे। इनमें पठान साहब नाम के अकाउंट में एक यूजर अनिका नाम की लड़की को लिखता है कि जिहाद दो तरह के होते हैं लेकिन इनमें जिहाद अल अकबर सबसे ज्यादा जरूरी है जो हर मुसलमान को करना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि जिहाद अल अकबर का मतलब होता है हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाना, निकाह से पहले उन्हें बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करना, और अगर एक बार उस हिंदू लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया तो वो अपने आप मुसलमान बन जाती है और यही है जिहाद अल अकबर। ये लोग आगे ये भी लिखते हैं कि अब उनका मकसद हिंदू महिलाओं को सिर्फ इस्लाम धर्म कबूल करवाना नहीं है, उनका मकसद है उन्हें अंदर से मुसलमान बनाना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि उनके हिंदू देवी देवताओं का कोई वजूद नहीं। हमें कुछ ऑडियो क्लिप भी मिले हैं जिन्हें सुनने पर यह पता चलता है कि इसमें वो लोग शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं और ये खुलकर कह रहे हैं कि इनका मकसद हिंदू महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के दिमाग में ये बात बैठाना है कि उनका भगवान कुछ नहीं। सुनिए,
1: नस्ल इसी काबल है, इनको जितनी गालियां दो जितना इनको इनके भगवान के ऊपर इनसे ठीक है, इनको अपने पाँव में बिठाओ, ये इसी काबल है, इनको जहनों में ये चीज बिठा दो कि मुस्लिम सुप्रीम है बस। नहीं मेरी जान, हम बड़े अरसे से ये कर रहे हैं, हमारा आज का काम नहीं है ये। 92 में पाकिस्तान में जब इंटरनेट नया नया आया था, कंप्यूटर का हम उस दौर के पड़े हुए हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही है। लड़कियाँ मकसद होता तो लड़कियाँ इतनी मिलती हैं ज़िंदगी में कि आपकी भूल है ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त हमें लड़कियां भी अगर चाहिए तो अपने तरीके से चाहिए और ख़ास मकसद के लिए चाहिए। अपना मिशन यही है ठीक है ना, के जहन में ये चीज़ बिठा दो कि इनका भगवान कुछ नहीं, और हिंदू लड़कियां जितनी भी मिलें ठीक है, ख़ासकर मैरिड लेडीज स्पेशली, उनका मंगलसूत्र और उनका मतलब है माथे का सिंदूर सामने नज़र आना चाहिए और उनसे धार्मिक करवाओ वीडियो कॉल पर, वो अपने मुँह से बोल के मुस्लिम को भगवान बोले, वो डाटा चाहिए, वो अगर आपको मतलब है इंटरफेथ का डाटा मिले ना हिंदू मुस्लिम का तो वो चाहिए।
0: कोटा एक ऐसा शहर है जहां हर साल अधिकतम 2.5 लाख बच्चे नीट जेई जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, और अगर इस कोटा शहर को लेकर यह आरोप लग रहा है कि वहां पाकिस्तान के जरिए धर्मांतरण और हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें बेचने का खेल चल रहा था तो यह बहुत खतरनाक बात है। हालांकि पुलिस कह रही है कि वो इन आरोपों की जांच कर रही है और अभी धर्म परिवर्तन और पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। सुनिए,
2: मनीष शर्मा जो विज्ञान गर्म रहता है, ये टेलीग्राम और उन चैनलों से जुड़ा हुआ था, उन चैनलों में एंट्री के लिए इसने अपना फेक नाम रख रखा था, उस फेक नाम से चैनलों से जुड़ा हुआ था,
3: मोइन खान था,
2: हाँ फेक नाम उसने मोइन खान रखा हुआ था, और उसी के अनुसार वो उसमें वीडियो फुटेज वगैरह देख रहा था, उसमें से कुछ वीडियो फुटेज इसने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखी थी, उसी के आधार पर इसके खिलाफ मुकदमा करके गिरफ्तार किया गया जो भी जेल में।
3: तो फिर नाम तो मोइन खान रख लिया था सर, मुस्लिम नाम है।
2: अब वो उसने चैनल्स पर काम करने लिए रखा था, बाकी और रिकॉर्ड में सारा उसका नाम आज भी वही है जो हिंदू धर्म का नाम।
0: अब जब भी हमारे देश में लव जिहाद जैसा कोई मामला उठता है तो एक वर्ग जांच से पहले ही उसे खारिज कर देता है। उदाहरण के लिए केरलम में ऐसे मामलों पर खूब राजनीति हुई है, और जब वहां लेफ्ट की सरकार थी तब भी वाम मोर्चे से जुड़े नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बताते थे, लेकिन इस दोहरे मापदंड पर अक्टूबर 2025 में तब गंभीर सवाल उठे जब कासरगोड में एक 35 साल की महिला ने यह आरोप लगाया कि उसे उसके पिता ने घर में बंधक बनाकर रखा है और इसका कारण यह है कि वो राशिद नाम के एक लड़के से शादी करना चाहती है। जिस पिता पर यह आरोप लगे वो कोई और नहीं बल्कि सीपीएम के नेता पीवी भास्करन थे। बाद में उनकी तरफ से इन आरोपों को खारिज किया गया और यह मामला अदालत भी पहुंचा। लेकिन लोगों ने यह सवाल उठाए कि जब आम लोगों की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें प्रोपेगेंडा कहा जाता है, लेकिन जब नेताओं के घर में कोई ऐसा मामला होता है तो वो दोहरे मापदंड अपनाते हैं। खैर, ये मामला उस वक्त अलग अलग दावों के कारण काफी उलझा, लेकिन ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि कोटा में जिस तरह की साजिश के आरोप लग रहे हैं वैसे ही मामलों से इंग्लैंड भी जूझ रहा है। हाल ही में ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लो की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पिछले कई दशकों में करीब 2.5 लाख लड़कियां ऐसे अपराधों का शिकार हुई जिनमें उन्हें प्यार में फंसाकर उनका यौन शोषण हुआ और उन्हें उनके धर्म के प्रति कई बार बरगलाया गया। इंग्लैंड में ऐसे अपराधों के पीछे ग्रूमिंग गैंग को माना जाता है जिससे जुड़े लोग पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उन्हें प्यार, सुरक्षा और अपनापन महसूस कराते हैं, फिर शराब, सिगरेट या नशीले पदार्थों की आदत डालते हैं और बाद में उन्हें घरों, होटलों, फ्लैट्स या अन्य जगहों पर ले जाकर उनका यौन शोषण करते हैं और कई मामलों में वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है, जैसा कि कोटा के इस मामले में आरोप लग रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड में भी इन ग्रूमिंग गैंग्स के पीछे पाकिस्तानी मूल के लोग माने जाते हैं। यहां यह भी देखना होगा कि हमारे देश में ऐसे मामलों को लेकर राजनीति ज्यादा होती है और कानूनी गंभीरता कम दिखती है, जबकि ब्रिटेन में आज ही इस तरह के ग्रूमिंग गैंग के मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाया गया है जो ये पता लगाएगा कि अब तक कितनी नाबालिग श्वेत लड़कियां इसका शिकार हुई हैं और कितनी लड़कियों को उनके धर्म से नफरत कराने की कोशिश की गई। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ नाम बताना चाहते हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत, इंदौर के राजा रघुवंशी, औरैया के दिलीप यादव, श्रीगंगानगर के आशीष कुमार, धार के देवकरण पुरोहित और अब पुणे के केतन अग्रवाल, ये वो कुछ नाम हैं जो आज हमारे बीच जिंदा हो सकते थे, लेकिन इन्हें सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि इनकी मंगेतर या इनकी पत्नियां किसी और से शादी करना चाहती थीं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ऐसी कहानियां हैं, आप इंटरनेट पर जाकर ढूंढेंगे तो आपको हर शहर में ऐसे कई मामले मिल जाएंगे जहां लड़कियों ने अपने माता पिता को ना कहने से बेहतर उन लड़कों की को जान से मारना आसान समझा जिनका कोई कसूर नहीं था। इन्हें तो यह तक नहीं पता था कि जिन लड़कियों से इनकी शादी हो रही है या शादी हो चुकी है वो किसी और को पसंद करती। हमारे देश में इन खबरों का अलग अलग पहलुओं से विश्लेषण हो रहा है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इन घटनाओं के कारण आने वाले वक्त में पुरुष शादी करने से डरने लगेंगे और ये शायद सच भी है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है आज उसे भी समझने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि जेन जी युवाओं के रिश्ते इतने लहूलुहान क्यों हैं। उदाहरण के लिए पुणे की इस घटना में 26 साल का केतन अग्रवाल, 20 साल की सिया गोयल और 22 साल का चेतन चौधरी तीनों जेन जी पीढ़ी के युवा थे। सिया चाहती तो वो अपने माता पिता को कह सकती थी कि उसे केतन अग्रवाल से नहीं बल्कि चेतन चौधरी से शादी करनी है, लेकिन उसने अपने माता पिता से इस शादी को ना कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये भी तब हुआ जब इस रिश्ते की पहल सिया के परिवार ने खुद की थी। सिया का परिवार और केतन का परिवार दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते थे, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच अच्छे रिश्ते थे इसीलिए सिया के परिवार ने खुद यह प्रस्ताव भेजा कि वो अपनी बेटी की शादी केतन से कराना चाहते हैं। केतन ने अमेरिका के बोस्टन से एमबीए की पढ़ाई की थी और एमबीए की पढ़ाई के बाद वो अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ गया था जहां उसे डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी सीएमओ का पद मिला था। केतन के परिवार ने यही सोचा कि सिया का परिवार इन्हीं सारी बातों से प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराना चाहता है। और यह भी तब हो रहा था जब सिया 20 साल की थी, केतन 26 साल का, और दोनों की उम्र में 6 साल का अंतर था। केतन ने एक बार कहा भी था कि सिया का परिवार उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों करा रहा है, लेकिन उस वक्त यह बात आई गई हो गई और इस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको यही लगा कि केतन जैसा लड़का मिलना मुश्किल है, इसीलिए सिया की इतनी जल्दी शादी की जा रही। लेकिन हकीकत यह थी कि सिया किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी और वो लड़का 22 साल का चेतन चौधरी था। दोनों की मुलाकात पिछले साल दीपावली के मौके पर हुई थी और चेतन उसी इलाके में रहता था जहां सिया का परिवार रहता है। आरोप है कि जब ये बात सिया के परिवार को पता चली तो उन्होंने उसकी जल्दबाजी में शादी करने के लिए केतन के परिवार को रिश्ता भेजा। अब नोट करने वाली बात यह है कि यहां सिया चाहती तो वो केतन को बता सकती थी कि वो इस शादी के खिलाफ है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फरवरी में दोनों की सगाई हुई, ये तय हुआ कि नवंबर में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इसके लिए जयपुर में एक शाही महल को 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया था और 2 चार्टर्ड प्लेन अलग से बुक किए गए थे जिनसे बारातियों को पुणे से जयपुर जाना था। 17 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों परिवार आर्थिक रूप से संपन्न थे, पढ़े लिखे भी थे। केतन तो खुद अमेरिका से पढ़कर आया था और हमें पूरा यकीन है कि अगर सिया उसे सारी बात सच सच बता देती तो ये शादी फिक्स ही नहीं होती और केतन को यूं मरना न पड़ता। लेकिन सिया ने खुद को खामोश रखा, न तो अपने माता पिता के फैसले का विरोध किया, न ही केतन को इसके बारे में बताया। उल्टा सिया की केतन के साथ ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें वो बहुत खुश नजर आती है और कोई इन वीडियो को देखकर ये कह ही नहीं सकता कि सिया इस शादी से नाखुश थी। 31 मई को पहली बार केतन पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किले में सिया को अपने साथ लेकर गया। वो चाहता था कि सिया और वो वहां कुछ वक्त बिताएं, लेकिन पुलिस का कहना है कि यही पहली बार सिया को यह ख्याल आया कि अगर वो इस किले से केतन को गहरी खाई में धक्का दे दे तो इससे केतन भी उसके रास्ते से हट जाएगा और उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी भी हो जाएगी। इसके बाद सिया बार बार केतन से जिद करती रही कि वो एक और बार लोहागढ़ किले में उसके साथ जाना चाहती है और केतन भी इसके लिए तैयार हो गया। दोनों 14 जून को फिर से इस किले में गए और इस बार जब चढ़ाई के दौरान केतन खाई के नजदीक खड़ा था तब सिया ने उसे धक्का देने की कोशिश की। बड़ी बात यह है कि उस वक्त केतन एक पेड़ का सहारा लेकर बच गया। जब उसने सिया से यह पूछा कि उसने उसे धक्का क्यों दिया तो सिया ने कहा कि वो उसे सांप से बचा रही थी। यह सरासर झूठ था, लेकिन केतन ने सिया की बात पर विश्वास कर लिया और दोनों उस दिन वापस अपने घर लौट आए। अब 19 जून को सिया का जन्मदिन था और इससे कुछ दिन पहले उन्हें प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाना था, लेकिन आरोप है कि सिया ने केतन का पासपोर्ट छुपा दिया और केतन से कहा कि वो उसके साथ दोबारा से लोहागढ़ किले जाना चाहती है। केतन इस बार वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सिया ने उसकी मां से, बहन से, सबसे फोन पर बात की और ये कहा कि वो केतन के साथ इस किले में जाकर ये देखना चाहती है कि क्या उनका प्री वेडिंग शूट इस किले में नहीं हो सकता। इसके बाद परिवार ने केतन से कहा कि वो सिया के साथ 18 जून को इस किले में दोबारा चले जाए और क्योंकि केतन को ट्रेकिंग का शौक था इसीलिए वो फिर वहां वापस चला गया। इस बार सिया ने पूरी साजिश के तहत अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को किले पर आने के लिए कहा। ट्रेकिंग के दौरान किले में 400 फीट की ऊंचाई से केतन धक्का दे दिया। अफसोस की बात यह है कि जिस जगह से केतन को धक्का दिया गया वो जगह केतन ने ही सिया को दिखाई थी। शुरुआत में सबको यही लगा कि यह एक हादसा है। सिया ने भी चीख चीख वहां यही बताया कि केतन का पैर फिसलने से वो खाई में गिरा। यही नहीं, पुलिस भी इस मामले को एक हादसा मानकर चल रही थी। लेकिन घटना के बाद जब सिया केतन के घर आई, केतन की बहन ने उससे पूछा कि उसका भाई गिरा कैसे था, उस वक्त हुआ क्या था, तो सिया एक भी सही जवाब नहीं दे पाई। वो घबरा कर सवालों से बचने लगी। इससे केतन की बहन को उस पर शक हुआ। ये बात उसने अपने पिता को बताई। बाद में पूरा परिवार पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस को यह बताया कि उन्हें यह मामला हादसे का नहीं लग रहा है, हत्या का लग रहा है। जब पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में सिया और केतन के पीछे एक लड़का जाता हुआ दिखा। गर्मी का मौसम था लेकिन उसने हुडी पहनी हुई थी, मुंह छुपाया हुआ था। पुलिस का शक गहराया, इतनी गर्मी में यह लड़का हुडी पहनकर सिया और केतन के पीछे क्यों जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने सिया के फोन की जांच की, जिसमें यह पता चला कि सिया ने पिछले 6 महीने में एक ही फोन नंबर पर 2004 बार बात की थी। और जब इस नंबर को खंगाला गया तो यह नंबर था चेतन चौधरी का। पुलिस को यह भी पता चला कि चेतन घटना वाले दिन अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर कहीं गया था, किसी और का मोबाइल फोन अपने साथ लेकर गया था। और जब उस मोबाइल फोन की लोकेशन देखी गई तो वो निकली लोहागढ़ फोर्ट की। इस पूरी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर सिया को केतन से शादी ही नहीं करनी थी तो उसने अपने परिवार को इस शादी के लिए ना क्यों नहीं कहा। ना कहना आसान था, इससे उसके माता पिता केतन सब नाराज जरूर होते, लेकिन केतन की जान तो नहीं जाती। लेकिन सिया को केतन को मारना ज्यादा आसान लगा, और यह पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 2025, जब 28 साल की मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत को अपने बॉयफ्रेंड की मदद से मारा, उसे मारकर नीले ड्रम में चुनवा दिया, तब मुस्कान भी अपने परिवार को इस शादी के लिए ना कह सकती थी। शायद शादी तोड़ने की बात कह सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। इसके बाद इंदौर के मामले में 25 साल की सोनम रघुवंशी ने जब हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी को मारा, तब वो भी किसी और को पसंद करती थी, लेकिन उसने भी अपने माता पिता को ना कहने के बजाय शादी करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पिता को मारना, पति को मारना आसान समझा। और इस तरह के मामले यही खत्म नहीं होते। पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है, जहां लड़कियां अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर लेती हैं, फिर अपने पति को जान से मार देती हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सारे मामलों में आरोपी लड़कियां या उनके बॉयफ्रेंड जेंजी पीढ़ी के युवा थे। मेरठ के नीले ड्रम वाले मामले में मुस्कान रस्तोगी 28 साल की थी, उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला 27 साल का था। इंदौर के मामले में सोनम रघुवंशी 25 साल की थी, बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा 20 साल का था, पति राजा रघुवंशी 29 साल का। औरैया के मामले में भी शादी के बाद अपने पति की हत्या करने वाली प्रगति यादव 22 साल की थी और एक जेंजी युवा थी। इसी साल श्रीगंगानगर में शादी के 3 महीने बाद जब एक महिला ने अपने पति की हत्या की, तो उस मामले में भी लड़की केवल 23 साल की थी। और धार के मामले में अपने पति को मारने वाली प्रियंका नाम की लड़की 25 साल की थी। और अब पुणे के इस मामले में सिया गोयल 20 साल की है, और वो भी जेंजी। यहां हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है और जो जेंजी लड़कियां हैं, उन्हें अपने मंगेतर और पार्टनर की हत्या करने से डर नहीं लगता, और ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जेंजी पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने बचपन से ही स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिश्तों के बीच जीवन बिताया है। इसका असर ये हुआ कि जेंजी युवाओं की भावनाएं बहुत तेजी से बनती हैं, बहुत तेजी से बिगड़ती हैं। उनके रिश्ते ज्यादा अस्थिर होते हैं ऐसा कहा जाता है, और जेंजी युवाओं के रिश्तों में ऑनलाइन मान्यता की जरूरत हद से ज्यादा दिखती है। यानी ये स्मार्टफोन वाली वो पीढ़ी है जो ये सोचने लगी है कि रिश्तों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, जबकि पहले भी ऐसे मामले होते थे जिनके, लेकिन तब उस पीढ़ी की लड़कियां हत्या जैसे कदम नहीं उठाती थी। लेकिन अब यह हो रहा है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले 5 साल में अकेले मध्य प्रदेश में 87 पतियों को उनकी पत्नी ने शादी के बाद जान से मार दिया। इनमें 2020 में 12, 2021 में 15, 2022 में 18, 2023 में 20 और 2024 में 22 पतियों की उनकी पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड साथ मिलकर हत्या कर देते हैं। और इनमें भी ज्यादातर मामलों में हत्या करने वाली लड़कियां जेंजी की बताई गई, हत्या में उनका साथ देने वाले उनके बॉयफ्रेंड भी उसी एज ग्रुप के थे। आप पुणे के इस मामले में केतन के पिता को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि अगर सिया उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी तो वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग क्यों नहीं गई, उसने हत्या का रास्ता ही क्यों चुना। सुनिए,
4: इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है, इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने, तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए।
0: भारत एक ऐसा देश है जहां रिश्तों को इंसान की सबसे बड़ी जमा पूंजी माना गया है, और ये कहा जाता है कि अगर रिश्ते निभाने के लिए झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एनसीआरबी के साल 2024 के आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश में 13% हत्याएं रिश्तों के कारण ही हो रही। इनमें सबसे ज्यादा 1411 हत्याएं अवैध संबंधों के कारण हुई, 1391 हत्याएं प्रेम संबंधों के कारण हुई, जबकि 36 हत्याओं के पीछे हॉरर किलिंग को कारण माना गया। यानी जहां पहले प्रेम संबंध होने पर परिवार अपनी बेटियों को मार देते थे, वहीं अब कुछ मामलों में लड़कियां अपने माता पिता द्वारा शादी कराने का विरोध नहीं करती, बल्कि खुद जिस लड़के से शादी हो रही होती है उसे ही मार देती। जेन जी पीढ़ी की युवा लड़कियां इसीलिए भी अपने माता पिता को शादी के लिए शायद ना नहीं कहती, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की इज्जत का डर होता है। ये समझ नहीं आता कि वो समाज के डर से कैसे बाहर निकले। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो लोग उनके माता पिता पर सवाल उठाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा खराब होगी। ये पहले भी होता था, लेकिन अब मौजूदा पीढ़ी के लिए समाज के डर को झेलना शायद मुश्किल साबित हो रहा है। दूसरा ये कि जेंजी लड़कियों को ये भी लग सकता है कि अगर उन्होंने ना कहा या भागकर शादी की तो उन्हें उनका परिवार हमेशा के लिए छोड़ देगा, जबकि ये युवा ऐसा नहीं चाहते। ये डर पहले भी होता था, लेकिन उस जमाने में माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता अलग होता था, जबकि आज के दौर में जेंजी युवा माता पिता के साथ स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं। और तीसरा, मौजूदा पीढ़ी की लड़कियों को ये भी डर होता है कि अगर उन्होंने माता पिता के फैसले का विरोध किया तो उनका करियर खराब हो जाएगा, उन्हें घर में रहने के लिए कहा जाएगा। IHDS का सर्वे बताता है कि हमारे देश में 35% लड़कियों की शादी में उनकी सहमति शामिल नहीं थी, जबकि 37% मामलों में लड़कियों की सहमति शामिल थी, लेकिन वो सहमति भी तब ली गई जब माता पिता शादी के लिए लड़का चुन चुके थे। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 70% से ज्यादा शादियों में बड़ा फैसला माता पिता का ही माना जाता है, जिससे लड़कियों के सामने दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो विद्रोह करें या इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता ढूंढें। 2018 में भी इस पर 160,000 परिवारों का सर्वे हुआ था। इसमें यह पता चला था कि भारत में 93% शादियां अरेंज मैरिज होती हैं, जिसमें माता पिता का फैसला बड़ा होता है, और केवल 3% लोगों ने माना कि उनकी लव मैरिज हुई, जबकि 2% लोगों ने अपनी शादी को लव कम अरेंज मैरिज बताया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लड़कियां बता भी दें कि वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं तो परिवार इसके लिए तैयार नहीं होते। इसका एक कारण हमारे देश की जाति व्यवस्था भी है, जिसमें लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादियां दूसरी जातियों और धर्मों के लोगों में न हो। भारत के लिहाज से यह मुद्दा इसलिए भी संजीदा है क्योंकि हमारे देश में शादी को जरूरी माना गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हमारे देश में ज्यादातर लोगों की शादी 45 साल से पहले हो जाती है। भारत में केवल 1% महिलाएं और 3% पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी 45 से 49 साल के बीच हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जब एक बार शादी हो जाती है तो समाज मानता है कि वो शादी आजीवन चलनी चाहिए, और इसी वजह से हमारे देश में 15 से 49 साल के पुरुषों के बीच तलाक दर केवल 0.3% और महिलाओं में भी ये तलाक दर ऐसी है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि आजकल के युवा जब ऐसा सोचने लगते हैं कि वो उनके विरुद्ध हुई शादी के रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो गलत फैसले लेते हैं और इसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। और यहां ये भी देखना होगा कि ऐसे मामलों में जो पुरुष अपनी जान से जाते हैं वो पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। मेरठ के मामले में सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में था, लेकिन मुस्कान रस्तोगी ने एक बेरोजगार लड़के के लिए उसे जान से मार दिया। इंदौर के मामले में राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी था, लेकिन सोनम रघुवंशी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसकी जान ली। श्रीगंगानगर में आशीष कुमार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था और उसने जियोलॉजी में MSc की पढ़ाई की थी, लेकिन यहां भी अंजलि नाम की लड़की ने एक बेरोजगार लड़के के लिए उसे जान से मार दिया। और पुणे के इस मामले में भी केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट कंपनी का डायरेक्टर था, लेकिन सिया गोयल ने पुणे में ड्राई फ्रूट की दुकान चलाने वाले चेतन चौधरी के लिए केतन की हत्या कर दी। यानी इन सभी मामलों में लड़कियों की पहली प्राथमिकता थी इस रिश्ते से बाहर निकलना, जिसके लिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुना, और आज इसे ही हमारे समाज को और हमारी सरकारों को समझने की जरूरत है। जेन जी युवाओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वो रिश्ते से बाहर निकलने के लिए हत्या जैसे कदम उठाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तब वो इसी दौरान सोशल मीडिया पर परफेक्ट कपल की तरह दिखना चाहते हैं। और ये पहले के मामलों में भी दिखा, और पुणे के इस मामले में भी सिया और केतन की सोशल मीडिया रील्स को देखकर कहीं से नहीं लगता कि सिया इस शादी से नाखुश थी और वो केतन को मारने वाली थी।

आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि रफाल पर पाकिस्तान का सारा प्रोपेगेंडा आखिरकार फेल हो गया है। उसकी पीआर टीम अब आतंकवादियों की तरह अंडरग्राउंड हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने सबसे बड़ा दावा यही किया था कि उसने भारत के कई रफाल लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। पाकिस्तानी सेना, वहां के टीवी चैनल, रक्षा विशेषज्ञ, सोशल मीडिया अकाउंट्स लगातार ये दावा कर रहे थे कि भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान हुआ है। किसी ने कहा 3 रफाल गिरा दिए, किसी ने इससे भी ज्यादा संख्या बताई। यहां तक कि पाकिस्तान ने यह तक दावा किया था कि उसने भारतीय वायुसेना की एक महिला पायलट को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन समय के साथ पाकिस्तान के ये सभी दावे एक एक करके गलत साबित होते गए। अब भारतीय वायुसेना के एक नए आधिकारिक दस्तावेज ने पाकिस्तान के इसी दावे को एक बार फिर पूरी तरह खारिज कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 15 जून 2026 को एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें फ्रांस की कंपनी सफरान एयरक्राफ्ट इंजन से रफाल बेड़े के लिए तकनीकी सहायता और रखरखाव सहयोग मांगा गया है। पहली नजर में यह एक सामान्य तकनीकी दस्तावेज लग सकता है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारतीय वायुसेना के सभी 36 रफाल विमानों का उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय वायुसेना खुद अपने आधिकारिक दस्तावेज में यह कह रही है कि उसके पास अभी भी 36 के 36 रफाल विमान मौजूद हैं और उन सभी के संचालन के लिए रखरखाव सहायता की आवश्यकता है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई रफाल नष्ट हुआ होता जैसा पाकिस्तान दावा कर रहा था, तो सबसे पहले उसका असर ऐसे आधिकारिक दस्तावेजों में दिखाई देता, क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान के रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स, इंजन सपोर्ट और तकनीकी सहायता की गणना वास्तविक विमानों की संख्या के आधार पर की जाती है। लेकिन इस दस्तावेज में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि रफाल विमानों की संख्या कम हुई है। इसके उलट पूरा गणित 36 विमानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दस्तावेज के अनुसार भारतीय वायुसेना अगले 5 महीनों के लिए सभी 36 रफाल विमानों के संचालन और रखरखाव की योजना बना रही है। इसमें यह भी बताया गया है कि हर रफाल विमान औसतन साल में 150 घंटे उड़ान भरेगा और उसी हिसाब से पूरे बेड़े की उड़ान और रखरखाव आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। यानी भारतीय वायुसेना के रिकॉर्ड में आज भी रफाल विमानों की संख्या वही है जो फ्रांस के साथ 2016 में हुए समझौते के तहत भारत को मिली थी, यानी 36 रफाल विमान। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह समझनी चाहिए कि किसी भी देश की वायुसेना अरबों रुपए के लड़ाकू विमानों के लिए रखरखाव और तकनीकी सहायता का अनुबंध अनुमान के आधार पर नहीं करती। ऐसे अनुबंध वास्तविक उपलब्ध विमानों की संख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। इसीलिए जब भारतीय वायुसेना आधिकारिक रूप से 36 रफाल विमानों के लिए सहायता मांग रही है, तो यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि उसके बेड़े में कोई कमी नहीं आई है। और पाकिस्तान का वो दावा जिसमें रफाल विमानों को मार गिराने की बात वो करता था, अब एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान ने केवल रफाल विमानों को मार गिराने का दावा नहीं किया, बल्कि भारतीय महिला पायलट को पकड़ने जैसी बातें भी कही थी, जिनका बाद में कोई सबूत सामने नहीं आया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी पाकिस्तान के ऐसे दावों को मनोहर कहानियां कहा था। और आज इस नए दस्तावेज के सामने आने के बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि अगर पाकिस्तान ने वास्तव में भारतीय रफाल विमानों को क्षति पहुंचाई, मार गिराया, तो भारतीय वायुसेना आज भी अपने सभी 36 रफाल विमानों के लिए रखरखाव और तकनीकी सहायता क्यों ले रही है? और अगर भारतीय वायुसेना के पास आज भी 36 के 36 रफाल मौजूद हैं, तो फिर पाकिस्तान के दावों का आधार क्या था? अब बड़ा सवाल तो हमारे अपने नेताओं को लेकर भी है, क्योंकि उस वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल विमानों को मार गिराया है, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि क्या मोदी सरकार बताएगी कि 5 जहाजों के नष्ट होने का सच क्या है। आज हम अपने देश के इन विपक्षी नेताओं से पूछते हैं कि क्या वो पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव में फंसे, और अगर फंसे तो क्या अब वो इस पर दिए गए अपने बयानों को वापस लेंगे। आजकल पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट कार मालिकों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। उनके मोबाइल फोन पर सैकड़ों रील्स आ रही हैं जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंजन को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। आपने भी ऐसे कई रील्स देखी होंगी जिनमें दावा किया गया कि गाड़ी में इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाने पर पेट्रोल टैंक में चींटियां लग गई। कई ने तो व्यंग के तौर पर अपनी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में गन्ने का रस डलवाने की एक्टिंग की। इस तरह के व्यंगात्मक वीडियोज का सार यही है कि
कि लोग इथेनॉल को लेकर संशय में हैं। उन्हें लगता है कि जब भारी भरकम टैक्स चुकाकर वो गाड़ी और पेट्रोल खरीद रहे हैं तो उसमें किसी ऐसी चीज की मिलावट क्यों हो रही है जिससे गाड़ी के खराब होने की आशंका हो। केंद्र सरकार ने लोगों के इस संशय को दूर किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर किए जा रहे दावों को भ्रामक बताया है। मंत्रालय के अनुसार E20 पेट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे इंजन खराब होने जैसी शिकायतें नहीं आई। इसके अलावा गन्ने का रस पेट्रोल टैंक में डालने या टैंक में चींटियां लगने जैसे दावों को भी गलत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फ्लेक्सी फ्यूल को लेकर गलत दावों पर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। उनका कहना है कि फ्यूल स्तर का इथेनॉल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के बाद ही पेट्रोल में मिलाया जाता है। इथेनॉल की मिलावट इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है और इसके लिए उसे भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए की बचत की है। इसी वजह से अब सरकार पेट्रोल में 85% तक इथेनॉल मिलाकर बेचने की तैयारी में है और अब तो E100 यानी 100% इथेनॉल वाला फ्यूल बेचने की तैयारी हो रही है। इथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन पर कितना फर्क पड़ता है यह जांच का विषय है, लेकिन इथेनॉल की मात्रा को 85% या 100% करने का असर आपके पीने के पानी की जरूरत पर पड़ेगा यह तय है। अब हम आपको बताते हैं असर क्यों पड़ेगा। इथेनॉल दो तरह के होते हैं, बायो इथेनॉल और सिंथेटिक इथेनॉल। बायो इथेनॉल कृषि उत्पादों से बनता है, सिंथेटिक इथेनॉल पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोल में मिलाने के लिए सरकार बायो इथेनॉल का इस्तेमाल करती है क्योंकि इससे सरकार का वो उद्देश्य पूरा होता है जिसमें वो कच्चे तेल के आयात में कमी लाना चाहते हैं। फ्यूल लेवल का बायो इथेनॉल बनाने में बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है जो खेती के चरण से ही शुरू हो जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है? अगर हाँ तो यह खबर आपके पैरों तले जमीन खिसका सकती है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ओरेकल ने पिछले 12 महीनों में 21,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। यह कंपनी घाटे में नहीं थी। जबरदस्त मुनाफा होने के बाद भी इतनी बड़ी छंटनी हुई। ओरेकल ने अपनी एनुअल फाइनेंशियल रेगुलेटरी फाइलिंग में यह स्वीकार किया कि अपने ऑप्शंस में एआई को शामिल करने से इंसानों की जरूरत कम हुई। ओरेकल इस खेल में अकेला नहीं है। टेक इंडस्ट्री का हर बड़ा नाम एआई की आड़ में या फिर एआई में निवेश करने के लिए अपनी वर्कफोर्स को छोटा कर रहा है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपनी एआई योजनाओं को फंड करने के लिए 8,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने लाखों करोड़ रुपए का निवेश एआई में किया है और इस लागत को बैलेंस करने के लिए हजारों कर्मचारियों की छटनी की। इसकी वजह यह है कि कंपनी के भीतर जो काम पहले सैकड़ों लोग मिलकर करते थे अब वो एआई टूल्स चुटकियों में कर रहे हैं। दूसरा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स बनाने के लिए कंपनी को भारी कैश की जरूरत है। इस छंटनी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एआई सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है बल्कि नौकरियों को निगलने वाला सच बन चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री और यहां तक कि कॉन्टेंट राइटिंग और एचआर जैसे सेक्टर्स में भारी तबाही आ सकती है। मर्सर्स की ताजा ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 99% टेक सीईओज अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि एआई के आने से उनके खर्चों में कमी आएगी और वो मैन पावर कम करेंगे। इस रिपोर्ट का एक डरावना पहलू ये है कि सबसे ज्यादा खतरा फ्रेशर या जूनियर एम्प्लॉयज पर है। सर्वे में शामिल 41% मैनेजर्स ने साफ साफ कहा है कि अगर उन्हें छंटनी करनी पड़ी तो वो सबसे पहले एंट्री लेवल के कर्मचारियों को नौकरी से निकालेंगे। इसकी वजह बहुत साफ है। जूनियर लेवल के तमाम काम जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, रिपोर्ट बनाना या शुरुआती रिसर्च, उन्हें आज का एडवांस्ड एआई इंसानों से कई गुना तेजी से और बिना किसी सैलरी के कर रहा है। साफ है कि आने वाला वक्त सिर्फ डिग्री और अनुभव का नहीं बल्कि इस बात का है कि आप एआई के साथ कितनी तेजी से खुद को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई भी बड़ी कंपनी आपको रिप्लेस करने में एक मिनट का भी वक्त नहीं लगाएगी। हालांकि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इन कंपनियों पर दूसरी वजहों को छुपाने के लिए एआई वॉशिंग यानी एआई का बहाना बनाकर छंटनी का आरोप लगा रहे हैं। यह भी जानना जरूरी है कि सिर्फ 33% कंपनियों को यह पता है कि इंसान और एआई से मिलकर काम कैसे कराना है। तमाम कंपनियां बिना पूरी तैयारी के अंधाधुंध एआई अपना रही हैं।
रिसर्च बताती है कि जिन कंपनियों ने कर्मचारियों को निकाल कर केवल एआई पर भरोसा किया, उन सब का मुनाफा या प्रोडक्टिविटी बढ़ी हो ये जरूरी नहीं है। फायदा तब ज्यादा होता है जब एआई का इस्तेमाल इंसानों को हटाने के बजाय उनकी मदद के लिए किया जाए। फिलहाल एआई से मुकाबला करने के बजाय एआई का सही इस्तेमाल सीखना नौकरी बचाने का सही तरीका है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकुटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है, क्या वाकई न्याय होगा?
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देखने इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित SIT जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक SIT को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को SIT अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को SIT की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता? और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। CCTV के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई SIT पर सवाल उठाते हैं।
4: ये SIT कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए SIT बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला CBI को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ED को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब TV के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर CBI ED इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी SIT ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों? तो समझिए, 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं जो SIT की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्यौता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंबई को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बाड़ी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरजभान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाए।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे, और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है, अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है, आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: कटघरे में बिहार के सम्राट चौधरी सरकार भी है, जिनकी पुलिस पर भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर मामले में चौतरफा सवाल उठ रहे हैं, जहां सरकार को अब न्यायिक जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं।
12: एक जगह घटना होगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहां जहां घटना होगा वहां भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
2: बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर घटना वाली जगह जाए, लेकिन जब आपकी सरकार के राज की पुलिस के हाथों एक युवा तब मार दिया जाए जब वो हथियार डाल चुका हो, जब समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में बिहार पुलिस की बंदूक से चली गोली पर सवाल उठ रहे हो।
13: प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन, उसकी जांच होनी चाहिए, यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार मुख्यमंत्री जांच करें, ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो।
2: जब सम्राट राज में कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में हो, तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री कम से कम उस घटना स्थल पर जाकर भरोसा जनता को दे, और ना भी जाए तो कम से कम आप जैसे मंत्री बयानबाजी ना करें, क्योंकि भरत तिवारी का ये एनकाउंटर सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। जहां सरकार से सवाल है, शहरों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग, सरकार पर दबाव इतना बन कि एनकाउंटर के 7 दिन बाद आखिरकार एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। भरत तिवारी की मां की अर्जी पर जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं।
14: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
2: भरत तिवारी के पक्ष में इंसाफ की मांग करते हुए आसपास के गांव के लोगों ने एक महापंचायत, यहां प्रशांत किशोर भी पहुंचे। मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
15: इधर उसको पकड़ लेना है ADG को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
2: भरत तिवारी का एनकाउंटर अब बिहार की सियासत का एक बड़ा संगीन विषय है, जिसने सम्राट सरकार को मुश्किलों के कटघरे में डाल रखा है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया, वही रिपोर्ट फर्जी बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
16: जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर से ठीक नहीं, संगल लगते नहीं।
2: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, क्या उसे पंजाब के DIG और SP स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया? क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी AI रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील? जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठंती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
17: देखो, 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
2: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था, वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और SP जशनदीप गिल भी शामिल थे।
18: 15 जून 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, अनोन नंबर का, मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं SP जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी, मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद की आपको बात है। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये ठीक है और अच्छी मात्रा में पैसा मिले।
2: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
18: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ हूं तो किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
2: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
16: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ने मिल दी है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वह वीडियो वायरल करके मैं दोषी करार देता गया।
2: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
19: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
20: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इन्दे ऐसी इस्तीफे की मांग करते हैं।
21: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
2: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: एक करोड़पति परिवार की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़पति मंगेतकर का मर्डर कर दिया। बड़ी बात यह है कि मंगेतकर लड़की पर प्यार लुटाता रहा और लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतकर के मर्डर की प्लानिंग करती रही और मंगेतकर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग को अंजाम दिया, विश्वास कीजिए पूरी कहानी सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आश्चर्य करेंगे कि आखिर सिया गोयल ने ऐसा क्यों किया।

0: 26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन डूबता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है और सिया जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया। अमेरिका के बेब्सन एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में एमएस यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिर कर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन का मर्डर था। और केतन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने किया। सिया एक तरफ केतन से मिलती, दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड से। फिर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को मार डाला। लोहगढ़ के किले में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने केतन का मर्डर कर दिया।
1: लेकिन उस चीज में बहुत सदमे में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा सदमे में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे।
0: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
3: लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
0: फिर सिया की माँ केतन की माँ को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
2: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए पहले, मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही थी सिया, ऐसे क्यों कर रही है।
0: सिया और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना

0: चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
1: प्रेमी के लिए मंगेतर की हत्यारण बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 वर्ष की सिया गोयल के दिमाग में पनपी साजिश पेशेवर हत्यारों को भी मात दे रही थी। आखिर करोड़पति व्यापारी के परिवार से आने वाली सिया गोयल को हत्या का आइडिया कहां से मिला? कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी?

0: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता, 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
1: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
0: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक थी। अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची। पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
2: सर, जिस दिन वो गिरा, सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते हुए कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहां जाने पर पता चला कि वो अकेली आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर पिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
0: हत्या को हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
3: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
0: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
2: बड़ी खुशी दिखाते थे, साथ में हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे। कुछ ऐसा दिखाया नहीं, और सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
0: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी, जिससे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
4: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमिजिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकुटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है क्या वाकई न्याय होगा।
1: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देखने इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता, और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए, ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं, जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्योता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंह को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पर पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया, वही रिपोर्ट फर्जी बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
12: जी वो बंदा जी मैं इस बारे दस देना, वो बंदा जी जिहड़ा जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते ने।
2: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, क्या उसे पंजाब के डीआईजी और एसपी स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया? क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी एआई रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील? जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठनती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
13: देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
2: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।
14: 15 जून 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अनोन नंबर से, मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है, तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद की आपको बात करें। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता, तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये ठीक है और अच्छी मात्रा में पैसे मिले।
2: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
14: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ हूं तो किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
2: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
15: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ने मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वो वीडियो नू वायरल करके मैं दोषी करार देता है।
2: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
16: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
17: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इन्दे ऐसी इस्तीफे की मांग करते हैं।
18: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
2: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: एक करोड़पति परिवार की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़पति मंगेतकर का मर्डर कर दिया। बड़ी बात यह है कि मंगेतकर लड़की पर प्यार लुटाता रहा और लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतकर के मर्डर की प्लानिंग करती रही, और मंगेतकर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग को अंजाम दिया, विश्वास कीजिए पूरी कहानी सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आश्चर्य करेंगे कि आखिर सिया गोयल ने ऐसा क्यों किया।

0: 26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन टूटता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है और सिया जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से BBA किया। अमेरिका के बेब्सन FW ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में MS यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरकर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन का मर्डर था, और केतन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने किया। सिया एक तरफ केतन से मिलती, दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड से। फिर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को मार डाला। लोहगढ़ के किले में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने केतन का मर्डर कर दिया।
1: मुझे एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन उस चीज में बहुत सदमे में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा सदमे में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे।
0: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
3: लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था, और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंटरोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है, यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
0: फिर सिया की माँ केतन की माँ को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
2: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए पहले, मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही थी सिया, ऐसे क्यों कर रही है।
0: सिया और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेमी के लिए मंगेतर की हत्यारन बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 वर्ष की सिया गोयल के दिमाग में पनपी साजिश पेशेवर हत्यारों को भी मात दे रही थी। आखिर करोड़पति व्यापारी के परिवार से आने वाली सिया गोयल को हत्या का आइडिया कहां से मिला? कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी?

0: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता, 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
1: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
0: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक थी। अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची। पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
2: सर जिस दिन वो गिरा, सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते हुए कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहां जाने पता चला कि वो अकेली आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर पिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
0: हत्या को हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
3: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
0: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
2: बड़ी खुशी दिखाते थे साथ में, हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे। कुछ ऐसा दिखाया नहीं, और सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
0: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी, दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, 25 नवंबर को शादी होनी थी। लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी, जिससे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
4: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमिजिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है क्या वाकई न्याय होगा।
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता। और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए, ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं, जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्योता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंबई को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरजभान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसके जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे, और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन का समय दिया गया है, अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने गई और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया, वही रिपोर्ट फर्जी बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
12: जी जो वो बंदा जी मैं बारे दस देना, वो बंदा जी जेड़ा जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते नहीं।
2: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, क्या उसे पंजाब के डीआईजी और एसपी स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया? क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी एआई रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील? जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठंती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
13: देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
2: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।
14: 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, तो मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है, तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद की आपको बात करें। कहते डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएमपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये ठीक है और अच्छी मात्रा में पैसे मिले।
2: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
14: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ तो किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
2: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
15: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ना मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वो वीडियो नू वायरल करके मैनू दोषी करार देता है।
2: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
16: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
17: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इस्तीफे की मांग कर दे।
18: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
2: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: एक करोड़पति परिवार की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़पति मंगेतकर का मर्डर कर दिया। बड़ी बात यह है कि मंगेतकर लड़की पर प्यार लुटाता रहा और लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतकर के मर्डर की प्लानिंग करती रही, और मंगेतकर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग को अंजाम दिया, विश्वास कीजिए पूरी कहानी सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आश्चर्य करेंगे कि आखिर सिया गोयल ने ऐसा क्यों किया।

26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन डूबता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है और सिया जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया। अमेरिका के बेब्सन एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में एमएस यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरकर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन का मर्डर था। और केतन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने किया। सिया एक तरफ केतन

0: मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा जोर में हूँ इसमें, मुझे एक बार भी नहीं लगा सी ऐसे है।
1: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
1: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
3: लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
1: फिर सिया की माँ केतन की माँ को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
2: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
0: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए, पहले मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही सिया ऐसे क्यों कर रही है।
1: सिया और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेमी के लिए मंगेतर की हत्यारन बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 वर्ष की सिया गोयल के दिमाग में पनपी साजिश पेशेवर हत्यारों को भी मात दे रही थी। आखिर करोड़पति व्यापारी के परिवार से आने वाली सिया गोयल को हत्या का आइडिया कहां से मिला? कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी?

0: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता, 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
1: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
0: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक।

0: अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची। पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
1: सर जिस दिन वो गिरा, सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहां जाने पता चला कि वो अकेली ही आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर पिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
0: हत्या को हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
2: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
0: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
1: बड़ी खुशी दिखाते थे, साथ में हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे, कुछ ऐसा दिखाया नहीं। वो सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
0: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी, जिसे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
3: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकुटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है क्या वाकई न्याय होगा।
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता। और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं, जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्योता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंबई को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बाड़ी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 7 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पर पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: कटघरे में बिहार के सम्राट चौधरी सरकार भी है, जिनकी पुलिस पर भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर मामले में चौतरफा सवाल उठ रहे हैं, जहां सरकार को अब न्यायिक जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं।
12: हमरा एक जगह घटना होगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहां जहां घटना होगा वहां भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
2: बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर घटना वाली जगह जाए, लेकिन जब आपकी सरकार के राज की पुलिस के हाथों एक युवा तब मार दिया जाए जब वो हथियार डाल चुका हो, जब समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में बिहार पुलिस की बंदूक से चली गोली पर सवाल उठ रहे हो।
13: प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन उसकी जांच होनी चाहिए, यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार मुख्यमंत्री जांच करें, ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो।
2: जब सम्राट राज में कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में हो, तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री कम से कम उस घटना स्थल पर जाकर भरोसा जनता को दे, और ना भी जाए तो कम से कम आप जैसे मंत्री बयानबाजी ना करें, क्योंकि भरत तिवारी का ये एनकाउंटर सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। जहां सरकार से सवाल है, शहरों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग, सरकार पर दबाव इतना बन कि एनकाउंटर के 7 दिन बाद आखिरकार एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। भरत तिवारी की मां की अर्जी पर जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं।
14: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
2: भरत तिवारी के पक्ष में इंसाफ की मांग करते हुए आसपास के गांव के लोगों ने एक महापंचायत, यहां प्रशांत किशोर भी पहुंचे। मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
15: सीधे उसको पकड़ लेना है ADG को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
2: भरत तिवारी का एनकाउंटर अब बिहार की सियासत का एक बड़ा संगीन विषय है, जिसने सम्राट सरकार को मुश्किलों के कटघरे में डाल रखा है।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम के बाद घर में ट्रंप घिर गए। अमेरिकी सीनेट में ईरान रोको युद्ध प्रस्ताव पर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी के पास मौजूद बहुमत के बाद भी ईरान के पक्ष में अधिक वोटिंग हुई। अमेरिकी संसद ने भी ईरान पर अपने राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान किया। अमेरिका के सांसद ये मानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है।

0: पहले ईरान के आगे झुके और घर में ट्रंप घिरे। अमेरिकी सेनेट की ईरान युद्ध रोकने पर मुहर। ईरान युद्ध पर ट्रंप की पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा। पीस डील पर ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी। मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत नहीं। ट्रंप की हेकड़ी गुल, अब दिमाग में है टेंशन फुल। पहले ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ईरान की शर्तों के आगे झुककर शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत करने पड़े। अब ट्रंप की युद्ध नीति पर अमेरिकी सेनेट ने पानी फेर दिया है। एक के बाद एक ट्रंप को जोर का झटका जोर से लगा है। सोचिए, जिस सदन में ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, उसी अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास हो गया। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के पक्ष में 50 मत पड़े, जबकि विरोध में 48। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाला। इससे पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी यही प्रस्ताव पास हो चुका है। बड़ी बात यह है कि 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई खत्म करने का निर्देश दिया है। घर पर मोर्चे पर ट्रंप को मिली करारी शिकस्त से पहले ईरान के साथ हुई डील पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति घिरे हुए हैं। फिर चाहे ईरान के परमाणु प्रोग्राम का मुद्दा हो या फिर इसराइल को लेकर ट्रंप और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद हो, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप के दावों को ईरान खारिज कर चुका है, तो लेबनान को लेकर ट्रंप के मंत्रिमंडल में बड़ा कंफ्यूजन है। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अपनी गलतियों और नाकामियों से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में ईरान युद्ध रोको प्रस्ताव पास होने के बाद ट्रंप ने अपनी नाकामी को जीत बताते हुए दावा किया, मैंने ईरान को कमजोर स्थिति में डाल दिया है, वो गिरने को तैयार है, कुछ भी देने को तैयार है, और दशकों में पहली बार अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का जमकर सम्मान कर रहा है। और अमेरिकी सीनेट ने एक गलत समय पर और अर्थहीन युद्ध शक्ति अधिनियम पर मतदान करने का फैसला किया। दुनिया में आतंकवाद के नंबर एक प्रायोजक को ये बताते हुए कि अमेरिका को वो पसंद नहीं है जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, मुझे रुकना होगा, और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद और समर्थन किया है। 4 हारे हुए रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा इसका क्या मतलब है, इन सेनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा क्योंकि मैं हमेशा काम पूरा करता हूं।
1: For new agreement, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground?
2: At the appropriate time. At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
0: ट्रंप यही दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध जिस मकसद के साथ छेड़ा गया था उसे खत्म करके मारेंगे, लेकिन ना तो ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करवा सके, ना तो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर सके। बावजूद इसके ट्रंप ने नया शगुफा छोड़ा है, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से निरीक्षण करवाने को तैयार है। ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान की लाइन एकदम स्पष्ट है। पीस डील के एमओयू के तहत 60 दिन चलने वाली वार्ता के आखिरी में इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी। निरीक्षण का मुद्दा इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका सभी प्रतिबंधों को हटाता है या नहीं। स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान किसी भी ईरानी अधिकारी ने IAEA डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से मुलाकात नहीं की, जबकि ग्रोसी ने बैठक की इच्छा जताई थी। दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ ने भी एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को आईना दिखाया है। अजरबैजान में एक कार्यक्रम के दौरान गालिबाफ ने पीस डील को अपनी जीत और अमेरिकी राष्ट्रपति की हार करार दिया। अमेरिका के साथ हुआ एमओयू आखिरकार अमेरिका की हार का ऐलान बन गया। इस समझौते ने साबित किया है कि बातचीत तभी सफल हो सकती है जब दूसरा पक्ष अपनी शर्तें थोपने की कोशिश बंद करे और ईरान के अधिकारों को स्वीकार करे। ये MOU किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं था बल्कि ईरान के प्रतिरोध और ताकत का परिणाम था। शांति समझौते किसकी मजबूरी है ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। MOU पर दस्तखत के बाद जब ईरान और अमेरिका के बीच पहले राउंड की वार्ता शुरू हुई तो ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से सीधी मुलाकात नहीं की थी। इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि समझौता ट्रंप की नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरानी डेलीगेशन बिना ग्रुप फोटो और हैंडशेक के वापस लौट गया था। इस धमकी के साथ कि लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुके तो ईरान शांति समझौते के MOU को नहीं मानेगा। ईरान की धमकी का डर है कि ट्रंप ने इजरायल के साथ रिश्तों को ताक पर रख दिया है।
3: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, forth and now they both agreed through me to stop and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: ट्रंप कई बार इजरायली प्रधानमंत्री की नीति पर सवाल उठा चुके हैं लेकिन इजरायल पर ट्रंप के स्टैंड से अमेरिकी विदेश मंत्री की राय मेल नहीं खा रही।
3: No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean.
4: I think a careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region, well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU, and it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations.
0: ईरान की मिसाइल क्षमता और प्रॉक्सी नेटवर्क को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा यही है कि शांति तब तक नहीं होगी जब तक इराक में बैठे ईरानी प्रॉक्सी के साथ साथ हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन मिसाइलें दागते रहेंगे। मतलब यही है, ना तो ईरान ट्रंप की सुन रहा है और ना ही उनका मंत्रिमंडल।
5: सिंधु नदी के जल को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि पाकिस्तान तिलमिला उठा। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सिंधु के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर भारत के विरुद्ध युद्ध की धमकी दी और अब आसिम मुनीर युद्ध की साजिश में जुटा है।
6: पानी पर पाकिस्तान की घुड़की, जंग की गीदड़ भभकी। भारत ने मास्टर प्लान बनाया, पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया। आसिम मुनीर ने LOC पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी।
7: भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे।
6: भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, पाकिस्तान पर फूटेगा वाटर बम। मुनीर, शहबाज, बिलावल, ख्वाजा आसिम सब चीखते रह जाएंगे।
8: पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
9: इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है जो आपकी छीक छीक गया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं।
10: अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
11: हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है।
6: पानी का मारा पाकिस्तान जंग जंग चिल्लाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़पने लगा है और जंग की गीदड़ भभकियां देने लगा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी देते हैं और अब आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुट गए हैं। जी हाँ, LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने आई फेंसिंग भी की है, इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैनात किया है सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर LOC के रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी करता रहा है।
12: बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। They are going on with
13: constructions. Let me explain. मैं पिछले 1-2-3 साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशनगंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे उस सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए हैं, बल्कि जाके फिजिकली इंस्पेक्ट किए।
12: अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछूं,
13: और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले 1 साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकियां शमकियां लगाई हैं या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है वो लिबास बना पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है 1 साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है, इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है रिजर्वॉयर का पानी कितना,
12: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
13: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली।
12: ठीक है,
13: किसी को शक नहीं होना चाहिए।
6: पाकिस्तान अब सिंधु नदी के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है, यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है।
14: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
6: Army Chief ne Pakistan ko seedha sandesh de diya hai ki Bharat Operation Sindoor Part 2 ke liye taiyar hai. गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा और जवाबी कार्रवाई की तारीख, वक्त और जगह भारत तय करेगा। अब की बार आरपार की लड़ाई के लिए भारत ने सैन्य रणनीति का पूरा ताना बाना बुन रखा है, क्योंकि भारत की मिसाइलें तैयार हैं, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है, भारत के लड़ाकू विमान तैयार है, भारत का एटम बम तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात किए हैं। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने एक भी एटम बम तैनात नहीं रखे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीते कुछ महीनों में 12 परमाणु बम की तैनाती की गई है। यही नहीं, बीते 2 सालों में भारत ने अपने परमाणु हथियार 180 से बढ़ाकर 190 कर लिए हैं। मतलब यही है कि भारत के परमाणु हथियारों का जखीरा भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। ये दावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक ना पहुंचे इसके लिए 2 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। एक तो भारत सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का काम कर रहा है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उस बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। अनुमान के मुताबिक काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेगा और साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी व्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। दूसरा, भारत शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी रावी नदी का ज्यादा पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान में जाता है। ये बांध इस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 5 दशक पहले 1979 में सोचा गया था। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए योजना बनाई गई थी।
15: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed.
6: भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, और अब पाकिस्तान का पानी रोकने का भी इंतजाम कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ कीदड़ भभकियां ही देता रह जाएगा, पानी तो उसे नहीं मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है क्या वाकई न्याय होगा।
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देखने इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता। और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं, जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्यौता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के एक घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंबई को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बाड़ी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसके जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं, जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है। जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार LDA BC का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपकी सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: कटघरे में बिहार के सम्राट चौधरी सरकार भी है, जिनकी पुलिस पर भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर मामले में चौतरफा सवाल उठ रहे हैं, जहां सरकार को अब न्यायिक जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं।
12: सम्राट एक जगह घटना होगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहां जहां घटना होगा वहां भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
2: बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर घटना वाली जगह जाए, लेकिन जब आपकी सरकार के राज की पुलिस के हाथों एक युवा तब मार दिया जाए जब वो हथियार डाल चुका हो, जब समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में बिहार पुलिस की बंदूक से चली गोली पर सवाल उठ रहे हो।
13: प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन उसकी जांच होनी चाहिए, यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो।
2: जब सम्राट राज में कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में हो तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री कम से कम उस घटना स्थल पर जाकर भरोसा जनता को दे, और ना भी जाए तो कम से कम आप जैसे मंत्री बयानबाजी ना करें, क्योंकि भरत तिवारी का ये एनकाउंटर सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। जहां सरकार से सवाल है, शहरों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग, सरकार पर दबाव इतना बन कि एनकाउंटर के 7 दिन बाद आखिरकार एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। भरत तिवारी की मां की अर्जी पर जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं।
14: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
2: भरत तिवारी के पक्ष में इंसाफ की मांग करते हुए आसपास के गांव के लोगों ने एक महापंचायत, यहां प्रशांत किशोर भी पहुंचे। मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
15: सीधे उसको पकड़ लेना है ADG को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृहमंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
2: भरत तिवारी का एनकाउंटर अब बिहार की सियासत का एक बड़ा संगीन विषय है, जिसने सम्राट सरकार को मुश्किलों के कटघरे में डाल रखा है।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम के बाद घर में ट्रंप घिर गए। अमेरिकी सीनेट में ईरान रोको युद्ध प्रस्ताव पर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी के पास मौजूद बहुमत के बाद भी ईरान के पक्ष में अधिक वोटिंग हुई। अमेरिकी संसद ने भी ईरान पर अपने राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान किया। अमेरिका के सांसद ये मानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है।

0: पहले ईरान के आगे झुके और घर में ट्रंप घिरे। अमेरिकी सेनेट की ईरान युद्ध रोकने पर मुहर। ईरान युद्ध पर ट्रंप की पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा। पीस डील पर ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी। मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत नहीं। ट्रंप की हेकड़ी गुल, अब दिमाग में है टेंशन फुल। पहले ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ईरान की शर्तों के आगे झुककर शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत करने पड़े। अब ट्रंप की युद्ध नीति पर अमेरिकी सेनेट ने पानी फेर दिया है। एक के बाद एक ट्रंप को जोर का झटका जोर से लगा है। सोचिए, जिस सदन में ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, उसी अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास हो गया। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के पक्ष में 50 मत पड़े, जबकि विरोध में 48। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाला। इससे पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी यही प्रस्ताव पास हो चुका है। बड़ी बात यह है कि 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई खत्म करने का निर्देश दिया है। घर पर मोर्चे पर ट्रंप को मिली करारी शिकस्त से पहले ईरान के साथ हुई डील पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति घिरे हुए हैं। फिर चाहे ईरान के परमाणु प्रोग्राम का मुद्दा हो या फिर इसराइल को लेकर ट्रंप और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद हो, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप के दावों को ईरान खारिज कर चुका है, तो लेबनान को लेकर ट्रंप के मंत्रिमंडल में बड़ा कंफ्यूजन है। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अपनी गलतियों और नाकामियों से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में ईरान युद्ध रोको प्रस्ताव पास होने के बाद ट्रंप ने अपनी नाकामी को जीत बताते हुए दावा किया, मैंने ईरान को कमजोर स्थिति में डाल दिया है, वो गिरने को तैयार है, कुछ भी देने को तैयार है, और दशकों में पहली बार अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का जमकर सम्मान कर रहा है। और अमेरिकी सीनेट ने एक गलत समय पर और अर्थहीन युद्ध शक्ति अधिनियम पर मतदान करने का फैसला किया, दुनिया में आतंकवाद के नंबर एक प्रायोजक को ये बताते हुए कि अमेरिका को वो पसंद नहीं है जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, मुझे रुकना होगा, और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद और समर्थन किया है। 4 हारे हुए रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा इसका क्या मतलब है, इन सेनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा क्योंकि मैं हमेशा काम पूरा करता हूं।
1: From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground
2: at the appropriate time? At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
0: ट्रंप यही दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध जिस मकसद के साथ छेड़ा गया था उसे खत्म करके मारेंगे, लेकिन ना तो ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करवा सके, ना तो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर सके। बावजूद इसके ट्रंप ने नया शगुफा छोड़ा है, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से निरीक्षण करवाने को तैयार है। ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान की लाइन एकदम स्पष्ट है। पीस डील के एमओयू के तहत 60 दिन चलने वाली वार्ता के आखिरी में इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी। निरीक्षण का मुद्दा इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका सभी प्रतिबंधों को हटाता है या नहीं। स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान किसी भी ईरानी अधिकारी ने IAEA डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से मुलाकात नहीं की, जबकि ग्रोसी ने बैठक की इच्छा जताई थी। दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ ने भी एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को आईना दिखाया है। अजरबैजान में एक कार्यक्रम के दौरान गालिबाफ ने पीस डील को अपनी जीत और अमेरिकी राष्ट्रपति की हार करार दिया। अमेरिका के साथ हुआ एमओयू आखिरकार अमेरिका की हार का ऐलान बन गया। इस समझौते ने साबित किया है कि बातचीत तभी सफल हो सकती है जब दूसरा पक्ष अपनी शर्तें थोपने की कोशिश बंद करे और ईरान के अधिकारों को स्वीकार करे। ये MOU किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं था बल्कि ईरान के प्रतिरोध और ताकत का परिणाम था। शांति समझौते किसकी मजबूरी है ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। MOU पर दस्तखत के बाद जब ईरान और अमेरिका के बीच पहले राउंड की वार्ता शुरू हुई तो ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से सीधी मुलाकात नहीं की थी। इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि समझौता ट्रंप की नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरानी डेलीगेशन बिना ग्रुप फोटो और हैंडशेक के वापस लौट गया था इस धमकी के साथ कि लेबनन पर इजरायली हमले नहीं रुके तो ईरान शांति समझौते के MOU को नहीं मानेगा। ईरान की धमकी का डर है कि ट्रंप ने इजरायल के साथ रिश्तों को ताक पर रख दिया है।
3: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, forth, and now they both agreed through me to stop and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: ट्रंप कई बार इजरायली प्रधानमंत्री की नीति पर सवाल उठा चुके हैं लेकिन इजरायल पर ट्रंप के स्टैंड से अमेरिकी विदेश

0: other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean.
1: I think a careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region, well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU, and it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations.
2: ईरान की मिसाइल क्षमता और प्रॉक्सी नेटवर्क को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा यही है कि शांति तब तक नहीं होगी जब तक इराक में बैठे ईरानी प्रॉक्सी के साथ साथ हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन मिसाइलें दागते रहेंगे। मतलब यही है, ना तो ईरान ट्रंप की सुन रहा है और ना ही उनका मंत्रिमंडल।
3: सिंधु नदी के जल को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि पाकिस्तान तिलमिला उठा। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सिंधु के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर भारत के विरुद्ध युद्ध की धमकी दी और अब आसिम मुनीर युद्ध की साजिश में जुटा है।
4: पानी पर पाकिस्तान की घुड़की, जंग की गीदड़ भभकी। भारत ने मास्टर प्लान बनाया, पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया। आसिम मुनीर ने एलओसी पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी।
5: भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे।
4: भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, पाकिस्तान पर फूटेगा वाटर बम। मुनीर, शहबाज, बिलावल, ख्वाजा आसिम सब चीखते रह जाएंगे,
6: पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
7: इस मुल्क की आवाम में इतना ताकत है जो आपकी छीख छीख गया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं।
8: अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
9: हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है।
4: पानी का मारा पाकिस्तान जंग जंग चिल्लाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़पने लगा है और जंग की गीदड़ भभकियां देने लगा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी देते हैं और अब आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुट गए हैं। जी हां, एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने आई फेंसिंग भी की है, इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैनात किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर एलओसी के रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी करता रहा है।
10: बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद कंस्ट्रक्शन।
11: लेट मी एक्सप्लेन, मैं पिछले 1-2-3 साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशनगंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे उस सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए हैं, बल्कि जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट किए।
10: अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछूं,
11: और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले 1 साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकी चमकी लगाई है या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है लिबास में पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है 1 साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई, मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है, इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है रिजर्वॉयर का पानी कितना,
10: अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
11: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर नेक्स्ट इंडिया, डेफिनेटली।
10: ठीक है,
11: किसी को शक नहीं होना चाहिए।
4: पाकिस्तान अब सिंधु नदी के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है, यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना

0: उन्होंने नहीं कर रखी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
0: आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार है। गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा और जवाबी कार्रवाई की तारीख, वक्त और जगह भारत तय करेगा। अब की बार आर पार की लड़ाई के लिए भारत ने सैन्य रणनीति का पूरा ताना बाना बुन रखा है, क्योंकि भारत की मिसाइलें तैयार है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है, भारत के लड़ाकू विमान तैयार है, भारत का एटम बम तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम को स्ट्रेटजिक लोकेशन पर तैनात किए हैं। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने एक भी एटम बम तैनात नहीं रखे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीते कुछ महीनों में 12 परमाणु बम की तैनाती की गई है। यही नहीं, बीते 2 सालों में भारत ने अपने परमाणु हथियार 180 से बढ़ाकर 190 कर लिए हैं। मतलब यही है कि भारत के परमाणु हथियारों का जखीरा भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। ये दावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक ना पहुंचे इसके लिए 2 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। एक तो भारत सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का काम कर रहा है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उस बहुउद्देश्य परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। अनुमान के मुताबिक काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेगा और साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी व्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। दूसरा, भारत शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी रावी नदी का ज्यादा पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान में जाता है। ये बांध इस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 5 दशक पहले 1979 में सोचा गया था। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए योजना बनाई गई थी।
2: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed.
0: भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब पाकिस्तान का पानी रोकने का भी इंतजाम कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ कीदड़ भभकियां ही देता रह जाएगा, पानी तो उसे नहीं मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच, सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है क्या वाकई न्याय होगा।
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देखने इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता। और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं, जो एसआईटी की जांच के दायरे में हैं। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में हैं, वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जाँच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्यौता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंह को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार LDA VC का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पर पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। बिल्डिंग ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: कटघरे में बिहार के सम्राट चौधरी सरकार भी है, जिनकी पुलिस पर भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर मामले में चौतरफा सवाल उठ रहे हैं, जहां सरकार को अब न्यायिक जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं।
12: हमारा एक जगह घटना होगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहां जहां घटना होगा वहां भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
2: बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर घटना वाली जगह जाए, लेकिन जब आपकी सरकार के राज की पुलिस के हाथों एक युवा तब मार दिया जाए जब वो हथियार डाल चुका हो, जब समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में बिहार पुलिस की बंदूक से चली गोली पर सवाल उठ रहे हो।
13: प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन उसकी जांच होनी चाहिए, यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो।
2: जब सम्राट राज में कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में हो तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री कम से कम उस घटना स्थल पर जाकर भरोसा जनता को दे, और ना भी जाए तो कम से कम आप जैसे मंत्री बयानबाजी ना करें, क्योंकि भरत तिवारी का ये एनकाउंटर सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। जहां सरकार से सवाल है, शहरों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग, सरकार पर दबाव इतना बन कि एनकाउंटर के 7 दिन बाद आखिरकार एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। भरत तिवारी की मां की अर्जी पर जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं।
14: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
2: भरत तिवारी के पक्ष में इंसाफ की मांग करते हुए आसपास के गांव के लोगों ने एक महापंचायत, यहां प्रशांत किशोर भी पहुंचे। मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
15: सीधे उसको पकड़ लेना है ADG को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
2: भरत तिवारी का एनकाउंटर अब बिहार की सियासत का एक बड़ा संगीन विषय है, जिसने सम्राट सरकार को मुश्किलों के कटघरे में डाल रखा है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया, वही रिपोर्ट फर्जी बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
16: ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
2: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, क्या उसे पंजाब के DIG और SP स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया? क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी AI रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील? जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठंती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
17: देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
2: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था, वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।
18: 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अननोन नंबर से, था मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, जिसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बात करें। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये, ठीक है, और अच्छी मात्रा में पैसे मिले।
2: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया है, उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
18: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर दी, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ हूं, किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
2: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
16: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ने मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वह वीडियो वायरल करके मैं दोषी करार देता गया।
2: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
19: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
20: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इनके ऐसी इस्तीफे की मांग कर दे।
21: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
2: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: एक करोड़पति परिवार की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़पति मंगेतकर का मर्डर कर दिया। बड़ी बात यह है कि मंगेतकर लड़की पर प्यार लुटाता रहा और लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतकर के मर्डर की प्लानिंग करती रही, और मंगेतकर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग को अंजाम दिया, विश्वास कीजिए पूरी कहानी सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आश्चर्य करेंगे कि आखिर सिया गोयल ने ऐसा क्यों किया।

0: 26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन डूबता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है और सिया जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से BBA किया। अमेरिका के बेब्सन FW ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में MS यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरकर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन का मर्डर था। और केतन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने किया। सिया एक तरफ केतन से मिलती, दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड से। फिर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को मार डाला। लोहगढ़ के किले में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने केतन का मर्डर कर दिया।
1: मुझे डर भी नहीं लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन उस चीज में बहुत सदमे में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा सदमे में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे।
0: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
3: अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
0: फिर सिया की मां केतन की मां को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
2: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए, पहले मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही थी
0: सिया। और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेमी के लिए मंगेतर की हत्यारन बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 वर्ष की सिया गोयल के दिमाग में पनपी साजिश पेशेवर हत्यारों को भी मात दे रही थी। आखिर करोड़पति व्यापारी के परिवार से आने वाली सिया गोयल को हत्या का आइडिया कहां से मिला? कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी?

0: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता, 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
1: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
0: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक थी। अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची। पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
2: सर जिस दिन वो गिरा, सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते हुए कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहां जाने पता चला कि वो अकेली ही आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर पिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
0: हत्या को हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
3: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
0: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
2: बड़ी खुशी दिखाते थे, साथ में हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे, कुछ ऐसा दिखाया नहीं। और सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
0: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी, दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी, जिससे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
4: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए, उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है, तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली, जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकुटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है क्या वाकई न्याय होगा।
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देखने इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता। और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है 23 जून को। इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में हैं। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में हैं वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जाँच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्यौता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंह को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो हर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाए।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया है। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया, वही रिपोर्ट फर्जी बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
12: जी, वो बंदा जी मैं दस देना, वो बंदा जी जो जगमन है, कोई वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते नहीं।
2: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, क्या उसे पंजाब के डीआईजी और एसपी स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया? क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी एआई रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील? जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठनती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
13: देखो, 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
2: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।
14: 15 जून 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अननोन नंबर से, मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है, तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद की आपको बात है। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उस पर तो डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता, तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये ठीक है और अच्छी मात्रा में पैसे मिले।
2: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
14: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो रिपोर्ट उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ कि किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
2: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
15: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ने मिल दी है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वो वीडियो नू वायरल करके मैं दोषी करार देता गया।
2: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
16: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
17: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इन्दे ऐसी इस्तीफे की मांग कर दे।
18: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
2: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: एक करोड़पति परिवार की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़पति मंगेतकर का मर्डर कर दिया। बड़ी बात यह है कि मंगेतकर लड़की पर प्यार लुटाता रहा और लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतकर के मर्डर की प्लानिंग करती रही, और मंगेतकर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग को अंजाम दिया, विश्वास कीजिए पूरी कहानी सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आश्चर्य करेंगे कि आखिर सिया गोयल ने ऐसा क्यों किया।

26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन डूबता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है और सिया जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया। अमेरिका के बेब्सन एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में एमएस यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिर कर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन

0: फिर सीआर उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को मार डाला। लोहगढ़ के किले में सीआर उसके बॉयफ्रेंड ने केतन का मर्डर कर दिया।
1: मुझे एक बार भी नहीं लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन उस चीज में बहुत सपने में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा सपने में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे।
0: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
0: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
3: लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है, यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
0: फिर सिया की मां केतन की मां को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
2: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
1: उसका फुल प्लानिंग था, उसे 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए पहले, मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही थी सिया, ऐसे क्यों कर रही है।
0: सिया और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेमी के लिए मंगेतर की हत्यारन बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 वर्ष की सिया गोयल के दिमाग में पनपी साजिश पेशेवर हत्यारों को भी मात दे रही थी। आखिर करोड़पति व्यापारी के परिवार से आने वाली सिया गोयल को हत्या का आइडिया कहां से मिला? कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी?

0: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता, 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
1: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे

0: तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
1: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक थी। अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची। पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
2: सर जिस दिन वो गिरा सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते हुए कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहां जाने पर पता चला कि वो अकेली आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर फिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
1: हत्या को हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
3: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
1: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
2: बड़ी खुशी दिखाते थे साथ में, हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे। कुछ ऐसा दिखाया नहीं, और सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
1: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी, जिसे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
4: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमिजिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकुटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है क्या वाकई न्याय होगा।
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देखने इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं। पर सवाल है, शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता? और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा? आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। 23 जून को इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में हैं। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में हैं वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जाँच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्योता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंह को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाए।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए वीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पर पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: कटघरे में बिहार के सम्राट चौधरी सरकार भी है, जिनकी पुलिस पर भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर मामले में चौतरफा सवाल उठ रहे हैं, जहां सरकार को अब न्यायिक जांच के आदेश देने पड़ रहे हैं।
12: हमारा एक जगह घटना होगी वहां माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो जहां जहां घटना होगा वहां भी जाना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि वो पंडित जी के यहाँ चल गए, दलित के यहाँ नहीं गए, फलाने के यहाँ नहीं गए।
2: बिल्कुल सही कहा मंत्री जी, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हर घटना वाली जगह जाए, लेकिन जब आपकी सरकार के राज की पुलिस के हाथों एक युवा तब मार दिया जाए जब वो हथियार डाल चुका हो, जब समाज से लेकर सोशल मीडिया तक में बिहार पुलिस की बंदूक से चली गोली पर सवाल उठ रहे हो।
13: प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। प्रशासन, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो।
2: जब सम्राट राज में कानून व्यवस्था सवालों के कटघरे में हो तो जरूरी है कि मुख्यमंत्री कम से कम उस घटना स्थल पर जाकर भरोसा जनता को दे, और ना भी जाए तो कम से कम आप जैसे मंत्री बयानबाजी ना करें, क्योंकि भरत तिवारी का ये एनकाउंटर सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। जहां सरकार से सवाल है, शहरों में भरत तिवारी के लिए इंसाफ की मांग, सरकार पर दबाव इतना बन कि एनकाउंटर के 7 दिन बाद आखिरकार एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। भरत तिवारी की मां की अर्जी पर जगदीशपुर के तत्कालीन SDPO राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार समेत दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, लेकिन परिवार इससे संतुष्ट नहीं।
14: फांसी की सजा दी जाए, ये सबसे कुछ नहीं होगा सर, ये सबसे कुछ नहीं होगा। 302 का धारा लगाया जाए और उनको या तो उम्र कैद की या तो फांसी की सजा दी जाए।
2: भरत तिवारी के पक्ष में इंसाफ की मांग करते हुए आसपास के गांव के लोगों ने एक महापंचायत, यहां प्रशांत किशोर भी पहुंचे। मांग की गई कि एनकाउंटर करने वालों के साथ एनकाउंटर का आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो।
15: सीधे उसको पकड़ लेना है ADG को, या तो फिर नाम ले बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले।
2: भरत तिवारी का एनकाउंटर अब बिहार की सियासत का एक बड़ा संगीन विषय है, जिसने सम्राट सरकार को मुश्किलों के कटघरे में डाल रखा है।
0: अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम के बाद घर में ट्रंप घिर गए। अमेरिकी सीनेट में ईरान रोको युद्ध प्रस्ताव पर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। पार्टी के पास मौजूद बहुमत के बाद भी ईरान के पक्ष में अधिक वोटिंग हुई। अमेरिकी संसद ने भी ईरान पर अपने राष्ट्रपति के खिलाफ मतदान किया। अमेरिका के सांसद ये मानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है।

0: पहले ईरान के आगे झुके और घर में ट्रंप घिरे। अमेरिकी सेनेट की ईरान युद्ध रोकने पर मुहर। ईरान युद्ध पर ट्रंप की पार्टी में गृह युद्ध छिड़ा। पीस डील पर ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी। मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत नहीं। ट्रंप की हेकड़ी गुल, अब दिमाग में है टेंशन फुल। पहले ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ईरान की शर्तों के आगे झुककर शांति समझौते के एमओयू पर दस्तखत करने पड़े। अब ट्रंप की युद्ध नीति पर अमेरिकी सेनेट ने पानी फेर दिया है। एक के बाद एक ट्रंप को जोर का झटका जोर से लगा है। सोचिए, जिस सदन में ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, उसी अमेरिकी सेनेट में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव पास हो गया। युद्ध रोकने के प्रस्ताव के पक्ष में 50 मत पड़े, जबकि विरोध में 48। ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डाला। इससे पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी यही प्रस्ताव पास हो चुका है। बड़ी बात यह है कि 1973 के वॉर पावर्स एक्ट के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने किसी राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई खत्म करने का निर्देश दिया है। घर पर मोर्चे पर ट्रंप को मिली करारी शिकस्त से पहले ईरान के साथ हुई डील पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति घिरे हुए हैं। फिर चाहे ईरान के परमाणु प्रोग्राम का मुद्दा हो या फिर इसराइल को लेकर ट्रंप और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद हो, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप के दावों को ईरान खारिज कर चुका है, तो लेबनन को लेकर ट्रंप के मंत्रिमंडल में बड़ा कंफ्यूजन है। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अपनी गलतियों और नाकामियों से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में ईरान युद्ध रोको प्रस्ताव पास होने के बाद ट्रंप ने अपनी नाकामी को जीत बताते हुए दावा किया, मैंने ईरान को कमजोर स्थिति में डाल दिया है, वो गिरने को तैयार है, कुछ भी देने को तैयार है, और दशकों में पहली बार अमेरिका और उसके राष्ट्रपति का जमकर सम्मान कर रहा है। और अमेरिकी सीनेट ने एक गलत समय पर और अर्थहीन युद्ध शक्ति अधिनियम पर मतदान करने का फैसला किया। दुनिया में आतंकवाद के नंबर एक प्रायोजक को ये बताते हुए कि अमेरिका को वो पसंद नहीं है जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, मुझे रुकना होगा, और ऐसा करके उन्होंने दुश्मन की मदद और समर्थन किया है। 4 हारे हुए रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया और ईरान ने मेरे लोगों से पूछा इसका क्या मतलब है, इन सेनेटरों ने मेरा काम और मुश्किल कर दिया है, लेकिन मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा क्योंकि मैं हमेशा काम पूरा करता हूं।
1: From your view, Mr. President, when will those inspectors actually be on the ground
2: at the appropriate time? At the appropriate time. There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
0: ट्रंप यही दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध जिस मकसद के साथ छेड़ा गया था उसे खत्म करके मारेंगे, लेकिन ना तो ट्रंप ईरान में तख्ता पलट करवा सके, ना तो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर सके। बावजूद इसके ट्रंप ने नया शगुफा छोड़ा है, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से निरीक्षण करवाने को तैयार है। ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। अपने परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान की लाइन एकदम स्पष्ट है। पीस डील के एमओयू के तहत 60 दिन चलने वाली वार्ता के आखिरी में इस मुद्दे पर कोई चर्चा होगी। निरीक्षण का मुद्दा इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका सभी प्रतिबंधों को हटाता है या नहीं। स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान किसी भी ईरानी अधिकारी ने IAEA डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से मुलाकात नहीं की, जबकि ग्रोसी ने बैठक की इच्छा जताई थी। दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ ने भी एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को आईना दिखाया है। अजरबैजान में एक कार्यक्रम के दौरान गालिबाफ ने पीस डील को अपनी जीत और अमेरिकी राष्ट्रपति की हार करार दिया। अमेरिका के साथ हुआ एमओयू आखिरकार अमेरिका की हार का ऐलान बन गया। इस समझौते ने साबित किया है कि बातचीत तभी सफल हो सकती है जब दूसरा पक्ष अपनी शर्तें थोपने की कोशिश बंद करे और ईरान के अधिकारों को स्वीकार करे। ये MOU किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं था बल्कि ईरान के प्रतिरोध और ताकत का परिणाम था। शांति समझौते किसकी मजबूरी है ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। MOU पर दस्तखत के बाद जब ईरान और अमेरिका के बीच पहले राउंड की वार्ता शुरू हुई तो ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से सीधी मुलाकात नहीं की थी। इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि समझौता ट्रंप की नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर हुआ है। ईरानी डेलीगेशन बिना ग्रुप फोटो और हैंडशेक के वापस लौट गया था इस धमकी के साथ कि लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुके तो ईरान शांति समझौते के MOU को नहीं मानेगा। ईरान की धमकी का डर है कि ट्रंप ने इजरायल के साथ रिश्तों को ताक पर रख दिया है।
3: We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back, forth, and now they both agreed through me to stop and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days.
0: ट्रंप कई बार इजरायली प्रधानमंत्री की नीति पर सवाल उठा चुके हैं लेकिन इजरायल पर ट्रंप के स्टैंड से अमेरिकी विदेश मंत्री की राय मेल नहीं खा रही।
3: No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean.
4: I think a careful reading of the MOU will see that when you talk about, for example, a complete and end of hostilities in the entire region, well, that's not possible. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones from Iraq and are participating in terrorism like Hamas did and like Hezbollah did. So I do think it's covered by the MOU, and it is an issue that will be gotten to at the appropriate time in these negotiations.
0: ईरान की मिसाइल क्षमता और प्रॉक्सी नेटवर्क को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा यही है कि शांति तब तक नहीं होगी जब तक इराक में बैठे ईरानी प्रॉक्सी के साथ साथ हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन मिसाइलें दागते रहेंगे। मतलब यही है, ना तो ईरान ट्रंप की सुन रहा है और ना ही उनका मंत्रिमंडल।
5: सिंधु नदी के जल को लेकर मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया कि पाकिस्तान तिलमिला उठा। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सिंधु के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर भारत के विरुद्ध युद्ध की धमकी दी और अब आसिम मुनीर युद्ध की साजिश में जुटा है।
6: पानी पर पाकिस्तान की घुड़की, जंग की गीदड़ भभकी। भारत ने मास्टर प्लान बनाया, पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया। आसिम मुनीर ने LOC पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात कर दी।
7: भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे।
6: भारत का प्रोजेक्ट सिंधु नदी, पाकिस्तान पर फूटेगा वाटर बम। मुनीर, शहबाज, बिलावल, ख्वाजा आसिम सब चीखते रह जाएंगे।
8: पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
9: इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है जो आपकी छीक छीक गया है वो वापस हासिल भी कर सकते।
10: अगर तू पानी बंद करेगा इंशाल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
11: हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है।
6: पानी का मारा पाकिस्तान जंग जंग चिल्लाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़पने लगा है और जंग की गीदड़ भभकियां देने लगा है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की धमकी देते हैं और अब आसिम मुनीर जंग की साजिश रचने में जुट गए हैं। जी हाँ, LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात की है। पाकिस्तान ने आई फेंसिंग भी की है, इसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड भी तैनात किया है सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी अपनी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही मूव कराकर LOC के रावलाकोट, कोटली और भिम्बर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी करता रहा है।
12: बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं।
13: They are going on with construction. Let me explain. मैं पिछले 1-2-3 साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशनगंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे उस सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए, बल्कि जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट किए।
12: अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल
13: पूछूं, और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले 1 साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकियां शमकियां लगाई हैं या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है वो लिबास पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है 1 साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई। मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है, इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है रिजर्वॉयर का पानी कितना
12: कम है, अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है?
13: द मोमेंट वी फील दैट आवर नेशनल सिक्योरिटी, व्हाट इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी इज बीइंग थ्रेटन्ड, वी विल गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, डेफिनेटली।
12: ठीक है,
13: किसी को शक नहीं होना चाहिए।
6: पाकिस्तान अब सिंधु नदी के पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ रहा है, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन धमकीबाज पाकिस्तान का घमंड चूर चूर करने की तैयारी भारत में भी पूरी है, यानी इधर पाकिस्तान ने हिमाकत की, उधर भारतीय सेना अपने दुश्मनों का वो हाल करेगी जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं कर रखी है।
14: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
6: आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए तैयार है। गुस्ताखी पाकिस्तान करेगा और जवाबी कार्रवाई की तारीख, वक्त और जगह भारत तय करेगा। अब की बार आरपार की लड़ाई के लिए भारत ने सैन्य रणनीति का पूरा ताना बाना बुन रखा है, क्योंकि भारत की मिसाइलें तैयार है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है, भारत के लड़ाकू विमान तैयार है, भारत का एटम बम तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहली बार 12 परमाणु बम को स्ट्रेटजिक लोकेशन पर तैनात किए हैं। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने एक भी एटम बम तैनात नहीं रखे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीते कुछ महीनों में 12 परमाणु बम की तैनाती की गई है। यही नहीं, बीते 2 सालों में भारत ने अपने परमाणु हथियार 180 से बढ़ाकर 190 कर लिए हैं। मतलब यही है कि भारत के परमाणु हथियारों का जखीरा भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। यह दावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो दूसरी तरफ भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान तक ना पहुंचे इसके लिए 2 प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है। एक तो भारत सिंधु नदी को व्यास नदी से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का काम कर रहा है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उस बहुउद्देशीय परियोजना से भी जुड़ी होगी, ताकि रावी की सहायक नदी उज से व्यास बेसिन तक पानी पहुंचाया जा सके। अनुमान के मुताबिक काम को पूरा होने में करीब 3 से 4 साल लगेगा और साल 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी लाभ होगा। चिनाब नदी को रावी व्यास सतलुज प्रणाली से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण भी किया जाएगा। दूसरा, भारत शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर काम कर रहा है, क्योंकि अभी रावी नदी का ज्यादा पानी माधोपुर से होकर पाकिस्तान में जाता है। ये बांध इस पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ देगा। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में लगभग 5 दशक पहले 1979 में सोचा गया था। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए योजना बनाई गई थी।
15: Our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed.
6: भारत ने पहले ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब पाकिस्तान का पानी रोकने का भी इंतजाम कर दिया है। अब पाकिस्तान सिर्फ कीदड़ भक्कियां ही देता रह जाएगा, पानी तो उसे नहीं मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं, अफसरों पर भ्रिकटी ताने हुए हैं, लेकिन अयोध्या से लखनऊ तक जनता का सवाल है क्या वाकई न्याय होगा।
1: लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 15 दिन और देखने इंतजार कर लो।
2: 7 जून को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगना शुरू हुआ। 15 जून को मुख्यमंत्री के तरफ से गठित एसआईटी जांच शुरू करती है। 19 जून को मुख्यमंत्री खुद अयोध्या पहुंचते हैं। 21 जून तक एसआईटी को शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। 23 जून को एसआईटी अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट देती है। 29 जून को एसआईटी की जांच पूरी होनी है। 5 दिन मुख्यमंत्री की दी हुई डेडलाइन में बचे हैं, पर सवाल है शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्या निकला, किसका नाम आया, क्यों नहीं सब कुछ सामने आता। और सवाल अखिलेश यादव पूछते हैं।
3: सनातन धर्म की परंपरा और हमारे प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, अब शेयर इन थेफ्ट में तो कुछ विशेष होना चाहिए। सीसीटीवी के फुटेज गायब।
2: शुक्रवार को राम मंदिर आने वाले अरविंद केजरीवाल यूपी सरकार की बनाई एसआईटी पर सवाल उठाते हैं।
4: ये एसआईटी कुछ नहीं कर सकती, केवल लीपापोती करने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए एसआईटी बनाई गई है। अगर इनकी वाकई मंशा चोरी, असली चोरों को पकड़ने की है, असली लोगों को पकड़ने की है, ये मामला सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, ये मामला ईडी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा, आज हर हिंदू पूछना चाहता है, आज हर सनातनी पूछना चाहता है।
2: विपक्ष के सवाल एक तरफ हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में ही श्रद्धा से दान देने वालों के मन की शंका। कोई जानना चाहता है कि वो चांदी की काक भुशुंडी वाली मूर्ति कहाँ गई, जिसकी कोई रसीद नहीं मिली थी। तो सिंधी समाज से जुड़े लोग दावा करते हैं 200 किलो चांदी की जो ईंट दान में दी गई, उसका कुछ पता नहीं है।
5: अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
3: हमारे धर्म की परंपरा, हम गुप्त दान देते हैं, कुछ बातें तो सामने आ गई हैं और अब लोग लाएंगे नहीं सामने, इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि जो भी कहेगा उस पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा।
2: इसीलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी एसआईटी ने जो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसकी शुरुआती जांच का पक्ष सामने आए, तभी तो पता चलेगा क्या वाकई जो जांच के दायरे में है उन तक अयोध्या चढ़ावा चोरी की आंच पहुंची भी है या फिर विपक्ष के आरोप सच्चे हैं। सवाल की वजह समझिए। ये वीडियो 23 जून का है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित शेषावतार मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है 23 जून को। इसी कार्यक्रम में खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद होते हैं। 23 जून के इसी कार्यक्रम में मंदिर परिसर में ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव मौजूद होते हैं। 23 जून को इसी कार्यक्रम में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद होते हैं। आप शायद सोचेंगे कि इनकी मौजूदगी को लेकर शंका क्यों, सवाल क्यों, तो समझिए 19 जून को मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचते हैं तो चंपत राय को इस कार्यक्रम से दूर रखा जाता है, लेकिन बाकी मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मुख्य रूप से वही चंपत राय, वही गोपाल राव और वही अनिल मिश्रा मौजूद दिखते हैं जो एसआईटी की जांच के दायरे में है। यानी मुख्यमंत्री के सामने तो दूरी दिखाई जाती है, बाकी जांच के दायरे में है वो मंदिर परिसर में हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो क्या इससे निष्पक्ष जांच हो पाई होगी?
3: उनका भी हाथ तो नहीं है जो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में? मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा ट्रिप करते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या में किस लिए जाते थे? अयोध्या में किसी ने बताया नहीं उनको, सोचो।
2: इसीलिए कटघरे में सरकार है, क्योंकि जांच का आदेश देने भर से निष्पक्षता साफ नहीं हो जाती। ये तब साफ साफ दिखेगी जब आरोपों या जांच के दायरे में रहने वाले चेहरे कम से कम जांच के दौरान तो मंदिर या ट्रस्ट के काम से दूर रखे जाते। इसीलिए कटघरे में सरकार कही जा रही है।
0: रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्यौता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर भी सरकार कटघरे में खड़ी की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अधिकारियों की नींद टूटी। लेकिन अधिकारी एक्शन कम ले रहे हैं, खानापूर्ति ज्यादा कर रहे हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं,
6: जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा।
2: मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है।
7: मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले? भैया से हमने कहा, भैया मुंबई को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली।
2: बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरज भान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी।
8: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस।
2: यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है।
8: उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे निलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते।
9: सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और किसको मानेंगे हम, क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं।
2: सरकार कैसे कटघरे में है इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही।
10: कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 60 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
2: 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है, जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए वीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था।
10: 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी।
2: इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा?
3: सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पर पुलिस प्रशासन सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है।
11: 15 लोगों की जाने के लिए और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।
0: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आपत्तिजनक वीडियो के मामले में खुद को बेकसूर बताया, वही रिपोर्ट फर्जी बताई जा रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
12: जी वो बंदा जिहड़े मैं इहदे बारे दस दिना, वो बंदा जी जिहड़ा जगमन है कोई, वो बंदा पहला भी वो ड्रगी है जी, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं, संगल लगते ने।
2: अकाल तख्त के सामने भगवंत मान ने जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, क्या उसे पंजाब के डीआईजी और एसपी स्तर के पुलिस अफसरों ने 10 लाख रुपए देकर फर्जी तरीके से तैयार करवाया? क्या गुरुग्राम के होटल में पंजाब के पुलिस अफसरों ने की थी फर्जी एआई रिपोर्ट बनवाने की सीक्रेट डील? जिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लेकर भगवंत मान ने खुद को विवादित वीडियो के मामले में बेकसूर बताया, उसे लेकर अब पंजाब और हरियाणा पुलिस में ठंती दिख रही है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 10 लाख रुपए लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो को फर्जी बताया था।
13: देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं।
2: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, क्योंकि हरियाणा के जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी ने दावा किया था वही अब सामने आकर इस कथित डील की पोल खोलता है। जसप्रीत जस्सी के मुताबिक दावा है कि पंजाब के बड़े पुलिस अफसरों ने गुरुग्राम के पॉश इलाके में बने 5-स्टार होटल क्राउन प्लाजा में एक सीक्रेट मीटिंग की और उसे फर्जी रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एसपी जशनदीप गिल भी शामिल थे।
14: 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई अननोन नंबर से, मैंने फोन खाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशन गिल बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते जी एक रिपोर्ट बना ली है, तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बात करें। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो तो उनका ये था कि काम करना है अपने ये ठीक है और अच्छी मात्रा में पैसे मिले।
2: तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपत्तिजनक वीडियो को जिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के आधार पर फर्जी बताया उसे तैयार करने का दावा करने वाले जसप्रीत सिंह इस मामले में शिकायतकर्ता बन जाते हैं। दावा करते हैं कि उससे भगवंत मान के विवादित वीडियो को झूठा साबित करने की रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस काम में उसने अरुण और अंकित नाम के साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, जिनका कहना है कि वो नहीं जानते थे कि दबाव में उनसे तैयार करवाई गई इस रिपोर्ट का इस्तेमाल अकाल तख्त के खिलाफ किया जाएगा।
14: और मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ हूं कि किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है।
2: 10 लाख रुपए में फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाने के इन दावों के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान सामने आए और उन्होंने दावों को खुद को बदनाम करने की साजिश बताया है।
15: ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे ने मिलती है, ना मेरा कदकाठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है। वह वीडियो वायरल करके मैं दोषी करार देता गया।
2: भगवंत मान की सफाई को बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिरे से खारिज करते हैं।
16: पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर करके क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे?
17: ये बंदा किसी तरह भी बख्शन योग नहीं है, इन्दे ऐसी इस्तीफे की मांग कर दे।
18: भगवंत मान को कहीं ना कहीं अगर इसमें मोरालिटी है तो इसको इस्तीफा देना चाहिए।
2: पंजाब चुनाव से पहले इस मुद्दे पर अकाल तख्त से लेकर विपक्ष तक भगवंत मान को कतई बख्शना नहीं चाहता। ऐसे में ये ताजा दावा भगवंत मान और उनकी पार्टी दोनों की मुसीबत चुनावों में बढ़ा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: एक करोड़पति परिवार की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करोड़पति मंगेतकर का मर्डर कर दिया। बड़ी बात यह है कि मंगेतकर लड़की पर प्यार लुटाता रहा और लड़की बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतकर के मर्डर की प्लानिंग करती रही, और मंगेतकर के बर्थडे से एक दिन पहले लड़की ने बॉयफ्रेंड के साथ जिस तरह से प्लानिंग को अंजाम दिया, विश्वास कीजिए पूरी कहानी सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि आश्चर्य करेंगे कि आखिर सिया गोयल ने ऐसा क्यों किया।

0: 26 साल का केतन और 20 साल की सिया दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हैं। केतन और सिया के बीच बेपनाह इश्क की हर उस तस्वीर को घेरते हैं जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं। सिया के इश्क में केतन डूबता चला जा रहा था। कभी कार में इश्क का इजहार करना तो कभी सिया को यह एहसास दिलाना कि केतन की जिंदगी में जो कुछ भी है बस सिया ही है। केतन और सिया की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब केतन अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए शादी का प्लान भी शानदार बनाता है। केतन और सिया दोनों के परिवार रईस घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा केतन ने सिया के साथ सात फेरे लेने के लिए 17 करोड़ में पैलेस बुक कर लिया। ये लव स्टोरी महाराष्ट्र के शहर पुणे में चल रही थी। केतन, जिसका पूरा नाम केतन अग्रवाल है, और सिया, जिसका पूरा नाम सिया गोयल है। केतन रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल का बेटा है। केतन के पिता विशाल पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते हैं। केतन भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग अफसर के पद पर थे। केतन ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से BBA किया। अमेरिका के बेब्सन FW ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में MS यानी मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली। जबकि सिया ड्राई फ्रूट्स कारोबारी की बेटी है, वो भी रईस घराने से। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक थे। नवंबर में शादी फिक्स हो जाती है। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक हो जाते हैं। सिया और केतन के बीच रिश्ता दोनों के माँ बाप की रजामंदी से शुरू हुआ था, लिहाजा केतन और सिया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे। माँ बाप को भी लगता था रिश्ता गाढ़ा हो रहा है। और एक दिन पुणे से 65 किलोमीटर दूर सिया और केतन लोहगढ़ के प्रसिद्ध किले में घूमने जाते हैं और वहाँ 350 फीट ऊंची पहाड़ी से गिरकर केतन की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ मौत नहीं बल्कि केतन का मर्डर था, और केतन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सिया ने किया। सिया एक तरफ केतन से मिली, दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड से। फिर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन को मार डाला। लोहगढ़ के किले में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने केतन का मर्डर कर दिया।
1: मुझे डर होने लगा कि सिया ऐसे करेगी, लेकिन उस चीज में बहुत सदमे में हूँ। मेरे बेटा चला गया है, बहुत ज्यादा सदमे में हूँ इसमें। मुझे एक बार भी नहीं लगा सिया ऐसे।
0: फिर केतन का परिवार अतीत के पन्ने पलटता है, केतन के सपनों को दोहराता है और हर पन्ने में सिया को देखता है। तब केतन के परिवार को एहसास होता है कि सिया तूने क्या किया।
2: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है, इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी

0: भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
1: बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया केतन को लेकर लोहगढ़ किले में जाती है, जहां प्लानिंग के मुताबिक सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी उनके पीछे पीछे आता है और दोनों मिलकर केतन को गहरी खाई में धक्का देकर गिरा देते हैं।
2: लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ। उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने यह हत्या की है, यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था।
1: फिर सिया की मां केतन की मां को फोन करती है और बताती है कि केतन के साथ हादसा हो गया है, लोहगढ़ के किले की खाई में गिरकर उसकी मौत हो गई है।
0: हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से।
3: उसका फुल प्लानिंग था, उसने 2-3 बार कोशिश भी की मेरे बेटे को मारने के लिए, पहले मेरा बेटा बच गया। उस इशारे से मेरा बेटा समझा नहीं कि ऐसे कर रही थी सिया, ऐसे क्यों कर रही है।
1: सिया और केतन चौधरी भी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सिया ने चेतन से शादी करने के लिए केतन से रिश्ता तोड़ने की बजाय उसे पूरी तरह से हटाने का ही प्लान बना लिया। चेतन चौधरी भी सिया के पिता की तरह ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था। चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि सिया केतन के साथ सगाई तोड़कर और भागकर शादी करने के पक्ष में नहीं थी। सिया को लगता था कि उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए केतन के मर्डर का प्लान बना दिया। ओंकार वाबले के साथ आज तक ब्यूरो।
4: प्रेमी के लिए मंगेतर की हत्यारन बनी सिया गोयल ने परफेक्ट मर्डर की साजिश रची। प्लान था हत्या को हादसे का रंग देना। 20 वर्ष की सिया गोयल के दिमाग में पनपी साजिश पेशेवर हत्यारों को भी मात दे रही थी। आखिर करोड़पति व्यापारी के परिवार से आने वाली सिया गोयल को हत्या का आइडिया कहां से मिला? कैसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिया ने अपने मंगेतर की हत्या कर दी?

0: इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है एक खौफनाक हकीकत, एक ऐसी खौफनाक हकीकत जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यकीन नहीं होता, 20 साल की सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर के परफेक्ट मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी और साजिश को पुणे के लोहगढ़ किले पर अंजाम दिया। कई परतों में लिपटी साजिश इतनी गहरी थी कि दुनिया के लिए केतन अग्रवाल की हत्या एक हादसा बनकर रह जाती।
1: 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30-11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है।
0: सिया के शातिर दिमाग में पनपी साजिश एकदम सटीक थी। अपनी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी मनाने के लिए मंगेतर केतन के साथ लोहगढ़ किले में पहुंची। पीछे पीछे प्रेमी चेतन भी पहुंचा और जैसे ही मौका मिला केतन को किले के ऊपर से दोनों ने मिलकर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। 18 जून को सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ।
2: सर जिस दिन वो गिरा, सिया और वो दोनों ही ऊपर थे। केतन ने हमें घर से जाते हुए कहा था कि सिया की कुछ सहेलियां दोस्त भी साथ में आ रहे हैं जो सरप्राइज है, और वहां जाने पर पता चला कि वो अकेली आई थी। और ऊपर जाने के बाद जैसे उसने बताया कि उसका पैर पिसला, गढ़ पे से सब सिक्योरिटी है, कोई ज़्यादातर गिर नहीं सकता, जो उसने टाइमिंग बताई कि इस टाइम के ऊपर उसका पैर फिसला, इस टाइम पे हम चढ़े, वो मैच होता हुआ नहीं है।
0: हत्या को

0: हादसे का रंग देने के बाद सिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए घड़ियाली आंसू भी बहाए ताकि किसी को उसकी साजिश पर शक न हो। सिया ने मंगेतर केतन की हत्या के बाद एक पोस्ट में लिखा,
1: तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया। तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कभी नहीं मिलेंगे। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।
0: पहले हत्या की और फिर दुनिया के सामने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सिया ने सुनियोजित साजिश के तहत ये पोस्ट किया। सिया ने सोचा था कि दुनिया केतन की हत्या को हादसा मानेगी और जांच की आंच कभी उस तक नहीं पहुंचेगी।
2: बड़ी खुशी दिखाते थे, साथ में हमेशा आते थे, खाते थे, घूमते थे, सब ओके दिखाते थे। कुछ ऐसा दिखाया नहीं, और सीधा हमारे बच्चे पे घात कर दिया और उसको मर्डर कर दिया।
0: दरअसल सिया और केतन की शादी इसी साल फरवरी में तय हुई थी। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। 25 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन सगाई के बाद साजिश ने दबे पांव कई बार दस्तक दी, जिससे अनसुना करना केतन और उसके घर वालों को बहुत भारी पड़ा।
3: उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार, कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ, कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमिजिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए।
4: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

सी है साल की सबसे बड़ी एकादशी? साल की सबसे बड़ी एकादशी का क्या है विधान? और साल की सबसे बड़ी एकादशी पर मिलेंगे कौन से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

लखनऊ अग्निकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, आग लगने से नहीं दम घोटू, धुएं से 15 लोगों की मौत, 19 इंजीनियर, 6 पीसीएस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश। भरत तिवारी एनकाउंटर में बवाल के बीच बैकफुट पर सम्राट सरकार, न्यायिक जांच के आदेश, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग गठित। कोलकाता गोदाम हादसे में 5 की मौत, मलबे में दबी कई जिंदगियां, मोर्चे पर सेना, 3 गिरफ्तार, सीएम शुभेंदु ने लिया निरीक्षण। पुणे की युवती पर करोड़पति मंगेतर की हत्या का आरोप, साथी गिरफ्तार, पिता ने कहा मेरे बेटे को फंसाया गया, फॉरेंसिक टीम ने लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया। और ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता, सूत्रों के अनुसार खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया निमंत्रण। एक जांच की आंच अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद की है, दूसरी जांच की आंच सरकारी लापरवाही से खड़ी इमारत में लगी आग में 15 लोगों की मौत से। मुख्यमंत्री लगातार सख्त हैं,